0: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है।
1: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण SIT रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
0: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
1: यहाँ सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी 2 लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोलमोल जवाब क्यों दिया?
0: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
1: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
0: उन्होंने स्वयं यह त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना यह हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
1: अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर 1, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर 2, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर 4, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर 5, जवाब के बजाय चढ़ावा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों?
2: और अब बात करेंगे बारिश में डूबती मुंबई के बारे में, क्योंकि मॉनसून की एक ही बारिश में मुंबई की दुर्गति हो जाती है। इस बार भारी बारिश से मुंबई में इतना बुरा हाल है कि अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, BMC ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

0: फिर डूब गई मुंबई, लग गया आफत काल।
1: रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को आधे आधे घंटे का पूरा अपडेट हम दे रहे हैं कि आप मत बाहर आइए।
0: सरकार बदल गई, मुंबई की नियति नहीं बदली। सिस्टम में भ्रष्टाचार के लीकेज से कब तक डूबेगी मुंबई?
2: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है।
0: मुंबई की बारिश में 13 लोग मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी।
3: अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो।
0: ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई और उससे सटे इलाकों का हाल है। ट्रेन की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं। एक्सप्रेस वे पर बारिश कहर बनकर बरसी है, तो रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी है। और हर साल की तरह इस डूबती मुंबई में दावे ध्वस्त हो रहे हैं। न बीएमसी कुछ कर पाई, न महाराष्ट्र सरकार मानसून की बारिश में आफत काल को रोक पाई। सवाल यही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट था, फिर भी मुंबई की ये दुर्गति कैसे हो गई? कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज मुंबई की त्रासदी बन रहा है? और यही वजह है कि मुंबई की बारिश का इतिहास आज भी जस का तस है। आज विपक्ष बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की दुर्गति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है।
2: देखिए 4.5 साल से मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी चुनाव हो गया, लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: और ये देखिए बारिश ने कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कहर बरपाया, और ऐसा भूस्खलन हुआ कि मिसिंग लिंक पर टनल बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर भर भरा कर हाईवे पर आ गिरे और पूरा हाईवे बंद हो गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मिसिंग लिंक भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया?
4: इस वक्त हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर हैं। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम हैं, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है।
0: मुंबई के मानखोर्द इलाके में बारिश के चलते एक चौल ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी चौल मलबे में बदल चुकी है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा।
5: अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफी सारे पार्ट्स जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे।
0: आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़ गए। वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
6: एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ शासन ने उचित निर्णय लिया है और काम घर से करने का निवेदन सबको किया गया है।
7: बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजपा और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं।
0: मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर रहें, वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क न करें और समुद्र तट व जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।
8: क्या बारिश से बचने की एडवाइजरी जारी करके और बारिश के वक्त लोगों को घरों में रहने की सलाह देने के बाद बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? जिस बारिश के प्रकोप को मुंबई झेल रही है, क्या इसके पीछे सिस्टम में भ्रष्टाचार की लीकेज नहीं है? मुंबई के हालात ऐसे हैं कि जमीन से आसमान तक यातायात ठप है।
0: मुंबई में औसतन 2200 से 2500 मिलीमीटर सालाना वर्षा होती है। शहर में एक दिन में सबसे अधिक 944 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड 26 जुलाई 2005 को दर्ज किया गया था। इसके विपरीत अंग्रेजों के जमाने में भी यहां 1940 के दशक में भीषण बाढ़ के मामले सामने आए थे। मुंबई के जल निकासी तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा 19वीं सदी यानी ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उस समय के अनुसार इसे प्रति घंटे 25 मिलीमीटर तक की बारिश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हाल के दशकों में क्लाइमेट चेंज के कारण यहां कई बार एक घंटे में 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, यानी महीने भर की बारिश अब कुछ ही घंटों में दर्ज हो जाती है और नतीजा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है।
3: कैसे मुंबई के रस्तों में खुदाई हुई है, जैसे थाना में एक तरफ मेट्रो, एक तरफ मोनो, एक तरफ रिंग रेलवे। अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो। जिसकी जरूरत नहीं वो कर रहे हो, क्या जरूरत है रिंग रूट और रिंग रेलवे की थाना में।
0: बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के वसई, विरार और नाला सुपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। ये देखिए कैसे आपको पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक डूबा हुआ नजर आएगा। प्लेटफॉर्म के पास भी रेलवे ट्रैक पर समंदर सा बह रहा है। लोनावला करजत सेक्शन पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद बहुत सी ट्रेनें कैंसिल की गईं या डाइवर्ट की गई हैं। कुल 17 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 31 ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा है, 18 ट्रेनें छोटी दूरी में ही टर्मिनेट करनी पड़ी हैं, 15 ट्रेनों को छोटी दूरी के लिए चलाया गया, जबकि 4 ट्रेन रीशेड्यूल हुई हैं। मुंबई से अहमदाबाद, पुणे, नांदेड़, इंदौर, बेंगलुरु, ग्वालियर, चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट, अजमेर, मैसूर, हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल या रीशेड्यूल करना पड़ा है। सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं, रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और ये देखिए कैसे लोगों ने नीले ड्रम से जुगाड़ की नाव बना रखी है। आपको बता दें कि वसई विरार पालघर जिले का एक शहर है, ये मुंबई के उत्तर में स्थित है। मौसम विभाग ने पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। पालघर में बारिश का कहर ऐसा टूटा है कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कई जगह रोड धंसने से बड़े बड़े गड्ढे और सुराख हो गए और लोहे का सरिया बाहर निकल आया।
9: सबसे ज्यादा वर्षा आने वाले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है।
0: सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों जैसे पुणे, गोंदिया और रत्नागिरी में भी बारिश कहर बरपा रही है। आज तक ब्यूरो।
8: और अब आपको यूपी में हमीरपुर पुलिस की बेरहमी दिखा देते हैं। पुलिस वालों ने एक बेकसूर को वांछित अपराधी बताया, उठा लिया, उसे थाने में मार मार कर अधमरा कर दिया। बाद में पता ये चला कि वो वांछित अपराधी था ही नहीं बल्कि उसका हमनाम था। हमीरपुर की ही दूसरी तस्वीर में एक दरोगा की धुनाई हो रही है क्योंकि उसने ट्रक वाले से 20,000 रुपए चुराए थे।
0: इस आदमी को अधबरा कर दिया गया है। इसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां चोट के निशान नहीं है। चेहरा सूजा हुआ है, हाथ खून खून है। अस्पताल की चारपाई पर ये जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोप है कि इसकी ये दशा थाने में बंद करके पुलिस वालों ने की है।
10: घर से उठा लाए थे पुलिस।
11: कौन उठा लाया था?
10: मेरे हल्का इंचार्ज, दो पुलिस वाले, चार पहिया में लेके आए थे।
11: फिर
10: आगे थाने के अंदर सब लोग हमें मारा।
11: किस बात में उठा के लाए थे?
10: फेक बताया था कि तुम्हारे नाम का कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया।
0: हमीरपुर की सदर कोतवाली के मेरापुर क्षेत्र की पुलिस ने गजब कर दिया। दरअसल एक शिवराज नाम का आरोपी था, उसके खिलाफ वारंट था। पुलिस शिवराज को गिरफ्तार करने पहुंची, मगर असली शिवराज को ना पकड़कर उसके हमनाम इस आदमी को पकड़ लिया और इसके बाद इसकी थाने में ये दुर्गति की गई। पीड़ित की बहन कहती है कि उसकी आंखों के सामने थाने के भीतर उसके भाई के सारे कपड़े उतार कर पुलिस वालों ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी।
12: भीतर बांधने पड़े तो बिना कपड़ा के, इतना पीटो है सर, एक भी कपड़ा नहीं था उसके सर, पूरी वो शर्ट उसकी पूरी ब्लड से रंगी पड़ी थी, उसी से बांधा। मोरे लड़का का मारो है।
13: कौन मारे?
12: सब पुलिस वाले पूरे मारो है। मेरे हल्की का दरोगा मारो है, ना बता बताए कुतवाल मारो है, सब पूरे मारो।
0: पुलिस वालों को जब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया है, तब उन्होंने इसे छोड़ा, ये कहते हुए कि इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अब ये आदमी कानपुर में इलाज करा रहा है। हमीरपुर पुलिस ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, गलत आदमी को उठाया और जानवरों की तरह उसे पीटा। मगर हमीरपुर पुलिस की कारस्तानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक और तस्वीर देखिए। हमीरपुर के ही थाना कोतवाली नगर के दरोगा की पिटाई हो रही है। आरोप है कि कानपुर से हमीरपुर आने के लिए इसने ट्रक वाले से मदद मांगी। रास्ते में ट्रक में रखे 20,000 रुपए इसने चुरा लिए। रास्ते में इसने ट्रक रुकवाकर भागना चाहा, मगर पकड़ा गया और अब इसकी पिटाई हो रही है। सवाल ये है कि हमीरपुर के इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? कब उन पुलिस वालों पर कानून का कोड़ा चलेगा जिन्होंने अनजाने में एक आदमी की चमड़ी उधेड़ी? नाहिद अंसारी, हमीरपुर आज तक।
8: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म 5G से हटा दिया गया है। इससे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था, लेकिन इस सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही। पहले इसका टाइटल था पंजाब 95, जिसे बदलकर सतलुज कर दिया गया था।
14: दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 4 बरस से सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी थी। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Zee5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और हैरानी इस बात की है कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Zee5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी, मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये नहीं पता था।
15: आई नो बहुत सारे लोग सोचते थे संडे फैमिली ना देखेंगे, मैंने कहा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं। पर ए पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाई सीडी बना के रख ली मैं था। बात थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ताही मैं कल इशारा किया था भाई भी ये उड़ सकती है फिल्म।
14: अब फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिरोमणि अकाली दल सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार को फिल्म बैन क्यों करनी पड़ी?
16: ऐसे व्यक्ति की लाइफ के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो गवर्नमेंट उसको क्यों रोकना चाहती है, मुझे नहीं मालूम। अगर तो कोई खुद खाड़कू है, किसी ने कोई आदमी लोग मारे हैं उसकी बात हो रही है, किसी ने देश के विरुद्ध कोई काम किया उसकी बात हो रही है, उसको तो कोई गवर्नमेंट रोके। जो खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था तो वो जो जाति हो रही है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था।
14: आखिर फिल्म में ऐसा क्या है कि फिल्म को बैन करने की जरूरत पड़ गई?
17: आपको बता दें कि जसविंद सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मास
13: क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
14: ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने बताया था कि 1994 से 95 के बीच पंजाब पुलिस ने किस कदर निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। चंडीगढ़ से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
8: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा ईरान मातम में डूबा है।
0: दो दिनों तक श्रद्धांजलि के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा अब तीसरे दिन तेहरान में आगे बढ़ रही है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब बताया है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहन को रोकना भी पड़ा। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा समूह है जिसने ईरान पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में बदले की मांग तेज हो गई है और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हाकमी ने कहा कि खामनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। तेहरान में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी आप तक एक एक जानकारी और तस्वीर पहुंचा रहे हैं।
17: समय हम तेहरान में मौजूद हैं और अगर आप आजादी स्क्वायर के आसपास का नजारा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर जनसैलाब मौजूद है। लोगों में खासतौर पर यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को खोने का दर्द है, मातम है, लेकिन इसके साथ एकजुट होने की एक खुशी भी है कि ईरान के लोग अब एक बार फिर से इस तरीके से एकजुट हो रहे हैं। आज तक की टीम अकेली आपको ये नजारे या फिर आप तस्वीरें आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि आखिरकार आज का दिन यानी तीसरा दिन यानी दो दिन तक उनके पार्थिव शरीर को जान मसाला रखा गया था, आज लाया जाएगा और ये नए पड़ाव के अंदर लोगों में उत्साह या जोश किस तरीके का, लोग अब भी सड़कों पर बने हुए हैं।
0: ईरान में इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद हजारों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। गर्मी से राहत के लिए फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव किया जबकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक से लेकर तरबूज भी बांटे। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ अब भी शव वाहन के साथ चल रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक भारी जन सैलाब की वजह से अंतिम यात्रा तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
17: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का है और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है तो इस सिंबॉल को यहाँ पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है।
0: आपको बता दें कि खामनेई को उनके पैतृक शहर यानी उत्तरी ईरान के मशहद में दफनाया जाएगा। यहाँ इमाम रजा की दरगाह के अंदर खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, करबला और समर्रा में। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उनकी जहर देकर हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी सामने आई। सीसीटीवी में चोरी के प्रमाण मिले। 25 पन्ने के रिपोर्ट्स में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी। बैठक के बाद गोविंद गिरी ने कहा, हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती। कृष्णा मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोराजोरी। अखिलेश का बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाएं तैयार। योगी ने कहा, मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले ना करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च। 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतरी टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की पीएम की अगवानी। जकार्ता में भव्य स्वागत। रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो आ रही है राजस्थान से। जयपुर में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। ये छत गिरते ही वहां काम कर रहे करीब 10 मजदूर मलबे में दब गए, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। सूचना मिली तो पुलिस प्रशासन राहत दल मौके पर पहुंचे हैं। सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। तस्वीरें घटनास्थल की हैं। 10 मजदूर मलबे में दबे थे। राहत बचाव कार्य अभियान चलाया गया और उसके बाद तुरंत उन्हें वहां से निकाला गया। ये 10 मजदूर घायल हैं और घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और निर्माणाधीन इमारत है। निर्माणाधीन इमारत गिर गई, इसलिए अब हादसे की जांच की जा रही है कि आखिर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी कैसे। जयपुर की घटना, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इमारत थी जो जिसका नए ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन हो रहे थे और कंस्ट्रक्शन के दौरान ही इमारत की छत गिर गई। 10 मजदूर दब गए, लेकिन उन्हें निकाल लिया गया। वो घायल अवस्था में उनका इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। विश्नेवे शहर में जोरदार धमाका हुआ है। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया है कि 6 जुलाई को रूस के हमले में विश्नेवे में 7 लोग मारे गए हैं, 29 लोग घायल हुए हैं। नासा के ग्लोबल फायर ट्रैकिंग मैप ने भी 6 जुलाई को उस इलाके में थर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट की थी। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार की सुबह रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइलों और ड्रोन से जबरदस्त हमला किया था, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो 6 तारीख को रूसी हमले से यूक्रेन दहल उठा था और पिछले 2 महीनों में ये सबसे बड़ा हमला था। आपको भी बता दें कि यूक्रेन लगातार रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर रहा है और उसने मॉस्को तक भी हमले किए हैं, जिसके बाद अब रूस की ओर से कार्रवाई हुई है। और यह हमला इतना भीषण था कि नासा का जो हीट ट्रैकिंग सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम था, वहां पर भी इस हमले के बाद थर्मल एक्टिविटी नजर आई। थर्मल एक्टिविटी है जब धमाके होते हैं, वहां पर तापमान बढ़ जाता है, और उन सैटेलाइट ने उन थर्मल स्कैनर्स के जरिए उसे सेंस किया कि यूक्रेन में कहां पर यह हमला हुआ था। यह अब तक का सबसे बड़ा, ये देखिए तस्वीरें आ रही है। हालांकि 7 लोगों की मौत हुई इस धमाके में, इस हमले में। रूस ने लगातार 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाली नहीं हो पा रही है और लगातार जो है एक दूसरे पर हमले जारी है। और अब खबर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी इस मामले से। जांच कर रहे विशेष जांच की जो टीम है उसने अंतरिम रिपोर्ट दे दी है और उस सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट में बहुत सारे दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज हटाने, गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 सबूत मिले हैं। इस रिपोर्ट में जांच की दिशा, जमीन खरीद का ब्यौरा, अलग अलग बैंकों में जमा करोड़ों रुपए की जानकारी का भी है। दावा यह भी किया गया है एसआईटी के अनुसार कि कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियों से खुले नोट निकालकर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य गहनों अन्य जगहों पर भी रखते हुए देखा गया है। अभी एसआईटी की रिपोर्ट का कुछ हिस्सा है, उसमें यह भी कहा गया है कि कुछ कर्मचारी इशारों के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते भी दिखाई देते थे। तो एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट जो आई है उसमें इन अनियमितताओं को, साधारण भाषा में अनियमितताएं कहेंगे,
लेकिन चोरी ऐसे ही तो होती है, लूट ऐसे ही तो होती है, उसकी एक अलग मोडस ऑपरेंडाई होती है। एसआईटी की भाषा में उसे बहुत सम्मानजनक शब्दों में कहा गया है, लेकिन लूट चोरी इन तमाम वारदातों को करने के लिए बाकायदा एक षड्यंत्र रचा गया और पूरी प्लानिंग के साथ, यानी लूट की एक पूरी योजना थी जिस योजना के तहत ये जो लोगों का गिरोह था, जो काम कर रहा था, उसके लिए वो इशारों से काम करता था। सीसीटीवी में क्या दिखा, खुले नोट हटाते दिखे, उसे छिपाते हुए दिखाई दिए, यानी चोरी के लिए बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार था। उसमें दिखाई दे रहा अनुकल्प, लवकुश, करुणेश, ये सब सीसीटीवी में मदद करते दिखाई दे रहे हैं। रमाशंकर मिश्रा एक नाम है जो कि गड्डियां छुपाते हुए दिखाई दे रहा है, ये एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट है। गिनती कक्ष में चोरी की पुष्टि भी हो चुकी है। सोचिए, वो राम मंदिर जो करोड़ों हिंदुओं की, श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, वहां चोरी लूट की हर तस्वीर और एसआईटी की प्राथमिक जांच में ये सामने आ रहा है। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट की एक हाई लेवल बैठक भी हुई। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे, चढ़ावे के हिसाब किताब, नई व्यवस्था को लेकर के चर्चा हुई। ट्रस्ट के सदस्यों की राय थी कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय के इस्तीफे की सिर्फ मंजूरी काफी है? क्या एक ट्रस्ट तय करेगा कि मंदिर में, जहां भगवान के नाम पर करोड़ों लोगों ने आस्था से डोनेशन दिया, चंदा दिया, दान किया, वहां पर चोरी की सजा सिर्फ इतनी हो सकती है, बस एक इस्तीफा?

0: खोटा बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण एसआईटी रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
1: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
0: यहाँ सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी दो लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोल मोल जवाब क्यों दिया?
1: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
0: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
1: उन्होंने स्वयं यह त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना यह हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
0: अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर एक, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर दो, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर चार, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी, तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर पांच, जवाब के बजाय चहाबा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों?
2: अब आप सोचिए, एक बैंक है, लोगों का वहां पैसा जमा होता है, वहां पर लूट हो जाती है, चोरी हो जाती है, और होगा क्या, बैंक है, हम अंदर मीटिंग करेंगे, बैंक मैनेजर का इस्तीफा करा देते हैं, कुछ अधिकारियों का इस्तीफा करा देते हैं, क्या इतने से बात बन जाएगी? बहरहाल बात करेंगे बारिश में डूबती देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मानसून की एक ही बारिश में मुंबई की दुर्गति हो जाती है। भारी बारिश से मुंबई का इतना बुरा हाल है कि अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो रही हैं। बीएमसी ने रेड अलर्ट भी जारी किया है।

0: फिर डूब गई मुंबई, लग गया आफतकाल।
1: रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को आधे आधे घंटे का पूरा अपडेट हम दे रहे हैं कि आप मत बाहर आइए।
0: सरकार बदल गई, मुंबई की नियति नहीं बदली। सिस्टम में भ्रष्टाचार के लीकेज से कब तक डूबेगी मुंबई?
2: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है।
0: मुंबई की बारिश में 13 लोग मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी।
3: अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो।
0: ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई और उससे सटे इलाकों का हाल है। ट्रेन की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं। एक्सप्रेस वे पर बारिश कहर बनकर बरसी है, तो रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी है। और हर साल की तरह इस डूबती मुंबई में दावे ध्वस्त हो रहे हैं। न बीएमसी कुछ कर पाई, न महाराष्ट्र सरकार मानसून की बारिश में आफत काल को रोक पाई। सवाल यही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट था, फिर भी मुंबई की ये दुर्गति कैसे हो गई? कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज मुंबई की त्रासदी बन रहा है? और यही वजह है कि मुंबई की बारिश का इतिहास आज भी जस का तस है। आज विपक्ष बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की दुर्गति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है।
2: देखिए 4.5 साल से मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी चुनाव हो गया, लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: और ये देखिए बारिश ने कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कहर बरपाया, और ऐसा भूस्खलन हुआ कि मिसिंग लिंक पर टनल बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर भर भरा कर हाईवे पर आ गिरे और पूरा हाईवे बंद हो गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मिसिंग लिंक भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया?
4: इस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम हैं, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है।
0: मुंबई के मानखोर्द इलाके में बारिश के चलते एक चौल ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी चौल मलबे में बदल चुकी है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा।
5: अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफी सारे पार्ट जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे।
0: आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़ गए। वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
6: एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ शासन ने उचित निर्णय लिया है और काम घर से करने का निवेदन सबको किया गया है।
7: बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजपा और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं।
0: मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर रहें, वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क न करें और समुद्र तट व जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा, हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।
8: ये बात सही है कि

0: सिर्फ इसी एक बहाने से सरकार बच सकती है? सिर्फ बीएमसी, पूरी पीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र की सरकार कब तक ये बहाने मनाएगी? बारिश से बचने के लिए क्या एडवाइजरी जारी करके बारिश के वक्त लोगों को घर में रहने की सलाह देने के बाद बीएमसी, महाराष्ट्र सरकार क्या अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? जिस बारिश के प्रकोप को मुंबई झेल रही है, क्या इसके पीछे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज नहीं है? मुंबई के हालात ऐसे हैं कि जमीन से आसमान तक यातायात ठप हो जाता है, सड़क ठप हो जाता है, और सरकार के लोग कहते हैं ये तो मुंबई के स्पिरिट है। जरा देखिए रिपोर्ट।
1: मुंबई में औसतन 2200 से 2500 मिलीमीटर सालाना वर्षा होती है। शहर में एक दिन में सबसे अधिक 944 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड 26 जुलाई 2005 को दर्ज किया गया था। इसके विपरीत अंग्रेजों के जमाने में भी यहां 1940 के दशक में भीषण बाढ़ के मामले सामने आए थे। मुंबई के जल निकासी तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा 19वीं सदी यानी ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उस समय के अनुसार इसे प्रति घंटे 25 मिलीमीटर तक की बारिश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हाल के दशकों में क्लाइमेट चेंज के कारण यहां कई बार एक घंटे में 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, यानी महीने भर की बारिश अब कुछ ही घंटों में दर्ज हो जाती है, और नतीजा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है।
2: से बंबई के रस्तों में खुदाई हुई है, जैसे थाना में एक तरफ मेट्रो, एक तरफ मोनो, एक तरफ रिंग रेलवे। अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो। जिसकी जरूरत नहीं वो कर रहे हो, क्या जरूरत है रिंग रूट और रिंग रेलवे की थाना में।
1: बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के बसई, विरार और नाला सुपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। ये देखिए कैसे आपको पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक डूबा हुआ नजर आएगा। प्लेटफॉर्म के पास भी रेलवे ट्रैक पर समंदर सा बह रहा है। लोनावला करजत सेक्शन पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद बहुत सी ट्रेनें कैंसिल की गई या डाइवर्ट की गई हैं। कुल 17 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 31 ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा है, 18 ट्रेनें छोटी दूरी में ही टर्मिनेट करनी पड़ी हैं, 15 ट्रेनों को छोटी दूरी के लिए चलाया गया, जबकि 4 ट्रेन रीशेड्यूल हुई हैं। मुंबई से अहमदाबाद, पुणे, नांदेड़, इंदौर, बेंगलुरु, ग्वालियर, चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट, अजमेर, मैसूर, हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल या रीशेड्यूल करना पड़ा है। सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं, रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और ये देखिए कैसे लोगों ने नीले ड्रम से जुगाड़ की नाव बना रखी है। आपको बता दें कि वसई विरार पालघर जिले का एक शहर है। ये मुंबई के उत्तर में स्थित है। मौसम विभाग ने पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। पालघर में बारिश का कहर ऐसा टूटा है कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कई जगह रोड धंसने से बड़े बड़े गड्ढे और सुराख हो गए और लोहे का सरिया बाहर निकल आया।
3: सबसे ज्यादा वर्षा आने वाले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है।
1: सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों जैसे पुणे, गोंदिया और रत्नागिरी में भी बारिश कहर बरपा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। सीमा पर पहुंचते ही मेजबान देश के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये तीसरा दौरा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। सीमा पर पहुंचते ही मेजबान देश के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। विमान से उतरने के बाद जकार्ता एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी का कुछ यूं स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इन मनमोहक तस्वीरों को देखिए, जकार्ता एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी का सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्वागत हुआ।

0: पीएम मोदी ने यहां बसे भारतीयों से मुलाकात की तो सबके चेहरे खिल गए। देखिए कैसे मोदी की एक झलक पाने और उनसे हाथ मिलाने की होड़ लग गई। जिन लोगों ने पीएम से मुलाकात की उनसे सुनिए उनका हाल दिल।
1: मुझे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। हमारे मोदी जी जितने मुझे कैमरे पे अच्छे लगते थे उससे ज्यादा मुझे उनको साक्षात दर्शन उनका करके बहुत ही आनंद मुझे प्राप्त हुआ।
2: आज हम सबों के लिए यह बहुत ही हर्ष उल्लास और आनंद का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण यहाँ पर जकार्ता में हुआ और हम सभी बहुत ही उत्साहित है।
1: इट्स अ वेरी वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। बहुत अच्छा लगा
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर। बहुत उत्साहित हूँ और उनसे आशीर्वाद पाके बहुत मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जय हिंद जय भारत।
0: दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में करीब 2,500 करोड़ की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है। यहाँ रामलीला होती है, गरुड़ एयरलाइन है और नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छप चुकी है। इंडोनेशिया भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा साथी है। इंडोनेशिया भारत को कोयला, पाम ऑयल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है। इंडोनेशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा निकल भंडार है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी का सबसे अहम कच्चा माल है। अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर तरक्की की नई राह निकाल रहे हैं। आज तक
4: इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
6: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
10: क्या दक्षिण की दिशा एक अशुभ दिशा है? दक्षिण दिशा से धन का क्या संबंध है? दक्षिण दिशा की तरफ किसकी पूजा कर सकते हैं? क्या है दक्षिण दिशा का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
6: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call?
12: HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी सामने आई। सीसीटीवी में चोरी के प्रमाण मिले। 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी। बैठक के बाद गोविंद गिरी ने कहा, हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती। कृष्णा मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोरा जोरी। अखिलेश का बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाएं तैयार। योगी ने कहा, मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले ना करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च। 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतरी टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की पीएम की अगुवानी। जकार्ता में भव्य स्वागत। रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ में हूं आशुतोष मिश्रा। शुरुआत करते हैं खबर राजस्थान से। जयपुर में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। छत गिरते ही वहां काम कर रहे करीब 10 मजदूर मलबे में दब गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन राहत दल मौके पर पहुंचे। सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अब मामले की जांच की जा रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की यह निर्माणाधीन इमारत है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में निर्माणाधीन इमारत कैसे गिरी, छत गिरी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। अगली खबर यूक्रेन से, जहां पिछले 4 सालों से चल रही जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। विश्नेवे शहर में जोरदार धमाका हुआ है। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया है कि 6 जुलाई को विश्नेवे पर रूस के हमले में 7 लोग मारे गए हैं। 29 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। वहीं यह हमला इतना तीव्र था कि नासा के ग्लोबल फायर ट्रैकिंग मैप पर भी यह दिखाई दिया। 6 जुलाई को इस इलाके में थर्मल एक्टिविटी सैटेलाइट ने डिटेक्ट की। अधिकारियों के मुताबिक सोमवार की सुबह रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइलों और ड्रोन से जबरदस्त हमला किया, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। खबर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस की जांच कर रही एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज हटाने, गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 सबूत मिले हैं। इस रिपोर्ट में जांच की दिशा, जमीन खरीद का ब्यौरा और अलग अलग बैंकों में जमा करोड़ों रुपए की जानकारी का भी दावा किया गया है। एसआईटी के अनुसार कुछ कर्मचारियों की नोटों की गड्डियों से खुले नोट निकालकर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य जगहों में रखते हुए भी देखा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी इशारों के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते भी दिखाई दे रहे थे। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर ट्रस्ट की हाई लेवल की बैठक भी हुई। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चढ़ावे के हिसाब किताब की नई व्यवस्था को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई। ट्रस्ट के सदस्यों की राय थी कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय की सिर्फ इस्तीफे की मंजूरी काफी है।
1: खोटा बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
2: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है। वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है।
1: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण एसआईटी रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
2: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
1: यहाँ सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी दो लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोलमोल जवाब क्यों दिया?
2: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
1: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
2: उन्होंने स्वयं यह त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी, कि पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
1: अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर 1, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर 2, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर 4, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी, तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर 5, जवाब के बजाय चढ़ावा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों?
0: बात करेंगे बारिश में डूबती मुंबई की। मानसून की एक ही बारिश में मुंबई की दुर्गति ऐसी हो जाती है कि भारी बारिश से मुंबई का इतना बुरा हाल हो जाता है कि 13 लोगों की मौत हो जाती है। लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो रही हैं। BMC ने रेड अलर्ट जारी किया है।

0: फिर डूब गई मुंबई, लग गया आफत काल।
1: रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को आधे आधे घंटे का पूरा अपडेट हम दे रहे हैं कि आप मत बाहर आइए।
0: सरकार बदल गई, मुंबई की नियति नहीं बदली। सिस्टम में भ्रष्टाचार के लीकेज से कब तक डूबेगी मुंबई?
2: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है।
0: मुंबई की बारिश में 13 लोग मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी।
3: अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो।
0: ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई और उससे सटे इलाकों का हाल है। ट्रेन की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं। एक्सप्रेस वे पर बारिश कहर बनकर बरसी है, तो रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी है। और हर साल की तरह इस डूबती मुंबई में दावे ध्वस्त हो रहे हैं। न बीएमसी कुछ कर पाई, न महाराष्ट्र सरकार मानसून की बारिश में आफत काल को रोक पाई। सवाल यही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट था, फिर भी मुंबई की ये दुर्गति कैसे हो गई? कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज मुंबई की त्रासदी बन रहा है? और यही वजह है कि मुंबई की बारिश का इतिहास आज भी जस का तस है। आज विपक्ष बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की दुर्गति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है।
2: देखिए 4.5 साल से मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी चुनाव हो गया, लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार हैं।
0: और ये देखिए बारिश ने कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कहर बरपाया, और ऐसा भूस्खलन हुआ कि मिसिंग लिंक पर टनल बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर भर भरा कर हाईवे पर आ गिरे और पूरा हाईवे बंद हो गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मिसिंग लिंक भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया?
4: इस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहां पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम हैं, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है।
0: मुंबई के मानखोर्द इलाके में बारिश के चलते एक चौल ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी चौल मलबे में बदल चुकी है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा।
5: अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पत्रे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफी सारे पार्ट्स जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे।
0: आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़ गए। वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
6: एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ शासन ने उचित निर्णय लिया है और काम घर से करने का निवेदन सबको किया गया है।
7: बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजपा और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं।
0: मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर रहें, वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क न करें और समुद्र तट व जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। सीमा पर पहुंचते ही मेजबान देश के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को स्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया का ये तीसरा दौरा है।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। सीमा पर पहुंचते ही मेजबान देश के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को स्कॉर्ट किया। विमान से उतरने के बाद जकार्ता एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी का कुछ यूं स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इन मनमोहक तस्वीरों को देखिए, जकार्ता एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी का सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्वागत हुआ। इसके बाद पीएम मोदी के सामने रामलीला का यूं मंचन किया गया।

0: पीएम मोदी ने यहां बसे भारतीयों से मुलाकात की तो सबके चेहरे खिल गए। देखिए कैसे मोदी की एक झलक पाने और उनसे हाथ मिलाने की होड़ लग गई। जिन लोगों ने पीएम से मुलाकात की उनसे सुनिए उनका हाल दिल।
1: मुझे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। हमारे मोदी जी जितने मुझे कैमरे पे अच्छे लगते थे उससे ज्यादा मुझे उनको साक्षात दर्शन उनका करके बहुत ही आनंद मुझे प्राप्त हुआ।
2: आज हम सबों के लिए यह बहुत ही हर्ष, उल्लास और आनंद का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण यहाँ पर जकार्ता में हुआ और हम सभी बहुत ही उत्साहित है।
1: इट्स अ वेरी वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। बहुत अच्छा लगा।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बहुत उत्साहित हूँ और उनसे आशीर्वाद पाके बहुत मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।
0: दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में करीब 2,500 करोड़ की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है। यहाँ रामलीला होती है, गरुड़ एयरलाइन है और नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छप चुकी है। इंडोनेशिया भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा साथी है। इंडोनेशिया भारत को कोयला, पाम ऑयल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है। इंडोनेशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा निकल भंडार है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी का सबसे अहम कच्चा माल है। अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर तरक्की की नई राह निकाल रहे हैं। आज तक
4: रुक रहे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: दक्षिण की दिशा एक अशुभ दिशा है। दक्षिण दिशा से धन का क्या संबंध है? दक्षिण दिशा की तरफ किसकी पूजा कर सकते हैं? क्या है दक्षिण दिशा का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: पांच दिनों में मुंबई का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां जल भराव नहीं हुआ हो। मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में आफत की भी दस्तक हुई है। शहर के वीवीआईपी इलाके भी डूबने लगे। अंधेरी ईस्ट हो, वेस्ट हो, विले पार्ले, जुहू, बांद्रा, बोरीवली, दहिसर, कुर्ला, हर जगह एक सा हाल है। भारी बारिश की वजह से बीती रात मुंबई के मानखुर्द में एक इमारत गिर गई जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। ये 3 मंजिला चौल थी। रात में पानी इतना बरसा कि इमारत की बुनियाद ही खिसक गई और इसमें रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई।
2: उस वक्त हम मौजूद हैं घटनास्थल पर, तस्वीर में देख सकते हैं ये वही ग्राउंड प्लस 3 जो मंजिला झोपड़ा था जो अचानक जो है रविवार रात करीब 8 बजे करीब जो है ढह गया। घटना के बाद से यहाँ पे जो है चीख पुकार मच गई थी। तुरंत ही मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और बीएमसी के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए और उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
1: कहने को तो मुंबई भारत ही नहीं पूरे एशिया के सबसे धनाढ्य नगर पालिका है, अरबों का बजट है। बारिश और उससे होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए हर साल खूब रुपए खर्च होते हैं। बावजूद इसके मॉनसून में नागरिकों की जान जा रही है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 265 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। आज मुंबई के सभी स्कूल बंद हैं। खराब मौसम की वजह से मुंबई विश्वविद्यालय ने आज होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया है। अब जरा मुंबई से सटे पालघर की तस्वीरें भी देखिए। दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही दिखेगा। यहां कोई नदी नहीं है, न ही बाढ़ आई है, ये बारिश का पानी है। मूसलाधार बरसात से पालघर पानी पानी हो गया है। वसई पूर्व, वसंत नगरी, मधुबन जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई सोसाइटियों में पानी भर गया है। ये नवी मुंबई का उरण इलाका है जहां पानी में घर है या घर में पानी, ये बताना मुश्किल है। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश ने नाले चोक कर दिए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों का कहना है कि हर साल यही होता है लेकिन जिम्मेदार विभाग सोया रहता है।
3: सांप तो बहुत आते हैं यहाँ पे। कल तो हम लोगों ने कम से कम 10-12 सांप मारे यहाँ पे ही। बहुत सांप है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर किसी को बाई चांस काट लिया तो हम लोग इतने पानी से कहाँ पे लेके जाएंगे।
1: और अब पुणे की तस्वीरें भी देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से पुणे का भूसी बांध ओवरफ्लो कर रहा है। एहतियातन पर्यटकों के लिए बांध को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से लोनावला में झरने फूट पड़े हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई पुणे की ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड की वजह से ट्रेन के पहिए थम गए हैं। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी मलबा आ गया है जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। एजाज खान, मुंबई आज तक।

चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी सामने आई। सीसीटीवी में चोरी के प्रमाण मिले। 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी। बैठक के बाद गोविंद गिरी ने कहा, हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोरा जोरी। अखिलेश का बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाएं तैयार। योगी ने कहा, मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च। 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतरी टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की पीएम की अगुवानी। जकार्ता में भव्य स्वागत। रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि दक्षिण दिशा के मकान अच्छे नहीं होते, दक्षिण दिशा का प्लॉट, दक्षिण दिशा का फ्लैट अच्छा नहीं होता और इसीलिए दक्षिण दिशा में रहने से बचते हैं। क्या वाकई में दक्षिण दिशा एक अशुभ दिशा है? दक्षिण दिशा का महत्व क्या है? आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:24 तक, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम के 4:24 तक, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण दिशा इतनी बुरी दिशा नहीं है, अशुभ दिशा नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि दक्षिण दिशा का महत्व क्या है। देखिए, दक्षिण दिशा मुख्य 4 दिशाओं में से एक मानी जाती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण दिशा यम देवता और पितरों की यानी पूर्वजों की दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में दक्षिण दिशा मंगल से संबंध रखती है, हालांकि दक्षिण दिशा में सूर्य भी प्रबल होते हैं, लेकिन इसका संबंध है मुख्यतः मंगल से। दक्षिण दिशा को सामान्यतः लोग अच्छा नहीं मानते। लोगों का ऐसा कहना है कि दक्षिण दिशा अशुभ दिशा है, इसलिए लोग दक्षिण मुख वाले प्लॉट या दक्षिण मुख वाले मकान को लेने से बचते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि दक्षिण मुख वाले मकान में रहने से जीवन में समस्या आएगी, जीवन में दिक्कत आएगी। अगर आप साउथ फेसिंग मकान में रहेंगे तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। दक्षिण दिशा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत अच्छा है और किस राशि को सावधान रहना चाहिए। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम में समस्या हो सकती है,
लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, अचानक धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में फायदा होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके लाभ होगा वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो जैसा लोगों की मान्यता है, लोग दक्षिण दिशा को खराब समझते हैं, क्या वास्तव में दक्षिण दिशा अशुभ दिशा है? देखिए, दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती। ये दिशा शक्ति की, साहस की और अपार धन देने वाली दिशा है। मंत्र शक्ति के लिए और विशेष साधनाओं के लिए दक्षिण दिशा बहुत फलदायी होती है, ऐसा वास्तु शास्त्र मानता है कि घर के मुखिया को घर के दक्षिण दिशा में रहना चाहिए। अगर घर का मुखिया घर के दक्षिण दिशा में रहे तो काफी शुभ होगा। दक्षिण दिशा के तीन हिस्से हैं, एक तो मुख्य रूप से दक्षिण दिशा, एक दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट और दूसरा दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। तो दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा, इन तीनों के प्रभाव जीवन पर अलग अलग तरीके से पड़ते हैं। दक्षिण दिशा पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और इस समय में कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, प्रियजन से मुलाकात होगी, मान सम्मान मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करने से लाभ होगा वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

राशि, करियर में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दीपक जी ने कोलकाता से हमें लिखा है। 19 नवंबर 1984 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 7:55। जन्म स्थान है कोलकाता। दीपक जी कह रहे हैं कि मैं अभी अपने पिताजी के साथ मिलकर के व्यापार करता हूं और मैं कोई अपना अलग से व्यापार करना चाहता हूं तो उसकी संभावना क्या है, कब तक मुझे करना चाहिए। दीपक जी, आप आगे चल करके अपना स्वतंत्र व्यवसाय करेंगे और उसमें अच्छी तरक्की करेंगे, ये संभावना आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन आप नया काम जून 2027 के बाद करिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप इस समय जब तक अक्टूबर खत्म ना हो जाए तब तक अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 10

एक मोती धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो दक्षिण दिशा के तीन हिस्से हैं। पहले हम जानते हैं दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। ये जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, ये अग्नि की मुख्य दिशा मानी जाती है। इसको आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा कहा जाता है। यहां पर रसोई घर बनाना या अग्नि के उपकरण रखना अच्छा होता है। इस स्थान पर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस स्थान पर बच्चों के कमरे बनाए जा सकते हैं। यहां पर पति पत्नी को, दंपतियों को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में बेवजह के विवाद, बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं। दक्षिण दिशा पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

अच्छी पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, व्यर्थ के तनाव से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में, साउथ ईस्ट के बारे में आपने जान लिया, अब दक्षिण पश्चिम दिशा का महत्व क्या है? देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है ये पृथ्वी तत्व की मुख्य दिशा है, और पृथ्वी तत्व का मतलब होता है संपन्नता, धन और स्थिरता। इस पृथ्वी तत्व की दिशा का नाम है नैऋत्य दिशा या नैऋत्य कोण। ये धन की सबसे बड़ी दिशा मानी जाती है। नैऋत्य में धन, संपन्नता और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि घर के मुखिया को नैऋत्य दिशा में या दक्षिण पश्चिम में रहना चाहिए, या घर का मुखिया अगर दक्षिण के डायरेक्शन का प्रयोग करे तो उनके लिए अच्छा होगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में तिजोरी रखना या धन की आलमारी रखना हमेशा अच्छा होता है। अगर घर में धन चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा का प्रयोग करें, और अगर परफेक्टली दक्षिण पश्चिम दिशा नहीं मिल रही है तो दक्षिण दिशा का प्रयोग करें घर के मुखिया, वहां पर धन रखें तो इससे जीवन में संपन्नता और समृद्धि हासिल होगी। अब ये जानते हैं कि अगर दक्षिण दिशा का मकान या फ्लैट है आपका, तो दक्षिण दिशा का लाभ कैसे उठाएंगे? देखिए, वास्तु शास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा को हमेशा भारी रखना चाहिए। दक्षिण दिशा जितनी भारी होगी उतना बेहतर होगा। इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान या भारी वस्तुएं रखने का प्रयास करें। धन और कीमती सामान दक्षिण की तरफ रखें, और जिस आलमारी में रखें वो आलमारी पूरब या उत्तर की तरफ खुले तो बहुत बेहतर होगा। अगर घर के मुखिया की कुंडली में अग्नि तत्व बेहतर है, मंगल ठीक है, तो इस दिशा का मकान या इस दिशा का प्लॉट ले सकते हैं। अगर आपका फ्लैट दक्षिण मुखी है तो फ्लैट में डायरेक्शन का ज्यादा मतलब नहीं होता, तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर
पंचमुखी हनुमान का छोटा सा चित्र लगाएं और घर में नियमित रूप से अगर हनुमान जी की पूजा करें

अगर आप नीला या सफेद रखें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, हर महीने में एक अमावस्या आती है और अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि है, तो हर अमावस्या पर आप अपने छत पर या बालकनी में एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ रहनी चाहिए। ये दीपक आप शाम के समय सूर्यास्त के बाद जलाइएगा और हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से प्रार्थना करिएगा कि उनकी कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

जाएगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

मिलेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, दक्षिण दिशा यम देवता की दिशा है और पितरों की दिशा है, तो सामान्य पूजा पाठ, सामान्य उपासना वास्तव में दक्षिण की तरफ चेहरा करके नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पितरों के लिए कोई पूजा कर रहे हैं, पितरों के लिए मंत्र जप कर रहे हैं, पितरों के लिए दान दे रहे हैं, तब आपको अपना चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ करके पूजा करनी चाहिए। पितरों के लिए कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो दक्षिण की तरफ चेहरा करके करने से उस कार्य का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए

ध्यान रखें। नंबर दो, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर तीन, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर चार, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर पांच, धन लाभ के योग हैं। नंबर छह, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर सात, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर आठ, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर नौ, दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। कर्ज संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हर्षित ने हमें लिखा है और हर्षित हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1999। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है गुड़गांव। हर्षित कह रहे हैं कि मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई में जाना चाहता हूं, क्या मेरे लिए मैनेजमेंट करना अच्छा होगा और क्या मैं विदेश जाकर आगे की पढ़ाई कर सकता हूं। हर्षित, आपकी कुंडली के हिसाब से मैनेजमेंट की पढ़ाई करना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है। आप मैनेजमेंट की पढ़ाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको विदेश जाने की कोई सलाह नहीं दूंगा। नौकरी करने के लिए 2029-30 में आप विदेश का विचार करिएगा, अगर हालात बेहतर रहते हैं तो। लेकिन इस समय आप MBA अपने देश में, भारत में ही करिए। आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और आपका MBA पूरा हो जाएगा। सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक पन्ना बनवा लीजिए, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा एक बार पढ़ करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए, तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा
और किस राशि को बहुत सावधान।

मीन राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज सप्तमी तिथि है और मंगलवार का दिन भी है। आज कर्ज लेने से बचाव करिएगा। सप्तमी तिथि सूर्य ग्रह की जन्म तिथि है, इसलिए आज सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाइएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

महाराष्ट्र के सातारा जिले के वैना नदी पर बना छोटा पुल भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क के दूसरी ओर बने होटलों में ठहरे कई पर्यटक वहां फंस गए। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज के लिए बारिश की संभावना जताई है। जारी किया गया है येलो अलर्ट। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में खराब मौसम के बावजूद धूमधाम से चारधाम यात्रा जारी है। बद्रीनाथ केदारनाथ में अब तक 27 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इंदौर में बारिश बाराती बन गई। जलमग्न मंडप में दूल्हा दुल्हन ने लिए सात फेरे। पानी से भरे गार्डन में दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर रस्में निभाई। वडोदरा में मूसलाधार बारिश से शहर बेहाल हो गया। रावपुरा मांडवी समेत कई इलाके जलमग्न हुए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। निचले इलाकों में पानी भर गया। आम जनजीवन इससे काफी प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनावला में पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कार्ला के पास बाढ़ जैसे हालात। सड़क किनारे जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। पालघर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। सड़कों पर जलजमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के वसई और विरार में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। दीवानमान मधुबन और सनसिटी जैसे निचले इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी भर गया। मूसलाधार बारिश से वसई विरार में पूरी की पूरी बस्तियां डूब गई। सड़कों पर जल भराव में कई गाड़ियां जलमग्न हो गई। राहत सामग्री लेने के लिए नाव पर लोग निकल पड़े। वसई विरार में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल हुआ। रेलवे ट्रैक पर भारी जल भराव से लोकल ट्रेन सेवा ठप हो गई। यात्री पैदल चलने को मजबूर हो गए। नाला सुपर के आसपास इलाकों में बाढ़ में लोग फंस गए। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू अभियान चलाया। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मूसलाधार बारिश से पालघर में केलवा बांध का जलस्तर बढ़ गया है। लगभग 3000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में पानी घुस गया। पालघर में गांव में बाढ़ से फंसे लोगों को सुरक्षित किया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी भारी बारिश के कारण फ्लाईओवर की सड़क धंस गई। लोहे की सरिया बाहर निकल आने से कई वाहनों के टायर पंक्चर हुए। एनएचआई की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच पीएम मोदी का स्वागत हुआ। मोदी के पहुंचने पर इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स ने स्वागत किया। इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर लड़ाकू विमानों ने उन्हें स्कॉर्ट किया। जकार्ता में होटल के बाहर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारत माता की जय के नारे लगे। पीएम मोदी तीन देशों के दौरे के दौरान 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर है। भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है। इंडोनेशिया में रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, डिजिटल भुगतान पर चर्चा होगी। 6 दिवसीय दौरे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी दौरा शामिल है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर ट्रस्ट ने बड़ी बैठक की। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा कि नियमों के तहत चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। गोविंद गिरी ने चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि अपने करीबियों पर विश्वास करना चंपत राय की गलती थी। दान चोरी से हम सब बुरी तरह आहत हैं। बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को अब राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया। कृष्ण मोहन वही हैं जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR दर्ज कराई थी। राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट की धूमिल छवि ठीक करने का भरोसा जताया। कहा, जो भी हुआ उससे सभी आहत हैं। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के अन्य सदस्यों पर भी गाज गिरी। गोपाल राव को भी पद से हटाया गया। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सीईओ बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। चोरी के आरोपों के बीच मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दान में मिली सोने की रामायण, भगवान के चरण चिन्ह, हार और अन्य वस्तुओं को भी सार्वजनिक किया। चढ़ावा चोरी मामले में SIT की शुरुआती रिपोर्ट की जांच अब पूरी जानकारी सामने आई है। CCTV चोरी के प्रमाण मिले हैं। 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड रिलीज की पूरी जानकारी दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने फंड का पूरा हिसाब जारी किया और ये कहा है कि दान के जरिए मिले 3,264 करोड़ रुपए में से 2,370 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। संचालन के लिए दान का हिसाब दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला। ड्यूटी के दौरान बिना जेब वाला कुर्ता पहनेंगे पुजारी। चढ़ावे में पारदर्शिता के लिए 7 सदस्य समिति का गठन किया गया है। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। यमुना नदी में बोट रैली का भी उन्होंने शुभारंभ किया। प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा कि श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। भगवान राम का मतलब ही राष्ट्र है।
अखिलेश यादव के दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार वाले बयान पर सीएम योगी ने हमला करते हुए कहा कि मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले राम की बात ला करें। भगवान परशुराम पुरी होगा यूपी के शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम, योगी कैबिनेट बैठक में नाम बदलने को मंजूरी दी गई। जम्मू दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने पत्नी कोमल संघ राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता के इको पार्क में बनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट ने निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब दिया, सांसद कल्याण बनर्जी, सागरिका घोष, महुआ मोत्रा ने पार्टी पर बागी गुट के दावों का खंडन किया। ममता खेमे ने चुनाव आयोग को पार्टी के आधिकारिक दस्तावेज भी सौंपे, कहा पार्टी की राष्ट्र कार्य समिति 2027 तक वैध और ममता बनर्जी ही असली टीएमसी प्रमुख। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में नाबालिग से रेप हत्या मामले को लेकर ममता बनर्जी पीड़िता के परिवार से मिली, न्याय की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। बारुईपुर में नाबालिग से रेप हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आनंदा सरदार गिरफ्तार, अब तक कुल 3 गिरफ्तार हुए, अन्य 3 से भी पूछताछ जारी। बारुईपुर में रेप और हत्या के मामले पर बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक और बेटी हमने खो दी, नई सरकार पीड़ित परिवार के साथ न्याय करेगी। नासिक टीसीएस यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण केस में आरोपी निदा खान को जमानत मिली, गर्भावस्था का हवाला बनाकर बना राहत की वजह। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस होगा। हिमाचल के मंडी में अब महज 30 मिनट में पूरा होगा चंडीगढ़ तक का सफर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का शुभारंभ किया, 3500 रुपए होगा हेलीकॉप्टर का किराया। दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए आईएसआई और शहजाद भट्टी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 6 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और पेट्रोल बम बरामद किए गए। 91 साल के हुए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, लेह के जबसाल में मनाया गया जन्मदिन, तिब्बती भिक्षुओं ने विशेष प्रार्थना सभा की, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी, पोस्ट कर लिखा दलाई लामा का शांति सद्भाव और मानवता का संदेश दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लोधी कॉलोनी में नवविवाहिता आकृति की संदिग्ध मौत हुई, 3 महीने पहले शादी हुई थी, परिवार ने पति और ससुराल पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। ऑफिस से निकली आकृति लौटी ही नहीं घर, छत से गिरने के बाद मौत हुई, परिवार ने कहा कि हत्या हुई है, पुलिस अब सीसीटीवी और मोबाइल डेटा खंगाल कर जांच में जुटी है। दहेज प्रताड़ना से मौत का आरोप है, आकृति को सामान और नौकरी को लेकर के ताने दिए जाते थे, पति अरस्तु सिक्का गिरफ्तार किए गए। आकृति मौत केस में बड़ा डिजिटल सुराग भी सामने आया, सर्च हिस्ट्री में आसानी से मौत कैसे होगी और दूसरी मंजिल से गिरने पर मौत जैसे सवाल भी इंटरनेट पे लॉग में मिले, पुलिस अब जांच में जुटी। छिंदवाड़ा में शराब के नशे में 350 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया, 7 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। देहरादून में हैवानियत की हदें पार की गई, मामूली विवाद के बाद युवक को कार से टक्कर मारकर अगवा किया गया, पूरी रात बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिमाचल के चंबा में बारिश आफत बन गई, चलती कार पहाड़ी से विशाल चट्टाने गिरी, 14 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हुई। सूरत में बारिश से जलभराव के बीच बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, स्कूल में फंसे 7 शिक्षकों और 12 छात्रों को फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित बाहर निकाला, बैंक में भी फंसे लोगों की जान बचाई गई। वडोदरा में 108 एम्बुलेंस की महिला कर्मचारी ड्यूटी पर नशे में मिली, मरीज की मदद की बजाय हंगामा करने का आरोप, इलाज में देरी से महिला की मौत हो गई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा में एक मकान में एसी कंप्रेशर में ब्लास्ट से आग, भीषण आग लग गई, लाखों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सोनीपत में केएमपी हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ, 2 ट्रकों के भीषण टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई, मौके पर चालक की जान चली गई। यूपी के झांसी में नाइट्रोजन गैस टैंकर से रिसाव हुआ, गैस फैलने से हड़कंप मचा, गुजरात से बिहार जा रहा था टैंकर। गुरुग्राम में अदानी ऑयस्टर सोसाइटी में बड़ा हादसा टल गया, बेसमेंट पार्किंग की छत का लिंटर और कंक्रीट अचानक भरभराकर गिर गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक मरीज होम में 6 दबंगों ने घुसकर एक युवक को घेर कर पीटा, जमीन पर गिराकर लात भूसे बरसाए। सोनीपत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव के कारण बड़ा हादसा हुआ, 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई, बुजुर्ग दंपत्ति घायल हो गए। सहारनपुर में टाइम ओवर होने के बाद शराब न मिलने पर लाइनमैनों ने ठेके की बिजली काटी, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। श्रीगंगानगर में काले हिरण के शिकार का मामला सामने आया, वन विभाग ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मांस और अवशेष भी बरामद किए।
बिहार के मुजफ्फरपुर में बीडीओ की पत्नी की बेरहमी से पिटाई का फुटेज सामने आया, सीढ़ियों पर घसीटते दिखे ससुराल वाले। नवादा में ट्रेन की सीट को लेकर के विवाद हुआ, मंचलों ने दरोगा दंपति से मारपीट की, न्याय की मांग को लेकर पीड़ित महिला ट्रेन की इंजन के आगे बैठी। हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा हुआ, शिवपुराण कथा के दौरान कूलर से करंट लगने से पुजारी की मौत। मेरठ में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को रौंदा, 60 मीटर तक सड़क पर घसीटता रहा युवक, इलाज के दौरान मौत हुई। अलवर में पैसों के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ, दिन दहाड़े युवक ने कारोबारी पर हमला किया, तीनों आरोपी मौके से फरार। यूपी के फतेहपुर में पत्नी ने सो रहे पति को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद और पत्नी की रोजाना की मारपीट से परेशान थी। एमपी के सीहोर में भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 5 की मौत हुई, 4 लोग घायल हो गए। राजस्थान के बारा में चूहे पकड़ने के पिंजरे में फंसा जहरीला काला नाग, फन फैलाए बैठे नाग को देखकर दहशत मची। गुजरात के भावनगर में शख्स पर शेर ने हमला किया, शिकार का लाइव वीडियो वायरल हुआ, व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। गुजरात के जामनगर में हिट एंड रन हादसे में 10वीं के छात्र की मौत हो गई, टक्कर के बाद बस चालक फरार हो गया। अमरेली में पानी की धारा में फंसा एक युवक, 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बचाया गया। महाराष्ट्र के जालना में सब्जी विक्रेता का गड्ढे के गंदे पानी में आलू धोते वीडियो वायरल हो गए, नागरिकों की लापरवाह, विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मैच होगा, नॉटिंगम में खेला जाएगा यह मैच। आज के मैच के समय में बदलाव हुआ है, भारतीय समय के मुताबिक करीब रात 10 बजे मैच शुरू होगा, 9:30 बजे टॉस होगा। 5 मैचों के सीरीज में भारत जीत का खाता खोलने के लिए तैयार है, पहला मैच बारिश से धुल जाने के बाद दूसरे मैच में हार मिली थी, फिलहाल सीरीज में मेजबान इंग्लैंड 1-0 से आगे है। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर के टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया, 3 मैचों की टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान होगी। 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह की टीम में वापसी की गई है, प्रभ सिमर ने हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अशोक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के पास इस सीरीज में अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका होगा। फिल्म फुकरी के बाद फिर लौटेगी भोली पंजाबन और जफर की नई जोड़ी, नई कॉमेडी फिल्म का ऐलान हो चुका है। अर्जुन रामपाल ने अपने हमजा यानी रणवीर सिंह को जन्मदिन की बधाई दी, शेर रणवीर के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया। 8 जुलाई को सौरव गांगुली के बर्थडे पर रिलीज होगी उनकी बायोपिक की फर्स्ट लुक, राजकुमार राव निभा रहे हैं दादा का किरदार। हल्की फुल्की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 13 यार हूं मैं का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार एक्टिंग से डेब्यू कर रहे हैं। लव लॉटरी का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया गया है, कोर्ट रूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ इसमें सस्पेंस का तड़का दिखेगा। 18 सितंबर को फिल्म पर्दे पर रिलीज होगी। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,535 पहुंच चुकी है, जबकि हजारों लोग इसमें घायल हुए हैं और बेघर हुए हैं। चीन द्वारा लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर जापान ने कड़ा ऐतराज जताया, कहा कि गंभीर चिंता का विषय है चीन का यह मिसाइल परीक्षण। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चेतावनी दी है कि अगर एआई को शक्तिशाली बनाना है तो सुरक्षा नियम जरूरी है, बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक समान नियम बनाने की अपील भी की गई है। श्रीलंका की नेगम्बो की एक जेल में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, 3 अफसर समेत 25 की मौत हुई, 100 से अधिक लोग घायल हुए, घायलों में पुलिस के साथ कई कैदी भी शामिल हैं। यूरोप के कई देशों के जंगलों में भीषण आग लगी है, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, अल्बानिया में सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर खाक हो चुके हैं, दमकल कर्मी युद्ध स्तर पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।

0: तो एक बड़ी खबर जयपुर से, जहां फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। छत गिरते ही वहां काम कर रहे करीब 10 मजदूर मलबे में दब गए हैं, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जब सूचना मिली तो पुलिस प्रशासन, राहत दल पहुंचे, सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। जयपुर में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इलाका है। पूरी इमारत का ये ब्लॉक निर्माणाधीन था। जब बीती रात यह हादसा हुआ, निर्माणाधीन इमारत की छत और उसका एक हिस्सा नीचे गिर गया। जो मजदूर वहां काम कर रहे थे वो उसमें दब गए, जिसके बाद के कारणों की जांच की जा रही है। जयपुर में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इलाका है। पूरी इमारत का ये ब्लॉक निर्माणाधीन था। जब बीती रात यह हादसा हुआ, निर्माणाधीन इमारत की छत और उसका एक हिस्सा नीचे गिर गया। जो मजदूर वहां काम कर रहे थे वो उसमें दब गए, जिसके बाद उन्हें वहां रेस्क्यू किया गया, निकाला गया। किसी की जान नहीं गई है, लेकिन जो मजदूर घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां विश्नेवे शहर में जोरदार धमाका हुआ है। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक 6 जुलाई को रूस के हमले में 7 लोग मारे गए, 29 लोग घायल हुए हैं। ये हमला इतना तीव्र और भीषण था कि नासा के ग्लोबल फायर ट्रैकिंग मैप पर भी ये दिखाई दिया। 6 जुलाई को उस इलाके में सैटेलाइट ने थर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट की। अधिकारियों के मुताबिक सोमवार की सुबह रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइलों और ड्रोन से जबरदस्त हमला किया। 20 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena.
5: La Que Buena.
4: ESPN Radio.
6: We know LeBron has to be the best player on the planet to
4: get The Daily.
7: From the New York Times, I'm Katrin Van Holt, and this is The Daily.
4: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
8: Akoji.
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती है जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
11: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
12: इन एसोसिएशन विद
13: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
12: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंद बड़े आराम से।
14: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
15: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
16: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
17: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
18: परमिशन लेनी चाहिए ना,
17: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
19: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
17: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

आम आदमी की जेब का बजट सबसे ज्यादा गाड़ियों के फ्यूल प्राइस से तय होता है। जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो रसोई से लेकर बाजार तक सब कुछ महंगा हो जाता है। तेल की हर बढ़ती कीमत सीधे आम आदमी की जेब पर डाका डालती है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच मई में भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम में हुए इजाफे ने हर किसी के लिए कार से लेकर घर चलाने तक सब महंगा कर दिया है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद वैश्विक बाजार से आई एक खबर लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर ओपेक देशों के बड़े फैसले के मुताबिक दुनिया के 7 बड़े तेल उत्पादक देश अगस्त से हर दिन 188,000 बैरल अतिरिक्त कच्चे तेल का उत्पादन करेंगे। अकेले सऊदी अरब और रूस मिलकर हर दिन करीब 124,000 बैरल ज्यादा तेल बाजार में उतारेंगे। वहीं इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान भी अपने उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आ रही लगातार गिरावट के बीच ये फैसला बेहद हैरान करने वाला है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मार्केट में तेल की बाढ़ आने वाली है, जिससे इसके प्राइस भी घटेंगे। दूसरी तरफ कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने के बावजूद चीन जैसे बड़े देशों में इसकी डिमांड काफी घट गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की वजह से भी सप्लाई चेन पूरी तरह सुधर गई है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में कमी भारत के लिए बड़ी विदेशी मुद्रा बचाने का मौका लेकर आएगी। सप्लाई की इस रिकवरी से भारत जैसे बड़े आयातक देश को सबसे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हमारी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल बाहर से आता है। कच्चे तेल की कीमतें कम होने का सीधा असर भारत के घरेलू मार्केट पर देखने को मिलेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए तेल की खरीद काफी सस्ती होने जा रही है और ओपेक प्लस देशों के इस फैसले के बाद भारत के लिए कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल काफी कम हो जाएगा। वहीं सरकारी कंपनियों का घाटा खत्म होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती का रास्ता साफ होगा और ईंधन सस्ता होने से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट घटेगी, जिससे सब्जियां और रोजमर्रा का सामान भी सस्ता हो जाएगा। ये बदलाव सीधे मिडिल क्लास परिवारों को राहत देने का जरिया बनेगा, जो महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा। साफ है कि ग्लोबल मार्केट में तेल का बढ़ता उत्पादन और घटती कीमतें भारत की आम ग्राहकों के बजट को आने वाले दिनों में बड़ी मजबूती देने जा रही है। आज तक ब्यूरो।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. The round of 16 is coming to a close for the World Soccer Championship, and the games will be played in Atlanta and Vancouver. The quarterfinal matchups upcoming will be played in Foxborough, Inglewood, Miami, and Kansas City. This has been your official Odyssey Sports match day preview, brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
3: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
4: मानसून की पहले ही बारिश में माया नगरी मुंबई डूबने लगी है। शहर में जल निकासी के जितने दावे किए गए थे सब धराशायी हो गए। मुंबई में अगर कुछ है तो पानी, गंदा पानी, बरसात का पानी। बीते चार से पांच दिनों में मुंबई का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां जल भराव नहीं हुआ हो। मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में आफत की भी दस्तक हुई है। शहर के वीवीआईपी इलाके भी डूबने लगे। अंधेरी ईस्ट हो, वेस्ट हो, विले पार्ले, जुहू, बांद्रा, बोरीवली, दहिसर, कुर्ला, हर जगह एक सा हाल है। भारी बारिश की वजह से बीती रात मुंबई के मानखुर्द में एक इमारत गिर गई जिसमें छह लोगों की जान चली गई। ये तीन मंजिला चौल थी। रात में पानी इतना बरसा कि इमारत की बुनियाद ही खिसक गई और इसमें रहने वाले छह लोगों की मौत हो गई।
5: मौजूद है घटनास्थल पर, तस्वीर में देख सकते हैं, ये वही ग्राउंड प्लस तीन जो मंजिला झोपड़ा था जो अचानक जो है रविवार रात करीब आठ बजे के करीब जो है ढह गया। घटना के बाद से यहाँ पे जो है चीख पुकार मच गई थी। तुरंत ही मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और बीएमसी के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए और उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
4: कहने को तो मुंबई भारत ही नहीं पूरे एशिया की सबसे धनाढ्य नगर पालिका है, अरबों का बजट है। बारिश और उससे होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए हर साल खूब रुपए खर्च होते हैं। बावजूद इसके मानसून में नागरिकों की जान जा रही है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 265 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। आज मुंबई के सभी स्कूल बंद हैं। खराब मौसम की वजह से मुंबई विश्वविद्यालय ने आज होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया है। अब जरा मुंबई से सटे पालघर की तस्वीरें भी देखिए। दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही दिखेगा। यहां कोई नदी नहीं है, न ही बाढ़ आई है, ये बारिश का पानी है। मूसलाधार बरसात से पालघर पानी पानी हो गया है। वसई पूर्व, वसंत नगरी, मधुबन जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई सोसाइटियों में पानी भर गया है। ये नवी मुंबई का उरण इलाका है, जहां पानी में घर है या घर में पानी ये बताना मुश्किल है। पिछले तीन दिनों से मूसलाधार बारिश ने नाले चोक कर दिए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों का कहना है कि हर साल यही होता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग सोया रहता है।
6: साफ तो बहुत आते हैं यहाँ पे। कल तो हम लोगों ने कम से कम 10-12 साफ मारे यहाँ पे ही। बहुत साफ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर किसी को बाई चांस काट लिया तो हम लोग इतने पानी में से कहाँ पे लेके जाएंगे।
4: और अब पुणे की तस्वीरें भी देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से पुणे का भूसी बांध ओवरफ्लो कर रहा है। एहतियातन पर्यटकों के लिए बांध को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से लोनावला में झरने फूट पड़े हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई पुणे की ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड की वजह से ट्रेन के पहिए थम गए हैं। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी मलबा आ गया है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। एजाज खान, मुंबई आज तक।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी, हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। उन्होंने कहा अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती। कृष्ण मोहन को बने अंतरिम को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी तनातनी, अखिलेश का बयान, दुनिया भर के राम भक्त तो हो गए तैयार। योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाला ना करे राम की बात। बंगाल के बरुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतरी टीएमसी। इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की पीएम की अगुवानी, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत होंगे कई अहम समझौते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा पराश। सुबह के 8 बजे है, वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे, खबरें पुणे में जानलेवा बनी बारिश की आपको दिखाएंगे, और साथ ही आपको भी दिखाएंगे कि कैसे इमारत पलक झपकते ही धड़ाम हो गई। साथ ही मुंबई पर आई आफत की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बात करेंगे गुजरात में जारी मानसूनी संकट की, और खबर सीहोर की भी होगी जहां पर हवा में कार उड़ गई। खबर दिल्ली की भी जहां एक दुल्हन की मौत पर सस्पेंस गहराया हुआ है। इसके साथ ही आपको भी बताएंगे कि कैसे राम मंदिर ट्रस्ट ने एक्शन लिए हैं, और आखिर में बात होर्मूज में फिर से गहराए हुए संकट की भी करेंगे। तो इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर महाराष्ट्र की आपको बताते हैं। तो तमाम अहम खबरें आपने जानी, सुपर 8 में 8 अहम खबरें आज क्या होने वाली हैं। वही सबसे पहली खबर महाराष्ट्र से जुड़ी, जहां पर मॉनसून अब आफत बनकर बरस रहा है। पुणे से लेकर मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और लोनावला तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कहीं पर इमारतें ढह रही हैं, तो कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो कहीं पर सड़कें और रेलवे स्टेशन जलमग्न हो गए हैं। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र में आए संकट से जुड़ी। तो वहीं पुणे में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एक 2 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा करके गई, और देखते ही देखते पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह जमीन दोस्त हो गई। राहत की बात ये रही कि हादसे से पहले ही अग्निशमन विभाग ने इमारत में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, जिसे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। फिलहाल प्रशासन ने इलाके की घेराबंदी कर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। तस्वीर आप देखिए, पलक झपकते ही पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई, लेकिन गनीमत रही कि वहां से लोगों को बचा लिया गया। तो महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच भूस्खलन का बड़ा हादसा सामने आया है। मावल में पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक कर एक घर पर आ गया, जिससे कि एक ही परिवार के 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे, और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस मलबे को वहां से हटाया गया। प्रशासन ने लोगों से भूस्खलन संभावित इलाकों में सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जेसीबी के जरिए रेस्क्यू किया गया, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तो मॉनसून जिस तरीके से राहत लेकर आई है, वहीं ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि एक आफत बनकर भी लोगों के लिए मॉनसून आया है। तो पुणे में आफत की तस्वीर आपने देखी, उधर मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जिसके चलते मुंबई, नवी मुंबई और पालघर के सभी स्कूल कॉलेज बंद है, जबकि मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं और ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में पेड़ गिरने की 523 घटनाएं दर्ज की गई, और उधर पुणे मुंबई मिसिंग लिंक पर 2 लेन में यातायात फिर से शुरू कर दिया गया है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, पालघर, नवी मुंबई में सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है और इससे पहले मुंबई में यूनिवर्सिटीज को भी बंद कर दिया गया है। 24 घंटे में कई पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। तो देखिए, मुंबई से सटे कल्याण में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया। दरअसल एक्सप्रेसवे परियोजना के पास सड़क का एक हिस्सा अचानक से धंस गया, जिससे कि यातायात ठप हो गया। वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों ने एहतियात के तौर पर सड़क को बंद कर दिया। तो वहीं जनप्रतिनिधियों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए NHAI पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। तो महाराष्ट्र में मानसून वाली आफत से जूझ रहे हैं लोग, तो गुजरात में भी कुछ वैसे ही हालात हैं। वहां वडोदरा, सूरत, वापी, नवसारी समेत कई शहर ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कहीं पर सड़कें नदी बन गई हैं, गाड़ियां पानी में फंसी दिख रही हैं, तो कहीं पर पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई है।
2: फिर गुजरात में बारिश का कहर। सबसे पहले बात वडोदरा की। यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश से रावपुरा, नागरवाड़ा, मुक्तानंद, पत्थरगेट और मांडवी समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जबकि मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सूरत नवसारी रोड पर भारी जलभराव देखने को मिला। पुराने आजियो के पास पानी से भरे गड्ढे में एक बस फंस गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूरत में एक विशाल पेड़ चलती कार पर गिर गया, जिसमें कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पेड़ हटाया। वापी में भी सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। कई इलाकों में जलभराव के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित रही। दूसरी ओर नवसारी और डांग जिले में बारिश ने अलग तस्वीर पेश की। गांव चारों तरफ पानी से घिर गया, जिससे एक बारात घंटों तक रास्ते में फंसी रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार बारिश के बीच कई जगह झरनों पर भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जल भराव वाले इलाकों और पुराने पेड़ों के आसपास जाने से बचने की अपील की है। फिलहाल गुजरात के कई जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत और बचाव दल तैनात है और लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की जा रही है।
0: तो वहीं अमरेली के राजुला में बारिश के बीच 108 टीम ने महिला एक मरीज की जान बचाई है। एक महिला मरीज की जान बचाई गई। दरअसल चांच बंदर गांव में बीमार महिला तक पहुंचने के लिए डॉक्टर पानी के बहाव के बीच ट्रैक्टर से पहुंचे, फिर JCB की मदद से महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। 108 टीम की इस तत्परता की सराहना हो रही है। तो वहीं सूरत में भारी बारिश के बाद जलभराव से हालात बिगड़ गए हैं। दरअसल एक इलाका ऐसा है जहां पर पानी भरने के कारण स्कूल के 7 शिक्षक और 12 छात्र फंस गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई इलाकों में जलभराव है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश के कारण लोग किस तरीके से यहां पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद आई फ्लैश फ्लड ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। चिनाब वैली में कई जगह हालात बिगड़ रहे हैं। मलबा गिरने के कारण NH 244 को प्रेमनगर के पास बंद करना पड़ा, जिससे कि वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुटी हुई है। तो वहीं अधिकारियों के मुताबिक मलबा हटाने का काम जारी है और जल्द ही हाईवे को बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है।

तो देश भर में मॉनसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आधे घंटे की बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल दी है। तो वहीं केरल के मलप्पुरम में तेज बारिश और आंधी से पेड़ उखड़ गए और दुकानों को तक नुकसान पहुंचा है। कन्नूर में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चलिए और अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई, जहां पर चढ़ावा चोरी केस से जुड़े हुए मामले में अब और तेजी हो गई है। दरअसल सोमवार को मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सबसे पहला ये फैसला लिया गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने त्यागपत्र मंजूर कर लिया है। तो कई फैसले कल उस बैठक में लिए गए, अहम बैठक कल हुई है। तो आपको बता दें, सबसे बड़ा फैसला, सबसे पहला फैसला था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया, उनका त्यागपत्र। वही साथ ही विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राय को भी हटा दिया गया और चंपत राय की जगह फिलहाल कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बनाए गए हैं। तो फैसले के मुताबिक मंदिर प्रबंधन और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और इसका फैसला हो चुका है। और नए सीईओ को चयन के ट्रस्ट ने 3 सदस्यीय समिति गठित भी कर दी है। और एक अहम खबर यह भी है कि अब 22 जुलाई को एक दोबारा बैठक होने वाली है ट्रस्ट की, जिसमें खाली जगहों को भरने पर भी फैसला लिया जाएगा। यानी 22 जुलाई को भी एक अहम बैठक इसको लेकर होगी। तो अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई, तो पहला प्रस्ताव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का था और ट्रस्ट ने दोनों का इस्तीफा तो मंजूर कर लिया, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय का बचाव करते हुए नजर भी आए हैं।

0: चढ़ावा चोरी का केस आने के करीब एक महीने के बाद सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। 3 घंटे की बैठक का एक लाइन में लब्बो लुआब ये है कि चंपत राय को बचाया जा रहा है।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है।
0: लेकिन उससे पहले ट्रस्ट ने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को गलत साबित करने के लिए ये सब भी दिखाया। इसमें रामचरितमानस की वो प्रति भी थी जिसके बारे में दावा है कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये आरोप लगा था कि रामचरितमानस भी गायब है, लेकिन वो ट्रस्ट ने सबको दिखा दी। जो चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री थे, सारा कामकाज देखते थे, उन्होंने तो इस केस में FIR दर्ज होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। ट्रस्ट ने आज उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। उनके अलावा जिन अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट के प्रशासन, निर्माण कार्य और समन्वय की जिम्मेदारी थी, उनका भी इस्तीफा ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया और चंपत राय की जगह ट्रस्ट का कार्यकारी महामंत्री कृष्ण मोहन को बनाया गया है। चोरी के इस केस में FIR कृष्ण मोहन ने ही दर्ज कराई है। लेकिन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी आभास हुआ कि ट्रस्ट का चंपत राय में पूर्ण विश्वास बना हुआ है। भले ही अब वो ट्रस्ट में ना हो, लेकिन उनका बचाव पूरा हो रहा है।
1: आरंभ से लेकर जब तक यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है, उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है।
0: अब अगली जिम्मेदारी कृष्ण मोहन को दी गई है, जिनका दावा है कि ट्रस्ट के कामकाज में जो खामियां हैं उनको वो पूरा करेंगे।
2: तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना, इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा।
0: अब सवाल है कि ट्रस्ट आगे कैसे चलेगा। इसके लिए दावा है कि एक CEO अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी खोज के लिए कमेटी भी बना दी गई है। संतोष शर्मा और समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
3: तो मंदिर ट्रस्ट के कई सदस्य चंपत राय का बचाव करते नजर आए, लेकिन अनिल मिश्रा पर क्या? दरअसल उन पर SIT की शुरुआती रिपोर्ट में सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनिल मिश्रा ने सुरक्षा उपायों के प्रभावी तौर पर अमल को सुनिश्चित नहीं किया। अनिल मिश्रा अपने दायित्वों के प्रति उदासीन रहे, जिससे गबन की वारदात हुई।

0: तो उस पूरे मामले में कल पहली बार चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। उसमें क्या कुछ कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, चलिए अब वो समझ लेते हैं। दरअसल जांच के अनुसार 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच कई बार कर्मचारी नोटों की गड्डियां और खुले रूपे अपने कपड़े, जेब, जूतों और अन्य स्थानों पर छुपाते हुए दिखाई दिए हैं। सीसीटीवी में उनकी तस्वीर भी कैद हुई है। सामने ये भी आया है रिपोर्ट में कि गिनती कक्ष में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। प्रवेश और निकास के समय तलाशी नहीं ली गई। साथ ही कर्मचारियों के निजी सामान पर प्रभावी नियंत्रण नहीं था और कई जो नकदी मिलाकर गिनी जाती थी और इसके साथ साथ कीमती वस्तुओं के रिकॉर्ड और सत्यापन में भी कई गंभीर खामियां पाई गई हैं। तो एसआईटी ने पहली नजर में 6 लोगों की संलिप्तता बताई है और इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकूल मिश्रा, साथ ही लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव और करुणेश पांडे और रामशंकर मिश्रा का नाम शामिल है। तो जांच के दौरान आरोपी कर्मचारियों के बैंक खातों में उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक नकद जमा और वित्तीय लेन देन मिले हैं। कल एसआईटी की रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा है कि एसआईटी जांच कर रही है, दोषी नहीं बचेंगे।
1: एसआईटी जो निर्णय करेगी वैसा होगा। कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, ये निर्णय करने का काम एसआईटी का है, न्यायालय का है। ये काम और लोगों का नहीं है, हमारा भी नहीं है। एसआईटी जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेगी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
2: इसी प्रकार से जांच आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट जो था ये अंतरिम था, ये फाइनल नहीं था, उसका विचार भी हम करेंगे। हम लोगों का ये निश्चय है कि इस प्रकार का अपराध जिन लोगों ने किया है उनकी जाँच होनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए।
0: राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने कल ये भी बताया है कि राम मंदिर को दान में मिले जिन चीजों के चोरी होने का आरोप लगे वो सभी चीजें सुरक्षित हैं। सोने की रामायण, भगवान के चरण चिन्ह, हार और साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिनमें से 5 को उन्होंने दिखाया भी है और बताया कि राम मंदिर को दान में मिली 250 वस्तुएं मौजूद है।
3: प्रसार माध्यमों में वो जोरों शोरों से हो रही है और जो स्वर्णांकित रामतीर्थमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन कालकुशुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान है। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर है। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है, इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं।
0: तो अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आस्था पर हुए

0: तक। तो एमपी के सीहोर में एक भीषण सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार टवेरा गाड़ी अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार टवेरा वाहन में सवार सभी लोग खंडवा के निवासी थे और नरसिंहपुर की ओर जा रहे थे। भेरुंदा मार्ग पर वाहन अचानक से अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे वहां से पलट गया। तो वहीं जयपुर में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। छत गिरते ही वहां पर काम कर रहे करीब 10 मजदूर मलबे में दब गए जिससे कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे और सभी मजदूरों को सुरक्षित वहां से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल हादसे के कारण की जांच की जा रही है। अब खबर हॉर्मुज से जुड़ी। दरअसल फिर से ईरान ने एक कमर्शियल जहाज पर मिसाइल दागे हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान ने कम से कम 2 मिसाइल से हमला किया। समाचार एक्सियोस ने जानकारी दी है कि यूकेएमटीओ का कहना है कि ओमान के लिम्हा के पूर्व में एक टैंकर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आ गया। हमले के बाद से टैंकर में आग लग गई। हालांकि इसमें किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ईरान के ताजा हमले को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है। तो ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी है और आज पवित्र शहर कोम में अंतिम यात्रा निकलेगी। सुबह ही आयतुल्लाह अली खामेनेई के पार्थिव शरीर को कोम ले जाया गया। वहां उनके अंतिम संस्कार का मुख्य जुलूस तेहरान में शुरू हुआ और कल इराक भी ले जाया जाएगा। उसके बाद इराक से वापस लाकर 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। खामेनेई के निधन के बाद ईरान में शोक का माहौल है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम वहां किए गए। बात अब क्रिकेट की कर लेते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज नॉटिंगम के ऐतिहासिक ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज में इंग्लैंड की टीम 0-1 से आगे चल रही है। तो वहीं सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द भी हो गया था। ऐसे में टीम इंडिया की नजरें वापसी करते हुए बढ़त हासिल करने पर होंगी और जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। दरअसल श्रेयस अय्यर को टीम की कप्तानी सौंपी गई है जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है और इस दौरे पर कई युवा खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है। चलिए अब वक्त हो गया है सुपर 8 में फटाफट खबरों का। यूक्रेन में जोरदार धमाका, रूस के ड्रोन हमले से यूक्रेन में 7 लोगों की मौत, साथ ही 29 लोग घायल। नोएडा सेक्टर 88 की निजी कंपनी में भीषण आग, 8 दमकल गाड़ियों ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। हादसे के वक्त बंद थी कंपनी, कोई जनहानि नहीं। मुंबई के कुर्ला में दर्दनाक हादसा, शमीम टावर की 10वीं मंजिल में लिफ्ट शाफ्ट की वजह से गिरा 12 साल का बच्चा, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में पति को बंधक बनाकर पिटाई और करंट लगाने का आरोप, पत्नी पर केस दर्ज, घायल पति कानपुर रेफर किया गया, पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। चंबा में बड़ा हादसा, ढक्को बनी मार्ग पर चलती कार पर पहाड़ी से गिरी चट्टान, 14 वर्षीय बच्ची की मौके पर मौत हुई, 1 दिन पहले भी हुआ था हादसा। गोरखपुर में 4-लेन सड़क निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए 70 फीट ऊंची पानी की टंकी को किया ध्वस्त, 5 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी से गिराया गया। वडोदरा में एम्बुलेंस की महिला कर्मचारी पर ड्यूटी के दौरान नशे में होने का आरोप, मरीज को समय पर अस्पताल ना पहुंचाने को लेकर हंगामा। सीहोर में रफ्तार का कहर, सीसीटीवी में कैद हुआ अनियंत्रित टवेरा, सड़क पर कई बार पलटी, हादसे में युवती की मौत, 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। चलिए यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
8: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: हमने तब भी सवाल किया था,
11: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
10: हम आज भी सवाल करते हैं,
11: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
10: ऑपरेशन अग्नि,
11: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
10: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
12: In association with
13: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
15: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
16: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इसमें जो बहुत फेमस सीन है वो जो
17: परमिशन लेनी चाहिए ना,
16: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
18: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
16: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

सवालों के संकेत, 6 लोगों पर सीधा शिकंजा, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा चंपत राय बेदाग करीबियों पर भरोसा करना उनकी गलती, 3 लोगों की कमेटी करेगी सीईओ की नियुक्ति। मॉनसून की वजह से मचा हाहाकार, मुंबई को बनाया बंधक, स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं रद्द, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, कल्याण में सड़क धसी, पुणे में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही, गुजरात के कई शहर जलमग्न। बंगाल रेप मर्डर कांड पर सियासी उबाल, बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में भेजे गए। इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की पीएम की अगुवानी, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में होंगे कई अहम समझौते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा।

लगातार हो रही भारी बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। पिछले चार दिन में इस प्राकृतिक आपदा से मरने वालों की संख्या 13। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने के कारण लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। सड़क और रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित। भारी बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। पिछले चार दिन में इस प्राकृतिक आपदा से मरने वालों की संख्या 13। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने के कारण लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। सड़क और रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित। तेज बारिश के साथ चल रही तूफानी हवाओं के कारण कई स्थानों पर गिरे पेड़। बीएमसी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 500 से ज्यादा पेड़ गिरने के कारण यातायात व्यवस्था चरमराई। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जिसके चलते मुंबई, नवी मुंबई और पालघर के सभी स्कूल कॉलेज बंद, जबकि मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की बड़ी घटना आई सामने। हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की गई जान। पुणे में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एक दो मंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर गिरी। फायर ब्रिगेड की सतर्कता के कारण हादसे में कोई जनहानि नहीं। घटना के बाद लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। महाराष्ट्र के पुणे और लोनावला में भारी बारिश के कारण इंद्रायणी नदी उफान पर है और आलंदी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आलंदी के चारों पुल भी पानी में डूबे। आलंदी में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फंसे 400 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। बचाव टीमों ने बाढ़ वाले इलाकों में लगभग 150 मवेशियों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। खंडाला घाट सेक्शन में भूस्खलन के कारण मुंबई और पुणे के बीच रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप हुई। भारी बारिश के बावजूद सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी। भारी बारिश के कारण मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्से जलमग्न। वाहनों की लंबी कतार लगने के कारण 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के मिसिंग लिंक बाईपास पर भूस्खलन के बाद कई लेन पर 18 घंटों बाद फिर से खोला गया है उनको। सुरक्षा जांच पूरी तरह से होने पर उसके बाद दो लेन पर यातायात बहाल। प्रशासन ने मुंबई पुणे हाईवे पर यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की अपील की। मौसम और ट्रैफिक अपडेट देकर ही लोगों से यात्रा करने का निर्देश दिया गया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार चार दिनों से मूसलाधार बारिश। नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा। उल्लास नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों का जाने का निर्देश। कल्याण में प्रशासन अलर्ट मोड पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद आई फ्लैश फ्लड से नेशनल हाईवे 244 बंद हुआ। मलबा हटाने का काम जारी। सूरत में भारी बारिश के कारण पानी जमा होने के कारण स्कूल में फंसे 7 टीचर और 12 छात्र। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया। सूरत में भारी बारिश के कारण कार पर गिरा विशालकाय पेड़। कार सवार घायल। स्थानीय लोगों की मदद से बची जान। वडोदरा में भारी बारिश से रावपुरा मांडवी और मुक्तानंद सहित कई इलाके जलमग्न हुए। सड़कों पर पानी भरने के कारण यातायात ठप और जनजीवन प्रभावित। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ने किया रिसीव। एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हुआ स्वागत। पीएम मोदी के पहुंचने पर इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स ने किया स्वागत। इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर इंडोनेशियाई लड़ाकू विमानों ने किया एस्कॉर्ट। जकार्ता में होटल के बाहर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ा जनसैलाब। लगे भारत माता के जय के नारे। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के दौरे के दौरान 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर हैं। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम। इंडोनेशिया में रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, डिजिटल भुगतान पर होगी चर्चा। 6 दिवसीय दौरे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर ट्रस्ट की बड़ी बैठक। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा नियमों के तहत चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। गोविंद गिरी ने चंपत राय का किया बचाव। कहा अपने करीबियों पर विश्वास करना चंपत राय की गलती। दान चोरी से हम सब बुरी तरह से आहत। बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। चंपत राय की जगह कृषि का मंजूर। गोविंद गिरी ने चंपत राय का किया बचाव। कहा अपने करीबियों पर विश्वास करना चंपत राय की गलती। दान चोरी से हम सब बुरी तरह से आहत। बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को बनाया गया राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव। कृष्ण मोहन वही है जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज कराई थी एफआईआर। राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट की धूमिल छवि ठीक करने पर भरोसा जताया। बोले जो भी हुआ उससे अभी आहत। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के अन्य सदस्यों पर भी गिरी गाज। गोपाल राव को पद से हटाया गया। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सीईओ बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। चोरी के आरोपों के बीच मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दान में मिली सोने की रामायण, भगवान के चरण चिन्ह, हार और अन्य वस्तुएं सार्वजनिक की।
चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया फंड का पूरा हिसाब, बताया दान के जरिए मिले 3,264 करोड़ रूपये में से 2,370 करोड़ रूपये हुए खर्च। संचालन के लिए मिले दान का भी दिया हिसाब। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला, ड्यूटी के दौरान बिना जेब वाला कुर्ता पहनेंगे पुजारी, चढ़ावे में पारदर्शिता के लिए 7 सदस्य समिति का गठन। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। यमुना नदी में वोट रैली का शुभारंभ हुआ। प्रेरणा स्थल पर लगाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का किया लोकार्पण। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत, भगवान राम का मतलब राष्ट्र। अखिलेश यादव के दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार वाले बयान पर सीएम योगी का हमला, बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले ना करे राम की बात। भगवान परशुराम पुरी होगा यूपी के शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम, योगी कैबिनेट बैठक में नाम बदलने को मंजूरी। जम्मू दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लिया भाग। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज माता वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन, बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने पत्नी कोमल संग राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता के इको पार्क में बनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं ऊंची प्रतिमा का किया शिलान्यास। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट ने निर्वाचन आयोग के नोटिस का दिया जवाब, सांसद कल्याण बनर्जी, सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा ने पार्टी पर बागी गुट के दावों का किया खंडन। ममता खेमे ने चुनाव आयोग को पार्टी के आधिकारिक दस्तावेज सौंपे, कहा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी कार्य समिति 2027 तक वैध और ममता बनर्जी ही असली टीएमसी प्रमुख है। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग से रेप हत्या मामले को लेकर ममता बनर्जी पीड़िता के परिवार से मिली, न्याय की मांग करते हुए निकाला कैंडल मार्च। बरुईपुर में नाबालिग से रेप हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आनंदा सरदार गिरफ्तार हुआ, अब तक कुल 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य 3 से पूछताछ जारी। बरुईपुर में हुए रेप और हत्या के मामले पर बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक और बेटी खो दी, नई सरकार पीड़ित परिवार के साथ करेगी न्याय। नासिक टीसीएस से यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण केस में आरोपी निंदा खान को मिली जमानत, गर्भावस्था का हवाला बना राहत की वजह। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। हिमाचल के मंडी में अब महज 30 मिनट में पूरा होगा चंडीगढ़ तक का सफर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, आईएसआई और शहजाद भट्टी आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और पेट्रोल पंप बरामद। 91 साल के हुए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा लेह में बनाया गया उनका जन्मदिन, तिब्बती भिक्षुओं ने विशेष प्रार्थना सभा की, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी, पोस्ट कर लिखा दलाई लामा का शांति सद्भाव और मानवता का संदेश दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत। लोधी कॉलोनी में नवविवाहिता आकृति की संदिग्ध मौत, 3 महीने पहले हुई थी शादी, परिवार ने पति ससुराल पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। ऑफिस से निकली आकृति फिर नहीं लौटी घर, छत से गिरने के बाद मौत हुई, परिवार बोला हत्या हुई, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी और मोबाइल डेटा। दहेज प्रताड़ना से मौत का आरोप, आकृति को सामान और नौकरी को लेकर दिए जाते थे ताने, पति अरस्तु सिक्का गिरफ्तार हुआ। आकृति मौत केस में बड़ा डिजिटल सुराग मिला है, सर्च हिस्ट्री में मिले आसानी से मौत कैसे होगी और दूसरी मंजिल से गिरने पर मौत जैसे सवाल, पुलिस जांच में जुटी। टेहरी में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, मीट कारोबारी गिरफ्तार, पॉक्सो में केस दर्ज हुआ। मुंबई में दर्दनाक हादसा, 10वीं मंजिल से लिफ्ट शाफ्ट में गिरा 12 साल का बच्चा, हुई मौत। फतेहपुर में पत्नी बनी जल्लाद, पति को चारपाई से बांधकर पीटा, करंट देने का आरोप। मुजफ्फरनगर में हैवानियत, मानसिक रूप से बीमार युवक को 8 महीने तक बंधक बनाकर कराया काम। पांडुना में 350 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 7 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। गोरखपुर में 70 फीट ऊंची पानी की टंकी का ध्वस्तीकरण और फोरलेन निर्माण में आ रही है बाधा। नोएडा की निजी कंपनी में भीषण आग लगी, 8 दमकल गाड़ियों ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। सेक्टर 88 की फैक्ट्री में लगी आग से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट की आशंका, कोई हताहत नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर का दुर्लभ शिकार, जबड़ों में अजगर दबाए कैमरे में कैद हुआ रोमांचक नजारा। देहरादून में दरिंदगी की सारी हदें पार हुई, युवक को रात भर बंधक बनाकर करंट दिया, रॉड से की पिटाई।
संभल के मेटर्निटी हॉस्पिटल पर प्रशासन का छापा, बेसमेंट सील, नवजातों को कराया शिफ्ट। हिमाचल में फिर से चट्टानों का कहर, चलती कार पर गिरी चट्टान, 14 साल की बच्ची की मौत। श्रीगंगानगर हैवानियत केस में बड़ा खुलासा, होटल के सीसीटीवी से मिले अहम सुराग। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी, 45 वर्षीय शख्स की हत्या, परिवार ने पुलिस पर उठाए सवाल। रामपुर में पुलिस मुठभेड़, गौकशी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:24 तक, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम के 4:24 तक, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3:04 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, काम में समस्या हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, अचानक धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में फायदा होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके लाभ होगा वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कर्क राशि, प्रियजन से मुलाकात होगी, मान सम्मान मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करने से लाभ होगा वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, करियर में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, व्यर्थ के तनाव से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

नए अवसर मिलेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं इंडोनेशिया के जकार्ता से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक तौर पर स्वागत हो रहा है। जकार्ता में आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और औपचारिक तौर पर पीएम मोदी का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। कल हमने तस्वीरें देखी जब राष्ट्रपति प्रभु ने रिसीव किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और जकार्ता दौरे पर पीएम मोदी हैं जिसका आज दूसरा दिन है। औपचारिक तौर पर उनका स्वागत किया जा रहा है। कल जब एयरपोर्ट पर वहां के राजधानी जकार्ता पे प्रधानमंत्री पहुंचे तो राष्ट्रपति ने उन्हें रिसीव किया था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वहां का समा बांधा, और ऐसे में आज ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जब औपचारिक तौर पर पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। चलिए यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
6: Right field, and it will...
5: From the first pitch of the season to the stretch run.
6: And that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हमारे साथ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी, मैम भी मौजूद हैं। मैम खुद यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आई थी। भारत की संस्कृति या सभ्यता के साथ ईरान का जो जुड़ाव रहा है, सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद पहुँची थी। मैम आपका ये विजिट पहला विजिट था ईरान का, क्या कुछ रहा आपका, क्योंकि आप 2 से 3 दिन तक लगातार ईरान में मौजूद रहे, ईरान के साथ एक जुड़ाव रहा है भारत का, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका?
5: आई थिंक ये बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट था और बहुत ही दुखी था, बिकॉज आपने देखा ईरान के लोग बहुत गमजदा हैं, मौन कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं देखती हूँ कि जो इमाम खामनाई साहब की जो शहादत हुई है, उसने न सिर्फ ईरान को इकट्ठा किया, जोड़ के रखा, बल्कि जो पूरी जो दुनिया के जो मुसलमान हैं जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं उनको भी एक साथ लाया, और लोगों को, यहाँ के लोगों को उनकी शहादत ने इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने अमेरिका जैसा सुपर पावर उसको घुटनों पे लाया और दिखा दिया कि आपको जंग लड़ने के लिए कोई न्यूक्लियर पावर या कोई बड़े बड़े हथियारों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में हिम्मत होगी, अगर आप में डिटर्मिनेशन होगा, रिजिलियंस होगा, तो आप बहादुरी से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। एंड दैट्स समथिंग, यू नो, मुझे लगता है पूरी दुनिया में और हमको भी सीखना चाहिए कि अगर आप किसी भी मुश्किल मुकाबला जो अगर आप आ सकती है, तो आपका हिम्मत से अगर आप उसका मुकाबला करेंगे तो जीत ज़रूर आपकी होगी।
4: मैम एक और बात, क्योंकि आपने क्योंकि अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका का रुख पूरी दुनिया के तमाम देशों के लिए अलग अलग रहता है और ख़ासतौर पर भारत के लिए भी जो दोस्ती थी वो टूट गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि बड़ा कड़ा रुख उन्होंने अपनाया। ईरान का एग्जाम्पल आपने सेट किया, क्या भारत को भी कुछ स्टैंड ईरान की तरह लेना चाहिए, खासतौर पर जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं अमेरिका को हैंडल करने के लिए, क्या आपको लगता है कि भारत को करना चाहिए अभी मौजूदा हालात में?
5: मैं समझती हूँ ईरान हमारे मुकाबले में बहुत छोटा है, साइज़ में भी, आबादी के हिसाब से भी। हमारा जो मुल्क इंडिया वो बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हमारे पास इतना ज़्यादा मैन पावर है, हमारा मार्केट इतना बड़ा है, तो हम उसका शायद इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे ईरान ने एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को एक जगह खड़ा कर दिया, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमारे मुल्क के पास, तो हम क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं अमेरिका के सामने? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें कहीं कमी रह गई है।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट से खुलासा, नोट छिपाने, फुटेज हटाने समेत गबन के 70 मामलों के संकेत, 6 लोगों पर सीधा शिकंजा, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी।

करीबियों पर भरोसा करना उनकी गलती। मॉनसून ने मुंबई को बनाया बंधक, स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं रद्द, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, कल्याण में सड़क धसी, पुणे में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही।

0: हत्या को लेकर ममता बैनर्जी का कैंडल मार्च। 12 साल की लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में भेजे गए। इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की पीएम की अगुवाई। जकार्ता में भव्य स्वागत। रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में होंगे कई अहम समझौते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलक के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच का क्या खुलासा हुआ है? चंपत राय की विदाई के बाद कौन संभालेगा कामकाज? अब से कुछ ही देर बाद ये खबर दिखाएंगे। गुजरात के महाराष्ट्र तक आफत की बारिश। पुणे में भरभराकर गिरी 2 मंजिला इमारत। बुलेटिन में मॉनसून से मचे कोहराम की तस्वीरें शामिल होंगी। दिल्ली में ट्रिशा जैसा केस। 3 महीने पहले शादी फिर खुदकुशी। आकृति ने क्यों दी जान, इस पर भी चर्चा होगी। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक स्वागत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। कल वो जकार्ता पहुंचे थे। आज वहां के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। दौरे में कई अहम समझौते की उम्मीद है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ा एक समझौता बेहद अहम बताया जा रहा है। आज आकाश से भी प्रधानमंत्री की अगुवाई की जा रही है। वहां पर जो विमान है वो प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए तैयार है। दूसरा दिन इंडोनेशिया दौरे का, ये 6 दिवसीय दौरा है जिसमें प्रधानमंत्री 3 कंट्रीज ट्रैवल करेंगे। और शुरुआत उन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता से की है, जहां पर कल वो पहुंचे थे। ये देखिए

0: जकार्ता में डेलीगेशन से मुलाकात करते हुए जो तमाम अहम मंत्री हैं वहां के, उनसे वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलवाते हुए, उनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए, ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं। द्विपक्षीय बैठक से पहले प्रधानमंत्री का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया। आपसे कुछ ही देर पहले आप वो तस्वीरें देख रहे थे, बेहद भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री कल जकार्ता पहुंचे थे, द्विपक्षीय वार्ता से पहले जकार्ता में ये तमाम मंत्री प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जाहिर तौर पर द्विपक्षीय वार्ता तो है ही, लेकिन जो ब्रह्मोस के को लेकर समझौता है उसके बारे में डिटेल भी बताइए।
1: बिल्कुल नेहा, लेकिन अगर आप ये तस्वीरें देख रही हैं तो कल से ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से खास गर्मजोशी के साथ इंडोनेशिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहा है। कल जब भारतीय प्रधानमंत्री का विमान इंडोनेशिया के एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो इंडोनेशियन एयरफोर्स के विमान ने उनको एस्कॉर्ट किया और उसके बाद राष्ट्रपति प्रबोवो अपने चार मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। और आज भी जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंशियल पैलेस से जकार्ता से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि अभूतपूर्व स्वागत किया गया है। और अगर आप रक्षा संबंधों का, चूंकि आपने जिक्र किया, प्रबोवो खुद पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं जोको विदोदो की सरकार के अंदर, और उनके कार्यकाल के दौरान भारत और इंडोनेशिया के जो रक्षा संबंध है उसके अंदर खासी मजबूती देखने को मिली है। खासतौर पर अगर आप देखें कि IFC जो है, जो इंडियन ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो दफ्तर है गुरुग्राम में, वहां पर इंडोनेशिया के प्रतिनिधि की स्थापना हो या फिर ब्रह्मोस की डील हो, करीब 250 से 350 जो बिलियन डॉलर है उसकी ये डील बताई जा रही है, जिसके अंदर इंडोनेशिया फिलीपींस और वियतनाम के बाद भारत की जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो खरीदेगा, और साथ ही जो रक्षा और सैन्य साझेदारी है वो दोनों देशों के बीच में मजबूत की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की ये जो बातचीत होने वाली है आज, उसके अंदर रक्षा संबंधों को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया किस तरीके से जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको मजबूत कर सकते हैं, लेकिन केवल रक्षा ही नहीं बल्कि ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश के संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल, दुनिया में सबसे बड़ा जो निकल का भंडार है वो इंडोनेशिया में है, और ऐसे में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी महत्वपूर्ण बातचीत होनी है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इसके अलावा जो भारत और इंडोनेशिया बीच में सभ्यतागत रिश्ते हैं, पुराने, सदियों पुराने रिश्ते हैं, कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो ब्रह्मावन मंदिर कॉम्प्लेक्स है इंडोनेशिया के जावा के इलाके के अंदर, वहां दोनों नेता नजर आएंगे। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो सदियों पुराने रिश्ते हैं उनको सामरिक साझेदारी में किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर आज महत्वपूर्ण न केवल बातचीत होगी बल्कि एक नया रोडमैप स्थापित किया जाएगा। कम लोगों को शायद ये पता हो नेहा कि यूरोप के कई देशों, यानी जिसमें यूके भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, इन तमाम देशों के मुकाबले भारत का जो द्विपक्षीय कारोबार है वो इंडोनेशिया के साथ ज्यादा बड़ा है। चाहे हम ऊर्जा के संबंधों के लिहाज से देखें, दोनों देशों के बीच में चूंकि तेल और जो कोयले का कारोबार है, पाम ऑयल का काफी बड़ा जो ट्रेड है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इसके अलावा जो एमास इंडोनेशिया है 2045 और भारत का जो विकसित भारत 2047 का प्लान है उसमें भी काफी समानताएं देखने को मिलती हैं।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात मौसम की करेंगे क्योंकि मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश से कोहराम मच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में भारी बारिश और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम का मिजाज देखते हुए आज मुंबई के सभी सरकारी, प्राइवेट और नगर निगम के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नवी मुंबई और पालघर में भी स्कूलों को बंद रखा गया है। इस बीच भूस्खलन से बंद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक को 18 घंटे से ज्यादा समय के बाद खोल दिया गया है, उसकी मरम्मत कर दी गई है। हालांकि दो लिंक्स ही खोले जा सके हैं। इसके अलावा 18 घंटे बाद शुरू हुआ है पुणे मुंबई मिसिंग लिंक।
2: देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई दो मंजिला इमारत। ये वीडियो पुणे के पेठ इलाके के धननगर गली का है। मूसलाधार बारिश की मार ये इमारत झेल नहीं पाई और भरभरा कर जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ये तस्वीर महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बारिश प्रभावित इलाके पालघर की है। पालघर तालुका के साकरे गांव में वरई सफाले मार्ग पर बारिश का पानी इतना भर गया कि एक कार डूब गई। जब कार डूबी तो उस वक्त उसमें तीन लोग फंसे हुए थे, जिनमें एक मरीज भी शामिल था। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रस्सी की मदद से डूबी हुई कार को बाहर निकाला गया। कार में फंसे तीनों लोग सुरक्षित बच गए। पालघर इलाके में आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। लोगों की जान मुश्किल में फंस गई, लेकिन आम लोगों की मुश्किलों के बीच एनडीआरएफ के जवान बोट लेकर देवदूत की तरह सामने आए। करीब 200 लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। ये तस्वीर भी पालघर की है। इलाका है वीरेंद्र नगर। कल यहाँ ऐसी आफत बरसी कि कई घरों में बारिश का पानी भर गया। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। सड़कें समंदर नजर आ रही हैं। घरों के दरवाजे पर खड़े लोग राहत का इंतजार करते दिख रहे हैं। संकट की इस घड़ी में स्थानीय लोग खुद एक दूसरे की मदद करने कूद गए। देखिए किस तरह रस्सी और ट्यूब की मदद से लोगों को खींचा जा रहा है। इन सब के बीच एक भावुक करने वाली तस्वीर भी सामने आई। एक मासूम बच्ची पानी से घिरे एक घर में फंस गई थी, जिसे स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र का पालघर इलाका मानो बारिश का एपिसेंटर बन गया है। जब से महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री हुई है, ये इलाका डूबा डूबा नजर आ रहा है। पालघर के सफाले इलाके की तस्वीर देखिए। रेलवे स्टेशन की पार्किंग, बाजार और रिहायशी इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में मानसून से मचे त्राहिमाम की कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और बदलापुर में लगातार बारिश से उल्लास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है और बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। उधर मावल में इंद्रायणी नदी उफान पर है और निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। लोनावला में जल भराव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं अकोला में मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बीच कुछ तस्वीरें राहत और रोमांच की भी सामने आई। वसई विरार में कई युवा सड़कों पर भरे पानी में बारिश का आनंद लेते नजर आए। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में अगले 24 घंटे तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: तो आपने देखा महाराष्ट्र में बारिश की जबरदस्त मार है। कल चर्चा में रहा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक। लैंडस्लाइड की वजह से करीब 18 घंटे तक आवाजाही वहां पर ठप रही। कल रात तकरीबन 10 बजे पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक के दो लेन पर ही आवाजाही शुरू हो सकी।
2: एक तरफ बहता पानी का झरना और दूसरी तरफ से गुजरती गाड़ियां, ये तस्वीर पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक वाले हिस्से की है। दरअसल कल तड़के करीब 3 बजे लगातार हो रही बारिश से मिसिंग लिंक के अंतिम हिस्से में अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर सड़क पर आ गिरे, लिहाजा पुणे से मुंबई जाने वाली मिसिंग लिंक को तुरंत बंद करना पड़ा था। लेकिन मैराथन कोशिशों के बाद बीती रात करीब 10 बजे मिसिंग लिंक की दो लेन पर ट्रैफिक की आवाजाही शुरू कर दी गई। करीब 18 से 19 घंटे ट्रैफिक बंद रहने के बाद ये शुभ घड़ी आई। कल जब भूस्खलन की वजह से यहां ट्रैफिक बंद हुआ था, तब की तस्वीर देखिए। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़क पर झरना फूट गया हो। एक तरफ पानी का झरना बह रहा है, दूसरी तरफ भारी मशीनें मलबा हटाने का काम कर रही हैं। करीब 7000 करोड़ की लागत से बने इस मिसिंग लिंक का उद्घाटन 1 मई को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया था। तब इसे इंजीनियरिंग का शानदार नमूना बताया था, लेकिन मानसून का ऐसा प्रहार हुआ कि पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे की और भी तस्वीरें हैं जो भारी बारिश से निपटने की तैयारी पर सवाल खड़े करती हैं। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का पुराना रास्ता है। देखिए कल किस तरह यहाँ पानी भरा हुआ था, गाड़ियां डूबी हुई साफ दिख रही हैं। दरअसल मिसिंग लिंक बंद होने के बाद ट्रैफिक को इस रास्ते डाइवर्ट कर दिया गया था, जिससे पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हजारों वाहन कई किलोमीटर तक फंस गए और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहरहाल मिसिंग लिंक का दो लेन शुरू होने के बाद अब ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। बारिश से आफत सिर्फ पुणे मुंबई मिसिंग लिंक पर नहीं बल्कि रेल लाइन पर भी लैंडस्लाइड से आवाजाही ठप हो गई। ये तस्वीर करजत लोनावाला घाट सेक्शन के मंकी हिल की है। कल शाम जब आज तक की टीम यहां पहुंची तो लैंडस्लाइड के बाद यहां रास्ते को साफ करने का काम चल रहा था।
3: हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं कि ये मालगाड़ी जो है ये राहत रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हम मौजूद हैं मंकी हिल और ठाकुरवाड़ी केबिन के बीच में, जो जहां पर भूस्खलन हुई है, जहां पर लोनावाला खंडाला घाट सेक्शन में भूस्खलन हुई है, वहां पर हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। और आपको दिखा रहे हैं कि जो राहत कार्य है, जो रिलीफ वर्क है, वो अभी भी चल रहा है। भारी बरसात के वजह से जो रिलीफ वर्क था वो इफेक्ट हुआ था, क्योंकि यहां पर 327 mm से ज्यादा पिछले 4 घंटों में बरसात हुई है। भारी मात्रा में लेबर लगाए गए हैं, मशीनें लगाई गई हैं, रेलवे की पूरी मशीनरी किसी तरीके से जो मुंबई और पुणे के बीच की रेल यातायात है उसे शुरू करने की कोशिश कर रही है।
2: मानसून की अभी शुरुआत हुई है और मुसीबतों की बारिश होने लगी। मानसून जब रफ्तार पकड़ेगी तब क्या होगा? विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: तो गुजरात में भी मानसून अब राहत नहीं, आफत बनता जा रहा है। वडोदरा हो, सूरत, वापी, नवसारी समेत तमाम शहरों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कहीं सड़कें नदी बन गई हैं, कहीं गाड़ियां पानी में फंस गई, तो कहीं पेड़ गिरने के हादसे हुए।
4: फिर गुजरात में बारिश का कहर। सबसे पहले बात वडोदरा की। यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश से रावपुरा, नागरवाड़ा, मुक्तानंद, पत्थरगेट और मांडवी समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जबकि मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सूरत नवसारी रोड पर भारी जलभराव देखने को मिला। पुराने आजियो के पास पानी से भरे गड्ढे में एक बस फंस गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूरत में एक विशाल पेड़ चलती कार पर गिर गया, जिसमें कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पेड़ हटाया। वापी में भी सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। कई इलाकों में जलभराव के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित रही। दूसरी ओर नवसारी और डांग जिले में बारिश ने अलग तस्वीर पेश की। गांव चारों तरफ पानी से घिर गया, जिससे एक बारात घंटों तक रास्ते में फंसी रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार बारिश के बीच कई जगह झरनों पर भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जल भराव वाले इलाकों और पुराने पेड़ों के आसपास जाने से बचने की अपील की है। फिलहाल गुजरात के कई जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, राहत और बचाव दल तैनात है और लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की जा रही है।
0: वहीं अमरेली के राजला में बारिश के बीच 108 टीम्स ने एक महिला मरीज की जान बचाई है। चाच बंदर गांव में बीमार महिला तक पहुंचने के लिए डॉक्टर्स पानी के बहाव के बीच कई देर तक फंसे रहे, उसके बाद ट्रैक्टर की मदद से वहां पर पहुंचा गया। जेसीबी की मदद से महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। 108 टीम्स की इस तत्परता की सराहना की जा रही है। वहीं सूरत में भारी बारिश के बाद जलभराव से हालात बिगड़ गए हैं। पर्वत गांव इलाके में पानी भरने के कारण स्कूल के 7 शिक्षक और 12 छात्र फंस गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित निकाला गया। कई इलाकों में जलभराव है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है, यहां तक कि जान पर भी बनाई है।
5: पड़ेगी।

0: अयोध्या आज तक।
1: वही राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला ये कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने त्यागपत्र उनका मंजूर कर लिया गया है। नए सीईओ के चयन के लिए ट्रस्ट ने 3 सदस्य समिति का गठन कर दिया है। 22 जुलाई को ट्रस्ट की दोबारा बैठक होगी जिसमें खाली जगहों को भरने पर फैसला लिया जाए।
2: चढ़ावा चोरी का केस आने के करीब एक महीने के बाद सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। 3 घंटे की बैठक का एक लाइन में लबोलुआब ये है कि चंपत राय को बचाया जा रहा है।
3: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है।
2: लेकिन उससे पहले ट्रस्ट ने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को गलत साबित करने के लिए ये सब भी दिखाया। इसमें रामचरितमानस की वो प्रति भी थी जिसके बारे में दावा है कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये आरोप लगा था कि रामचरितमानस भी गायब है, लेकिन वो ट्रस्ट ने सबको दिखा दी। ऐसा ही आरोप बाकी चीजों पर भी लगा था, जैसे कि ये काक भुशुंडी या ये चांदी का हार। लेकिन ट्रस्ट ने 5 वस्तुएं मीडिया के सामने रखी। और दावा किया कि रामलला को नकद राशि के अलावा श्रद्धालुओं से 2,926 भेंट मिली है जो सभी तारीख और विवरण के साथ रजिस्टर में दर्ज है। अगर कोई श्रद्धालु अपनी भेंट के बारे में जानना चाहता है तो वो कभी भी ट्रस्ट के अधिकारियों से मिल सकता है। ट्रस्ट का कहना है कि चांदी की वस्तुओं को भारत सरकार की टकसाल में गला कर छड़े बनाई गई है।
4: जिस रामायण की चर्चा प्रसार माध्यमों में वो जोरों शोरों से हो रही है और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं।
2: सोमवार की बैठक के बाद ट्रस्ट की पूरी कोशिश ये थी कि अपने ऊपर लग रहे आरोपों को गलत साबित की जाए। इसीलिए बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई जिसमें ट्रस्ट ने अब तक का पूरा हिसाब किताब लिखित में दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या ट्रस्ट उन करोड़ों राम भक्तों का ट्रस्ट हासिल कर पाया है जो पिछले एक महीने में खोया है। जो चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री थे, सारा कामकाज देखते थे, उन्होंने तो इस केस में FIR दर्ज होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। ट्रस्ट ने आज उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। उनके अलावा जिन अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट के प्रशासन, निर्माण कार्य और समन्वय की जिम्मेदारी थी उनका भी इस्तीफा ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया और चंपत राय की जगह ट्रस्ट का कार्यकारी महामंत्री कृष्ण मोहन को बनाया गया है। चोरी के इस केस में FIR कृष्ण मोहन ने ही दर्ज कराई है। लेकिन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी आभास हुआ कि ट्रस्ट का चंपत राय में पूर्ण विश्वास बना हुआ है। भले ही अब वो ट्रस्ट में ना हो लेकिन उनका बचाव पूरा हो रहा है।
3: उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब तक यहां पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है।
2: अब अगली जिम्मेदारी कृष्ण मोहन को दी गई है जिनका दावा है कि ट्रस्ट के कामकाज में जो खामियां हैं उनको वो पूरा करेंगे, जो लूपहोल्स हैं उनको भरेंगे। कृष्ण मोहन कह रहे हैं कि पूरी कोशिश रहेगी कि ट्रस्ट की जो छवि धूमिल हुई है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।
5: इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।
2: अब सवाल है कि ट्रस्ट आगे कैसे चलेगा। इसके लिए दावा है कि एक सीईओ अपॉइंट किया जाएगा जिसकी खोज के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। संतोष शर्मा और समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
1: कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। कुमार, हमने बार बार इस बात पर चर्चा की है कि चंपत राय को क्यों बचाया जा रहा है, लेकिन कल जिस तरह से बचाव के अलावा उनका गुणगान किया जा रहा था उसको लेकर भी आश्चर्य है।
6: बिल्कुल नेहा, देखिए उन्हें कहा गया कि वो बिल्कुल भोले हैं, उनके इर्द गिर्द के लोगों ने उन्हें

0: बहला दिया, बहका दिया, इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये किसी के गले उतरने वाली चीज नहीं है। पूरे एसआईटी रिपोर्ट, जो कल एसआईटी रिपोर्ट रखी गई उस मीटिंग में, अगर आप एक एक शब्द उसके देखेंगे तो एक जगह भी चंपत राय का नाम नहीं है। यहां तक कि लापरवाह के तौर पर भी उनका कोई नाम नहीं है कि उनकी लापरवाही से हुआ। हाँ, अनिल मिश्रा का नाम कई जगह आया है और अनिल मिश्रा को एक तरीके से जिम्मेदार भी ठहराया गया है कि उनके रहते हुए जिनकी जिम्मेदारी थी पूरी नकदी का को सुरक्षित बैंक तक ले जाना, उसकी गणना करवाना, यहां तक कि जो एसओपी तैयार की गई थी वो सब कुछ उनके निर्देशन में था। तो अनिल मिश्रा को तो एक तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया गया है कि अब आगे अनिल मिश्रा का क्या होगा, क्या एसआईटी उनसे और पूछताछ करेगी, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ये तो एक बात है। लेकिन चंपत राय का जिक्र तक नहीं है इस पूरे में। उल्टे आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंपत राय का पूरी तरीके से बचाव किया गया, उनके 40 साल के उनके काम की चर्चा की गई। यही नहीं, जब ये मंदिर निर्माण हुआ उसके बाद से कल जब बैठक हुई तो उनके इन दिनों के काम को भी सराहा गया। तो एक तरफ इतना बड़ा चोरी कांड, उसके बाद अब उनको इसी मीटिंग में सराहा जाना जहां ये कहा जाता है कि भाई उनके नाक के नीचे ये तमाम चीजें हुई। ये बात अलग है कि उनको उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल किसी ने नहीं कभी नहीं खड़ा किया, लेकिन उनके अंडर में तो हुआ, उनकी नाक के नीचे तो हुआ। अब ट्रस्ट जो है वो बेशक उनको उनका बचाव करता रहे, लेकिन तमाम चीजें अब तो खुलकर सामने आ गई हैं।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच अब हम बात करेंगे दिल्ली के आकृति सुतार मौत मामले की, जिसमें लोधी कॉलोनी में शादी के 3 ही महीने बाद आकृति सुतार ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। आकृति के घर वालों का आरोप है कि उससे ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।
2: ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां से 28 साल की आकृति सुतार गिर गई थी, लोधी कॉलोनी के एनडीएमसी फ्लैट। शनिवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला छत से गिरकर घायल हो गई है। आकृति को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कहानी शुरू होती है 24 अप्रैल 2026 से, जब आकृति की शादी अरास्तु सिक्का से लव मैरिज हुई थी। दोनों करीब 2 साल से एक दूसरे को जानते थे। शादी के बाद आकृति सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी करती थी। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। आकृति के भाई अमय सुतार का आरोप है कि ससुराल में उसे दहेज को लेकर ताने दिए जाते थे। परिवार का आरोप है कि पति अरास्तु सिक्का उस पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाता था। कई दिन आकृति ऑफिस भी नहीं गई, लेकिन 1 जुलाई से उसने दोबारा नौकरी शुरू की। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन भी वो ऑफिस गई थी और वहाँ अपनी शादी की पार्टी दी थी। परिवार के मुताबिक शाम को आकृति ने फोन पर बताया था कि वो ऑफिस से निकल गई है। बाद में फोन बंद आने लगा और आकृति नहीं उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस डिजिटल सबूतों की भी जांच कर रही है। आकृति की गूगल सर्च हिस्ट्री में कुछ संदिग्ध सर्च मिले हैं। आकृति ने शनिवार दोपहर करीब 2:22 पर सर्च किया था, क्या दूसरी मंजिल से गिरने पर मौत हो सकती है। इसके अलावा मई महीने में उसकी सर्च हिस्ट्री में आसानी से मौत कैसे होगी जैसे सर्च भी मिली है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल दहेज मामले में पति अरास्तु सिक्का को गिरफ्तार किया गया है। आशुतोष कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: और बात फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना अधूरा रह गया। कल प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर का ये 6ठा फीफा विश्व कप था और वो एक बार भी खिताब नहीं जीत पाए हैं। आज खेले गए एक अन्य मैच में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर मेजबान टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। बात अब क्रिकेट की। जिम्बाब्वे में खेले जाने वाले 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के हीरो संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया है। चयनकर्ताओं ने इस बार आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले 4 नए अनकैप्ड खिलाड़ियों पर बड़ा भरोसा जताया है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए पूरी भारतीय T20 टीम इस प्रकार है: श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा उप कप्तान, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेखे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभ सिमरन सिंह। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

पासा नोट छिपाने फुटेज हटाने समेत गबन के 70 मामलों के संकेत 6 लोगों पर सीधा शिकंजा 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा चंपत राय बेदाग। हाहाकारी मॉनसून ने मुंबई को बनाया बंधक स्कूल कॉलेज बंद परीक्षाएं रद्द दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम कल्याण में सड़क धसी पुणे में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही। पिचासी फीसदी मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में पीएम मोदी का राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक स्वागत आसमान में फाइटर जेट्स ने की अगवानी ब्रह्मोस की सबसे बड़ी डील पर होगी बात।

पर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में। साढ़े नौ बज गए हैं, वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड से नेशनल हाईवे 244 बंद, मलबा हटाने का काम जारी। सूरत में भारी बारिश के कारण पानी जमा होने से स्कूल में फंसे 7 टीचर 12 छात्र, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के डोडा में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। सूरत में भारी बारिश के कारण कार पर गिरा विशालकाय पेड़, कार सवार घायल, स्थानीय लोगों की मदद से बची जान। वडोदरा में भारी बारिश से रावपुरा, मांडवी, मुक्तानंद सहित कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर पानी भरने से यातायात ठप और जनजीवन प्रभावित। पुणे में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एक 2 मंजिला इमारत ढही, फायर ब्रिगेड की सतर्कता से हादसे में कोई जनहानि नहीं। घटना के बाद लगातार हो रही बारिश के चलते जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। महाराष्ट्र के पुणे और नलामना में भारी बारिश के कारण इंद्रायणी नदी उफान पर, आलंदी में बाढ़ जैसे हालात, आलंदी के चारों पुल पानी में डूबे। आलंदी में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फंसे 400 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू, बचाव टीमों ने बाढ़ वाले इलाकों में लगभग 150 मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। कंडाला घाट सेक्शन में भूस्खलन के कारण मुंबई और पुणे के बीच रेल सेवाएं बाधित, भारी बारिश के बावजूद सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। मुंबई में लगातार हो रही बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित, 4 दिन में प्राकृतिक आपदा से मरने वालों की संख्या 13। शहर के कई इलाकों में जलभराव, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल, सड़क और रेल यातायात प्रभावित। तेज बारिश के चलते तूफानी हवाओं के कारण कई स्थानों पर गिरे पेड़, बीएमसी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 500 से ज्यादा पेड़ गिरने के कारण यातायात चरमराया। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जिसके चलते मुंबई, नवी मुंबई और पालघर के सभी स्कूल कॉलेज बंद, जबकि मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हुई भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की बड़ी घटना, हादसे में 3 लोगों की गई जान। भारी बारिश के कारण मुंबई गोवा हाईवे के कई वाहन जलमग्न, वाहनों की लंबी कतार लगने से 24 घंटे के ज्यादा समय के लिए ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक बाईपास में भूस्खलन के बाद बंद हुई लेन 18 घंटे बाद खुली, सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद 2 लेन पर यातायात बहाल। प्रशासन ने मुंबई पुणे हाईवे पर यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की अपील की। मौसम और ट्रैफिक अपडेट देखकर ही लोग यात्रा करें। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार 4 दिन से मूसलाधार बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ा, उल्लास नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश, कल्याण प्रशासन अलर्ट मोड पर। इंडोनेशिया और भारत के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति, दोनों देश में रक्षा उत्पादन, तकनीक के आदान प्रदान और लगभग 2500 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल डील पर सहयोग बढ़ाने पर जोर। जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत, राष्ट्रपति ने किया रिसीव, एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच हुआ स्वागत। पीएम मोदी के पहुंचने पर इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स ने किया स्वागत, इंडोनेशिया हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर इंडोनेशियाई लड़ाकू विमानों ने किया एस्कॉर्ट। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय दौरे के दौरान 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की राष्ट्रीय यात्रा पर हैं, भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का कार्यक्रम। इंडोनेशिया में रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, डिजिटल भुगतान पर होगी चर्चा, 6 दिवसीय दौरे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल। राम मंदिर चढ़ावा गिनती में चोरी, गबन की एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी फुटेज में गिनती कक्ष के अंदर कई बार कर्मचारियों को नोटों की गड्डी छिपाते देखा गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गिनती कक्ष में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ, प्रवेश और निकास के समय तलाशी नहीं ली गई। एसआईटी जांच में मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड और सत्यापन में गंभीर कमियां पाई गई। एसआईटी को संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक नकदी जमा और वित्तीय लेनदेन की जानकारी मिली है। रिपोर्ट में मूल्यवान वस्तुओं के प्रबंधन रिकॉर्ड प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। गोविंद गिरी ने चंपत राय का किया बचाव, कहा अपने करीबियों पर विश्वास करना चंपत राय की गलती, दान चोरी से हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को बनाया गया राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव। कृष्ण मोहन वही है जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज कराई थी एफआईआर। राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट की धूमिल छवि ठीक करने का जताया भरोसा। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के अन्य सदस्यों पर गोपाल राव को पद से हटाया गया।
राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला, सीईओ बनाने के लिए 3 सदस्य कमेटी गठित। चोरी के आरोप के बीच मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दान मिली सोने की रामायण, भगवान के चरण चिन्ह हार और अन्य वस्तुओं को सार्वजनिक किया गया। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने, सीसीटीवी में चोरी के मिले सुराग। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया फंड का पूरा हिसाब किताब, दान के जरिए मिले 3,264 करोड़ रुपए में से 2,370 करोड़ रुपए खर्च भी हुए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद बुधवार के मनसा देवी ट्रस्ट का बड़ा फैसला, ड्यूटी के दौरान बिना जेब वाला कुर्ता पहनेंगे पुजारी। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित करेंगे। यमुना नदी में वोट रैली का शुभारंभ, प्रेरणा स्थल पर लगाए गए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं, भगवान राम का मतलब राष्ट्र है। अखिलेश यादव की दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार वाले बयान पर सीएम योगी का हमला, बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले बात न करें राम की। भगवान परशुराम पुरी होगा यूपी के शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम, योगी कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। जम्मू दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र नवीन, श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र नवीन आज माता वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन, बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने पत्नी कोमल संग राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता के इको पार्क बनी श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का किया शिलान्यास। टीएमसी के ममता बैनर्जी गुट ने निर्वाचन आयोग के नोटिस का दिया जवाब, सांसद कल्याण बैनर्जी, सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा ने पार्टी पर बागी गुट के दावों का खंडन किया। ममता खेमे ने चुनाव आयोग को पार्टी के आधिकारिक दस्तावेज सौंपे, कहा पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति 2027 तक वैध और ममता बैनर्जी ही असली टीएमसी प्रमुख है। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में नाबालिग से रेप हत्या मामले को लेकर ममता बैनर्जी पीड़िता के परिवार से मिली, न्याय की मांग करते हुए निकाला कैंडल मार्च। बारुईपुर में नाबालिग से रेप हत्या मामले में मुख्य आरोपी आनंदा सरदार गिरफ्तार, 3 गिरफ्तारियों में से 3 से पूछताछ जारी। बारुईपुर में रेप हत्या मामले में बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ ने घटना की निंदा की, बोले एक और बेटी खो दी। नासिक टीसीएस यौन उत्पीड़न धर्मांतरण केस में आरोपी निदा खान को मिली जमानत, गर्भावस्था का हवाला बना राहत की वजह। लोधी कॉलोनी में नवविवाहिता आकृति की संदिग्ध हालत में मौत, 3 महीने हुई थी शादी, परिवार ने पति और ससुराल पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। ऑफिस से निकली आकृति फिर नहीं लौटी घर, छत से गिरने के बाद मौत, परिवार बोला हत्या हुई, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी और मोबाइल डेटा। दहेज प्रताड़ना से मौत का आरोप, आकृति को सामान और नौकरी के लिए दिए जाते थे ताने, पति अरुस्तु सिक्का गिरफ्तार। आकृति मौत मामले बड़ा दिलचस्प सुराग, सर्च हिस्ट्री मिले आसानी से मौत कैसे होगी और दूसरी मंजिल से गिरने पर मौत जैसे सवाल, पुलिस जांच में जुटी। टीरी में नाबालिग से 6-4 का आरोप, 3 कारोबारी गिरफ्तार, पॉक्सो में मामला दर्ज। मुंबई में दर्दनाक हादसा, 10वीं मंजिल से लिफ्ट शाफ्ट में गिरा 12 साल का बच्चा। फतेहपुर में पत्नी बनी जल्लाद, पति को चारपाई से बांधकर पीटा, करंट देने का आरोप। मुजफ्फरनगर में ऐवानित मानसिक रूप से बीमार युवक को 8 महीने तक बंधक बनाए रखा गया। पाढ़ुरना में 350 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 7 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। गोरखपुर में 70 फीट ऊंची पानी की टंकी का ध्वस्तीकरण, 4 लेन निर्माण में आ रही है बाधा। नोएडा में निजी कंपनी भीषण आग, 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। सेक्टर 88 की फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट की आशंका, कोई हताहत नहीं।

जिम कॉर्बिन नेशनल पार्क में टाइगर का दुर्लभ शिकार, जबड़ों में अजगर दबाए, कैमरे में कैद हुआ रोचक नजारा। देहरादून में दरंगी की सारी हदें पार, युवक को रात भर बंधक बनाकर करंट दिया गया, रॉड से की गई पिटाई। संभल के मेटर्निटी हॉस्पिटल प्रशासन की छापेमारी, बेसमेंट सील, नवजातों को कराया गया शिफ्ट। हिमाचल फिर चट्टानों के घेर, चलती कार पर गिरी चट्टान, 14 साल की बच्ची की मौत। श्रीगंगानगर हैवानियत मामले में बड़ा खुलासा, होटल के सीसीटीवी से मिले अहम सुराग। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी, 45 वर्षीय शख्स की हत्या, परिवार ने पुलिस पर उठाए सवाल। रामपुर में पुलिस मुठभेड़, गौकृषि के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मैच नॉटिंघम में खेला जाएगा। आज के मैच के समय में बदलाव, भारतीय समय के मुताबिक 10 बजे शुरू होगा रात में, 9:30 बजे होगा टॉस। 5 मैचों की सीरीज है, भारत जीत का खाता खोलने के लिए तैयार, पहला मैच बारिश से धुलने के बाद दूसरे मैच में मिली हार। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान। 4 नए चेहरों को मिली जगह, रिंकू सिंह की टीम में वापसी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अशोक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के पास इस सीरीज में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका। फिल्म फुकरे के बाद लौटेगी भोली पंजाबन और जफर की जोड़ी, नई कॉमेडी फिल्म का हुआ ऐलान। अर्जुन रामपाल ने अपने हमजा यानी रणवीर सिंह को दी जन्मदिन की बधाई, शेरे रणवीर के लिए शेयर किया स्पेशल पोस्ट। आज राय को सौरभ गांगुली के बर्थडे पर रिलीज होगा उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक, राजकुमार राव निभा रहे हैं दादा का किरदार। हल्की फुल्की रोमांटिक ड्रामा मैं तेरा यार हूं में ट्रेलर का लॉन्च, फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार कर रहे हैं एक्टिंग का डेब्यू। लव लॉटरी का फर्स्ट लुक लॉन्च, कॉर्टरूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ दिखेगा सस्पेंस का तड़का। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 3,535 पहुंची, हजारों लोग घायल। चीन द्वारा लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण में जापान ने जताया कड़ा एतराज, का गंभीर चिंता का विषय है चीन का मिसाइल परीक्षण। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दी चेतावनी, का अगर एआई को शक्तिशाली बनाना है तो सुरक्षा नियम है जरूरी। श्रीलंका की नोगोम्बो में एक जेल में दो गुटों के बीच झड़प, 3 अफसरों समेत 25 की मौत, 100 से अधिक लोग घायल। यूरोप के कई देशों में जंगलों में लगी आग, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, अल्बेनिया में सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर खाक।

रबात इंडोनेशिया दौरे की प्रधानमंत्री जैसे इंडोनेशिया की सीमा में दाखिल हुए मेजबान देश के फाइटर जेट्स से उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। इंडोनेशिया में एयरपोर्ट से लेकर प्रेसिडेंशियल पैलेस तक प्रधानमंत्री का भूतपूर्व औपचारिक स्वागत किया गया। पहला मौका है जब किसी विदेशी मेहमान की इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भवन में अगुवाई की गई। इंडोनेशिया भारत के बड़े द्विपक्षीय कारोबारी सहयोगी देशों में से एक है। भारतीय कंपनियों को कमर्शियल वाहन सप्लाई के सबसे बड़े ऑर्डर किसी एक देश से मिलते हैं तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का भी बड़ा खरीदार बनने जा रहा है। तो दो तस्वीरों में साफ हो रहा है कि किस तरीके से ऐतिहासिक और भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। आज दूसरा दिन है उनका जकार्ता में, वहां पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद कई द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद प्रधानमंत्री एमओयू पर साइन करते हुए।

और ये तस्वीर जब इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया, उस वक्त ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। ये बेहद अनोखा और भव्य तरीका प्रधानमंत्री के स्वागत का। उसके बाद पारंपरिक नृत्य जो इंडोनेशिया की पहचान भी है। यहाँ पर लगभग 80% आबादी मुस्लिम है, इसके बावजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री के स्वागत में हिस्सा लिया।

0: 9 बज गए मेरे साथ, अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
6: Jack, you're killing me.
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
7: आगे आगे
8: उधर
7: करेक्ट करेक्ट
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
6: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
7: वाह वाह वाह वाह।
6: सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
8: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
9: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
10: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
11: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
13: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
17: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमां कुरैशी।
4: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
5: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
6: परमिशन लेनी चाहिए ना,
5: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
7: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
5: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: मानसून की पहले ही बारिश में माया नगरी मुंबई डूबने लगी है। शहर में जल निकासी के जितने दावे किए गए थे सब धराशायी हो गए। मुंबई में अगर कुछ है तो पानी, गंदा पानी, बरसात का पानी। बीते 4 से 5 दिनों में मुंबई का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां जल भराव नहीं हुआ हो। मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में आफत की भी दस्तक हुई है। शहर के VVIP इलाके भी डूबने लगे। अंधेरी ईस्ट हो, वेस्ट हो, विले पार्ले, जुहू, बांद्रा, बोरीवली, दहिसर, कुर्ला, हर जगह एक सा हाल है। भारी बारिश की वजह से बीती रात मुंबई के मानखुर्द में एक इमारत गिर गई जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। ये 3 मंजिला चौल थी। रात में पानी इतना बरसा कि इमारत की बुनियाद ही खिसक गई और इसमें रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई।
5: मौजूद है घटनास्थल पर, तस्वीर में देख सकते हैं, ये वही ग्राउंड प्लस 3 मंजिला झोपड़ा था जो अचानक जो है रविवार रात करीब 8 बजे के करीब जो है ढह गया। घटना के बाद से यहाँ पे जो है चीख पुकार मच गई थी। तुरंत ही मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और BMC के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए और उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
4: कहने को तो मुंबई भारत ही नहीं पूरे एशिया के सबसे धनाढ्य नगर पालिका है, अरबों का बजट है। बारिश और उससे होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए हर साल खूब रुपए खर्च होते हैं। बावजूद इसके मॉनसून में नागरिकों की जान जा रही है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 265 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। आज मुंबई के सभी स्कूल बंद हैं। खराब मौसम की वजह से मुंबई विश्वविद्यालय ने आज होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया है। अब जरा मुंबई से सटे पालघर की तस्वीरें भी देखिए। दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही दिखेगा। यहां कोई नदी नहीं है, न ही बाढ़ आई है, ये बारिश का पानी है। मूसलाधार बरसात से पालघर पानी पानी हो गया है। वसई पूर्व, वसंत नगरी, मधुबन जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई सोसाइटियों में पानी भर गया है। ये नवी मुंबई का उरण इलाका है जहां पानी में घर है या घर में पानी, ये बताना मुश्किल है। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश ने नाले चोक कर दिए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों का कहना है कि हर साल यही होता है लेकिन जिम्मेदार विभाग सोया रहता है।
6: साफ तो बहुत आते हैं यहाँ पे। कल तो हम लोगों ने कम से कम 10-12 सांप मारे यहाँ पे ही। बहुत साफ साफ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर किसी को बाय चांस काट लिया तो हम लोग इतने पानी में से कहाँ पे लेके जाएंगे।
4: और अब पुणे की तस्वीरें भी देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से पुणे का भूसी बांध ओवरफ्लो कर रहा है। एहतियातन पर्यटकों के लिए बांध को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से लोनावला में झरने फूट पड़े हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई पुणे की ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड की वजह से ट्रेन के पहिए थम गए हैं। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी मलबा आ गया है जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। एजाज खान, मुंबई आज तक।

0: किसको भरमाते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर सत्ता का शहद खाने वाले, किसको बनाते हैं बुलेट ट्रेन चलेगी, किसको समझाते हैं कि मोहल्ले में हेलीपैड बनेगा, हाई स्पीड मेट्रो और इंतजाम ऐसा करेंगे कि लगेगा स्वर्ग में। आइए और देख जाइए अपना बनाया हुआ नरक। ये हालत इसलिए हुई है कि गटर साफ करने वाले खजाने का अमृत पी रहे थे। ये हालत इसलिए हुई है कि सड़क बनाने वाले आसमान में उड़ रहे थे। ये हालत इसलिए हुई है कि टोटी का पानी देने वाले आबे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoge, the number one Korean skincare brand, now in India.

चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट से खुलासा, नोट छिपाने फुटेज हटाने समेत गबन के 70 मामलों के संकेत, 6 लोगों पर सीधा शिकंजा, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत राय की छुट्टी, कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव, कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा चंपत राय बेदाग, करीबियों पर भरोसा करना उनकी गलती, 3 लोगों की कमेटी करेगी सीईओ की नियुक्ति। हाहाकारी मॉनसून ने मुंबई को बनाया बंधक, स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं रद्द, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, कल्याण में सड़क धसी, पुणे में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही, गुजरात के कई शहर जलमग्न।

0: 85% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में पीएम मोदी का राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक स्वागत। आसमान में फाइटर जेट्स ने की अगवानी। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी डील पर होगी बात। बंगाल रेप मर्डर कांड पर सियासी उबाल। बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बैनर्जी का कैंडल मार्च। 12 साल की लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में भेजे गए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: आज सुबह में आपका स्वागत है, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में इन दिनों मॉनसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल है। मुंबई में तो बीते 8 दिनों से मूसलाधार आफत जारी है, वहीं कई और जिलों से भी भारी बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। एक एक तस्वीर बता रही है कि कैसे मूसलाधार बारिश महाराष्ट्र के शहर शहर में तबाही मचा रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन ठप पड़ गया है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कई जगहों पर पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है, हाईवे ब्लॉक हैं और लोग मुसीबत झेलने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही इस मूसलाधार बारिश के बीच एक 2 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। देखते ही देखते पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई। राहत की बात यह रही कि हादसे से पहले ही अग्निशमन विभाग ने इमारत में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल प्रशासन ने इलाके की घेराबंदी कर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच भूस्खलन का बड़ा हादसा सामने आया है। मावल में पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक कर एक घर पर आ गिरा, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद मलबा हटाया गया। प्रशासन ने लोगों से भूस्खलन संभावित इलाकों में सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी अपील की है। तो ये तस्वीरें देखिए, क्या हादसा हुआ है। हर तरफ त्राहिमाम है। एक तरफ आपको जैसा हम बता रहे थे, लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई पुणे में, जब मकान के ऊपर ही पहाड़ का एक हिस्सा आके गिर गया। जेसीबी से रेस्क्यू की कोशिश की गई, वहां पर लोग पहुंचे और हटाने, मलबा को हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर तरफ मलबा नजर आ रहा है और पहाड़ियां और जमीन धसकने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पानी आता है, जमीन को अपने साथ बहा ले जाता है और कई बार ये मलबा लोगों के घरों पर गिर जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि देश में जो मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, जिससे उत्तर के कई उत्तर से लेकर दक्षिण तक तेज बारिश का दौर जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कई शहरों में रौद्र रूप दिख रहा है, आफत बरस रही है, जिससे लोगों की जिंदगी का संकट बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ठाणे, मुंबई और रायगढ़, हर जगह 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं। सिर्फ बारिश ही नहीं है तो कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, ये पता चल रहा है। जाहिर तौर पर अगर हालत ये है तो स्कूलों और कॉलेजों को बंद करना पड़ा है ताकि लोगों को दिक्कतें ना आए। यातायात सेवाओं में देरी हो रही है, क्यों? क्योंकि बसें नहीं समय पर चल पाती हैं, ट्रेनों को कभी कभार बंद करना पड़ता है, लोकल ट्रेन बंद हो जाती हैं, तो इस वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो आइए आपको यह भी दिखाते हैं कि ऑरेंज अलर्ट कहां कहां हो रहा है, यानी काफी तेज बारिश वहां हो सकती है और कुछ हद तक खतरा भी हो सकता है, यानी कि सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग, ये वो इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, तो लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी अगर आज वो बाहर निकलते हैं। ठाणे, नासिक, यहां पर भी भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि इन इलाकों में बारिश बढ़ेगी। तो
1: देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई दो मंजिला इमारत। ये वीडियो पुणे के पेठ इलाके के धननगर गली का है। मूसलाधार बारिश की मार ये इमारत झेल नहीं पाई और भरभरा कर जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ये तस्वीर महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बारिश प्रभावित इलाके पालघर की है। पालघर तालुका के साकरे गांव में वरई सफाले मार्ग पर बारिश का पानी इतना भर गया कि एक कार डूब गई। जब कार डूबी तो उस वक्त उसमें तीन लोग फंसे हुए थे, जिनमें एक मरीज भी शामिल था। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रस्सी की मदद से डूबी हुई कार को बाहर निकाला गया। कार में फंसे तीनों लोग सुरक्षित बच गए। पालघर इलाके में आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। लोगों की जान मुश्किल में फंस गई, लेकिन आम लोगों की मुश्किलों के बीच एनडीआरएफ के जवान बोट लेकर देवदूत की तरह सामने आए। करीब 200 लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। ये तस्वीर भी पालघर की है। इलाका है वीरेंद्र नगर। कल यहाँ ऐसी आफत बरसी कि कई घरों में बारिश का पानी भर गया। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। सड़कें समंदर नजर आ रही हैं। घरों के दरवाजे पर खड़े लोग राहत का इंतजार करते दिख रहे हैं। संकट की इस घड़ी में स्थानीय लोग खुद एक दूसरे की मदद करने कूद गए। देखिए किस तरह रस्सी और ट्यूब की मदद से लोगों को खींचा जा रहा है। इन सब के बीच एक भावुक करने वाली तस्वीर भी सामने आई। एक मासूम बच्ची पानी से घिरे एक घर में फंस गई थी, जिसे स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र का पालघर इलाका मानो बारिश का एपिसेंटर बन गया है। जब से महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री हुई है, ये इलाका डूबा डूबा नजर आ रहा है। पालघर के सफाले इलाके की तस्वीर देखिए। रेलवे स्टेशन की पार्किंग, बाजार और रिहायशी इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में मानसून से मचे त्राहिमाम की कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और बदलापुर में लगातार बारिश से उल्लास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है और बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है।
2: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिछले चार दिनों से तेज बारिश हो रही है। बारिश का असर इस तरह है कि शहर के निचले इलाकों में भारी जल जमाव की समस्या देखी जा रही है। साथ ही शहर के बीचों बीच बहने वाली उल्लास नदी भी अपनी उफान पर है। मैं इस समय कल्याण के उल्लास नदी के पास में खड़ा हूँ। ये उल्लास नदी बदलापुर अमरनाथ उल्लास नगर से होते हुए कल्याण के शहर के बीचों बीच बहती है। बता दें कि शहर के बीचों बीच बहने वाली यह नदी अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आने वाले समय में अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो ये सीधा पानी शहर में घुसेगा और लोगों के लिए समस्या पैदा करेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, प्रशासन ने उन्हें अलर्ट कर दिया है और उन्हें कहीं और जाकर रहने के लिए कहा गया है।
1: उधर मावल में इंद्रायणी नदी उफान पर है और निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। लोनावला में जल भराव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं अकोला में मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बीच कुछ तस्वीरें राहत और रोमांच की भी सामने आई। वसई विरार में कई युवा सड़कों पर भरे पानी में बारिश का आनंद लेते नजर आए। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में अगले 24 घंटे तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: देश भर में मॉनसून का क्या असर है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी देश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से मुस्तफा शेख और साथ ही जम्मू से सुनील जी भट्ट जुड़ेंगे, अहमदाबाद से अतुल तिवारी और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज। तो आपको बताते हैं क्या हाल है अलग अलग जगहों का, लेकिन शुरुआत मुंबई से, क्योंकि मुंबई की खबरें सबसे ज्यादा चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। मुस्तफा, आज क्या हाल है? ऑरेंज अलर्ट है, लोग क्या घरों से बाहर निकल भी रहे हैं?
3: देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं चार से पांच दिनों से जिस तरह की भारी बरसात जो है मुंबई और आसपास सटे इलाकों में हो रही है, जिस तरह की आप स्टोरीज हमने अभी दर्शकों को दिखाई, वो हालात के चलते एक तरह से लोगों में थोड़ा डर का माहौल है। कल बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, आज मुंबई में बारिश थमी हुई है लेकिन हवा जो है वो अभी भी जोरों से चल रही है। मुंबई में भी आज स्कूलों को छुट्टी दी गई है और बिना
0: मुस्तफा थोड़ी तस्वीर दिखाएं, आपके पीछे शायद समंदर है उसमें किस तरह की लहरें हैं थोड़ा दिखाएं।
3: जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि मुंबई में और बारिश थमी हुई है लेकिन क्योंकि अलर्ट दिया गया है लोगों को घर से बाहर ना निकले, इस तरह की बात की गई है। और मुंबई से सटे इलाके जैसे थाने में इसी तरह का अलर्ट है। कर्जत लोनावक्त बीच में जो लैंडस्लाइड हुआ था उससे रेलवे की यातायात ठप हो गई थी, जो अभी भी एक तरह से पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। मुंबई पुणे जाने वाले टनल पे मिसिंग लिंक पे कल एक मलबा गिर गया था टनल के पास, उसका मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो बारिश का प्रकोप एक तरह से रहा है उसमें पेड़ गिरने की बातें हो, उसमें घर गिरने की बात हो, उसमें पानी भरने के जो समस्या है, ये सारी चीज़ों को लेकर आज कह सकते हैं कि पूरे जुलाई के महीने में जितनी बारिश मुंबई को मिलनी थी वो सिर्फ चार दिनों में मिल गई है। चार महीनों की बारिश जो है वो सिर्फ आप कह सकते हैं 60% बारिश चार महीनों की अभी मिल चुकी है। तो इस तरह की जब बारिश आएगी तो वो आपदा का कारण बनती है और वो कहीं ना कहीं जो आपदा है मुंबई में चार से पांच दिनों में देखी गई है। आज बारिश कम है, हवाएं चल रही है लेकिन फिलहाल स्थिति में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, इसलिए सिचुएशन को आगे दिन भर मॉनिटर किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल, जरा सी थमी नहीं बारिश की, लोग निकल आए हैं बीच पर, हम ये देख सकते हैं। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं अहमदाबाद का, जहां पर हमारे साथ अतुल तिवारी जुड़े हुए हैं। अतुल, वहां पर स्थिति क्या है, क्योंकि गुजरात में भी भारी बारिश और हादसों की लगातार खबरें आती रही हैं।
4: बिल्कुल, अगर गुजरात की बात करें तो अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट दिया हुआ है और खास करके गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। अगर रेड अलर्ट की बात करें तो दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग और तापी में रेड अलर्ट है, जबकि जूनागढ़, भावनगर और गिर सोमनाथ जो कि इलाके सौराष्ट्र के हिस्से हैं वहाँ पे रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। बीते अगर 24 घंटों की बात करें तो गुजरात के लगभग 34 जितने जिलों के अंदर 225 तालुकाओं में बारिश दर्ज की गई है, लेकिन पूरे सीजन की यानी कि मॉनसून सीजन की औसत बारिश की बात करें तो अब तक 21% बारिश गुजरात में दर्ज की जा चुकी है, जो कि जून के मुकाबले जो भी जून में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि 70% बारिश की कमी दर्ज की गई है वो लगभग अब तक पूरी तो हो चुकी है। बारिश की बात करें तो अब तक 21% बारिश गुजरात में दर्ज की जा चुकी है, जो कि जून के मुकाबले जो भी जून में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि 70% बारिश की कमी दर्ज की गई है वो लगभग अब तक पूरी तो हो चुकी है, लेकिन अगले 48 घंटों तक मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बारिश पड़ सकती है। खास करके अमरेली में बीते अगर 48 घंटों की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अमरेली स्टेट हाईवे के ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पे पानी के तेज बहाव की वजह से स्टेट हाईवे था वो दो हिस्सों में बट गया, जिसकी वजह से यातायात को सीधे तौर पर असरग्रस्त हुआ। लेकिन कई सारे ऐसे भी गांव हैं जहां पे एक साथ जो मूसलाधार बारिश हुई है, 4 से 5 इंच कई जिलों के अंदर बारिश हुई है, वहां उन गांवों के अंदर जो रोजमर्रा की जो कामकाज है उस पर सीधे असर पड़े है। नवसारी की बात करें तो स्कूलों में छुट्टी दी गई थी, सूरत में आज भी रेड अलर्ट दिया गया है। लगभग 24 घंटों की बात करें तो गुजरात के अलग अलग हिस्सों में
0: बिल्कुल उधर पहाड़ों में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। सीधा रुख करते हैं सुनील जी भट्ट का, जो कि अखनूर में मौजूद है। सुनील, आप बताएं वहां स्थिति कैसी है?
5: जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि पिछले दो दिनों से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जो है भारी वर्षा हो रही है और इसके कारण जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन हुआ है, कई स्थानों पर जो है बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। खासतौर पर अगर हम बात करें डोडा और किश्तवाड़ जिलों की, वहां पर जो है काफी ज्यादा बारिश हुई है और वहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। और किश्तवाड़ में भी जो अगर हम देखें तो जो सड़क मार्ग है वो टूट गया, वहां पर मलबा धंस आया। और अगर हम डोडा की बात करें तो बीती रात को वहां काफी ज्यादा ज्यादा बारिश हुई और ठाठरी जो इलाका है वहां पर फ्लैश फ्लड्स आए हैं और वहां पर कई मकानों को काफी क्षति भी हुई है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू संभाग के अखनूर शहर में और यहां ये चिनाब नदी है, मैं चिनाब नदी के तट पर हूं। यहां पर देखिए कि जो चिनाब नदी है जिसको कि चंद्रभागा नदी जिसका प्राचीन नाम है, यहां का जल स्तर भी जो है अगर हम देखें पिछले कई दिनों की तुलना में बढ़ गया है। अभी भी अगर हम देखें तो आसमान में बादल मंडरा रहे हैं और ये अनुमान लगाया गया है कि आज भी यहां काफी वर्षा होने जा रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको लगातार यहां की तस्वीरें भी दिखाए। नदी का जल स्तर जो है बढ़ चुका है और साथ ही में जो जल प्रवाह है वो भी काफी तीव्र है। हालांकि अगर हम देखें तो फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में है, अभी खतरे के निशान के आसपास तो जल स्तर नहीं है, लेकिन चूंकि जल स्तर में थोड़ा जो है बढ़ावा हुआ है इसलिए प्रशासन भी लगातार जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लेकिन अगर हम बात करें जो पहाड़ी क्षेत्रों की तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है स्थिति काफी विषम है। खासतौर पर डोडा जिले की अगर हम बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, वहां पर जो है कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और जो रिहायशी इलाके हैं वहां क्षति हुई है। ठाठरी इलाके की बात अगर हम करें तो बीती रात को काफी बारिश हुई थी और वहां पर जो कई मकान हैं उनको क्षति हुई है और जो बाजार हैं, जो सड़कें हैं वहां पूरी तरह जलमग्न हो गए, वहां पर मलबा धस आया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको यहां की तस्वीरें दिखाई। ये जो चिनाब नदी है ये किश्तवाड़ डोडा से ही बहकर आती है और यहां अखनूर पहुंचती है और यहां फिर भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके ये नदी जो है फिर पाकिस्तान चली जाती है। फिलहाल यहां पर अगर हम देखें तो स्थिति तो नियंत्रण में है लेकिन प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है क्योंकि पिछले दो दिनों से बारिश काफी ज्यादा हुई है इसीलिए।
0: चलिए सुनील, अब रुख करते हैं चंडीगढ़ का। अमन, उत्तर भारत जाहिर तौर पर अछूता नहीं है मानसून के प्रकोप से, वहां स्थिति कैसी है ये बताएं।
6: देखिए बारिश आइसोलेटेड प्लेसेस में हो रही है, अगर पंजाब हरियाणा और हिमाचल की इकट्ठी बात की जाए तो हरियाणा और पंजाब में ऑरेंज और येलो अलर्ट है। हरियाणा में येलो अलर्ट ज्यादातर पार्ट्स में और पंजाब में ऑरेंज प्लस येलो अलर्ट है। जो हिस्सा पंजाब का ज्यादातर या नदियों से लगता है या हिमाचल से टच करता है वहां पर असर ज्यादा है क्योंकि कच्चे बांध कुछ टूटे हैं, जैसे मानसा के अंदर, संगरूर के अंदर इक्का दुक्का इंसिडेंट सामने आए हैं, पठानकोट के अंदर वाटर लॉगिंग की सामने आई है एक और दो बरसात से ही जो पिछले दो से तीन दिनों में हुई है। और वहीं हिमाचल के जो

0: ट्रक है, ट्रोला है, जो कुचलता हुआ आगे गया है, इस तरह से रेलिंग को तोड़ता हुआ। देखिए ये रेलिंग है और रेलिंग को तोड़ता हुआ निकला है। गरीब परिवार के बच्चे थे, उनके माँ बाप थे, माँ बाप घायल हैं, उन्हें भर्ती कराया गया है। 3 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है कहा जा रहा है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो ये ट्रक है, ये ट्रक की हालत देखिए आप, किस तरह से ये ट्रक निकला है यहाँ पर कुचलते हुए। अब इसे क्रेन से लेकर जाया जा रहा है। ये रेलिंग है, इस रेलिंग को तोड़ता हुआ निकला है जो जिन बच्चों की, तीनों की मौत हुई है, उन्हें मॉर्चरी में रखा गया है जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल के। उनके माँ बाप थे वो घायल हुए हैं, उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मगर ये दिखा रहा है किस तरह से अनियंत्रित होकर ये इतना बड़ा ट्रोला वहाँ खड़े हुए बच्चों और परिवार वालों को कुचलता हुआ निकला है। ये बड़ा हादसा है और दिल दहला देने वाला हादसा है अंजलि। और जयपुर में आप देख सकते हैं ये है, जयपुर अजमेर हाईवे है और ये जयपुर शहर को टच करता हुआ
1: शरद शरद इस तरह का जो ट्रक हम देख रहे हैं ये साक्षात यमराज है। और अगर इसको चलाने वाला इसको नियंत्रण के साथ नहीं चलाएगा तो दिक्कत होगी। इसको चलाने वाले चालक के बारे में अभी क्या पता चल रहा है?
0: ये चालक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, मौके पर जो लोग थे उन्होंने पकड़ लिया उसको। लेकिन 3 बच्चों की मौत हुई है और दर्दनाक मौत हुई है, काफी दिल दहला देने वाले। और गरीब घर के बच्चे थे, बताया जा रहा है कि गुब्बारा बेचने वाले थे जिनकी मौत हुई है। और कई गाड़ियों को भी इसने टक्कर मारी है, केवल जो वहाँ खड़े थे लोग उनको नहीं कुचला है, कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी है। यहाँ पर जो हादसे के शिकार हुए हैं उन लोगों के अलावा बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। और ये व्यस्त अजमेर जयपुर हाईवे है जहाँ पर ये क्रेन के जरिए ट्रक को ले जाया जा रहा है। मगर मैं दिखा रहा हूँ सरकार की लापरवाही भी, देखिए आप अंजलि, लापरवाही मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेलिंग को तोड़ता हुआ ये निकला हुआ है ट्रक, बताया जा रहा है कि ये ड्राइवर लापरवाही में, इस तरह से ये खुला हुआ नाला था, ये पूरा नाला जो है टूटा हुआ खुला हुआ था और इसके नाले के ऊपर वो उसका पहिया चढ़ा और धंस गया। वहां से निकालने के चक्कर में वो अनियंत्रित हुआ है और इस तरह से यहाँ पर घटना घटी है। जहां पर और भी तलाश की जा रही है कि क्या कोई और लोग भी इसमें नाले के अंदर कोई बच्चा हो सकता है क्या, तो आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के जो जवान हैं अंजलि, उन्हें उतारा गया है नीचे खोजने के लिए कि क्या कोई और भी इसमें फंसा हुआ हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे थे और बच्चे गुब्बारा बेचने वाले थे, और यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है जो रेस्क्यू का काम कर रही है। इस नाले में कहीं कोई फंसा हुआ तो नहीं है, इसे भी खोजने की कोशिश की जा रही है। तो आप अपने आप में दिखाता है कि ये NHAI में भी बड़ी लापरवाही है कि इतना व्यस्त, इतना महंगा टोल वसूला जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह से खुला नाला था और खुले नाले में ये हादसा हुआ है। जी अंजलि
1: बिल्कुल, सिर्फ बात खुले नाले की नहीं है, पेडेस्ट्रियंस जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनका एक्सेस कैसे हो जाता है हाईवे पे, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो बच्चे और उसका उनका परिवार वहां सड़क किनारे क्या कर रहा था उस वक्त,
0: मैं दिखाना चाहूंगा अंजलि। यहाँ पर देखिए ये पंखा है, इस तरह से ये बेचते हैं और ये गुब्बारा है और इस तरह से छोटे छोटे सामान ये बेचते हैं। आपको गुब्बारा हाथ में गुब्बारा दिखाई देगा, ये गुब्बारा है, इस तरह से फुलाकर ये बेचते हैं। गरीब परिवार के बच्चे थे यहाँ पर, और कई सब्जियां भी आपको दिखाई देगी, पानी का बोतल दिखाई देंगे यहाँ पर आपको। तो इस तरह से यहाँ पर लोग खड़े थे, हालांकि पुलिस वाला कहना है कि गुब्बारा बेचने में तो बेच ही रहे थे, लेकिन ये गांव भी जा रहे थे। आपको चप्पल दिखाई देगा, मसाले हैं, सोच गरीब परिवार के लोग आलू और मसाले भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और किस तरह से यहाँ पर उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा है लापरवाही की वजह से। अब किसकी लापरवाही कहा जाए, क्योंकि नाला भी खुला था और यहीं पर जो ये जगह है यहाँ पर अक्सर बसें रुक
1: जी शरद
0: से लोग यहाँ पर आते हैं बस पकड़
1: जी शरद बिल्कुल बेहद शर्मनाक है ये कि हमारे देश में आज भी सड़कों पर लोगों की जान जा रही है और वो भी एक हाईवे जहां ये मौत हुई है। 3 बच्चों की मौत बताया जा रहा है हो गई है। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और जानकारी लेकर आएंगे।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
8: अरे वाह तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
9: हाँ क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
8: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
9: अर्ज किया है
8: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
10: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
8: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
11: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
12: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: आज सुबह में रुक करते हैं बड़ी खबर का। जयपुर में एक ट्रक ने सड़क किनारे पूरे परिवार को कुचल डाला है। हादसे में 3 बच्चों की मौत हुई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जयपुर अजमेर रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने 100 मीटर तक रेलिंग तोड़ते हुए आगे बढ़कर गुब्बारा बेचने वाले एक परिवार को रौंद डाला। हमारे सहयोगी शरद कुमार हमारे साथ लगातार उसी जगह से जुड़े हुए हैं जहां ये हादसा हुआ है। सीधा उन्हीं का रुक करते हैं। शरद, इस एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा हमें जानकारी और दें।
1: देखिए, 9:15 बजे के आसपास अंजलि, इस तरह से यहाँ पर एक ट्रॉला था और यहाँ पर कुछ बच्चे थे जो खड़े थे यहाँ पर गुब्बारा बेचने वाले। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से इनके ये गरीब बच्चों के मसाला और ये गुब्बारा देखिए, कुछ कपड़े भी हैं इनके पड़े हुए हैं। इस तरह से गुब्बारा फुला के बेचने वाले थे। सब्जियां पड़ी हुई है, पानी का बॉटल पड़ा हुआ है। ये 3 बच्चे अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर खड़े हुए थे और इस तरह से ऊपर चढ़ा है ट्रैक्टर ट्रोला और ये कुचलते हुए सबको लेकर आगे निकल गया है। यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है। बच्चों के बर्तन भी आपको दिखाई देंगे, गरीब बच्चों के। यहाँ पर देखिए किस तरह से इस पर ट्रोला चढ़ा है। ये खुला नाला था, इसे टूटता हुआ निकल गया है और रेलिंग को तोड़ता हुआ निकला है। जबरदस्त ढंग से यहाँ पर एक्सीडेंट करता हुआ, उसके माँ बाप भी घायल बताए जाते हैं जिन्हें सवाईमान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके अलावा 3 बच्चों की मौत हो गई है। ये देखिए रेलिंग है, रेलिंग के अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो ट्रक था जिसे लेकर यहाँ पर पुलिस वाले जा रहे हैं। किस तरह से ये यमदूत बना है और क्या स्थिति है, अजमेर जयपुर हाईवे है जहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ है और ये इतना बड़ा सीमेंट से लदा हुआ ये ट्रक है जो कुचलता हुआ चला गया है। इस ट्रक की स्थिति को आप देखिए कि किस तरह से ये अमदूत बना है और यहाँ से ये वो ट्रक है जो लोगों को चलता हुआ गया है यहाँ पर। और जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नरेश जी, ये क्या मामला था, कब कितने बजे हुआ और कितने लोगों की मौत हुई है?
2: ये लगभग 9:15 बजे की बात है। ये टोला दिल्ली की साइड से और अजमेर की ओर जा रहा था तो यहाँ रोड के साइड पर ही नाले के पास में 3 बच्चे और एक दंपति खड़े थे। 3 बच्चों इन्होंने उन्हें कुचल दिया। 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई है और दंपति को इलाज के लिए SMS हॉस्पिटल में एडमिट कर
1: दिया है उनकी। अभी
2: जानकारी कर रहे हैं, अभी पहुंचे हैं, उपचार चल रहा है उनका।
1: देखिए, जो दोनों दंपति कहा जा रहा है कि चपेट में आए हैं उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। इसलिए जयपुर में कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा है जिस तरह से यहाँ पर यही अजमेर जयपुर हाईवे है जो कनेक्ट करता है जयपुर में। यहीं से आप जयपुर में घुसेंगे और ये हाईवे किंग किनारे यहाँ पर एक अस्थायी बस स्टैंड बना हुआ है। इस अस्थायी बस स्टैंड के पास लोग बस पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं। गरीब परिवार के बच्चे जो
0: जी शरद बेच रहे दिक्कत थे। यही है कि इस तरह के अस्थायी बस स्टैंड बन जाते हैं और वो भी सीधा हाईवे पर। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। राम मंदिर ट्रस्ट के 124 करोड़ रुपए के इवेंट खर्च SIT की जांच के दायरे में आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस जांच में जनवरी 2024 का प्राण प्रतिष्ठा समारोह वो भी शामिल है, 2025 की महाकुंभ व्यवस्थाएं और नवंबर 2025 में आयोजित ध्वजारोहण समारोह शामिल हैं। हम सब जानते हैं कि ये कितने अहम इवेंट थे। इन सब में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, बड़े बड़े नेता मौजूद थे और अब ये सारे इवेंट जो है इन पर किया हुआ खर्च करीब 124 करोड़ रुपए का खर्च SIT की जांच के दायरे में आ गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। जो जो इवेंट अब तक हुए हैं और भव्य बड़े इवेंट हुए हैं 2024 के हों या 2025 के हों, इन सब पर अब SIT की नजर रहेगी। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या इनमें भी कोई घोटाला हुआ, किस तरह का खर्च हुआ, इसका ऑडिट किया जाएगा, आय व्यय सबका हिसाब लिया जाएगा, महाकुंभ की व्यवस्था हो या प्राण प्रतिष्ठा हो, समारोह हो जिसमें हर देश का गणमान्य व्यक्ति वहां मौजूद था, उस पर नजर रखी जाएगी। और हाल ही में हुआ ध्वजारोहण समारोह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव। समर्थ, ये बहुत प्रतिष्ठित और अहम इवेंट्स थे, समारोह थे जिन पर अब नजर रखी जाएगी।
3: बिल्कुल खास जानकारी आज तक के हाथों लगी है और एसआईटी के सूत्र ये बताते हैं कि बड़ी तरीके से जो वित्तीय अनियमितता है क्या हुई है या नहीं हुई है उसकी जांच भी अब कहीं ना कहीं एसआईटी के दायरे में आ रही है। पिछले दो सालों में जो बड़े इवेंट्स हुए हैं जिसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, ध्वजारोहण कार्यक्रम है, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे बड़े इवेंट समारोह हुए हैं जिसमें मोटा मोटा 124 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। अब एसआईटी जो है वो ये पता लगाने में लगी है कि 124 करोड़ जो रुपया खर्च हुआ है वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। जो रिकॉर्ड सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की तरफ से मिले हैं उसमें चाहे टेंट हो, चाहे प्रचार प्रसार हो राम प्रतिष्ठा का, या अन्य जो चीजें हैं उनमें सजावट में है उनमें दिखाया गया। और जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही लगभग 113 करोड़ रुपए ट्रस्ट यानी कि जो प्रतिष्ठा हुई है उसमें ही खर्च हुआ है। इसके अलावा जो ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ था पिछले ही वर्ष उसको लेकर भी चर्चा है, उसके भी जो कहीं ना कहीं एसआईटी को ये लगता है कि कहीं यहां पर वित्तीय अनियमितता तो नहीं है, कहीं जो खर्चे जो हुए हैं वो मानकों के अनुरूप तो नहीं हुए। तो ये सारी चीजें हैं जो एसआईटी के रडार पर हैं और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है जो सीए हैं ट्रस्ट के उनसे भी एसआईटी संपर्क करेगी, रिकॉर्ड्स निकलवाएगी, जो परचेजिंग वाउचर्स हैं उनको भी देख सकती है, इसके अलावा जो पेपर्स हैं वो देखेगी, कहां कहां खर्च हुआ है ये देखेगी। इवन कई जानकारियां इस तरह की मिल रही हैं किन किन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके जिनसे ये काम कराए गए हैं एसआईटी के अधिकारी और अयोध्या की पुलिस उनसे भी संपर्क कर सकती है। तो ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो एसआईटी का दायरा है, कल हमने देखा कि किस तरीके से अनिल मिश्रा का नाम उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है और ये कहा गया बड़ा चेहरा पार्टी एक तरीके से ट्रस्ट का अनिल मिश्रा है। अभी तक जिनकी अरेस्टिंग हुई है वो छोटे चेहरे हैं, चाहे वो टिन्नू यादव हो, चाहे वो अनुकल्प मिश्रा हो, चाहे वो और कोई हो, लेकिन कल जिस तरीके से रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम सामने आता इतना तो साफ है कि फिलहाल इसमें कोई बचने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री का भी निर्देश ऊपर से साफ है कि कोई कठोर कार्रवाई इस मामले में होगी। कल ट्रस्ट की बैठक में भी जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने साफ कहा है, नृत्य गोपाल दास जो अध्यक्ष हैं वो काफी नाराज हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में अगर अनियमितता इस लेवल पर हुई है एसआईटी की जो रिपोर्ट में जो चीजें जो कि फाइनल रिपोर्ट है, देखिए हमने जो कल दिखाया है वो शुरुआती रिपोर्ट है, अब जो रिपोर्ट आएगी वो फाइनल रिपोर्ट होगी, फाइनल रिपोर्ट में यह भी एक दायरा माना जा रहा है होगा जिसमें कि जो जिस तरीके से पैसा खर्चा हुआ है पिछले दो साल में राम मंदिर के इवेंट्स में समारोहों में उनको भी रडार में लिया जाएगा। एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि एसआईटी का दायरा बढ़ रहा है और लोगों से भी पूछताछ होगी। और अगर आपको घर का कल का घटनाक्रम बता दूं तो तमाम सुरक्षा कर्मी है जिनसे एसआईटी ने कल पूछताछ की है। जी
0: जी शुक्रिया इस बड़ी जानकारी के लिए। तो दायरा बढ़ गया है अब एसआईटी का। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। गुजरात में मॉनसून अब राहत नहीं दे रहा है बल्कि आफत बनता जा रहा है। वडोदरा, सूरत, वापी और नवसारी समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित होते हुए देखा जा रहा है। कहीं सड़कें नदी बन गई हैं, कहीं गाड़ियां पानी में फंस गई हैं, तो कहीं पेड़ गिरने से हादसे हो रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
4: फिर गुजरात में बारिश का कहर। सबसे पहले बात वडोदरा की। यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश से रावपुरा, नागरवाड़ा, मुक्तानंद, पत्थरगेट और मांडवी समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया जबकि मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सूरत नवसारी रोड पर भारी जल भराव देखने को मिला। पुराने आजियो के पास पानी से भरे गड्ढे में एक बस फंस गई जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूरत में एक विशाल पेड़ चलती कार पर गिर गया जिसमें कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पेड़ हटाया। वापी में भी सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। कई इलाकों में जल भराव के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित रही। दूसरी ओर नवसारी और डांग जिले में बारिश ने अलग तस्वीर पेश की। गांव चारों तरफ पानी से घिर गया जिससे एक बारात घंटों तक रास्ते में फंसी रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार बारिश के बीच कई जगह झरनों पर भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जल भराव वाले इलाकों और पुराने पेड़ों के आसपास जाने से बचने की अपील की है। फिलहाल गुजरात के कई जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत और बचाव दल तैनात है और लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की जा रही है।
0: तो क्या हालत है गुजरात में ये हम आपको दिखाते हैं। किस किस इलाके में खतरा है, कहां कहां रेड अलर्ट है, कहां कहां ऑरेंज अलर्ट है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, भरूच, दमन, दादर नगर हवेली, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव, ये वो इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन सब इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट भी है, ये थोड़े कम डिग्री का, लेकिन छोटा उदयपुर, नर्मदा, वडोदरा, राजकोट, जूनागढ़ और बुताद में बताया जा रहा है कि ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर भी चेतावनी ही है, लोगों को ख्याल रखना होगा। और येलो अलर्ट के इलाके भी देख लीजिए, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, पंचमहल और दामोद, तो ये इलाके हैं जिन पर येलो अलर्ट है। साथ में आपको बता दें कि इन इलाकों में भी हल्का खतरा रहता है। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अतुल तिवारी का, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, कई इलाकों में रेड अलर्ट भी है, ऑरेंज अलर्ट भी है, तो किस तरह की सावधानी बरत रहे हैं वहां पर लोग और प्रशासन भी?
5: देखिए, बीते अगर 48 घंटों की बात करें तो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई शहर और जिलों में लगातार बारिश दर्ज की गई है। अब तक सीजन की कुल औसत बारिश की बात करें तो 21% जितनी बारिश दर्ज हुई है उसमें सबसे ज्यादा बारिश सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में दर्ज की गई है। सौराष्ट्र की बात करें तो अमरेली, जूनागढ़, भावनगर, गिर सोमनाथ, ये वो जिले हैं जहां पे लगातार बीते 48 घंटों से बारिश हो रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा बारिश बीते 48 घंटों की बात करें तो दक्षिण गुजरात के नवसारी और सूरत में भी दर्ज की गई है। कल सूरत की बात करें तो सूरत सिटी में लगभग 5 इंच जितनी बारिश दर्ज हुई, जिसमें कई सारी ऐसी तस्वीरें आई जहां पे पेड़ भी गिर गए। कई सारी जिलों और गांवों की अगर बात करें तो बारिश की वजह से जो नदियां हैं वो उफान पे हो, इस तरह की तस्वीरें सामने आई। कई डैम के दरवाजे खोलने की जरूरत पड़ी है। साथ ही में नवसारी की भी बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान यानी कि कल स्कूल में भी छुट्टियां दे दी गई थी, तो आज भी मौसम विभाग की तरफ से दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़, डांग और तापी के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही में सौराष्ट्र के भावनगर और अमरेली के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही में गिर सोमनाथ की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन बचाव का कामकाज की भी बात करें तो जो बीते 48 घंटों के दौरान तस्वीरें सामने आई है, कई सारी कार जो है बहते पानी में बहती हुई उनकी तस्वीरें सामने आई है, कई पशु बहते हुए उनके भी वीडियोस वायरल हुए हैं। लगातार जो रेस्क्यू अभियान है, फायर ब्रिगेड की टीम हो या स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा राहत अभियान चलाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की तरफ से जिन गांवों में जलभराव की स्थिति है उनको स्थानांतरित भी करवाया जा रहा है। लेकिन अगर अगले 24 से 48 घंटों के बाद की बात करें तो लगभग बारिश कहीं ना कहीं विराम ले रही हो, इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन अगले 24 घंटे बारिश को लेकर अगर बात करें तो भारी से भारी बारिश की चेतावनी सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के लिए दी गई है।
0: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब आपको तस्वीर दिखाते हैं रायपुर इलाके से, क्योंकि भारी बारिश की वजह से हर जगह त्राही त्राही देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, किस तरह से उफान दिख रहा है वहां पर रायपुर में, नदी ऊपर से जा रहा है पुल और पानी जो है वो काफी ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका है। तो ये तस्वीर है रायपुर से लेकर आ रहे हैं आपके लिए। और इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हमारी सहयोगी सोनी राजपन, आपसे जाना चाहेंगे सुमी, ये जो पानी देख रहे हैं हम, तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या खतरे के ऊपर बह रहा है या इस वक्त स्थिति नियंत्रण में है?
6: जी बिल्कुल, अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पिछले 48 घंटों की बात करें तो पिछले 48 घंटों में रेड अलर्ट जारी किया गया था सेंट्रल छत्तीसगढ़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों में, लेकिन अभी की बात करें तो पिछले 24 घंटे से जो स्थिति है वो काफी नियंत्रित है। और रायपुर के कई इलाके जो ऐसे वाटर बॉडीज जो भर चुके थे और जो डेंजर लाइन से ऊपर पहुंच चुके थे वो भी अभी नीचे आ गए हैं डेंजर लाइन से। और रायपुर के कई ऐसे इलाके हैं जो पानी से जल भराव जिन सारे इलाकों में आ गया था वो सारे इलाके अभी फिलहाल जल भराव से ग्रसित नहीं है, क्योंकि अभी पिछले 24 घंटों में बारिश नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद जो वेदर डिपार्टमेंट है उसने एक अलर्ट जारी किया हुआ है और वो येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। कुछ 11 जिले हैं छत्तीसगढ़ के सेंट्रल हिस्से के, उन 11 जिलों में येलो अलर्ट है। और बताया जा रहा है कि बस्तर के भी कुछ 4-5 जिले हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो रेनफॉल है वो हो सकता है और इनफैक्ट विंड गस्ट भी चलेगा। तो इस तरह की स्थिति अभी बताई गई है। लेकिन पिछले 48 घंटों में काफी ज्यादा भारी बारिश देखी गई, उसकी वजह से कई ऐसे इलाके थे जिनमें जल भराव होने की वजह से लोगों को काफी काफी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा और इन सारे इलाकों में अभी फिलहाल स्थिति जो है सामान्य बताई जा रही है, लेकिन आने वाले कुछ समय में बताया जा रहा है कि स्थिति जो है वापस से गंभीर हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में फिलहाल अगर इस वक्त की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 18% कम बारिश हुई है इस बार, और वो कहीं ना कहीं फार्मर्स को चिंता की एक उसमें स्थिति में जरूर डालता है। लेकिन अगर रायपुर शहर की बात करें तो कई सारे इलाकों में जलभराव जो हुआ था वो अभी फिलहाल नीचे आ चुका है।
0: जी सुमी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर भी आफत का दौर जारी है। आपको उत्तराखंड के गंगोत्री की तस्वीरें आप दिखाते हैं, जहां हाईवे पर मलबा आने के बाद लंबा जाम लग गया। ये स्थिति अक्सर पहाड़ों में देखने को मिलती है जब सड़कों पर इस तरीके से मलबा आ जाता है, क्योंकि पहाड़ धसक जाता है या लैंडस्लाइड हो जाता है, चट्टानें ऊपर से नीचे गिर जाती हैं, और जब मलबा नीचे आता है तो दोनों तरफ से गाड़ियों को रुकना पड़ता है पहाड़ों में। हालांकि इसके लिए व्यवस्था भी होती है, जल्द ही जेसीबी बुलाई जाती है, रास्ते को खाली कराया जाता है, लेकिन ये हाईवे है गंगोत्री का जहाँ ये स्थिति देखने को मिली। और प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर है, द्विपक्षीय वार्ता के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको ले चलते हैं।
7: कोलैबोरेशन, फिफ्थ लेटर ऑफ इंटेंट फॉर द कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ प्रंबनन टेंपल कॉम्प्लेक्स इंडोनेशिया। Sixth, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Telecommunications, Technologies and Services. Seventh, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Medical Products Regulation. Eighth, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Agriculture. Ninth, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Management and Technology Utilization in Elections. 10th, Memorandum of Understanding on Research, Technology and Innovation Cooperation. And then contract signing for BrahMos Missile Defense System between BrahMos and the Ministry of Defense. Next, Air-to-Air Missile Cooperation Agreement between Bharat Dynamics and Republic Corp. Following our next Memorandum of Understanding between Non-Ferrous Materials Technology Development Center Midwest LTDs and PT Perusahaan Mineral Nasional. Also, strategic joint venture between Steel Authority of India and PT Krakatau Steel. And the last, Memorandum of Understanding between Indian Institute of Management Bangalore and PT Intelligensi Grahatama. The announcement of the Memorandum of Understanding between the two respected governments has concluded. We will now proceed with a joint press statement. To begin, we invite the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto, to deliver the first remark.
8: Yang Mulia, Perdana Menteri Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India, para menteri dan anggota delegasi kedua pemerintahan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat datang kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi di Jakarta. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menyambut kembali Yang Mulia di Indonesia, negara yang telah lama menjadi sahabat dekat bangsa India.
0: हम आपके लिए सीधा लेकर आ रहे हैं इंडोनेशिया से, जहां प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर हैं। पीएम मोदी इंडोनेशिया में कई अहम MOUs पर साइन करने के लिए वहां पहुंचे हैं, जिन पर यह साइन हो चुका है। दोनों देशों के बीच लगातार व्यापार बढ़ता रहा है और अब दोनों देशों के बीच सामरिक समझौते भी हो रहे हैं, जिसकी जानकारी इस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दे रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी वहां मौजूद हैं, कुछ वक्त बाद वो भी संबोधन देंगे। अहम हो जाता है क्योंकि सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, जिससे बनाकर बेचने की तैयारी है भारत की तरफ से इंडोनेशिया को, एयर टू एयर मिसाइल के कुछ और रक्षा समझौते भी हैं जो हो सकते हैं कि साइन किए जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। प्रणय, मिनरल, स्टील, ये सब तो अहम है ही, ट्रेड तो अहम है ही, लेकिन सामरिक लिहाज से देखें, अगर भारत का मेड इन इंडिया किस तरीके से अब एक्सपोर्ट के एक नए अध्याय को जोड़ रहा है वो बताएं।
9: निश्चित रूप से दक्षिण पूर्व एशिया की यदि आप बात करें तो चाहे फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो और अब इंडोनेशिया, भारत के बड़े जो है रक्षा उत्पाद खरीदार के तौर पर उभरे हैं। और इनफैक्ट अगर आप अस्त्र मिसाइल की बात करें जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, इस मिसाइल का पहला खरीदार जो है वो इंडोनेशिया हो सकता है। इसके संबंध में प्रधानमंत्री मोदी की जो इंडोनेशिया की इस समय यात्रा चल रही है और जो द्विपक्षीय वार्ता है उसके अंदर महत्वपूर्ण समझौते और जो प्रक्रिया है उसकी उसकी अपेक्षा की जा रही है। इसके अलावा ब्रह्मोस की जो एक्स्ट्रा बैटरीज है वो इंडोनेशिया खरीद सकता है। और हमने देखा है कि किस तरीके से फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया तीनों ही देशों की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसकी खरीद को लेकर न केवल दिलचस्पी दिखाई गई है बल्कि जो अतिरिक्त ऑर्डर्स हैं उनकी भी प्रक्रिया इस समय चल रही है। और अगर आप जिसका आपने जिक्र किया, भारत तेजी से उभरता हुआ एक रक्षा निर्यातक जो है वो इस इलाके के अंदर साबित हो रहा है। भारत के जो रक्षा उत्पाद हैं वो विभिन्न देशों को जो है सप्लाई किए जा रहे हैं और एक मजबूत दावेदार के तौर पर रक्षा बाजार के अंदर भारत की दावेदारी और भारत की भागीदारी बढ़ती जा रही है। भारत वो देश जिसे आमतौर पर अभी तक माना जाता था कि वो है अपना 80% जो उत्पाद है वो आयात करता है, लेकिन अब वो एक बड़े निर्यातक के तौर पर भी उभर रहा है।
0: बिल्कुल, और ये अहम हो जाता है कि भारत जब निर्यात करता है, ये जो देश भारत से खरीद रहे हैं इसको, वो एक तरीके से इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और क्वालिटी है अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। प्रणय, इन देशों के पास ऑप्शन ये भी था कि वो यूरोपीय देशों से लें, अमेरिका से लें, तो क्या वजह रही है कि उन्होंने भारत के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है उन्हें चुना है?
9: देखिए अंजलि, कोई भी देश जब अपने रक्षा उत्पादों का चयन करता है या अपनी सामरिक जरूरतों के लिए किसी हथियार की खरीद करता है तो वो बहुत सारी चीजों को तौलता है। वो ये भी देखता है कि क्या वो सिस्टम उसकी रक्षा प्रणाली के अंदर इंटीग्रेट होने लायक हैं, हो सकते हैं। इसके अलावा उसे ये भी देखना होता है कि उस देश के साथ उसके सामरिक संबंध, उसकी जो रक्षा साझेदारियां हैं वो कितनी हैं, उसकी फॉरेन पॉलिसी में किस तरह, बहुत सारे पहलू होते हैं। लेकिन भारत के उत्पादों के चयन के पीछे एक सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण कारण है, एक उनका किफायती होना और दूसरा उनका जो है रिलायबल होना, क्योंकि हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाहे अस्त्र मिसाइल हो चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, उन्होंने अपनी ताकत साबित की है और दुनिया के बाजार में सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उभरी है। क्योंकि HQ-9 और HQ-16B जैसे जो एयर डिफेंस प्रणालियां थी चीन की, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों को न तो रोक पाई न किसी तरीके से उनका प्रतिकार कर पाई, जो पूरी दुनिया ने देखा। और यहाँ अगर आप देखें कि अस्त्र मिसाइल खरीदने के पीछे जो इंडोनेशिया का कंसिडरेशन है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि उनके पास में भी सुखोई लड़ाकू विमान है और भारत अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल सुखोई लड़ाकू विमानों में करता है। और इंटीग्रेटेबल जो कंपोनेंट होता है, यानी क्या मिसाइल जो है, जो एयर टू एयर मिसाइल है, वो मौजूदा लड़ाकू विमानों के अंदर इंटीग्रेट की जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन और एक फैक्टर होता है। लेकिन निश्चित रूप से ये भारत और इंडोनेशिया को न केवल करीब लाता है बल्कि 2018 के अंदर दोनों देशों ने जो अपनी सामरिक साझेदारी, अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का फैसला किया था, उसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर तब्दील किया था, उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और आज जिन समझौतों का ऐलान किया गया है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण फैसला जो है मैरिटाइम कोऑपरेशन का भी है। आप जानती हैं कि इंडोनेशिया भारत के बेहद नजदीक में है, हिंद महासागर के इलाके में है और इस इलाके के अंदर जो मैरिटाइम कोऑपरेशन है, यानी जो समुद्री आवाजाही है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या यहाँ पर तालमेल करना हो या डोमेन अवेयरनेस, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसके अंदर भारत और इंडोनेशिया एक समान न केवल हित रखते हैं बल्कि दोनों की जो चिंताएं हैं वो भी लगभग समान है। और यही वजह है कि हाल ही में, यानी प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से ठीक पहले, इंडोनेशिया में जो इंडोनेशिया ने भारत के अंदर जो इंडियन ओशन जो इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर है
0: उसमें आपके पास लगातार लौटते रहेंगे। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
14: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
15: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
14: Smartless.
16: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
14: Marketplace.
17: Big three on the program today, or, you know, the big three of
14: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
18: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
19: Money, money, money, money, every month.
20: Soch batlo aur bank bhi.
21: हमने तब भी सवाल किया था।
22: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
21: हम आज भी सवाल करते हैं।
22: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
21: ऑपरेशन अग्नि,
22: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
21: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
23: In association with
24: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: एसआईटी जांच के दायरे में 124 करोड़ के सभी बड़े इवेंट, प्राण प्रतिष्ठा से ध्वजारोहण तक सभी हाई प्रोफाइल समारोह के खर्च का होगा ऑडिट। शुरुआती रिपोर्ट में नोट छिपाने, फुटेज हटाने समेत गबन के 70 मामले।
1: राम मंदिर कलंकांड के बाद चंपत की छुट्टी। कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा चंपत राय बेदाग, गरीबियों पर भरोसा करना उनकी गलती। 3 लोगों की कमेटी करेगी सीईओ की नियुक्ति।
0: मॉनसून ने मुंबई को बनाया बंधक, स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं रद्द, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम। कल्याण में सड़क धसी, पुणे में लैंडस्लाइड, केस से भीषण तबाही, गुजरात के कई शहर जलमग्न।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। जकार्ता में पीएम मोदी बोल रहे, सुनाते हैं।
2: पिछले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। फ्रेंड्स, हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड्स हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। स्पेस सेक्टर में भी हमारे बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आज स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रिजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। फ्रेंड्स, कल राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्यकार्ता में प्रमाणन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमाणन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम दोनों देश गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा। फ्रेंड, लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशन्स के बीच MOU से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया है। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम टू स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर इंडोनेशिया एमास और विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे आप। अलग अलग विषयों पर उन्होंने कहा कि कैसे संबंधों को मजबूत और प्रगाढ़ किया जा सकता है इंडोनेशिया के साथ। 10 से ज्यादा समझौते यहां पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। कूटनीति के लिहाज से उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे का सहयोग करें। युवा ऊर्जा से भरपूर देश है इंडोनेशिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौते का जो आदान प्रदान है उसके बाद तकनीकी सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में व्यापारिक साझेदारी का भी उल्लेख किया कि आसियान में भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है इंडोनेशिया, और चाहे पाम ऑयल, कोयला, रबर, खनिज आयात हम करते हैं, जबकि हम पेट्रोलियम उत्पाद हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे मशीनरी निर्यात करना हो, ऑटोमोबाइल हम इंडोनेशिया को भी देते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उस सप्लाई चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशन के बीच में भी गहरा सहयोग है और हमारा भविष्य साझा समृद्धि है। इतिहास का भी उन्होंने जिक्र किया कि हमारे रिश्ते अच्छे चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ यूपीआई का भी आज जिक्र हुआ है। भारतीय यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से अब जुड़ेगा।
0: इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गोविंद देवगिरी से बातचीत की मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने।
3: नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं गोविंद। नेतृत्व में ही कल ट्रस्ट की बैठक हुई और इस्तीफे भी स्वीकार हुए। महाराज जी, कल जो बैठक हो गई उसके बाद उस बैठक से जो नतीजा निकला है उसमें है कि दोनों लोग अब बाहर हैं ट्रस्ट से, आजीवन बाहर हैं, दोबारा नहीं आएंगे। और इस पूरे कल की बैठक में एक चीज दिखी कि चंपत राय को पूरी तरीके से क्लीन चिट दी गई और यही एसआईटी की रिपोर्ट में भी दिख रहा है। क्या कहेंगे आप?
4: यह हमारा आंतरिक विश्वास है कि इस संपूर्ण कार्य को जिन्होंने पहले दिन से खड़ा किया है और जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
3: तो निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, 79 लाख से ज्यादा कैश पकड़ा गया, आप उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह है, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई?
4: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है। उनके अंतकरण के हित तो ही निश्चित रूप से स्थिर है।
3: नहीं तो आप मानते हैं कि उनका अहंकार कहीं ना कहीं हावी रहा है, क्योंकि कहा जाता है वो अक्खड़ जिद्दी किस्म के रहे, किसी को उन्होंने नहीं सुनी और ये भारी पड़ा।
4: इसको अहंकार अहंकार शब्द का प्रयोग करना मैं ठीक नहीं मानता हूँ। निश्चित रूप से वे जिद्दी है, वे अपनी ही बात सुनते हैं। ऐसा भी नहीं कि सभी मामलों में उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं, अनेक मामलों में सुनते थे, अनेक मामलों में नहीं भी सुनते थे, ऐसा रहा है। तो जहाँ पर वो जिद कर लेते थे अपनी ही चलाते थे, ऐसा है।
3: तो अब क्या उनकी पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से बाहर हैं, अब दोबारा उनकी एंट्री नहीं होगी?
4: ऐसा ही आज तो है,
3: आज ऐसा ही है।
4: हा?
3: SIT की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को बहुत जिम्मेदार ठहराया गया है, उनके नाम है, लेकिन चंपत राय के नाम नहीं है। तो अनिल मिश्रा दोषी है आपको लगता है?
4: दोषी है कि नहीं ये SIT निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। SIT जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है?
3: लेकिन आप कहते हैं कि वो भोले हैं, तो इतने भोले रहे कि सब कुछ हो गया, आपको लगता है इतनी बड़ी आस्था से खिलवाड़ हो गया, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंची है?
4: आप किसके बारे में बोल रहे हैं?
3: मैं चंपत राय जी के बारे में पूछ रहा हूं।
4: हाँ।
3: करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था पर चोट पहुंची है, ट्रस्ट को धक्का लगा है, तो आपको लगता है कि वो इतने भोले हैं, ये सब चीजें होती गई और कुछ नहीं हुआ? भोला शब्द आपने इस्तेमाल किया है।
4: बिल्कुल, भोले का अर्थ ये होता है कि जिस कठोरता के साथ अपने भी लोगों को दूर करना चाहिए, उनकी निगरानी रखनी चाहिए, ये वो नहीं कर पाए, ये तो असावधानी है, इसी को मैं भोलापन कहता हूँ।
3: लेकिन महाराज जी, जो SIT ने जांच की है उसमें 45 दिनों का CCTV ही मिला, 70 चोरियां उसमें हुई, कहा जा रहा है कि बहुत पुराने जो फुटेज हैं वो सब के सब ओवरराइट हो गए, डिलीट हो गए। अब SIT की जांच के बाद आपको लगता है कि आपका जो ट्रस्ट है इस पर लोगों का भरोसा जागेगा?
4: निश्चित रूप से जागेगा, क्योंकि भूले तो सब स्थानों पर होती है, भूलों को सुधारने का प्रमाणिक प्रयास किया जाता है कि नहीं ये देखना चाहिए, और इसलिए आज लोगों के मन में जो आशंका निर्माण हुई है वो तो हुई है, लेकिन हम इससे बढ़िया काम करके दिखाएंगे और लोगों का विश्वास निश्चित रूप से रहेगा। बहुत बड़ी मात्रा में ये अविश्वास निर्माण करने का प्रयास किया गया और इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया गया, और हम लोग इस एक संकट को भी पार कर जाएंगे, हमारा विश्वास है।
3: अब महाराज जी, एक सवाल और है कि क्या ट्रस्ट जो बना है वो कैसे अब काम करेगा, क्या इसमें CEO होंगे, और किस तरीके से आप लोगों ने इसको सोचा है कि अब आगे ये काम करेगा ट्रस्ट?
4: आरंभ से हम लोगों का ये सोचना रहा कि ऐसे काम को देखने के लिए एक CEO यहाँ पर होना चाहिए जो प्रशासनिक और ब्यूरोक्रेटिक सारी डिसिप्लिन कठोरता के साथ अमल में लाता हो, इस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता रही, उसको हम लाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक समिति बनाई है, वो समिति हमारे सामने 3 लोगों के नाम देगी, उसमें से चयन हम लोग करेंगे।
3: महाराज जी, एक सवाल और आता है कि चूंकि आप कोषाध्यक्ष थे, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है?
4: निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि मैंने Day 1 से ही उधर ध्यान दिया नहीं, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना, ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, यहाँ हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, ये स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो SOP भी LBI के साथ बना वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, मुझे भी वह इस महीने देखने मिला।
3: आपको लगता है कि कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे?
4: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है, तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। धन्यवाद
3: महाराज जी। आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि क्या चंपत आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
4: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
3: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को भाई? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज
5: जी?
6: नहीं सर, प्लीज अभी
3: नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया महाराज जी बात करने के लिए।
1: तो दान खबर में गोविंद देवगिरी, जिन्होंने आज तक के साथ बातचीत की, हालांकि अंतिम सवाल का जवाब

0: के साथ ये तर्क दे रहे कि मैं तो अयोध्या में रहता ही नहीं, दूसरा वो मेरा विभाग भी नहीं था, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था, वो हुंडियों का मामला था, वहां मैं तो कोष की सारी जिम्मेदारियां देखता था, लेकिन कोष तक पहुंच रहा जो पैसा जिसमें इतना फ्लक्चुएशन था, कभी जो है ज्यादा आया करता था वो कम होता चला गया, वो भी कहीं ना कहीं देखा नहीं गया, लेकिन कहा कि इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन साथ साथ में एक क्लीन चिट भी कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, यानी कि चंपत राय को अभी क्लीन चिट देते दिखाई दे गोविंद।
1: चंपत राय माफी मांगे गए नहीं, इस सवाल पर उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा, वहां से वो जाने लगे और दान गबन में उन्होंने कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो राजीव एक एक करके सभी अपना पल्ला झाड़ते, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अब धीरे धीरे चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, एक सीईओ का अपॉइंटमेंट होगा इस पूरे दान गिनती के मामले में, और जो प्रक्रिया पहले थी उसमें कई त्रुटियां थी, उसमें सुधार किया जाएगा ताकि अब आगे गबन या फिर चोरी की स्थिति ना पैदा हो। सामान जो जमा किया जाता था उसकी जिम्मेदारी उनकी थी, ये उन्होंने जरूर माना, लेकिन माफी मांगने के सवाल पर चुप्पी साध गए। उन्होंने कहा कि जिस दिन इस्तीफा दिया गया था उसी दिन वो स्वीकार हो गया था, इसके बावजूद हमें ये मालूम है कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई चंपत राय के खिलाफ नहीं हुई है, सिर्फ इस्तीफे से काम चल गया है, ना उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना उनके नाम किसी भी एफआईआर में दर्ज है। तो ये वही चंपत राय हैं जिनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा था, जो करता धरता थे।
0: तो माफी मांगने के सवाल पर हालांकि चुप्पी साधे रखे और उन्होंने कहा कि जो कोष में जमा हो रहा है और जो कोष से जा रहा है, जो खर्च हो रहा है, आय और व्यय, मैं वहीं तक मेरी जिम्मेदारी सीमित है, उस पर मेरे निगरानी रहती थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, काफी प्रयास आपने किया कि अंतिम सवाल का जवाब दे दें, लेकिन उस अंतिम सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन एक सवाल यह कि ट्रस्ट के सदस्य आप भी क्लीन शीट चंपत राय को लगातार दे रहे हैं कि हमें लगता है कि वो पाक साफ है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई, और सिर्फ उन्होंने नहीं, आपने खुद भी, यानी कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों ने भी अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई।
2: नहीं बिल्कुल राजीव, देखिए इसमें एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि चंपत राय को पूरी तरीके से क्लीन चिट, जितने लोग हैं सब चंपत राय के समर्थन में खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। अनिल मिश्रा को लेकर के जरूर ये कह रहे हैं कि भाई अगर एसआईटी उनको दोषी पाएगी तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी एसआईटी करेगी। उनका यह भी कहना था कि चंपत राय का स्वभावगत ऐसी चीजें हैं, यानी कि उनका इशारा उनके अहंकार की तरफ था कि वो किसी की नहीं सुनते थे, यहां तक कि उनके बातचीत से ये भी लगा कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट के भीतर के जो सदस्य हैं उनकी भी आपस में नहीं बन रही थी। ये जरूर है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया कि मेरी कहीं कोई इसमें जिम्मेदारी बनती है। अपनी तरफ से इन्होंने सफाई देते हुए ये भी कहा कि मैं तो यहाँ कभी कभार आता जाता था, मेरा सिर्फ जो बैंकों में पैसा जमा है उसके आय और व्यय तक ही मैं सीमित था। जो रोज के रोज चीजें हो रही थी, जो रोज के खर्चे हो रहे थे, जो दान पेटियों में आ रहा था, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। हालांकि ये गले उतरने वाली बात नहीं है, लेकिन ट्रस्ट को भी अब ये लगने लगा है कि ट्रस्ट के भीतर अब ट्रस्ट नहीं है। हालांकि नए तरीके से उन्होंने बात की है कि अब ट्रस्ट नए स्वरूप में दिखाई देगा, सीईओ की जो नए सीईओ की पहले से कोशिश चल रही थी ये भी उन्होंने कहा। अब देखना यह है कि इसके बाद ये होता क्या है बेसिकली।
1: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका वक्त। यहां पर एक छोटे से ब्रेक का उछला है, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. One heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
8: आगे आगे
9: उधर
8: करेक्ट करेक्ट। मिल गया। आपके पास दो ऑप्शन है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
6: छक्का
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
10: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंद बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।

0: और यूपीआई शुरू होगा ईवीएम ब्रह्मोस की बड़ी डील।
1: एसआईटी जांच के दायरे में 124 करोड़ के सभी बड़े इवेंट प्राण प्रतिष्ठा से ध्वजारोहण तक सभी हाई प्रोफाइल समारोह के खर्च का होगा ऑडिट। शुरुआती रिपोर्ट में नोट छिपाने फुटेज हटाने समेत गबन के 70 मामले।
0: राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत राय की छुट्टी। कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव आज तक से बोले कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी, गबन में मेरी कोई भूमिका नहीं। चंपत राय बेदाग, कमेटी करेगी सीईओ की नियुक्ति।
1: हाहाकार मानसून ने मुंबई को बनाया बंधक। स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं रद्द, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम। कल्याण में सड़क धस गई, पुणे में लैंडस्लाइड से तबाही, गुजरात में भी कई शहर जलमग्न।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय और वहां पर स्कूली बच्चों से मिलते हुए दिखाई दिए हैं और साथ में उनके सुभियंतो भी हैं और स्कूली बच्चे हाथों में झंडा लिए हुए जिसमें एक तो जकार्ता का और एक हिंदुस्तान का, एक भारत का झंडा उनके हाथों में है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद गर्मजोशी के साथ, स्नेह के साथ, सहजता के साथ स्वागत किया है नन्हे बच्चों ने। और
0: इंडोनेशिया का जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी को तो दिया गया, इसके साथ साथ बहुत अहम करार भी दोनों देशों के बीच में हुए। लेकिन इस बीच में ऐसा लगता है कि सभा स्थल से जो बाहर जाने का रास्ता है वहां पर तमाम बच्चे, स्कूली बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे, हाथ में उनके दोनों ही देशों के झंडे हैं। ये दोनों ही देशों के रिश्तों का भी एक तरीके से प्रतीक है और उनसे मिलते हुए, एक एक बच्चे से मिलते हुए दोनों ही देशों के
1: जब भी जो प्रमुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद। इससे पहले प्रधानमंत्री के संबोधन में आपने सुना था कि कैसे दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, द्विपक्षीय वार्ता हुई है और ऐसे में जो प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया दौरा है बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर भी अहम बातचीत यहां पर बताई जा रही है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच अब से दो दिन के दौरे में कई ऐसे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और महत्वपूर्ण घोषणा ये भी प्रधानमंत्री की ओर से कि वहां पर अब भारत का पेटीएम इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ का आईएम वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से।
0: तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करेंगे अयोध्या दान चोरी मामले की।

0: अयोध्या में राम मंदिर चुरावे की चोरी का प्रबंधन संभालने वाले ट्रस्ट की कल पहली बैठक हुई। बैठक में भविष्य में ऐसे अपराध ना हो इस पर मंथन हुआ, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट बताती है कि अयोध्या में कैसे नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई।
1: एसआईटी ने अपनी जांच में जो कुछ भी पाया वो तो आंखें खोल देने वाला है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि ट्रस्ट की नाक के नीचे सब कुछ हुआ और वो आंखें बंद करके सब कुछ देखते रहे।
2: जेब में चोरी के नोट, जूतों में चोरी के नोट, सीसीटीवी में चोरी के सबूत, एसआईटी रिपोर्ट में चोरी के डिटेल। अयोध्या में चोरों ने कैसे रामधन पर हाथ साफ किए, कैसे आंखों में धूल झोंक कर चंदा लेकर चंपत होते रहे, इसकी पूरी डिटेल अब सामने आ गई है। एसआईटी की रिपोर्ट में चोरी प्रकरण का पूरा ब्यौरा दर्ज हो गया है। विशेष जांच दल की शुरुआती जांच में कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में गिनती कक्ष के अंदर कई बार कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां और खुले रुपए अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य स्थानों पर छिपाते देखा गया। जांच रिपोर्ट में ऐसे करीब 70 संदिग्ध मामलों का उल्लेख किया गया है। जांच में साफ हुआ कि चढ़ावे की चोरी कोई एक दो दिन से नहीं बल्कि कई दिनों से एक व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक गिनती कक्ष में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। प्रवेश और निकास के समय तलाशी नहीं ली गई। कर्मचारियों के निजी सामान पर प्रभावी नियंत्रण नहीं था।
3: उनकी लापरवाही, असावधानी, इतने समय तक चलना, ये गंभीर बात है, ये नहीं होना चाहिए।
2: एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक कई हंडियों की नकदी मिलाकर गिनी जाती थी और मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड एवं सत्यापन में भी गंभीर खामियां पाई गईं। चढ़ावा चोरी में एसआईटी ने 6 लोगों की प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाई है। इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकूल मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणाश पांडे, रमाशंकर मिश्र का नाम शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच से पहले ही कुछ कर्मचारियों से करीब 78,94,000 रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा 4 जून 2026 को गिनती कक्ष से लगभग 2,25,000 रुपए की अतिरिक्त बरामदगी का भी उल्लेख किया गया है। एसआईटी को अपनी जांच में आरोपी कर्मचारियों के बैंक खातों में उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक नकद जमा और वित्तीय लेन देन मिले हैं। एसआईटी ने इसकी जाँच की जरूरत बताई है। अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने सीसीटीवी निगरानी, एसओपी के अनुपालन, तलाशी व्यवस्था और पर्यवेक्षण में गंभीर लापरवाही पकड़ी है। इसी वजह से चोरी और गबन जैसी घटनाओं को रोकने में नाकाम हुई। रिपोर्ट में मूल्यवान वस्तुओं के प्रबंधन और रिकॉर्ड प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे की जाती थी इसकी डिटेल अब सामने आ चुके हैं। आज तक मिली रिपोर्ट डिटेल के अनुसार ये मालूम चला है कि मंदिर में कैश बॉक्स, जिसमें दान की रकम गणना के बाद रखी जाती है, उनके ट्रांसपोर्टेशन और बॉक्स के नंबरिंग ट्रैक की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। किस दिन किस उंडी में कितने बक्से आए, कितने की गणना हुई, कितने शेष रह गए, किस उंडी के किस बॉक्स में कितने जेवरात मिले, इसका कोई लेखा जोखा, कोई रिकॉर्ड नहीं था।
1: अब एसआईटी ने कई गंभीर खामियां पाई हैं, जैसे कि बहुमूल्य वस्तुओं को अलग रखने के लिए उनको अलग करने के समय, वजन, फोटोग्राफी, सीलिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि रामशंकर यादव यानी टिन्नू यादव के पास चढ़ावा पात्रों की चाबियां थी, चाबियां उसके पास थी जो कि अनाधिकृत और खतरनाक था।
0: एसआईटी को मिले 40 दिन के लेखे जोखे में सीसीटीवी में 70 बार चोरी होते हुए दिखाई दी है। 4 जून 2026 को ट्रस्ट को बाथरूम से 2,25,000 रुपए बरामद हुए। 15,000 की नौकरी करने वाले आरोपियों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में कैश जमा हुआ, एफडी कराई गई, कई बड़े लेन देन हुए। ट्रस्ट के द्वारा सुरक्षा के मूल मानकों का पालन नहीं किया गया। कर्मियों के आने जाने की तलाशी नहीं ली गई। बिना जेब वाले कपड़े पहनने के नियम का भी पालन नहीं किया गया। मोबाइल फोन, चाबी जैसे निजी वस्तुएं साथ में रखने पर कोई पाबंदी नहीं थी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लागू नहीं किया गया। गणना कक्ष में खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं थी।
1: तो किसी भी नियम का पालन ही नहीं हुआ, किसी भी नियम के। एसआईटी की जो रिपोर्ट है उससे बता रही हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, मतलब इसमें तो ट्रस्ट के सदस्यों पर बहुत गंभीर आरोप है एसआईटी के रिपोर्ट, मतलब सबने आंखें मूंदी रखी या जानबूझकर आंखें बंद की गई थी, लेकिन अभी सिर्फ नाम जिसका आ रहा है वो अनिल मिश्रा का आ रहा है और चंपत राय का, नैतिकता बाकी किसी में जागी नहीं अभी तक।
4: देखिए राजीव, अनिल मिश्रा का नाम तो पूरे एक पन्ने में है, और एक तरीके से सारे जो जो जो यहाँ पर पैसे का इधर उधर हुआ है उसके लिए अनिल मिश्रा को जिम्मेदार एक तरीके से मान लिया गया। चंपत राय का कोई जिक्र इस पूरे रिपोर्ट में कहीं नहीं है, लेकिन जितनी गंभीर खामियां एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाई हैं, बताई हैं, उससे इस ट्रस्ट का कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा अधिकारी अछूता नहीं रह सकता। जिस तरीके से अनिल मिश्रा के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, उन्होंने ली थी, और आज जिस तरीके से गोविंद देव गिरी ने कहा कि चंपत राय किसी और की सुनते नहीं थे, वो सब काम खुद ही करना चाहते थे, वो सब काम खुद कर लेने को कहते थे कि खुद ही कर लेंगे, और ऐसी स्थिति में ये होना लाजमी था। तो एसआईटी की रिपोर्ट अपने आप में बहुत खतरनाक इशारे कर रही है कि जिस तरीके से पूरा का पूरा ये कांड हुआ, चाहे 70 बार 45 दिन में चोरी दिखाई दी हो, इसके अलावा जो पहले सीसीटीवी के फुटेज थे वो सब के सब ओवरराइड हो गए, वो सब मिट गए, तो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि ये पूरा कांड चढ़ावा चोरी का सामने आ गया है। एसआईटी की रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। नाम के तौर पर बड़े नाम में जितने भी चाहे टिन्नी यादव से लेकर जो तमाम नाम हो वो हो, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम सबसे ऊपर आ गया है, और अब लगता है कि कानूनी कार्रवाई से वो बच नहीं पाएंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ट्रस्ट की कल की बैठक में सबसे हैरानी वाली बात यह रही कि ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय का बचाव करते दिखाई दिए। चंपत राय को लापरवाही का जिम्मेदार ना तो बताया गया है, अब तक उन्हें सिर्फ बचाया जा रहा है।
2: राम मंदिर के साथ ही ये तस्वीर भी राम भक्तों के जेहन में दर्ज हो गई है। चढ़ावा चोरी के खुलासे के एक महीने बाद ट्रस्ट की बैठक होती है, मंथन होता है, आस्था से विश्वासघात आगे ना होने पाए इसके उपायों पर माथापच्ची होती है, लेकिन ये सारी कवायद चंपत राय को क्लीन चिट देने पर आखिरकार खत्म हो जाती है।
5: ट्रस्टियों ने विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना, ये विश्वासघात जो हुआ है ये हमारे चंपत राय जी के, जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं, उन्होंने गलत लोगों का विश्वास किया और उन लोगों को इतने वर्षों तक अपने पास पाला, उन लोगों के द्वारा किया गया ये ट्रस्ट का विश्वासघात।
2: एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि चढ़ावे की रकम कैसे खुलेआम लूटी जाती रही, और जिस ट्रस्ट पर इसकी सुरक्षा का जिम्मा था वो कैसे कुंभकर्ण की भांति गहरी नींद में सोता रहा, लेकिन कल की बैठक में ट्रस्ट का सारा जोर अपना दामन पाक साफ बताने पर लगा रहा। जरा देखिए कैसे उन चढ़ावों का प्रदर्शन हो रहा है जिनके चोरी चले जाने के आरोप लगे थे। रामायण की प्रति, ये काक भुशुंडे, ये चांदी का हार, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष एक एक कर मीडिया को दिखाते रहे और अपनी पीठ खुद थपथपाते रहे, ये बताते रहे कि चढ़ावे को कैसे सुरक्षित और सहेज कर रखा गया।
3: जिस रामायण की चर्चा प्रसार माध्यमों में वो जोरों शोरों से हो रही है, और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं।
2: ट्रस्ट अब कह रहा है कि राम भक्त किसी के बहकावे में ना आए, खुद अयोध्या आए, अपनी आंखों से सब कुछ देखें, समझें और समझते बूझते ही अपनी राय बनाएं।
5: सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आवाहन करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए, और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। ये किया जाने वाला, खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य लाकर के रहेंगे।
2: चलिए मान लेते हैं कि चढ़ावे के ये सामान सुरक्षित हैं, तो क्या इससे ट्रस्ट की लापरवाही, उसका अपराध कम हो जाता है? ट्रस्ट का अब तक का एक्शन बता रहा है कि चंपत राय को बचाने की भरपूर कोशिश अब भी की जा रही है। लाख टके का सवाल है कि चंपत राय पर FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही? चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया तो मुकदमा क्यों नहीं?
5: उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया, उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब तक यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है, उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है।
2: कोई नहीं जानता चढ़ावे पर कितनी चपत अब तक लगाई जा चुकी है। रकम को लेकर सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी हुई है सिर्फ 8 लोगों की। क्या सिर्फ 8 आरोपियों के पूते ही इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया गया? संतोष शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
1: चोरी हो गई लेकिन अब भी उसे प्रपंच कहा जा रहा। हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव भी जुड़ गए। समर्थ, 2 लोग इस्तीफा दे चुके हैं, 2 लोग बाहर जा चुके हैं, लेकिन बाकी सभी लोग तो वहीं के वहीं हैं। जब ये ट्रस्ट में रहते हुए चोरी नहीं रोक पाए तो अब 2 नए लोगों के आने से ये कैसे चोरी रोक लेंगे? सवाल पूरे के पूरे ट्रस्ट पर है कि ट्रस्ट में नए सदस्यों को जुड़ जाने से क्या कार्यप्रणाली बेहतर हो जाएगी?
6: राजीव, देखिए ये सवाल हैं, कड़े सवाल हैं जो किए गए हैं। कमल नयन दास जो कि नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी भी हैं और हमने अभी उनसे खास बातचीत की और उनसे ये जब सवाल पूछे तो उन्होंने कुल मिलाकर यहाँ पर चंपत राय का बचाव किया, यानी कि उन्होंने कहा है कि एक खास जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि कल की जो बैठक हुई है उसमें जब ये चर्चा हुई कि चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकारना है या नहीं, तो जितने भी ट्रस्ट मेंबर्स थे सब इसके खिलाफ थे लगभग, यानी कि अधिकतर जो मेजोरिटी थी वो ये चाहती थी कि चंपत राय का इस्तीफा ना हो। चंपत राय बेकसूर हैं, उन्होंने अपना जीवन राम जन्मभूमि के लिए दिया है, चाहे बात मुकदमों की हो चाहे सड़कों के उस संघर्ष की हो, चंपत राय ही सबसे आगे रहे हैं। तो ये कमल नयन दास कहते हैं कि चंपत राय को फंसाया जा रहा है, चंपत राय के साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। तो एक बात तो साफ है कि ट्रस्ट पूरी तरीके से चंपत राय को बचाता दिख रहा है। हालांकि वहीं पर एक ट्रस्ट मेंबर की तरफ से कहा गया कि अगर आप बायलॉज की माने तो इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा कोई एक्सेप्टेंस और डिनाई वाले मोड में नहीं रहता है बल्कि तुरंत स्वीकार हो जाता है। तो इस बिना पर अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा जिस समय उन्होंने दे दिया उस समय से वो स्वीकार ही माना जाएगा। तो कुल मिलाकर अब जो है जिस पोजीशंस पर अनिल मिश्रा और चंपत राय थे वो अब नहीं है। अब बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कहानी केवल चंपत राय और अनिल मिश्रा तक ही है, क्या अन्य पदाधिकारी नहीं है? हालांकि गोपाल राव को इस वक्त जो है बड़ी खबर ये भी है कल बैठक में नहीं बुलाया गया और उनको हटा दिया गया है, मतलब ये एक और बड़ा नाम है। 3 लोगों से पूछताछ
0: हुई थी। जानकारी के लिए आपका समर्थ, इसी के साथ यहां रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। फॉरवर्ड होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। एकजे, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
8: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Me, baby, one more time. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

आम आदमी की जेब का बजट सबसे ज्यादा गाड़ियों के फ्यूल प्राइस से तय होता है। जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो रसोई से लेकर बाजार तक सब कुछ महंगा हो जाता है। तेल की हर बढ़ती कीमत सीधे आम आदमी की जेब पर डाका डालती है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच मई में भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम में हुए इजाफे ने हर किसी के लिए कार से लेकर घर चलाने तक सब महंगा कर दिया है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद वैश्विक बाजार से आई एक खबर लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर ओपेक देशों के बड़े फैसले के मुताबिक दुनिया के 7 बड़े तेल उत्पादक देश अगस्त से हर दिन 188,000 बैरल अतिरिक्त कच्चे तेल का उत्पादन करेंगे। अकेले सऊदी अरब और रूस मिलकर हर दिन करीब 124,000 बैरल ज्यादा तेल बाजार में उतारेंगे। वहीं इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान भी अपने उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आ रही लगातार गिरावट के बीच ये फैसला बेहद हैरान करने वाला है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मार्केट में तेल की बाढ़ आने वाली है, जिससे इसके प्राइस भी घटेंगे। दूसरी तरफ कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने के बावजूद चीन जैसे बड़े देशों में इसकी डिमांड काफी घट गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की वजह से भी सप्लाई चेन पूरी तरह सुधर गई है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में कमी भारत के लिए बड़ी विदेशी मुद्रा बचाने का मौका लेकर आएगी। सप्लाई की इस रिकवरी से भारत जैसे बड़े आयातक देश को सबसे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हमारी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल बाहर से आता है। कच्चे तेल की कीमतें कम होने का सीधा असर भारत के घरेलू मार्केट पर देखने को मिलेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए तेल की खरीद काफी सस्ती होने जा रही है, और ओपेक प्लस देशों के इस फैसले के बाद भारत के लिए कच्चे तेल का इम्पोर्ट बिल काफी कम हो जाएगा। वहीं सरकारी कंपनियों का घाटा खत्म होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती का रास्ता साफ होगा, और ईंधन सस्ता होने से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट घटेगी, जिससे सब्जियां और रोजमर्रा का सामान भी सस्ता हो जाएगा। ये बदलाव सीधे मिडिल क्लास परिवारों को राहत देने का जरिया बनेगा, जो महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा। साफ है कि ग्लोबल मार्केट में तेल का बढ़ता उत्पादन और घटती कीमतें भारत की आम ग्राहकों के बजट को आने वाले दिनों में बड़ी मजबूती देने जा रही है। आज तक ब्यूरो।

0: मानसून की पहले ही बारिश में माया नगरी मुंबई डूबने लगी है। शहर में जल निकासी के जितने दावे किए गए थे सब धराशायी हो गए। मुंबई में अगर कुछ है तो पानी, गंदा पानी, बरसात का पानी। बीते 4 से 5 दिनों में मुंबई का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां जल भराव नहीं हुआ हो। मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में आफत की भी दस्तक हुई है। शहर के VVIP इलाके भी डूबने लगे। अंधेरी ईस्ट हो, वेस्ट हो, विले पार्ले, जुहू, बांद्रा, बोरीवली, दहिसर, कुर्ला, हर जगह एक सा हाल है। भारी बारिश की वजह से बीती रात मुंबई के मानखुर्द में एक इमारत गिर गई जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। ये 3 मंजिला चौल थी। रात में पानी इतना बरसा कि इमारत की बुनियाद ही खिसक गई और इसमें रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई।
1: उस वक्त हम मौजूद हैं घटनास्थल पर, तस्वीर में देख सकते हैं ये वही ग्राउंड प्लस 3 मंजिला झोपड़ा था जो अचानक जो है रविवार रात करीब 8 बजे करीब जो है ढह गया। घटना के बाद से यहाँ पे जो है चीख पुकार मच गई थी। तुरंत ही मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और BMC के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए और उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
0: कहने को तो मुंबई भारत ही नहीं पूरे एशिया के सबसे धनाढ्य नगर पालिका है, अरबों का बजट है। बारिश और उससे होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए हर साल खूब रुपए खर्च होते हैं। बावजूद इसके मॉनसून में नागरिकों की जान जा रही है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 265 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। आज मुंबई के सभी स्कूल बंद हैं। खराब मौसम की वजह से मुंबई विश्वविद्यालय ने आज होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया है। अब जरा मुंबई से सटे पालघर की तस्वीरें भी देखिए। दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही दिखेगा। यहां कोई नदी नहीं है, न ही बाढ़ आई है, ये बारिश का पानी है। मूसलाधार बरसात से पालघर पानी पानी हो गया है। वसई पूर्व, वसंत नगरी, मधुबन जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई सोसाइटियों में पानी भर गया है। ये नवी मुंबई का उरण इलाका है। जहां पानी में घर है या घर में पानी, ये बताना मुश्किल है। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश ने नाले चोक कर दिए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों का कहना है कि हर साल यही होता है लेकिन जिम्मेदार विभाग सोया रहता है।
2: सांप तो बहुत आते हैं यहाँ पे। कल तो हम लोगों ने कम से कम 10-12 सांप मारे यहाँ पे ही। बहुत सांप है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर किसी को बाई चांस काट लिया तो हम लोग इतने पानी में से कहाँ पे लेके जाएंगे।
0: और अब पुणे की तस्वीरें भी देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से पुणे का भूसी बांध ओवरफ्लो कर रहा है। एहतियातन पर्यटकों के लिए बांध को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से लोनावला में झरने फूट पड़े हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई पुणे की ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड की वजह से ट्रेन के पहिए थम गए हैं। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी मलबा आ गया है जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। एजाज खान, मुंबई आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सर्वोच्च सम्मान के बाद बोले पीएम मोदी, भारतीय साझेदारी से विकास का नया अध्याय, इंडोनेशिया में IIM कैंपस और UPI होगा शुरू, EVM ब्रह्मोस की भी बड़ी डील। SIT जांच के दायरे में 124 करोड़ के सभी बड़े इवेंट्स, ब्रांड प्रतिष्ठा से ध्वजारोहण तक सभी हाई प्रोफाइल समारोह के खर्च का होगा ऑडिट। शुरुआती रिपोर्ट में नोट छिपाने, फुटेज हटाने समेत गबन के 70 मामले। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत के छुट्टे, कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव, आज तक से बोले कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी, गबन में मेरी भूमिका नहीं, चंपत राय बेदाग, कमेटी करेगी CEO की नियुक्ति। हाहाकारी मॉनसून ने मुंबई को बनाया बंधक, स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं रद्द, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, कल्याण में सड़क धंसी, पुणे में लैंडस्लाइड से तबाही, गुजरात के भी कई शहर जलमग्न। जयपुर में फिर दिल दहला देने वाला हादसा बेकाबू, ट्रक ने पूरे परिवार को रौंदा, अजमेर रोड पर दर्दनाक एक्सीडेंट में 3 बच्चों की मौत, मां बाप जख्मी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच पर SIT रिपोर्ट से करते हैं। कल SIT शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने ला चुकी है, उसकी रिपोर्ट सामने आई और SIT रिपोर्ट में कई लोगों पर उंगलियां उठाए गए हैं। इसमें ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनिल मिश्रा वित्तीय मामलों और नकदी संकलन के जिम्मेदार थे। SIT के मुताबिक अनिल मिश्रा ने सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं कराया, अनुपालन न होने की जानकारी होने के बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया। SIT ने अपनी जांच में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के पास चढ़ावा पात्रों की चाबियों का अनाधिकृत और खतरनाक पाया होना, चाबियां उसके पास थी और बिना किसी लिखित आदेश के टिन्नू यादव के पास में दान पात्रों की चाबी रहती थी। SIT को 40 दिन की CCTV में 70 बार चोरी होते देखी। SIT ने अपनी जांच में बड़ा खुलासा किया है कि पकड़े गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव प्रमुख तौर पर चोरी करते थे। और क्या क्या खुलासे हुए हैं बता रहे हैं आज तक संवाददाता संतोष शर्मा।
2: SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में जहां एक तरफ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम का जिक्र तक नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ अनिल मिश्रा को हो रही चोरी के लिए जिम्मेदार बताया। लापरवाही साफ तौर पर लिखी गई, वजह भी बताई गई कि अनिल मिश्रा ही वो शख्स थे जो ट्रस्ट की तरफ से बैंक के साथ हुए MOU में हस्ताक्षर करता थे और उन्हीं के पास पूरी रकम को न सिर्फ इकट्ठा कराने बल्कि बैंक में जमा कराने की जिम्मेदारी थी। इतना ही नहीं, SIT की रिपोर्ट साफ करती है कि पकड़े गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला और मनीष यादव ही वो थे जो लगातार चोरी कर रहे थे, खुले नोटों के साथ साथ गड्डियां चुरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा और लवकुश मिश्रा उसकी मदद कर रहे थे। इतना ही नहीं, SIT ने अपनी रिपोर्ट में रामशंकर यादव और टिन्नू यादव के पास हुंडी की चाबी होने पर भी एतराज जताया कि बिना प्राधिकार के टिन्नू यादव के पास हुंडी की चाबी होना खतरनाक होता था।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से चंपत राय की विदाई हो गई है। कल ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का कार्यकारी महामंत्री बनाया गया है। कृष्ण मोहन ने ही चढ़ावा चोरी के इस केस में FIR दर्ज करवाई थी। ट्रस्ट ने एक CEO की नियुक्ति का फैसला भी लिया है। CEO चुनने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। अब इस कमेटी में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत और सुरेश हावड़े शामिल किए गए।
3: राम मंदिर ट्रस्ट में अनिल मिश्रा और चंपत राय के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वो ट्रस्ट अब बदलाव के उस मुंडेर पर खड़ा है जहां नई नियम आने तय हैं। कल की बैठक में CEO का आना लगभग तय हो गया है, DM की पावर्स बढ़नी भी तय मानी जा रही हैं। इन सभी बातों से अंदेशा यही है कि अब पावर सेंटर केवल एक जगह नहीं रहेगा बल्कि ट्रस्ट का पावर सेंटर बटा हुआ रहेगा, यानी कि कुछ ऐसे प्रतिभाशाली पोस्ट होंगे जो पावर सेंटर के लोग होंगे जिनके निर्णय प्रभावी तौर पर जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ेंगे। कृष्णदास को फिलहाल जनरल सेक्रेटरी इंटरिम बनाया गया है, यानी कि कार्यकारी महासचिव। उन्होंने भी कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं चंपत राय का इस्तीफा कबूल होना चंपत राय के बुरे दिनों की शुरुआत। तो वहीं एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम आना, उन्हें जिम्मेदार ठहराना, संकट के बादल अनिल मिश्रा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मंडरा रहे हैं।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे की है। जकार्ता में पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान इंडोनेशिया गणराज्य के बिटांग आदिपूर्वा से सम्मानित किया गया। इस बीच पीएम मोदी ने इंडोनेशिया दौरे में इंडोनेशिया की सेना को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति करने के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और इंडोनेशिया के बीच में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ईवीएम पर भी समझौता हुआ है। इंडोनेशिया के लिए खास ईवीएम बनाने में भारत मदद करेगा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा ने भारत और इंडोनेशिया के सदियों पुराने संबंधों को ताकत का नया टॉनिक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान जहां इंडोनेशिया ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, तो वहीं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद ये निर्णय किया गया है कि इंडोनेशिया भारत से न केवल अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलें लेगा बल्कि भारत अस्त्र मिसाइल भी इंडोनेशिया को देगा। इसके अलावा दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल, व्यापार, निवेश, कारोबार समेत अनेक क्षेत्रों के अंदर आपसी साझेदारी को मजबूत करने का फैसला किया है।
0: इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के करोड़ों लोगों और इंडोनेशिया के आत्मीय संबंधों का सम्मान है।
5: आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट अहमदाबाद से। 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में गुजरात हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर मोहर लगाई है। सभी 38 दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। 11 दोषियों को आजीवन कैद बरकरार रखा गया है। हाई कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट मामले में 56 मृतक के परिवार वालों को 10 लाख, 200 से ज्यादा घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजे का आदेश भी दिया है।
6: अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखते हुए सभी 38 जो आतंकी थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी उस आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही में 11 आतंकियों को जिन्हें आजीवन कैद की सजा स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी उस सजा को भी गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। खास करके जो 56 लोगों की मौत इस सीरियल ब्लास्ट में हुई थी उन्हें 10 लाख का मुआवजा, साथ ही में 200 से अधिक लोग इस सीरियल ब्लास्ट में घायल हुए थे उन सभी के परिजनों को भी 1-1 लाख रुपए चुकाने का आदेश गुजरात हाईकोर्ट ने दिया है। खास करके इस पूरे मामले की अगर बात करें तो 2008 में 70 मिनट के अंदर अहमदाबाद के 21 जितने अलग अलग जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे जिनमें 56 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। स्पेशल कोर्ट ने साल 2022 फरवरी महीने में अपना फैसला सुनाया था जिसको चुनौती देते हुए मामला गुजरात हाईकोर्ट में पहुंचा था। गुजरात हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी 38 आतंकियों को फांसी और जो बाकी के 11 आतंकी थे उन्हें आजीवन कैद की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया है।
0: जयपुर में अजमेर बाईपास पर दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तेज रफ्तार ट्रक ने 100 मीटर की इस रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क किनारे खड़े परिवार को कुचल डाला। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मचा। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये ट्रक दिल्ली से अजमेर की ओर जा रहा था।
7: जयपुर अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। देखिए ये अमदूत बना हुआ ये ट्रोला किस तरह से यहाँ पर रेलिंग को तोड़ता हुआ निकला है और 3 बच्चों को कुचलता हुआ, बिल्कुल चिथड़े उड़ाता हुआ यहाँ से निकल गया। और वहाँ पर 2 पति पत्नी भी खड़े थे, एक दंपत्ति, उन्हें भी बुरी तरह से घायल कर दिया है। जिन्हें सवाई मान सिंह अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। ये स्थिति है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अजमेर जयपुर हाईवे है जहां पर ये जयपुर शुरू होता है और किस तरह से ये रेलिंग को तोड़ता हुआ निकला है यमदूत बनकर। आप देखिए इस स्थिति को, यहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ है। ये नेशनल हाईवे की बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर अस्थायी बस स्टैंड बनाकर रखा गया था, जहाँ पर वो बच्चे थे और दंपति थे, बस पकड़ने के लिए रुके हुए थे। ये यहाँ के बाद रेलिंग नहीं थी, ये नाला टूटा हुआ था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हादसे के बाद की स्थिति, ये पूरा टूटा हुआ है। और अजमेर जयपुर हाईवे पर अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि किन हालातों में यहाँ पर ये बर्तन है इनके, बच्चों के, जहां पर आप देख सकते हैं क्या स्थिति है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब खबर पश्चिम बंगाल से आपको देते हैं, जहां पर बारुईपुर में एक नाबालिग से रेप और मर्डर के केस में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने सूर्यापुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। वो पीड़ित परिजनों से मिले। बीजेपी के इस दल में पश्चिम बंगाल के मंत्री अग्निमित्रा पॉल और बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी शामिल थे। बारुईपुर रेप और मर्डर केस पर बंगाल की सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल में घमासान है। कल ममता बैनर्जी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बकायदा कैंडल मार्च निकाला था। उससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि पीड़ित परिवार से मिलने जाने चाहती थी, लेकिन पुलिस बाहर पहरा दे रही थी, उनको जाने नहीं दिया गया। और टीएमसी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि उनको नजरबंद भी किया गया था, लेकिन अब कल उन्होंने कैंडल मार्च भी किया।
8: बारुईपुर रेप और मर्डर मामले में सियासी गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले टीएमसी जो कि ममता बनर्जी का फैक्शन है, गुट है, उन्होंने दौरा किया। इसके बाद सीपीएम के लोगों ने भी इलाके का दौरा किया, कांग्रेस के लोगों ने भी दौरा किया, और आज सुबह सुबह बीजेपी का डेलीगेशन अग्निमित्रा पॉल और लॉकेट चटर्जी भी जो पीड़ित है उसके परिजनों से मिली और आश्वासन दिया कि इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। इसके साथ ही जो रितोब्रतो बैनर्जी का तृणमूल फैक्शन है, तृणमूल गुट है, उसके लीडर्स भी आज इलाके में पहुंचे हैं, परिजनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के भी आज इलाके में जाने की बात है। तो ऐसे में ये पूरा मामला फिलहाल सियासी हो चुका है। खास तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच एक सियासी जंग छिड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने कैंडल लाइट मार्च भी किया, इस पूरे मसले पर रैली भी निकालने की कोशिश कर रही है।
0: पटना में पुलिस ने अवैध हथियार और लग्जरी गाड़ियों के साथ 17 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सूचना उनको मिली थी कि पेशेवर अपराधी बैरिया बस स्टैंड के पास में एकत्रित होकर कब्जे की योजना कर रहे हैं, और ये जबरन जमीन कब्जा करने की इनकी प्लानिंग थी, लेकिन इसके बाद मौके पर छापेमारी कर दी गई। पुलिस ने 17 अपराधियों को एक साथ धर दबोचा। इनके पास है देसी कट्टा, इनके पास है स्कॉर्पियो गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी और 15 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, और अब आगे की कार्रवाई जारी है।
9: पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने भू माफियाओं के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है। पटना के बैरिया इलाके में जमीन कब्जे के लिए पहुंचे 17 लोगों को पटना पुलिस और एसटीएफ ने धर दबोचा। दरअसल ये पूरा मामला 47 कट्ठे जमीन पर कब्जे से जुड़ा हुआ है। पटना पुलिस और एसटीएफ को ये जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में बदमाश जो हैं वो जमीन कब्जे के लिए इकट्ठा हुए हैं और उनके पास हथियार भी है। इसके बाद कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में 17 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ये बता रही है कि इस पूरे जमीन कब्जे की साजिश सारण जिले के एक मास्टरमाइंड के इशारे पर रची गई थी। अलग अलग जगहों से तमाम बदमाशों को इकट्ठा किया गया था और एक बड़े गिरोह के तौर पर इकट्ठा होकर ये जमीन कब्जे की कार्रवाई को अंजाम देने वाले थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही एक्शन ले लिया।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में आकृति सुथार के संदिग्ध मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने सोसाइटी के आसपास लगे हुए सीसीटीवी की जांच की है, जिसमें वो अकेले आती जाती नजर आई है। पुलिस के मुताबिक आकृति ने शनिवार को गूगल पर सर्च किया था कि दूसरी मंजिल से गिरने पर मौत हो सकती है या नहीं। ये खुलासा उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री से हुआ है।
10: आकृति हमेशा खुश रहती थी, जीवन को लेकर के उसके पास कई प्लान थे, बेहद उम्मीदों से भरी उसकी जिंदगी थी, लेकिन इस दौरान 24 अप्रैल को उसकी शादी हो जाती है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। उसका गूगल सर्च हिस्ट्री बता रहा है कि मई महीने में उसने कई बार गूगल पर सर्च किया कि आसान तरीके से कैसे खुदकुशी किया जा सकता है। उसके बाद उसने सर्च किया कि अगर दूसरी मंजिल से कोई गिरता है तो क्या उसकी मौत होगी। इस तरीके के गूगल सर्च अब जांच में सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बेहद अहम सबूत साबित होगा।
0: अब बात करते हैं मानसून की, जमकर ये मुसीबत की बारिश हो रही है। खासतौर पर मुंबई की बात करें तो यहां पर आज जरूर बारिश से राहत है और मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जरूर जारी किया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए आज मुंबई के सभी सरकारी, प्राइवेट और नगर निगम के स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। नवी मुंबई और पालघर में भी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसी बीच में भूस्खलन के चलते पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे बंद था और मिसिंग लिंक को 18 घंटे से ज्यादा का समय बीता और उसके बाद अब खोल दिया गया। हालांकि दो लिंक ही इसमें खोले जा सके।
11: मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में बताया गया था कि आज ऑरेंज अलर्ट है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। हालांकि बारिश इस वक्त ज्यादा नहीं हो रही है, काले काले बादल जरूर मंडरा रहे हैं, तेज हवाएं समुद्र किनारे खासतौर से चल रही हैं और यही वजह है कि कोस्टल एरिया में आप देख लीजिए यहाँ पे पुलिस के लोग खड़े हैं और कोशिश इनकी यही है कि ज्यादा लोग समुद्र के किनारे नहीं जाएं। दरअसल हाई टाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3.5 मीटर की हाई टाइड बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ऑन ए प्रिकॉशनरी नोट लोगों को कहा गया था कि जैसे स्कूल्स जो मुंबई में खासतौर से बंद किए गए थे और साथ ही कहा गया था लोगों को वर्क फ्रॉम होम एनकरेज करने के लिए। ऐसा ही कुछ हाल नासिक में भी देखने को मिला जहां पर की वार्निंग दी गई थी कि तेज बरसात होगी, लेकिन बीच बीच में मध्यम बरसात हो रही है, ज्यादा बरसात नहीं हो रही है। ज्यादातर अगर IMD के जो इमेजेस अगर आप देखें तो ज्यादातर बादलों का जो क्लाउड है वो ज्यादा से ज्यादा गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ चला गया है, ऐसा दिख रहा है। और इस वक्त हालांकि IMD की वार्निंग है और कहा गया है कि तेज बरसात होगी, क्लाउड्स जरूर दिख रहे हैं लेकिन इस वक्त बरसात ज्यादा नहीं हो रही है और यही मुंबई के लोगों के लिए और महाराष्ट्र के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत है।
0: गुजरात के भी कई शहरों में आसमान से आफत बरस रहे हैं, यहां पर हाल लगातार बेहाल होता दिखाई दे रहा है। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद जिंदगी परेशान दिखाई दी, सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। ये एक तरीके से आधुनिक जलाशय दिखे क्योंकि सड़कें बना तो दिखे लेकिन साथ में ऐसा स्पेस नहीं कि पानी निकल सके, यानी कि निकासी की अच्छी व्यवस्था तो नहीं, पानी की बूंदें आई और वो सड़कों पर ठहर गए। लोग मजबूर क्योंकि घरों से बाहर जो निकले थे उनको घर भी लौटना था, कईयों को बाहर जाना था, तो उनको इसी पानी से होकर कुछ इस तरह से गुजरना पड़ा और यह हकीकत बन गई है हमारे देश के ज्यादातर हाईटेक शहरों के। अमरेली के राजूला में बारिश के बीच में 108 टीम की एक महिला मरीज की जान बचाई गई और चाच बंदर गांव में बीमार महिला बताया जा रहा कि बीमार महिला थी, पहुंचने के लिए डॉक्टर फिर पानी के बहाव के बीच में ट्रैक्टर से ही पहुंचे, फिर JCB की मदद से महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया, फिर उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। 108 की टीम की तत्परता की सराहना भी हो रही है। तो ये आप देखेंगे कि JCB की मदद से महिला को सुरक्षित निकाला गया। जब परिस्थितियां बिगड़ जाए तो समय हमारे पास इमरजेंसी के लिए दूसरे साधन नहीं है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि JCB से एक बीमार महिला को कुछ इस तरह से ले जाया गया, आगे के हिस्से में उसको लेटाया गया। तो ये भी एक बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है जो देश की दिखाती है कि मरीजों को इस तरह से ले जाना पड़ा, लेकिन चूंकि इमरजेंसी थी, कोई और साधन नहीं था, तो ऐसे में JCB को बुलाना पड़ा और JCB की मदद से उफनती हुई लहरों के बीच में मरीज को अस्पताल में पहुंचाया गया ताकि कम से कम जिंदगी तो मिल सके। सूरत में भारी बारिश के बाद जल भराव है, हालात यहां पर बिगड़ गए। पर्वत गांव इलाके में पानी भरने के चलते स्कूल के साथ शिक्षक और 12 छात्र यहां फंस गए। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने इन स्कूल के टीचर्स और छात्रों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। कई इलाकों में जल भराव है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश का आलम है कि यहां पर राहत बचाव की टीमें पहुंच रहे हैं और सड़कों पर पानी ऐसा भरा है कि निकल नहीं पा रहा है। तो अब हर स्कूल में ऐसा लगता है कि नाव की व्यवस्था भी गुजरात सरकार को कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकते तो लोग अपनी जिंदगी कम से कम नाव से बचाकर खुद को करें। अब बात पहाड़ की करते हैं, जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां पर डोडा में भारी बारिश के बाद से फ्लैश फ्लड आया और उसने तबाही मचाई है। चिनाब वैली में कई जगह पर हालात बिगड़ गए। मलबा गिरने के चलते नेशनल हाईवे 244 को प्रेम नगर के पास में बंद करना पड़ा है। नेशनल हाईवे बंद है, इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अधिकारियों के मुताबिक मलबा हटाने का काम जारी है और जल्द ही हाईवे को बहाल करने की कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन जो दृश्य वहां से सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। खासतौर पर जो छोटे छोटे वाहन हैं वो उसमें गिरे हुए दिखाई दिए, इससे फ्लैश फ्लड की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है।
12: जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर हम डोडा जिले की बात करें तो वहां ठाठरी में भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण वहां बाढ़ आई, मलबा भी सड़क पर आ गया और इसके कारण कई मकान ढह गए, कई दुकानों को भी क्षति हुई और कई जो वाहन है वहां पर बाढ़ के पानी में बह गए। इस बाढ़ और बारिश के कारण जो रिहायशी इलाके हैं ठाठरी में, वहां काफी ज्यादा क्षति हुई है, लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और लोग वहां त्राही त्राही कर रहे हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता भी पहुंचाई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें किश्तवाड़ जिले की, तो वहां पर भी बारिश और बाढ़ के कारण जो है कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, कई स्थानों पर पत्थर गिराए हैं, जिसके कारण डोडा किश्तवाड़ जो राजमार्ग है वो फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन लगातार अपनी टीम जो है प्रभावित इलाकों में भेज रहा है। प्राथमिकता यही है कि जिन सड़कों पर और जिन राजमार्गों पर मलबा आ गया है

0: अब डर यह है कि कहीं ये एक जंग ना छिड़ जाए, युद्ध ना छिड़ जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा जो है अभी तक तकलीफें देखी हैं। 40 साल में एक के बाद एक जो अलग अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जंग हुई है, उससे यहाँ सब कुछ जो है तबाह हुआ है। यहाँ
1: अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं।
2: बेटी और बहन असुरक्षित महसूस करती थी, कोई पुरसाहाल नहीं था, कारीगर बेरोजगार था, कहीं पर भी कोई किसी के लिए आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। यही अंतर आया है, पिछली सरकारों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दिया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देकर के आपकी परंपरागत उद्यम की ब्रांडिंग की है, उसको मार्केट के साथ जोड़ने का काम किया है, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने का कार्य किया है और उसे दुनिया के बाजार में पहुंचा करके अपने कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को, अन्नदाता किसानों को ज्यादा दाम मिले, आज इसके लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, उनकी मानसिकता माफिया राज पर विश्वास करने की थी तो माफिया पालते थे, गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, किसान की सुनवाई नहीं होती थी, युवा के लिए नौकरी और रोजगार नदारद था, बहन और बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमने कभी यह नहीं देखा कि चेहरा देख करके नहीं दिया योजना का लाभ, हमने ये नहीं कहा कि ये हमारा वोट है तो हम इसको देंगे, ये नहीं है तो नहीं देंगे। हमने तो एक ही बात कही जो मोदी जी ने 2014 में कही थी कि सबका साथ सबके विकास का, योजना का लाभ सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे। 15 करोड़ गरीबों के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 10 करोड़ लोगों को यूपी के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है, 70 वर्ष के हर एक व्यक्ति को, जितने भी वृद्धजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें फ्री में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की व्यवस्था है।
1: अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के। आज स्पेन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना तोड़ा तो एक अन्य मैच में बेल्जियम ने अमेरिका का ख्वाब चकनाचूर कर दिया।
3: फीफा वर्ल्ड कप में पोर्चुगल का सफर समाप्त हो चुका है, यानी कि पोर्चुगल अब राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं जा पाएगी। इस बार बहुत सारे सपने लेकर पोर्तुगाली टीम यहां पर आई थी, साथ ही साथ सपने आंखों में थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी, लेकिन स्पेन से मिली हार ने सभी का दिल तोड़ा है, खासतौर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, क्योंकि वो एक सपना जो इतने सालों से देख रहे थे कि वर्ल्ड कप जीतने का सपना, वो रह गया है अधूरा, क्योंकि स्पेन ने पोर्चुगल को हराया 1-0 से और यही खत्म हो गया पोर्चुगल का सफर। लेकिन अगर दूसरे मुकाबले की बात करें, दूसरे मैच की बात करें, वहां पर मुकाबला था होस्ट अमेरिका और साथ ही उनके सामने थी बेल्जियम की टीम। इस पूरे एक तरफा मुकाबले में बेल्जियम ने होस्ट अमेरिका को कहीं भी टिकने नहीं दिया और 4-1 से इस मुकाबले को जीतकर आगे की राह मजबूत कर ली, आगे की सीट पक्की कर ली, अगले सफर की तैयारी कर ली।
1: 12:12 रिपोर्ट में आप रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ।
5: डिड यू नो दैट बायर्स एयरपोर्ट सुबुरु इज द ओल्डेस्ट सुबुरु रिटेलर इन द एंटायर कंट्री एंड वी आर कन्वीनिएंटली लोकेटेड राइट बाय द एयरपोर्ट। स्टार्ट योर जर्नी टुडे एट columbussubaru.com। बायर्स ऑटो, ड्राइविंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बायर्स।
6: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

राम मंदिर चढ़ावा गिनती में चोरी खबर के एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा। सीसीटीवी फुटेज में गिनती कक्ष के अंदर कई बार कर्मचारियों को नोटों की गड्डी छिपाते देखा गया। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ, गिनती कक्ष में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। प्रवेश और निकास के समय तलाशी तक नहीं ली गई थी। एसआईटी जांच में मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड एवं सत्यापन में भी गंभीर खामियां पाई गई। एसआईटी को संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक नकद जमा और वित्तीय लेन देन मिले। रिपोर्ट में मूल्यवान वस्तुओं के प्रबंधन और रिकॉर्ड प्रणाली को और ज्यादा मजबूत बनाने की सिफारिश भी की गई। ट्रस्ट की बैठक पर वीएच महासचिव बजरंग लाल बांगड़ा ने आज तक से बातचीत में कहा, चंपत राय और रनिल मिश्रा नहीं आए क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एक्शन के बारे में पूछे जाने पर बजरंग लाल बांगड़ा ने कहा कि अभी दोषी नहीं मान सकते होते, उन्हें जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। चढ़ावा चोरी केस को लेकर 22 जुलाई को बैठक में नए लोगों के शामिल होने की जानकारी दी। बोले कि आस्था को जो ठेस पहुंची है उस पर कार्रवाई होगी। गोविंद देवगिरी ने चंपत राय के इरादों के स्तर पर उन्हें निर्दोष बताया, कहा कि भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता संभव ही नहीं। अब माफी के सवाल पर गोविंद देवगिरी ने चुप्पी ही साध ली, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट पर भरोसा जताया, कहा कि दोषी कौन है इसका फैसला एसआईटी करेगी, वो किसी को दोषी घोषित नहीं करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट बैठक पर महंत कमल नयन दास की आज तक के साथ बातचीत, बोले कि चंपत राय के इस्तीफे के खिलाफ ट्रस्टी थे। चढ़ावा चोरी के मामले पर बोले महंत कमल नयन दास, दोषियों पर कार्रवाई होगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। 35 करोड़ पौधारोपण के दावे पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले कि वृक्षारोपण नहीं ये भ्रष्टारोपण का कार्यक्रम, बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पहली बारिश में खुली तैयारियों के पुल, छत से पानी टपकने का वीडियो वायरल, रेलवे ने कचरा जमा होने को बताया वजह। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पानी टपकने के वीडियो वायरल होने पर छिड़ा सियासी संग्राम, एसपी सांसद राजीव राय ने बीजेपी और पीएम मोदी पर तंज कसा। बहराइच में पुलिस मुठभेड़, गौकशी के मामले में 25,000 का इनामी अशरफ गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। बहराइच में एनकाउंटर के बाद गौकशी का आरोपी दबोचा गया, पुलिस पर फायरिंग के जवाब में कार्रवाई। संभल में मेटर्निटी हॉस्पिटल पर प्रशासन की छापेमारी, बेसमेंट सील, नवजातों को यहां शिफ्ट कराया गया। गोरखपुर में 70 फीट ऊंचे पानी की टंकी के ध्वस्त कारण 4 लेन निर्माण में यह बाधा बन रहा था। नोएडा की निजी कंपनी में भीषण आग, 8 दमकल की गाड़ियों ने लगभग 2.5 घंटे के बाद आग पर पाया काबू, सेक्टर 88 का मामला।

0: चलिए आगे बढ़ते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अब जांच का दायरा बढ़ रहा है और इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ पहुंचे। सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं।
1: जब कार्य करेंगे तो जातिवाद की राजनीति समाप्त होगी, विपक्ष फिर से जातीय आधार पर समाज के ताने बाने को बांटना चाहता है, छिन्न भिन्न करना चाहता है। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा, हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और किस किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के आते हैं, कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है। अब आप देख रहे होंगे, अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से, उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं, ये कांग्रेस के हाल थे। देश की सबसे बड़ी सबसे प्राचीन पुरानी पार्टी राजनीतिक पार्टी इस प्रकार की बात उस समय कहती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, अब यह देश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चंगुल में नहीं फंसने वाला है। आज की अयोध्या डबल इंजन सरकार के विजन के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज की अयोध्या प्रभु श्री राम के समय के अयोध्या का स्मरण कराती है। क्या नई अयोध्या है, क्या बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जहां से जाओ फोर लेन की कनेक्टिविटी, अयोध्या के लिए रेलवे की ब्रॉडगेज की डबल लाइन की सुविधा, और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ही कर सकती है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, निषाद राज के नाम पर अयोध्या में रेन बसेरा का निर्माण, माता सबरी के नाम पर भोजनालय का निर्माण। आज आप राम जी की पेड़ी में जाइए, कितनी शानदार वहां पर लोग स्नान कर सकते हैं, कितनी सुंदरता है। आज की अयोध्या हरेक को आकर्षित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है, और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं, उनको चिंता इस बात की है। और कभी कभी तो मुझे संदेह इस बात का होता है कि ये लोग एक घटना को किस तरीके से बढ़ा करके हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं।
0: राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अब जांच चल रही है और जो दायरा है वो ट्रस्ट के कामकाज बाकी कामकाज की ओर भी बढ़ रहा है। एक बड़ी खबर हम आपको देते हैं, ये बड़ी खबर आई है, एसआईटी ने जो चढ़ावा चोरी की जांच शुरू की तो उसे ट्रस्ट के कामकाज में तमाम तरह की खामियां नजर आई हैं और अब शक और जांच का दायरा राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से आयोजित दूसरे कार्यक्रमों तक पहुंच रहे हैं। यह पता चला है कि राम जन्मभूमि मंदिर में जो बाकी दूसरे कार्यक्रम हुए थे उसमें खर्च किए गए 124 करोड़ रुपयों की भी अब जांच शुरू हो गई है।
1: जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता, इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है, क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है, कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे। तब आस्था आहत नहीं हो रही थी, जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेस चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगाई जाती थी, दुर्गा पूजा के पंडालों को रोका जाता था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? जब किसी हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे और उपद्रव शुरू होते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? क्या इसका जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देंगे? और यह प्रश्न हम में से हर जागरूक नागरिक को इनसे करना चाहिए, इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है, उस ट्रस्ट के कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं, ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। कितना भव्य मंदिर! इनकी पीड़ा तो यह थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की। उनकी पीड़ा आस्था नहीं है और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है, और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसलिए बहन और भाइयों, आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा का मुद्दा हो, एक गरीब को योजनाओं का लाभ देने का कार्य हो, एक नौजवान के रोजगार का मुद्दा हो, हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य हो। ये
0: तो अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हो गई और उसके बाद से ऑपोजिशन सवाल उठा रहा था, उस पर सीएम योगी कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन ऑपोजिशन कह रहा है कि वहां चोरी हो गई और आपसे सवाल भी ना पूछें और ये सनातन विरोधी हो गया। बहरहाल एसआईटी भी जांच कर रही है और एसआईटी की रिपोर्ट में कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं जो कि हैरान कर देने वाले, और ऐसे में एसआईटी की जांच का दायरा भी अब बढ़ रहा है। और जो तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम अयोध्या में हुए, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर ध्वजारोहण तक, सब जांच के दायरे में आ गए हैं।

0: क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में घोटाला हुआ? राम मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी का खर्च रडार पर क्यों है? क्या राम मंदिर में ध्वजारोहण पर पानी की तरह पैसे बहे? क्या 124 करोड़ खर्च कर राम मंदिर ट्रस्ट ने घोटाला किया? चाहवा चोरी कांड की तफ्तीश कर रही एसआईटी ने जब ट्रस्ट के बही खाते खंगालने शुरू किए तो अनियमितता, मनमानी और लापरवाही की एक से बढ़कर एक मिसालें मिलनी शुरू हो गई और सूत्रों के मुताबिक उसी पड़ताल में खुलासा हुआ है कि ट्रस्ट ने तीन कार्यक्रमों पर जो 124 करोड़ खर्च किए हैं वो संदिग्ध हैं।
1: सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच अब अहम मोड़ पर है और अब पिछले दो वर्षों में बड़े आयोजन यानी कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजा समारोह और कुछ अन्य आयोजनों में लगभग जो 124 करोड़ रुपया खर्च हुआ है उसकी वित्तीय जानकारी जुटाने में एसआईटी लगी है। ऑडिट खंगाला जा रहा है, जो पेमेंट वाउचर्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं, सीए से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी का अगला पड़ाव इस जांच में ये है कि आखिर ये जो 124 करोड़ पिछले दो वर्षों में ट्रस्ट ने बड़े बड़े आयोजनों में खर्च किए हैं, आखिर क्या इनमें कोई अनियमितता है?
0: जांच टीम की नजरें इन्हीं तीन कार्यक्रमों पर हुए खर्च को लेकर टिकी हैं, जिसमें जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जनवरी 2025 में हुए प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम और नवंबर 2025 में हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम पर किए गए खर्च को संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि इन कार्यक्रमों में जो खर्च हुए हैं उसने जांच टीम में शामिल अफसरों की त्योरियां चढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, 8000 मेहमान आए, लगभग 36 करोड़ रुपए का टेंट लग गया, अक्षत पूजन पर 30 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए, विज्ञापन प्रचार पर ही 21 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, लगभग 15 करोड़ की डेकोरेशन और लाइटिंग हो गई, 5 करोड़ से ज्यादा रुपए खाने पीने में खर्च हो गए, 1 करोड़ से ज्यादा रुपया पूजा पाठ और अनुष्ठान में खर्च हुआ, 93 लाख रुपए लेकर भक्ति गीत गाए गए, 68 लाख रुपए का साउंड सिस्टम लगा था, 43 लाख रुपए में बिजली का इंतजाम हुआ था, 43 लाख रुपए मंडल पूजन के खर्च हो गए, विविध खर्चों में 51 लाख खर्च हो गए। अब जब चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई और उसमें ट्रस्ट की नाकामी उजागर हुई तो जांच एजेंसी का शुभा बढ़ गया कि कहीं पहले हुए खर्च में भी ट्रस्ट यूं ही लापरवाह बना रहा और भक्तों के दान का अंधाधुंध खर्च हो गया।
1: देखिए, एक ठेस पहुंची है हर राम भक्त में, आप भी राम भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं, हर कोई राम भक्त है, उसको कैसे दूर करेगा ट्रस्ट?
2: देखिए, जो जिस विषय के प्रकरण को लेकर के जो आस्था को ठेस लगी है उस प्रकरण की जांच होकर के जो अपराधी हैं उनको दोषी मिलने की कार्रवाई हो जाएगी। जब समाज को पता चलेगा कोई किसी को बचाने की मंशा नहीं है तो फिर अपने आप जो आस्था लौट
1: जाएगी। कई लोग ये कह रहे हैं
2: 5-6 व्यक्तियों के दोष की वजह से कोई
1: भजन जी कई लोग कह रहे हैं कि छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई, बड़े लोगों को बख्श दिया गया है।
0: वैसे फिलहाल जांच ही चल रही है, कार्रवाई अभी दूर है और जांच में भी एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट से जो खुलासे हुए हैं वो संगीन हैं, क्योंकि पता चला है कि 11 से 13 जनवरी 2025 में प्रतिष्ठा द्वादशी पर खर्च हुए 83 लाख और महाकुंभ में खर्च 43 लाख भी जांच की रडार पर हैं। इसके अलावा बड़ा फोकस 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर भी है, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए थे। इस कार्यक्रम में पीएम समेत 6000 लोग शामिल थे और हर मेहमान पर औसतन खर्च 16000 रुपए बैठा था। इतना ही नहीं, जो नहीं निभाई गई फिर भी ट्रस्ट की बैठक में अनिल मिश्रा पर कोई चर्चा तक नहीं हुई।
3: अनिल मिश्रा जी को क्या क्या मारा जी उनको?
4: अनिल मिश्रा की कोई चर्चा नहीं।
3: अच्छा,
0: ट्रस्ट भले ही अपनी बैठकों में घोटालों पर चर्चा ना करे लेकिन एसआईटी ने बड़ी कमियां पकड़ी हैं और अब ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट, पेमेंट वाउचर, बिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट रिकॉर्ड और खर्च स्टेटमेंट की पूरी जांच की जा रही है। ताकि पुष्टि हो सके कि खर्च में ट्रस्ट ने नियमों का पालन किया था या फिर मनमाने फैसले लिए। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
5: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
10: What you got for me, Jack?
9: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
11: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
13: Maa bhi hamesha P-Mark mustard oil mein khana banati thi.
14: Kuch to baat hai is dil mein.
15: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
16: Sarso se sarso. शेयर बाजार ने ज्यादा ट्रेडर्स बनाए हैं या फिर ज्यादा गैम्बलर्स बना दिए हैं सर? अब
17: ये जो जॉबिंग स्प्रेड हुआ करता था, दैट इटसेल्फ वाज वेरी लार्ज। तब मैं कम से कम एक 150-200 स्टॉक का मार्केट मेकिंग मैं किया करता था। आपने शुरू किया हर्षद मेहता स्कैम से, उसके पहले एक क्रैश आई थी, दैट वाज एन एक्सट्रीमली सिवियर बेयर मार्केट। 42 होते होते डिफरेंस का मेरे सारे रुपये खत्म हो गए। फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल एक बहुत बड़ा फियर है जो आपको फोर्स करता है कि जल्दी में प्रॉफिट ले लूं। हिम्मत दिखाओ तो आपको उसका कीमत भी मिलता है।
18: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
19: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
20: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
21: परमिशन लेनी चाहिए ना,
20: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
22: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
20: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

अभूतपूर्व स्वागत और सर्वोच्च सम्मान के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय साझेदारी से विकास का नया अध्याय, इंडोनेशिया में आईएम कैंपस और यूपीआई शुरू होगा, ईवीएम ब्रह्मोस की बड़ी दी। एसआईटी जांच के दायरे में 124 करोड़ के सभी बड़े इवेंट, प्राण प्रतिष्ठा से ध्वजारोहण तक सभी हाई प्रोफाइल समारोह के खर्च का होगा ऑडिट, शुरुआती रिपोर्ट में नोट छिपाने फुटेज हटाने समेत गबन के 70 मामले। अयोध्या कांड विपक्षी हमले पर योगी का करारा पलटवार, कहा वक्फ में हजारों करोड़ की लूट पर समाजवादी और कांग्रेस चुप क्यों, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की क्या करेंगे बात। हाहाकारी मॉनसून ने मुंबई को बनाया बंधक, स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं रद्द, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, कल्याण में सड़क धसी, पुणे में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही, गुजरात के कई शहर जलमग्न।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा वातम। शुरुआत कर रहे हैं नॉनस्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय मीटिंग के बाद सभा को किया संबोधित, कहा तकनीक के दौर में सप्लाई चेन मजबूत करना बेहद जरूरी, बातचीत और कूटनीति की भूमिका पहले से जरूरी। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस और बिजनेस से जुड़े कई अहम समझौते हुए, इसमें सबसे अहम ब्रह्मोस थी। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया को ईवीएम विकसित करने में मदद करेगा, आज शाम 5 बजे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रक्षाबंधन पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा, दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी में। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषियों को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका, उच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट के फैसले की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट मामले में 56 मृतक के परिजनों को 10 लाख, 200 से अधिक घायलों को 1 लाख मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की अर्जी खारिज की, डीएमके राजनीति के लिए न्यायिक पंच का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी अवैध बिल्डिंग मामले में आज पहली सुनवाई, ध्वस्तीकरण आदेश पर लिया जा सकता है फैसला। फैजल खान की जमानत पर फैसला कल, जिला जज ने 40 मिनट तक सुनी दोनों पक्षों की दलीलें। फैजल खान और गार्ड्स की बेल पर टली सुनवाई, कोर्ट ने मांगा पुराने आपराधिक रिकॉर्ड्स का ब्यौरा। बिहार में एनडीए की जड़ी बैठक, 10 जुलाई को सीएम सम्राट चौधरी करेंगे सरकार संगठन के कामकाज का मंथन। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जेडीयू का दांव, संजय झा बोले बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय। एक देश एक विधान और सीए पर बोले संजय झा, का हर फैसला संविधान के मुताबिक होना चाहिए। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ की जनसभा को किया संबोधित, बोले पिछली सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दिया। समाजवादी सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा हमने कभी चेहरे देखकर नहीं किया योजना का लाभ, 2017 से पहले गरीब परेशान था, नौजवान पलायन करता था। राम मंदिर ट्रस्ट बैठक में महंत कमल नयन दास की आज तक से बातचीत, बोले चंपत राय के इस्तीफे के खिलाफ थे ट्रस्टी। चरावा चोरी मामले पर बोले महंत कमल नयन दास, दोषियों पर होगी कार्रवाई, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 35 करोड़ के पौधारोपण के दावे पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले वृक्षारोपण नहीं भ्रष्टारोपण का कार्यक्रम हुआ। राम मंदिर चरावा गिनती में चोरी, गबन की एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी फुटेज में गिनती कक्ष के अंदर कई बार कर्मचारियों को नोटों की गड्डी छिपाते देखा गया। रिपोर्ट में भी खुलासा, गिनती कक्ष में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, प्रवेश और निकास के समय तलाशी नहीं ली गई। एसआईटी जांच में मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड और सत्यापन में गंभीर कमियां पाई गई। एसआईटी को संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक नकद जमा और वित्तीय लेन देन की जानकारी मिली है। रिपोर्ट मूल्यवान वस्तुओं के प्रबंधन और रिकॉर्ड प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है। ट्रस्ट की बैठक पर वीएचपी महासचिव बजरंग लाल बांगड़ा ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि चंपत राय अरुण मिश्रा नहीं आए क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चंपत राय अरुण मिश्रा पर एक्शन के बारे में पूछे जाने पर बजरंग लाल बांगड़ा ने कहा भी दोषी नहीं मान सकते, जांच के बाद सब कुछ सामने आएगा। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर 22 जुलाई की बैठक में नए लोगों को शामिल होने की जानकारी, बोले आस्था को जो ठेस पहुंची है उस पर कार्रवाई होगी। गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को इरादों के स्तर पर बताया निर्दोष, का भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता संभव नहीं है। माफी के सवाल पर गोविंद देवगिरी ने साधी चुप्पी, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट पर भरोसा जताया, कहा कि दोषी कौन है इसका फैसला एसआईटी करेगी, किसी को दोषी घोषित नहीं करेंगे। मुंबई में लगातार हो रही बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, पिछले 4 दिन में प्राकृतिक आपदा से मरने वालों की संख्या 13। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने से लोगों के घरों से बाहर निकलना मुश्किल, सड़क और रेल यातायात प्रभावित। तेज बारिश के साथ चल रही तूफानी हवाएं, कई स्थानों पर गिरे पेड़, बीएमसी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा पेड़ गिरने के कारण यातायात व्यवस्था चरमराई। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जिसके चलते मुंबई, नवी मुंबई, पालघर के सभी स्कूल कॉलेज बंद, मुंबई की यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की बड़ी घटना, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। पुणे में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच 2 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिरी, फायर ब्रिगेड की सतर्कता के कारण हादसे में कोई जनहानि नहीं। घटना के बाद लगातार हुई बारिश को देखते हुए जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन निर्देश का पालन करने की अपील की गई है। महाराष्ट्र के पुणे और लोनावला में भारी बारिश के कारण इंद्रायणी नदी उफान पर, आलंदी में बाढ़ जैसे हालात, आलंदी के चारों पुल पानी में डूबे। आलंदी में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फंसे 400 ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू, बचाव टीमों ने बाढ़ वाले इलाकों से सभी 150 मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। खंडाला घाट सेक्शन में भूस्खलन के कारण मुंबई और पुणे के बीच रेल सेवाएं पूरी तरह ठप, भारी बारिश के बावजूद सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी। भारी बारिश के कारण मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्से जलमग्न, वाहनों की लंबी कतार लगने के कारण 24 घंटे ज्यादा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक बाईपास पर भूस्खलन के बाद बंद हुई लेन 18 घंटे बाद फिर खोली गई। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद दो लेन पर यातायात बहाल। प्रशासन ने मुंबई पुणे हाईवे पर यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की अपील की। मौसम और ट्रैफिक अपडेट देखकर ही लोगों को यात्रा करने के निर्देश। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार 4 दिन से मूसलाधार बारिश, नदियों में जलस्तर बढ़ा। उल्लास नदी में जलस्तर खतरे के निशान से पार। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश। मुंबई सटे पालघर में भारी बारिश का कहर, घर गाड़ियां दुकानें डूबी। बारिश के कारण सफाई से डूब जुड़े सैकड़ों गांव संपर्क टूटा। इंदौर में भारी बारिश के बीच अनोखी शादी, विवाह स्थल पर पानी भरने के बाद दुल्हन को गोद में उठाकर मंडप तक पहुंचा दूल्हा। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रायपुर की जीवनदायिनी खारू नदी उफान पर, कई इलाके जलमग्न। मॉनसून की पहली बारिश पे वाराणसी रेलवे स्टेशन प्रबंधन की तैयारियों की खुली पोल। कई जगहों पर भरा पानी, छत टपकने का वीडियो वायरल के बाद रेलवे दी कच्चा जमा होने की सफाई। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पानी टपकने की वीडियो वायरल होने पर छिड़ा सियासी संग्राम। एसपी सांसद राजीव राय ने बीजेपी और पीएम मोदी पर कसा तंज। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद आई फ्लैश फ्लड से नेशनल हाईवे 244 हुआ बंद, मलबा हटाने का काम जारी। सूरत में भारी बारिश से पानी जमा होने से स्कूल में फंसे 7 टीचर, 12 छात्र, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के से कई इलाकों में जलभराव, मौसम विभाग ने अभी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सूरत में भारी बारिश के कारण गिरा विशालकाय पेड़, कार सवार घायल, स्थानीय लोगों की मदद से बची जान। वडोदरा में भारी बारिश से रावपुरा, मांडवी और मुक्तानंद सहित कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर पानी भरने से यातायात ठप, जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 84 बटालियन के श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया, 24 घंटे मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सेहत का सीआरपीएफ रख रही खास ध्यान, मोबाइल हेल्थ कैंप से यात्रियों को तुरंत मिल रहा है इलाज। चंद्रकोट में सीआरपीएफ जवान बने यात्रियों के मददगार, बीमार या जरूरतमंद श्रद्धालुओं का रखा जा रहा है पूरा ध्यान। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी मना रहे हैं अपना 45वां जन्मदिन। रांची में धोनी के फैंस ने उनके फार्म हाउस के बाहर केक काटकर मनाया जश्न। इस खास मौके पर हैप्पी बर्थडे माही के नारों के साथ माहौल उत्साहपूर्ण बना। धोनी के लाखों फैंस ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर को शुभकामनाएं दी। लोधी कॉलोनी में नवविवाहित आकृति की संदिग्ध मौत मामले में परिवार ने पति ससुराल पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। ऑफिस से निकली आकृति फिर नहीं लौटी घर, छत से गिरने के बाद मौत, परिवार बोला हत्या हुई है। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी और मोबाइल डेटा। दहेज प्रताड़ना से मौत का आरोप, आकृति को सामान और नौकरी को लेकर दिए जाते थे ताने। आकृति मौत मामले में बड़ा डिजिटल सुराग, सर्च हिस्ट्री से मिले आसानी से मौत कैसे होगी और दूसरी मंजिल से गिरने पर मौत जैसे सवाल, पुलिस जांच कर रही है। टीरी में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला, मीट कारोबारी गिरफ्तार, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। मुंबई में दर्दनाक हादसा, 10वीं मंजिल से लिफ्ट से के शाफ्ट में गिरा 12 साल का बच्चा, हुई मौत। फतेहपुर में पत्नी मिली जल्लाद, पति को चारपाई से बांधकर पीटा, करंट देने का भी आरोप। मुजफ्फरनगर में है वाहन, मानसिक रूप से बीमार युवक को 8 महीने तक बंधक बनाकर कराया गया काम। पांडुरना में 350 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 7 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। गोरखपुर में 70 फीट ऊंचे पानी की टंकी का ध्वस्तीकरण, 4 लेन निर्माण में आ रही है बाधा। नोएडा की निजी कंपनी में भीषण आग, 8 दमकल गाड़ियों ने 2.5 घंटे बाद पाया काबू। सेक्टर 88 की फैक्ट्री में आग से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट की आशंका, कोई हताहत नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर का दुर्लभ शिकार, जबड़ों में अजगर दबाए, कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा। देहरादून में दरिंदगी की सारी अधिपार, युवक को रात भर बंधक बनाकर करंट दिया गया, रॉड से की गई पिटाई। संबल के मेटर्निटी हॉस्पिटल में प्रशासन की छापेमारी, बेसमेंट सील, नवजातों को कराया गया शिफ्ट। हिमाचल फिर चट्टानों के कहर, चलती कार पर गिरी चट्टान, 14 साल की बच्ची की मौत। श्रीगंगानगर हैवानित मामले में बड़ा खुलासा, होटल के सीसीटीवी से मिले अहम सुराग। दिल्ली के बंगोलपुरी में चाकूबाजी, 45 वर्षीय शख्स की हत्या, परिवार ने पुलिस पर उठाए सवाल। रामपुर में पुलिस मुठभेड़, गौकशी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच नॉटिंघम में खेला जाएगा ये मैच। आज के मैच के समय में हुआ बदलाव, भारतीय समय अनुसार 10 बजे शुरू होगा 9:30 बजे टॉस। 5 मैचेस की सीरीज में भारत जीत का खाता खोलने के लिए तैयार, पहला मैच बारिश से धुल जाने के बाद दूसरे मैच में मिली हार। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचेस की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान। 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह की टीम में वापसी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अशोक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के पास इस सीरीज में अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका। फिल्म फुकरे के बाद लौटेगी भोली पंजाबन और जफर की जोड़ी, नई कॉमेडी फिल्म का हुआ ऐलान। अर्जुन रामपाल ने अपने हमजा यानी रणवीर सिंह को दी जन्मदिन की बधाई, शेर रणवीर के लिए शेयर किया स्पेशल पोस्ट। आज जुलाई को सौरभ गांगुली के बर्थडे पर रिलीज होगी उनकी बायोपिक फर्स्ट लुक, राजकुमार राव निभा रहे हैं दादा का किरदार। हल्की फुल्की रोमांटिक ड्रामा फिल्म में तेरा यार हूं में ट्रेलर लॉन्च, फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंदु कुमार के बेटे अमन इंदु कुमार करें एक्टिंग का डेब्यू। लव लॉटरी का फर्स्ट लुक लॉन्च, कोर्टरूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ दिखेगा सस्पेंस का तड़का। ऑस्ट्रेलिया और फिजी के अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर, दोनों देशों के वो वाले यूनियन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच सुरक्षा समझौते से बौखलाए चीन ने प्रशांत महासागर में डमी वॉरहेड वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमले, एक लोकल पोर्ट और तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा नुकसान। हमास ने गाजा में अपनी सरकार को किया भंग, कहा वो फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के एक समूह को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जारी सुरक्षा बलों की ओर से निर्दोष फिलिस्तीनियों की हत्या पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र अपने मुख्यालय के बाहर एक तिब्बती एक्टिविस्ट की आत्मदाह पर कहा यह किसी लिहाज से इंसानी नजरिए से बेहद दुखद है। इमानुएल मैक्रॉन सीरिया के दौरे पर, नए राष्ट्रपति अहमद अल शारख से सत्ता संभाल के बाद किसी यूरोपीय संघ के राष्ट्राध्यक्ष का पहला दमिश्क दौरा। तुर्की की राजधानी अंकारा में आज से शुरू हो रहा है नाटो समेत शहर में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अंतिम संस्कार का जुलूस आज कोम शहर में सड़कों पर उतरकर हजारों लोग अपने नेता खामेनेई को देंगे श्रद्धांजलि। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह।

0: और अब बात मौसम की करेंगे कि दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल दिल्ली में दो दिन से बारिश का माहौल तो बन रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। आज मौसम विभाग ने कहा है कि ऑरेंज अलर्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों और गुजरात के बाकी हिस्सों, राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में आगे बढ़ चुका है। उनके मुताबिक अगले दो से तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में और फिर पूरे देश में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हो गए। अनमोल बाली मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनमोल, किन किन इलाकों में बारिश शुरू हो गई है?
1: नए समय में दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में खड़ा हूं और आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि मानसून की पहली जो भारी बारिश है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पड़नी शुरू हो गई है। 2 जुलाई को देखा गया था कि दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी थी और इसी मानसून को देखते हुए आज मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ने पूरे देश को अपने घेरे में ले लिया और अब देखा जाएगा कुछ दिनों में पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों तक जो मानसून पहुंचेगा। उसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कैसे झमाझम बारिश इस समय पड़ रही है और साथ ही ऑरेंज अलर्ट दिल्ली के लिए पहले इशू किया गया और अब मौसम विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ कई इलाकों के लिए, नॉर्थ दिल्ली के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी इशू किया गया है, जिसका सीधा सीधा असर मैं आपको ट्रैफिक व्यवस्था पर दिखाना चाहूंगा। जब ट्रैफिक है वो कछुए की चाल पर चल रहा है और दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों के लिए ऐसे ही देखा जाएगा कि बारिश पड़ेगी, जहां देखा जाएगा कि 40 से 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि जो लोग हैं पुरानी जो जर्जर इमारतें हैं, जो जर्जर पेड़ हैं उनसे दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रहें। नेहा,
0: इसके अलावा जो ऑरेंज अलर्ट की बात की जा रही है, कब ये पूरी तरह से सक्रिय होगा, जो ये डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं या फिर मॉनसून की जो आगाज हो चुका है, क्योंकि ये कहा गया था कि फ्राइडे को ही मॉनसून का आगाज हो गया था लेकिन पिछले 2-3 दिन से तो बारिश हुई नहीं, आज क्या ये फुल फोर्स आ सकती है?
1: नेहा, जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने इस बार मानसून की जो शुरुआत 2 जुलाई को बताई थी, उसके बाद 2-3 दिन से देखा जा रहा था कि लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे क्योंकि एक तरफ तो बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन देखा जा रहा है और वहीं साउथ वेस्ट मानसून ने भी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दस्तक दे दी है उसका पूरा असर देखा जा रहा है पूरे देश में। चाहे मैं बात करूं बंगाल झारखंड के इलाके की, जहां बे ऑफ बंगाल में जो डिप्रेशन है उसके कारण भारी बारिश देखने को मिली, और वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के जो और राज्य हैं, चाहे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की बात हो और दिल्ली की बात हो जाए, 1-2 दिन में देखा जाएगा कि मॉनसून के कारण ऐसे ही भारी बारिश पड़ती रहेगी। जहां संडे को देखा गया कि हालांकि रेड अलर्ट मौसम विभाग ने इशू किया था इतवार को, पर इतनी तेज दिल्ली में बारिश देखने को नहीं मिलती, पर अब जैसे ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट इशू किया, कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट इशू किया, वही देखा गया कि मिनटों में दिल्ली में जो बादल है झमाझम बरसने शुरू हो गए। नेहा,
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपको। तो दिल्ली में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, दिल्ली की तरह मुंबई में भी बारिश और तेज हवा चलने लगी है। आपने देखा किस तरीके से हमारे संवाददाता बताई रहे थे, लेकिन मुंबई में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के कई इलाके हैं जो इस वक्त आफत की बारिश का सामना कर रहे हैं।
2: देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई 2 मंजिला इमारत। ये वीडियो पुणे के पेठ इलाके के धननगर गली का है। मूसलाधार बारिश की मार ये इमारत झेल नहीं पाई और भरभरा कर जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ये तस्वीर महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बारिश प्रभावित इलाके पालघर की है। पालघर तालुका के साकरे गांव में वरई सफाले मार्ग पर बारिश का पानी इतना भर गया कि एक कार डूब गई। जब कार डूबी तो उस वक्त उसमें 3 लोग फंसे हुए थे, जिनमें एक मरीज भी शामिल था। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रस्सी की मदद से डूबी हुई कार को बाहर निकाला गया। कार में फंसे 3 लोग सुरक्षित बच गए। पालघर इलाके में आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया। लोगों की जान मुश्किल में फंस गई, लेकिन आम लोगों की मुश्किलों के बीच एनडीआरएफ के जवान बोट लेकर देवदूत की तरह सामने आए। करीब 200 लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। ये तस्वीर भी पालघर की है। इलाका है वीरेंद्र नगर। कल यहां ऐसी आफत बरसी कि कई घरों में बारिश का पानी भर गया। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। सड़कें समंदर नजर आ रही हैं। घरों के दरवाजे पर खड़े लोग राहत का इंतजार करते दिख रहे हैं। संकट की इस घड़ी में स्थानीय लोग खुद एक दूसरे की मदद करने कूद गए। देखिए किस तरह रस्सी और ट्यूब की मदद से लोगों को खींचा जा रहा है। इन सब के बीच एक भावुक करने वाली तस्वीर भी सामने आई। एक मासूम बच्ची पानी से घिरे एक घर में फंस गई थी, जिसे स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र का पालघर इलाका मानो बारिश का एपिसेंटर बन गया है। जब से महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री हुई है, यह इलाका डूबा डूबा नजर आ रहा है। पालघर के सफाले इलाके की तस्वीर देखिए। रेलवे स्टेशन की पार्किंग, बाजार और रिहायशी इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में मानसून से मचे त्राहिमाम की कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और बदलापुर में लगातार बारिश से उल्लास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है और बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। उधर मावल में इंद्रायणी नदी उफान पर है और निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। लोनावला में जल भराव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं अकोला में मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बीच कुछ तस्वीरें राहत और रोमांच की भी सामने आई। वसई विरार में कई युवा सड़कों पर भरे पानी में बारिश का आनंद लेते नजर आए। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में अगले 24 घंटे तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: तो बाढ़ बारिश से जो त्राहिमाम मचा है, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, अलग अलग इलाके हैं जहां पर लोग इस वक्त भीषण बारिश की चपेट में हैं। कई नदी नाले इस वक्त तूफान में हैं। अलग अलग जगहों पर कई लोगों को इलाके खाली करने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक मर्सिडीज कार सवार ने स्कूटी सवार को कुचल डाला। हादसा आउटर रिंग रोड का है, फुटओवर ब्रिज के पास यह हादसा हुआ है। स्कूटी चालक की मौत के बाद पुलिस ने मर्सिडीज सवार को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूटी सवार को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली की घटना जहां पर इसी मर्सिडीज ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, उसके बाद उसकी जान चली गई। आउटर रिंग रोड पर यह हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सबसे बेकाबू कार की चपेट में यह स्कूटी सवार आ गया। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, जिसमें विपक्ष के बाद पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया है।
3: मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई, एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता, इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है।
0: वही राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का कहना है कि दान गबन में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनका काम सिर्फ सामान की देखरेख करने का है। हालांकि गोविंद देवगिरी ने चंपत राय पर लग रहे आरोपों से उनका बचाव किया। उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने।
4: महाराज जी, कल जो बैठक हो गई उसके बाद, उस बैठक से जो नतीजा निकला है उसमें है कि दोनों लोग अब बाहर हैं ट्रस्ट से, आजीवन बाहर हैं, दोबारा नहीं आएंगे। और इस पूरे कल की बैठक में एक चीज दिखी कि चंपत राय को पूरी तरीके से क्लीन चिट दी गई और यही एसआईटी की रिपोर्ट में भी दिख रहा है, क्या कहेंगे आप?
5: यह हमारा आंतरिक विश्वास है कि इस संपूर्ण कार्य को जिन्होंने पहले दिन से खड़ा किया है और जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
4: तो निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके

0: उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह रहे, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई?
1: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष, उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है। उनके अंतकरण के ही तो ही निश्चित रूप से स्थिर है।
0: नहीं तो आप मानते हैं कि उनका अहंकार कहीं ना कहीं हावी रहा है, क्योंकि कहा जाता है वो अक्खड़ जिद्दी किस्म के रहे, किसी की उन्होंने नहीं सुनी और ये भारी पड़ा।
1: इसको अहंकार अहंकार शब्द का प्रयोग करना मैं ठीक नहीं मानता हूँ। निश्चित रूप से वे जिद्दी है, वे अपनी ही बात सुनते हैं, ऐसा भी नहीं कि सभी मामलों में उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं, अनेक मामलों में सुनते थे, अनेक मामलों में नहीं भी सुनते थे, ऐसा रहा है। तो जहाँ पर वो जिद कर लेते थे अपने ही चलाते थे, ऐसा है।
0: तो अब क्या उनकी पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से बाहर हैं, अब दोबारा उनकी एंट्री नहीं होगी?
1: ऐसा ही आज तो है,
0: आज ऐसा ही है। एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को बहुत जिम्मेदार ठहराया गया है, उनके नाम हैं, लेकिन चंपत राय के नाम नहीं है। तो अनिल मिश्रा दोषी है आपको लगता है?
1: दोषी है कि नहीं ये एसआईटी निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतला रहा है। एसआईटी जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है?
0: लेकिन आप कहते हैं कि वो भोले हैं, तो इतने भोले रहे कि सब कुछ हो गया, आपको लगता है इतनी बड़ी आस्था से खिलवाड़ हो गया, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंची है?
1: आप किसके बारे में बोल रहे
0: हैं? मैं चंपत राय जी के बारे में पूछ रहा हूं।
1: हाँ।
0: करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था पर चोट पहुंची है, ट्रस्ट को धक्का लगा है, तो आपको लगता है कि वो इतने भोले हैं, ये सब चीजें होती गई और कुछ नहीं हुआ? भोला शब्द आपने इस्तेमाल किया है।
1: बिल्कुल, भोले का अर्थ ये होता है कि जिस कठोरता के साथ अपने भी लोगों को दूर करना चाहिए, उनकी निगरानी रखनी चाहिए, ये वो नहीं कर पाए।
2: रुकेंगे आज से ब्रेक के लिए, फोन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज
3: अपनी इलेक्ट्रिक सवार,
2: दिखते रहिए आज
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand.
4: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: Presented by Patanjali Gai Ka Ghee, lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa. In association with Bharat ki apni electric sawari, Sokudo. Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: शादी का किचन महकेज जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
9: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
10: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी ये आपके लिए।
10: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

शुरू होगा ईवीएम ब्रह्मोस की बड़ी जीत। एसआईटी जांच के दायरे में 124 करोड़ के सभी बड़े इवेंट्स, प्राण प्रतिष्ठा से ध्वजारोहण तक सभी हाई प्रोफाइल समारोह के खर्च का होगा ऑडिट। शुरुआती रिपोर्ट में नोट छिपाने, फुटेज हटाने समेत गबन के 70 मामले। अयोध्या कांड में विपक्षी हमले पर योगी का करारा पलटवार, का वक्फ में हजारों करोड़ की लूट पर समाजवादी और कांग्रेस चुप क्यों, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की क्या कर देंगे बात। हाहाकारी मॉनसून ने मुंबई को बनाया बंधक, स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं रद्द, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, कल्याण में सड़क धसी, पुणे में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही। जयपुर में फिर दहलाने वाला हादसा, बेकाबू ट्रक ने पूरे परिवार को रौंदा, अजमेर रोड पर दर्दनाक एक्सीडेंट में 3 बच्चों की मौत, मां बाप जख्मी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा पर हैं और अपने पहले पड़ाव में वो आज इंडोनेशिया के जकार्ता में थे। आज सुबह राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री का भव्य आधिकारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी कल जकार्ता पहुंचे तो इंडोनेशिया एयरफोर्स ने विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में अपने लड़ाकू विमानों को एस्कॉर्ट में लगाया और अब आज जकार्ता स्थित प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम हुआ। बीती रात होटल पहुंचने पर कई भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पहुंचे। प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि माना यही जा रहा है कि इंडोनेशिया से द्विपक्षीय वार्ता में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर डील होगी, अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर जब पहुंचे तो यात्रा के दूसरे दिन उनका गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया, साथ ही इंडोनेशिया ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। इंडोनेशिया दरअसल एक मुस्लिम बहुल देश है लेकिन वहां हिंदू धर्म और परंपराओं का भी उतना ही सम्मान है। ऐसे में सांस्कृतिक विरासत वाले देश इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को सम्मानित किया है।

और प्रधानमंत्री मोदी के इस इंडोनेशिया दौरे में अहम डील हुई है। ये डील है दो भारतीय मिसाइल्स की। डील के मुताबिक इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीदेगा। ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वहीं अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है। इन दोनों को लेकर अब अहम समझौते किए जा चुके हैं।

इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में मानो पलक पांवड़े बिछा दिए। आज वहां के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता से पहले राजकीय सम्मान दिया गया उन्हें। प्रेसिडेंशियल पैलेस से पूरे आन बान शान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम हुआ। उसके बाद दोनों देश में द्विपक्षीय वार्ता का नया चैप्टर लिखा गया। भारत और इंडोनेशिया के बीच आज हुई डील कई मायनों में बेहद अहम है।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का ये अंदाज भारत के साथ सुलझे और मजबूत रिश्तों की एक छोटी सी झलक भर है। इसके आगे की तस्वीरें तो आज जकार्ता में दिखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जकार्ता में हैं और वहां जिस तरह से उनका अभिवादन और वेलकम हुआ है वो ऐतिहासिक है। दोनों देश अपने कूटनीतिक संबंधों की किताब में दोस्ती के नए पन्ने जोड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत एक दिन पहले ही हो गई। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के दौरे पर 6 जुलाई को पहुंचे तो जमीन से आसमान तक स्वागत का जबरदस्त सिलसिला चला। जैसे ही पीएम मोदी का विमान इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, वहां की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उनके विमान की आसमानी अगवानी की। और जब आज राजधानी जकार्ता मानो प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहा था। जकार्ता स्थित प्रेसिडेंशियल पैलेस की ये मनमोहक तस्वीरें देखिए। इतनी जबरदस्त सम्मान की ऐसी ऐतिहासिक तैयारी आपने खास दोस्त भारत के लिए इंडोनेशिया ने की। ये तैयारी पीएम मोदी के स्वागत के लिए थी। मोदी के पहुंचने से पहले वहां बच्चे तिरंगा और इंडोनेशियाई झंडे लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। इंडोनेशिया का गौरव माने जाने वाले प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ पीएम मोदी जाने लगे तो मानो नजरें उसी तरफ टिक गईं। इस भव्य सम्मान समारोह में पहुंचते ही बच्चों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। इंडोनेशिया ने भी स्वागत किया। पैलेस की ओर जाने वाली सड़कों पर तोरण द्वार लगे थे और उस पर लिखा था, इंडोनेशिया गणराज्य में आपका स्वागत है। घुड़सवार दस्ता और अन्य रक्षक दल एक काफिले में आगे बढ़ रहे थे। पूरा इलाका सेफ जोन में बदल गया। अपने खास मेहमान के प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचते ही राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी को गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया और फिर आगे बढ़ चले। प्रेसिडेंशियल पैलेस में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां से सशस्त्र बलों ने प्रधानमंत्री को सलामी दी। इंडोनेशिया की सांस्कृतिक झलक प्रेसिडेंशियल पैलेस में दिखी और ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में तोपों से गोले दागकर औपचारिक सलामी दी गई। उसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से परिचय किया।

0: कुछ ही पलों में पीएम मोदी ने वहां विजिटर बुक पर हस्ताक्षर भी किए। ये दौरा तब खास बन गया जब इंडोनेशिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया।
1: आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है।
0: मोदी का जकार्ता में ये औपचारिक स्वागत अभूतपूर्व है। पहली बार इस तरह किसी विदेशी मेहमान की इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भवन में आगवानी की गई। शानदार वेलकम के बाद भारत और इंडोनेशिया में द्विपक्षीय वार्ता चली। इसमें दोनों देशों के बीच कई अहम डील हुई। इसके तहत भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को सबक सिखाने वाले हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र को भी इंडोनेशिया ने खरीदने का फैसला किया है।
2: देखिए, ब्रह्मोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस समय विश्व में रशिया और इंडिया के अलावा किसी देश के पास नहीं है, और इंडो पैसिफिक रीजन में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि ये शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, हवाई जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है और ग्राउंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अगर हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका इंडोनेशिया और भारत दोनों के पास होना एक तरह का एक जो मिलके हम जो है उस खतरे का सामना कर सकते हैं, उसके लिए ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा।
0: इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीद का फैसला कर भारत की सैन्य ताकत को सलाम किया है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों का लोहा पूरी दुनिया ने माना। पाकिस्तान के भीतर आतंक के ठिकानों को ब्रह्मोस और अस्त्रा मिसाइलों ने तबाह किया और अब इसका असर सीधे भारत के रक्षा निर्यात पर दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया ने अब ब्रह्मोस के साथ अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स खरीदने का फैसला किया है और ये भारत के हथियारों को मिलती नई पहचान की एक निशानी भी है और मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के सफर की तेजी भी है। ये दिखाता है कि किस तरह से भारत के हथियारों को विश्व स्तर पर एक नई विश्वसनीयता मिली है।
0: भारत इंडोनेशिया को ईवीएम के विकास में मदद करेगा। अहम मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी बात बनी है। भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण में निवेश करेगा। कनेक्टिविटी के मामले में भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट का विकास करेंगे। ये पोर्ट मलक्का जल डमरू मध्य के पास स्थित है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से करीब 100 मील की दूरी पर है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कारोबारी और कूटनीतिक रिश्तों की ये नई उड़ान है। जकार्ता में पीएम मोदी ने बताया कि कैसे दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को नई पहचान देकर आगे बढ़ रहे हैं।
1: हम टू स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर इंडोनेशिया एमास और विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे।
0: सबसे अहम ये कि इंडोनेशिया भारत के बड़े द्विपक्षीय कारोबारी सहयोगी देशों में से एक है। दोनों के बीच करीब 28 अरब का द्विपक्षीय व्यापार भारत जापान के आपसी व्यापार से भी ज्यादा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कूटनीतिक रिश्ता 75 साल से ज्यादा पुराना है। उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच हुई डील कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। शिवानी शर्मा और प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
4: यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया से द्विपक्षीय वार्ता के लिए जकार्ता पहुंचे हैं। इससे पहले वो 2018 में गए थे और अब उनकी ये यात्रा दोबारा हो रही। पहली यात्रा से अब तक इंडोनेशिया के साथ रिश्तों के कई नए पन्ने, कई नए अध्याय जुड़ चुके हैं। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जाहिर तौर पर यह दूसरी यात्रा बेहद ऐतिहासिक, खासतौर पर दो अहम डील्स, लेकिन जो पेटीएम का जिक्र और आईएम एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, उसके बारे में डिटेल में बताइए।
5: मैं एक छोटा सा संशोधन कर दूं, प्रधानमंत्री मोदी का यह चौथा दौरा है और भारत और इंडोनेशिया के बीच में रणनीतिक साझेदारी बनने के बाद से 2018 के बाद चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन बहुपक्षीय यात्रा उनकी इससे पहले 2022 और 2023 में भी हुई है। लेकिन यह दौरा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में जो वैश्विक धरातल के ऊपर घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल देखने को मिल रही है, उसके मद्देनजर भारत और इंडोनेशिया का करीब आना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जैसा आपने भी बताया कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में द्विपक्षीय कारोबार बढ़ा है, दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों बड़ी आबादी वाले देश भी हैं और दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। उस लिहाज से अगर हम आर्थिक लिहाज से देखें, दोनों का निवेश बढ़ाना और साथ ही जो QRIS है इंडोनेशिया का और भारत का जो UPI सिस्टम है, इन दोनों के बीच में साझेदारी बढ़ने का मतलब होता है कि अगली बार यदि आप घूमने के लिए बाली जाएं तो अब आप वहां पर अपने UPI से या QR कोड से, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में चूंकि लोग जाते हैं, कारोबार करते हैं इंडोनेशिया के साथ में, उस कारोबार को भी सहूलियत मिलेगी। लेकिन यहां पर मसला केवल जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या UPI तक सीमित नहीं है, चाहे ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइल हो, चाहे अंतरिक्ष के अंदर सहयोग हो,
4: हर लिहाज से दौरा बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा अभिवादन और स्वागत निश्चित तौर पर इंडोनेशिया से मजबूत रिश्तों का एक परिचायक है। एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंचे तो वहां खुद राष्ट्रपति अगवानी करने के लिए आए।

0: जकार्ता का इस्ताना मर्डेका, इंडोनेशिया का मुख्य प्रेसिडेंशियल पैलेस, इसे स्टेट पैलेस भी कहा जाता है। इसी जगह पर आज भारत इंडोनेशिया की दोस्ती ने दम दिखाया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता पहुंचे थे तो उनकी अगवानी करने के लिए खुद राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो एयरपोर्ट पर मौजूद थे।
1: सबसे पहले
0: के लिए खुद राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो एयरपोर्ट पर मौजूद थे। कूटनीतिक मोर्चे पर एक राष्ट्राध्यक्ष का ऐसा करना अहमियत को दिखाता है।
1: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: प्रधानमंत्री मोदी भी राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की अगवानी पर गदगद हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के अंदाज से बहुत प्रभावित हूं। 2018 में हमने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया, जिससे हमारे लोगों को फायदा हुआ। पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि इस यात्रा के दौरान साझेदारी को और मजबूत करने के मकसद से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति प्रबोवो और मैं योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। इससे हमारे देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और गहरे होंगे। इंडोनेशिया में रहने के दौरान मैं भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। पीएम मोदी आज दोपहर में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद शाम में भारतीयों के बीच भी जाएंगे। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत और इंडोनेशिया की संस्कृति काफी करीब रही है। दोनों में हिंदू बौद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान कॉमन है। इसकी झलक 6 जुलाई को जकार्ता में भी दिखी। होटल पहुंचने पर सांस्कृतिक कलाकारों ने पारंपरिक रूप से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने भी तल्लीन होकर उन्हें सुना। बात संस्कृति की हो या कूटनीति की, हर मोर्चे पर भारत इंडोनेशिया का साझा प्रयास रंग दिखा रहा है।

0: भारत और इंडोनेशिया के बीच दूरी यूं तो महज 100 मील की है और संबंध सदियों पुराने, मगर बीते कई दशकों के दौरान भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में एक सुस्ती देखने को मिली। लेकिन अब ये सुस्ती न केवल बड़ी तेजी से टूट रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को नई रफ्तार देने का भी फैसला किया है। अस्त्र और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के साथ साथ अंतरिक्ष में भी दोनों देश अपनी साझेदारी को लेकर जाएंगे। समुद्री आवाजाही की निगरानी के लिए भी भारत और इंडोनेशिया मिलकर काम करेंगे। साथ ही इंडोनेशिया के कृषि क्षेत्र से लेकर इंडोनेशिया के स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर भारत अपने निवेश को बढ़ाएगा।
1: 8 जुलाई तक पीएम मोदी इंडोनेशिया में है। बुधवार को भी कई अहम कार्यक्रम है। उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री अपने इस विदेश दौरे के अगले पड़ाव पर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा 3 देशों का है। पहला पड़ाव इंडोनेशिया है, अगला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया होगा और फिर वो न्यूजीलैंड जाएंगे। इस बार प्रधानमंत्री का ये 3 देशों का दौरा कई मायनों में अहम है।
1: कई वैश्विक चिंताओं के बीच मोदी अभी इंडोनेशिया दौरे पर हैं। अगला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया होगा, फिर 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में रहेंगे। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज के निमंत्रण पर मेलबर्न की यात्रा पर जाने वाले हैं। जकार्ता से बुधवार को वो सीधे मेलबर्न के लिए रवाना होंगे। ये तीसरा मौका होगा जब मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचेंगे। 12 साल के अंतराल पर प्रधानमंत्री मेलबर्न पहुंचने वाले हैं। वहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई अहम साझेदारी की उम्मीद है। पीएम मोदी मेलबर्न में प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे, जहां वो दोनों देशों के शीर्ष बिजनेस लीडर को संबोधित करेंगे। मोदी प्रवासी भारतीयों की विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे, जो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का एक मजबूत स्तंभ है। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 4 साल पूरे हुए हैं। इसके बीच पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा हो रहा है। इस दौरे पर दोनों देश रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को नई गति देने पर अहम फैसला कर सकते हैं। यूरेनियम और एआई जैसे अहम मुद्दों पर भी ठोस फैसला लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया से पीएम मोदी 10 जुलाई को न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली राजकीय यात्रा होगी। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री लक्सन के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अभी हाल ही में भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी।
3: ये तीनों के तीनों देश जो हैं, वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हिंद महासागर की जो हमारी नीति है और पूरे जो पिछले कई साल से जो इंडो पैसिफिक का नैरेटिव है, उसका बहुत अहम हिस्सा है। और क्योंकि अमेरिका की जो नीति है अभी चीन के प्रति और इंडो पैसिफिक की अपनी उनकी स्ट्रेटजी, उसमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं और ये तीनों के तीनों जो देश हैं चीन के साथ काफ़ी इंगेज्ड हैं, लेकिन इनकी चिंताएं भी काफ़ी बड़ी हैं पिछले कुछ सालों में चीन के प्रति। तो इसमें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का वहां जाना, अपनी बदलती हुई इस पूरी एशिया के अंदर ग्लोबल परिस्थितियों के अंदर उनसे मिलना और नई एक नीति इस इलाके के लिए बनाने में काफी कारगर सिद्ध होगी।
1: पीएम मोदी का 3 देशों का यह दौरा सांस्कृतिक संबंधों, रक्षा सहयोग और व्यापार कूटनीति का संगम है। माना जा रहा है कि इससे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन को आने वाले समय में मजबूती मिलेगी। आज तक ब्यूरो।
2: इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach In association with
5: Bharat ki apni electric sawari Sokudo।
7: Accogay, the number one Korean skincare brand.
6: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
7: Now in India.
10: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: पीमाक, the mustard specialist since 1933.
14: सरसों से सरसों। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
15: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
16: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
17: परमिशन लेनी चाहिए ना,
16: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
18: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
16: आई, फिर अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: जकार्ता में अभूतपूर्व स्वागत और सर्वोच्च सम्मान के बाद बोले पीएम मोदी, भारतीय साझेदारी से विकास का नया अध्याय। इंडोनेशिया में आईआईएम कैंपस और यूपीआई शुरू होगा। ईवीएम ब्रह्मोस की बड़ी डील। एसआईटी जांच के दायरे में 124 करोड़ के सभी बड़े इवेंट। प्राण प्रतिष्ठा से ध्वजारोहण तक सभी हाई प्रोफाइल समारोह के खर्च का होगा ऑडिट। शुरुआती रिपोर्ट में नोट छिपाने, फुटेज हटाने सहित गबन के 70 मामले। अयोध्या कांड में विपक्षी हमले पर योगी का करारा पलटवार। कहा, वक्फ में हजारों करोड़ की लूट पर समाजवादी और कांग्रेस चुप क्यों? राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की क्या बात करेंगे?
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, दमिश्क में जोरदार धमाके हुए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरियल ब्लास्ट की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और सीरिया की राजधानी दमिश्क में ये सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जिस होटल में मैक्रो रुके हुए थे उसके पास में ही जोरदार धमाके हुए हैं। अब ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीरिया की राजधानी दमिश्क में जोरदार धमाके हुए हैं। और वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी जोरदार धमाके थे, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। वो भी ऐसे खास मौके पर जब बड़े नेता मौके पर मौजूद। और धमाकों की वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें लोगों को भागते हुए आप देख रहे हैं। हर जगह अफरा तफरी का माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं। और यही वो जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ ही दूरी पर मेट्रो होटल में रुके हुए थे। और देखिए इसी खबर पर बात करेंगे। और ये फुटेज भी हम देख रहे हैं। प्रणय, जरा बताइए कि क्या ये धमाके जो हुए उसके बाद किस तरह के यहाँ पर हालात और कितनी अहमियत थी जिस वक्त ये धमाके हुए?
2: देखिए, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दौरे के लिए आए हुए हों, इस चहल पहल वाले इलाके के अंदर, यहां से करीब में ही वो फोर सीजन्स होटल है जहां पर राष्ट्रपति मैक्रों रुके हुए थे। उन्हें जाना था अहमद अल शरा से, सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। और उससे ठीक पहले ये जो कार विस्फोट है वो होता है। आप जलता हुआ वाहन देख सकते हैं, किस तरीके की अफरा तफरी। निश्चित रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घनी आबादी वाले बसाहट वाले इलाके के अंदर यदि इस तरीके का शक्तिशाली विस्फोट होता है, निश्चित रूप से नुकसान भी हुआ होगा। अभी उसकी पुष्टि जो सीरियन अथॉरिटीज हैं उसकी तरफ से नहीं की गई है। लेकिन यहां आप देख सकते हैं, इससे ठीक पहले यहां पर लोग हैं, ये शख्स तो लगभग उसकी चपेट में आ गया था यहां पर, और फिर भी वो भाग के बचता हुआ नजर आता है। यहां पर भी अफरा तफरी है क्योंकि एक पुल के करीब में ये हुआ है। और उसके साथ साथ काफी संख्या में यहां पर वाहन है। और दो धमाकों की खबर हिमांशु आ रही है, एक के बाद एक दो धमाके, यानी सीरियल ब्लास्ट। सुरक्षा में एक बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही निश्चित रूप से जो सीरियन अथॉरिटीज की तरफ से हुई होगी, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति का यह पहला सीरिया दौरा था बशर अल असद की सरकार के जाने के बाद से। इनफैक्ट काफी लंबे समय से सीरिया के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उसके बीच में फ्रांस के राष्ट्रपति का वहां पहुंचना निश्चित रूप से एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इवेंट था। लेकिन इस धमाके ने एक बार फिर यह साबित किया है कि सीरिया में अभी भी हालात सामान्य नहीं।
0: और ये हमने देखा कि इससे पहले भी धमाके हुए, ये नहीं है कि ये पहला धमाका है तो हम ये समझ सकते हैं कि अब अचानक से कुछ हुआ। इससे पहले भी लगातार ऐसे हुए हैं और अस्थिरता लाने के लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, कहा जा सकता है।
2: बिल्कुल कहा जा सकता है। और इनफैक्ट ये सीरिया के हालात हैं ही सही। अगर आप देखें कि पिछले करीब एक सवा साल से सीरिया के अंदर कोशिश हो रही है, अहमद अल शरा की जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि पूरे सीरिया पर नियंत्रण स्थापित हो जाए, जो कि अभी भी उसका नहीं है। साथ में अन्य देशों की तरफ से भी मदद की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी राजनीतिक स्थिरता है और न ही सुरक्षा के हालात पूरी तरह से ऐसे हैं। लेकिन फिर भी फ्रांस के राष्ट्रपति का ये निर्णय करना कि वो सीरिया में जाएंगे, दमिश्क में जाएंगे, और उसी दौरान ये धमाका हो जाना, निश्चित रूप से सुरक्षा के जो इंतजाम है उनके ऊपर तो गंभीर सवाल खड़ा करता ही। लेकिन अभी भी बहुत सारे डिटेल्स का आना बाकी है। ये दोनों वाहन कौन थे, इसके पीछे कौन सा संगठन है, क्या निशाने पर इमैनुअल मैक्रों थे,
0: यही मैं आपसे थोड़ा सा और समझना चाहूंगा। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक शख्स एक घर में, या कह सकते हैं होटल में, वो अचानक खिड़की पर जाता है। जैसे ही खिड़की से देखता है तो आप देखिए यहाँ पर गाड़ियों में धमाके हैं, हर जगह अफरा तफरी है, भाग दौड़ का माहौल। और दूसरी तस्वीर जो प्रणय बता रहे थे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने सारे लोग मौजूद है, गाड़ियों की आना जाना यहाँ पर है। और ठीक इस जगह पर ये देखिए, यहाँ पर ठीक इस जगह पर ये ब्लास्ट होता है और यहाँ पर कितने लोग मौजूद है। आप एक बार फिर से अगर इस फुटेज को देखेंगे, यहाँ पर कितने लोग मौजूद है, बहुत सारे लोगों की हो सकता है यहाँ पर जान चली गई हो, क्योंकि एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पर ये लोग ढेर दिखाई दे रही है। ये लोग यहाँ पर मौजूद है और उसी वक्त यहाँ पर ये ब्लास्ट होता है। तो इन ब्लास्ट को देखते हुए, इनकी इंटेंसिटी को देखते हुए आप क्या कहेंगे?
2: निश्चित रूप से इसको देखकर लगता है कि ये एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस का विस्फोट था, गाड़ी के अंदर रखा गया था। इस तरीके की घटनाएं हमने दुनिया के अलग अलग इलाकों के अंदर देखी है, जहां पर विस्फोटक से लदी हुई गाड़ी जो है वो पहुंचती है किसी स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट पे, किसी ऐसी जगह पर जहां पर आतंकी घटनाओं के अंदर हिमांशु ये देखने को मिला है कि कोशिश होती है आतंकियों की कि जो विस्फोट है उसका दायरा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि जो इम्पैक्ट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो।
3: लेकिन एक सवाल था, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने आप ये कह सकते हैं सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसे वक्त पर अगर यहाँ पर होता है
2: आप इस फुटेज को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, ये जो व्हाइट ड्रेस के अंदर यूनिफॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं, ये सारे ट्रैफिक पुलिस कर्मी है यहाँ पर। इतना जो सुरक्षा का जमावड़ा है ये साफ तौर पर बताता है कि यहाँ से नजदीक में ही वीवीआईपी मूवमेंट है, वो फोर सीजन होटल, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि दमिश्क का वो फोर सीजन होटल जहाँ पर इमैनुअल मैक्रॉन रुके हुए थे, उससे ठीक नजदीक में यहाँ पर ये जो वाहन खड़े हुए हैं उनके ऊपर भी निश्चित रूप से इम्पैक्ट आया होगा, जो लोग इसकी चपेट में आया है वहां इम्पैक्ट आया होगा, और जैसी खबर मिल रही है उसके मुताबिक दो धमाके हुए हैं अलग अलग। अभी हम ये पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि जो दोनों फुटेज हम चला रहे हैं क्या वो एक ही घटना के हैं या दो अलग अलग घटनाओं के, क्योंकि रिपोर्ट दो घटनाएं हुई है
3: जी, और दो घटनाएं हुई, क्योंकि देखिए जिस जगह से बालकनी से वो बनाया गया है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये बाइक है, दो बाइकें हैं और यहां पर कुछ लोग हैं, ठीक इस जगह पर ये धमाका होता, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। और जब ऐसे में आपने भी बताया कि वीवीआईपी मूवमेंट जब आसपास में होता है इतने सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर रहते हैं,
2: मुझे लगता है हिमांशु चेक किया जाता है ना, ये सब फुटेज को फ्रीज करें कुछ देर के लिए, जिस पॉइंट के ऊपर एक्सप्लोजन होता है तो उस फुटेज को वहां रोकने पे आपको नजर आएगा कि किस तरीके से कौन सा वो संभावित वाहन हो सकता है, क्योंकि यहां पर पुलिस की बाइक्स जो हैं, जो ट्रैफिक
3: एग्जैक्टली,
2: तो यहां पर खड़े हुए वाहन के अंदर विस्फोट होता है, और साथ ही यहां पर एक चेकबॉक्स भी लगा हुआ है, तो अब क्या उसके अंदर जो है विस्फोट हुआ है या वाहन में हुआ है, ये पुलिसकर्मी यहां पर गिरे हुए भी नजर आ रहे हैं। और आप सोचिए कि जो रेडियस ऑफ इंपैक्ट जिसे कहा जाता है, यानी उसका जो पूरा वृत्त है, उसका जो पूरा दायरा है वो कितना ज्यादा बड़ा है, जिसकी चपेट के अंदर यहां दूर तक खड़े हुए लोग भी आए हैं, कुछ लोग भागने के अंदर कामयाब जरूर हुए हैं जो सीधे तौर पर इसकी चपेट में नहीं आए, लेकिन इस जगह पर वो हुआ है। अब ये यहां पर खड़े
3: लोग यहां भी भाग रहे हैं, देखिए अफरा तफरी नीचे भी वहां ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कितनी दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।
2: बिल्कुल, तो ये जो वाहन है यहां पर धमाका होता है, यानी यहां पर ठीक पुलिसकर्मी खड़े हैं, उन्हीं के पास उनकी जो बाइक्स हैं वो भी खड़ी हैं। अब यह बड़ा सवाल है कि क्या किसी कार के अंदर यहां पर विस्फोट हुआ है, या जो बाइक थी जो कोई छोड़ के गया हो सकता है कि पुलिस उसकी जांच कर रही हो उसके अंदर विस्फोट हुआ हो, ये सारी चीजें अभी
3: एक और बात, क्योंकि आप ये रोड देखेंगे इसको पूरा खाली कराया हुआ है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट, जैसे आपने कहा वीवीआईपी मूवमेंट से पहले इस तरह से आम हमने देखा है कि रोडों को रोक दिया जाता है ट्रैफिक के लिए, आम लोगों के लिए, अब ये पूरा खाली है, पूरा सुरक्षा का घेरा यहां पर, उसके बावजूद यहां पर ये धमाका होना, ये तो सिक्योरिटी लैप्स ही कहा जाएगा, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट में लगातार चेक किया जाता है कि कहीं पर कोई आईडी तो किसी ने प्लांट नहीं किया, कुछ विस्फोटक तो नहीं है,
2: ऊपर से लिए गया एंगल है, तो ये एक फ्लाईओवर है, और इस फ्लाईओवर के नीचे यहां अंडरब्रिज से ये रोड सीधी यहां पर जाती है जहां पर ये धमाका हुआ है, इसीलिए कुछ लोग भाग के आपको यहां पर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, ये थ्रूपेयर है। लेकिन आप ये जो धूल का गुबार है, ये रेडियस का जो इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं, इम्पैक्ट का रेडियस, और उसके अंदर ये बड़ा दायरा, यहाँ पर ये जो गाड़ियां हैं ये भी क्षतिग्रस्त हुई होंगी निश्चित रूप से। देखिए ये एक वाहन है, यहाँ पर ये पीछे जा रहा है, निश्चित रूप से कुछ संदेहास्पद लगा होगा, उसके बाद ही पुलिसकर्मी भी यहाँ जांच कर रहे हैं।
3: लेकिन अभी ये बहुत बहुत क्रूशियल टाइम है, अभी दो धमाकों की बात कही जा रही है, लेकिन हो सकता है कुछ और भी हो, तो वहां पर भी सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी, वो भी तब जब इतनी बड़ी शख्सियत आपके आपके यहाँ पर।
2: बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर जो दमिश्क के अंदर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो तो इसके बारे में जांच कर ही रही होंगी, जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है इसके पीछे संगठन कौन था, किसने इन हमलों को अंजाम दिया गया, क्या कोई ये आत्मघाती हमला था, क्या वहां पर वो हमलावर भी था, या वो वाहन को छोड़ के गया और उसके बाद उसके अंदर धमाका हुआ, कुछ चीजें अभी स्केची है, यानी उसके जो डिटेल्स है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन
3: इस फुटेज को अगर देखिए, खास तौर पर सिर्फ इस फुटेज को, तो आप देखिए ऐसा लगे, क्योंकि ठीक पास में एक और गाड़ी मौजूद है, उससे ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इसी कार में ब्लास्ट हुआ, ऐसे शुरुआती तौर पर जिस तरह से वो गाड़ी जल रही है, ऐसा लग रहा है कि उसी कार में ब्लास्ट हुआ और पूरे एरिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है।
2: बिल्कुल इस एरिया को भी नुकसान पहुंचा है निश्चित रूप से, यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा इलाका जो है ये पूरा काला हो चुका है, यानी धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसने न केवल वाहन को नुकसान पहुंचाया है, ये काला जो धुआं है इसके अंदर ये बताता है कि इसके अंदर इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस के साथ साथ उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो ज्वलनशील पदार्थ है वो भी रखा गया था, यानी विस्फोट के बाद आग भी लगे और जो उसका दायरा है वो ज्यादा व्यापक हो, इस तरीके के इंतजार की कोशिश है।
3: एक बार फिर से शुरुआती तौर पर कुछ भी
2: इतनी जल्दी। हाँ। आप इसे यदि इस फ्रेम को यहाँ पे फ्रीज कर पाए
3: तो, हाँ, हो सके तो इससे पहले जब विस्फोट होता है उससे थोड़ी देर पहले इसको फ्रीज,
2: इसको यदि हम स्लो मोशन में दिखा सके तो आपको एक एक फ्रेम बाय फ्रेम वो चीज समझ में आएगी कि देखिए यहाँ पर ये वाहन है, यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हैं, उनके बीच में जो भी बात हो रही थी उस समय हमें नहीं पता, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी यहां से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। और आप देखिए एक पुलिसकर्मी भागते हुए यहां तक आता है, यानी उन्हें या तो किसी चीज का अंदेशा था या प्लस ये एक ट्रैफिक पॉइंट टाइप का है क्योंकि एक चौराहा है, चौराहे के पास इसी जगह पर पेवमेंट के पास में यानी फुटपाथ के पास में तमाम पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी यहां पर खड़े हुए हैं। ये लग रहा है यूनिफॉर्म देखे कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं यहां पर, जो शायद उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए जो वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान होता है। और खासतौर पर इस इलाके को यदि आप देखें तो ये फोर सीजंस होटल्स के पास में है, साथ ही आप इस इलाके को देखिए ये ऐसा लग रहा है कि ये होटल ही है, वो फोर सीजंस होटल है। उसके साथ साथ ये काफी घना बसा हुआ जो कमर्शियल इलाका है, रेसिडेंशियल इलाका है, प्लस बड़ा आबादी वाला इलाका है, चहल पहल वाला इलाका है क्योंकि आप लोगों की आवाजाही यहाँ पर देख सकते हैं, कमर्शियल मूवमेंट भी यहाँ पर है। और ये देखिए यहाँ पर कितने वाहन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये बस नजर आ रही है, लोगों की आवाजाही भी है। और इन सब के बीच में यदि धमाका होता है, आप सबसे पहले जो इसकी चपेट में आए हैं वो सुरक्षा कर्मी है जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर थे।
3: अच्छा, 2 जुलाई की भी बात की जा रही है कि 2 जुलाई को भी यहाँ पर धमाका हुआ था जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने की भी बात थी, और उसके बाद फिर से ये धमाका होना, एक छोटे से अंतराल के बाद ये धमाका होना, ये बता रहा है कि
2: टाइमिंग पर तो सवाल उठ ही रहे हैं माशु। इस टाइमिंग पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसी शख्सियत अगर आ रही हो तो निश्चित रूप से पुलिस ने वो जो पूरा इलाका है वो कॉर्डन किया होगा। आप यहाँ पुलिस की मौजूदगी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसी तरीके की जोखिम नहीं लेना चाहते, इसीलिए भारी पैमाने पर यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त भी किया गया था। लेकिन उसी के बीच में विस्फोट होता है और इस फुटेज को बार बार देख रहे से ये पता चलता है कि इसी जगह पर विस्फोट हुआ है और संभवतया ये जो वाहन खड़े हैं इन्हीं में से किसी के अंदर विस्फोट हुआ है क्योंकि आप देखिए यहां से ये इस वाहन का पीछे जाना और उसी दौरान यहां पर विस्फोट का।
3: एक बार फिर से इस वीडियो को अगर यहां पर चलाएंगे तो जहां आपने बताया कि जिस जगह पर ठीक इस जगह पर ये होता है ब्लास्ट, ये जो आप देखिए
2: ये वाहन पीछे जा रहा है यहां पर एग्जैक्टली इस जगह पर कुछ है जिसके अंदर, और
3: अगर इसको पॉज कर सके पीसीआर अगर थोड़ी देर के लिए उस विजुअल को पॉज कर सके, मैं फिर बताना चाह रहा हूं जो पॉइंट ये
2: एग्जैक्टली और अच्छा, आप ये देखिए ये जो है अच्छा, एक जंक्शन बॉक्स टाइप की कोई चीज यहाँ पर लगी हुई है फुटपाथ के पास में, उसके ठीक नजदीक में खड़े पुलिसकर्मियों के पास में ये धमाका हुआ है। ये पुलिसकर्मी यहाँ पर जो घायल हुए हैं, ये वाहन ये बाइक जो थी वो यहाँ पर गिरी है। अब
3: अच्छा ये खबर आ रही है फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों पूरी तरह से सुरक्षित है, ये अच्छी खबर है क्योंकि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष कोई जाता है दूसरे देश में तो बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी होती है उस देश की जो उनका स्वागत करने के लिए रहता है। ये खबर बिल्कुल पुष्ट हो चुकी है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति
2: मैक्रों सुरक्षित है हिमांशु, बल्कि उनकी जो मुलाकात का कार्यक्रम था सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से वो भी समय के अनुसार हुआ है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इमैनुअल मैक्रों गए हैं अहमद अल शरा से मिलने के लिए और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनकी मीटिंग चल रही है।
3: अभी 3 तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उन तीनों तस्वीरों में आप देखेंगे एक तरफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों हैं जो सुरक्षित बताए जा रहे हैं और दो जगह जो दो धमाकों की खबरें आती हैं और दो धमाकों में एक धमाका जो देखा जाता है कि
2: जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनकी मीटिंग चल रही है।
3: अभी 3 तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उन तीनों तस्वीरों में आप देखेंगे एक तरफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों हैं जो सुरक्षित बताए जा रहे हैं और दो जगह जो दो धमाकों की खबरें आती हैं और दो धमाकों में एक धमाका जो देखा जाता है कि शायद होटल का रूम है, वहां से जैसे ही नीचे नजर जाती है गाड़ी पूरी तरह से जली हुई है और ध्वस्त हो चुकी है गाड़ी और आसपास बहुत नुकसान पहुंचा है। और पहली जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बड़ा परेशान कर देने वाली है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे और इतने सारे लोग मौजूद रहते हैं, सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर मौजूद थे, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और अचानक जोरदार धमाका होता है एक बार फिर, क्योंकि ये वीडियो जो हम लगातार दिखा रहे हैं अब कुछ नई तस्वीरें आ रही है वो भी दिखा रहे हैं क्योंकि हर पल एक नया जो नई खबर आ रही है अपडेट आ रही है तो वो भी अब आप देखिए। ये मैं फिर बता रहा हूँ ये है वो पॉइंट यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अब कुछ और भी तस्वीरें आ रही हैं तो वो भी हम यहाँ पर आपको बता दें। और ये है वो फुटेज और इस फुटेज में भी आप देखिए कि जोरदार धमाका हो रहा है, इसी फुटेज को यहाँ पर दिखाया गया है और इस जगह पर ये ब्लास्ट होता है जो बार बार हम बता रहे हैं और वहां पर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर ब्लास्ट हुआ पहले से तैयारी करके आए होंगे जो हमलावर या फिर जो भी जिन लोगों ने प्लान किया होगा आईईडी जो बताया जा रहा है वो कुछ शायद हो सकता है कि कोई बाइक हो या कुछ
2: ये भी संभव है कि यहाँ पर एक डस्टबिन जो है वो नजर आ रहा है,
3: हो सकता है
2: कि उस डस्टबिन के अंदर कोई ऐसा पैकेज वगैरह एग्जैक्टली ये जो जगह है और यहीं पर आपको विस्फोट नजर आता है तो ये संभव है कि वाहन में विस्फोट हो सकता है। और अब आप देखें अगर तो दोनों चीजों को तस्वीरों को अगर देखें एक चलती हुई कार और ये वाहन तो दो घटनाएं
4: الله اكبر عم صور قنصار انفجار ثاني الله اكبر
0: देखिए एक और ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये फुटेज अगर आप देखेंगे तो बहुत दूर से ये किसी शख्स ने ये फुटेज बनाया है अपने मोबाइल में और आप देखिए आसमान में धुएं का गुबार यहाँ पर देखा जा सकता है। गाड़ियाँ इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीजे ब्लास्ट से सीरिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, अलग अलग जगह पर यह ब्लास्ट हुआ है और एक ब्लास्ट आप देखते हैं जिसको हम वीडियो में आपको दिखा रहे थे कि या तो वो डस्टबिन है या क्या है, उसी जगह पर एक ब्लास्ट होता है। और दूसरा फुटेज जो आपको दिखाया है एक कार में जोरदार ब्लास्ट होता है जो कि बालकनी से देखा गया। नीचे कार पूरी हुई जलती हुई दिखाई दे रही है और ये देखिए दूर तक अगर आप देखेंगे तो इस धुएं का गुबार देखा जा सकता है। इस धमाके के बाद लोगों में जो दहशत थी, लोगों अपने मोबाइल निकालकर इस जो धमाका हुआ है इसको अपने कैमरे में कैद किया और अब अलग अलग वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि लोगों के अंदर डर का माहौल है क्योंकि सीरियल ब्लास्ट बताए गए एक जगह नहीं हुआ है, अलग अलग जगह पर हुए हैं। दो धमाके बताए जा रहे हैं जो अलग अलग जगह पर हुए हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब फ्रांस के राष्ट्रपति अभी सीरिया दौरे पर हैं। हालांकि मैक्रो सुरक्षित हैं लेकिन दमिश्क में दहशत का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। किसने ब्लास्ट किया, क्या निशाने पर मैक्रो थे, हालांकि ये जांच का विषय है, बहुत बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी आप इन अलग अलग वीडियोज को देखेंगे जो सबसे पहले हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं तो इसमें आपको पता चलेगा कि दहशत फैलाने की पूरी कोशिश थी, वो भी ऐसे वक्त पर जब एक वीवीआईपी मूवमेंट हो, जब सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हों और ऐसे वक्त पर इतना जोरदार धमाका ये बताता है। एक और फुटेज आप देखिए, एक और फुटेज आप देखिए जो ये बनाया गया है यहाँ पर। अब जैसे ही फुटेज धमाका होता है लोग भाग रहे हैं, जान बचाने के लिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगला बम कहाँ ब्लास्ट होगा, अगला कहां पर धमाका होगा। तो ऐसे में जो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने की जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाओ गाड़ियां थी वो वहीं की वहीं थम जाती हैं और एक बार फिर ये फुटेज आप देखिए, बहुत दूर से ये वीडियो बनाया गया है लेकिन इसमें एक अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है, इसमें डर दहशत साफ दिखाई दे रही है। दो अलग अलग जगहों पर धमाके होते हैं और उसके बाद हर जगह अलर्ट घोषित कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, तलाशी ली जा रही है और वीवीआईपी मूवमेंट को भी लेकर अब सुरक्षा के दोबारा से पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए होंगे प्रणेश, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब धमाके हो रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आगे भी धमाका हो सकता है, 5 मिनट बाद कहीं और भी धमाका हो सकता है, कुछ देर बाद कहीं और भी धमाका हो सकता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो इस वक्त ये है कि कहीं और धमाका ना हो, लोगों की जान बचाई जाए। और इस वक्त पर बहुत ज्यादा जो सुरक्षा एजेंसियां उनके लिए काम बढ़ गया होगा
2: निश्चित रूप से। और इस फुटेज को लेकर भी निश्चित रूप से कई सवाल तो ये भी हैं क्योंकि इस व्यक्ति को जो भी ये फुटेज दे रहा है, हमें नहीं पता सोशल मीडिया पर ये फुटेज है, लेकिन इस शख्स को या तो यहाँ पर पहले से कुछ अलर्ट था, लोगों को अंदेशा था क्योंकि धमाके से ठीक पहले ये शख्स वीडियो जो बना रहा है जिसका भी ये वीडियो है, लेकिन यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट है इसका मतलब कुछ अंदेशा था यहाँ पर। और ये जो डस्टबिन है संभवतया इस डस्टबिन के
0: अंदर जूम भी हुआ है, आप देखिए
2: एग्जैक्टली। तो ये जांच का विषय है कि एग्जैक्टली ये फुटेज कैसे कैप्चर किया गया और इतनी डिस्टेंस से जो वो शख्स जो है वो कैप्चर कर रहा था और एग्जैक्टली वो मोमेंट जो है वो कैप्चर हुआ है जिस समय उस डस्टबिन के अंदर धमाका होता है। तो नजदीक खड़े पुलिसकर्मी जो है वो पूरी तरह से
0: एक बड़ी खबर आ रही प्रणय, वो बता दे कि इस धमाके में 4 पुलिसकर्मी सहित 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं कि इस जहां पर ब्लास्ट हुआ उसके पास में सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, आम लोग मौजूद थे, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, 4 पुलिसकर्मी सहित कुल 18 लोग घायल हुए हैं जिन्हें सीधे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हो सकता है ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाए, इसीलिए अभी सतर्कता बरती जा रही है। 4 पुलिसकर्मी 18 लोग
2: बिल्कुल, आप यहाँ अफरा तफरी तो मची ही हुई है, पर ये जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर आप देखिए कि इसके पास में कोई भी शख्स नहीं था जिस डस्टबिन के अंदर ये धमाका हुआ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के अंदर तो बड़ी चूक हुई है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर जिस तरीके का धमाका हुआ है और दो धमाकों की खबर आ रही है, हालांकि इन सब के बीच राहत की बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो कि दमिश्क के दौरे पर हैं, दमस्कस में इस समय मौजूद हैं, सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, वो सुरक्षित हैं।
0: ये भी बताया कि पर्यटन मंत्रालय के बिल्कुल बाहर ये धमाका हुआ है, पर्यटन मंत्रालय के बाहर ये धमाका हुआ है जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हैं और आम लोग भी घायल हैं। दूसरी जगह जो धमाका हुआ वहां पर भी कई लोग घायल हैं तो उनको भी अस्पताल इस वक्त पहुंचाया गया, ये अपडेट आया है इसमें।
2: तो आप यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती देख ही सकते हैं, साथ ही यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो भी निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं।
0: रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, दमिश्क में 2 धमाके होते हैं, 4 सुरक्षाकर्मी सहित 18 लोग घायल हुए, वो भी ऐसे वक्त पर जब मैक्रो वहां पर मौजूद है, आपके पास और क्या जानकारी अभी आ पा रही है?
5: हिमांशु, दरअसल ये असद रजीम के बाद जब वहां पर अहमद अल शरा की सरकार बनी है, जिसको समर्थन किया न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि साथ ही साथ फ्रांस ने भी उस सरकार का समर्थन किया था। अहमद अल शरा जो है वो एक जहादी थे और उनका संबंध जो अलकायदा से था, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप ने उनको सीरिया की सत्ता दी। उस बीच जो है अभी भी वहां पर कई सारे प्लेयर्स हैं सीरिया में जो अहमद अल शरा की सरकार को बिल्कुल कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं, चाहे उसमें पुराने रजीम असद रजीम के लोग हों या फिर जो ईरान की तरफ से हिजबुल्ला का बहुत बड़ा दखल वहां पर रहता है। तो अभी तक ये साफ नहीं हुआ है ये धमाके किसने किए हैं, लेकिन पहली बार जब सीरिया में नई सरकार में कोई विदेशी इस स्तर का मेहमान आया था, वो भी फ्रांस के प्रेसिडेंट, तो उस बीच वहां पर दो धमाके होते हैं। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं हमारे पास यही है कि जो मैक्रोन है वो सुरक्षित हैं, वो उस वक्त उस इलाके के आसपास नहीं थे जहां पर ये धमाके हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी इन धमाकों के पीछे हो सकता है उसका मंशा साफ है कि मैक्रोन के दौरे पर सीरिया की राजधानी दमिश्क में इस तरह के धमाके होना या फिर क्या आने वाले समय में और भी धमाके हो सकते हैं, इससे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अभी तक जो दो धमाके हुए हैं उसमें सीरियन की सरकार की तरफ से ये पुष्टि की गई है कि करीब 20 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जिसमें सुरक्षा पर तैनात जो रेजिम के पुलिस कर्मी थे वो भी शामिल है। तो अभी तक फिलहाल छनछन की खबरें सामने आ रही है, लेकिन काफी बड़ा एक हमला, वो भी तब जब फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो सीरिया के दौरे पर है और तस्वीरें भी सामने आई है सीसीटीवी फुटेज उन धमाकों की, तो काफी बड़े धमाके शहर के बीचों बीच जहां पर सीरिया की सरकार चलती है।
3: और अशरफ, की तस्वीरों को देखकर बिल्कुल लगता है कि डर दहशत फैलाने के मंसूबे लिए ये धमाके किए जाते हैं, जैसे दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, जो बड़ी खबर यहां पर आ रही है, पर्यटन मंत्रालय के बाहर ये धमाका होता है और बड़ी खबर ये भी है कि 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और भी बहुत से लोग यहां पर घायल हुए हैं, 15 से 16 लोग बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए हैं। दो धमाके अलग अलग जगह पर होते हैं, एक जगह बताया जा रहा है कि कार में ब्लास्ट होता है, तो दूसरी जगह जो आपने देखा पर्यटन मंत्रालय के बाहर जहां बहुत से सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, ये वो वीडियो है। और इस वीडियो को आप देखिए और ये देखिए, फिर से सवाल खड़े होंगे कि जो शख्स वीडियो बना रहा है, जिसने अपने मोबाइल में इस पल को कैप्चर किया है, ठीक उसी वक्त पर वो उस जगह पर जूम करता है जहां पर धमाका होता है, तो ये भी एक जांच का विषय जरूर बना हुआ है। ये एक और फुटेज यहां पर सामने आया, अगर इस फुटेज को आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि पर्यटन मंत्रालय के पास जोरदार धमाका हुआ और जिस वक्त जूम किया गया उसी वक्त वहां पर जोरदार धमाका होता है। वहां पर जो आप देख सकते हैं सफेद शर्ट में, जो हो सकता है कि वहां पर सुरक्षाकर्मी हो, 4 सुरक्षाकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, ठीक उसके पास में ये ब्लास्ट होता है, ठीक पास में जहां धमाका हुआ वहां कई मोटरसाइकिल बाइक भी आपको दिखाई दे रही हैं और उसी के पास में फिर ये धमाका। अब दो तस्वीर देखिए, एक और जो पहला वीडियो आया अब आप देखिए।

0: धमाका होने वाला है, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे थे, पूरे एरिया को सील किया हुआ था, लेकिन अचानक जब धमाका होता है तो उस वक्त अफरा तफरी मच जाती है और ठीक पास में जो लोग मौजूद रहते हैं उसमें सुरक्षाकर्मी भी हैं, वो घायल हो जाते हैं। तो दूसरी आप जो वीडियो देख रहे हैं, एक शख्स जो खिड़की से बाहर आता है, मोबाइल बनाता है, तो उसमें आप देखिए कि एक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है और बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में ही विस्फोट किया गया है। हालांकि अभी इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर हैं और सावधानी बरती जा रही है कि कहीं कोई और पैनिक ना हो धमाके की। इससे जुड़ी हुई हर एक खबर आपको देते रहेंगे और कहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट। Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
7: Savari, Sokudo.
8: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
2: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
3: वाह वाह वाह वाह।
2: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
4: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
5: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
10: ऑर्डर फॉर जेनिफर सी।
11: इज दिस माय डबल शॉट, डबल क्रीम, डबल फ्रॉथ, डबल पंप, डबल व्हिप, डबल स्लीव?
10: या, कैन यू हैंडल दैट मच कैफीन?
11: डिड यू नो डिस्कवर ऑटोमेटिकली डबल्स ऑल द कैशबैक यू हैव अर्नड एट द एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर?
10: Oh, really? That's great.
11: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
10: Yeah, you just said that.
11: Did you say I just said that?
10: Yeah, I'm cutting you off.
11: I can't have any more? Why not?
12: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
13: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
15: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here.
16: After beating Paraguay, France is still your favorite to win the title at plus 180. England is plus 550 to win it all, and they will face Norway in the quarterfinals and have a 35.

सीरियल धमाकों से जला सीरिया का दमिश्क। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के दौरे के वक्त हुए दो ब्लास्ट। मैक्रो पूरी तरह से सुरक्षित, फिलहाल राष्ट्रपति भवन में मौजूद। जकार्ता में अभूतपूर्व स्वागत और सर्वोच्च सम्मान के बाद बोले पीएम मोदी, भारतीय साझेदारी से विकास का नया अध्याय। इंडोनेशिया में IIM कैंपस और UPI शुरू होगा। EVM ब्रह्मोस की बड़ी डील। SIT जांच के दायरे में 124 करोड़ के सभी बड़े इवेंट। प्राण प्रतिष्ठा से ध्वजारोहण तक सभी हाई प्रोफाइल समारोह के खर्च का होगा ऑडिट। शुरुआती रिपोर्ट में नोट छिपाने, फुटेज हटाने समेत गबन के 70 मामले। अयोध्या कांड में विपक्षी हमले पर योगी का करारा पलटवार। कहा, वक्फ में हजारों करोड़ की लूट पर समाजवादी और कांग्रेस चुप क्यों? राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की क्या बात करेंगे? और दो दिन के इंतजार के बाद बादलों से घिरी दिल्ली में बारिश और तेज हवाएं। हाहाकारी मानसून ने मुंबई को बनाया बंधक। स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं रद्द। पुणे में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीरिया की राजधानी दमिश्क से बड़ी खबर। दो धमाके होते हैं और उसके बाद हर जगह अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हुए दिखाई दिए और ये धमाके उस वक्त हुए जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो सीरिया दौरे पर हैं। वो जैसे ही राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे, उसी वक्त बताया जा रहा है पर्यटन मंत्रालय के बाहर ये धमाका होता है। एक बम उस होटल के बाहर जा गिरा जहां मैक्रो ठहरे हुए हैं। धमाके में 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हुए, ऐसा बताया जा रहा है। और अब कई फुटेज भी सामने आ रहे हैं और उन फुटेज को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना जोरदार ये धमाका किया गया है। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, एम्बुलेंस के ठीक पास में एक गाड़ी खड़ी होती है, उस गाड़ी में जोरदार धमाका होता है। ये देखिए, और बताया जा रहा है कि एक होटल के बाहर धमाका हुआ, उसी होटल में जहां इमैनुअल मैक्रो ठहरे हुए थे। हालांकि इमैनुअल मैक्रो उस वक्त, एक बार फिर आपको बता दें, वो राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए थे जब ये धमाके हुए। सीरियल ब्लास्ट होते हैं, दो धमाके। बड़ी खबर आपको बता दें कि जो धमाके हुए हैं उस धमाकों पर फ्रांस का बयान सामने आ गया है और वो कह रहे हैं कि मैक्रो पूरी तरह से सुरक्षित। दमिश्क में धमाकों पर फ्रांस का बयान आया है और इस बात की जानकारी दी गई है कि मैक्रो पूरी तरह से सुरक्षित है। और जैसा कि एक बार फिर हमने आपको बताया कि उस वक्त अहमद अल शरा से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन मैक्रो पहुंचे हुए थे जिस वक्त ये धमाके होते हैं, और इसीलिए बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस बात की पुष्टि भी की गई है। फ्रांस का बयान सामने आया है दमिश्क में जो धमाके हुए हैं, और ये जानकारी दी गई है कि मैक्रो सुरक्षित हैं, अभी राष्ट्रपति भवन में हैं। हालांकि मैक्रो के होटल के बाहर धमाका होता है जिस होटल में वो ठहरे हुए थे, और एक पर्यटन मंत्रालय के बाहर धमाका होता है। और जब दो धमाके होते हैं तो कई लोग इसमें घायल होते हैं और अफरा तफरी का माहौल है। दूर दूर तक आप देखेंगे तो धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं, धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है, और ऐसे में लोग भागते हुए अपनी जान बचाते हुए यहां वहां जाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं, इमरजेंसी सर्विसेज अलर्ट पर हैं, और सीरियल ब्लास्ट क्या और भी कई जगह पर बम प्लांट किए गए हैं, IED प्लांट किए गए हैं, इस बात की जांच की जा रही है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है, अलर्ट पर रखा गया है दमिश्क को। दमिश्क में दहशत है, तो दूसरी ओर हमारे देश की अगर बात करें तो यहां पर बाढ़ बारिश की वजह से कई लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

0: बाढ़ बारिश से लोग कितने बेहाले हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। केरल के वायनाड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सड़क निर्माण परियोजना, वहां पर ही लैंडस्लाइड हो गई और उससे हुआ बहुत भारी नुकसान। लैंडस्लाइड के बाद काफी दूर तक मलबा फैल गया, साइट पर काम कर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। ये वीडियो आप देखेंगे केरल के वायनाड का बताया जा रहा है, और सड़क निर्माण योजना के तहत यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन अचानक लैंडस्लाइड होती है। और आमतौर पर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर देखा गया है कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद जोरदार तरीके से लैंडस्लाइड की तस्वीर भी आती है, वीडियोज भी आते हैं, जिसमें कई लोग घायल भी होते हैं। और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो बहुत से कर्मचारी थे जो यहाँ काम कर रहे थे वो इसकी चपेट में आ गए। पहाड़ी इलाकों में भी आमतौर पर देखा गया है जब जोरदार बारिश होती है और बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो उस वक्त लैंडस्लाइड की अलग अलग खबरें आती है। उत्तराखंड, हिमाचल में इस तरह की तस्वीरें आती रहती है, लेकिन केरल के वायनाड में भी देखिए सड़क निर्माण काम चल रहा था और उसी वक्त कई कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। ये बताया जा रहा है कि कई कर्मचारी मलबे की चपेट में आ गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, लोगों की जान बचाई गई, सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, मेडिकल इमरजेंसी टीम मौके पर मौजूद है और लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। और जो आसपास लोग मौजूद थे वही लोग सबसे पहले देवदूत बन के आते हैं और ये देखिए कि कैसे एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान तक लगा देते हैं। यहाँ देखिए हर जगह आपको मलबा दिखाई देगा, हर जगह आपको कीचड़ दिखाई देगी, और जो रोड यहाँ पर बनाई जा रही थी तो बड़े पैमाने पर जब ऊपर से मलबा नीचे आया तो सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो गया। और ये देखिए लोगों को कैसे बचाया जा रहा है, ऊपर से पानी की धार देखिए, ऊपर से आप पानी की धार देखिए कि पानी की धार कितनी तेज है, जो अपने साथ सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा है। यहाँ लोग जो मौजूद थे, जो काम कर रहे थे, उन्होंने ही रेस्क्यू किया, जो लोग उनके साथ में थे, जो काम कर रहे थे, जो इसकी चपेट में आए, उनकी जान बचाने के लिए सब जुट गए, सब ने अपनी जान नछावर कर दी, वो इसीलिए कि जान बचाई जाए। बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह, कागज की कश्ती की तरह बहते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े बड़े पेड़ देखिए, इतने बड़े पैमाने पर ये लैंडस्लाइड यहाँ पर हुई है कंस्ट्रक्शन साइट पर, जिससे बहुत भारी नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन जिसकी भरपाई कहीं नहीं हो सकती वो होती है इंसानी जान। और कई लोग इसकी चपेट में आई ये खबर है, और लोगों को बचाने के लिए मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई है, इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंच गई है, लेकिन सबसे पहले जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे वही लोग आके आते हैं कीचड़ में सनते हुए, अपने लोगों की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। ये फुटेज आपने देखा कि कितने बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुई, लेकिन वो तस्वीरें भी आपने देखी जहां पर लोग अपनी जान, अपनों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो सिर्फ केरल की ये हालात नहीं है, महाराष्ट्र में तो बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, इतनी बारिश हो रही है कि लोग परेशान हैं कि अब करें तो क्या, करें क्या। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें से मुंबई है, ठाणे है, पुणे है, और पुणे की भी आप देखेंगे कई तस्वीरें सामने आती हैं, कई गाड़ियां यहाँ पर डूब चुकी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह किया जा रहा है। कल्याण में भी आप देखेंगे, कल्याण में भी दूर दूर तक सिर्फ आपको पानी दिखाई देगा। रायगढ़ में आप देखेंगे, रायगढ़ में भी आपको पानी दिखाई देगा। ये तस्वीरें तो हम आपको 10 दिखा रहे हैं, 10 तस्वीरों में अगर कुछ कॉमन है तो वो है बारिश, बारिश की वजह से बर्बादी, लोगों की परेशानी बढ़ती हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह चलाए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियां फंस गई हैं तो उनको बचाया जा रहा है, कहीं गाड़ियों में लोग फंसे हैं तो उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। पुणे से बहुत सी तस्वीरें आप देख रहे हैं, 8 दिनों से ये बारिश लगातार जारी है, 8 दिन रुकने के नाम नहीं ले रही है। लोग कह रहे हैं कि बारिश रुके तो उसके बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू होंगे, बाकी घर के कामकाज होंगे, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। कहीं तो मकान भी बह रहे हैं, मकान ढह रहे हैं। अब जब मकान ढहने की बात की जा रही है तो यही बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे से एक खबर है जहां पुणे में 2 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। क्यों धराशायी हो गई? क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही थी और बारिश होने के बाद हालात लगातार बिगड़ रहे थे। लोग भगवान से प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बारिश रुक जाए, लेकिन अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। 7 से 8 दिन लगातार हो चुके हैं बारिश होते हुए, और पुणे से वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, भूस्खलन का एक बड़ा हादसा सामने आया, मावल में पहाड़ी का एक हिस्सा गिरा, घर पर आ गिरा, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। खबर मिली तो पुलिस प्रशासन राहत दल मौके पर पहुंचा, कई घंटों की मेहनत के बाद मलबा हटाया गया। प्रशासन ने लोगों से भूस्खलन संभावित इलाकों में सावधान रहने के लिए कहा है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है, क्योंकि अब आप देखिए ना, यहाँ पर पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा बताया जा रहा है कि पीछे आया और उसके बाद फिर ये मकान ढह जाता है। आफत वाली मूसलाधार बारिश इस वक्त बनी हुई है। तो पुणे की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं पुणे से ही है, जहां पर एक मकान पर एक मलबा गिर गया और उसके बाद तीन लोगों की मौत हो गई यहाँ पर यह बताया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि मावल में पहाड़ी का एक हिस्सा गिरकर एक घर पर आ गया। उसके बाद तीन लोग थे उस परिवार में, तीनों लोगों की मौत हो गई मलबे में दबने से। पुलिस प्रशासन राहत दल मौके पर पहुंचा, बहुत मेहनत की लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका, तीन लोगों की जान चली गई। लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया। अब ये देखिए, यहाँ पर कभी मकान हुआ करता था लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ मलबा है। भारी बारिश का अलर्ट है, लोगों की परेशानी नहीं थम रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई ऐसे वक्त पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए, हो सके तो पहाड़ों में अगर आप रह रहे हो तो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाइए, क्योंकि लैंडस्लाइड तो होता ही है, कभी कभी पहाड़ का जो बड़ा सा हिस्सा है वो नीचे की ओर आता है और ऐसे में लोगों की जान जा सकती है। तो बारिश के वक्त पर खास तौर पर सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीन लोगों की मौत लैंडस्लाइड में हुई है, जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हर तरफ मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन कह रहा है कि सावधान रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं पर मलबा आ रहा है, कहीं पर मकान ढह रहे हैं, तो दूसरी तरफ नासिक की बात करें तो नासिक में क्या हो रहा है, गोदावरी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों को डरा रहा है। ये देखिए नासिक में, और लोग जान की बाजी लगाकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तो सुसाइड जैसी बात कही जाएगी कि ऐसे वक्त पर आपको घर पर रहना है, लेकिन आप देखिए जबरदस्ती अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और पार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब नदी का स्तर जल स्तर इतना तेजी के साथ बढ़ा हुआ है। पुलिस की तैनाती की गई है। इस बीच एक शख्स नशे की हालत में तेज लहरों को पार करता दिखा तो पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी, और करनी भी थी। अब ऐसे वक्त पर पुलिस का भी आप काम बढ़ा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो पुलिस ने फिर इसकी पिटाई की। और ये शख्स नशे में था, उफनती हुई नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था और सही सबक पुलिसकर्मियों ने इस शख्स को सिखाया। ये देखिए कितना तेज बहाव, पुलिस कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि अपनी जान जोखिम में मत डालिए, घर पर रहिए, लेकिन नहीं, कुछ लोग मानते नहीं हैं और जब नहीं मानते हैं तो फिर उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो पुलिस ने भी ऐसा ही किया, लाठी से ट्रीटमेंट किया, सबक सिखाया और ये बताने की कोशिश की कि अपनी जान जोखिम में ना डालिए, क्योंकि हालात लगातार खराब हो रहे हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो छोटे छोटे रपटे जिन्हें कहा जाते हैं, जो नाले कहे जाते हैं, वो भी उफान पर हैं, तो ये तो गोदावरी नदी बारिश में इस वक्त तांडव वाला रूप अपनाए हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश के बाद कुछ इसी तरह के हालात आ रहे हैं। महाराष्ट्र के आपने हालात देख लिए, केरल के आपने हालात देख लिए, सीधे आपको दिल्ली लिए चलते, क्योंकि दिल्ली में भी झमाझम बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज्यादा सुहाना हो गया है। अनमोल बाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जरा बताइए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्या हाल है?
1: हिमांशु, एक तरफ तो बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है, पर देश के दिल्ली के कोने में अगर देखा जाए, देश की राष्ट्रीय राजधानी में, तो बारिश लोगों के लिए सौगात बनकर आई, क्योंकि उमस भरे दो तीन दिन देखे जा रहे थे। उसी बीच में तस्वीर आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस की अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि यहां हल्की हल्की बारिश पड़ रही। इसी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट इशू किया। आज दोपहर को देखा गया कि पहले ऑरेंज अलर्ट इशू किया जाता है, बाद में ऑरेंज और रेड अलर्ट इशू किया जाता है कुछ इलाकों के लिए, पूरे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए अभी मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए अलर्ट इशू किया। अगर सैटेलाइट इमेजरी को हम देखें तो इस समय पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर काले बादलों का घेरा पड़ा हुआ है और मॉनसून की यह पहली भारी बारिश है, क्योंकि 2 जुलाई को बताया जा रहा था कि दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दी। हालांकि लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, उमस भरे दिन थे और इस उमस भरे दिनों से जो लोगों को राहत मिलती इस बारिश के कारण दिख रही है, जहां मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही झमाझम बारिश होती रहेगी। और अगर बात की जाए मॉनसून की, तो मॉनसून ने भी अभी रफ्तार पकड़ी है और पूरे देश में मॉनसून का जो घेरा है वो पूरा हो चुका है। 2-3 दिन में देखा जाएगा कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के और कई राज्यों में मॉनसून के बादल जो है वो बरसते दिखेंगे। हिमांशु,
0: और बिल्कुल कुछ लोग उफान से बचने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे थे, बारिश हो गई तो अब भुट्टे, चाय, पकौड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मिल जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं एक और बेहद गंभीर मामले की, जिसने दिल्ली में कई सवाल खड़े कर दिए, और ये सवाल खड़े कर दिए आकृति सुधार के मामले में, जहां पर कई मंजिले इमारत से गिरकर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि ये मामला सुसाइड का नहीं है बल्कि ससुराल वालों की तरफ से प्रताड़ित किया गया है। 24 अप्रैल को शादी होती है, 5 जुलाई को मौत हो जाती है, पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और दहेज हत्या का आरोप इस वक्त आकृति के परिजन लगा रहे हैं।

0: अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए जब दिल्ली के पुष्प विहार की रहने वाली आकृति सुतार ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी की खुशियों की ये सारी तस्वीरें अभी ताजा ही थी, लेकिन शादी के महज 72 दिन बाद ही जब संदिग्ध हालात में लोधी कॉलोनी में आकृति का शव मिला तो पूरा का पूरा परिवार सन्न रह गया। परिवार वालों ने ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि लोधी कॉलोनी की जिस बिल्डिंग से गिरकर आकृति सुतार की मौत हुई वो आखिर वहां पहुंची कैसे।
1: इस वक्त हम लोधी कॉलोनी के पालिका कुंज बी ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां पर ठीक इसी जगह पर हम जहां मौजूद हैं यहां पर एक लड़की की बॉडी पड़ी मिली थी। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यहां पहुंच के पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो छत पर लड़की के जो तमाम सामान है, जो बैग है, जो पानी की बोतल है, वो सारी चीजें जो है वो छत पे मिली, लेकिन लड़की का इस जगह से कोई कनेक्शन नहीं था। लड़की यहां पहुंची क्यों, इस पूरी चीज की जांच की जा रही है। अभी अप्रैल महीने में ही आकृति की शादी हुई थी और अपने ऑफिस के लिए निकली तो वापसी में उसने कहा था वो मेट्रो स्टेशन पे मिलेगी। शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास उसकी अपनी मां से बात हुई और उसने कहा था कि वो 6:30 बजे के करीब मेट्रो स्टेशन पुष्प विहार पहुंच जाएगी, लेकिन पुष्प विहार तो वो पहुंची नहीं। लगातार लोग खोजते रहे, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली और इस दौरान रात 9 बजे कॉल आती है थाने से लोधी कॉलोनी, क्योंकि जो इलाका है ये लोधी कॉलोनी थाने में आता है, और थाने से जब कॉल आती है तब ये पता लगता है कि यहां पर उसकी बॉडी पड़ी है।
0: इसी साल 24 अप्रैल को आकृति सुतार की शादी हुई थी। परिवार के मुताबिक वो दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। जिस दिन उसकी मौत की खबर आई उस दिन भी वो रोज की तरह ही नौकरी पर गई थी और वापस लौटते वक्त परिवार वालों से उसकी बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद थाने से सूचना मिली कि आकृति बिल्डिंग से गिर गई और उसकी मौत हो चुकी है। ये खबर मिलते ही परिवार वाले अस्पताल पहुंचे और फिर ससुराल वालों पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए।
2: जब उसकी शादी हो गई तो पिछले महीने उसने एक बार बस हमको इन्फॉर्म किया था कि उनने मतलब कि हाथ वात उठाया है मेरे पे, तो मेरी मम्मी ने उनको और उनके हस्बैंड को समझाया था कि ऐसा मत करो या वो भी गलत है। फिर उसके बाद उसने जितनी बार भी हाथ उठाया, गाली गलौज करी या फिर डाउरी के लिए उसने फोर्स आउट किया उन सब ने, तो उसको जो है मेरी मम्मी को उसने लास्ट अभी बताया था।
0: परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए आकृति को प्रताड़ित कर रहे थे और उस पर 20 लाख रुपए दहेज के लिए दबाव बना रहे थे, जिसे लेकर कई बार आकृति के साथ मारपीट भी की गई।
3: वो लोग पैसे मांग रहे थे, हम लोग गांव जा रहे थे, टिकट बनी थी 4-6 जुलाई को, हम लोग गांव जाना था कि बोला मम्मी तू चली जाएगी, वो लोग फिर मेरे को और मारेंगे, मेरे को मारते रहते और मेरे को धमकी दिए तेरे भाई को मार देंगे, तू घर में बताएगा तो तू घर जाएगी भी तेरे भाई को मार देंगे, उधर ही जाके तेरे भाई के जॉब खा जाएंगे, तेरे को नहीं रखेंगे और तू कुछ बेसिक चीज भी नहीं लाई है, पैसे 20 लाख तेरे मम्मी को बोल दे दे देंगे। वो बोली मेरे मम्मी घर जा रही है, पैसे ला के दे देगी, मेरे को पहले बताई थी बिल बाबू गाँव जाएंगे, जमीन बेच के उसको पैसे दे देंगे। और वो बोले थे नहीं, बोले ये घर बेच के दे देंगे, वो बोलते थे नहीं ये घर नहीं बेचेंगे हम लोग, मम्मी गांव से लाके आपको पैसे देगी, मम्मी वो मेरे भाई को मार देंगे, मेरे भाई को तुम मत बता। फिर मैं इसको बताया ऐसे ऐसे कर रहे, ये जो पूछने लगा उसको भी धमकी दिए तुरंत।
0: परिवार वालों का कहना है कि आकृति मानसिक रूप से बेहद मजबूत थी, वो खुदकुशी जैसे कदम नहीं उठा सकती। यहाँ तक कि शादी के कई दिनों बाद तक उसने ससुराल वालों की प्रताड़ना की बात घर वालों तक को भी नहीं बताई।
3: उस दिन में जो बयान में भी लिखा थोड़ा बहुत बोल पाती थी जितने, आज मैं पूरी धीरे धीरे सारे बात मेरे मन को आ रहा है क्या क्या उसके ऊपर भी थी। बीच में भी उसके हाथ मोड़ के तोड़ झूठ बोली थी, मम्मी मेरे हाथ में दर्द हो रही है, उसी दिन बताई मम्मी मेरा हाथ इतने तेज मोड़ दिया था।
0: हैरानी की बात तो ये है कि जब ऑफिस से लौटते वक्त आकृति का फोन बंद हुआ, परिवार वाले परेशान हुए तो ससुराल वाले उल्टा दबाव बनाने के लिए आकृति के घर ही आ दमके।
1: एक तरफ आकृति का फोन स्विच ऑफ हो गया था, लोग उसे ढूंढ रहे थे, पूरा परिवार परेशान था, भाई माँ सब लोग उसे ढूंढने में लगे थे। और इसी दौरान आकृति के ससुराल से कुछ लोग यहाँ देवली उसके घर आ गए थे कि फैमिली के लोगों ने उसे छिपा रखा है। ये कब यहाँ पे आप उस वक्त घर पे ही थी?
3: मैं घर पे ही थी।
1: कौन कौन आया था?
3: उसके नंद, उसके जीजा। अच्छा। उसके जीजा दोनों आए, आके मेरे बिल्कुल अलमीरा फलमीरा बोले कैसी माँ है, छुपा के रखे हो, ड्रामा कर रहे हो। उसके नंद सुनाती जा रही है मेरे को, मैं बोली मैं उसके माँ हूँ, मैं उसको छुपाऊंगी, मैं रो रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही, मेरे लड़की नहीं मिल रही, फिर भी आप लोग मेरे को सुना रहे हो, कैसे हो आप। एक दिन पहले उसके नंद भी मेरे को,
1: कितने बजे की बात है
3: ये? 8 बजे करीब आया थे, दोनों आए थे वो।
1: 8 बजे कितनी देर घर में थे?
3: बस 3-4 मिनट ऐसे घूम के।
1: अच्छा, पूरा घर उन्होंने
3: खोजा, फिर निकल गए, हम जा रहे ढूंढने,
1: तो सोचिए कि एक तरफ तो खुद ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पुलिस से संपर्क किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग घर में आ जाते हैं, अलमारियां तक खोजते हैं कि लड़की को, आकृति को यानी घर में छिपा करके तो नहीं रखा गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में सभी के रोल की, इंडिविजुअल रोल की जांच कर रही है।
0: आकृति की मौत मामले में पुलिस ने उसके पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार कर लिया। केस की जांच भी जारी है। पुलिस इस बात का पता लगाने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है कि आकृति आखिर लोधी कॉलोनी की बिल्डिंग तक कैसे पहुंची। अगर उसने खुदकुशी की तो यही जगह क्यों चुनी, या फिर उसकी मौत के पीछे कोई और गहरी साजिश है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: देखिए सवाल बहुत सारे हैं, जवाबों की तलाश हो, क्योंकि बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: आज प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट और इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. In association with
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solution.
7: To 15

0: बालू शाही मुंह में बालू के जैसे भसभसाता है, अगर उसमें शुगर नहीं हो तो उसको कुत्ता ना खाए।
1: यार मेरे फेवरेट मिठाई, आप उसको आप अजीब अजीब बात
0: फेवरेट आपकी बहुत कुछ है। प्यार तुम्हारा 3 महीने के बाद खत्म हो जाएगा।
1: मेरा कई साल हो चुका है।
0: कल केतन को उल्टा दिया, परसों चेतन को उल्टा दोगे। ठीक है, एक तो राइमिंग बॉयफ्रेंड और फियांसी होता कैसे है भाई? किसको मिलता है ऐसा?

पहला सीरिया का दमिश्क। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के दौरे के वक्त हुए दो ब्लास्ट। मैक्रो पूरी तरह सुरक्षित, फिलहाल राष्ट्रपति भवन में मौजूद। जकार्ता में अभूतपूर्व स्वागत और सर्वोच्च सम्मान के बाद बोले पीएम मोदी, भारतीय साझेदारी से विकास का नया अध्याय। इंडोनेशिया की संसद में संबोधन, ईवीएम ब्रह्मोस की बड़ी झील। एसआईटी जांच के दायरे में 124 करोड़ के सभी बड़े इवेंट। प्राण प्रतिष्ठा में ध्वजारोहण तक सभी हाई प्रोफाइल समारोह के खर्च का होगा ऑडिट। शुरुआती रिपोर्ट में नोट छिपाने, फुटेज हटाने समेत गबन के 70 मामले। अयोध्या कांड में विपक्षी हमले पर योगी का करारा पलटवार। का वक्फ में हजारों करोड़ की लूट पर समाजवादी और कांग्रेस चुप क्यों? राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की क्या बात करेंगे? दो दिन इंतजार के बाद बादलों से घिरी दिल्ली में बारिश और तेज हवाएं। हाहाकारी मानसून ने मुंबई को बनाया बंधक। स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं रद्द। पुणे में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरुआत एक बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद में पहुंच चुके हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी संसद को संबोधित करने वाले हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इंडोनेशिया की संसद में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये आपको बता दें, इंडोनेशिया की संसद को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इससे पहले जकार्ता से कई तस्वीरें भी सामने आई जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। छोटे छोटे बच्चे वहां पर स्वागत कर रहे थे और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सबका अभिवादन किया। अब इंडोनेशिया की संसद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे तो किस तरह से स्वागत सत्कार किया गया। और एक बार फिर आपको बता दें, जब भारत और इंडोनेशिया की बात चल रही है तो जकार्ता में अभूतपूर्व स्वागत और सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। भारतीय साझेदारी से विकास का नया अध्याय, इंडोनेशिया की संसद में संबोधन, ईवीएम ब्रह्मोस की बड़ी झील भी हुई। तो जब पीएम नरेंद्र मोदी का यहां पर संबोधन होगा वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि इंडोनेशिया की संसद में संबोधन से पहले भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को और मजबूत करने के लिए ईवीएम ब्रह्मोस की बड़ी झील हुई। और ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया जब सर्वोच्च उनको सम्मान मिला कि भारतीय साझेदारी से विकास का एक नया अध्याय हम करने जा रहे हैं। और भारत, जिसकी हमेशा से कोशिश रही है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध मधुर बनाए, और ऐसे में ही एक और कोशिश। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केरल में वायनाड में भारी बारिश से तबाही हुई है और केरल के वायनाड में एक सड़क निर्माण परियोजना के पास लैंडस्लाइड में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जो ये बता रहा है कि ये जो हादसा हुआ कितना खतरनाक था। कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक से लैंडस्लाइड होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। अब ये देखिए, अचानक से अफरा तफरी वहां पर मच जाती है। अब ये सीसीटीवी फुटेज में पता चल रहा है कि लोग कैसे भागते हुए एक दूसरे की जान बचाने के लिए यहां पर जा रहे हैं। ये देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हो रहा है जोरदार हादसा इसे कहा जा सकता है। दो लोगों की मौत हो गई ऐसा बताया जा रहा है, दो लोगों की मौत। और देखिए, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। न जाने कितने लोग थे जो वहां पर दब गए, कुछ लोग बह गए। ये देखिए, ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। एक भारी भरकम ट्रक जो आप यहां पर देख रहे हैं, टैंकर देख रहे हैं, वो तक बह गया। अब कुछ लोगों को यहां पर निकाल लिया गया लेकिन कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मलबे

0: में दबे हुए हैं। एक बार फिर से ये फुटेज अगर आप देखेंगे, ये कितने लोग हैं जो यहां पर खड़े हैं, बारिश हो रही है, छाता लेकर अपने आप को पानी से बचा रहे हैं, लेकिन एक सामने देखिए टैंकर, वो टैंकर बैक हो रहा है, यहां से गाड़ी जाती है, कुछ लोग और आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड होना शुरू हो गई है और लैंडस्लाइड की वजह से जो मलबा है वो नीचे आ रहा है। फिर से आप देखिए वो टैंकर सामने आपको दिख रहा है, वो टैंकर आगे की ओर बढ़ रहा है और वही वो जगह है जहां पर लैंडस्लाइड हुई। साइड पर काम कर रहे बहुत से लोग इसकी चपेट में आ गए और यहां से ये देखिए लैंडस्लाइड होना शुरू हुआ, यहां से लैंडस्लाइड होना शुरू हुआ। ये कुछ लोग आगे जाकर देखते हैं, इतने में कुछ और लोग आते हैं क्योंकि जोरदार आवाज वहां पर आती है, कुछ लोग भागकर लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से जब मलबा बहुत तेजी से आता है तो ये देखिए ये गाड़ी और वो टैंकर सब मलबे में बहते हुए आ गए, सब अपनी जान बचाने के लिए इधर भाग रहे थे। एक लोडिंग ऑटो गाड़ी पीछे करती है और वो शख्स देखिए जो ग्रीन शर्ट में, आप देखिए ये शख्स कितना तेज भाग रहा है, अचानक गिर जाता है लेकिन इसकी जान बच जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं अभी भी। वायनाड से ये दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं, केरल में ये हादसा हुआ, कई लोग घायल है, कई रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, मेडिकल टीम मौके पर पहुंची हुई है, लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कचरा मलबा इतना ज्यादा है कि लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर देखिए लोग भाग रहे हैं और मलबे की गति आप देखिए कितनी तेजी से, एक बड़ा सा टैंकर उस मलबे में आ जाता है और अगर ये टैंकर नहीं होता ना जाने कितने लोगों की जान और चली जाती जो यहां पर अपने आप को बचा लिया। शिवी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई है, शिवी क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने लोग फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है?
1: अभी एक डेथ कंफर्म हुई है और सेवन लोग अभी भी वहां फंस चुके हैं और सेवन लोग अभी हॉस्पिटल में है, उनकी हालत अभी ठीक है यही कह रही है गवर्नमेंट ने। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं और दो एनडीआरएफ टीम एक वायनाड से और एक कोझिकोड से बुलाया गया है। एनडीआरएफ टीम जो भी लोग उधर स्टक है उनको निकालने की कोशिश में है और दो मिनिस्टर्स भी वहां पहुंच रहे हैं ये सब रेस्क्यू ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करने के लिए। अभी एक डेथ कंफर्म्ड है, दो लोगों की हालत थोड़ा क्रिटिकल है, बाकी सिक्स लोग जो हॉस्पिटल में है उनका हालत ठीक है यही कह रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की कहा है कि ये एक मैनमेड डिजास्टर है क्योंकि जो भी मड उधर वहां पे एक टनल प्रोजेक्ट की वर्क कंस्ट्रक्शन काम हो रही थी और गवर्नमेंट कह रही है कि एक ऑर्डर इश्यू किया था कि जो वो मड उधर एक्यूमुलेट किया है उनको निकालने के लिए ऑर्डर इश्यू किया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये फॉलो नहीं किया इसीलिए हादसा हुई है। अभी फोकस ये है कि जो भी लोग वहां पे स्टक है उनको निकालने की कोशिश हो रही है। जो लोग हॉस्पिटल में है सारे लोग उधर काम करने वाले लोग थे और पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी और अलर्ट इतना
0: मैन-मेड डिजास्टर इसे बताया गया गवर्नमेंट की तरफ से। आप हमारे साथ शिवी बने रही है, हम आपसे और बात करेंगे, लेकिन जरा ये आप देखिए ये टैंकर देखिए और आप खुद देखिए कि ये टैंकर कितनी तेजी के साथ मलबे के साथ पीछे आता चला गया और कितने सारे लोग वहां पर मौजूद थे। सीधे लिए चलते हैं इंडोनेशिया के जकार्ता, पीएम मोदी संसद को संबोधित कर रहे हैं।
2: माननीय राष्ट्रपति जी,
3: यम मूल्या उपराष्ट्रपति जी, इंडोनेशिया
2: माननीय राष्ट्रपति जी,
3: मूल्या
2: उपराष्ट्रपति जी, माननीय स्पीकर, पार्लियामेंट के सम्मानित सदस्य, एक्सलेंसीज, इंडोनेशिया के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार, सलामत सियाम। अपने सहाबत सहजाती के बीच आकर मैं बहुत ही आनंदित हूं। आपके बीच आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं

140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के एक भाग्यशाली नागरिक के रूप में आपको सभी भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडोनेशिया के लोगों ने, यहां के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया है। आज की सुबह जिस तरह इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे अपना प्रेम दिखाया है, जिस तरह स्वागत किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी, मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है। साथियों, आज सुबह मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान पाने का भी सौभाग्य मिला। मैं कोटि कोटि भारतीयों के प्रति इंडोनेशिया के लोगों के स्नेह को हृदय से, नम्रता से स्वीकार करता हूं। यह सम्मान हम दोनों देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है, साझी विरासत का है और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का है। मैं आप सभी साथियों का, प्रेसिडेंट प्रबोवो जी का, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज भारत और इंडोनेशिया इतिहास के एक अहम पड़ाव पर एक साथ खड़े हैं। इस सदी का पहला क्वार्टर बीत चुका है और अब आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंडोनेशिया की इस महान धरती पर मैं आपके समक्ष दोनों देशों के साझा विकास का विश्वास लेकर के आया हूं। मैं यह संकल्प लेकर आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर दे सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। ऑनरेबल मेंबर्स,

हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। दूसरे देशों में समुद्र भले ही सीमाओं और दूरियों का कारण रहा हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं रहा, समुद्र हमारे बीच एक सेतु है। ये हमारे साझा भविष्य का केंद्र है। इंडिया, इंडोनेशिया और इंडियन ओशन, ये नाम हमारे आपसी जुड़ाव की गवाही देते हैं। हजारों वर्षों तक हमारे पोर्ट्स दुनिया को जोड़ते रहे, हमारे जहाज व्यापार और संस्कृति को दूर दूर तक लेकर गए। हमारे पास समुद्र से जुड़ी भविष्य की अनेक संभावनाएं हैं, इसलिए मैं आज समुद्र की इसी विशालता को आधार बनाकर आपसे भारत इंडोनेशिया के संबंधों को नई ऊंचाई देने का आग्रह करूंगा। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। हमारा संबंध सदियों पहले नालंदा के ज्ञान से है। हमारा संबंध वायांग, नृत्य और संगीत से है। हम बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं। हम बाली यात्रा के उत्सव और उसके उल्लास से जुड़े हैं। और जब हम स्वाद की बात करते हैं तो क्रुपुक और पापड़ में कौन ज्यादा क्रंची है, ये कहना कठिन हो जाता है। लेकिन ये बात तो तय है, मसाला और बुम्बू दोनों हमारे जीवन में फ्लेवर लाते हैं। साथियों, भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात, ये मेरा गृह राज्य है। कहा जाता है कि सदियों पहले गुजरात से कुछ व्यापारी और सूफी संत समुद्र के रास्ते ही इंडोनेशिया आए थे। वे अपने साथ इस्लाम के विचार और इस्लाम के जीवन मूल्य भी लेकर यहां आए। आज भी गुजरात के पटोला वस्त्र यहां सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतीक है। आज भी इंडोनेशिया की बाटिक कला में उनकी छाप दिखाई देती है। और इसलिए ही राष्ट्रपति सुकर्णो ने भी कहा था, इंडोनेशिया और भारत के लोग रक्त और संस्कृति के संबंधों से जुड़े हैं। साथियों, ऐसा कितना कुछ है जो हमारे पूर्वजों ने साथ साथ जिया है। हम लोगों ने लंबे समय तक
विदेशी शासन का सामना किया। हम दोनों ही राष्ट्र लगभग एक ही समय स्वतंत्र हुए। इंडोनेशिया 1945 में और भारत 1947 में। और जब स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर संप्रभुता की बात आई तो भारत संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत आवाज बना। उस दौर में आदरणीय बीजू पटनायक जी ने जो भूमिका निभाई, जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री सुतान सहरी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा को सुरक्षित भारत पहुंचाया, वो घटना दोनों ही देशों को और करीब ले आई। ऑनरेबल मेंबर्स, एक और बात जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है वो है हमारा मजबूत लोकतंत्र और लोकतंत्र में विविधता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्नेका तुंगल इक्का का विचार है। हम दोनों ने अपने लोकतंत्र में इस विविधता को ही अपनी एकता की नींव बना लिया है। ऑनरेबल मेंबर्स, 1950 में जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समारोह के मुख्य अतिथि भी राष्ट्रपति सुकर्णो ही थे, और जिसका उल्लेख अभी आदरणीय स्पीकर महोदय ने किया। और उस दौर में बांडुंग सम्मेलन में राष्ट्रपति सुकर्णो और प्रधानमंत्री नेहरू ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वतंत्र देशों को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। ऑनरेबल मेंबर्स, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है? इंडोनेशिया ने ये रिफॉर्मासी के जरिए दुनिया को दिखाया है। पिछले दो दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और हमारे यहां भी पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। और इसलिए मित्रों, जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है, और लोकतंत्र भविष्य बनाता है। और मुझे अटूट विश्वास है हमारे ये लोकतांत्रिक मूल्य और साझा आकांक्षाएं

या संबंधों को नई ऊंचाइयां तक ले जाएंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, एक साथ आजाद देशों के तौर पर

हमने जो सफर शुरू किया था, अब उस आजादी के 100 वर्ष भी हम एक साथ पूरे करने जा रहे हैं। यहां इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। हम प्राचीन सभ्यताएं भी हैं और भविष्य के लिए नेचुरल पार्टनर्स भी हैं। इस यात्रा में हम एक दूसरे के पार्टनर्स भी बने और स्ट्रेंथ भी बने। इसी विजन लेकर को आज राष्ट्रपति प्रबोध से मेरी विस्तृत चर्चा भी हुई है। हमारे उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सद्भाव और विश्वास है, हमें उसे अपने नागरिकों के लिए नए अवसरों में बदलना है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 25 अरब डॉलर तक पहुंचा है। भारत की 100 से अधिक कंपनियां इंडोनेशिया में काम कर रही है। निश्चित तौर पर हम साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे अभी और भी असीमित संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही है। Honorable members, futuristic sectors में भारत और इंडोनेशिया के बीच अनंत आकाश को छूने का सामर्थ्य है। उदाहरण के तौर पर स्पेस टेक्नोलॉजी। आज पूरी दुनिया स्पेस में भारत की क्षमता का लोहा मान रही है और भारत इसमें इंडोनेशिया को अपना नेचुरल पार्टनर मानता है। बियाक में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधाएं लंबे समय से भारत के स्पेस प्रोग्राम को सहयोग देती रही है। भारत ने भी इंडोनेशिया के कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान दिया है। अब इस सहयोग को और आगे ले जाने का समय है। सैटेलाइट एप्लीकेशंस में हम साथ काम कर सकते हैं। भारत इंडोनेशिया में सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करने में भी सहयोग देने के लिए तत्पर है। साथियों, हमारी समृद्ध समुद्री विरासत को सहेजने के लिए हम 5000 साल पुराने पोर्ट सिटी लोथल में नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इंडोनेशिया भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े। ऑनरेबल मेंबर्स, आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब

0: भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रभो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, आतंकी फंडिंग और डी रेडिकलाइजेशन, इन क्षेत्रों में हम और सहयोग बढ़ाकर दुनिया में शांतिवादी ताकतों को मजबूती दे सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है और ऐसे में हम जैसे विकासशील देश समान भागीदारी और अपनी बड़ी भूमिका मांग रहे हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में भारत का स्पष्ट मानना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को और टाला नहीं जा सकता। 2022 में इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता और 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता, दोनों ने विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को वैश्विक चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास किया। इंडोनेशिया की बेबास एक्टिव की परंपरा और भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कमिटमेंट वैश्विक विषयों पर हमें साथ खड़े होने के लिए मजबूत आधार देते हैं। भारत फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का प्रबल समर्थक है। भारत इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। इसके लिए हमने आसियान को केंद्र में रखा है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आसियान सेंट्रिक है। भारत और आसियान की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत और इंडोनेशिया इस दिशा में निरंतर काम करते रहे। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे सामने एक और बड़ा अवसर है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। इस वर्ष भारत ही ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स का ये मंच और अधिक व्यवहारिक हो, अधिक संतुलित हो, ग्लोबल साउथ की जरूरतों के प्रति और अधिक संवेदनशील हो, हम इसके लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज इंडोनेशिया के सभी पार्लियामेंट मेंबर्स के सामने मैं भारत इंडोनेशिया साझेदारी के एक नए युग का आह्वान करता हूं। गंगा और महाकाम की धाराओं की तरह हमारी सभ्यताओं ने सदियों से विचारों, आस्था, व्यापार और संस्कृति को जोड़ा है। आज उसी ऐतिहासिक प्रवाह को भविष्य की नई ऊर्जा देने के लिए मैं आप सभी के समक्ष गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह विजन हमारी साझेदारी को केवल वर्तमान की आकांक्षा आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखता, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि, सुरक्षा और शेयर्ड प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करता है। पहला, सिविलाइजेशनल कनेक्ट। हम अपने सभ्यतागत जुड़ाव को नई पीढ़ियों की चेतना से जोड़ेंगे। रामायण से बोरोबुदुर तक, समुद्री यात्राओं से सांस्कृतिक संवाद तक, हम अपने साझा इतिहास को भविष्य की शक्ति बनाएंगे। इसके लिए हमें भारत इंडोनेशिया सिविलाइजेशनल डायलॉग शुरू करना चाहिए। दूसरा, शेयर्ड डेवलपमेंट। विकसित राष्ट्र बनने की अपनी अपनी यात्राओं में भारत और इंडोनेशिया अटल साझेदार रहेंगे। इंडोनेशिया का एमास विजन और भारत का विकसित भारत संकल्प एक दूसरे को गति देंगे, एक दूसरे को शक्ति देंगे और हमारे लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज का निर्माण करेंगे। तीसरा, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। हम डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को नई ऊंचाई देंगे। हम अपनी नेशनल कैपेसिटीज को मजबूत करेंगे। आतंकवाद, साइबर थ्रेट्स, समुद्री चुनौतियां और इमर्जिंग सिक्योरिटी रिस्क, इसका हमारा इसके बिलीवर में हम मिलकर सामना करेंगे। भारत और इंडोनेशिया का स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी का मजबूत आधार बनेगा। चौथा, मैरिटाइम प्रॉस्पेरिटी। दो महान समुद्री राष्ट्रों के रूप में हम अपनी शेयर्ड मैरिटाइम ज्योग्राफी को शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में बदलेंगे। साबांग से ग्रेट निकोबार तक, मलक्का गेटवे से इंडो पैसिफिक तक हम कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ब्लू इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड रेजिलियंस में नए अवसर पैदा करेंगे। पांचवा, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। हम ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को और मजबूत आवाज देंगे। हम ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करेंगे जहां डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो और ग्लोबल गवर्नेंस अधिक न्यायपूर्ण और रिप्रेजेंटेटिव हो। साथियों, भारत और इंडोनेशिया मिलकर मानवता के पांचवे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी साझेदारी केवल दो देशों का संबंध नहीं है, यह इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी, ग्लोबल साउथ की शक्ति और विश्व के शेयर्ड फ्यूचर में विश्वास का संकल्प है। आइए अपनी ऐतिहासिक मित्रता को नए दौर में ले जाएं। आइए गंगा महाकम विजन को मिलकर साकार करें। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत में तुलसीदास जी ने लिखा था, जाने बिनु न होई प्रतीत, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। यानी जब तक लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं तब तक उनके बीच अपनापन नहीं बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि इंडोनेशिया में एक कहावत है और इसका अर्थ भी यही है, ताक केनाल माका ताक सायांग। इसलिए हमने तय किया है हम एक दूसरे से मिलने जुलने का सिलसिला और तेज करेंगे। आज शाम मैं और राष्ट्रपति प्रबोवो यहां रह रहे भारतीयों से मिलेंगे। कल राष्ट्रपति प्रबोवो और मैं प्रभानन भी जाएंगे। हम इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। भारत और इंडोनेशिया उस विरासत को सहेजने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जिसे इतिहास ने हमें सौंपा है। ऑनरेबल मेंबर्स, मैं आज आप सभी सदस्यों को भारत आने के लिए भी विशेष निमंत्रण भी दे रहा हूं। आप जरूर भारत आए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ आए। भारत के लोगों को आपका स्वागत करते हुए बहुत अच्छा लगेगा। मुझे विश्वास है हम मित्रा सेला मान्या पार्टनर फॉर एवर बनकर काम करेंगे। हम मिलकर भारत और इंडोनेशिया के लोगों के लिए साझा समृद्धि का भविष्य बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। दीर्घायु इंडोनेशिया। भारत माता की जय। धन्यवाद।
1: Our next official group photo. So now to kindly join to the front, may we invite the President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, Vice President of the Republic of Indonesia, Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Speakers of the People's Consultative.
2: और वहां पर उनके संबोधन को सुनते हुए कई बार अगर तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई दी है तो उसके पीछे का कारण ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया के युगों पुराने संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक सिविलाइजेशनल डायलॉग की आवश्यकता दोनों देशों के बीच है। कल प्रबोनम जाने की बात भी वो कर रहे हैं जो कि इंडोनेशिया का सबसे प्राचीन मंदिर है, नवी शताब्दी में वो बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी की का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से आतंक के विरुद्ध दोनों देश एक हैं। जब पहलगाम पर भी आतंकी हमला हुआ था तो इंडोनेशिया उस समय भी भारत के साथ खड़ा रहा था। अब बात करते हैं अयोध्या मामले पर विपक्ष के लगातार हमलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पलटवार की। अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी विपक्षियों के हमले के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहुत आक्रामक दिखे। कल ही ट्रस्ट की बैठक में हुए तमाम फैसलों के बाद योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी से सीधा सवाल किया कि मंदिर पर बोलने वाले वक्फ में करोड़ों की लूट पर चुप क्यों हैं। योगी का दूसरा सवाल था कि कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की बात किस मुंह से करते हैं।
3: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं, ये कांग्रेस के हाल थे।
2: चढ़ावा मामले को लेकर हो रहे खुलासे के बीच हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने ट्रस्ट के खजांची गोविंद देव गिरी से कुछ सवाल पूछे। उनसे पूछा कि चंपत राय पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्या ट्रस्ट अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगेगा?
4: लेकिन महाराज जी, जो एसआईटी ने जांच की है उसमें 45 दिनों का सीसीटीवी ही मिला, 70 चोरियां उसमें हुई, कहा जा रहा है कि बहुत पुराने जो फुटेज हैं वो सब के सब ओवरराइट हो गए, डिलीट हो गए। अब एसआईटी की जांच के बाद आपको लगता है कि आपका जो ट्रस्ट है इस पर लोगों का भरोसा जागेगा?
5: निश्चित रूप से जागेगा, क्योंकि भूलें तो सब स्थानों पर होती है, भूलों को सुधारने का प्रामाणिक प्रयास किया जाता है कि नहीं ये देखना चाहिए। और इसलिए आज लोगों के मन में जो आशंका निर्माण हुई है वो तो हुई है, लेकिन हम इससे बढ़िया काम करके दिखाएंगे और लोगों का विश्वास निश्चित रूप से रहेगा। बहुत बड़ी मात्रा में ये अविश्वास निर्माण करने का प्रयास किया गया और इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया गया और हम लोग इस एक संकट को भी पार कर जाएंगे, हमारा विश्वास।
4: महाराज जी, एक सवाल और है कि क्या ट्रस्ट जो बना है वो कैसे अब काम करेगा, क्या इसमें सीईओ होंगे और किस तरीके से आप लोगों ने इसको सोचा है कि अब आगे ये काम करेगा ट्रस्ट?
5: आरंभ से हम लोगों का यह सोचना रहा कि ऐसे काम को देखने के लिए एक सीईओ यहाँ पर होना चाहिए जो प्रशासनिक और ब्यूरोक्रेटिक सारी डिसिप्लिन कठोरता के साथ अमल में लाता हो। इस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता रही, उसको हम लाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक समिति बनाई है, वो समिति हमारे सामने 3 लोगों के नाम देगी, उसमें से चयन हम लोग करेंगे।
4: महाराज जी, एक सवाल और आता है कि चूंकि आप कोषाध्यक्ष थे, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है?
5: निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि मैंने डे वन से ही उधर ध्यान दिया नहीं, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, यहाँ हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, यह स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो एसओपी भी एलबीआई के साथ बना वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, मुझे भी वह इस महीने देखने मिला।
4: तो आपको लगता है कि कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे?
5: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।
4: महाराज जी, आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपा, आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
5: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं।
4: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर अब माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर। सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है महाराज जी।
2: केरल के वायनाड में एक सड़क निर्माण परियोजना के पास लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। दो लोगों की मौत हो गई है। लैंडस्लाइड के बाद काफी दूर तक मलबा फैल गया। साइट पर काम कर रहे कई लोग इसकी चपेट में आ गए। जिस समय लैंडस्लाइड हुआ था, ये उस समय की तस्वीर है। ये इतना शक्तिशाली वेग के साथ आगे बढ़ा कि देखिए, एक पूरी के पूरे टैंकर को लेकर बहा दिया। इंसानों की तो बिसात ही क्या। केरल के वायनाड में बारिश और उसके बाद हुए लैंडस्लाइड की यह भयावह तस्वीर। दो लोगों की जान इसमें चली गई है और मलबा बहुत दूर तक आगे फैल गया। और ये दूसरी तस्वीर वायनाड में लैंडस्लाइड की, जहां पर एक बस्ती पर, ये कंस्ट्रक्शन साइट पर आप लैंडस्लाइड के बाद मलबे को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। दो तस्वीरें इस वायनाड के लैंडस्लाइड की, जिसकी चपेट में एक कंस्ट्रक्शन साइट आ गया। कुछ लोग खुशकिस्मत रहे जो समय रहते वहां से भाग निकल पाए, लेकिन दो लोगों की जान इसमें चली गई और भारी नुकसान जो नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवी मूल इस समय जुड़ रही है। शिवी, क्या क्या खबर है? ये जो लैंडस्लाइड हुआ है, दो लोगों की जान जाने की खबर है?
6: जी, अभी तक दो लोगों की जान डेथ हो चुकी है, दो डेथ हो चुकी है और सिक्स लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और उनका हालत अभी ठीक है, लेकिन सेवन लोग अभी भी जो जगह पे एक्सीडेंट हुआ उधर स्टक है, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं। और अभी एनडीआरएफ की दो टीम्स, एक वायनाड से और एक कोझिकोड से, दो टीम्स उधर है और वायनाड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दो मिनिस्टर्स भी वहां पहुंच रहे हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करने के लिए। बहुत तेज बारिश हो रही थी पिछले दो दिन से और अलर्ट भी येलो अलर्ट इश्यू किया था। यूजली अगर ऐसा बारिश हो रही है तो अलर्ट ऑरेंज या रेड अलर्ट होना चाहिए, लेकिन इस बार येलो अलर्ट ही दिया था और वो एक लैब हो चुकी थी। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये टनल प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे मड एक तरफ एक्यूमुलेट किया था और वो रिमूव करने के लिए एक ऑर्डर इश्यू किया था लास्ट पिछले महीने, लेकिन वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है वो उधर से वो मड नहीं रिमूव किया था, इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ है। एक मैन मेड डिसास्टर है, ये वर्ड यूज किए, फ्रेज यूज किया है मिनिस्टर ने, एक मैन मेड लैंडस्लाइड है, नेचुरल लैंडस्लाइड नहीं है, क्योंकि वो मड उधर एक्यूमुलेट हुई थी इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ। अभी
2: तो लापरवाही का ये मामला, जैसे हमारी संवाददाता शिवी बता रही है कि लापरवाही का एक मामला, न केवल बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, बल्कि चूंकि इंसानी लापरवाही वहां थी, जिसको लेकर आगे अब कार्रवाई होगी। अभी के लिए खबरें सरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
7: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
9: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.
11: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
12: Jack, come home. It's supper time.
11: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
13: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
11: Jack FM.
13: playing what we want.
14: Sanitary solutions.
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
6: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
14: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
15: इन एसोसिएशन विद
16: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
15: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, बड़े आराम से।
17: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
7: सरसों से सरसों। शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
9: इन एसोसिएशन विद
10: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
9: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से
11: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
12: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी
13: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले
14: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो तुमको बिल्कुल अकल वकल नहीं है इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
15: परमिशन लेनी चाहिए ना
14: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई
16: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
14: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है तो रुक जाइए
17: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर ये है खबरें सात तक देखते रहिए आज तक

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

इंडोनेशिया के संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा हमारे बीच रक्त संस्कृति का संबंध भारत विस्तारवाद में नहीं विकासवाद में करता है भरोसा। प्रधानमंत्री को किया गया सम्मानित। अयोध्या में 124 करोड़ के बड़े इवेंट्स पर एसआईटी का शिकंजा, प्राण प्रतिष्ठा से ध्वजारोहण तक के खर्च का होगा ऑडिट। शुरुआती रिपोर्ट में गबन के 70 मामले। अयोध्या कांड में विपक्षी हमले पर योगी का पलटवार, कहा वक्त में हजारों करोड़ की लूट पर समाजवादी और कांग्रेस चुप क्यों, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की बात क्या करेंगे। बीजेपी शासित एक और राज्य में यूसीसी लाने की तैयारियां, राजस्थान सरकार अगले विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लाने पर कर रही है विचार। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड का सामने आया खौफनाक वीडियो, टैंकर गाड़ियों को बहा ले गए सुरंग की मिट्टी, दो लोगों की मौत, प्रियंका गांधी ने जताया दुख।

0: जकार्ता की धरती पर मोदी के कदम, दुनिया हैरान, दुश्मन परेशान। मिला सर्वोच्च सम्मान, बहा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मान। आसमान में अस्त्र का प्रहार, समंदर में ब्रह्मोस तैयार। सबांग पोर्ट पर भारत का पहरा, मलक्का स्ट्रेट में चीन का गेम ओवर। भारत की ईवीएम और यूपीआई का जलवा, अब इंडोनेशिया के सिस्टम पर भारत का राज। कूटनीति की रणभूमि में भारत की महाविजय।
1: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं रणभूमि। आज रणभूमि की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले इंडोनेशिया की संसद में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा संदेश देते दिखाई दिए। चीन की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विस्तारवाद में नहीं, विकासवाद में यकीन रखता है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की याद भी दिलाई और कहा कि उस समय इंडोनेशिया पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़ा रहा।
2: भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: अब बात उस महाविजय गाथा के, जिसने समंदर से लेकर आसमान तक भारत के दुश्मनों को सदमे में डाल दिया है। जकार्ता की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक ने चीन और उसके पिछलग्गू पाकिस्तान को वो तगड़ा झटका दिया है कि बीजिंग से इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया है। इंडोनेशिया में पीएम मोदी का ऐसा अभूतपूर्व स्वागत हुआ है कि दुनिया देखती रह गई और सोने पर सुहागा देखे। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजकर भारत के 140 करोड़ लोगों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। लेकिन असली धमाका तो समझौते के उस मल्टीपल डोज में है जिसने बीजिंग का पूरा गेम प्लान ही चोक कर दिया है। अब इंडोनेशिया के आसमान में रूसी मिसाइलें नहीं बल्कि भारत का स्वदेशी अस्त्र गरजेगा। समंदर में चीन की दादागिरी को दफन करने के लिए भारत का ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस और बड़ी संख्या में तैनात किए जा रहे हैं। और यही नहीं, भारत की ईवीएम तकनीक और डिजिटल इंडिया की रीड यूपीआई अब इंडोनेशिया के सिस्टम पर राज करेगी। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, चीन के गले की फांस कहे जाने वाला सबांग पोर्ट पर भारत और इंडोनेशिया का साझा दबदबा कायम होने जा रहा है। यानी कि जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर भारत की नजर रहेगी। तस्वीर बिल्कुल साफ है, यह 2026 का वो नया और महाशक्तिशाली भारत है जिसके कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक से किसी को भी मत दे सकता है। लेकिन अब सबसे पहले बात उस ऐतिहासिक और धमाकेदार कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की हम करेंगे जिसने समंदर से लेकर आसमान तक चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। कल तक जो देश रूसी और अमेरिकी हथियारों के पीछे भागते थे, आज वो भारत के, जी हां, भारत के ब्रह्मास्त्र और अस्त्र के लिए कतार में खड़े हैं। हथियारों पर हुए इस समझौते के साथ ही सबांग पोर्ट को लेकर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सबांग पोर्ट को साथ मिलकर डेवलप करने के समझौते ने भारत के खिलाफ चीन की घेराबंदी को तोड़कर खुद ड्रैगन को ही चेकमेट कर दिया है।
0: अमेरिका और चीन की मिसाइलों की छुट्टी, अब इंडोनेशिया के आसमान में गूंजेगा भारत का स्वदेशी अस्त्र। समंदर में आया भारत का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस की तैनाती से ड्रैगन की उड़ी नींद। मलक्का स्ट्रेट में चीन चित, सबांग पोर्ट पर भारत की धमक, चीन की लाइफलाइन पर दबदबा। ये नया भारत है जो अब हथियारों का सौदागर बनकर दुनिया के नक्शे पर नए समीकरण लिख रहा है। आसमान में भारत की ताकत का वो अचूक लोहा जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली भारत की स्वदेशी एस्ट्रा मिसाइल अब इंडोनेशिया की वायुसेना की रीढ़ बनने जा रही है।
3: Air to Air Missile Cooperation Agreement between Bharat Dynamics and Republic Corp.
0: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, वहीं इंडोनेशिया ने अपनी पुरानी रूसी R-77 मिसाइलों को हटाकर भारत की इस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को खरीदने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मैक 4 प्लस की सुपरसोनिक रफ्तार और 110 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल जब इंडोनेशिया के फाइटर जेट से उड़ेगी तो दुश्मनों को संभालने का एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने एस्ट्रा से पाकिस्तानी जेट्स को निशाना बनाया और उन्हें जमीन पर ला दिया। इंडोनेशिया ने भी देखा कि भारत का अस्त्र पाकिस्तान की चीनी PL-15E मिसाइलों से कई गुना बेहतर साबित हुआ। उसी कामयाबी को देखते हुए इंडोनेशिया ने ये डील की है। ये समझौता गवाह है कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्टर बन चुका है। और आसमान फतह करना तो सिर्फ शुरुआत है, असली तबाही तो समंदर में मचने वाली है। दुनिया की सबसे खतरनाक और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस की अतिरिक्त बैटरियां खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने फाइनल डील पर मुहर लगा दी है।
3: And then contract signing for BrahMos missile defense system between BrahMos and the Ministry of Defense.
0: पहले से ही भारत के ब्रह्मोस का खरीदार इंडोनेशिया ऑपरेशन सिंदूर में इस अचूक मिसाइल की ताकत को देख चुका है। भारत ने इसी मिसाइल के हमले से पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। मुरीद के में लश्कर और बहावलपुर में जैश के ठिकानों को ब्रह्मोस ने धूल में मिला दिया था। अब मैक 3 की विनाशकारी गति से उड़ने वाली ब्रह्मोस जब इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में तैनात होगी तो साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसके अलावा फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया का भारत के पाले में आना बीजिंग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
4: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा।
0: लेकिन इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है सबांग पोर्ट का संयुक्त विकास। इंडोनेशिया के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित ये पोर्ट भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड से महज 100 मील की दूरी पर है। यही मलक्का स्ट्रेट का वो चोक पॉइंट है जहां से चीन का 80% व्यापार और कच्चा तेल गुजरता है। अब इस एंट्री पॉइंट पर भारत और इंडोनेशिया की संयुक्त मौजूदगी का सीधा मतलब है कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति तार तार हो चुकी है। भारत ने बिना युद्ध लड़े चीन की दुखती रग पर अपना पैर रख दिया है। रक्षा क्षेत्र का ये नया गठजोड़ साफ संदेश दे रहा है कि ये 2026 का नया भारत है। भारत अब रक्षा समझौतों की बेस पर सिर्फ मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि इंडो पैसिफिक का भूगोल और सुरक्षा समीकरण खुद लिखता है। जकार्ता से उठा ये महाशंखनाद सदियों तक गूंजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे में एक बेहद दिलचस्प समझौता हुआ है। इंडोनेशिया ने भारत के चुनाव आयोग के साथ एक समझौता किया है। दरअसल इंडोनेशिया भारत के ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसकी आप बहुत चर्चा चुनाव में सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और चुनाव प्रबंधन मॉडल को इंडोनेशिया अपनाना चाहता है और इसमें वो भारत से तकनीकी सहायता ले रहा है। भारत और इंडोनेशिया को उसकी जरूरत के मुताबिक ईवीएम बनाने में भारत मदद करेगा। तो भारत की ईवीएम इंडोनेशिया चाहता है। यह आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, यानी कि वहां पर जितने मुसलमान हैं उतने किसी और देश में नहीं है, और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होने के साथ ही वो लोकतांत्रिक देश भी है। डेमोक्रेट जो है, यहां पर डेमोक्रेसी है, बड़े पैमाने पर वहां चुनाव होते हैं, और वो भारत के ईवीएम में दिलचस्पी दिखा रहा है। वो चाहता है कि भारत के ईवीएम सिस्टम वहां जाए। दूसरी तरफ भारत में ही विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया जाता है या प्री प्रोग्राम्ड जो है ईवीएम हो सकते हैं। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां दल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वो कह चुके हैं कि ईवीएम पर उनको संदेह। हालांकि इसका नतीजा हुआ यह है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट स्लिप्स की 5% रेंडम काउंटिंग का आदेश दिया था, और इसके बावजूद चुनावों में ईवीएम पर विवाद लगातार होता है। विपक्ष ने ईवीएम हटाओ आंदोलन तक चला है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत अब तक नहीं मिला है। और विपक्षी दलों की अगर बात करें तो विपक्षी दल अब भी वीवीपैट की 100% गिनती की मांग करते हैं कि भाई 100% मिलान करो। इन सब के बीच में अगर मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया भारत के ईवीएम सिस्टम को अपनाना चाहता है, वो अपनाता है, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का ये जो नैरेटिव है कि ईवीएम में खराबी है या ईवीएम से हैक हो सकता है, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है कि ईवीएम जो है वो बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि इंडोनेशिया जैसा एक देश जो कि लोकतांत्रिक देश है वो ईवीएम अपनाना चाहता है। लेकिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आज जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बितांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया। यह सम्मान इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही देशों के बीच में संबंधों को मान्यता देने वाले इस प्रतिष्ठित सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। यह सम्मान इस्ताना मर्देका यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया। बितांग आदिपूर्णा नाम का यह सम्मान 1959 में शुरू किया गया था। यह विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों को इंडोनेशिया की एकता, स्थिरता और समृद्धि की रक्षा करने के लिए दिया जाता है। साथ ही उन नेताओं को दिया जाता है जो रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उत्कृष्ट योगदान देते हैं, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया है।
4: आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का रक्षा और डिजिटल का मोर्चा तो आपने देख लिया, लेकिन अब बात उस खबर की करेंगे जो हर सनातनी के दिल को छू जाएगी। कूटनीति के बाद, कूटनीति के रणक्षेत्र के बाद, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 8 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और भव्य प्रांगण मंदिर का दौरा करने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश में सनातनी संस्कृति की यह गूंज, पीएम मोदी की भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति उनकी अटूट आस्था का एक और सबसे बड़ा प्रमाण है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर में कदम रखेंगे। क्या है इस मंदिर का भारत से नाता, और कैसे मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया अपनी सनातनी विरासत पर गर्व करता है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: आसमान छूते शिखर, पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशी और 9वीं शताब्दी के सनातन गौरव की गवाही देता ये है प्रांगण मंदिर कॉम्प्लेक्स। भारत से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में स्थित ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ इस पवित्र परिसर में कदम रखेंगे, तो ये दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की सबसे स्वर्णिम तस्वीर होगी।
4: हम दोनों देश गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे।
5: भारत प्रांबनन मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में सहयोग करेगा, इसकी कमान एएसआई संभालेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम इंडोनेशियाई टीम के साथ मिलकर काम करेगी। बौद्ध मंदिर बोरोबुदूर के बाद अब भव्य हिंदू मंदिर प्रांबनन को संवारने में भारत तकनीकी और वित्तीय मदद देगा। भारत का ये योगदान उस धरती के लिए है जो 87% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद अपने हिंदू और बौद्ध इतिहास को अपनी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानती है। इंडोनेशिया का बाली द्वीप आज भी 87% हिंदू आबादी के साथ भारत के बाहर सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है। बाली में 20,000 से ज्यादा हिंदू मंदिर मौजूद हैं। यहाँ का रामायण और महाभारत से ऐसा नाता है कि वायांग कुलित यानी छाया पुतली के खेल से लेकर यहाँ के पारंपरिक नृत्यों में भगवान राम और कृष्ण हर घर में पूजे जाते हैं। यहाँ तक कि बाली के हिंदू नववर्ष नेपी पर पूरे इंडोनेशिया में राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इंडोनेशिया सनातन का इतना सम्मान करता है कि 1998 से 2008 के बीच 20,000 रुपए के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर हुआ करती थी। भगवान गणेश की तस्वीर को इंडोनेशिया में शिक्षा के प्रतीक के रूप में नोट पर छापा गया था। साल 2008 में नोटबंदी के बाद इस सीरीज के नोटों को बंद किया गया। वहीं इंडोनेशिया की राष्ट्रीय विचारधारा विविधता में एकता को बढ़ावा देती है। यहां 6 आधिकारिक धर्मों को मान्यता है। पीएम मोदी की ये यात्रा साफ संदेश देती है कि भारत अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक स्तर पर सनातनी गौरव को फिर से स्थापित कर रहा है। मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद इंडोनेशिया का अपनी सनातनी जड़ों को गर्व से संजो कर रखना और भारत के प्रधानमंत्री का वहां जाकर इस विरासत को नया जीवन देना, ये साबित करता है कि सनातन संस्कृति शाश्वत है, वैश्विक है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ, ऐसा स्वागत जो शायद ही किसी विदेशी मेहमान का होता हो। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रास्ते में बड़ी संख्या में बच्चे भारत और इंडोनेशिया के झंडे हाथ में लेकर खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि भारत और इंडोनेशिया संबंधों का एक ऐसा सुनहरा युग है जो आरंभ हो चुका है।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का ये अंदाज भारत के साथ सुलझे और मजबूत रिश्तों की एक छोटी सी झलक पर है। इसके आगे की तस्वीरें तो आज जकार्ता में दिखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जकार्ता में हैं और वहां जिस तरह से उनका अभिवादन और वेलकम हुआ है वो ऐतिहासिक है। दोनों देश अपने कूटनीतिक संबंधों की किताब में दोस्ती के नए पन्ने जोड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत एक दिन पहले ही हो गई। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के दौरे पर 6 जुलाई को पहुंचे तो जमीन से आसमान तक स्वागत का जबरदस्त सिलसिला चला। जैसे ही पीएम मोदी का विमान इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, वहां की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उनके विमान की आसमानी अगवानी की। और जब आज राजधानी जकार्ता मानो प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहा था। जकार्ता स्थित प्रेसिडेंशियल पैलेस की ये मनमोहक तस्वीरें देखिए। इतनी जबरदस्त सम्मान की ऐसी ऐतिहासिक तैयारी आपने खास दोस्त भारत के लिए इंडोनेशिया ने की। ये तैयारी पीएम मोदी के स्वागत के लिए थी। मोदी के पहुंचने से पहले वहां बच्चे तिरंगा और इंडोनेशियाई झंडे लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। इंडोनेशिया का गौरव माने जाने वाले प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ पीएम मोदी जाने लगे तो मानो नजरें उसी तरफ टिक गईं। इस भव्य सम्मान समारोह में पहुंचते ही बच्चों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। इंडोनेशिया ने भी स्वागत किया। पैलेस की ओर जाने वाली सड़कों पर तोरण द्वार लगे थे और उस पर लिखा था, इंडोनेशिया गणराज्य में आपका स्वागत है।

0: इसके तहत भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को सबक सिखाने वाले हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र को भी इंडोनेशिया ने खरीदने का फैसला किया है। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीद का फैसला कर भारत की सैन्य ताकत को सलाम किया है। भारत इंडोनेशिया को ईवीएम के विकास में मदद करेगा। अहम मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी बात बनी है। भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण में निवेश करेगा। कनेक्टिविटी के मामले में भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट का विकास करेंगे। ये पोर्ट मलक्का जल डमरू मध्य के पास स्थित है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से करीब 100 मील की दूरी पर है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कारोबारी और कूटनीतिक रिश्तों की ये नई उड़ान है। जकार्ता में पीएम मोदी ने बताया कि कैसे दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को नई पहचान देकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे अहम ये कि इंडोनेशिया भारत के बड़े द्विपक्षीय कारोबारी सहयोगी देशों में से एक है। दोनों के बीच करीब 28 अरब का द्विपक्षीय व्यापार भारत जापान के आपसी व्यापार से भी ज्यादा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कूटनीतिक रिश्ता 75 साल से ज्यादा पुराना है। उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच हुई डील कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। शिवानी शर्मा और प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
3: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
6: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: भी सवाल करते हैं।
1: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
0: ऑपरेशन अग्नि,
1: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
0: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
2: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी। फ्रॉम ब्रेकिंग अपडेट्स टू मैच एनालिसिस, फ्रॉम बिग मोमेंट्स टू बिगर कॉन्वर्सेशन, दिस इज वेयर स्पोर्ट्स कम्स अलाइव। Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
4: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी। ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
5: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
6: परमिशन लेनी चाहिए ना,
5: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
7: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
5: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

इंडोनेशिया की संसद में पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा पहलगाम आतंकी हमले के समय इंडोनेशिया का मिला साथ, भारत विस्तारवाद में नहीं विकासवाद में करता है भरोसा, प्रधानमंत्री को किया गया सम्मानित। अयोध्या में 124 करोड़ के बड़े इवेंट्स पर एसआईटी का शिकंजा, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर ध्वजारोहण तक के खर्च का होगा ऑडिट, शुरुआती रिपोर्ट में गबन के 70 मामले। अयोध्या कांड में विपक्षी हमले पर योगी का करारा पलटवार, कहा वक्त में हजारों करोड़ की लूट पर समाजवादी और कांग्रेस चुप क्यों, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था का की बात क्या करेंगे। बीजेपी शासित एक और राज्य में यूसीसी लाने की तैयारी, राजस्थान सरकार अगले विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लाने पर कर रही है विचार। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो है सामने, टैंकर और गाड़ियों को बहा कर ले गए सुरंग की मिट्टी, दो लोगों की मौत, प्रियंका गांधी ने जताया दुख।

0: और सीरिया की राजधानी दमिश्क से बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर एक के बाद एक धमाके हुए और उससे पूरा का पूरा जो दमिश्क है वो तहल उठा। ये धमाके उस समय हुए जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया के दौरे पर हैं, और जैसे ही राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात के लिए वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे उसी समय धमाके हुए। एक बम धमाका ठीक उसी होटल के बाहर हुआ जहां पर खुद मैक्रों ठहरे हुए थे। धमाके में 4 पुलिसकर्मियों समेत 18 लोग घायल हुए, लेकिन ये धमाके एक सीधा सीधा मैसेज था, क्योंकि पश्चिमी देश के एक बड़े नेता का दौरा, और वो भी उस देश में जहां पर बशर अल असद को हटाकर नए शख्स को सत्ता में बिठाया गया और वहां पर व्यापारिक गतिविधियां बढ़े, इस उम्मीद से मैक्रों का यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसी बीच में इन धमाकों ने सीरिया के साथ साथ विश्व को दहला दिया है। हम दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस होटल में जहां पर ठहरे हुए थे इमैनुअल मैक्रों, ठीक उसके बाहर धमाका, एक तो कूड़ेदान में और दूसरा एक वाहन में धमाका होता है और धमाके के साथ ही वाहन में आग भी लग जाती है। लेकिन इन धमाकों के मायने हैं, एक युद्ध ग्रस्त क्षेत्र जो बाहर निकल रहा था, उबरना चाह रहा था, लेकिन इन धमाकों ने एक बार फिर से उसे पीछे धकेल दिया। और अब आगे आपको दिखाते हैं खामिने की अंतिम यात्रा पर सीधा तेहरान से ही हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
1: एक तरफ भावुक हो रहा ईरान, दूसरी तरफ हुर्मुज में मचा कोहराम, दो जहाजों पर हमलों से दुनिया हैरान। क्या अमेरिका ईरान में फिर बढ़ेगा घमासान? युद्ध विराम बनाए रखने का सबसे बड़ा इम्तिहान। पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं अली खामनेई की अंतिम विदाई यात्रा पर, जिसमें अलग अलग देशों से लोग उमड़ रहे हैं। खास लोगों में भी कौन आ रहा है और कौन नहीं, इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच हुर्मुज में हमले क्या अंतिम यात्रा के बाद संघर्ष का एक नया बहाना तो नहीं बन जाएंगे? इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे इस घमासान की हर खबर, हर तस्वीर, वो भी सीधे तेहरान से।
2: नमस्कार, रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। मैं इस समय ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद हूं। दरअसल पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की यात्रा अब तेहरान से निकलकर कुम पहुंच चुकी है। हजारों लाखों की संख्या में लगातार पिछले 3 दिनों से तेहरान की सड़कें यहां भरी हुई थी। लोग अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में मौजूद थे, लेकिन अब ये यात्रा तेहरान से निकलकर कुम चली गई है और उसके बाद इसको नजफ और जो करबला है इराक के अंदर, वहां उनके शव को पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और उसके बाद आखिरी में मसद के अंदर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इसी बीच हलचल दूसरी तरफ बहुत ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की IRGC ने 2 जहाजों पर, 2 टैंकरों पर मिसाइल से हमला किया है। ईरान का दावा है कि दोनों टैंकर जो हैं वो उनके डेजिग्नेटेड रूट या फिर आप कह सकते हैं कि अलग रूट से जा रहे थे, जिसके बाद ईरान की IRGC को ये कार्रवाई करनी पड़ी। माना जा रहा है कि इन कदमों के बाद अब ईरान और अमेरिका के बीच में तल्खी और ज्यादा बढ़ सकती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अंतिम संस्कार की यात्रा तो चली है, लेकिन इसी बीच ईरान ने जो दोनों टैंकर्स पर अटैक किया, ईरान का दावा है कि दोनों टैंकर गलत रूट से वहां से जा रहे थे ईरान के रोकने पर, और चेतावनी देने के बाद जब ये नहीं माने तो ईरान की IRGC को ये कार्रवाई करनी पड़ी। आपको याद होगा इससे पहले भी IRGC की तरफ से इसी तरीके की कार्रवाई सामने आई थी। उन्होंने इससे पहले भी कुछ टैंकर्स को टारगेट किया था और एक बार फिर उन्होंने 2 टैंकर्स को मिसाइल से टारगेट किया, जिसमें एक मिसाइल आप कह सकते हैं एक टैंकर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ईरान को क्यों लगातार इन 2 ऑयल टैंकर्स पर अटैक करना पड़ा, आखिरकार क्या इसकी सबसे बड़ी वजह रही? दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुरू से ही पिछले कई दिनों में या फिर आप कह सकते हैं शांति वार्ता के दौरान भी अमेरिका और ईरान के बीच में एक ऐसा पॉइंट बना रहा जिसको लेकर ईरान की स्टेटस या फिर उसकी जो परिस्थितियां हैं उसका जो रुख है बहुत कड़ा था। लेकिन ईरान ने ये हमले ऐसे वक्त में किए जब उनके पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की जो अंतिम संस्कार की यात्रा है वो पूरे देश में मनाई जा रही है। आखिरकार ईरान ने हमले क्यों किए और आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान का रुख क्या होने वाला है, क्या इस हमलों के बाद एक बार फिर से इस शांति वार्ता को लेकर, इस युद्ध विराम को लेकर कोई नया बड़ा अपडेट मिल सकता है, क्या इसको लेकर अब ईरान भी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। सबसे पहले आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: हुर्मुज में फिर मचा हाहाकार। ताजा हमलों से सीज फायर होगा तार तार। आरोपों में उलझे अमेरिका ईरान, फिर बढ़ेगा घमासान। कई दिनों से शांत दिख रहे हुर्मुज की लहरें उफान पर हैं। युद्ध विराम के दौरान हुर्मुज में ओमान के ताक के पास एक तेल टैंकर और कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है। दरअसल ओमान की समुद्री सीमा के पास से दो जहाज गुजर रहे थे। इन जहाजों पर अनजान प्रोजेक्टाइल आकर टकराया, जिससे उसमें भयंकर आग लग गई। इस हमले के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच वार पलटवार शुरू हो गए हैं। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब ईरान अपने सुप्रीम लीडर रहे अली खामिनई को अंतिम विदाई देने के अभियान में लगा हुआ है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने बताया है कि टैंकर ओमान के तिमाह के पास दक्षिण की ओर जा रहा था, तभी उसके बाईं ओर यानी पोर्ट साइड की तरफ मिसाइल आकर टकराई, जिससे वो फौरन ही आग की लपटों में घिर गया। इस हमले में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है, लेकिन अधिकारी इस हमले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। अमेरिका इस हमले के बाद से ईरान पर भड़का हुआ है। अमेरिका का दावा है कि IRGC ने सोमवार की रात हुर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर दो मिसाइलें दागी हैं। एक ऑयल टैंकर और एक कमर्शियल जहाज इसकी चपेट में आया है। उसका आरोप है कि ईरान सीज फायर के दौरान जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। वैसे भी ट्रंप लगातार ईरान में चल रही खामिनई की अंतिम यात्रा पर तंज कसते रहे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ओमान की सीमा के पास नेचुरल गैस टैंकर को लगातार चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया, लिहाजा उसे सबक सिखाया गया। इस हमले के बाद से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या समुद्री सुरंगों की वजह से हमला हुआ है। जानकारों का ये भी मानना है कि ओमान के आसपास का पूरा समुद्री इलाका सुरंगों से भरा हुआ है। अल जजीरा के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि ये जहाज उस दिशा की ओर बढ़ रहे थे जहां ईरान की टीमें बारूदी सुरंग हटाने का काम कर रही थी। ये भी हो सकता है कि इन टीमों को जहाजों की उस इलाके में मौजूदगी किसी खतरे का संकेत दे रही हो। इधर हुर्मुज को लेकर ट्रंप का एक ताजा बयान वायरल हो रहा है। ट्रंप का कहना है कि हुर्मुज का तो किसी ने नाम तक नहीं सुना था।
1: You know, one of the reasons we kept the oil down, because a lot of people said, Kevin, and a lot of people were saying that oil could go to $300, $350 a barrel. But one of the reasons that prediction wasn't right is we were taking out on average of 10, but sometimes less, sometimes more. 3 weeks ago, we had a night, 22 ships came out of the strait.
0: ट्रंप इस बहाने जिसका चाहे मजाक उड़ा रहे हों, लेकिन सच यही है कि हुर्मुज का पेच अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक फंसा हुआ है, और यही हुर्मुज दोनों देशों को करोड़ों डॉलर का अभी तक नुकसान पहुंचा चुका है। लेकिन ट्रंप का तो दावा है कि अमेरिका ने जंग के दौरान ईरान की सेना का सफाया कर दिया है।
1: Nuclear dust, I call it, seems to have taken off, but it's enriched material. We're getting it. We're getting it. I went in for one reason, very strongly, that Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've... destroyed their, as you know, completely destroyed. 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: एक तरफ ईरान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने उसके बंदरगाहों के करीब महीनों से नाकेबंदी कर रखी है, तो दूसरी तरफ तमाम पाबंदियों की वजह से ईरान दुनिया भर में तेल को उतनी मात्रा में निर्यात नहीं कर पा रहा है जितनी मात्रा में इसका उत्पादन कर रहा है। इन हालात में सबसे ज्यादा मुश्किल में है वो जहाज जो हुर्मुज में फंसे हुए हैं। उन पर 2400 घंटे मौत का खतरा मंडरा रहा है। खासतौर पर उनके लिए दिक्कत ज्यादा है जो ईरान की निगहबानी से निकलकर जाने की कोशिश करते हैं। हुर्मुज में जहाजों की आवाजाही की निगरानी करने वाली एजेंसियों ने दावा किया है कि पिछले 72 घंटों में 100 से ज्यादा जहाज यहां से गुजरे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए ये जहाज अब ईरानी रूट का प्रयोग कर रहे हैं। युद्ध विराम के बाद हुर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। समस्या सिर्फ रूट को लेकर है। ईरान कतई नहीं चाहता कि जहाज उसके तय किए गए रूट के अलावा किसी और रूट से निकलें। आज तक ब्यूरो।
2: पूर्व सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई या फिर श्रद्धांजलि देने के लिए सिर्फ ईरान के अलग अलग इलाकों से नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से लोग यहां पर एकजुट थे। तेहरान की सड़कें लगातार भरी हुई थी, हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके ताबूत के पास जाकर दुआ और नमाज अदा करना चाहते थे। लोग ये दुआ कर रहे थे कि देखिए जिस तरीके से उनको मारा गया वो निश्चित तौर पर लोगों के दिल पर या फिर उनकी आंखों पर उनके चेहरे पर साफ नजर आए। लोग आहत थे, गुस्सा थे और ये नाराजगी और ये गुस्सा उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। अब तेहरान के बाद उनके पार्थिव शरीर को कुम ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उनके इसी शरीर को पार्थिव शरीर को इराक के करबला और नजफ ले जाया जाएगा और उसके बाद आखिरी में यानी 9 जुलाई को उन्हें स्पुर्दे खाक यानी उनको दफन कर दिया जाएगा मसद के अंदर जो उनका गृह क्षेत्र भी है। यही वजह है कि देखिए अब सारा जमावड़ा दोबारा से एक बार फिर से कुम के बाद मसद होने वाला है।
0: कोम पहुंची खामेनेई की आखिरी यात्रा। कोम में उमड़े लाखों लोग दी श्रद्धांजलि। अब इराक के लिए रवाना होगी अंतिम यात्रा। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें ईरान के कोम शहर की जमकरान मस्जिद की हैं, जहां तक नजर घुमाइए काली पोशाक में अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन के लिए आए लोग ही नजर आएंगे। मस्जिद में पैर रखने की जगह तक नहीं है, लोग आ रहे हैं, अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और बाकी लोगों के लिए अंदर आने का रास्ता बना रहे हैं। लोगों ने हाथों में झंडे पकड़ रखे हैं, इनमें ईरान के झंडे भी हैं, जो इन मुश्किल हालात में लोगों के बीच एकजुटता दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुछ लाल झंडे भी हैं, जो प्रतीक है गुस्से का, अमेरिका और इसराइल से बदला लेने का। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शियाओं के प्रमुख धार्मिक शहर कोम में निकाली जा रही है। तेहरान के बाद यहाँ भी लगातार दूसरे दिन लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुँचे हैं। तेहरान के बाद खामेनेई और उनके परिवार के मृत सदस्यों के ताबूत जमकरान मस्जिद में लाए गए, जहाँ जनाजे की नमाज अदा कराई गई। ईरान का कोम शहर शिया मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। खामेनेई ने अपने शुरुआती धार्मिक जीवन में यहीं इस्लामी शिक्षा हासिल की थी, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा का ये पड़ाव खास माना जा रहा है। वैसे कोम शहर को शिया इस्लाम की वैचारिक राजधानी माना जाता है। यहाँ कई जाने माने धार्मिक शिक्षण संस्थान और बड़े आयतुल्लाओं के केंद्र मौजूद हैं। अली खामेनेई के जनाजे से जुड़ी रस्मों में इस शहर को शामिल करना शिया धार्मिक प्रतिष्ठानों के प्रति सम्मान और एकता का प्रतीक माना जा रहा है। 8 जुलाई को खामेनेई की अंतिम यात्रा इराक के नजफ और करबला से ले जाई जाएगी। यहां इराक के शिया समुदाय के अंतिम दर्शन के लिए जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद ईरान में उनके गृह नगर मशहद ले जाया जाएगा, जहां गुरुवार को इमाम रजा दरगाह परिसर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इराक के नजफ शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। लोग हजारों की तादाद में यहां इकट्ठा हो रहे हैं और अंतिम विदाई से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। इससे पहले तेहरान में उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग जुटे थे। भीड़ की तादाद इतनी थी कि उनका ताबूत लेकर चल रहे वाहन को कई बार रोकना पड़ा, लेकिन अब तेहरान में शांति है। यातायात की पाबंदियां खत्म कर दी गईं और सड़कों पर लोगों की आवाजाही देखी जा सकती है।
2: सल्ला से आजादी स्क्वायर का रास्ता है, उसमें कई पॉइंट्स पर यानी करीबन 3 से 4 पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से मीडिया को उनकी कवरेज करने की यानी जो प्रोसेशन चलेगा उनके साथ जत्था चलेगा, लोग उनके साथ उनके पार्थिव शरीर के पीछे चलेंगे, वो करीबन 20 से 25 किलोमीटर का दायरा बनाया गया है, जिसमें ग्रैंड मसल्ला से वली स्क्वायर से उसके बाद आजादी स्क्वायर तक जाएगा और उसके बाद आजादी स्क्वायर पर ले जाने के बाद वहां पर लोग इकट्ठा होंगे और फिर उसके बाद उनको वहां से उनके पार्थिव शरीर को कुम ले जाया जाएगा, जो कल वहां पर फिर इसी तरीके का कार्यक्रम होगा।
0: इस बीच अंतिम यात्रा को लेकर दिए गए ट्रंप के बयानों से ईरान बुरी तरह चिढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि धमकियों के माहौल में किसी भी अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पहले समझौते का सम्मान करना चाहिए। अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लाखों ईरानी पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। न तो ये लोग और न ही हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी धमकी से डरते हैं। संकेत साफ हैं, जो हालात हैं उनमें खामेनेई की अंतिम यात्रा के बाद सुलह से ज्यादा संग्राम की आशंका बढ़ रही है। तेहरान से सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: भले ही तेहरान से जो अंतिम संस्कार की यात्रा निकल गई हो, लेकिन अब भी तेहरान को एक चौकी में या फिर एक छावनी में तब्दील किया हुआ है। खास तौर पे पूरे ईरान के अंदर अभी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और माना जा रहा है कि जब तक मसद में उन्हें सुपुर्द खाक नहीं किया जाएगा तब तक वो चीजें बदलाव नहीं होगी। इसको लेकर आपको अपनी एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ। तेहरान से अब सुप्रीम लीडर का जो पार्थिव शरीर है वो कुम ले जाया गया है और उसके बाद इराक और फिर उसके बाद उन्हें मशहद में ले जाया जाएगा। लेकिन तेहरान के अंदर लोगों का जमावड़ा नहीं है, यहाँ पे जिंदगी सामान्य होनी शुरू हो गई। दरअसल एक लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी कि चारों तरफ से सड़कें बंद थी, दुकानें बंद थी, सरकारी ऑफिस बैंक तक बंद कर दिए थे। लेकिन आज यहाँ पर दुकानें या फिर आप कह सकते हैं जो जिंदगी है वो सामान्य दिखनी शुरू हो गई। ट्रैफिक को खोल दिया गया है ईरान, खासतौर पर तेहरान के अंदर, राजधानी तेहरान के अंदर चीजें सामान्य होती जा रही है। दुकानों को आप देख सकते हैं कि खोल दिया गया है, लोग अपनी सामान्य जिंदगी पर लौट रहे हैं। और इस समय पूरे तेहरान के अंदर जो लोग काली पोशाकों में नजर आ रहे थे वो अब दूसरे यानी सामान्य जीवन के तरह जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। आपको नॉर्मल कपड़ों में या दूसरे रंग के कपड़ों में वो नजर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी बहुत ज्यादा सामान्य हो गई है। दरअसल अभी तेहरान में, खासतौर पर ईरान के अंदर, एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर जो बैरिकेडिंग है इस तरीके से की गई है कि जो बाहर के लोग हैं वो इधर ना आ सके और यहाँ के लोग वहाँ दूसरी तरफ मूवमेंट ना कर सके, यानी रिस्ट्रिक्शंस अब भी है। मौजूदा हालात के अंदर शांति जरूर नजर आती है लेकिन एक अलर्टनेस भी है जिसको लेकर ऐसा माना जाता है कि ईरान ये मान चुका है कि शायद 9 जुलाई को उसको एक बार फिर से अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना करनी पड़ जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर, पूर्व सुप्रीम लीडर का आज अंतिम संस्कार का चौथा दिन है। देखिए सबसे खास बात यह है कि अभी जब चौथे दिन अब उनके शरीर को, उनके पार्थिव शरीर को अब तेहरान से निकालकर कुम ले जाया गया है। कुम में जहां पर उनके मस्जिद में उनके उसी तरीके की प्रक्रिया, अंतिम संस्कार के लिए लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे और कई लोग जो हैं वो उनके साथ, जत्थे के साथ या फिर उनके पूरे आपके जैसे पार्थिव शरीर का जो कॉन्वॉय है या फिर जो चीज़ें हैं जब उनकी बॉडी को वहां ले जाया जाएगा, इससे पहले ही कुम जाना शुरू कर दिया है। कुम में नमाज अदा करने के बाद कहा जा रहा है कि देर रात या कल सुबह उनको फिर इराक के करबला और नजफ लेकर जाया जाएगा और उसके बाद आखिरी दिन यानी जब 9वें दिन यानी 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा मशहद में, वो आखिरी दिन होगा उनके पूरे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के। लेकिन आज तेहरान की सड़कों को खोल दिया गया है, खासतौर पर जिस तरीके का लॉकडाउन, जिस तरीके की भीड़ हम देख रहे थे पूरे राजधानी के अंदर वो लगभग कम हो गई है। धीरे धीरे दुकानें खुलनी शुरू होगी और शायद एक सामान्य जिंदगी पर चीज आ गई। लेकिन दूसरी तरफ एक और चिंता का विषय यह भी है कि लगातार बंदर अब्बास में या फिर ईरान का जो रुख है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। ईरान के लोग, ईरान के प्रशासन, अमेरिका द्वारा लगातार सुप्रीम लीडर को लेकर की गई टिप्पणियां या फिर इसराइल की धमकियों से बेहद ज्यादा नाराज हैं और शायद इसी वजह से कहा जा रहा था कि एक तरफ तो ये प्रक्रिया चल रही थी, अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं को, परंपराओं को पूरा किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईरान की IRGC तैयारियां भी कर रही थी कि 9 तारीख के बाद वो अमेरिका को कोई जवाब जरूर देगी। वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का है और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है तो इस सिंबॉल को यहाँ पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है। दरअसल आजादी स्क्वायर अपने आप में एक बड़ा सिंबॉलिक, आप उनके ईरानियन रेवोल्यूशन के लिए, इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में, खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। और शायद इसीलिए क्योंकि उनके इसी हाथ को उनकी पहचान के तौर पर देखा जाता था। आपको याद होगा कि जब उनको 28 फरवरी को मारा गया, एयर स्ट्राइक की गई, तब उनके हाथ की वजह से, उनकी अंगूठी की वजह से ही उनकी पहचान की गई थी, उनके पार्थिव शरीर की। और शायद अब उसी को रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज ईरान से जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

इंडोनेशिया की संसद से पीएम मोदी का संदेश, भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद का पक्षधर। अब पहलगाम आतंकी हमले के समय मिला दोस्त का साथ, प्रधानमंत्री सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर 124 करोड़ के खर्च की भी एसआईटी जांच। पिछले दो वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड, बिल और दान में मिले सोने चांदी का किया जा रहा है ऑडिट। शुरुआती रिपोर्ट में गबन के 70 मामले।

पर योगी का करारा पलटवार, कहा वक्फ में हजारों करोड़ की लूट पर समाजवादी और कांग्रेस चुप क्यों, राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों आस्था की क्या करेंगे बात। बीजेपी शासित एक और राज्य में यूसीसी लाने की तैयारी, राजस्थान सरकार अगले विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लाने पर कर रही है विचार।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अयोध्या कोर्ट ने तीनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है। तीनों आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करणेश पांडे 24 घंटे तक पुलिस कस्टडी रिमांड पे रहेंगे। कल सुबह 10 बजे से अयोध्या पुलिस करेगी पूछताछ। तीनों आरोपियों को उनके ठिकाने पर ले जाकर कार्रवाई की जाएगी। उनके साथ साथ बरामदगी करने की भी आशंका जताई जा रही है। अनुकल्प मिश्रा के हाल ही में खरीदे नए घर और गाड़ी के बरामदगी को लेकर भी सवाल जवाब किए जाएंगे और उसके साथ साथ तलाशी भी की जाएगी। तो एक बार फिर आपको खबर बता दें, अयोध्या केस में तीन आरोपियों की पुलिस रिमांड आखिरकार पुलिस ने मांगी है और इन तीनों आरोपियों की 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पुलिस को मिल चुकी है। अदालत के जरिए उनको ये रिमांड दी गई है। अनुकल्प मिश्रा के घर जाकर तलाशी भी ली जाएगी। इस मामले में उनकी जांच पहले ही हो चुकी है, लेकिन लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करणेश पांडे 24 घंटे की पुलिस कस्टडी में भेज दिए गए हैं। तो आज का दंगल राम मंदिर चोरी कांड में जवाबदेही के टोपी ट्रांसफर वाले खेल को लेकर है, क्योंकि राम मंदिर में चोरी की जांच एसआईटी कर रही है। जिनके पास पैसे मिले वो गिरफ्तार हो गए। शुरुआती रिपोर्ट में ही जिन पर उंगली उठा ली गई उनका इस्तीफा भी हो गया, लेकिन अब जैसे जैसे अंतरिम रिपोर्ट के खुलासे बाहर आ रहे हैं, कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष पूछ रहा है कि इस्तीफा तो हो गया लेकिन एफआईआर कब होगी। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल 6 फरवरी को न जाने किस मंशा से दान की गिनती के लिए बनी एसओपी को ठप कर दिया गया था, यानी दूर दरकिनार कर दिया गया था। दान की चोरी हो गई, पूरा ट्रस्ट सवालों के घेरे में आ गया, तो जिम्मेदार अब कहते हैं कि जिम्मेदारी उनकी नहीं है। कोषाध्यक्ष कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी पैसे जमा होने के बाद की थी, गिनती की उनकी जिम्मेदारी नहीं है। गिनती की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। बैठक में मौजूद कमल नयन दास कहते हैं कि अनिल मिश्रा पर तो कल की बैठक में चर्चा तक नहीं हुई है। अब सीएम योगी कहने लगे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। सीएम योगी का कहना है कि वक्त के घोटालों पर फेविकॉल लगाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कथित चोरी पर हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, यानी राम मंदिर की चोरी पर सवाल उठाना हिंदुओं का अपमान है। सीएम कहते हैं कि जिसने राम का अस्तित्व ही नहीं माना, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उन्हें चढ़ावा चोरी पर सवाल का अधिकार नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी सबूत दिखा रही है कि जमीन घोटाला हुआ है और उसके लिए जो भी कागजात है वो उनके पास है और वो एसआईटी को देने के लिए तैयार है और उसकी जांच की जाए। तो दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि चढ़ावा चोरी कांड में क्या इस्तीफा ही कार्रवाई है, क्या उसी से साफ हो जाएगा कि अब कोई किसी पर भी इसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्या राम मंदिर में चोरी का सवाल उठाकर विपक्ष सचमुच में हिंदुओं का अपमान कर रहा है, क्या चढ़ावा चोरी के पीछे नाकामी, लापरवाही या मिलीभगत के जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई कभी होगी, और भी तमाम सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: राम को लूटा है, देश को लूटा है, जनता का विश्वासघात है, श्रद्धा का विश्वासघात है। ये
2: मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोगों को, अयोध्या वासियों को भी इस घटना ने कल्पित किया है।
3: मूर्ति तक ही नहीं चोरी हुआ, यहाँ तक कि दान बॉक्स में दिए गए जो कैश थे उसको भी निकाल दिया लोगों ने।
4: चोरों को बचाने का काम मत करो भाजपाइयों।
5: उनकी लापरवाही, असावधानी, इतने समय तक चलना, ये गंभीर बात है।
6: चढ़ावा चोरी के अयोध्या कांड में तीन पक्षों की तीन जगह हलचल है। एक तो एसआईटी खुलासे पर खुलासे कर रही है, दूसरा ट्रस्ट इस्तीफे पर इस्तीफे ले रहा है, तीसरे नेता सियासी जंग नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहे हैं। एसआईटी अंतरिम रिपोर्ट में खुलासे करती है कैसे जेब, जूतों, कपड़ों में चढ़ावे की चोरी हो रही है। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, न आने जाने की तलाशी हुई, न वेशभूषा का पालन, न एसओपी फॉलो हुई, न हुंडीवार नोटों का ब्योरा रखा गया, न वाउचर बने, न बायोमेट्रिक चल रही थी।
5: उनकी लापरवाही, असावधानी, इतने समय तक चलना, ये गंभीर बात है, ये नहीं होना चाहिए।
6: लापरवाही इतनी ही नहीं, अब एसआईटी खुलासे करती है कि कैसे ट्रस्ट ने सिर्फ 3 आयोजन में 124 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जांच टीम की नजरें इन्हीं 3 कार्यक्रमों पर खर्च को लेकर टिकी है, जिसमें जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जनवरी 2025 में हुए प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम और नवंबर 2025 में हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम पर किए गए खर्च को संदिग्ध माना जा रहा है। क्योंकि इन कार्यक्रमों में जो खर्च हुआ है उसने जांच टीम में शामिल अफसरों की त्योरियां चढ़ा दी। सूत्रों के मुताबिक पता चला 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होता है 8000 मेहमान आए, 35 करोड़ 97 लाख रुपए का टेंट लगा, अक्षत पूजन पर 30 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च हुए, विज्ञापन प्रचार पर 21 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च हुए, 14 करोड़ 62 लाख रुपए की डेकोरेशन और लाइटिंग, 5 करोड़ 11 लाख रुपए खाने पीने में खर्च हुए, 1 करोड़ 6 लाख रुपए पूजा पाठ अनुष्ठान में खर्च हुआ, 93 लाख रुपए भक्ति गीत गाए गए, 68 लाख रुपए का साउंड सिस्टम लगा, 43 लाख रुपए में बिजली का इंतजाम हुआ, 43 लाख रुपए मंडल पूजन का खर्च हुआ, विविध खर्चों में अलग अलग 51 लाख रुपए खर्च हुए। चढ़ावा चोरी के बाद पहली बार ट्रस्ट की मीटिंग तो हुई, चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे भी हुए, लेकिन ट्रस्ट ये कार्रवाई भी नहीं चाहता था।
2: विषय आया माननीय श्री चंपत जी के इस्तीफे की बात, तो जितने हमारे ट्रस्टी थे सब एक स्वर से नहीं नहीं हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ट्रस्टी जो चेन्नई में रहते हैं पारासरन जी, उनने कहा नियम यह है कि स्वीकार आप करें या न करें, ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया तो अपने आप ही स्वीकार हो जाता है।
6: अनिल मिश्रा जी को क्या क्या मारा जी उनको?
1: अनिल मिश्रा की कोई चर्चा नहीं।
6: इस रिएक्शन की शुरुआत दो दिन पहले हो गई, जब घोटाले के आरोपी टिन्नू यादव के तार अखिलेश यादव से जोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई
7: कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
6: लेकिन चोरी की जिम्मेदारी शिफ्ट करने के बजाय अब सीएम योगी ने विपक्ष पर सीधा प्रहार शुरू कर दिया। विपक्ष कतार लगाकर चढ़ावे से लेकर चंदे तक और दान से लेकर जमीन खरीद तक के घोटाले का सवाल खड़ा करता है, कार्रवाई का हिसाब मांग रहा है। लेकिन अब सीएम योगी ने वक्त के घोटाले, धांधलियों और भ्रष्टाचार पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठा दिया।
8: मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई, एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी, ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था।
6: दरअसल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला आते यूपी में वक्त के घोटाले के सवाल खड़े होने लगे थे। बड़ा मामला बहराइच के वक्त नंबर 19 यानी सैयद सालार मसूद गाजी की सबसे धनी दरगाह का उठा था।
9: 20 साल के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कमेटी के लोग शामिल हैं।
10: हम तो कितने भी खराब सही, उनकी नजर में हम पूरी तरह खराब हैं। लेकिन क्या हमारे खराब होने से भगवान राम के चंदे और चढ़ावे को चोरी करने का अधिकार उनको और उनके संगठनों को मिल जाता है?
6: दरअसल राम मंदिर की चोरी को वक्त में हुई धांधली के बराबर खड़ा करके सीएम योगी एक आस्था एक विरोध का स्केल लागू करना चाहते हैं, क्योंकि वक्त में गड़बड़ियों की बात की जाए, यूपी में वक्फ की 1,18,302 संपत्तियां हैं और धांधली की जांच के बाद 31,328 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की 30,322, शिया की 1,006 संपत्तियां हैं। इसी तरह देश में वक्फ की 9,00,000 संपत्तियों में 28% काउंसिल में दर्ज हैं और उनमें भी 1,64,000 संपत्तियां विवादों में हैं। 2018 में तेलंगाना के मलकानगिरी में 100 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे, 2017 में महाराष्ट्र के नासिक में 2500 करोड़ की वक्फ संपत्ति का घोटाले का आरोप लगा, उससे पहले 2012 में कर्नाटक में 2,00,000 करोड़ की 54,000 एकड़ वक्फ संपत्ति बेचे जाने की जांच रिपोर्ट आई, उससे भी पहले 2002 में पश्चिम बंगाल में भट्टाचार्य कमीशन रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्तियों के घोटाले का खुलासा हुआ। प्रभारी सीएम योगी कहते हैं कि वक्फ के नाम पर चुप्पी और मंदिर के नाम पर शोर विपक्ष की सेलेक्टिव कम्युनल सियासत का चेहरा है।
8: इन लोगों की एक कुटिल चाल है और इस कुटिल चाल में मैं इसीलिए कहता हूं, इस कुटिल चाल को देख करके
11: अब गिरगिट भी शर्माने लग गया होगा कि चलो मुझसे भी तेज रंग बदलने वाली कोई एक नई प्रजाति आ गई है, वो समाजवादी पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में, जो कितनी तेजी के साथ रंग बदलती। कल तक एक बाबरी ढांचे के लिए आंसू बहा रहे थे, आज राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए किस प्रकार के वक्तव्य देकर के अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं।
6: दरअसल राम मंदिर में चोरी की कल्पना भी बीजेपी को सियासी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। यहां तो साक्षात 8-8 चोर पकड़े गए, 2-2 इस्तीफे हुए, न जाने कितने और पकड़े जाएंगे, कितने भ्रष्टाचार का खुलासा होगा।
12: विपक्ष का कोई लेना देना राम मंदिर से नहीं है, भगवान राम के जन्मभूमि के मंदिर से कोई लेना देना विपक्ष का नहीं है। विपक्ष इसको मुद्दा बना करके प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम।
6: और बीजेपी अग्नि परीक्षा चोरी और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के बाद ही पास कर पाएगी, वरना इस परीक्षा के परिणाम 2027 के चुनाव नतीजों में दिखेंगे। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: यह बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस तरीके से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद भी यह मामला थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरीके से ट्रस्ट के तरफ से चंपत राय को क्लीन चीट देने की कोशिश की गई है कि उनका कोई उद्देश्य इस तरीके से चोरी में नहीं था। दरअसल खुद जो मंदिर के कोषाध्यक्ष है, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, वही कह रहे हैं कि चंपत राय का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो चर्चा करेंगे कि आखिरकार सिर्फ इस्तीफे से बात बनेगी क्या और उसके बाद एसआईटी की जांच कहां तक जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस की प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल होंगी। अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सीधे कुटिल नीति अपनाने का आरोप लगाया हुआ है, तो उनसे भी सवाल पूछेंगे। मौलाना अंसार रजा चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, और आदिल हसन एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी अपनी भूमिका रखेंगे, क्योंकि अब मामला वक्फ बोर्ड में जो खामियां हैं उसके तरफ खींचने की कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल पैनल के सामने। पहला सवाल, चढ़ावा चोरी कांड में क्या बिना मन के इस्तीफा मंजूर कर कार्रवाई की गई है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि इस्तीफा मंजूर किया जाने वाला था। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ट्रस्टी ये कह रहे थे कि जब इस्तीफा पेश किया गया मना कर दिया गया सभी की तरफ से, लेकिन नियम है कि इस्तीफा मंजूर करना पड़ा। दूसरा सवाल, क्या राम मंदिर में चोरी का सवाल उठाकर विपक्ष हिंदुओं का अपमान कर रहा है, जो आरोप योगी आदित्यनाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा सवाल, क्या चढ़ावा चोरी के पीछे नाकामी, लापरवाही या मिलीभगत के जिम्मेदारों पर कभी भी कानूनी कार्रवाई हो पाएगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि जिसका मैं जिक्र कर रहा था, गोविंद देवगिरी दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चंपत राय के इरादों के स्तर पर वो निर्दोष है। एक तरीके से क्लीन चिट, बिना किसी जांच के सीधे सीधे चंपत राय को क्लीन चिट देने की कोशिश ट्रस्ट की तरफ से हो रही है। ऐसे में अजय आलोक, जब ये कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई हुई है वो ठीक है, लेकिन चंपत राय निर्दोष है, वो जिद्दी है लेकिन किसी भी तरीके से अहंकारी नहीं है, निर्दोष बताया जा रहा है, भ्रष्टाचार से वो दूर है, यह भी ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कोई कानूनी कार्रवाई की कोई गुंजाइश इसमें नजर नहीं आ रही है।
13: ट्रस्ट कानूनी कार्रवाई कर रही है, पहले मुझे आप जवाब ये दीजिए। तो कानूनी कार्रवाई ट्रस्ट कर रही है, ट्रस्ट को एफआईआर करना था, एसआईटी करना था, ट्रस्ट ने कर दिया, ट्रस्ट के हाथ से बात निकल गई। अब एसआईटी और पुलिस की जांच चल रही है और उसमें जो जो दोषी पाए जाएंगे उन पर एफआईआर होगी। ट्रस्ट अब आ कहां से गया, ट्रस्ट का रोल खत्म। उन्होंने
0: तो खुद कहा से दे रहे
13: हैं, चंपत राय जी ने जिन्होंने जो पे विश्वास किया उन्होंने धोखा दिया कि इस वक्त किसने किसको क्लीन चिट दे दिया, किसी के क्लीन चिट देने से क्या हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं चंपत राय जी को मैं बिल्कुल निर्दोष मानता हूं, तो क्या निर्दोष?
0: जरा गोविंद गिरी जी का स्टेटमेंट निकाल के सुनाइएगा अजय आलोक जी को। गोविंद गिरी जी कह रहे हैं, आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता देता
13: हूं। अभी अभी आपके गोविंद गिरी जी ने साफ साफ इरादतन और नियतन, इरादतन और नियतन चंपत राय जी पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनकी कार्यशैली जैसी थी, जैसे लोगों पे उन्होंने भरोसा किया, उन लोगों ने उनको धोखा दिया और वो आंख मूंद के अपनी चलाते रहे, किसी से संपर्क नहीं किया। साफ साफ कहा गोविंद गिरी जी ने, मैंने भी सुना, आपने भी सुना है, इसमें क्लीन चिट कैसे हो गई? जिम्मेदारियों का निर्वहन इसी को कहते हैं ना, जो मैं शुरू से कहता रहा आपके प्रोग्राम पे कि क्रिमिनल नेग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को तो जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कहते हैं। और इसी के लिए इस्तीफा हुआ और इसी के लिए उन्होंने साफ साफ कहा कि इस्तीफा दिया मतलब मंजूर हो गया। और अब तो ट्रस्ट पिक्चर में ही नहीं है भाई साहब, अब तो सारा पिक्चर एडमिनिस्ट्रेशन पे है, एसआईटी पे है, पुलिस की जांच पे है, जो जो मिलते जाएंगे उनको लपेटा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। आज फिर मुख्यमंत्री,
0: थोड़ी देर पहले आपने
13: पानी का पानी होगा,
0: अजय आलोक जी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आपने सुना होगा अजय आलोक जी, मुख्यमंत्री अपने स्टेटमेंट में शुरुआत ही इस बात से कर रहे हैं कि ये कथित चोरी हुई है, कथित चोरी। एसआईटी की रिपोर्ट आप उठाकर देखिएगा, एसआईटी की रिपोर्ट पे साफ शब्दों में कहा जा रहा है 70 बार 40 दिनों में 70 बार, और ये भी वो कह रहे हैं कि 27 अप्रैल के पहले भी ये होता होगा, हमारे सामने तो 70 बार दिख रहा है जब हम लोग ने जांच करना शुरू किया है सीसीटीवी के, लेकिन उससे पहले भी होता होगा, तो कथित चोरी कहां से हो गई? 8 लोग जो गिरफ्तार हुआ है वो किस लिए हुए हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कथित चोरी है, वहां पर गोविंद गिरी कह रहे हैं कि चंपत राय का कोई लेना देना है नहीं, जबकि उनके ड्राइवर के पास चाबी मिली है उस दान पात्र की, जबकि उनके पास होने की कोई जरूरत नहीं थी टीनू यादव के पास।
13: सुनिए, मुख्यमंत्री जी का एक शब्द पकड़ के उनके पूरे बयान को आप ट्विस्ट कर दे रहे हैं कथित को, मुख्यमंत्री जी का बाकी पूरा लाइन तो आप सुन ही नहीं रहे। एसआईटी की जो रिपोर्ट आ रही है एक पर एक करके, सारे के सारे 5 साल की ऑडिट हो रही है, उसको आप देख ही नहीं रहे। एसआईटी साफ साफ कह रही है कि तीनों मेन खर्चों को हम फिर से जांचेंगे, इसमें कुछ हमें बदबू आ रही है, संदेह हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एसआईटी ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, इन्वेस्टिगेशन ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कथित किस बात पे उन्होंने कहा? आप जो हम यहां पर बैठ के पिछले 6 जून से डिबेट कर रहे हैं, आज होने जा रही है 7 जुलाई, एक महीने से राम मंदिर पे डिबेट हो रहा है, आज तक कभी वक्फ बोर्ड पे आपने डिबेट की? अरबों खरबों की संपत्ति चली गई, लोग चोर पे चोर निकलते गए, पटना की मैं बता रहा हूँ, पटना में 500 करोड़ की,
0: जब राम मंदिर में चोरी होगी तो राम मंदिर की चोरी पर ही डिबेट करेंगे, वक्फ बोर्ड की चोरी होगी, वक्फ बोर्ड के बिल लाया जाएगा तब वक्फ बिल को लेकर डिबेट करेंगे, ये कौन सा सवाल हो गया?
13: वक्फ बोर्ड
0: अगर राम मंदिर में चोरी नहीं हुई होती तो हम ये डिबेट ही नहीं कर रहे होते। अजय आलोक जी आप इतने साल से प्रवक्ता है, आपको भी पता है कि जब चोरी होती है तभी तो डिबेट होगी ना, जब चोरी दबाने की कोशिश हुई तभी डिबेट हुई।
13: साहिल जी सुन लीजिए, अरे मैं आपके एडिटोरियल को चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि आप किस पे डिबेट कीजिए किस पे नहीं कीजिए, ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यह है कि वक्त बोर्ड पे भी चोरी हुई, एक दो नहीं हजारों करोड़ की चोरी हुई, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, लेकिन इस तरह से विस्तृत चर्चा एक महीने से जो सिर्फ राम मंदिर पे चल रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि यह सेलेक्टिविटी है? हिंदू धर्म को टारगेट करो, अयोध्या मंदिर को टारगेट करो, अयोध्या को ऐसा बदनाम करो कि लोगों की आस्था कम हो जाए, ये सेलेक्टिव आस्था पे टारगेट हो रहा है ना। अब जब एसआईटी बन गया, आप चाहते क्या है भाई? व्हाट डू यू वांट? कोई कार्रवाई नहीं, एफआईआर करो, एसआईटी करो, एसआईटी बैठी, एसआईटी ने एफआईआर कर दिया, एफआईआर हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी हो गई, पूछताछ हो गई, जेल चले गए, रिमांड पे क्यों नहीं लिया, रिमांड पे भी ले लिया, अभी कहा कि बंद हो गई जांच, क्लीन चिट दे दिया, किसी को क्लीन चिट नहीं हुई, इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? इस्तीफा हो गया, आपसे पूछ करके जांच करेगी एसआईटी? यहां पे नौटंकी करने का अगर माहौल बनाया हुआ कि रोज दिन मीडिया पे आके किसी को कुछ बयान देना है, 20,000 करोड़ का घोटाला है, 1400 करोड़ का घोटाला है, कभी कपटीवाल कहते हैं, 20,000 करोड़ रामगोपाल कह देते हैं, कोई 500 करोड़ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, भैया सपने में आके भगवान श्री राम या अल्लाह मियां आके सपने में बोल रहे हैं कि भाई इतने का घोटाला है, इतना ही बोल, ये मजाक नहीं बना रहे तो क्या कर रहे हैं? हमारी आस्था के केंद्र को मजाक बनाया जा रहा है।
0: अनुराग भदौरिया,
13: वही बात योगी जी ने कही,
0: अनुराग भदौरिया कौन आ रहा है आपके सपने में? अनुराग भदौरिया आपके सपने में कौन आ रहा है?
13: नहीं, ये तो
0: और वहां पर बीजेपी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आपकी कुटिल नीति है। अब बोल रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड पर तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन राम मंदिर का हो गया तो एक महीने से लगे हुए हैं।
14: देखिए कमाल की बात है, हम सनातनी हैं और सनातनी होने के नाते अपना धर्म निभा रहे हैं। अब सवाल है, रुकिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सनातनी का धर्म निभाइए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, दूसरों का भी सम्मान करना सीखिए, ये सनातन सिखाता है, शायद आपने पढ़ा नहीं है। देखिए मैंने आपसे बोला कि प्रभु राम के चढ़ावा में चोरी हुई है।
13: आपको सनातन क्या मतलब है भाई?
14: सुनो, प्रभु राम के यहाँ पे मंदिर में चढ़ावा में चोरी हुई है और आप इसको क्या बोल रहे हैं? मजाक समझ रखा है। ये इस तरह की बातें की जाएंगी? प्रभु के चढ़ावा चोरी पे जब सवाल पूछा जाएगा आपको मजाक लगता है? करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, लोग कितनी आस्था से जाते हैं, कितना अपना अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रभु से कुछ मांगते हैं, वो चढ़ावा चोरी हो जाए और आप कह रहे हो कि आप यहाँ पे मजाक चल रहा है? ये मजाक नहीं चल रहा है, आस्था पे चोट पहुंची है, श्रद्धालु की श्रद्धा पे चोट पहुंची है, भक्ति पे चोट पहुंची है, कितना आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप आस्था में राजनीति खोज रहे हैं, क्योंकि ये मेरे आस्था का विषय है, आपके लिए राजनीतिक विषय है, इसलिए आप इसको राजनीति से लेना चाहते हैं, आप वक्फ बोर्ड की तरफ भाग रहे हैं। अरे जब वक्फ बोर्ड में चोरी होगी, सरकार आपकी उनको पकड़ी जेल में डाली, लेकिन आज हमारे घर में चोरी हुई है, हम उसकी बात उठा रहे हैं, ये मेरे प्रभु ये हमारे सबके श्रद्धालुओं का आस्था की विषय है ना, तो जब आस्था में डाका डाला गया, आस्था पे चोट पहुंची है, तो हम उसकी आवाज उठा रहे हैं। एक महीना क्या, दो महीना क्या, तीन महीना क्या, चार महीना क्या, ये हमारे यहाँ पे अगर चोरी हुई है, मंदिर में चोरी हुई है, चुनाव में चोरी हुई है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कितने दिन भी बोलना पड़े, हम बोलेंगे जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक पता नहीं चलेगा किसके देख रेख में चोरी हुई, कैसे चोरी हो गई, कब चोरी होगी, जब तक इसका पूरा कट्टा सत्ता के सामने नहीं आ जाता, तब तक हम
15: अनुराग भदौरिया की इंटरवेंशन। एक मिनट जरा,
14: अरे सर,
15: जरा जरा एक मिनट, एक
14: मिनट, उनकी आवाज बंद की, नहीं नहीं उनकी आवाज तो
15: नहीं, नहीं ठीक है ना, नहीं होता, अरे लेकिन मैं तो सवाल पूछ सकता हूँ ना। देखिए अभी एक दूसरे से बातचीत में ना समय मत वेस्ट करिएगा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। देखिए योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी, तो चले पहले शुरुआत ही हम लोग दूध का दूध पानी के पानी से करते हैं। एक, क्या अगर वक्फ बोर्ड में इसी तरीके से चोरी हुई होती, आरोप क्या लगा रहे हैं? देखिए अभी थोड़ा सा मामला अलग है, आरोप यह लगाया जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड में चोरी होती है तो समाजवादी पार्टी के होंठ सील जाते हैं, तो क्या सचमुच में वक्फ बोर्ड में अगर चोरी होगी तो क्या अनुराग भदौरिया इसी तरीके से सवाल उठाएंगे? यही सवाल अजय आलोक पूछ रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग।
14: मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ उनकी आवाज बंद कीजिए, बीच में टपर टपर करते हैं वो, ठीक है, देखिए फिर बीच में बोल रहे, ऐसे आवाज कैसे जाएगी?
15: नहीं नहीं, एक मिनट अजय आलोक जी, उनको जवाब तो देने दीजिए, जवाब देने दीजिए,
14: गलत बात है,
15: जवाब देने,
14: मैंने उनको सुना था।
15: नहीं अजय आलोक जी प्लीज, उनको जवाब देने दीजिए, उसके बाद आता हूँ आपके पास। चलिए अनुराग जी आप जवाब,
14: आवाज बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे वो बीच में चिल्लाएंगे वो, देखिए
15: अरे बोलिए तो है। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, शांति से सुन रहे,
14: देखिए साफ साफ मैंने बोला, आज हमारे प्रभु के मंदिर में चोरी हुई चढ़ावा में, सनातनी होने के नाते हमने आवाज उठाई, कल अगर किसी भी वक्फ बोर्ड में कहीं चोरी होगी, हम सनातनी हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वहां भी आवाज उठाएंगे, और सरकार इनकी है, ज्यादातर राज्यों में चोरी हुई है, पकड़िए, जेल में डालिए, किसने रोका आपको? आप जो बातें बना रहे, ऐसे लग रहा है विपक्ष में, अरे विपक्ष में हम हैं, आप सत्ता में हैं, अगर आपको लगता है वक्फ बोर्ड में कहीं चोरी हो रही है तो आप उनको पकड़िए ना, किसने रोका है? उसके लिए पकड़ने के लिए भी समाजवादी आएंगे क्या? मंदिर में चोरी हुई तो आवाज हमने उठाई, आप भी उसमें भी चुप्पी साधे रहे, क्योंकि हम अपने चूंकि धर्म में रास्ता का विषय था, हमने आपको टोका और आपको जनता के सामने लाके खड़ा किया कि आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आज चोर पकड़े गए ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार आपकी अगर कहीं भी चोरी हो रही हो, मंदिर में, वक्फ बोर्ड में, मस्जिद में, कहीं भी चोरी हो रही हो, पकड़िए आप, मैं आपके साथ खड़ा हूं। चोर के साथ कौन खड़ा होता है भाई इस देश के अंदर में? सनातन तो साफ साफ कहता है न्याय की बात करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो,
15: ये बात तो ठीक है, आजा लो सरकार आपकी, पुलिस आपकी, एसआईटी आपकी, दिख रहा है अगर वक्फ बोर्ड में चोरी हो रही है तो समाजवादी पार्टी की आवाज उठाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की आवाज उठाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? एआईएमआईएम की आवाज उठाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप कार्रवाई कर लीजिएगा, योगी आदित्यनाथ जी को किसने रोका हुआ है भाई? पुलिस यंत्रणा तो उनके हाथ में है पूरी तरीके से अजय आलोक जी, ये तो आप वॉट अबाउटरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉट अबाउटरी के लिए
14: मतलब राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, इनको करना कुछ नहीं।
13: साहिल भाई याद नहीं आपको, आप ही को आप, अब मेरी बारी है, आप शांति, अब जरा वो सुनिए, बोलिए, जवाब सुनने,
15: ठीक है, जवाब सुनिए, आप जवाब देंगे,
13: जवाब सुनिए
15: अनुराग जी, आप जवाब देंगे, ठीक है, उनको समझ में आ गई बात,
13: जवाब सुनने,
15: सुन लीजिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ,
13: अभी आपके इंट्रोडक्टरी में आपने चलाया कि 9,28,000 संपत्ति है कुल वक्फ बोर्ड की, जिसमें शिया वक्फ बोर्ड की 20,000, सुन्नी वक्फ बोर्ड की 27,000 और 1,000 कुल मिला के 31,000 संपत्तियों का रद्दीकरण किया गया वक्फ बोर्ड की संपत्ति का, जिसमें 29,000 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां उत्तर प्रदेश में थी। जब ये संपत्तियों का निबंधीकरण रद्द हुआ था तो वक्फ बोर्ड के समर्थन में कौन आया था रोड पे लखनऊ की? आपके दिन भर कवरेज चली थी, यही लाल टोपी वाले थे समाजवादी पार्टी, वक्फ के समर्थन में खड़े थे। जब वक्फ बिल एक्ट आया, पास हुआ कि वक्फ की जितनी अवैध संपत्ति है उनको सरकार सीज करेगी, उसके खिलाफ कौन आया था? यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ओवैसी, सबको आए थे कि नहीं आए? हम तो हमेशा एक्शन ले ही रहे, लेकिन वक्फ के खिलाफ सलार मस्जिद, हजारों करोड़ की लूट हुई, आज तक ने प्रमुखता से चलाया, हम सत्ता में भी नहीं थे, क्या एक्शन लिया भैया? ये इनको एक ही आंख दिखता है, ये काणे हैं,
14: बेसिकली ये राजनीति, हिंदू धर्म
16: टारगेट दिखता है, गोल पोस्ट कर रहे हो आप,
13: सच्चाई यही है,
16: कर रहे हो प्रभु के प्रभु के घर में चोरी, महापाप
15: आदिल हसन, आदिल हसन, आदिल हसन,
16: सरकार आपकी,
15: आदिल हसन
16: आपकी है, जिम्मेदारी
15: जब वक्त
16: कमाल है भाई।
15: अगर अगर हम लॉजिक के हिसाब से चले जाए, देखिए स्टेटमेंट लॉजिक के हिसाब से जाते हैं हम लोग, आदिल हसन जी आपको याद होगा जब वक्फ के बारे में कानून लाया गया संसद के भीतर, उसको लेकर काफी चर्चा भी हुई, आरोप आपके तरफ से ये लगाया गया था कि अरे हमारे आंतरिक मामले हैं, हमारे रिलीजियस मामले हैं, उसमें आप क्यों दखल दे रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के भीतर डिस्कस हो रहा था, आपको याद होगा, आप भी डिबेट में कई बार आए, और आज इसी तरीके का आरोप बीजेपी लगा रही है कि राम मंदिर के चोरी पर सवाल उठाना हिंदुओं पर आरोप लगाना, लॉजिक वही, भाषा वही, सिर्फ हिंदू की जगह पे मुस्लिम या मुस्लिम की जगह पे हिंदू हो गया, सही है कि गलत है?
17: हम
15: क्या ये तुलना सही है कि गलत है?
17: आप ही बोलिए, हमने कब मना किया जांच करने? रिजवी जो था सिया बोर्ड का चेयरमैन, उसको प्रोटेक्शन किसने दिया? एंटीलिया जो है खोजा इब्राहिम अनाथालय एंटीलिया बना हुआ, उस पर जांच करने बोला, किसने बचाव किया? आप ही बताइए, करोड़ों की जमीन, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कौन खरीद रहा है? पूरी दुनिया ने देखा। अकबर ओवैसी साहब ने विधानसभा में बोला एसआईटी बनाओ, 12 साल से मलाई कौन खा रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, उत्तर प्रदेश में 9 साल से, बिहार में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को 5 बार से ही बनाए हुए इरशादुल्ला जदयू के हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। 1000 बार लोग ने मुद्दा उठाया, राजस्थान में इनकी सरकार, गुजरात में इनकी वक्फ बोर्ड की सरकार, महाराष्ट्र में इनकी वक्फ बोर्ड की सरकार, बतलाइए ना हिंदुस्तान में किस जगह इनकी सरकार नहीं है जो मलाई नहीं खा रहे? अभी बंगाल में इनकी सरकार है, एसआईटी बना दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए ना। अगर है हिम्मत भाजपा में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे, पता चल जाएगा। मनमोहन सिंह पर तो बहुत सवाल उठता था कि डॉक्टर साहब नहीं किए, डॉक्टर साहब नहीं किए, क्लीन चिट तो 2G में भी हो गया, 3G में भी हो गया, CWG में हो गया, कोल घोटाला में हो गया, जो मुखिया रहता है उसी में ना। अच्छा प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी किए हुए, हर कुछ में ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री, इस मामले में क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? विदेश दौरा याद आ रहा है, प्रधानमंत्री हो या अमित शाह,

0: सुब्रमण्यम स्वामी सुभाष राम इनको नसीहत देते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। आप ही बताइए सीसीटीवी डिलीट कौन किया, होम सेक्रेटरी ने क्या कहा कि मैंने 5 करोड़ से ऊपर सोना का दिया किसने किया, वो जो रखा हुआ था आस्था, मैंने तो कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे। बिहार का वक्फ बोर्ड का बोल रहा हूँ, ये अजय आलोक सरकार में है, वक्फ बोर्ड का इरशादुल्ला साहब 5 बार से चेयरमैन है, कोई जांच नहीं हो रही है, नीतीश कुमार के सबसे सहयोगी।
1: लेकिन आप इस लॉजिक को क्या कहेंगे आदिल हसन जी? आदिल हसन जी, मैं ओरिजिनल सवाल पर आता हूँ, ठीक है? आपका आपका मुद्दा ठीक है, आप सही, आप एक तरीके से आपका मुद्दा आप रख रहे हैं कि भाई जहां पर आपकी सरकार है आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, ठीक है, उस पर चर्चा क्यों हो रही है। लेकिन मुद्दा तो यहां पर भी है, सवाल तो मेरा यही था कि जब वक्त अमेंडमेंट कानून की बात हो रही थी तब मुसलमानों पर कहीं ना कहीं सरकार हमला करने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के आंतरिक मामलों में सरकार क्यों दखल दे रही है, बाहर के लोग क्यों आ रहे, यही सवाल उठाया जा रहा था। आज बीजेपी वही कह रही है कि राम मंदिर के चोरी पर सवाल उठाना यानी हिंदुओं पर सवाल उठाना, लॉजिक तो वही है ना।
0: साहिल साहब आप समझदार आदमी है, आपको क्या हमने बोला, ये तो इनका अपने ट्रस्ट के लोग पकड़ाए, आदिल हसन इमरान फरहान कोई पकड़ाया, सब ट्रस्ट के लोग पकड़ा रहे हैं जिनको निगरानी दी गई थी, उन्होंने चंपत जी ने चंपत किया, अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में किसने दिया ट्रक को, पीतांजलि को डिफेंस के लिए जो जमीन थी करोड़ों अरबों में किसने भेजा, अयोध्या में आपने देख लिया 2014 में प्रभुराम ने दिखा दिया। अब जब जो राम के नहीं है वो मेरे और आपके क्या होंगे, आप ही बतला दीजिए। हमने तो बोला इंटीरिया का जांच कर लो, खोजा जो अनाथालय गरीब बच्चे का था उसका भी जांच नहीं करते हो, हर जगह वही हाल है। बिहार में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन 5 बार से उसका भी
1: प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, ये वॉट अबाउटरी नहीं नजर आ रही आपको? कल भी आप चर्चा में थे, ये आपको वॉट अबाउटरी नजर नहीं आ रही है? अरे चोरी मेरे घर में हुई है, मेरे घर में चोरी हुई है तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मेरे मेरे मेरे बगल वाले के घर में चोरी हुई है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। भाई मेरे घर में हुई है तो उसके बारे में तो बात होगी ना, जरूरी थोड़ी है कि बगल वाले में होनी चाहिए। प्रोफेसर मिश्रा, वॉट अबाउटरी तो नहीं है ये? और उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता के पास भी चलना है।
2: साहिल जी एक बार अपना प्रश्न दोबारा पूछिएगा क्योंकि आवाज साफ नहीं आई थोड़ा नेटवर्क के नाते, दोबारा पूछिएगा।
1: ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये व्हाट अबाउटरी तो नहीं है?
3: करूंगा ना, पड़ोसी में चोरी हुई है तो पड़ोसी में जब होगी तो बात होगी, ये है सवाल। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत बैठिए डिबेट में। हमारे घर में चोरी हुई उस पर सवाल हम उठा रहे हैं कि मेरे घर में चोरी हुई है, सीधा सा सवाल।
1: अनुराग जी ने मेरा सवाल पूछ लिया, आगे का सेंटेंस मेरा नहीं था। चलिए प्रोफेसर मिश्रा जी,
2: साहिल जी एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा।
0: इनको सवाल है,
2: हेलो,
1: नहीं नहीं आवाज आ रही है? ख्याल से प्रोफेसर मिश्रा को मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आपको आ रही है प्रोफेसर मिश्रा? मेरी आवाज आपको आ रही है? एक मिनट अनुराग जी, मेरी आवाज आपको आ रही है प्रोफेसर मिश्रा?
2: हेलो,
1: हाँ मेरे ख्याल से उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज उनको नहीं आ रही है।
2: दोबारा पूछिए प्लीज।
1: मैं ये पूछ रहा हूँ कि वॉट अबाउटरी तो नहीं लग रहा है आपको? चलिए दोबारा कनेक्ट कर रही है पूजा त्रिपाठी, फेविकॉल लगा हुआ है। जब वक्फ बोर्ड की बात आती है तब पार्लियामेंट के भीतर कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमानों का आंतरिक मामला है उसमें क्यों जाना, लेकिन राम मंदिर की बात आती है तो बीजेपी कह रही है कि बार बार 1 महीने से डिबेट चल रही है। अजय आलोक काफी आहत है उस बात से, 1 महीने से हम डिबेट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर।
4: संगियों को बोले थे कि चुराओ, खूब चुराओ, मेरे नाम का धन चुराओ। आज ही मुझे लगता है कि आपके ऊपर जब प्रश्न उठा है, और बात यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल अपराध की नहीं है, बात यहाँ पर सिर्फ चंदा चोरी की नहीं है, बात है हजारों करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रहार करने का। और आपके ऊपर जब भी प्रश्न उठते हैं, जमीन में घोटाला किया आपने, निर्माण में घोटाला किया, पत्थर में घोटाला किया, रेती गारे सीमेंट में घोटाला किया है आपने, चंदा चोरी किया है आपने, आभूषण चुराए हैं, लेकिन
1: पूजा जी
4: की भावना
1: आपने आपने योगी जी का बयान सुना? पूजा जी आपने योगी जी का बयान सुना? योगी जी का बयान सुना आपने?
4: ये बताएं,
1: नहीं नहीं सुनिए तो, योगी जी ये कह रहे हैं कि आप तो राम जन्मभूमि के आंदोलन में शामिल नहीं थी, यानी कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, उन पर गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने, बाबरी मस्जिद वही बनाएंगे कहा नरसिंह राव ने, और ऐसे में आज जब चोरी हुई है तब आपको बोलने का अधिकार नहीं है। कुल उसका लब्बो लुबाब यही था बोलने का उनका, जो उनका बयान था।
4: पब्लिक स्टेटमेंट देने से पहले नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछ लीजिए किसने गोली चलवाई थी, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जी तो ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पहरा देने वाला कुत्ता अगर ना भौंके तो समझ लीजिए कि कुत्ता उन चोरों से मिला हुआ है। हम SIT की रिपोर्ट देख रहे हैं, 40 दिन में 70 बार चोरी हुई है। यहाँ पे हम कोषाध्यक्ष जी का भयंकर अहंकार वाला मुद्दा देख रहे हैं कि चंपत राय जी महाराज जी का तो हमने अभिनंदन कर दिया, किस बात का अभिनंदन हो रहा है? 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में लेने के लिए किस

0: साहिल जी, या कोई बेवकूफ
1: हिंदुओं का अपमान है या नहीं है? विपक्ष का सवाल उठाना, हिंदुओं का अपमान है या नहीं है?
0: हिंदुओं का सम्मान, ये लोग जो चोर हैं, ये लोग जो वास्तव में सिर्फ चोर हैं और हिंदुओं के नाम पर सिर्फ धर्म का धंधा करते हैं, ये हिंदुओं की बात न करें तो अच्छा है, क्योंकि इन्होंने आस्था।
1: प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना होगा, कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है, समाजवादी पार्टी भी वही कह रही है। क्या ये वॉट अबाउटरी है आज की स्थिति में कि अगर राम मंदिर की चोरी पर बात करेंगे तो वक्फ बोर्ड की चोरी पर भी बात करना होगा? दोनों को इस तरीके से एक साथ मिलाकर पूछना, जहां पर चोरी हुई है, मेरे घर में चोरी हुई है, मैंने सवाल दोहराता हूं मैं आपको प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपको आवाज आ रही है तो, कि मेरे घर में चोरी हुई है तो मेरे घर के बारे में बात करूंगा, बगल वाले की चोरी की बात जब होगी तब किया जाएगा, जब पहले हुई थी उसकी बात मैं अभी क्यों करूं? यह भी तो सवाल उठ सकता है उसमें। प्रोफेसर मिश्रा, चलिए, प्रोफेसर मिश्रा को अभी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। अजय आलोक जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
2: सबसे पहली बात, यह वाटरबाउटरी नहीं है, आप बात के कंटेक्स्ट ही नहीं समझ रहे हैं कि योगी जी ने किस कंटेक्स्ट में कहा, मैं किस कंटेक्स्ट में कह रहा हूं। राम मंदिर में चोरी हुई है, सबसे पहले हम लोगों ने माना, एसआईटी जब बनी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी डिबेट करने आई, उसके पहले नहीं आ रही थी। चोरी हुई, एसआईटी बनी, एसआईटी जांच कर रही
0: है।
2: मंदिर में चोरी कोई पहली बार नहीं हुई है। एक मिनट, बीच में नहीं, सर्टिफाइड चोरों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। माखनलाल फौजेदार थे वैष्णो देवी की मंदिर में, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, सारा कंट्रोल वही देखती थी। चोरी हुई थी उस जमाने में, 1981 में चोरी हुई थी, 32 करोड़ की। क्या हुआ मंदिर में चोरी? कोई नई बात नहीं है, चोर पकड़े जाते हैं। यहाँ बात है टारगेटेड हिंदू धर्म को, आस्था को टारगेट करना। टारगेट कौन कर रहा है? जिनके नाम में मुसलमान है वो अयोध्या की बातें कर रहे हैं, उनको प्रभु श्रीराम याद आ रहे हैं। जिनको प्रभु राम का अस्तित्व नहीं पता था उनको प्रभु श्रीराम याद आ रहे हैं। जो कहते थे कि मंदिर कभी नहीं बनने देंगे उनको प्रभु श्रीराम याद आ रहे हैं, वो सनातनी बन जा रहे हैं। ये लोग टारगेट कर रहे हैं, तब लगता है कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये वॉट अबाउटरी नहीं है, ये सेलेक्टेड टारगेटिज्म है, ताकि हिंदू धर्म में घटे, लोग मंदिर जाना कम करें, अयोध्या ना जाएं।
1: एक बात मुझे समझ नहीं,
2: ये टारगेट है।
1: अजय आलोक जी, ठीक है, मुझे कॉन्टेक्स्ट आपने समझाया, अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन विशाल मिश्रा जी आप ही कॉन्टेक्स्ट समझा दीजिएगा। इसका मतलब क्या हो गया? सवाल उठाना यानी हिंदुओं के विरोध में, खिलाफ बात करना, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, आप ही समझा दीजिए।
2: ये कॉन्टेक्स्ट
1: राम मंदिर की चोरी पर सवाल उठाना यानी हिंदुओं के खिलाफ बात करना।
3: साहिल जी,
1: सब लोग साथ में मत बात करिए, प्रोफेसर मिश्रा को सवाल।
3: साहिल जी,
1: ठीक है, प्रोफेसर मिश्रा बात करेंगे। भदौरिया जी एक मिनट, अजय आलोक जी, प्रोफेसर मिश्रा को समझाने दीजिएगा। हाँ जी जी, प्रोफेसर जी।
3: साहिल जी देखिए, जब ये बात सामने आई कि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया, उसी ट्रस्ट के कहने पर प्राइमा फेसी रिपोर्ट आने पर गिरफ्तारियां हुई, ट्रस्ट एसआईटी अपना काम कर रहा है, जांच चल रही है। जब हर प्लेटफॉर्म पर कहा जा रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो ये बताइए अनर्गल आरोप लगाने की क्या आवश्यकता है? अब एक सवाल नहीं,
4: आरोप क्या है?
3: अनर्गल आरोप लगाने की क्या हो सकता है?
4: आरोप
3: मतलब वही वाली बात है कि खुद तो
4: अरे ट्रस्ट अपना काम कर रहा था और ट्रस्ट ने अपना काम नहीं किया, ट्रस्ट
3: अपनी फजीहत दूसरों को नसीहत। जब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की बात हो रही थी,
1: नहीं सब लोग साथ में नहीं, प्लीज अनुराग जी, पूजा जी प्लीज, उनको बोलने दीजिए, बहुत देर के बाद उनको मौका मिला।
3: सनातन प्रेम नहीं था जब कारसियों को पर गोली चलाई जा रही थी, तब आपका सनातन प्रेम नहीं था। जब संसद में खड़े होकर प्रभु श्री राम काल्पनिक है ये बयान दिया जाता था, कोर्ट में हलफनामा किया जाता था, तब आपका सनातन प्रेम नहीं था। अब ये घड़ियाली आज दिख रहे हैं आपके, बड़ा राम प्यार आया है।
1: जरा एक मिनट, सभी को शांत करिए, मुझे जरा प्रोफेसर मिश्रा से 1-to-1 बात करनी है। एक सवाल उनको दोबारा पूछना है क्योंकि मैं एक बार फिर समझना चाहता हूँ। विशाल मिश्रा जी, मेरा सिंपल सवाल था, एक मिनट प्रोफेसर मिश्रा, मेरा एक बार फिर सवाल है, राम मंदिर के भीतर चोरी होना, उस पर सवाल उठाना, ये हिंदुओं पर सवाल उठाना कैसे हो गया? ये भी सवाल है मेरा।
3: साहिल जी, उसके आड़ में अनावश्यक अनर्गल आरोप लगाना ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है मुझे बताइए। ये चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे ये सपा के नेता हो, चाहे अन्य जो नेता बयान दे रहे हैं इतना करोड़ इतना करोड़ इतना करोड़, ये क्या है, मजाक बना रखा है। जाइए एसआईटी को दीजिए प्रूफ। जब एसआईटी को कहा गया है कि यदि आपके पास कोई कागज है तो लेकर जाइए। अनर्गल टिप्पणियां क्यों कर रही हैं? हम तो ये कह रहे हैं,
1: संजय सिंह कह रहे हैं कि हमने तो एसआईटी को संपर्क किया है, इनके सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा है कि हम तो कागज देने के लिए तैयार है।
3: प्रवक्ता नहीं, इनसे पूछिएगा, नहीं अरे इनसे पूछिएगा कि जब वक्फ संशोधन बिल पर बात चल रही थी, उम्मीद बिल पर, तब इनके नेता क्या बयान दे रहे थे, पूछिए ना। तब फेविकॉल जम गया था इनके मुंह पर, जब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का कॉन्फ्रेंस हुआ था इनके गठबंधन।
1: मौलाना अंसार रजा,
3: तब इनके मुंह पर
1: मौलाना अंसार रजा, मौलाना अंसार रजा, क्या ये दोनों बातें एक जैसी है? वक्फ बोर्ड के भीतर जो भी भ्रष्टाचार हुआ, जिसके आधार पर वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश हुई, उस वक्त जो बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, जो कमेंट्स आ रहे थे, और राम मंदिर के भीतर चोरी के बाद आने वाली कमेंट, ये दोनों चीजें सेम है, एक जैसी है? आपको लगता है कि एक जैसी है, उसकी तुलना ठीक है?
5: साहिल भाई, बड़ी नवाजिश आपकी कि कम से कम आपने 36-37 मिनट के बाद हमें याद किया, बड़ी नवाजिश आपकी।
1: बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। कट गया, मैं बोलूं? चलिए, फोन कट गया उसका, उनका फोन कट गया है। आदिल हसन जी, आप जवाब दीजिए।
6: जवाब दे दो, मैं साहिल साहब,
1: आदिल हसन जी जवाब दीजिए।
6: साहिल भाई, वफ बोर्ड के वक्त में हमने कभी अकबर ओवैसी साहब पर हमला जानलेवा इसीलिए हुआ कि वफ की जमीन की बचाने के लिए उन्हें लड़ाई लड़ी? हमने विधानसभा में टीआरएस की सरकार थी, एसआईटी, और अभी तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सर की सरकार, उसमें भी बोला है कि एसआईटी बनाओ, और अभी भी चैलेंज करते हैं अजय लोगों को, बिहार में बनाओ एसआईटी, दूध का दूध पानी का हो जाएगा, बंगाल उत्तर प्रदेश में बनाओ, इसी को कौन बचाना है? सिया बोर्ड का चेयरमैन उत्तर प्रदेश में, किसने धर्म बदला, किसने उसको प्रोटेक्शन दिया, आप ही बताइए। राजस्थान में कौन बचा रहा है, मध्य प्रदेश में कौन बचा रहा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अनाथालय खोजा, अनाथालय एंटीलिया किसमें बन गया, हम तो बोलते हैं जांच करो, क्यों नहीं एसआईटी बना देते ऑल इंडिया लेवल पर? होम सेक्रेटरी इल्जाम लगा रहा है, आप ही बताइए, हम थोड़ी लगा रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया भाई, आपने किया है, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दीजिए। है भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है, अमित शाह जी में है, योगी आदित्यनाथ में है, भारतीय जनता पार्टी में, तो सुप्रीम कोर्ट
1: नहीं, लेकिन ये तुलना ठीक है क्या? आदिल हसन, विशाल मिश्रा कह रहे हैं कि गलत आरोप लगाना यानी कहीं ना कहीं हिंदुओं को ठेस पहुंचाना।
6: सर आप ही बतलाइए, नरोत्तम मिश्रा को चेयरमैन कौन बनाया, दुलारा कौन बनाया,
2: सब कुछ तो यही
6: दुलारा बनाया,
2: की जांच कर रही है,
6: सिटिंग जज से हो रहा है ना, लोग को शक है,
2: हो रही कि नहीं हो रही,
6: आज तो बोलती कहां कर रही है, आरोप तो मीडिया में उठता है, पता होता है, मीडिया के चलते, मीडिया के डर से, ये तो मीडिया के डर से होता है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, बाबा नागेश्वर क्या बोल रहे हैं, विनय कटियार क्या बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोल रहे
2: हैं,
6: हम क्यों, आप तो
2: शर्मा जाएगा,
6: चोर है आप, तो चोर है आप, तो राम मंदिर का ट्रस्ट का चोरी की है, आपको तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा, आप चोर है, पूछिए ना विनय कटियार क्या बोल रहे हैं, हिम्मत है जवाब देने का विनय कटियार को, बाबा बागेश्वर को है, कुश्ती संघ के फेडरेशन को जो पूर्व अध्यक्ष है उनको बोलने की हिम्मत है, भेजिए जाती,
2: अरे गिरफ्तारियां हो रही
6: है,
2: अनर्गल आरोप
6: सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कर लो
2: की जो जमीन
6: सुप्रीम
2: कोर्ट की गई,
6: बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है,
2: उस पर आवाज
6: नहीं निकली, ब्रेक फेल हो गया है।
1: चलिए एक बात तो पूछ लेते आखिर में,
6: चैलेंज
4: निगरानी में चोरी होती रही तो जिम्मेदार कौन होगा? ये हिंदू जो हमारे सनातनी है उनके सम्मान के लिए हम लड़े हैं, आपकी निगरानी में तो चोरी होती रही, चोरी ना हो इसलिए हमने आवाज उठाई है, हमारे आस्था बची रहे, हमारा सम्मान प्रभु के यहाँ चढ़ावे में चोरी, हमारे आस्था पे ठेस,
1: वो तो ये कह रहे हैं अनुराग जी कि चोरी कहीं भी हो, राम मंदिर के भीतर हो, मस्जिद पे हो, मजार पर हो, या वक्फ बोर्ड की किसी संपत्ति पर हो, आपको हमेशा आवाज उठाना चाहिए, आप सिलेक्टिवली आवाज उठाते हैं, यही तो उनका दर्द है अनुराग जी, यही तो उनका दर्द है।
4: गलत बोल रहे हैं, हम सनातनी हैं और सनातनी होने के नाते सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी धर्म में कोई दिक्कत होगी तो हम आवाज उठाएंगे और इनकी जिम्मेदारी बनती है। इनकी सरकार है ज्यादातर राज्यों में सरकार ये अपनी एसआईटी बैठा के वक्फ बोर्ड की भी इंक्वायरी करें। किसने आपको रोका है? आपको सिर्फ इसलिए कि राम मंदिर में हमने चोरी पकड़ ली है इसलिए आप वक्फ बोर्ड आपको याद आ गया? अब तक राम मंदिर में चोरी हो रही थी, आपको याद आना चाहिए था ना? आपको पहले
1: अजय आलोक
4: चाहिए था ना, आवाज उठानी चाहिए ना
1: अजय आलोक,
4: आवाज उठाई नहीं।
1: राम मंदिर में चोरी हुई इसीलिए वक्फ बोर्ड की याद आ रही है। राम मंदिर के भीतर चोरी हुई है इसीलिए वक्फ बोर्ड याद आ रहा है। एक मिनट अजय आलोक जवाब देंगे, अजय आलोक जवाब देंगे, अजय आलोक
4: अभी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं।
2: सबसे पहली बात, राम मंदिर में जो चोरी हुई है उस सारे चोर जेल जाएंगे और जो जो इसके को कॉन्स्पिरेटर है जिनके निगरानी में हो रही थी, अगर किसी की गलती हुई तो एक आदमी नहीं बचेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो हम कह रहे हैं कि योगी है मोदी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि किस ढंग से ये AIMM वाले बोल रहे हैं वक्फ की जमीन पे मॉल बना के करोड़ों का किराया खा रहे हैं, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, यहाँ बकवास कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, ओपन रिकॉर्ड है ना ये। और ये AIMM वाले ये गांधी मैदान में बोला था कि वक्फ के बहुत कानून के बारे में जब प्रदर्शन के लिए गर्दन काट देंगे हमारे शरिया के बीच में इसको गया है ये विश्वास करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था सरकार बनने दो, इस कानून को उठा के कूड़े में फेंक देंगे, संविधान की ठग ठग बकवास कर रहे हैं। अरे चुप रहो,
1: एक मिनट
2: बकवास करने बैठ जाते
1: व्यक्तिगत
4: उससे क्यों भाग रहे
1: व्यक्तिगत।
2: अरे ये बदतमीज आदमी है, इसकी आदत चाहिए।
1: एक मिनट आदिल हसन, नहीं व्यक्तिगत नहीं होगा, जो मुद्दा है उसी पर बात करेंगे हम। पूजा त्रिपाठी आप कुछ ऐड करना चाह रही है? जल्दी से आखिरी कुछ मिनट बचे हमारे पास, उसके बाद अजय आलोक के पास।
0: साहिल जी ये राम भक्त नहीं है, ये सत्ता भक्त है। इनसे पूछो तो कहते हैं कि आपको हिंदू होने का हक नहीं, इनसे पूछो यही राम भक्त की कौन से राम की पूजा हो रही थी, कौन से राम की आस्था हो रही थी और हिंदू धर्म मजबूत हो रहा था जब राम के चंदा का पैसा अनुकल्प मिश्रा शराब के ठेके पर हर दिन 50,000 उड़ा रहा था, कि कौन सी राम भक्ति हो रही थी और कौन सा हिंदू धर्म मजबूत हो रहा था जब 3 मंजिला इमारत बन रही थी पूरे लिफ्ट के साथ, ये कौन सी राम भक्ति हो रही थी जब अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट किया जा रहा था। तो ये राम भक्त नहीं है, क्योंकि अगर आज ये राम भक्त होते तो ये सवाल उठाते ट्रस्ट के लोगों पर। अगर राम भक्त होते ट्रस्ट के तो खुद कोशिश
1: कहता है पूरे देश भर में जो धार्मिक संस्थान सबसे अमीर धार्मिक संस्थान देखे जाते हैं उनकी संपत्ति 9,00,000 करोड़ की है, और ऐसे में करोड़ों लोग अपनी भक्ति भाव से वहां पर जो पैसा चढ़ाते हैं एक समान राष्ट्रीय मानक उस पैसे को गिनने के लिए उस पर नजर रखने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह अलग डिबेट का विषय बनेगा। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
4: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी। ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
4: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
5: परमिशन लेनी चाहिए ना,
4: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
6: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
4: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।
7: इंडियन क्रिकेट ने अगर कोई गोट देखा है तो आज मैं उनके सामने बैठा हूँ। वैभव सूर्यवंशी को पारी आप कैसे देखते हैं?
8: ह्यूज टैलेंट विदाउट एनी डाउट, इज एज गुड एज सचिन और विराट कोहली।
7: लेकिन क्रिकेटिंग हलकों में क्या उसी तरह से नाम बज रहा था सचिन तेंदुलकर का जैसे आज वैभव सूर्यवंशी का बज रहा है?
8: आई थिंक वैभव का थोड़ा ज्यादा है,
7: उनका डेब्यू थोड़ा सा डिलेड है,
8: बट आप इतिहास देखिए तो आपको एहसास होगा कभी कभी लेट ना हो जाए।
7: विराट में आपने ऐसा क्या देखा?
8: विराट को देख के मेरे को मैकेनरो याद आते हैं,
7: जॉन मैकेनरो।
8: हाँ, क्योंकि जब तक वो लड़ते नहीं थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे। थोड़ा सा जो उनका अजीब लगता है कि वो ज्यादा जोशीले हो जाते। आई लव टू प्रूव पीपल रॉन्ग।
9: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

मुंबई से सटे वसई विरार में बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में वसंत नगरी और मधुबन इलाका चारों तरफ पानी से घिरा दिखाई दे रहा है। कई सड़कें और रिहायशी इलाके जलमग्न हैं। वहीं वसई में एक सोसाइटी के कंपाउंड वॉल गिरने से बाहर खड़ी करीब 15 बाइक क्षतिग्रस्त हो गयी। दूसरी घटना में गोम्स गार्डन बिल्डिंग के रिफ्यूज एरिया का छज्जा गिरने से पार्किंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। राहत की बात ये रही कि दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। मुंबई के बांद्रा और गोरेगांव में भी भारी बारिश के बीच बड़े पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। पेड़ गिरने से दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि बांद्रा में तीन खड़ी कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं पुणे में विशाल पेड़ गिरने से कई वाहन दब गए। स्थानीय लोगों ने समय रहते फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नवी मुंबई के पास मेट्रो पिलर के समीप लैंडस्लाइड होने से मिट्टी और पत्थरों का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खारघर की ओर जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया। वाशिम में लगातार बारिश के कारण शहर से जोड़ने वाला पुल टूट गया, जिससे गांव का संपर्क प्रभावित हो गया। लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत कराने और स्थायी समाधान की मांग की है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
3: Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: चढ़ावा चोरी का केस आने के करीब एक महीने के बाद सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। 3 घंटे की बैठक का एक लाइन में लबोलवाव ये है कि चंपत राय को बचाया जा रहा है।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: लेकिन उससे पहले ट्रस्ट ने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को गलत साबित करने के लिए ये सब भी दिखाया। इसमें रामचरितमानस की वो प्रति भी थी जिसके बारे में दावा है कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये आरोप लगा था कि रामचरितमानस भी गायब है, लेकिन वो ट्रस्ट ने सबको दिखा दी। जो चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री थे, सारा कामकाज देखते थे, उन्होंने तो इस केस में FIR दर्ज होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। ट्रस्ट ने आज उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। उनके अलावा जिन अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट के प्रशासन, निर्माण कार्य और समन्वय की जिम्मेदारी थी, उनका भी इस्तीफा ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया और चंपत राय की जगह ट्रस्ट का कार्यकारी महामंत्री कृष्ण मोहन को बनाया गया है। चोरी के इस केस में FIR कृष्ण मोहन ने ही दर्ज कराई है, लेकिन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी आभास हुआ कि ट्रस्ट का चंपत राय में पूर्ण विश्वास बना हुआ है। भले ही अब वो ट्रस्ट में ना हो, लेकिन उनका बचाव पूरा हो रहा है।
1: आरंभ से लेकर जब तक यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है, उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए, और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है।
0: अब अगली जिम्मेदारी कृष्ण मोहन को दी गई है, जिनका दावा है कि ट्रस्ट के कामकाज में जो खामियां हैं उनको वो पूरा करेंगे।
2: तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना, इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा।
0: अब सवाल है कि ट्रस्ट आगे कैसे चलेगा। इसके लिए दावा है कि एक CEO अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी खोज के लिए कमेटी भी बना दी गई है। संतोष शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: बैठक, बवाल और इस्तीफे के बाद भी बाकी है राम मंदिर चोरी का सवाल। प्राण प्रतिष्ठा में खर्च समेत बहुमूल्य चढ़ावे की अलग से जांच, विपक्ष की सियासत पर बिफरे योगी, वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चढ़ावा चोरी के बाद पहली बार बोले चंपत राय, बताया अपने खिलाफ साजिश, कहा एसआईटी रिपोर्ट के बाद देंगे अपनी प्रतिक्रिया। बिहार में सजा उपचुनाव का मंच, नितिन नवीन की खाली सीट से बीजेपी ने दिया अभिषेक कुमार को टिकट, प्रशांत किशोर पहले ही खोल चुके हैं मोर्चा। बारिश, बाढ़ से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल, जगह जगह जल जमाव, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश, वायनाड में लैंडस्लाइड से खौफनाक हादसे की तस्वीरें आई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: वक्त की बारी आ गई, कल मस्जिदों पे नंबर आएगा, ऊपर से हमारे दरवाजे तक आ जाएंगे।
1: सरकार का फैसला सरासर गलत है।
2: हिंदुस्तान की जमीन में हिंदू सरहद बन गया तो कौन सी आफत पड़ गई? कल नवाब अपने बापों की जमीन लेके आए थे क्या आसमान से?
3: मैं पूछना चाहता हूँ आपकी जो राम मंदिर की ट्रस्ट में आपने कितने मुस्लिम, कितने सिख, कितने ईसाई, कितने बौद्ध, कितने जैन आपने उसमें रखे हैं?
4: मुस्लिम तबके को और उसके कवानीन को निशाना बनाकर देश का भला और तरक्की होने वाली नहीं है।
5: वक्फ बोर्ड में हमारे दो हिंदू भाइयों के आने से पारदर्शिता बढ़ेगी।
6: वक्त के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है?

0: देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अभी तक आपने देखा होगा मंदिर के मुद्दे पर जबरदस्त एक तरह से योगी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा था। अब राम मंदिर की चढ़ावा चोरी पर शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई की आंच अब वक्फ तक पहुंच गई है। एक ओर योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी कि आखिर विपक्ष वक्फ की चोरी क्यों मौन साध लेता है, दूसरी ओर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के इस दाव से विपक्ष को घेरने की ऐसी कोशिश हुई जिसका असर उनके मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा? क्या यह हिंदू वोटों को साधने की बीजेपी की नई कोशिश है? क्या बीजेपी के हिंदू वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे विपक्ष को वक्फ की गुगली डाल दी गई है? चढ़ावा पर घमासान, वक्फ पर हिंदू मुसलमान, यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। देश भर में वक्फ की सियासत का नया मोर्चा खुल गया है। वजह है मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में हुई दो नियुक्तियां। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को जगह मिली है। 2025 के नए वक्फ कानून के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इंदौर के मनोज मालपानी और राघोगढ़ के अनिमेश भार्गव को बोर्ड मेंबर बनाया है। इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने विरोध किया है। वक्फ कानून 2025 पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब मध्य प्रदेश में दो हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वक्फ बोर्ड में हिंदू हैं तो क्या राम मंदिर जैसी जगहों के मैनेजमेंट में मुसलमानों की नियुक्तियां होंगी?
1: मैं पूछना चाहता हूं, आपकी जो राम मंदिर की ट्रस्ट में आपने कितने मुस्लिम, कितने सिख, कितने ईसाई, कितने बौद्ध, कितने जैन आपने उसमें रखे हैं, बताए ना। ये समझ लिए जी, जो जिस धर्म का धार्मिक स्थल है, मैनेजमेंट कमेटी उसी की होनी चाहिए।
2: क्या राम मंदिर में भी, उसके ट्रस्टों में भी, काशी के मंदिरों में भी, सब जगह पर जहाँ पर अभी केदारनाथ से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी खुड़बुड़ हुई है, क्या वहाँ पर भी जो है वो मुसलमानों को रखा जाएगा? हम इसके कायल नहीं है, हम इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि उससे मसाइल बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। मुस्लिम तबके को और उसके कवानीन को, उसके रस्म व रिवायात हैं, उनको, इस्लामी रिवायात को कुछ निशाना बनाकर देश का भला और तरक्की होने वाली नहीं है।
0: मध्य प्रदेश के नए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दोबारा सनवर पटेल को मिली है। सनवर पटेल और हिंदू सदस्यों मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव समेत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में कुल 10 सदस्य नियुक्त हुए हैं। सनवर पटेल ने हिंदू सदस्यों की नियुक्ति पर विपक्ष के हो हल्ले को मुसलमानों को पिछड़ा बनाए रखने की राजनीति का हिस्सा कहा है।
3: मुसलमान समाज के कुछ लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमेशा भड़काने की बात की है और इस भड़काने का परिणाम है कि पानी पंचर्स की दुकानें, अंडे की दुकान, पंचर की दुकान, ये सब मुसलमान भाइयों के खाते में आया। वक्फ बोर्ड में हमारे दो हिंदू भाइयों के आने से पारदर्शिता बढ़ेगी, हम में भी जवाबदेही बढ़ेगी, हम और अच्छा काम कर पाएंगे।
0: वक्फ का मसला पूरे देश में राजनीति का तूफान खड़ा करता रहा है। जहां विपक्ष ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति के जवाब में राम मंदिर की चढ़ावा चोरी का मसला उठाया, तो उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड्स के भ्रष्टाचार पर विपक्ष की चुप्पी पर निशाना साधा है।
4: अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है?
0: वक्फ से लेकर राम मंदिर के नाम पर इन राजनीतिक लड़ाइयों का सीधा असर आने वाले चुनावों में कितना पड़ेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इस राजनीति के बीच बड़ा सवाल धार्मिक जगहों के सही प्रबंधन का जरूर उठ गया है। आज तक ब्यूरो, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी का, शादाब चौहान एआईएमआईएम का, सुबुही खान अध्यक्ष राष्ट्र जागरण अभियान की जुड़ रही है। लेकिन उससे पहले मुझे बताया जा रहा है बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और ये बड़ी खबर यही है कि चंपत राय की पहली प्रतिक्रिया आई है। पद से बाहर होने के बाद पहली प्रतिक्रिया है चढ़ावा चोरी पर चंपत राय की, उनका ये कहना है कि मेरे ऊपर कई अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, मेरा प्रचारक जीवन 45 साल का रहा है, जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक की तरह रहा। चंपत राय ने एक्स पर चौपाई लिखी है और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद मैं जवाब दूंगा। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आखिरकार ट्रस्ट की बैठक में इस्तीफे के बाद पहली प्रतिक्रिया आई है उनकी।
5: बिल्कुल अंजना, ये पहली प्रतिक्रिया है और बकायदा उन्होंने चंपत राय की पाती और राम भक्तों के नाम ये लेटर लिखा है। तकरीबन 8-10 लाइन का ये लेटर है जिसमें उन्होंने खुद को पूरी तरीके से एक तरीके से बेकसूर कहते हुए कहा है कि 22 जुलाई को जब दूसरी बैठक होगी, यानी कि जब एसआईटी की अगली रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद वो पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल देंगे। उन्होंने लिखा है, क्रमवार मैं इसका जवाब दूंगा। मेरे ऊपर लगाए गए तमाम जो आरोप हैं ये झूठे हैं, अनर्गल हैं और बहुत तरह की चर्चाएं और बहुत तरह की बातें मेरे बारे में की गई हैं। लेकिन उन्होंने जो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई उस पर भी सवाल उठाया है और उन्होंने बोला है, हालांकि ये अति गोपनीय था लेकिन ये रिपोर्ट सामने आ गई है। ये भी लिखा है कि मैं इसके बाद करने वाला था, मैं इसके बाद प्रेस से बात करता, लेकिन ये बात पहले ही एक तरीके से लीक हो गई है। तो अब देखना है कि 22 तारीख के बाद जो वो मुंह खोलेंगे तो किन किन बातों का जवाब देंगे। अंजना,
0: बिल्कुल, और दिलचस्प होगा क्या इस पर अगला एक्शन होता है, क्योंकि एक जल्दी से एक आखिरी सवाल है आपसे जिसके बाद मैं चर्चा में आगे बढ़ जाऊंगी। क्योंकि देखिए, दो बातें ऐसी हैं जो कि अब कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक तो ट्रस्ट ने ही मान लिया है, ट्रस्ट ने माना है कि भाई चोरी हुई है। सर्वे सर्वा कौन रहा इस ट्रस्ट का? चंपत राय। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी होती है जिससे कोई भी बच नहीं पाता है, और इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि मान लीजिए एसआईटी की रिपोर्ट क्लीन चिट दे भी देती है, फिर भी एक नैतिक जिम्मेदारी क्या वो पूरी तरह से हटा पाएंगे?
5: नहीं, उस नैतिक जिम्मेदारी से वो बच नहीं पाएंगे। हालांकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसमें भी इसी नैतिक जिम्मेदारी का उन्होंने जिक्र किया है। उनका कहना है कि आरोप मेरे ऊपर अनर्गल हैं, लेकिन हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हुआ जहां 80 लाख रुपए बरामद किए गए वैसे चोरों से जो सीधे महासचिव होने के नाते उनके अंडर काम कर रहे थे, वही सब कुछ इस पूरे ट्रस्ट की देखरेख कर रहे थे। ऐसे में उन पर सवाल उठना लाजमी है। दूसरी बात यह भी है कि उनके अपने निजी जीवन पर चाहे जितनी भी बात कर ली जाए कि वो बिल्कुल, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल बेदाग रही है अभी तक, वो अलग स्वभाव के व्यक्ति रहे, लेकिन आखिर हुआ तो उनके ही कार्यकाल में है, नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन अब देखना है कि वो कौन सा पॉइंट बाय पॉइंट वो रिबटल लाते हैं, क्रमवार इसका जवाब देते हैं। लेकिन शायद आज गोविंद देव गिरी ने भी कुछ बातें कह दी जो उनके संज्ञान में भी आया होगा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम उन्हें निष्कलंक जरूर मानते हैं लेकिन उन्होंने गलतियां की हैं, उन्होंने लापरवाही की है, ये बातें तो अब सब कह रहे हैं। तो यहां तक, जहां तक उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो तो हो गया, देखना है कि आगे फाइनल रिपोर्ट में आता क्या।
0: धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गौरव भाटिया जी, सीधा आप ही का रुख करते हैं। और अब इस मुद्दे पर एक तरफ एसआईटी की रिपोर्ट आगे बढ़ रही है, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, न्याय का लोग इंतजार कर रहे हैं कि दोषी जो लोग रहे हो उनको दोषी आखिरकार ठहराया जाए। लेकिन अब योगी जी कह रहे हैं कि वक्फ चोरी पर विपक्ष चुप रहता है, तो कहां पर विपक्ष चोरी वक्फ की चोरी हुई है? अगर आपके पास जानकारी हो, डेटा हो तो बताएं। वहीं कांग्रेस एमपी में विरोध कर रही है कि आपने दो हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में कैसे शामिल कर लिया।
6: अंजना जी, सबसे पहले तो जो आज का विषय है मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। जब वक्त का संशोधन हुआ तो संसद में करीब 18 घंटे चर्चा हुई, और 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वक्त संशोधन हुआ एक्ट में, तब 4.5 घंटे हुआ। जब चर्चा के बाद एक कानून पारित हो गया, वो देश का कानून हो गया। आज उस कानून का पालन करके अगर मध्य प्रदेश सरकार नियुक्त करती है बोर्ड मेंबर्स को, तो ये पाप कैसे हो गया? पहला बात, ये पहला सवाल भी है, क्या कानून का पालन करना पाप है, गलत है, और इस पे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? दूसरी बात, अंजना जी ये सवाल पूछिएगा, जब संसद में ये कानून पारित हुआ उसके बाद कई याचिकाकर्ता जिसमें एआईएमआईएम के अध्यक्ष जो हैं असदुद्दीन ओवैसी जी वो भी सुप्रीम कोर्ट गए और कई और पार्टियां भी गई क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानून पे रोक लगाई ये कहते हुए कि आप जो गैर मुस्लिम हैं उनको वक्फ बोर्ड में जगह नहीं देंगे? सर्वोच्च न्यायालय ने तो रोक लगाई नहीं, वो आदेश मेरे पास है। और सबसे अच्छी बात देखिए, तीसरा सवाल ये पूछिएगा अंजना जी, क्या 2013 में जब संशोधन हुआ और जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हों, सिख हों, जैन बौद्ध पारसी हों, वो लोग अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं? जब हिंदुओं से संपत्ति ले सकते हो तो अगर बोर्ड में हिंदुओं को जगह मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है? ये मुझे समझ में नहीं आया। और एक सवाल और पूछ लीजिएगा, जो मेरी जानकारी है, चार मुस्लिम महिला वक्फ बोर्ड जो नियुक्ति करी गई है उसका हिस्सा बन गई है। नजमा हेपतुल्ला जी का भी नाम आप दिखा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर मुस्लिम महिला, उनका सशक्तिकरण हो रहा है जो मोदी जी का सपना है, जो मोदी जी ने कहा था, जैसे ट्रिपल तलाक को अपराध बना के किया था, तो इसमें जो तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनको क्या परेशानी है? ये भी अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये जो नया कानून आया है, अभी भी ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अगर किसी को कोई पीड़ा है, कष्ट है, जो दुहाई देते हैं पंथ निरपेक्षता की, उनको हिंदुओं से एकदम से इतनी नफरत हो गई, सर्वोच्च न्यायालय चले जाएं, अर्जी लगा दे और कह दे, पूछ ले कि ये सही है कि गलत है।
0: सापरा साहब जल्दी से आखिर क्यों, और वो भी कानून बनने के बाद अगर ऐसा किया जा रहा है, दो लोगों को डाला जा रहा है वक्फ बोर्ड में, तो क्या दिक्कत हो गई?
7: देखिए अंजना जी, सही बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से राम जन्मभूमि में जो चंदा चोरी हुई है, ये उससे ध्यान भटकाने का एक उनका कार्यक्रम है, इसलिए ये वक्फ बोर्ड पर आ गए हैं। धीरे धीरे देखिए पाकिस्तान भी आएगा, जॉर्ज सोरोस भी आएगा, ये ध्यान भटकाने का इनका इरादा है। यानी वक्फ बोर्ड तो बहाना है लेकिन ध्यान इनको असली में भटकाना है। सवाल ये है, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो आपदा आई है उसमें ये अवसर ढूंढ रहे कि किस तरह से इसमें से निकला जाए। और जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, वक्फ बोर्ड का ठीक है अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो विचाराधीन भी है वो विषय कि इस बोर्ड के अंदर दूसरे समाज के लोग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और इस तरह से तो कल को कोई हिंदू समाज के लोग अगर एसजीपीसी को जमीन देंगे तो कहेंगे जी एसजीपीसी में भी सिखों के बीच में भी हिंदू होने चाहिए। हमारे नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड में तो यहां पर एक हिंदू को लगा दिया था एडमिनिस्ट्रेटर, उसका पुरजोर विरोध हुआ, फिर सरकार को हटाना पड़ा, बीजेपी की सरकार को ही हटाना पड़ा। तो ये बहुत चिंता करने वाला विषय है जिस पर चिंतन मंथन जो है वो कोर्ट कर रहा है। योगी आदित्यनाथ तो महज आपदा में अवसर देख रहे हैं। जो कल जिस तरह से गुफअप हुआ है, जो कल जो मीटिंग हुई है न्यास की, जो मीटिंग हुई है वो क्या थी मीटिंग? लीपा पोती थी, आंखों में धूल झोंकने का प्रयास था। भाई मुलजिम भी वही है, मुंसिफ भी वही है, और गोविंदगिरी महाराज आकर के कहते हैं सब चंगा सी। भाई आपका तो ये जो मैंने सुना उनका कल वक्तव्य, वो तो ऐसा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे भाई आप खुद कोषाध्यक्ष हो, आपके नाक के नीचे से चंदा चोरी हो गया, चांदी की ईंटों के रिसीद नहीं दी गई, सोने की रिसीद नहीं दी गई, आभूषण की रिसीद नहीं दी गई, करोड़ों रुपए का जमीन का व्यवहार हुआ वहां पर, 100-200-300% की जमीन में मुनाफाखोरी हुई, और कोषाध्यक्ष कहते हैं कि मेरा तो सही नहीं है, मैंने तो सिग्नेचर जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, दूसरा कोई आके सिग्नेचर करता है, ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। मेरा तो अंजना जी ये कहना है कि ये जितने 8 लोग पकड़े हैं, और चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नैतिकता के आधार पर इस संस्था को बर्खास्त करना चाहिए, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इन्होंने तो एटीएम बना के रखा हुआ था राम मंदिर को। अगर प्रभु राम सीता मैया की अग्नि परीक्षा ले सकते हैं तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? राम भक्त यही तो पूछ रहे हैं कि यहां पर अगर चंदा चोरी हुआ है, अगर आपने छोटी मछलियों को पकड़ा है तो इनका नार्को टेस्ट करिए कि बड़े मगरमच्छ कौन है, ये तार कहां तक जाते हैं, किस तरह से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के इतने बड़े बड़े पांच सितारा
0: गौरव जी एक छोटा सा जवाब हाँ गौरव जी एक छोटा सा जवाब दीजिए और देखिए दलील ये दी जा रही है ना कि जो ये वक्फ कानून 2025 आप लाए सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए अभी नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए थी छोटा सा जवाब फिर मैंने
6: नहीं अंजना जी मैं समझता हूँ ये जो ये तर्क है ये केवल वही लोग दे सकते हैं जिनको विधिक तौर पे संविधान की समझ ना हो कभी अभिषेक मनु सिंघवी जी से ये सवाल पूछ लीजिएगा सही उत्तर मिल जाएगा मैं आपको एक जानकारी देता हूं मैंने ही बताया कि ये मामला अभी भी लंबित है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो अंतरिम आदेश आया उसमें उन्होंने इस प्रावधान पे रोक नहीं लगाई इसका मतलब ये आज देश का कानून है तभी मैंने पहला सवाल पूछा था क्या देश के कानून का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य नहीं है और ये पाप कैसे हो सकता है इसका विरोध क्यों क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है दूसरी बात कांग्रेस पार्टी तो वो है जब ट्रिपल तलाक का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था तो ये लोग मौलानाओं के साथ ये लोग उनके साथ खड़े थे जो लोग मुस्लिम महिलाओं को दबाते हैं और शाह बानो का केस याद करिए एक 65 साल की महिला को अगर 120 रुपए भत्ता मिल रहा था तो इनको दर्द हुआ ये कानून ले आए और आज मोदी जी जो कर रहे हैं जो भाजपा में सरकारें हैं वो कर रही हैं वो केवल और केवल सशक्तिकरण की राजनीति कर रही हैं और अंत में एक बात कहूंगा 123 ऐसी संपत्ति थी जो कांग्रेस की सरकार 2013 की बात है ल्यूटेंस दिल्ली में सबसे महंगी संपत्तियां इन्होंने वक्फ को दे दी थी क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं बाद में वो वापस ली गई ये क्या दर्शाता है इनका चरित्र केवल एक है तुष्टीकरण करो चाहे समाज में
0: लेकिन गौरव जी लेकिन गौरव
6: चाहे आपको कमजोर हो जाए देश
0: मंदिर पर घिरे तब तो वक्फ को उछाला गया है ना मंदिर पर घिरे तब तो वक्फ को उछाला है ना योगी जी ने
6: नहीं मैं मंदिर पे उत्तर देने के लिए बाध्य हूँ आप पूछिए मैं उत्तर दे दूंगा आज का विषय नहीं है लेकिन मैं बाध्य हूँ आप मुझसे कोई भी उत्तर मंदिर पर पूछिए मैं आपको बल्कि एक जानकारी और दे देता
7: हूं नहीं है भाई
0: विपक्ष तो कह रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए सिर्फ इस्तीफे पर वो तैयार नहीं है और ये सच भी है जो सर्वे सर्वा थे भाई सब पर जांच हो
6: ठीक है अंजना जी दो भाग में बांटूंगा पहले एक जानकारी दे दो तिरुपति जो मंदिर है उसके ट्रस्ट में गैर हिंदू भी नियुक्त किए गए हैं तो ये कह देना कि इस धर्म के लोग दूसरे धर्म में नहीं आ सकते ये केवल और केवल उस जगह का रखरखाव रखने के लिए और दुरुस्त करने के लिए व्यवस्था होता है दूसरी बात जो आपने कहा एफआईआर कराई ट्रस्ट के मेंबर ने हमने देखा 8 गिरफ्तारी हुई पूछताछ हुई हर व्यक्ति से कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं और आगे कानून अपना काम करेगा अब ये जो ढोंगी हिंदू है ये निकल के आ रहे हैं इनका असली चरित्र जो कि हिंदू नफरत है ये हम सबने देखा है अंजना जी इनके कहने पे कानून काम नहीं कर सकता
0: ठीक है अब चरण सिंह सापरा साहब आप भी इस सवाल का जवाब दीजिए कि सबरीमाला मंदिर में भी 4 किलो सवाल तो सुनिएगा ना 4 किलो सोना चोरी हुआ इतना गुस्सा तो नहीं दिखता वहां आप ही की सरकार चल रही है इतने दिन बीत गए हैं यहां पर तो दिन दिन का हिसाब सामने आ रहा है कि भाई ये जब्त हुआ कितना जब्त हुआ क्या हुआ कुछ वहां का भी बता दीजिए
7: बिल्कुल अंजना जी उस पर भी पूरा गुस्सा है वो उस समय हुआ जब हमारी सरकार नहीं थी लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाई थी उसकी एक मॉनिटर्ड इंक्वायरी चल रही है हमारी सरकार उसको आगे ले जा रही है हम उससे पीछे नहीं हट रहे उसमें जो भी होगा जो वस्तु स्थिति होगी सच्चाई होगी वो करेंगे लेकिन चैनल पर बैठ करके जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता मैं इनको कहता हूं कि ये फर्जी राम भक्त है ये चुनावी राम भक्त है ये राम भक्त नहीं है ये नथुराम भक्त है ये नथुराम भक्त जब चोरों को संरक्षण देते हैं ना तब राम भक्तों को दर्द होती है पीड़ा होती है और इन्होंने क्या किया था इन्होंने राम मंदिर को एक स्टार्टअप समझ लिया था कि जो अच्छे डिविडेंड दे रहा था आर्थिक डिविडेंड भी दे रहा था और राजनीतिक डिविडेंड भी दे रहा था अब इनको खतरा लग रहा है कि हमारा ये स्टार्टअप जो है ये फेल हो रहा है अब ये राम भक्तों के हाथ में चला जाएगा ये हमारे चुंगल से बाहर हो जाएगा ये सब इन्हीं के लोग तो थे प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किए थे ना चंपत राय अनिल मिश्रा जितने भी थे ये सब प्रधानमंत्री के अपॉइंट किए हुए लोग थे तो प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर इन्हें बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं ये प्रधानमंत्री की भी परीक्षा है अगर प्रधानमंत्री बर्खास्त नहीं करते हैं ट्रस्ट को तो उसका मतलब होता है कि वो भी कहीं ना कहीं सम्मिलित है इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और राम भक्तों की पीठ में खंजर घोप रहे हैं ये मेरा आरोप
0: तो
7: है
0: क्या किया जाए चरण सिंह सापरा साहब अब सापरा साहब आपने काफी बोल लिया मुझे लगता है आशुतोष जी को बोलने दीजिए बड़ी पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है वो चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर हावी हो जाइए आप। आशुतोष वर्मा जी, एक सिंपल सवाल है भाई, एसआईटी ही तो जांच करेगी ना, कौन सी धारा के तहत चंपत राय को पकड़ के डाल दिया जाएगा जेल में? क्यों बचा रहे हैं, क्यों उनको नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, इनका अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? आखिरकार एसआईटी जो गठित की है वही तो जांच करेगी, वही तो तय करेगी।
8: धन्यवाद अंजना जी। नहीं देखिए, बात यह है कि जिस प्रकार से चंपत राय जी को एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी दिखाई जा रही है उससे तो ये साफ है, और नैरेटिव ये कुछ भी बना ले, चंपत राय को जितना बचा ले। इस देश में जितने भी लोग हैं, जितने राम भक्त, उन सबको पता है कि चंपत राय के नाक के नीचे चोरी हुई है, और चंपत राय ने अपने आप का इस्तीफा दिया है, लेकिन ट्रस्ट से उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस ट्रस्ट की जो डीड है उसमें कोई सदस्य को हटाने का कोई क्लॉज ही नहीं है। तो ये बहुत सफाई तरीके से जानते हैं कि मैं इस्तीफा दे भी दूंगा तब भी मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तो असल में भारतीय जनता पार्टी अब फंस चुकी है इन सब चीजों में, जवाब मिल नहीं रहा है। एसआईटी ने खुद बता दिया कि 70 बार चोरी हुई है, सीसीटीवी गड़बड़ हो चुका है, एसबीआई वाले कह रहे हैं चंपत राय डिसाइड करते थे कौन पैसा गिनेगा कौन नहीं गिनेगा, वहां पे आदमी ये कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा को 40% कमीशन देना है, मतलब खुला किताब है कि चोरी जम के हुई है और सिंडिकेट बना है। तो किसी तरीके से पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कराओ और अब वक्त पे बात करना शुरू किया जाए। तो आज योगी आदित्यनाथ जी ने वही करना शुरू कर दिया है जिससे मामला डाइवर्ट हो, थोड़ा कूल डाउन हो, लेकिन ये होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में जितने लोग गए हैं और जितने लोग ने चढ़ावा दिया है वो सब आज पूछ रहे हैं कि इन चोरों को चौकीदार कैसे बनाया। भारतीय जनता पार्टी के एक एक आदमी ने अपनी डीपी लगाई थी, मैं भी चौकीदार। अगर ये चौकीदार हैं तो ऐसे चौकीदार से भगवान बचाए, इनको दूर करो, क्योंकि अभी तो अयोध्या हारे हैं, अब बारी उत्तर प्रदेश की है। और राम जी ने कहा है ना कि बहुत आपने चालाकी करी है, हम तो शुरुआत से 2021 से बोल रहे हैं कि जब से जमीन का अधिग्रहण हो रहा है तब से लगातार ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे में जो है 20 करोड़ में भेज देते हैं, वहीं क्यों रह के चंपत राय 18 करोड़ का भ्रष्टाचार करते हैं और ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं।
0: आशुतोष जी, ये सारी बातें सामने आई और आपकी पार्टी के कई नेताओं ने जोर शोर से इसको उठाया, मीडिया ने भी लगातार इस पर कवरेज की, दबाव बना, जांच हो रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार पर आज तक हमने वर्मा जी आपको कभी इतना जोश के साथ बोलते हुए या आपकी पार्टी के किसी नेता को, छोड़िए नाम लेते हुए, भी नहीं सुना है। वहां पर सब कुछ एकदम सही है
8: अंजना जी? मैं तो कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड पे जो भी हुआ वो नियम के हिसाब से हुआ, अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो 11 साल से मोदी सरकार है और 10 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार है, लगाए केस, उठाए लेके आए। आज तक जिस व्यक्ति के ऊपर, आजम खान साहब के ऊपर जो केस लगाया है, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आने के ऊपर आजम खान के ऊपर वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक इन्होंने याचिका डाली कि हम भाई इसके ऊपर चाहते सीबीआई इंक्वायरी हो। सीबीआई ने, छोड़ो सीबीआई ने इस केस को उठाया तक नहीं, कहा ट्रायल में नहीं लिया, एफआईआर तक नहीं लॉन्च की, और वो केस कुछ हुआ ही नहीं, वो केस ही नहीं बना। ये है भारतीय जनता पार्टी।
0: खान एक बार जवाब दे दें, उसके बाद से गौरव जी आ रही है। सुबोई खान जी, आप हाथ उठा रही थी, सवाल है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ वो कह रहे गलत केस सामने रखे जाते हैं।
9: जी जी अंजना जी, सबसे पहले तो एक भारतीय होने के नाते और एक भारतीय सनातनी मुसलमान होने के नाते मैं ये तो कहना चाहूंगी कि राम मंदिर ये चढ़ावे में जो ये घोटाला हुआ है इसके

0: एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये अनेकों है मेरे पास, कर्नाटक का है जहां पर 54,000 एकड़ वक्फ जमीन में लगभग आधी जमीनों के दुरुपयोग का आरोप लगा। पश्चिम बंगाल 2002 में भी ऐसे ही लीज पर देने की बात हुई। सितंबर, एक एक करके सारे जितने विवाद है वो दिखा दीजिए, अनेकों ऐसे मामले सामने आए। सच्चर कमिटी की रिपोर्ट ने कहा कि जितनी जमीन वक्फ के पास है उससे इतनी आमदनी आनी चाहिए, लेकिन आती है इतनी। कभी आपने इस पर बोलने की कभी भी जहमत क्यों नहीं उठाई? शादाब चौहान को ही दिखा दीजिए, हैदराबाद में बैठे हुए उनके ओवैसी साहब हमेशा इस मुद्दे पर बहुत हुंकार भरते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ट्रस्ट में दो मुस्लिम रख लेते, उनके यहां ट्रैक्टर चला देते। लेकिन वक्फ बोर्ड और उसके भ्रष्टाचार पर कभी मुंह नहीं खुलता शादाब जी?
1: नहीं, निश्चित उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को उसी समय याद आया कि जब पूरा देश, जिन लोगों की आस्था राम मंदिर में है, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि काग भुसड्डी जी कहाँ है, पदुकाए कहाँ है, हमें रसीद नहीं दिया गया,
0: कहाँ थे कला,
1: यानी रसीद, जो रसीद मांग रहे हैं क्या वो लोग गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सवाल कर रहे हैं ना। और जब कोषाध्यक्ष को नहीं पता कि साइन कहाँ करना है, कोषाध्यक्ष को नहीं पता कि हुंडी से कैसे गिनती होती थी, और जिम्मेदारी किस पे डालिएगा?
0: जब शादाब जी, गोविंद गिरी जो कि कोषाध्यक्ष है, उन्होंने कल ही कहा कि रिसीट लेके जो भी दान करता है वो आ जाए। काग भुसुंडी, वो जो चांदी की माला जिसको सोशल मीडिया पर खूब फैलाया जा रहा था, और चरण पादुका तस्वीर, सब कल उन्होंने जो 3-4 ऐसी चीजें थी जो ज्यादा वायरल हुई थी वो सब दिखाई है वहां पर। अब आप कहा इसमें बिना मतलब का इंटरफेयर करें, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए।
1: नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये विषय को डाइवर्ट करने के लिए। और आप जब तिरुपति देवस्थानम में नहीं होता है कोई मुसलमान, क्या दूसरे एंडोर्मेंट बोर्ड जो हैं वो तमाम उनके रिलीजियस जो लोग हैं वो करते हैं, तो सिर्फ आप इसमें लाकर के ये मैसेज, इसीलिए बर्शो वैसी साहब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को गए, और हमने कहा कि इस कानून के जरिए बीजेपी का मकसद ये है कि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना है, वक्फ बाय यूजर को खत्म करना मकसद है। क्या कहा गया? प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और तमाम चीजों को लेकर होल्ड किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, मामला विचाराधीन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीति करके लाभ लेना चाहती है। वसीम रिजवी पर आरोप थे, कहां गया वसीम रिजवी? कितनी कार्रवाई हुई वसीम रिजवी पर उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उसने इनके अनुसार घर वापसी कर लिया तो वो अब इनका चहेता बन गया, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये तो विडंबना है ना। गौरव भाई बोले वसीम रिजवी के खिलाफ, क्यों योगी जी का डंडा क्यों नहीं चलता, बुलडोजर क्यों नहीं चलता वसीम रिजवी पे? सवाल भी पैदा होता है।
0: जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, कि सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल करना है या कुछ एक्शन भी लेना है?
2: नहीं, मैं बिल्कुल शादाब की बात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था। तो देखिए, जब बात करते हैं कि भाई धर्म का व्यक्ति ही नियुक्त होना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी के जब सरकार थी और कुंभ हुआ प्रयागराज में, तो आजम खां को उन्होंने कुंभ का अध्यक्ष बनाया, कुंभ कमेटी जो थी। क्यों भाई? हिंदुओं का एक महापर्व है ये, तो वहां आजम खां मंत्री थे, उनको क्यों बनाया था? इसलिए ये देश ऐसे नहीं चलता है, यहां सौहार्द से हर किसी की जिम्मेदारी होती है, और वक्त के मामले में तो ये कानून है। दूसरी बात, आपको मैं ये जानकारी देता हूं, जब इनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल की, आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी बनी, जिसकी जमीन अब कानून के अनुसार वापस ली गई है, उसमें वक्फ जो संपत्तियां थी उनका दुरुपयोग करते हुए उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिला दिया गया था, और बकरी चोरी तक का तो इल्जाम था आजम खान पे। अब ये चोर बताएंगे कि किस तरह से वक्फ बनेगा और कानून बनेगा। दूसरी बात, सेंट्रल वक्फ कमेटी बनाई गई, 2017 में रिपोर्ट आई, तो उसने कहा, सेंट्रल वक्फ कमेटी की फाइंडिंग है कि आजम खान ने दुरुपयोग किया अपने मंत्री पद का, और लोगों को रुपया लेके पद दिए वक्फ बोर्ड में जब इनकी सरकार थी। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही, जो शादाब ने बात उठाई, वक्फ शिया बोर्ड था, शिया बोर्ड के चेयरमैन जो ये बता रहे वसीम रिजवी थे, और समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जो भी कार्रवाई हुई है पता लगा लीजिएगा शादाब, वो सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही करी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति, चाहे अमानतुल्ला खान ने दिल्ली में किस तरह से बेची है हम सबने देखा है, तो ना कांग्रेस बोलती है, ना सपा बोलती है, ना टीएमसी बोलती है, ना असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता लाती है, वो भी कानूनी तरीके से लाती है। और कानून अगर आता है तो मेरे

0: जो सवाल है फिर से पूछ लीजिएगा, देश के कानून का पालन करना क्या गलत है, क्वेश्चन नंबर वन। टू, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई तो नियुक्ति क्यों गलत है, क्यों हाय हाय की जा रही है। तीसरा, चार मुस्लिम महिलाओं को जगह मिली है वक्फ बोर्ड में मध्य प्रदेश में, तो क्या मोहन यादव जी का धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि ये सशक्तिकरण है, या हाय तौबा करनी चाहिए? ये सवाल पूछिए, इसके उत्तर क्या मिलते हैं फिर बताइए।
1: ठीक है, चलिए जल्दी से बोल लीजिए शादाब जी, दो लाइन, उसके बाद से मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी, जल्दी से।
2: गौरव जी, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, कितनी मुस्लिम महिला कैबिनेट मिनिस्टर हैं आपकी सरकार में दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, कितनी मुस्लिम महिला मिनिस्टर हैं, कितनी मुस्लिम महिलाओं को आप 2027 में विधायक असेंबली का टिकट देने वाले हैं?
0: आपको तो जानकारी नहीं है, निर्मला सीतारमन जी कौन है बताइए?
2: मुस्लिम महिला है वो मुस्लिम महिला, कब से मुसलमान हो गए निर्मला जी, मुझे बता दीजिए। आप तो मुस्लिम महिला की बात कर रहे थे,
0: जो वक्त में लाई गई है नजमा हेपतुल्ला कौन है बताइए? पूर्व
2: मिनिस्टर है क्या? गौरव भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं?
0: मैं अभी की बात कर रहा हूं,
2: मैं अभी की बात,
0: आप बताइए आपकी पार्टी के कितने अध्यक्ष हिंदू बने हैं बताइए मुझे?
2: अरे
0: आपकी पार्टी के कितने अध्यक्ष हिंदू बने?
2: गौरव भाई मुझे मालूम
0: मुस्लिम आता है भाई,
2: गौरव भाई मैं जानता
0: हूं, करिए कम से कम
2: आप एक नाम बता दीजिए एक मिनिस्टर का जो मुसलमान सेंटर।
0: ये क्या बात हुई,
2: आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे?
0: की चार मुस्लिम महिला
2: वसीम रिजवी पर आप एक शब्द नहीं बोले क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है मेरे भाई,
0: आप उसका स्वागत करते। आप, मैंने बोला FIR किसने कराई है, आज आपको जानकारी दे रहा हूं, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा, अगर आपके कान में मुआद पड़ा हुआ है मुसलमानों का तो मैं क्या करूं भाई? मैं आपसे बता रहा हूं FIR किसने करी है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। आपको
2: जेल में है, बुलडोजर चला, एनकाउंटर हुआ, बुलडोजर चला
0: आजम खान के खिलाफ।
1: आशुतोष वर्मा,
0: ये लीजिए
1: आशुतोष वर्मा जी नहीं, आप भी जरूर जवाब दीजिएगा कि वक्फ वाले भ्रष्टाचार, मैंने कुछ मुद्दे गिनाए हैं।
3: मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए, आजकल स्थिति भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए बड़ी नाजुक है, नरसिया जाते हैं, घूम जाते हैं, सवाल पूछो मंदिर से तो भागने लगते हैं, आज तो कई न्यूज चैनल के कैमरे हमें तोड़ने लगे थे, और स्थिति यहां भी वही है भाई। कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि कुंभ की व्यवस्था के लिए आजम खान वहां पे व्यवस्थापक नहीं हो सकते? ये देश संविधान से चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति से चलेगा, हमको बताइए। और भाई देखिए, बात समझिए, एक मिनट रुक जाइए मेरी बात पूरी हो, जवाब दीजिए। कुंभ आप करवाओ, सैकड़ों लोग भगदड़ में मच जाएं, आप 30 की गिनती बना के उसको पटाक्षेप कर दो, हिंदुओं की हत्या वहां हो गई। आप बटकों को खुलेआम लाठी से पिटवाओ, हिंदुओं को वहां बिटवाओ, आप हिंदू की पार्टी। राम मंदिर आप बनाओ, 3,000 करोड़ का मंदिर बनाओ, जमीन से लेके निर्माण कार तक लेके चंदा चोरी आप करो, जवाब समाजवादी पार्टी दे। अब दूसरा सवाल वक्फ पे आ जाते हैं भाई, आप बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी कार्रवाई वक्फ के ऊपर समाजवादी पार्टी को लेके कर दी है? एक केस बता दो जो भारतीय जनता पार्टी ने बैठ के की है। ये सब टीवी में बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, असलियत ये है कि आज तक ना ही समाजवादी पार्टी के खिलाफ,
0: चलिए उत्तर दे दो,
3: ना ही आजम खान साहब के ऊपर एक भी केस वक्फ के लेके चल रहा है। परेशानी यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठा नैरेटिव, और अभी आपने तिरुपति में बोला कि आपने तिरुपति में गैर हिंदू रखे हैं,
0: झूठ बोल रहे हैं
3: तिरुपति, अरे चुप रहिए, तिरुपति मंदिर, केदारनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, तमिलनाडु के लगभग 4,000 मंदिर HR&CE डिपार्टमेंट के हिसाब से चलता है, वहां पे कोई गैर हिंदू व्यक्ति ना सदस्य ना अथॉरिटी में हो सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो और गवर्नमेंट ऑफिशियल नियुक्त किए जाते, रेगुलर अथॉरिटी होती है। क्यों नहीं राम मंदिर ट्रस्ट ऐसे बनाया गया, क्यों RTI से दूर रखा गया?
1: गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए।
0: चलिए मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले इनके तर्क में विरोधाभास कहां है। मैंने कहा कुंभ मेला जो सबसे बड़ा महापर्व है हिंदुओं के लिए, उसमें एक मुसलमान को अध्यक्ष बनाया समिति का, तो इन्होंने कहा देश संविधान से चलता है, कहां लिखा है कि नहीं बना सकते। बहुत अच्छा तर्क है, लेकिन फिर संविधान के तहत ही तो कानून बना वक्फ का, फिर विरोध क्यों? फिर तो उस कानून का भी पालन होना चाहिए। मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थूथू, पहला इनका जो तर्क था वो गिर गया। बीच में नहीं, मैं तो बदतमीजी से भी नहीं बात कर रहा, बीच में नहीं मत बोलो, पहला तर्क गिरा। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो है बटकों की चोटी खींची गई, शंकराचार्य पे किसने लाठी चार्ज किया था? अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री थे, 84 कोस परिक्रमा यात्रा पे जो लोग करना चाहते थे लाठीचार्ज किसने किया? अखिलेश यादव ने, आधे मुख्यमंत्री ने, जिनको कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता था। तीसरी बात, कार सेवकों पे गोली किसने चलाई थी? और मुंह से तुम्हारे निकला कि चंदा जिसने दिया हो, जो गया हो भव्य राम मंदिर के दर्शन करने रामलला के, तो मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव ने कितना चंदा दिया है बताओ? हमने चंदा दिया है, हम तो छाती ठोक के कहते हैं अखिलेश यादव ने फूटी अठन्नी नहीं दी। दूसरा, आज तक अखिलेश यादव जो कि अपने आप को मौलाना अखिलेश कहते हैं, कभी गए हैं राम मंदिर? नहीं गए हैं दर्शन देने। चौथी बड़ी बात बता दूं, हमने क्या किया? आप आजम खां की जितनी एफआईआर हुई है पढ़ लीजिएगा, वक्त की जमीन को कब्जा के जौहर यूनिवर्सिटी में मिला दिया, जो वापस ली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। दूसरा, अंजना जी, हमने सुनिश्चित किया जो वक्फ की संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड है, उनको हम पंजीकृत करें। और कितने 2,20,000 कहते थे कि वक्फ हैं जो बने हुए हैं, और उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है केवल 92,000 का। सरकारी रुपया लोगे लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, और विरोध किसने किया था? यही मौलाना अखिलेश की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने। आज पारदर्शिता भी आ रही है, जिम्मेदारी भी तय की जा रही है, और चाहे मंदिर हो, चाहे वक्फ हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, हम सुनिश्चित करेंगे कि एक एक रुपया जनता का, जनता के हित में इस्तेमाल हो। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए नहीं जो है जनता रुपया देती है, ये बात जान लो।
1: ठीक है, अब देखिए इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को लंबे वक्त से बीजेपी घेर रही है। आशुतोष जी, यही बता दीजिए कि आपने जहां पर मंदिर बना उसे राम जन्मभूमि मानना कब शुरू किया?
3: जी देखिए अंजना जी, ये तो कहीं नहीं लिखा है कि
1: इसके बाद आ रही हूं साहब।
3: अगर आप राम मंदिर नहीं जाएंगे तो राम भक्त होंगे?
1: नहीं, मैंने कुछ और पूछा, मैंने तो जो लोग केस लड़ रहे थे उनके बिहाफ पर पूछा।
3: हाँ, कौन केस लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी कब केस लड़ रही थी?
1: नहीं नहीं, जो लोग राम जन्मभूमि में मंदिर बने इसके लिए जो केस लड़ रहे थे निर्मोही अखाड़ा के लोग, उनकी तरफ से पूछ रही हूँ, वो पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने राम जन्मभूमि कब मानना शुरू किया उस जगह को?
3: नहीं, हमने तो उसी दिन मान लिया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उनका कोई रोल ही नहीं है, ये तो सिर्फ चोरी करने के लिए भगवान राम का नाम लेते हैं। मैं तो इनको बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, आपने शंकराचार्य की बात करी, अभी मुक्त ऋषानंद की बात करी, जिन्होंने खुद आके बाला बोला कि हम समाजवादी पार्टी के साथ में, वो गलत हुआ था, और उसके बाद अखिलेश यादव ने
0: अभी सुन लीजिए,
3: अरे आगे घबराओ नहीं, आज नर्वसिया बहुत रहे हो, गोली चलाई, अरे रुकिए गौरव भाटिया,
0: क्यों गंदी भाषा का, घबराओ भाई, गुंडे की तरह
3: भाई, नर्वस क्यों नर्वस हो रहे हो भाई, पसीना क्यों आ रहा है
1: आराम से? एक तो आप लोग प्लीज
3: पूछो,
1: टॉपिक पे रहिए, कौन नर्वस हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, इससे बचा जा सकता है। आप अपनी बात कहिए, वो अपनी बात कहें, एक दूसरे पर अपशब्द का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि फिर और स्तर गिरता चला जाएगा, फिर मेरी जिम्मेदारी होगी, फिर मुझे मॉनिटर की तरह आप दोनों को बताना पड़ेगा। आप दोनों से निवेदन है, सविनय निवेदन है, भाषा की मर्यादा रखें। आप ही ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, तो जमीन विवाद पर फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने आशुतोष जी, तो उससे पहले आप लोग राम जन्मभूमि नहीं मानते थे?
3: नहीं, विवादित था, हम लोग सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक पार्टी है, हम किसी पक्ष के साथ में नहीं खड़े, हम कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उसको मानेंगे। मैं अपनी पूरी बात कर लूं, अभी गोली चलाने पे आप बहुत बात करते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार है, आए बताए कि जिसने गोली चलाई है उसको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण क्यों दी थी आपने? ये टीवी पे गोली चलाने वाला बहुत अच्छा होता है, और जो चीफ सेक्रेटरी वो खुद कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया, मुलायम सिंह ने नहीं चलवाई, उसको पीएमओ में अपना प्रधान जो है सचिव बना रखा है। तो ये गोल गोल बातें उनको समझाओ जो बच्चे हैं। तीसरी बात, एक केस दिखा दे भारतीय जनता पार्टी को, चैलेंज करता हूं, जो वक्फ बोर्ड पे आजम खान साहब के ऊपर चल रहा है इस पे सजा हुई हो, ये झूठ का प्रोपेगंडा शाम को बैठ पे टीवी पे मत चलाओ, क्योंकि दुनिया हकीकत जाती है कि चौकीदार ही चोर था। असल में अगर चोरी नहीं हो रही होती तो इतनी बड़ी बात नहीं निकल के आती। चंपत राय को बचाने का सिर्फ एक वजह यह है क्योंकि वो बड़ी बड़ी मछलियों का नाम ले सकता है, इसलिए चंपत राय को बचा के रखो, क्योंकि जब नाम खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का किला।
1: एकदम सीधा सवाल है आशुतोष जी का, इसका जवाब दीजिए गौरव जी, क्या इसलिए बचाया जा रहा है चंपत राय को क्योंकि वो बड़े लोगों का नाम लेंगे? सापरा साहब और सुबोई जी आ रही है उसके बाद।
0: मैं एक जानकारी आपको दे देता हूं, इन्होंने कहा था पॉलिटिकल इम्यूनिटी, पॉलिटिकल इम्यूनिटी क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास ऑर्डर है, गायत्री प्रजापति मंत्री थे, रेप के उनपे आरोप लगे, एफआईआर नहीं हो रही थी, टूटी साइकिल अखिलेश यादव की सरकार में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा एफआईआर कराओ, ये होती है पॉलिटिकल इम्यूनिटी। अब अंजना जी ठोक के पूछता हूं, क्या चंपत राय से सवाल नहीं पूछे गए, पूछताछ नहीं हुई, घंटों घंटों हुई है, लेकिन ये कौन तय करेगा कि किसकी अरेस्ट होनी है किसकी नहीं, किससे पूछताछ होनी है, संलिप्तता है या नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही तय करता है, यही देश का कानून है। अब बेचारे जिन्होंने कभी कुरान को छोड़ के संविधान कानून पढ़ा नहीं है तो वो यही कहेंगे, उनके पास और कुछ कहने के लिए है नहीं। और मैं एक तस्वीर और दिखा दूं, ये मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य है, वो 27 साल बाद कहते हैं, मैं पढ़ दूं, अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़ते तो मार देता, आज ये बड़े हिंदू बन रहे हैं।
3: गलत है,
0: अरे हिंदुओं से पूछो, नफरत करते हैं तुम लोगों से, नफरत, और इसलिए नफरत करते हैं कि तुमने मजहबी आधार पे केवल समाज को बांटने का काम किया है, मुस्लिम इलाका बताया है, वोट जिहाद बताया है, और इसीलिए सत्ता से बाहर हो और अगले 20 साल बाहर रहोगे। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ टूटी साइकिल में जो योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने से रोक सके, चाहे कुछ भी कर लो।
1: छोटा सा जवाब फिर सापरा साहब को दिखा दीजिएगा। हाँ
3: देखिए, मैंने तीन सवाल पूछे, तीनों पे गौरव भाटिया भाग गए, इन्होंने ना शंकराचार्य पे बोला, ना गोली चलाने पे बात बोला, ना आजम खान पे, ये ले आए कागज की कटिंग जो भारतीय जनता पार्टी का एक संघ रोल बनती है।
0: क्या लाठी चार्ज
3: का जवाब नहीं है
0: शंकराचार्य पे, बताओ क्या उत्तर दिया, तो
3: अब जवाब बचा नहीं है, देखिए जवाब अब बचा नहीं है, अब चोरी में सब पकड़ लिए गए हैं और सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आज खुद सीएम भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जांच में विश्वसनीयता होनी चाहिए और पारदर्शिता रहनी चाहिए, ये आज की कहानी है जब लगभग एक महीने से जांच हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम ने क्यों कहा, अरे जवाब दो, इधर उधर मत भटको,
0: के खिलाफ क्या जांच,
3: सीधे वहीं फंसो जहां पे राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, और कहीं मत जाओ, अभी जो चल रहा है वही चलाओ।
0: वक्फ का समर्थन करते हो, वक्फ का जो
3: चंदा चोरी पे कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास गया, भारतीय जनता पार्टी के पास कितना पैसा गया
0: करते हो या
3: और किन किन सरकारों को गिराने के लिए।
1: सापरा जी जल्दी से एक कमेंट, आखिरकार इस पूरे मामले में देखिए चढ़ावा पर हुआ, वक्फ पर गया मुद्दा, लेकिन फिर भी आपसे भी ये सवाल पूछ रही हूँ कि वक्फ के भ्रष्टाचार पर योगी जी जो कह रहे हैं वो क्या गलत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस पर तो चुप मुंह खुलता नहीं इनका।
4: देखिए मैंने पहले ही कहा कि योगी जी जो है वो अवसरवादिता कब वो देख रहे हैं, अवसरवाद देख रहे हैं कि कहां पर है। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इन सबको पता है कि आज तक ये राम के नाम पे वोट भी लेते रहे हैं, नोट भी लेते रहे हैं। अब जिस तरह से चंपत राय जी बीच में आ गए हैं, और चंपत राय जी को तो सब पता था, उनको तो पता था, इसीलिए तो हिडन कैमरे उन्होंने मई के महीने में लगा दिए थे, 5 जून को उन्होंने कई जगहों पर खुद जाकर के रेड करी, पुलिस के साथ लेकर के 80 लाख रुपया बरामद किया, लेकिन एफआईआर नहीं किया। तो चंपत राय जो है वो मेन इसमें है, उसी को बचाने की कवायद चल रही है, और ये मात्र कांग्रेस पार्टी या राजनीतिक पार्टियां नहीं कह रही हैं, ये महिपाल सिंह कह रहे हैं।
1: आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं इंडोनेशिया, जहां पर भारतीय समुदाय के बीच बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
5: हिज एक्सलेंसी President Prabowo, my dear friends, brothers and sisters, Salamat Malam. Namaskar. Vanakkam. Sat Sri Akal. जय झूलेलाल, केम छो, आजकल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है, यहां इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है, और आप सभी वो एनर्जी, वो जोश, यहां भी लेकर के आए हैं, दिखाई दे रहा है। और एक अजब संयोग बना है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। मैं जब भी इंडोनेशिया आया हूं, फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है। पहली बार 18 में जकार्ता में कार्यक्रम हुआ था, फिर हम 2022 में बाली में मिले थे, और अब 2026 में फिर से जकार्ता में ही संवाद हो रहा है, और तीनों बार इंडोनेशिया में फुटबॉल की गूंज रही है। लेकिन साथियों, इंडोनेशिया में यहां इन तीनों कार्यक्रमों का मैन ऑफ द मैच एक ही है। इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग मैन ऑफ द मैच है। ये आपने इतना भव्य आयोजन किया है, आप भव्य भारत की जीती जागती तस्वीर बने हैं। यहां इतने सारे लोग आए हैं, और साथियों, इस बार मैं अकेला नहीं आया हूं, इस बार मेरे साथ मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो भी मेरे साथ आए। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं उनके स्नेह के लिए, उनके शब्दों के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सलेंसी, यू आर अ ट्रू फ्रेंड ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। साथियों, कल जब मैंने इंडोनेशिया के आकाश में प्रवेश किया और जब यहां पहला कदम रखा, तब से लेकर अभी तक जो अपनापन, जो प्रेम मुझे इंडोनेशिया के लोगों से मिला है, उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। प्रेसिडेंट प्रबोवो द्वारा अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने के लिए आना एक यादगार अनुभव रहा। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, उसकी एक झलक आज मुझे राष्ट्रपति भवन में भी दिखाई दी। यहां के लोगों का उत्साह, बच्चों की मुस्कान, युवाओं का जोश, सब कुछ अवर्णनीय था, अद्भुत था। मैं जहां जहां गया, जिस किसी से मिला, हर चेहरे पर भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और आत्मीयता साफ दिखाई दी। वैसे मैंने देखा कि हाँ भारत का गाना कुछ कुछ होता है, बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इसे इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है, ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है, और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। मैं इस मंच से भी राष्ट्रपति प्रबोवो, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 प्लस 6 इज इक्वल। और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1 प्लस। उस समारोह में प्रेसिडेंट प्रबोवो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। उस यात्रा के दौरान हमें कई विषयों पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला, लेकिन उस यात्रा की एक बात मैं आज खास तौर पर याद करना चाहूंगा। और उस बात को बड़े गौरवपूर्वक आज राष्ट्रपति जी ने यहां भी बड़े डंके के चोट पर बड़े शान से उल्लेख किया। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने उस समय कहा था और आज फिर से कहा, और आपने उस समय भी कहा था कि आप में इंडिया का डीएनए है। आपकी उस बात, एक बात ने आज भी मैंने देखा सबसे ज्यादा तालियां उसी समय पड़ी, और भारत में भी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल अपने जीत लिया था। उस एक वाक्य ने भारतीयों के दिलों को छू लिया था। मैं आपकी ही उस बात को आगे बढ़ाता हूं। जिस डीएनए की बात आपने की थी और जिस डीएनए की चर्चा आज आप सबके लिए कर रहे थे, वो डीएनए आखिर है क्या? वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है, वो डीएनए साझी विरासत से बना है, वो डीएनए साझा स्मृतियों से बना है, वो डीएनए उन समुद्री हवाओं से बना है जिन्होंने हजारों वर्ष तक हमारे जहाजों को एक दूसरे के तटों तक पहुंचाया। साथियों, भारत इंडोनेशिया संबंधों का डीएनए उन संतों और बौद्ध भिक्षुओं से बना है जिन्होंने ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा, या उन उद्यमियों से बना है जिन्होंने केवल मसालों का व्यापार ही नहीं किया बल्कि संस्कृतियों के सेतु भी बनाए। यह डीएनए को उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया, लेकिन उनकी आत्मा को एक ही रखा। भारत इंडोनेशिया के संबंधों को इंडोनेशिया के जिंदा दिल नागरिकों ने, यहां बैठे अनेक परिवारों ने सींचा है, संवारा है, हमेशा समृद्ध किया है। साथियों, दुनिया में अक्सर दो देशों के रिश्ते एग्रीमेंट्स और एमओयू से आगे बढ़ते हैं, कई देश रणनीति से जुड़ते हैं तो कुछ ट्रेड से नजदीक आते हैं, लेकिन भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है। साम्राज्य आए, साम्राज्य चले गए, समुद्री रास्ते बदले, दुनिया की राजनीति बदली, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच यह सूत्र हमेशा हमेशा कायम रहा। और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों, आज दुनिया कनेक्टिविटी की बात करती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो इसे, इस कनेक्टिविटी को जीकर दिखाया था। आज दुनिया की सप्लाई चेन्स भरोसे के अभाव में टूट रही है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया ने उस समय सप्लाई चेन का भरोसा जिंदा किया था जब ग्लोबल सप्लाई चेन की चर्चा भी नहीं थी। और मुझे खुशी है कि आज भारत और इंडोनेशिया उसी भरोसे की पूंजी के साथ मिलकर एक नया फ्यूचर लिख रहा है, और इस शानदार फ्यूचर के बहुत बड़े लाभार्थी आप सभी लोग हैं। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय है। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के जमाने में कॉलेब की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया तो सदियों से कोलैब करते आया थे। इंडोनेशिया के कुताई में पुराने संस्कृत शिलालेखों की वजह ये कॉलेज ही रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी में यहां के स्कॉलर्स के पहुंचने की वजह ये कॉलेज ही तो था। कटक का बाली यात्रा उत्सव हो, महानदी में केले के तनों से बनी नावों को चलाने की परंपरा हो, वयांग कुलित में महाभारत का मंचन हो, वैशाख पिलग्रिमेज हो या देवी श्री की पूजा हो, हर परंपरा में भारत और इंडोनेशिया का ये कॉलेज साफ साफ दिखाई देता है। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के कॉलेज का ये इतिहास जितना पुराना है उतना समृद्ध भी है। सुमात्रा का मुआरो जाम्बी प्राचीन काल में नालंदा का एक सिस्टर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। मुझे बहुत संतोष है कि अतीत की उसी ट्रेडिशन को आज हम रिवाइव कर रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं, अब नालंदा यूनिवर्सिटी नए अवतार में सामने आई है और वहां इंडोनेशिया के भी अनेक स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। यानी 21वीं सदी में अतीत की प्रेरणा से हम दोनों देश एक नए भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। साथियों, भारत और इंडोनेशिया दिल से भी करीब है और भूगोल से भी निकट के पड़ोसी है। भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया के आचे की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। सोचिए, भारत के एक द्वीप से इंडोनेशिया भारत के राज्यों से भी ज्यादा करीब है। इंडोनेशिया में आने वाले हर भारतीय को यहां अपनापन महसूस होता है। यही कारण है कि वर्षों से हमारे दोनों देश ट्रेड, ट्रेडिशन, टूरिज्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारे रिश्तों की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब भारत नए पोर्ट्स बना रहा है, नए शिप्स पर काम कर रहा है, नए सी रूट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, नई पार्टनरशिप के माध्यम से मैरिटाइम ट्रेड को आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे समय में इंडोनेशिया हमारे लिए फेवरेट फ्रेंड बनकर हमारे साथ उपस्थित है। साथियों, इंडोनेशिया हो या फिर भारत, हम दोनों ही देश विकास के लिए अधीर हैं और वाकई बहुत अधीर है। हमारे पास न रुकने का मौका है न थमने का। इंडोनेशिया की प्रगति के बारे में यहां अभी कुछ भारतीयों ने बताया है। हिंदुस्तान से मैं भी आपके लिए भारत की प्रगति की अनेक गाथाएं लेकर आया हूं। आप सुनना चाहते हैं ना? जरा आवाज जोर से आए तो पता चले। साथियों, आजकल आप जब भी भारत के बारे में सुनते हैं तो एक चर्चा सबसे पहले आती है, हेडलाइन बनती है, भारत की इकोनॉमी। कोई कहेगा इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है, कोई जीडीपी ग्रोथ की बात करेगा, कोई बताएगा कि पिछले 10-12 वर्षों में इकोनॉमी में इतना उछाल आ गया। आपको भारत की एक से बढ़कर एक उपलब्धियां सुनने मिलेगी, मिलती है ना? बताइए तो। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, बल्कि पिछले वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है तब हमारी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। ये गति, ये प्रगति ऐसे ही नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं, हमने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए आज देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, भारत ने आज जो ग्रोथ हासिल की है ये 140 करोड़ लोगों के सपनों की ग्रोथ है। ये करोड़ों भारतीयों के एस्पिरेशंस की ग्रोथ है। आप सभी भी उस सपने से अलग नहीं है। इंडोनेशिया में रहने वाला हर एक भारतीय उस सपने का साझेदार है। साथियों, भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन। आज भारत के गांव देहात से लेकर शहरों तक का नागरिक एस्पिरेशन से भरा हुआ है। हर किसी में ये आत्मविश्वास आया है कि हां, हम ये सफलता हासिल कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं कि हर इंसान के लिए अपने घर का सपना कितना बड़ा सपना होता है। और भारत का आंकड़ा सुनिए, भारत में पिछले 10-12 साल में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सरकार ने पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इतने तो कई देशों में कुल घरों की संख्या भी नहीं होती है। साथियों, जब लोगों को अपना घर मिलता है, एक सम्मानजनक जिंदगी मिलती है, तब इन करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशंस को गति मिलती है। ड्रीम्स मोशन में आते हैं। साथियों, मैं आपको भारत में सोशल सिक्योरिटी कवर का दिलचस्प आंकड़ा दूंगा। 12 साल पहले भारत में 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी कवर था। आज करीब 100 करोड़ भारतीय सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ गए हैं। और अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे। भारत में एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत साल में सिर्फ 20 रुपये में, एक साल में 20 रुपया, सुनाई देता है ना, एक साल में सिर्फ 20 रुपये के प्रीमियम पर, 20 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है।

यानी एक महीने की एक कॉफी जितना भी खर्चा नहीं है। दुनिया में ये कहीं मिले न मिले, लेकिन ये भारत में मिल रहा है और इससे भारत के करीब 60 करोड़ लोग कवर है। साथियों, एक दूसरी योजना भी है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना में हर रोज के करीब एक दिन का 1.5 रुपया, हर रोज के करीब 1.5 रुपये के प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। एक रोज के सिर्फ 1.5 रुपया, यानी एक कॉफी भी 1.5 रुपये से ज्यादा कीमत लगती है। और भारत में अभी 28 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हैं। साथियों, सरकार की इन दोनों योजनाओं के तहत अब तक करीब 22,000 करोड़ रुपए का क्लेम लोगों को दिया जा चुका है। 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ रुपीस लोगों के जीवन में जब संकट आया तो सरकार उनकी साथी बनकर उनके साथ खड़ी रही है। साथियों, आज भारत में एक और ऐसी व्यवस्था बनी है जो अभूतपूर्व है, शानदार है। ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था है जिसमें बिना लीकेज लाभार्थियों तक पूरा पैसा पहुंच जाता है। अभी एक सज्जन आए थे, वो पूछ रहे थे कि बंगाल के लिए मेरा विजन क्या है। ये विजन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नो लीकेज, नो कट की। और ये पैसे भी सीधे उनके बैंक अकाउंट में। आप कल्पना कर सकते हैं, बीते 12 साल में, ये आंकड़े जरा आपको चौंकाने वाले हैं, बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए, 50 ट्रिलियन रुपीज की मदद डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। 50 लाख करोड़ रुपए। साथियों, जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने का आरंभ करते हैं। साथियों, मैं आपको एक और डेटा देता हूं। आपने ये सुना होगा कि दुनिया की जितनी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होती है उसकी करीब 50% अकेले भारत में होती है, दुनिया की 50%। आज भारत में हर दिन 75 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, 75 करोड़ से अधिक। यानी डे टू डे लाइफ में कैश लेकर चलने की मजबूरी नहीं रही है। और हालात तो ये हो गए हैं कि लोग डेबिट कार्ड का पासवर्ड भूलने लगे हैं।
बैंक एटीएम का पासवर्ड भूलने लगे हैं, बस यूपीआई से ही, मोबाइल फोन से ही काम हो रहा है। साथियों, जब सपने बड़े होते हैं तो सरकार के काम करने की स्पीड भी उतनी ही तेज हो जाती है। आज भारत में आप जाएंगे तो चारों तरफ हाईवे और एक्सप्रेसवे बनते हुए दिखाई देंगे। 12 वर्ष में हाईवे निर्माण की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है, ये भी दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट है। इस दौरान भारत में एक्सप्रेसवे की लंबाई 100 किलोमीटर से बढ़कर 3000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। और भारत के जो ये बड़े सपने हैं, इसको भारत का युवा ड्राइव कर रहा है। 12 साल में ग्लोबल क्यूएस रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटी की संख्या 11 से बढ़कर 50 से अधिक हो चुकी है। आज भारत के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में पेटेंट फाइल कर रहे हैं, इनोवेशन को गति दे रहे हैं। इसलिए तो आज भारत 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स वाला देश है, 2 लाख से अधिक, करीब 125 यूनिकॉर्न्स वाला देश है। और तभी तो मैं कहता हूं कि भारत सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, भारत में बिलियन प्लस ड्रीम्स इन मोशन है। साथियों, हम भारतीयों को ताजा खाना जरा ज्यादा पसंद होता है, गर्मागर्म हो तो बात ही कुछ और होती है। इसलिए मैं भारत के सामर्थ्य का एक सबसे ताजा उदाहरण देता हूं, गर्मागर्म। इंडोनेशिया आने से 2 दिन पहले यानी 4 जुलाई को मुझे एक ही दिन में देश को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सौंपने का अवसर मिला। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, 4 जुलाई की। 1 ट्रिलियन रुपीज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक ही दिन में, भारत इस स्केल पर काम कर रहा है। साथियों, भारत ने 4 जुलाई को एक बहुत बड़ी रिफाइनरी शुरू की है और इस रिफाइनरी में जो मटेरियल लगा है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। इसमें जितना स्टील लगा है उससे 40 नए एफिल टावर बन जाते हैं। इतना स्टील लगा है कि 5 बुर्ज खलीफा तैयार हो जाते। इस रिफाइनरी के निर्माण में इतनी लंबी केबल यूज हुई है जिससे पूरी धरती के 2 चक्कर लगा सकते हैं। ऐसे ही अभियानों के कारण आज भारत रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में दुनिया में टॉप 4 देशों में पहुंच चुका है। साथियों, 4 जुलाई को ही इस रिफाइनरी के अलावा जोधपुर में एक शानदार भव्य एयरपोर्ट शुरू हुआ। छोटे छोटे शहरों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए की उड़ान योजना लॉन्च की गई। जयपुर के मेट्रो नेटवर्क को इसी दिन विस्तार मिला और इसी दिन भारत के 3रे सेमीकंडक्टर प्लांट ने भी काम शुरू कर दिया। यानी एनर्जी से लेकर कनेक्टिविटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग तक भारत
अनस्टॉपेबल है। साथियों, आज का भारत सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा, बल्कि हर मित्र देश के सपनों के साथ है। भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलता है, इसलिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर नए अवसर बनाता है और उन्हें भी नए अवसरों से जोड़ता है। भारत की आत्मनिर्भरता इंडोनेशिया के लिए, पूरे आसियान रीजन के लिए भी एक मल्टीप्लाइंग फोर्स है। आप हेल्थ सेक्टर को ही लीजिए, आज दुनिया के हर पांच में से एक जेनरिक मेडिसिन भारत में बनती है। यूनिसेफ की जरूरत की लगभग 60% वैक्सीन भारत से आती है और इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को भी होता है। हम अपने दोस्तों के लिए जो कुछ भी कर पा रहे हैं उस पर हमें बहुत गर्व है। साथियों, मैंने आपको भारत की इतनी बातें बताई हैं, अब आपको मेरा एक और काम करना है। करोगे? करोगे? आपको अपने इंडोनेशियन फ्रेंड्स को भारत के बारे में बताना है। बताओगे? और उन्हें भारत आने के लिए आग्रह करना है। अब तो जाकार्ता से मुंबई के लिए, बाली से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए इतनी सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, इससे भारत आना जाना बहुत आसान हो गया है। साथियों, भारतीय समुदाय में भी जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, उनको भी आपको भारत के बारे में बताना है। इंडोनेशिया में इंडियन कम्युनिटी के बच्चों के लिए भारत को जानो क्विज को शुरू किया गया है। इसमें यहां के बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कर्टेन रेजर इवेंट में ही मुझे आपका बहुत उत्साह दिखा है। 6th edition में हमने एग्जाम फॉर्मेट को छोड़कर अब इस पूरे कंपटीशन को गेमिफाइड किया है। मेरा आग्रह है कि आप सब युवा साथी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और सोशल मीडिया पर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। साथियों, भारत और इंडोनेशिया जितने इतिहास से जुड़े हैं, उतना ही हमारा फ्यूचर

0: जैसा संकट आता है तो हम साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। हम दोनों देशों के बीच का भरोसा, हम दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी ताकत है और हमें इसे मिलकर निरंतर मजबूत करना है। आप सभी भारत इंडोनेशिया के प्रॉस्परस फ्यूचर की साझा कड़ियां हैं। अपने इस रोल को और बड़ा करना है, इसी भाव के साथ एक बार फिर मैं प्रेसिडेंट और मेरे परम मित्र प्रभो आपका, इंडोनेशिया की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत और इंडोनेशिया मित्रा सेलामान्या, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं राष्ट्रपति जी के साथ उस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूं और कल तारीख क्या है? तो हमारा नाता भी इतना मजबूत है। और राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के जकार्ता में सुन रहे थे आप। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च मित्र हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, इससे उन्होंने समापन किया अपने भाषण का और कहा कि कल वो एक महत्वपूर्ण मंदिर जाने वाले हैं राष्ट्रपति के साथ। भारत का गाना कुछ कुछ होता है भी यहाँ पर लोकप्रिय है। तो कई तरीके से उन्होंने जुड़ा बताया कि कैसे इंडिया और इंडोनेशिया का जुड़ाव है, सभ्यताओं का ये रिश्ता है। नालंदा यूनिवर्सिटी में इंडोनेशिया के छात्र पढ़ रहे हैं, इस तरह से भारत के छात्र भी कई ऐसे हैं जो इंडोनेशिया में पढ़ रहे हैं। तो ये परस्पर दोस्ती कई सालों से चली आ रही है और कैसे इस दोस्ती को और प्रगाढ़ किया जा सकता है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर रहा। उन्होंने कहा कि अपनापन और प्रेम यहां पर आकर उन्हें मिला है।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मॉनसून अब पूरे हिंदुस्तान में आ चुका है, इसके साथ ही पूरे देश में मुसीबत भी मूसलाधार है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम तटीय राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। आज केरल के वायनाड में एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ कि हादसे से ज्यादा भयावह उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई। ये वही इलाका है जहां 2024 में भी भूस्खलन की वजह से कई गांव में तबाही मच गई थी। तब तकरीबन 400 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब तबाही कितनी ज्यादा भीषण है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
1: वायनाड की इन तस्वीरों ने 2 साल पहले की घटना की याद दिला दी है। 2024 में वायनाड में ऐसे ही लैंडस्लाइड में 400 लोगों की मौत हुई थी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, यह सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी पर डेट लिखी है 7 जुलाई, मंगलवार सुबह 11:14 सीसीटीवी पर टाइम दिखा रहा है।

0: लोग छाता लेकर खड़े हैं, बारिश हो रही है, सड़क गीली है, बगल में एक गाड़ी खड़ी है और दूर एक ट्रक है जो सड़क पर भरे हुए पानी के बीच दिख रहा है और सामने से एक बाइक भी आ रही है। ट्रक बैक आ रहा है, बाइक सीधे गुजर जाती है। ट्रक पहले बैक होता है और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कुछ शोर होता है, सड़क किनारे छाते लिए दोनों लोग इधर उधर देखने लगते हैं और अंदर से एक और शख्स बाहर निकल कर आता है। दौड़ता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ता है और पीछे से पांच और लोग निकल कर आते हैं। तब तक ट्रक बहुत आगे निकल चुका था और उसके सामने से एक और शख्स दौड़ता दिख रहा है, लेकिन तभी पीछे से भगदड़ सी मची दिखती है, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सामने से भारी मलबा आ रहा है जो फैलता जा रहा है। अचानक से मलबे का कहर दिखता है, पहले वहां खड़ी बस को उसकी जगह से हटाता है, आसपास के निर्माण को उजाड़ता है और लोग पीछे की तरफ दौड़ जाते हैं। ट्रक वाला फुल स्पीड से बैक गियर लगाकर ट्रक बैक कर रहा है। भागते हुए लोग अचानक से गायब हो गए, पता नहीं इस मलबे के नीचे आए या ट्रक के नीचे कुचले गए। दौड़ता हुआ एक शख्स तो किनारे पर आता दिखा और तभी दो और लोग इस गाड़ी के पीछे से निकले, मलबे में दबे ये महिला और ये आदमी बच गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो यहीं फंसे रह गए। ये था कहर वायनाड में इस लैंडस्लाइड का। ये वीडियो दूसरे एंगल से है, इसमें भी दिख रहा है जब लैंडस्लाइड आया तो कैसे सब कुछ उखड़ता चला गया, और उसके बाद की तस्वीरें देखिए कैसे सब बर्बाद हो गया है। लोग फंसे हुए हैं, लापता हैं, पानी का बहाव दिख रहा है, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, आठ लोग घायल हुए हैं और आठ लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। हादसा कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहाँ मल्लपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी, बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए।
1: डिजास्टर वाज हैपेंड इन वायनाड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट्स। देयर वाज एन एक्सीडेंट, नाउ सेवन पर्सन्स आर इन द हॉस्पिटल, वन पर्सन इज रिपोर्टेड दैट ही इज डाइड एंड सेवन पर्सन्स आर मिसिंग। Now the forces are there from the Meenangadi, the Wayanad itself, there was a force.
0: पुलिस NDRF की टीम रेस्क्यू कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मलबा हटाने के लिए भारी मशीनों की जरूरत होगी। अधिकारियों के अनुसार लगातार बारिश के कारण सोमवार से ही सुरंग कंस्ट्रक्शन का काम रोका गया था। ये भी कहा जा रहा है कि टनल के काम में लगे बहुत से मजदूर इसमें दबे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जहां ये सुरंग बन रही थी वहां काम कल से रोका हुआ था क्योंकि भारी बारिश थी। इस इलाके में पिछले 24 घंटे में 265 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। ।2024 में जो लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें लगभग 400 लोगों की मौत हुई थी, वो जगह भी यहां से बिल्कुल पास में है। तब वायनाड के मुंडकाई में घटना हुई थी। मॉनसून आते ही शहरों पर आफत सी आ गई है। ये पुणे का हाल है, सड़कें दरिया बन गई हैं और गलियां समंदर। बच्चे पानी में ऐसे खेल रहे हैं जैसे बीच पर। इसी पानी में गाड़ियां भी चल रही हैं। आधी से ज्यादा गाड़ियां डूबी हुई हैं।
2: पिछले कुछ घंटों से पुणे की क्या हालत हुई है ये मेरे पीछे देख सकते हो। हम पुणे के सांगवी इलाके में है और ये जो रास्ता है उसी रास्ते पर एक नदी का स्वरूप आ गया है। यहाँ पर बच्चे, पुणे की क्या हालत हुई है ये मेरे पीछे देख सकते हो। हम पुणे के सांगवी इलाके में है और ये जो रास्ता है उसी रास्ते पर एक नदी का स्वरूप आ गया है। यहाँ पर बच्चे जो है खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में लोनावला में 620 mm और पीसीएमसी में 268 एमएम बारिश हो चुकी है जो बहुत है, और इसी वजह से रास्ते जो है तालाब में बदल गए हैं। और यहाँ पे कुछ नागरिक है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या बताना चाहोगे, किस प्रकार से मतलब बारिश तो हो रही है लेकिन जिस तरह से रास्ते नदी में तब्दील हो रहे हैं, तो क्या प्रशासन से अपील करना चाहोगे आप?
3: एक तो इम्पोर्टेंट बात, बारिश ज्यादा ये हम मानते हैं, लेकिन ये जो सांगवी एरिया में इन्होंने फॉल्टी अलाइनमेंट किया है, फॉल्टी अलाइनमेंट करने के वजह से ये पानी ज्यादा जमा होके सब सोसाइटी के अंदर जा रहा है, और सोसाइटी में जाने की वजह से पर्सनल बहुत लोगों के लॉस हो रहे हैं।
0: पुणे की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये भी एक सोसाइटी है जहां घरों के अंदर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बाकायदा नाव लेकर इस परिवार को निकाला जा रहा है। सोचिए क्या हाल है कि बचाव दल को नाव लेकर सोसाइटीज में फंसे लोगों को निकालना पड़ रहा है।

0: इस वीडियो में देखिए कि कैसे पुणे के इन सोसाइटीज का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और इनमें सैकड़ों लोग फंसेंगे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। जिले में जलभराव हो गया है, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, कई जगह पेड़ गिरने की आशंका भी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पालघर में लगातार हो रही बारिश और आपदाओं के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर जिले के प्रमुख बांध लगभग 50% भर चुके हैं।
1: पालघर में पिछले 6 दिन से जो बारिश है उसका बहुत तेज प्रमाण है। ये बारिश के तेज प्रमाण के हिसाब से जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने हर प्रकार से जो डिजास्टर होने की शक्यता है उसके तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिन घरों में पानी घुसने की शक्यता है या फिर उनके घर का संपर्क टूट सकता है और उनके घरों में फ्लडिंग हो सकती है बड़े प्रमाण में, उन लोगों को हमने स्थलांतरण करने के लिए उपाय योजना किया है।
0: समस्या ये है कि अभी भी बारिश रुक नहीं रही, बल्कि महाराष्ट्र के तो कई जिले ऐसे हैं जहां आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। आज तक ब्यूरो।
2: मुंबई में तो 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज कुछ हालात भले ही संभले हो, लेकिन आज दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की पहली बड़ी बारिश हुई है और हर साल की तरह इस साल भी बारिश ने सिस्टम की पोल खोली। दिल्ली में पेड़ गिरे, गुरुग्राम में जाम लग गया और पानी भर गया। आसपास के इलाकों में ऐसे हालात हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए।
0: कायदे से दिल्ली में आज मॉनसून की पहली बड़ी बारिश हुई और दिल्ली और आसपास के इलाकों में पहली बारिश ने ही सिस्टम की पोल खोल। ये दिल्ली से सटा गुरुग्राम, एक ही बारिश में गुरुग्राम का सिस्टम एक्सपोज हो गया। सड़कें समंदर बन गई, जगह जगह वाहन फंसे हुए हैं, जाम लगा हुआ है। गुरुग्राम के बसई रोड समेत कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने मॉनसून से पहले ड्रेनेज और सीवरेज की सफाई के दावे किए थे, लेकिन हकीकत में बसई रोड समेत कई इलाकों में ना तो ड्रेनेज की सफाई हुई और ना ही सीवरेज की। नतीजा पानी भर गया।
3: मैं इस वक्त गुरुग्राम के बसई रोड इलाके में मौजूद हूं और यहां के जो हालात हैं आप देख सकते हैं साफ तौर से तस्वीरों के माध्यम से। ये जो गाड़ियों की कतार है तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी है और ये गाड़ियों की कतार इसलिए भी है क्योंकि इस इलाके में 2.5 से 3 फीट पानी जमा है और यही 2.5 से 3 फीट पानी लोगों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। न केवल लोगों के लिए बल्कि गाड़ी वाहन चालकों के लिए भी किस तरह से परेशानी है और खास तौर पे दो पहिया वाहन चालकों के लिए इस बारिश के अंदर, इस मूसलाधार बारिश के बाद जो हालात है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक स्थिति जरूर पैदा करते दिख रहे हैं।
0: सड़कों पर 2 से 3 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई है, भयंकर जाम है। बारिश के कारण पतोली चौक से सोहना चौक तक जाम लगा हुआ है और जल भराव के कारण वाहनों के पहिए थम गए।
3: और यहाँ की स्थिति आप ट्रैफिक जाम की स्थिति देखिए। नरसिंहपुर इलाके में हमने आपको दिखाया था कि किस कदर लंबा ट्रैफिक जाम है और ये 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम राजीव चौक तक जा पहुंचा है। जहां तक आपकी दूर तक नजर जाएगी वहां तक आपको गाड़ियों की लंबी कतारें, कहीं ना कहीं वाहनों के पहिए थमे हुए दिखाई दे रहे हैं और यही एक कारण है, यही बड़ा कारण है कि ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति, भीषण ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हीरोंडा चौक और इसके साथ लगते इलाकों में साफ तौर से देखी जा सकती है। दरअसल नरसिंहपुर इलाके में भारी जल भराव के चलते वाहनों के पहिए धीमे हुए।
0: दिल्ली में भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में गाड़ियों पर पेड़ गिरा है। मौके पर फायर और पुलिस की टीमें पहुंची हैं। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ियों का नुकसान हुआ है।
4: राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश के बीच एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिरा है जिसके चपेट में 2 गाड़ियां आई हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये आपकी मर्सिडीज गाड़ी है जिसके ऊपर ये गिरा है और उस दौरान इस मर्सिडीज कार के ड्राइवर इसमें मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि वो बाल बाल इसमें बच गए और जो मालिक थे वो यहीं पर मौजूद बैंक में काम करने के लिए आए थे। वहीं दूसरी गाड़ी भी इसके चपेट में आई है, एक और गाड़ी, जहां देख सकते हैं उसको हटाने का, उसके पेड़ के डाली को हटाने का कार्य जो कर्मी है पीडब्ल्यूडी के उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये जो पूरा इलाका है वो ईस्ट ऑफ कैलाश का इलाका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं करीब की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका मर्सिडीज कार है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसके मालिक जो हैं वो यहाँ पर स्थित बैंक में आए थे और उनका ड्राइवर उनको लेने आया था, तभी ये हादसा हो गया।
0: हरियाणा के करनाल के सेक्टर 13 में भी एक बहुत पुराना नीम का पेड़ गिर गया। यहाँ भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। पेड़ के नीचे एक कार और चार अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि गनीमत ये थी कि जब ये पेड़ गिरा तब कोई आसपास नहीं था, इसलिए नुकसान सिर्फ गाड़ियों का हुआ।
5: नीचे दो तीन वाहन खड़े हुए थे, उन वाहनों में थोड़ी सी चोट आई है और ये गाड़ी भी थी, बाकी बाइक और स्कूटी वगैरह थी।
6: टोटल कितने वाहन क्षतिग्रस्त हुए?
5: 4 से 5 वाहन थे टोटल।
6: तो एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई,
5: एक गाड़ी है और 3 से 4 स्कूटियां।
0: ये मध्य प्रदेश के पन्ना की तस्वीरें हैं, जहां जिला चिकित्सालय में भारी बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया, जिससे सर्जिकल और डिलीवरी वार्ड जलमग्न हो गए हैं। नवजात शिशुओं, प्रसूताओं और गंभीर मरीजों के वार्डों में करीब 1-1 फीट पानी भर जाने के कारण संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। मरीज और उनके तीमारदार बेड पर ही कैद रहने को मजबूर है। यही हाल सूरत का भी है। सूरत के महावीर कॉलेज रोड पर भारी जलजमाव हो गया। यहां तो लगातार बारिश हो रही है, सड़कें तालाब बनी हुई हैं। मुख्य सड़क पर ही पानी में कई गाड़ियां डूबी हुई हैं। घुटनों से लेकर कमर तक भरे पानी के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हैं। आज तक की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां के हालात बेहद चिंताजनक थे। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था और रफ्तार पकड़ने वाला ये इलाका पूरी तरह से थम गया है।
7: साथ के चलते सूरत शहर की सूरत किस तरह बदसूरत हो गई है ये तस्वीर बताने के लिए आज तक की टीम पहुंची है सूरत के पर्वत गांव इलाके में और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि रोड रस्तों पर यहां पर पानी भरा हुआ, साथ ही जो स्कूल का गेट है ये वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्कूल का गेट भी पानी से लबालब हो चुका है। अब दूसरी तरफ हम दिखाएंगे, ये श्री सरस्वती हिंदी विद्यालय नाम का स्कूल है और उसके ठीक सामने आप देख सकते हैं लब पानी भरा हुआ है और ये इसके चलते भी कह सकते हैं कि स्कूल को बंद रखा गया है। और इन्हीं हालातों के मद्देनजर जो है सूरत प्रशासन ने आज सूरत की सभी स्कूलों को बंद किया है।
0: मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटों में सूरत और आसपास के दक्षिण गुजरात के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर में तो गजब हो गया, यहां लगातार हो रही बारिश के बीच ही एक शादी हुई। बारिश होती रही और शादी की रस्में भी चलती रही। यहाँ वेडिंग पॉइंट में 1.5 से 2 फीट का पानी भरा हुआ था। मेहमान तो किसी तरह पहुंच गए, लेकिन जब दुल्हन पहुंची तो दूल्हे ने दुल्हन को पानी से बचाने के लिए गोद में उठा लिया। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: आगे आगे।
4: अरे उधर
3: उधर।
4: करेक्ट करेक्ट।
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
7: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
6: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह।
8: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
9: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: पापा।
15: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
16: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
15: छक्का?
16: सब कैशलेस हो गया है।
15: हाँ, ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ। तू
17: चार्ज हुआ यार।
18: बैट किसका है?
19: टाटा AIG है तो भरोसा है।
20: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
21: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
22: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
23: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
24: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
25: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
26: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
27: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
28: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
29: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से, जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
4: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
5: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
6: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल वकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
7: परमिशन लेनी चाहिए ना,
6: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
8: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
6: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।
9: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र हैं राष्ट्रपति प्रबोवो। पुलवामा हमले के दौरान भी भारत के साथ था जकार्ता। बैठक बवाल और इस्तीफे के बाद भी बाकी है राम मंदिर चोरी का सवाल। प्राण प्रतिष्ठा में खर्च समेत बहुमूल्य चढ़ावे की अलग से जांच। विपक्ष की सियासत पर बिफरे योगी। वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा।

0: सीबीआई का पहला बयान, मेरे ऊपर लगाए गए अनर्गल आरोप, एसआईटी को दिया जवाब, अनिल मिश्रा पर लगाए आरोप, कहा बिना मेरी जानकारी बैंक से करार। बिहार में सजा विधानसभा उपचुनाव का मंच, नितिन नवीन की खाली सीट, बांकीपुर से बीजेपी ने दिया अभिषेक कुमार को टिकट, जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को देंगे टक्कर। बारिश, बाढ़ से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल, जगह जगह जल जमाव, दिल्ली एनसीआर में बरसात, वायनाड में लैंडस्लाइड से खौफनाक हादसा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। मॉनसून जब पूरे देश में फैला तो उत्तर से दक्षिण तक कहीं बादल फट रहा है, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं सड़कें समुंदर हैं, कहीं गांव डूबे हुए हैं। महानगर से कस्बे तक देश के आधा दर्जन राज्यों में प्रभाव दिख रहा है। लेकिन अभी अयोध्या के चढ़ावा विवाद का जो पहाड़ टूटा है उसका असर लगातार जारी है। आज एक महीने इस पूरे विवाद को हो चुके हैं, इस्तीफा दे चुके चंपत राय की चिट्ठी आई है, लिखा है कि जल्द एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद मौन व्रत तोड़कर बोलूंगा। वहीं गोपाल राव को ट्रस्ट से बाहर किया गया है, पर न तो एसआईटी की रिपोर्ट में नाम है न कोई शिकायत इनके खिलाफ हुई है, हालांकि ट्रस्ट के लोग इनसे नाराज हैं। वहीं अनिल मिश्रा का नाम सीधे एसआईटी की रिपोर्ट में लापरवाही के रूप में दर्ज है, लेकिन अब तक इनके खिलाफ भी शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। सवाल है कि क्या ट्रस्ट का ट्रस्ट केवल छोटे लोगों पर कार्रवाई से लौटेगा, जहां ट्रस्ट अपने बड़े चेहरों को बचाने में जुटा दिख रहा है।
1: जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
2: चंपत राय जी सब दबा रहे थे, सब लीप पोत रहे थे।
3: विषय आया माननीय श्री चंपत जी के इस्तीफे की बात, तो जितने हमारे ट्रस्टी थे सब एक स्वर से नहीं हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते।
4: चंपत राय अगर दोषी नहीं है तो सीधे
5: चंपत राय जी के जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं।
2: अयोध्या चढ़ावा चोरी कांड के बाद ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके चंपत राय मौन है। 7 जून को आखिरी बार बोले जब कहा था चढ़ावा चोरी में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला।
6: हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है, यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
2: लेकिन अब चंपत राय ने मौन रहते हुए कुछ बोला है, बोला नहीं असल में लिखा है, सोशल मीडिया पर लिखा है, श्री रामचरितमानस की चौपाई लिखी है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपदकाल परिखिया है चार, मतलब विपत्ति में ही धैर्य धर्म मित्र और नारी की पहचान होती है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को विपत्ति बताते हुए चिट्ठी में चंपत राय ने लिखा है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो हर आरोप हर दावे पर खुलकर बोलेंगे। इसके साथ चंपत राय ने बताया है 1991 से संघ की तरफ से अयोध्या भेजे गए, अपने 45 वर्षों के प्रचारक जीवन को खुली पुस्तक कहा है और चिट्ठी में मंगलवार 7 जुलाई की तारीख दर्ज है। ये चिट्ठी तब आई है जब एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट के 9 पन्ने में कहीं चंपत राय का नाम नहीं आया। ये चिट्ठी चंपत राय की तब आई जब ट्रस्ट बैठक करके चंपत राय को खुद ही क्लीन चिट देने में जुटा है।
7: निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, 79 लाख से ज्यादा कैश पकड़ा गया, आप उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह है, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई?
1: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है।
2: तो क्या इसीलिए अब चंपत राय अब चिट्ठी लिखने लगे, आगे मौन भी तोड़कर बोलेंगे क्योंकि उन्हें क्लीन चिट देने की तेजी दिखती है? जबकि ये सवाल जस का तस बना हुआ है कि चंपत राय की आंखों के सामने उनका करीबी टिन्नू यादव हो या फिर दूसरे लोग जो ट्रस्ट के लोगों की सिफारिश से रखे गए वो जमकर चढ़ावा चोरी करते रहे, तो क्यों नहीं चंपत राय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है?
8: 5 तारीख को जब पैसा पहली बार बरामद हुआ तो क्या चंपत राय ने FIR कराई? आप सोचिए, मेरे घर में चोरी हो जाए और पैसा बरामद हो जाए, चोर मिल जाए, तो क्या मैं FIR नहीं कराऊंगा? तत्काल कराऊंगा। लेकिन चंपत राय ने क्या किया, चोर को बताने की कोशिश की, जो कई वर्षों से लगातार मंदिर परिसर में डकैती लूट, चाहे वो जमीन खरीद के नाम पे हो, चाहे आभूषण चोरी हो, चाहे चढ़ावा चोरी हो, सारे प्रमाण कई वर्षों से मिल रहे थे, लेकिन चंपत राय जी सब दबा रहे थे।
9: 9 पेज की SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम का तक एक बार भी जिक्र नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ट्रस्टी अनिल मिश्रा को SIT ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने का प्रमुख जिम्मेदार बताया।
0: एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के 9 पन्नों को हमने पढ़ा। इन पन्नों में चंपत राय का नाम कहीं भी सवालों के घेरे में नहीं है, लेकिन अनिल मिश्रा को कई लापरवाही चूक के लिए जिम्मेदार ठहराकर ये तक सरकार की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अनिल मिश्रा की वजह से ही चोरी और गबन के हालात बने। इसीलिए सवाल है कि जब इतना कुछ साफ है तो एफआईआर में नाम क्यों नहीं।
2: राम के सेवक जिनके दामन पर चढ़ावा चोरों पर आंखें मूंदे रखने की वजह से आरोपों का दाग लगा, वो सभी क्या इस्तीफे वाले साबुन और ट्रस्ट के पदों से विदाई के झाग से बेदाग साबित हो गए। सबसे पहले याद करिए जनवरी 2022 के इस वीडियो में अनिल मिश्रा, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आयन पहले यजमान के तौर पर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा सरयू स्नान करके वैदिक अनुष्ठान में सपत्नीक बैठने जाते हैं तो कहते हैं,
10: भगवान का काम करने में हर क्षण हर पल हर स्थिति में आनंद आता है। आज इस स्थिति में है, कभी कोई स्थिति थी, हर स्थिति में प्रभु का काम करने में आनंद आता है। राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम।
2: अनिल मिश्रा जिन पर भरोसा करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े राम मंदिर ट्रस्ट में राम काज सौंपा गया, अनिल मिश्रा जो कहते थे कि अयोध्या की छवि पूरी दुनिया में बदल गई है।
11: मेरा एक बालक है जो जर्मनी में है, चिकित्सक है। जिस दिन यहां दीपोत्सव प्रारंभ हुआ था, वो बैठ करके टीवी में अपने दोस्तों के साथ उसको देख रहा था। उसके दोस्तों ने कहा, सुधांशु तुम्हारी ये अयोध्या है, लोग तो इसको दंगाई अयोध्या कहते थे, अरे यहां तो दीपों की अयोध्या है, कितना प्रकाशित हो रही, कितना दीप्तिमान है। इस अयोध्या की छवि को कैसा लोगों ने स्थापित किया था, मान्यवर आपने आप करके अयोध्या के इस स्वरूप को दुनिया की दृष्टि में बदल दिया है। आने वाले समय में दुनिया में धर्म ध्वजा इस हिंदुत्व की पताका के रूप में, सनातन की पताका के रूप में स्थापित रहेगी।
2: लेकिन अब अनिल मिश्रा ही अयोध्या की छवि को नुकसान पहुंचाने के कटघरे में खड़े। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में काम करते रहे अनिल मिश्रा ने भले इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन योगी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी की शुरुआती जांच के 9 पन्ने चीख चीख कर कहते हैं कि अनिल मिश्रा पर उठे सवाल केवल इस्तीफे के साबुन से साफ नहीं हो सकते। एसआईटी की 23 जून की जांच रिपोर्ट कहती है अनिल मिश्रा जिम्मेदार है। अनिल मिश्रा वित्तीय मामलों नकदी जमा करने के जिम्मेदार थे। एसआईटी की 23 जून की जांच रिपोर्ट कहती है 6 फरवरी 2025 के एसओपी में सारी जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी, वो ट्रस्ट जिसकी तरफ से दस्तखत अनिल मिश्रा ने किया, लेकिन सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया। आप कहेंगे कैसे सुरक्षा उपाय, तो ध्यान से देखिए। अनिल मिश्रा ने जिस पर साइन किया उस ट्रस्ट और एसबीआई के बीच एमओयू में तय हुआ था कि भेंट और चढ़ावा पात्रों की सूची तैयार होगी। बिना लिखित इजाजत भेंट और चढ़ावा पात्रों को कहीं दूसरी जगह नहीं हटाया जाएगा। शिफ्टवार गणना होगी, निश्चित संख्या में गणना करने वालों की तैनाती होगी, बायोमेट्रिक से चढ़ावा गिनने वालों की उपस्थिति दर्ज होगी, हुंडीवार गिनती की जाएगी, हुंडियों की राशि का मिश्रण नहीं किया जाएगा, चढ़ावा गिनने वाले निर्धारित कपड़े पहने, आते वक्त और बाहर निकलते वक्त उनकी जांच होगी, काउंटिंग रूम में पर्सनल चीज कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन एसआईटी की 23 जून की जांच रिपोर्ट ये भी कहती है, जहां पेज नंबर 6 पर साफ साफ लिखा है, अनिल मिश्रा की भूमिका महत्वपूर्ण क्योंकि एसओपी बैंक संघ समन्वय कैश काउंटिंग से सीधे जुड़े थे। तलाशी न होने के बारे में अनिल मिश्रा को बताया गया, फिर भी प्रभावी निर्देश इन्होंने नहीं दिए। चढ़ावा गिनने वाले निर्धारित कपड़े पहने ताकि जेब और मोजे में पैसा भर कर न ले जा सके, लेकिन अनिल मिश्रा ने सुधार करने का कोई आदेश नहीं दिया। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है चढ़ावा गिनने वाले कमरे में निजी वस्तु लेकर लोग ना जाएं, ये रोका जाना था, लेकिन अनिल मिश्रा ने यहाँ पर भी आदेश नहीं दिया। रिपोर्ट कहती है कि अनिल मिश्रा तलाशी की निर्धारित व्यवस्था को शिथिल यानी ठंडे बस्ते में डाल देने के उत्तरदायी। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अनिल मिश्रा अपने दायित्वों के प्रति उदासीन रहे, जिससे चोरी और गबन की घटना हो। तो क्यों ना योगी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी के रिपोर्ट के पन्नों की ही माने तो अनिल मिश्रा इस चढ़ावा चोरी के वो चौकीदार थे जिन्होंने न सिर्फ चढ़ावा चोरों के लिए ताला खोल कर रखा और खुद बाहर सोते रहे, बल्कि जब इनको बताया गया कि मिश्रा जी आप ऐसा करेंगे तो चोरी हो जाएगी, जरा जाग जाइए, तो अनिल मिश्रा वापस फिर से आंख बंद करे रहे। जैसे आंख बंद करके बैठे हैं ट्रस्ट के सदस्य भी, जो सोमवार की बैठक में खुद को बड़ा आहत राम मंदिर की चढ़ावा चोरी पर बताते रहे। लेकिन जिन अनिल मिश्रा के नाम पर एसआईटी ने खुलकर लिखा है कि लापरवाही हुई, जिनकी वजह से चोरी और गमन हुआ, उन अनिल मिश्रा के नाम FIR कराने में ट्रस्ट के लोगों के हाथ रुक जाते हैं।
7: SIT की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को बहुत जिम्मेदार ठहराया गया है, उनके नाम है, लेकिन चंपत राय के नाम नहीं है। तो अनिल मिश्रा दोषी है आपको लगता है?
1: दोषी है कि नहीं ये SIT निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। SIT जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है।
12: मेरे हाथों में SIT की जो 9 पन्ने की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के 6ठे पन्ने पर अनिल मिश्रा का जिक्र है, और ये जिक्र कहता है कि अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी निगरानी रखने की रही है। यानी कि आसान भाषा में समझाऊं तो सुरक्षा मानकों की निगरानी के तौर पर अनिल मिश्रा ट्रस्ट में एक्टिव रहे, लेकिन उनके द्वारा ही इस पूरे नेक्सस में अनदेखी की गई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट यह भी कहती है कि जब डोनेशन स्कैम की जानकारी मिली उसके बाद भी अनिल मिश्रा ने कोई कदम नहीं उठाया। तो कुल मिलाकर अनिल मिश्रा की भारी चूक इस पूरे चंदा चोरी मामले में उजागर होती है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि ट्रस्ट की बैठक में तो उनका इस्तीफा कबूल किया जाता है, या यूं कहें कि उनका इस्तीफा कबूल कर उन्हें आसान रास्ता दिखा दिया जाता है। सवाल तो यह भी बनता है कि जो ट्रस्ट 8 लोगों को जेल भिजवाता है, FIR भी कराता है, क्या वही ट्रस्ट अपने पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ भी मुकदमा कराएगा? ये सवाल इस वक्त अयोध्या, देश और प्रदेश ट्रस्ट से पूछ रहा है।
0: हो सकता है कि आगे की जांच जो अभी SIT की जारी है उसमें अनिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े, लेकिन जितनी जांच रिपोर्ट अब तक सामने आई है वो यही बताती है कि अनिल मिश्रा लगातार कई लापरवाहियां करते रहे।
2: जबकि बात सिर्फ इतनी नहीं, अनिल मिश्रा खुद खर्राटा मारकर चढ़ावा चोरी होने देते रहे, बल्कि जिस सुभाष श्रीवास्तव नाम के रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को गणना प्रभारी के रूप में रखा गया कि चलो ये सब की निगरानी करेगा, तो सुन लीजिए आपको हैरानी होगी कि सुभाष श्रीवास्तव को काम देने की सिफारिश भी अनिल मिश्रा ने की। मतलब अपनी जगह जिसे चौकीदारी पर लगाया वो भी सिफारिशी, वो भी आरोपी।
7: सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। SIT की रिपोर्ट पढ़ने पर ऐसा लगता है मानो चढ़ावा चोरी का रास्ता खुला रखने का पूरा इंतजाम कर लिया गया था। SIT की रिपोर्ट के पन्ना नंबर 7 पर लिखा है कि चढ़ावा जिस कमरे में आता है गिना जाता है, उस कमरे के बाहर SIS कंपनी के लोग चढ़ावा गिनने वालों की जांच पड़ताल करेंगे, उनकी फ्रिस्किंग करेंगे। लेकिन यह सब कुछ लगभग बंद हो गया था। बैंक के साथ जो करार था 2025 के फरवरी में भी उस नियम को ढीला कर दिया गया, यानी कि लौटते वक्त फ्रिस्किंग पहले ही इसको कम कर दिया गया, और 2025 में तो बकायदा नियम बना दिया गया कि इस तरीके के की फ्रिस्किंग या जांच कभी कभार ही होगी। यानी कि चढ़ावा लूट का पूरा कार्यक्रम पहले से ही जारी था।
13: SIT की रिपोर्ट जो है उसमें जैसे कि अभी अनिल मिश्रा जी का भी एक नाम सामने आता है कि उनको
3: हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ईमानदार व्यक्ति हैं, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं।
8: सारे प्रमाण कई वर्षों से मिल रहे थे लेकिन चंपत राय जी सब दबा रहे थे, सब लीप पोत रहे थे। चंपत, अनिल, गोपाल राव, अवैध रूप से जो गोपाल राव आया था जमीन खरीदने बेचने के लिए, सुना कर्नाटक तक पैसा ले गया, अयोध्या फैजाबाद में सुना मैंने कई जमीन उसने प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से खरीदी है। तो ये सब जो डकैती चोरी करने आए थे भ्रष्टाचारी, इन्होंने कितना अपमान किया और क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया? अगर ईमानदार थे मुकदमा दर्ज कराते।
2: केस ट्रस्ट ने दर्ज कराया लेकिन केवल उन 8 कर्मचारियों पर जो CCTV में चोरी करती दिखी। पर जब SIT की रिपोर्ट में ही लिखा है कि अनिल मिश्रा की लापरवाही से, अनिल मिश्रा की वजह से चोरी और गबन के हालात बने, तो ट्रस्ट ने कैश लिए इनके खिलाफ FIR कराने से खुद को छोड़ दिया, क्योंकि ये बड़ा नाम है। इसीलिए खुद को आहत बताकर 3 घंटे तक बैठक करने वाले ट्रस्ट पर ट्रस्ट को लेकर अब भी सवाल बना हुआ है, जहां मामले को जड़ तक जाकर खत्म करने की जगह इस्तीफे के नाम पर लीपने पोतने का काम होने लगा है।
0: इस बीच एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठे हैं उस पर अब चंपत राय का जवाब मुहर लगाता दिख रहा है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट को लेकर चंपत राय का जो जवाब आया है उसके अनुसार चंपत राय ने अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, अनिल मिश्रा पर सवाल उठाए हैं। 6 फरवरी 2025 को ट्रस्ट और एसबीआई के बीच जो एमओयू साइन हुआ जिसमें अनिल मिश्रा के ट्रस्ट की तरफ से दस्तखत हैं, उसको लेकर चंपत राय का कहना है कि उनकी जानकारी के बिना ये एमओयू बैंक से किया गया था। चंपत राय का कहना है कि जब हर एमओयू पर उनके साइन होते थे तो 6 फरवरी 2025 के एमओयू पर उनके साइन क्यों नहीं कराए गए। तो अब सवाल है कि क्या अनिल मिश्रा ने जानकारी छिपाकर ऐसा एमओयू साइन किया जिसमें चढ़ावा गिनने के दौरान पारदर्शिता वाले नियमों को ढीला किया गया। तो सवाल बड़ा है और इसके साथ ही जांच को एक अहम दिशा मिलती हुई दिख रही है। अब हम आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं क्योंकि जितनी जांच वहां पर चल रही है, चाहे एसआईटी की हो चाहे फिर अयोध्या पुलिस की हो, समर्थ श्रीवास्तव उसको फॉलो भी कर रहे हैं। समर्थ, ये समझाइए कि इस एमओयू को के साइन होने के बाद का ही पूरा मामला है कि कहां कहां पर इस तरीके से चोरी होती रही उस चंदे की। दूसरा, अब अनिल मिश्रा के ऊपर अगर चंपत राय की तरफ से इस तरह की चीजें कही जा रही हैं तो हम माने कि आगे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और इस जांच की दिशा बहुत सटीक स्पेसिफिक होगी।
13: श्वेता, देखिए अयोध्या में अगर आपने राम जन्मभूमि आए और आपने राम मंदिर के आसपास देखा और चंपत राय और अनिल मिश्रा को आपने हर बड़ी बैठक हर बड़े कार्यक्रम में एक साथ देखा होगा और कुछ लोग तो राम लखन की जोड़ी तक कहते रहे हैं, लेकिन चंपत राय का जो आज का बयान है वो सीधे तौर पर अनिल मिश्रा को कटघरे में खड़ा कर देता है। ये बयान एसआईटी को चंपत राय की तरफ से दिया गया है और सबसे अहम बात इसमें यह है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हस्ताक्षर जो है, हस्ताक्षर उनके नहीं लिए गए एमओयू के उस डॉक्यूमेंट में जो पिछले साल के फरवरी महीने में साइन किया गया था। आखिर वो डॉक्यूमेंट क्या था, उसके बाद ही सारी चीजें शुरू हुई हैं। उसमें ड्रेस कोड की बात थी, उसमें एक तरीके से और लोहे के गेट लगाने की बात थी, बिना जेब के कपड़ों वाले ही लोग गणना करेंगे, ये सारी बातें थी। तो आखिर उस डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर चंपत राय के क्यों नहीं हुए, ये आरोप चंपत राय लगा रहे हैं, जबकि 2020 से लेकर जितने भी बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी में राष्ट्र एक तरीके से जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से चंपत राय के साइन हुए हैं। अब चंपत राय ने कुल मिलाकर अनिल मिश्रा को घेरा है, ये साधारण नहीं है। अयोध्या के लिए तो बिल्कुल भी ये घटना साधारण नहीं है। अभी तक तो एसआईटी की जांच चल रही थी, पेपर्स आ रहे थे, चंपत राय का एक पत्र भी आया जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी है और तमाम बातें कही है, लेकिन अब सीधे तौर पर अनिल मिश्रा को घेरते हुए चंपत राय दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बयान में उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि जितनी सुरक्षा व्यवस्था है या नई कंपनी के साथ टेंडर्स हो गए या बैंक कर्मियों से मुलाकातें या जो भी चीजें हैं वो मैक्सिमम अनिल मिश्रा के तौर पर ही देखी जाती थी, तो कहीं ना कहीं वो केवल अनिल मिश्रा ही नहीं बैंक की भूमिका को भी संदिग्ध बताते हैं चंपत राय। और ये कहते हैं कि तरीके से क्या तो बैंक के उच्च अधिकारियों को मालूम नहीं था कि रूल्स और रेगुलेशन गणना के हैं क्या, या फिर उन्होंने खुलकर इस मामले में लापरवाही।
0: और उसमें ये भी देखना है कि क्या एसआईटी की जांच में भी इस तरह के ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये जो चीजें चंपत राय बता रहे हैं वो ऐसे ऑब्जर्वेशंस नहीं है जो उनके अपने अनुभव से, अब दस्तखत हैं उस पर्टिकुलर तारीख पर दस्तखत हैं, तो सीधी सी बात हो जाती है कि क्या एसआईटी ने भी अपनी जांच में यह पाया कि जो लापरवाही है वो अनिल मिश्रा के तरफ से हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया समर्थ श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे थे। अब सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को लेकर भी उठ रहा है, जो एक तरफ तो क्लीन चिट चंपत राय को देते हैं, दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही पर पल्ला झाड़ लेते हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर पूछिए तो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं जी वो तो एकदम निर्दोष। ट्रस्ट के ताकतवर सदस्य अनिल मिश्रा को लेकर पूछिए तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं उनका फैसला एसआईटी करेगी, और खुद की जवाबदेही पर जब सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से होता है तो जवाब आता है हम तो पुणे से सब कुछ देखते थे।
14: बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे?
5: मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष है उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे, उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था।
2: अपनी कोषाध्यक्ष वाली जिम्मेदारी तो गोविंद देवगिरी पुणे से बैठकर हवा में निभाते रहे और अब कहते हैं चढ़ावा चोरी की बात सुनकर इनको दुख वेदना शर्म लज्जा सब होने लगी।
15: ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया, ये हमारे लिए दुख की वेदना की और शर्म की बात है।
2: इतना कुछ होने लगा है तो क्यों नहीं खुद गोविंद देवगिरी ट्रस्ट से अपनी जवाबदेही को लेकर इस्तीफा देते हैं।
7: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
1: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।
2: तो फिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने की आवश्यकता क्यों? क्यों नहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा पर FIR कराते? क्यों चंपत राय के माफी मांगने से जुड़े सवाल पर ये बचने लगते?
7: आखिरी सवाल ये बता दी, कि क्या चंपत आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
1: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
7: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
2: ये तो हालत है, मानो जल्दबाजी है कि बस SIT की जांच में जो 8 लोग का नाम सामने आया उनको ही सजा दिलाकर बाकी चेहरे बचा लिए जाएं, जिसमें गोविंद देवगिरी को लेकर भी सवाल आता है। गोविंद देवगिरी जो पुणे से ऑडिट करने वालों को भेजकर अपने कोषाध्यक्ष वाले कर्तव्य की इतिश्री करते रहे, जिनको इतना भी नहीं पता चला कि जिस ट्रस्ट के ये कोषाध्यक्ष हैं उसके कोष से चढ़ावा चोरी होता जा रहा है, लेकिन इनको वो जरूर पता चल गया जो SIT को भी पता नहीं चल पाया।
15: अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबी आ रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा, इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है। उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा यह सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो, यह करवाया गया, ऐसा भी मुझे एक बार लगता है।
2: मतलब अपनी जिम्मेदारी वाली दृष्टि नहीं, लेकिन इनके पास सियासी दिव्य दृष्टि है, जिनको अब ये लगने लगा कि CEO की नियुक्ति हो जाएगी तो फिर कभी चढ़ावा चोरी नहीं होगी।
15: एक CEO के अभाव में यह सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ।
2: तो ये बात ट्रस्ट बनते ही क्यों नहीं कह दी? क्यों इतने लंबे वक्त तक वो पदभार उठाते रहे जिसके लिए खुद को ही योग्य नहीं मानते, और नहीं मानते तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते?
16: इस पूरे विवाद में योगी आदित्यनाथ एक तरफ जांच तो दूसरी तरफ सियासी आंच दोनों को लेकर आक्रामक हैं। विपक्ष जब सवाल कर रहा है तो आज मुख्यमंत्री योगी ने जवाब में पूछा है कि वक्फ के घोटालों पर विपक्ष का मुंह क्यों बंद रहता है।
17: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई, एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी, ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था।
18: इन लोगों की एक कुटिल चाल है, और इस कुटिल चाल में मैं इसीलिए कहता हूं, इस कुटिल चाल को देख करके अब गिरगिट भी शर्माने लग गया होगा कि चलो मुझसे भी तेज रंग बदलने वाली कोई एक नई प्रजाति आ गई है, वो समाजवादी पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में, जो कितनी तेजी के साथ रंग बदलती। कल तक लेक बाबरी ढांचे के लिए आंसू बहा रहे थे, आज आज राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए किस प्रकार के वक्तव्य देकर के अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं।
16: अब बात मानसून की, जिसकी वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा या तो पानी में डूब गया है या फिर पहाड़ों से गिरते पत्थर मलबे की जद में है। इसीलिए हम खबरदार कर रहे हैं कि बारिश में पहाड़ों पर जाने से बचें, क्योंकि कब कहां से भारी पत्थर मलबा आ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस डर को केरलम में हुए एक बड़े हादसे ने सच कर दिया। वायनाड में तेज बारिश हो रही है, इसी के चलते सुबह पहाड़ से मलबा गिरा और तस्वीर देखकर सारा देश हैरान रह गया। यह हादसा एक ब्रिज के पास हुआ जहां काम चल रहा था, लेकिन हादसे के वक्त मजदूर नहीं थे, इसीलिए बड़ा हादसा होने से बच गया। दूसरा दर्दनाक हादसा हिमाचल में हुआ, जहां माता के मंदिर से लौट रहे परिवार की गाड़ी पर पहाड़ से पत्थर आकर गिर गया।

पहाड़ पर पानी का सैलाब, बहते पत्थर बेहिसा, खबरदार पहाड़ी इलाकों में जाने की अभी सोचना भी मत। ये मानसून का रौद्र रूप जगह है केरल का वायनाड, जो अपनी खूबसूरती के साथ लैंडस्लाइड के लिए भी जाना जाता है। वायनाड में सुबह 11:15 पर लैंडस्लाइड होता है। पहाड़ से गिरी मिट्टी और मलबे में एक तेल टैंकर कागज के खिलौने की तरह बहता हुआ कैमरे में कैद होता है। वायनाड में जब ये घटना हुई, तब लैंडस्लाइड के बाद मलबे की एक तेज लहर टैंकर को अपने साथ लेकर आती। इस हादसे में कई लोग दब जाते, वहीं कई लोग घायल हो जाते। सीसीटीवी तस्वीर को देखकर पता चलता है कि

0: मौजूद नहीं था, लेकिन इंजीनियर और सुरक्षा कर्मियों के मलबे और मिट्टी के नीचे दबे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। अगर वहां काम चल रहा होता तो यह और बड़ी त्रासदी हो सकती थी।
1: अनफॉर्चुनेट डिजास्टर वाज हैपेंड इन वायनाड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट्स देयर वाज एन एक्सीडेंट नाउ 7 पर्संस आर इन द हॉस्पिटल 1 person is reported that he has died and 7 persons are missing. Now the the forces are there from the Meenangadi, the Wayanad itself there was a force. They reached on the spot and another force will be reaching there.
2: Rescue operations abhi ho rahe hai udhar. 5 baje tak agar hum dekhe to official death toll 3 hai. Lekin officials ka ye kehna hai ki ye death toll badhegi kyunki bahut kuch log udhar abhi bhi stuck hai. और बहुत समय हो चुकी है तो उनको वो उधर से अलाइव रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पूरी कोशिश हो रही है। दो मिनिस्टर्स हैं वहां पे, रेवेन्यू मिनिस्टर एपी अनिल कुमार और एग्रीकल्चर मिनिस्टर टी सिद्दीक, दोनों को उधर रेस्क्यू ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट करने के लिए भेजा है। और 6 लोग अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पे है, उनका कंडीशन, उनका हालत बिल्कुल ठीक है। जो भी ट्रीटमेंट उनको अभी चाहिए वो दे रहे हैं हॉस्पिटल में। और मिनिस्टर ने इंसिडेंट को एक मैनमेड डिजास्टर बोला है।
0: एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मलबा हटाने के लिए भारी मशीनों की जरूरत होगी। अधिकारियों के अनुसार लगातार बारिश के कारण सोमवार से सुरंग कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था। दो साल पहले भी वायनाड में एक के बाद एक 3 भूस्खलन हुए थे जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। वायनाड केरल के उत्तर पूर्व में है। ये केरल का एकमात्र पठारी इलाका है जो मिट्टी, पत्थर और उसके ऊपर उगे पेड़ पौधों के ऊंचे नीचे टीलों वाला इलाका माना जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक केरल का 43% इलाका लैंडस्लाइड प्रभावित है। वायनाड की 51% जमीन पर पहाड़ी ढलाने हैं, इसीलिए यहाँ लैंडस्लाइड की आशंका बहुत ज्यादा बनी रहती है। यह हादसा भी 2 साल पहले हुए लैंडस्लाइड की तरह खतरनाक था, लेकिन साइट पर काम बंद होने की वजह से जान का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर खबरदार किया है कि कुदरत के गुस्से को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
3: केरलम में जो कुछ हुआ उसे मानव निर्मित भूस्खलन बताया जा रहा है। केरलम सरकार इसकी जांच करने की बात कर रही है कि वायनाड में ये लैंडस्लाइड क्यों हुई। हिमाचल में भी लैंडस्लाइड बढ़ने के पीछे अंधाधुंध निर्माण को दोष दिया जाता है, जहां एक परिवार भूस्खलन का शिकार हो गया।
0: लैंडस्लाइड यानी वो घटना जब भारी बारिश या पहाड़ की मिट्टी कमजोर होने से मिट्टी, चट्टान और मलबा अचानक ढलान से नीचे बहुत तेज गति से खिसकता है। ऊंचे पहाड़ और ढलान होने से मिट्टी आसानी से खिसक जाती। वायनाड में भी यही हुआ। भारत की करीब 12.6% जमीन लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र में मानी जाती। इसमें भी हिमालय का इलाका सबसे संवेदनशील है। भारत में जून से सितंबर के बीच सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। वायनाड से पहले सिलीगुड़ी में लैंडस्लाइड। सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ने वाले अहम राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर भूस्खलन होने से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। भूस्खलन से न सिर्फ बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने गिरी बल्कि मिट्टी और पेड़ भी गिरे। इस हाईवे पर यातायात को सामान्य करने और इस मलबे को हटाने में काफी समय लग सकता है। लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए इस राजमार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई। लैंडस्लाइड की सबसे खौफनाक तस्वीर हिमालय के चंबा में देखी, जहां चलती कार पर पहाड़ी से चट्टान गिरने से एक 14 साल की बच्ची की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। ये हिमाचल के चंबा के भरमौर का ढकोन बन्नी सड़क मार्ग जहां पर हादसा हुआ। दूर खड़े लोगों ने इस हादसे का वीडियो बनाया, जो बहुत साफ तो नहीं दिखता, लेकिन वीडियो बना रहे लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के चश्मदीद बन गए। जिस गाड़ी पर पहाड़ से पत्थर गिरा वो परिवार धर्मशाला का था, बताया जाता है कि परिवार बन्नी माता के दर्शन करके लौट रहा था लेकिन लैंडस्लाइड का शिकार हो गया।

0: भारत में हर साल लैंडस्लाइड से सड़क, हाईवे, रेल लाइन तबाह हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, इसमें रामबन भी शामिल है। वहीं जम्मू के किश्तवाड़ और डोडा जिले में रविवार रात को बादल फटने से कीचड़ और पत्थरों का सैलाब आ गया। फ्लैश फ्लड की चपेट में निर्माणाधीन क्वार जल विद्युत परियोजना के पास खड़ी गाड़ियां आ गई जो मलबे में दब गईं। इसकी वजह से नेशनल हाईवे 244 पर आवाजाही ठप हो गई। एनएच 244 को शुरू करने के लिए लगातार काम हो रहा है। कीचड़ में से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। बुलडोजर से रोड पर मलबा हटाकर रोड बनाई जा रही है।
1: काफी नुकसान हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। अभी हमारी मशीनरी जो है डिप्लाई है यहाँ पे, एनएच टोटली ब्लॉक था और मल्टीपल जगह पे एनएच 244 ब्लॉक था। अभी तो ठाठी से प्रेमनगर स्ट्रेच बिल्कुल ओके है। प्रेमनगर के पोर्शन पे आप देख रहे होंगे कि ये प्रेमनगर का पोर्शन भी अभी वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है।
2: मेरी गाड़ी लगी हुई थी, मॉर्निंग में मेरे को कॉल आई कि यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है आपकी, तो आप आगे यहाँ पे आए तो बहुत दहशत का माहौल था, बहुत फ्लड था। मेरे पास वीडियो भी है। तो फिर मैंने रिसेंटली यहाँ पे एक्चुअली मैं जॉब भी करता हूँ, हाईवे मैनेजर हूँ यहाँ पे। मैंने ऑन स्पॉट एक्सीवेटर मंगवाई, जेसीबी मंगवाई, बहुत ट्रैफिक वो कर दिया।
1: देखिए, देर रात 3 बजे के बाद मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही सुबह का सवेरा रोशनी हुई तो हम सारे मार्केट वाले सुबह मंदिर जाने और यहाँ पे चश्मा नहाने के लिए जा रहे थे सुबह 5 बजे के समय। तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, रोड पूरा ब्लॉक था, रोड पे पूरे बोल्डर्स बहुत बड़े बड़े थे।
0: जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के थाथरी में भारी बारिश से आई अचानक बाढ़ ने तबाही मचा दी। बाढ़ और भूस्खलन के कारण रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान हुआ है। डोडा में अब मलबे में फंसी गाड़ियों को निकालने और प्रभावित स्थल से मलबा हटाने का अभियान चल रहा है।
3: रात को जब बारिश होगी, बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड ब्रश की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मेरे मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहां बाहर आ गए तो वहां से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे, तब तक सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया।
0: जम्मू की तरह हिमाचल में भी बारिश हो रही है। शिमला के रिज मैदान चर्च के पास भूस्खलन से यहां सुरक्षा दीवार ढह गई। सोमवार दोपहर की इस घटना के बाद सड़क की मरम्मत में प्रशासन जुट गया है, जो मानता है कि सड़क को दोबारा बनाने में कई दिन लग सकते हैं।
4: पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है तो बाकी राज्यों में पानी से आम लोगों का हाल बेहाल है। मुंबई से वसई विरार का रेल नेटवर्क टूट गया है। ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेन थम गई, इससे यात्रियों को जान हथेली पर रखकर रेलवे ट्रैक पर जाना पड़ा। इसकी एक ड्रोन तस्वीर आई है जिसमें बड़ी संख्या में रेल यात्री रेल पटरियों पर चलते हुए दिख रहे हैं। देखने में ही ये कितनी डरावनी तस्वीर लग रही है। बीच स्टेशन पर लोगों को उतरना पड़ा और ट्रैक पर चलने की ये मजबूरी देखिए, जहां पर पानी के नीचे ट्रैक नजर ही नहीं आ रहा।
5: इस वक्त हम वसई रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे हैं। पालघर जिले के इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है। और यही वजह है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर पानी होने की वजह से गाड़ियां वसई से आगे विरार तक नहीं जा रही हैं। और लोग, ये आप देख लीजिए, जहां तक आपकी दूर नजर जाती हो वहां तक लोग ही लोग हैं जो रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। ये भाई साहब, आप लोग कितनी दूर जाएंगे अभी?
6: अभी यहाँ से विरार जाना है, विरार जाना। 2 घंटा कम से कम लगेगा पैदल जाने में, 2-2.5 घंटे।
5: 2-2.5 घंटा पैदल चलेंगे आप ही?
7: विरार भी, विरार, विरार।
5: विरार ही जाना है। आपको कहाँ जाना है?
7: विरार जाना है।
5: कैसे?
7: पैदल जाएगा, ट्रेन का नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो
5: क्या करूँगा।
8: सुपारा जाना है।
5: 5 किलोमीटर तो होगा ये?
8: लमसम इतना है 5 किलोमीटर, जो कि वहाँ हम लोगों को पैदल जाना है यहाँ वसई स्टेशन से, और बाकी और लोग जा रहे हैं जो कि उनको विरार जाना है।
5: तो आप यहाँ अब रेलवे ट्रैक के सहारे चलते जाएंगे?
8: रेलवे ट्रैक के सहारे ही चलते,
5: लेकिन संभल के देखिएगा यहाँ पे, जैसे ये ऐसे गड्ढे भी हैं यहाँ पर,
8: देखते हुए जाएंगे आराम से। हाँ,
5: कोई हादसा ना हो जाए। तो आइए लोगों से और बात, आपको कहाँ जाना है?
9: नाला सबड़।
5: चल के जाएंगे?
9: चल के ही जाना।
5: ख्याल रखिएगा कहीं गिरेगा नहीं कहीं पर।
10: नाला सोपारा जा रहा हूँ, पैदल चल के चलना पड़ रहा है।
5: क्या लग रहा है आज जिस तरीके से पैदल चलना पड़ रहा है, हर मॉनसून में यही करना पड़ता है?
10: हर साल का ऐसे ही है,
5: ऐसे ही हर साल। आपको भी हर साल कभी ना कभी ऐसे चलना पड़ता है? कितना किलोमीटर ऑन एन एवरेज चलती होगी? कितना दूर चलना पड़ेगा अभी आपको?
11: बहुत सारा, एक डेढ़ घंटा लगेगा।
5: डेढ़ घंटा? सो देख लीजिए, काफी सारे इश्यूज तो हैं ही, जैसे यहाँ पे देख लीजिए इतना बड़ा गड्ढा है जो पानी से दिख नहीं रहा है, तो लोगों को केयरफुल रहना होगा पूरे रास्ते में, ट्रैक्स के साथ ही चलेंगे वो, ये सब तमाम चीजों को इनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आप देख लीजिए पूरा रेलवे ट्रैक पर पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को अपने, क्योंकि लोकल ट्रेन नहीं मिल रही है, हालांकि देख लीजिए यहाँ एक पंप भी चल रहा है, लेकिन आखिर ये पंप पानी फेंकेगा कहाँ, क्योंकि पूरे आसपास वसई इलाके में, यहाँ पर नाला सोपारा में पूरा पानी आसपास शहर में भी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये पानी कहीं जा नहीं पा रहा है, यहीं फंसा हुआ है और लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही, क्योंकि ट्रेन वहां नाला सोपारा तक नहीं जा रही है।
4: महाराष्ट्र के कई इलाकों में रेड अलर्ट है। नासिक में तो आज बादल फटने की आशंका थी, जिसके चलते एहतियातन त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक को बंद कर दिया गया था।
0: महाराष्ट्र का पुणे, जहां लगातार हो रही बारिश से इमारतें गिर रही, पुणे में ही भारी बारिश से गिरे मकान में दबकर 3 लोगों की जान चली गई। पालघर में बारिश से रेल लाइनों के पानी में डूबने से लोकल ट्रेन बीच में रोकनी पड़ी, स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई।
12: अभी हम क्या करें आप बताओ ना मुझे, इसके आगे हमको कुछ नहीं मालूम है कि वसई जाके कैसे जाएंगे हम लोग, क्योंकि मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था ऐसी जगह, बट वसई जाके हम लोग कैसे जाएंगे?
13: और कुछ लोग क्या बताना चाहेंगे, कहाँ जा रहे थे आप बताना, कुछ बोलेंगे ट्रेन बंद है इस बारे में कुछ जानकारी?
14: नाला सोपारा में भी जल भराव इतना है ना, वहाँ पे से भी घर पे भी नहीं जा सकते और दुकानें भी बहुत सारी बंद है और ट्रेनें भी बंद है, लाइट भी आ रही है फिर आधे घंटे में चले जा रही है, ना कोई घर में रह पा रहा है।
13: तकलीफ झेल रही है ट्रेन वजह से?
15: मैं आया हॉस्पिटल से, अभी भी मेरे पैर में काटा है, अभी अभी गाड़ी नहीं है।
0: महाराष्ट्र में आफत की बारिश बरस रही, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके पुणे और नासिक। पुणे शहर का बारिश से हाल बेहाल है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, घरों में पानी घुस चुका है। पुणे की ये सोसाइटी देखिए जो पूरी तरह पानी में डूबी है, जिससे लोगों को नुकसान हुआ है। हालत ये हो चुकी है कि सोसाइटी के अंदर अपने ही घर में फंस चुके लोगों को बोट से रेस्क्यू किया जा रहा है। जब लोग अपने घरों से पानी निकालने और सामान बचाने में जुटे, तब उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि गायब। यही बात जनता को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है।
16: बहुत बारिश ज्यादा है ये हम मानते हैं, लेकिन ये जो सांगवी एरिया में इन्होंने फॉल्टी अलाइनमेंट किया है, फॉल्टी अलाइनमेंट करने के वजह से ये पानी ज्यादा जमा होके सब सोसाइटी के अंदर जा रहा है और सोसाइटी में जाने के वजह से पर्सनल बहुत लोगों के लॉस हो रहे हैं।
17: हर ईयर यही प्रॉब्लम है कि जो गाड़ियां है वो सब पानी में भीग जाती है, पूरा गाड़ी जो पर्सनल जो हमारा नुकसान है वो तो हो ही रहा है। और जितने भी यहाँ के सांसद है वो हर साल आते हैं, बताते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में या धूप में अपन करेंगे, अभी बारिश में नहीं हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सीधा आते हैं तो नेक्स्ट बारिश में।
0: महाराष्ट्र में बारिश से ठाणे भी ठहर गया, मुंबई गोवा हाईवे भी बारिश की वजह से प्रभावित दिखा, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी जाम दिखा, जहाँ पर कई किलोमीटर तक गाड़ियां अटकी हुई। महाराष्ट्र के नासिक पालघर के लिए मौसम विभाग ने रेड वार्निंग जारी की है। मुंबई रायगढ़ रत्नागिरी ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट है।
5: मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में बताया गया था कि आज ऑरेंज अलर्ट है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। हालांकि बारिश इस वक्त ज्यादा नहीं हो रही है, काले काले बादल जरूर मंडरा रहे हैं, तेज हवाएं समुद्र किनारे खासतौर से चल रही हैं और यही वजह है कि कोस्टल एरिया में आप देख लीजिए यहाँ पे पुलिस के लोग खड़े हैं और कोशिश इनकी यही है कि ज्यादा लोग समुद्र के किनारे नहीं जाएं।
18: भी जो हानि हो रही है वो कुछ इस तरह के फ्रीक इंसिडेंट्स है, जहाँ पे पेड़ गिरना ये एक बात है, या अभी मैनहोल का ओपन रहना, इस पे भी बीएमसी ने पिछले कई सालों में बहुत मेहनत करके सिस्टमिक चेंजेस बहुत लाए हुए हैं, बट फिर भी कभी कभी ये इंसिडेंट्स इस तरह का होता है, उसको रोकने की जरूरत है।
0: महाराष्ट्र का पालघर भी बारिश से बहुत प्रभावित शहर पानी में डूबा हुआ है। पालघर तालुका के साखरे गांव वरई सफाले मार्ग पर बारिश का पानी इतना भरा है कि कार डूब गई। जब कार डूबी उस वक्त उसमें 3 लोग फंसे थे, इनमें से एक मरीज भी शामिल था। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, रस्सी की मदद से डूबी हुई कार को बाहर निकाला। कार में फंसे तीनों लोग सुरक्षित बच गए। पालघर की एक और तस्वीर देखें, जहां बारिश से पूरे इलाके ने मानो पानी में समाधि ले ली। यहां लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। एनडीआरएफ के जवान बोट लेकर देवदूत की तरह सामने आए। करीब 200 लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। ये तस्वीर भी पालघर की है। इलाका है वीरेंद्र नगर। सोमवार को यहाँ ऐसी आफत बरसी, कई घरों में बारिश का पानी भर गया, सड़कें समंदर नजर आई, घरों के दरवाजे पर खड़े लोग राहत का इंतजार करते दिखे। संकट की इस घड़ी में स्थानीय लोग खुद एक दूसरे की मदद करने आ गए। देखिए किस तरह रस्सी और ट्यूब की मदद से लोगों को खींचा जा रहा है। इन सब के बीच एक भावुक करने वाली तस्वीर भी दिखी। एक मासूम बच्ची पानी से गिरे घर में फंस गई, जिसे स्थानीय नौजवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। सरकार की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। नासिक में बादल फटने की आशंका को देखते हुए त्र्यंबकेश्वर मंदिर एहतियातन बंद कर दिया गया है।
4: देश के कई राज्य भले ही बाढ़ और बारिश की चपेट में हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर बारिश के लिए तरसता रहा। 1 जून से 1 जुलाई के बीच बारिश के जो आंकड़े आए वो खबरदार करते हैं, क्योंकि भारत के आधे से ज्यादा जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। 40 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, 91 जिलों में ज्यादा बारिश हुई है, 196 जिलों में सामान्य बारिश हुई है, 306 जिलों में सामान्य से कम बारिश होने से सूखे का डर है, 98 जिले ऐसे हैं जहां अभी तक न के बराबर बारिश हुई है, 2 जिलों में बारिश ही नहीं हुई है। तो भारत भर में दक्षिण पश्चिम मानसून ने नाटकीय रूप से वापसी की है, जिससे जुलाई के पहले सप्ताह में देश में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। हालांकि अभी भी बड़ा इलाका पानी के लिए तरस रहा है। अभी आपने देखा कि देश के 400 से ज्यादा जिले हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली हो या गुरुग्राम, थोड़ी सी बारिश शहर को थमने के लिए मजबूर कर दे रही है। ये दिल्ली और दिल्ली से लगते हुए कुछ इलाके हैं। सोनीपत का इलाका है, गुरुग्राम है, उत्तर प्रदेश में मथुरा का इलाका, गुजरात में सूरत, नवसारी, और यहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अचानक अप्रत्याशित बारिश के कारण जो तस्वीर बनती है, जो एक तरीके से शहरी बाढ़ की स्थिति होती है, वो देख रहे हैं। अब आपको मध्य प्रदेश की खबर बताते हैं, जहां बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम ऐसा फेल हुआ कि पन्ना के जिला अस्पताल में सर्जिकल वार्ड हो या डिलीवरी वार्ड, हर जगह पानी भर गया। जहां मरीज भर्ती हैं, वहां दावा है कि 1 फीट तक पानी रहा। इससे संक्रमण का खतरा फैल सकता है। लोग किसी तरह बेड पर पांव ऊपर करके बैठे रहे। अस्पताल में बारिश का पानी नाले के पानी के साथ मिलकर भर जाने से सब परेशान है। अब बात इंडोनेशिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की, जहां मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। इंडोनेशिया ब्रह्मोस और एयर-टू-एयर अस्त्र मिसाइल खरीदेगा। ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया था, जिन्होंने पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था।
9: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। सलामत सियांग।
0: इंडोनेशिया की संसद से पीएम मोदी ने सीधे चीन को संदेश दिया। अब तक चीन भारत को घेरता है, लेकिन अपने ही घर में भारतीय हथियारों के निशाने पर होगा। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल और अस्त्र मिसाइल को लेकर सौदा किया है। दोनों ही मिसाइलों ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मुंह तोड़ जवाब दिया था। यानी इंडोनेशिया ने जिस सुखोई 30 से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, उसमें ऑपरेशन सिंदूर वाली अस्त्र मिसाइल लगेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अस्त्र भारतीय रक्षा निर्यात का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस के इंडोनेशिया को निर्यात से स्वदेशी हथियारों को वैश्विक पहचान मिलेगी।
4: डेंगू, महज 1 मच्छर से फैलने वाली ये जानलेवा बीमारी आज हर शहर, हर कस्बे और हर घर तक पहुंच रही है। आज हम डेंगू से जुड़ी एक बड़ी गलत फहमी दूर करने आए हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि एक बार डेंगू संक्रमण होने के बाद दोबारा नहीं होता। यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। दरअसल डेंगू वायरस के 4 अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, Denvi 1, Denvi 2, Denvi 3 और Denvi 4। 4 स्ट्रेन का मतलब है कि हर स्ट्रेन से डेंगू होने का खतरा है। अगर आपको एक बार पहले स्ट्रेन से डेंगू हो चुका है तब भी आपको बाकी तीन स्ट्रेन से डेंगू हो सकता है। यही वजह है कि एक व्यक्ति को जीवन में चारों अलग अलग स्ट्रेन से संक्रमण होने की आशंका हो सकती है। हालांकि ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, इसीलिए यह जरूरी है कि पहले डेंगू हो चुका हो तब भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मच्छरों से बचाव के उपाय पहले की तरह ही अपनाते रहें, घर और आसपास पानी जमा न होने दें, एडीज मच्छर को पनपने से रोकें। तेज बुखार, सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, बदन दर्द या त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हमें साथ मिलकर डेंगू को हराना है तो ठान लीजिए कि हम साथ लड़ेंगे डेंगू से। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
22: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
23: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
24: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
25: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
26: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
27: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
2: गहरी सफाई।
3: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
2: गहरी खुशबू
3: और प्यार भरी भी।
2: कैसे?
3: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति।
4: इसीलिए फेना ही लेना।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
7: पापा।
8: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ,
9: ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
9: चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
14: वी आर ओवर जिमी।
15: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
16: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है।
17: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
18: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
19: वाह वाह वाह वाह।
18: सेबी और NSE का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
20: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
21: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
22: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
23: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
24: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
25: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
26: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
5: आगे आगे
6: अरे उधर
5: उधर किधर
6: करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: We are over, Jimmy.
10: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
11: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
12: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: आगे आगे
6: अरे उधर
5: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: हमने तब भी सवाल किया था,
14: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
13: हम आज भी सवाल करते हैं,
14: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
13: ऑपरेशन अग्नि,
14: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
13: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
15: In association with
16: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
18: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
19: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
20: परमिशन लेनी चाहिए ना,
19: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
21: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
19: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: आखिर में मौसम का हाल, क्योंकि बारिश बाढ़ से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल हैं, जगह जगह पर जल जमाव है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई है और वायनाड में लैंडस्लाइड से खौफ का माहौल। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना ने सालों तक साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखाई, भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने चाइना के ही दबदबे वाले इलाके में एक अभेद ब्रह्मोस बेल्ट तैयार कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान जिसे एक बात पर सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे। एक तरफ दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल को लेकर ऐतिहासिक रक्षा समझौते हुए, वहीं रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण सबांग पोर्ट को मिलकर विकसित करने पर मुहर लगी है। इसका अर्थ हम आपको समझाएंगे, यानी चाइना के सबसे बड़े समुद्री व्यापारिक रास्ते स्ट्रेट ऑफ मलाका के मुहाने पर अब भारत की सीधी मौजूदगी होगी। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस ईवीएम पर भारत के तमाम राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं, आज उसी ईवीएम और चुनाव प्रबंधन का लोहा मानकर इंडोनेशिया ने इसे अपने देश में लागू करने के लिए भारत के साथ हाथ मिलाया है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया गया विकास का रास्ता बाबा बर्फानी के अस्तित्व पर भारी पड़ गया है। जिस अमरनाथ यात्रा को 57 दिनों तक चलना था, वहां पवित्र शिवलिंग सिर्फ 4 दिनों में 90% से ज्यादा पिघल गया। 29 जून को जो शिवलिंग 12 फीट का था वो 6 जुलाई आते आते 1 फीट से भी कम रह गया। आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है या फिर पहाड़ों पर इंसानी दखल है, लाखों लोगों की भीड़ है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार मर्यादा क्यों लांघ रहे हैं। इस बार उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बेहद ही हल्कापन दिखाया है, बल्कि एक एआई वीडियो भी उसमें जोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाड़ी का रेड कार्ड वापस करवाने के लिए फीफा प्रेसिडेंट को 3 बार फोन लगाया। मतलब हर जगह दखल अंदाजी फीफा वर्ल्ड कप के मैदान में भी ट्रंप की दखल अंदाजी। और आखिर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल में ऑल इज वेल या इंजन के साथ खेल। लेकिन आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत चाणक्य की उस नीति से करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी के कई देशों पर धौंस जमाने की खूब कोशिश की, एक ऐसी रणनीति पर काम किया जिससे वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों पर सीधा दबाव बढ़ा। और तो और, चाइना ने साउथ चाइना सी के साथ भारत की घेराबंदी के लिए हमारे पड़ोसी देशों को साधने की खूब कोशिश की। खुद एक शार्क की तरह इन देशों को छोटी मछली समझकर लोन दिया, पहले पैसे दिए लोन के तौर पर और बाद में अपने आधुनिक हथियारों की भी इन देशों को सप्लाई शुरू कर दी। यानी पैसा भी चाइना का, हथियार भी चाइना का, और ये सब कुछ हुआ। और हमारे देश में आज तक चाइना की इस रणनीति पर चर्चा होती है और ये दिखाया जाता है कि चाइना बहुत आगे की सोचता है। सही बात यह है कि चाइना बहुत आगे की सोच कर चलता है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि भारत ने इसी चाइना को कैसे अपनी ब्रह्मोस बेल्ट में फंसा लिया है, भारत कितनी आगे की सोच रहा है। हम जानते हैं कि हमारे देश में कुछ लोगों को बात बात पर चाइना की तारीफ करने की आदत सी हो गई है और उन्हें हमारा ये विश्लेषण परेशान करेगा। पहले थोड़ी ये तस्वीरें देख लीजिए।

0: 8 सालों के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के द्विपक्षीय दौरे पर पहुंचे तो उनका राजधानी जकार्ता में शानदार स्वागत हुआ। ये इसलिए भी खास था क्योंकि इस बार भारत और इंडोनेशिया अपने कूटनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने वाले थे और दोनों देशों के बीच पहली बार ऐसे समझौतों पर सहमति बनने वाली थी जिन पर अब तक सिर्फ चर्चा ही हो पाती थी। दोनों देशों के बीच कुल 20 बड़े समझौते हुए जिनमें सबसे बड़ा समझौता ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हुआ। समझौते में लिखा है कोऑपरेशन ऑन ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हासिल करेगा और दोनों देश रक्षा क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाएंगे। अब यहां तक तो यह खबर विशुद्ध रूप से एक रक्षा समझौते की लगती है, लेकिन हकीकत में बात सिर्फ इतनी नहीं है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है, यानी इंडोनेशिया में 17,000 से ज्यादा द्वीप हैं और उनके आसपास कई महत्वपूर्ण ट्रेड रूट हैं, यानी व्यापार के रास्ते। जैसे इनके पास मलाका स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट है और लोम्बोक स्ट्रेट है। इनमें मलाका स्ट्रेट अहम है जहां से चाइना अपना 60% समुद्री व्यापार करता है और इसी वजह से वो इस क्षेत्र में अपनी दादागिरी दिखाता है। मलाका स्ट्रेट जहां से चाइना का 60% व्यापार होता है। अब इंडोनेशिया ने तय किया कि वो अपनी सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा मजबूत करेगा और इसीलिए उसने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला लिया है। इससे अब इंडोनेशिया की समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ेगी, तटीय रक्षा यानी समुद्री सीमा की रक्षा मजबूत होगी और किसी भी संभावित हमले के खिलाफ उसकी जवाबी क्षमता बढ़ जाएगी। यानी अगर आप देखें तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी है वो इंडोनेशिया पर चाइना के दबाव को कम करेगी और ना सिर्फ कम करेगी बल्कि भारत साउथ चाइना सी में एक ब्रह्मोस बेल्ट बनाएगा जिससे चाइना को चिंता जरूर होगी। कैसे, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा समझाती हूं। तो देखिए, हम जिस ब्रह्मोस बेल्ट की बात कर रहे हैं, यह ब्रह्मोस बेल्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे चाइना का जो दबाव रहा है अभी तक, अगर आप देखिए तो हम सबसे पहले तो आपको दक्षिण चीन महासागर जो है वो दिखा रहे हैं। इसी के साथ ये तमाम देश जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, जिनमें हम वियतनाम दिखा रहे हैं आपको, फिलीपींस दिखा रहे हैं, अगर आप देखें तो ये चाइना और ये तमाम देश अलग अलग जगहों पर किस तरह से उनका वर्चस्व है ये आपको दिखता है। तो ऐसे में जो चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि वो इन तमाम देशों पर न सिर्फ बड़े बड़े लोन लेकर देकर किसी तरीके से उनको पैसे देकर लोन देकर कम उस पर उनका उन पर वर्चस्व करे, अपने हथियार भी उनको बेचता है। तो ऐसे में इस जरिए से भी वो उन पर किसी ना किसी तरीके से वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये किस तरह से 1100 किलोमीटर का जो ये रेडियस है, ये इन देशों से आप देखिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन ये लो, ये देखिए, ये 1100 किलोमीटर की दूरी चाइना से हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे ही आप यहां पर देखिए तो ये भी 1100 किलोमीटर की दूरी और ये जो पूरा एक ट्रायंगल बनता हुआ यहां पर दिख रहा है, ये अपने आप में बताता है कि भारत किस रणनीति पर आगे चल रहा है। तो भारत ये सोच कर चल रहा है कि एक पूरा ब्रह्मोस बेल्ट वो बनाएगा जिसके जरिए चाइना जो इस पूरे इलाके में अपना वर्चस्व रखने की कोशिश कर रहा है उसे वो तोड़ेगा। अब ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए खास है क्योंकि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से दुश्मन के जहाजों, समुद्री ठिकानों और जमीन पर मौजूद सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। अगर ये देश चाइना के दबाव के बीच भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीद रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि इससे चाइना क्यों परेशान होगा। ऐसा भी नहीं है कि इंडोनेशिया भारत से सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, दोनों देशों के बीच अस्त्र मिसाइल के लिए भी समझौता हुआ है जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब इंडोनेशिया हमसे इन अस्त्र मिसाइलों को भी खरीद रहा है और ये कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ साल पहले तक दुनिया में भारत की छवि एक ऐसे देश की थी जो दुनिया में अलग अलग देशों के पास जाकर उनसे क्या करता था, हथियार खरीदता था, लेकिन आज हम दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहे हैं और हमारा रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए हो गया है जो साल 2013-14 से 5,500% ज्यादा है। अब ये हमारे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत सारे लोग इस बढ़ते जो रक्षा निर्यात है उसकी बात नहीं करना चाहते, और यही है हमारे देश की कटुता भरी राजनीति। खैर, यहां बात सिर्फ मिसाइल्स और हथियारों की नहीं है, हथियार तो बाकी देश भी इन देशों को देते हैं। भारत ने इससे आगे जाकर कुछ ऐतिहासिक किया है। भारत और इंडोनेशिया ने यह तय किया है कि दोनों देश आपसी सहयोग से सबांग पोर्ट को विकसित करेंगे। यह इंडोनेशिया का सबसे अहम बंदरगाह है जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर मौजूद है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे, ये देखिए, तो इसमें आपको सबांग पोर्ट को स्ट्रेट ऑफ मलक्का का एंट्री पॉइंट भी कहते हैं, और इसीलिए यह सबांग पोर्ट इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। चाइना के लिए इसे मलक्का डिलेमा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो समझिए। चाइना क्या करता है, वो लगभग अपना 80% जो तेल है ना, 80% तेल, कच्चा तेल, 60% से ज्यादा व्यापार, पूरा जो उसका ट्रेड है वो इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से करता है। आसान भाषा में कहें तो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक समुद्री रास्ता है, ठीक उसी तरह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी एक अहम समुद्री रास्ता है, और इसी समुद्री रास्ते पर चाइना काफी हद तक निर्भर करता है। 80% कच्चा तेल, 60% व्यापार यहीं से गुजरता है, और इंडोनेशिया उसके ठीक नीचे। अब चाइना अपनी जरूरत का कच्चा तेल भी यहां से मंगाता है और अपना निर्यात भी इसी रास्ते से करता है। कल को अगर यह रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बंद हो गया तो चाइना अपना माल दुनिया को भेज ही नहीं पाएगा, और यही कारण है कि अब जब भारत इस समुद्री रास्ते के एंट्री पॉइंट के करीब पहुंच गया है, एंट्री पॉइंट कहे जाने वाले सबांग पोर्ट को इंडोनेशिया के साथ मिलकर विकसित करने वाला है, तो इसे बहुत अहम माना जा रहा है। और इसके पीछे एक कारण यह भी है कि सबांग पोर्ट से भारत के निकोबार प्रोजेक्ट की दूरी सिर्फ 160 किलोमीटर है। यानी सबांग पोर्ट में भारत की मौजूदगी का मतलब है हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसका दबदबा बढ़ना, पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में और मलक्का स्ट्रेट में अपनी पहुंच को आसान और प्रभावी बनाना। यह इतना बड़ा है और इतना महत्वपूर्ण समझौता है कि आज हमारे देश में यह सबसे बड़ी हेडलाइन होनी चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में इस डील की जगह ईवीएम की चर्चा हो रही है। इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि इंडोनेशिया ने भारत की ईवीएम को अपने देश में लाने का फैसला किया है। इसके तहत भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया के चुनाव आयोग के बीच समझौता हुआ है। जिस ईवीएम से आप अपनी सरकार चुनते हैं, जिस ईवीएम पर आपने देश के अंदर इतना बवाल देखा है, वो इंडोनेशिया लेना चाहता है, और उसका उद्देश्य है कि इंडोनेशिया में भारत के सहयोग से भारत जैसी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना। सोचिए हमारे देश में ईवीएम पर कितने सवाल उठते हैं, लेकिन इंडोनेशिया कह रहा है कि वो भारत की ईवीएम और भारत के चुनाव प्रबंधन का कायल है, और हमसे सीख कर वो अपने देश के चुनावों की व्यवस्था सुधारना चाहता है, और भारत के अनुभव और तकनीकी सहयोग से इंडोनेशिया की अपनी ईवीएम बनाना चाहता है। और बात यहां पर सिर्फ इंडोनेशिया की नहीं है, दुनिया में 28 देश ऐसे हैं, 28, जिन्होंने भारत के चुनावी प्रबंधन और सहयोग के लिए समझौते किए हैं, जबकि कुछ देशों में भारत की ईवीएम भी इस्तेमाल हुई है। लेकिन सोचिए हमारे देश में विवाद होता है, आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी इन मशीनों में गड़बड़ी साबित कर पाई है क्या, आप भी जानते हैं। ईवीएम को छोड़िए और आप इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का यह बयान सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कई योजनाएं लागू की है जिन्हें उनकी सरकार ने भी कॉपी करने की कोशिश की। वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के करियर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, सुनिए।
1: I don't want to be involved in domestic Indian politics. I'm a friend of all Indians. But I want to admit one thing, and my close associates and colleagues will testify that I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. I'm an admirer, and when I, even before I became president, I studied the policies of your prime minister. And because there are no copyright, you know, I copied many of his policies. But Prime Minister Modi graciously allowed me to copy his policies, so I cannot be sued in any court.
0: तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कॉपीराइट नहीं है तो मैं फॉलो करता हूं, कॉपी करता हूं, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे ऐसा करने भी दिया. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि उनकी किसी योजना पर कोई कॉपीराइट नहीं है और वो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं.
2: तो हमारा नाता भी इतना मजबूत है और राष्ट्रपति जी मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है. न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है. सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है.
0: अब सोचिए कि अगर इंडोनेशिया भारत के अच्छे कामों की सराहना कर सकता है तो फिर इस पर चर्चा देश के अंदर भी होनी चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम मानते हैं कि ये विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको राजनीति से ऊपर रखना ही अच्छा रहता है. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बीजेपी के नेता नहीं है, वही कह रहे हैं जो उन्होंने भारत के फैसलों से महसूस किया, लेकिन हमारे देश में आपको राजनीति में इतना खुलापन कभी नजर नहीं आएगा. खैर, इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राज्य सम्मान से भी नवाजा, जिसे बिंटांग अदिपूर्णा कहते हैं. बिंटांग का अर्थ है सितारा यानी स्टार, और अदिपूर्णा का अर्थ है सर्वोच्च, पूर्ण या उच्चतम. इसीलिए बिंटांग अदिपूर्णा का अर्थ मोटे तौर पर सर्वोच्च सम्मान का सितारा या सर्वोच्च श्रेणी का सम्मान होता है. हमारे देश में कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि यह पुरस्कार पहली बार बनाया गया और पहली बार ही भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया, जबकि यह दावा गलत है, पूरी तरह गलत. इस पुरस्कार की स्थापना साल 1959 में हुई. नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इंडोनेशिया की तरफ से. उनसे पहले यह सम्मान भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को साल 1995 में उनके मरणोपरांत मिला था, जब इंडोनेशिया अपनी आजादी के 50 साल मना रहा था. इसके अलावा ये पुरस्कार कई दूसरे वैश्विक नेताओं को भी मिल चुका है, जिसमें क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो, पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, ब्रिटेन की पूर्व महारानी क्वीन एलिजाबेथ को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. और अब यही पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मिला है. देखिए.

खैर, अब तक हमने आपको इंडोनेशिया के बारे में कूटनीतिक और राजनीतिक बातें बताई, लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया के हिंदुओं ने अपनी पहचान को आज तक कैसे संरक्षित रखा। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। 28 करोड़ 80 लाख लोगों की आबादी में 87% लोग मुसलमान हैं, 87%, जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश है, जहां 145 करोड़ की आबादी में लगभग 80% हिंदू है। यानी भारत दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश है और इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, और आबादी की ऐसी संरचना के बाद भी भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे के सबसे मजबूत सहयोगी हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल होते हुए भी भगवान श्री राम का स्मरण करता है। इंडोनेशिया में रामायण का मुख्य और सबसे प्रसिद्ध संस्करण काकावीन रामायण है। यह 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच मध्य जावा के मेदांग साम्राज्य में प्राचीन जावानी भाषा में लिखा गया था, और यह जावानी संस्कृति का अभिन्न अंग है, और वहां के लोक नाटकों में प्रमुखता से इसका खूब मंचन भी किया जाता है। इंडोनेशिया में भी हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी बाली में रहती है, और ये वही बाली है जहां भारत के लोग आजकल सबसे ज्यादा छुट्टियां मना रहे हैं। बाली की कुल आबादी 43 लाख है, जिनमें सबसे ज्यादा लगभग 84% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 13.5% मुसलमान और 2.5% ईसाई धर्म के लोग इस द्वीप पर रहते हैं। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, तब उससे पहले इंडोनेशिया में दो ही धर्मों का प्रभाव था, एक था हिंदू धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। लेकिन बाद में जैसे जैसे यहां इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ, हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता चला गया, और एक वक्त ऐसा भी आया जब बाली में भी हिंदू धर्म के लोगों के सामने धर्म परिवर्तन कराने का संकट था। असल में साल 1945 में जब इंडोनेशिया को डेनमार्क से आजादी मिली, तो वहां इस धार्मिक विविधता को लेकर एक अजीब सी बेचैनी थी, और ये कहा जाता था कि हिंदू धर्म में एक से ज्यादा भगवान है, इसलिए अपने अपने भगवान को लेकर अलग अलग मान्यताएं इंडोनेशिया को एक समाज के तौर पर विकसित नहीं होने देंगी। इसलिए तब वहां की सरकार ही पांच सिद्धांत लेकर आई थी। पांच सिद्धांत क्या थे, और ये पांच सिद्धांतों को आप एक तरह से इंडोनेशिया का संविधान भी कह सकते हैं, जिसे वहां पंचशील कहते हैं। इनमें पहला सिद्धांत है, उसे मोनोथीस्ट कहा जाता है। मोनोथीस्ट का मतलब उन लोगों से है जो एक भगवान को मानते हैं। इंडोनेशिया की सरकार ने जब इस शर्त को वहां लागू किया, तो वहां रहने वाले हिंदू आबादी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। उस समय उनके सामने दो विकल्प थे, या तो हिंदू धर्म छोड़ दें, इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लें, क्योंकि इन दोनों ही धर्मों में एक ही ईश्वर को मानने का सिद्धांत है, और दूसरा विकल्प था वो हिंदू धर्म के किसी एक भगवान को ही माने और उनकी पूजा करें। तब बाली के लाखों हिंदुओं ने उस समय यह तय किया कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि वो हिंदू धर्म में ही रहकर एक ईश्वर को मानने का सिद्धांत अपनाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल था। काफी चर्चा हुई और काफी बहस के बाद साल 1964 में इंडोनेशिया की सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत यह कहा गया कि हिंदू धर्म के लोग एक ही भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हैं, और तब उन्हें एक विशेष नाम दिया गया। यह नाम था संघयंग विधि या अंचित्य। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब तब बाली और दूसरे प्रांत के हिंदुओं ने भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति के रूप में एक ही भगवान मानकर उनकी पूजा शुरू कर दी, और इस तरह वहां हिंदू समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ा। आज बाली में 650 से ज्यादा गांव में हिंदू आबादी रहती है। वहां 20,000 से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन भारत के हिंदुओं की तरह बाली के हिंदू बहुत सारे भगवानों की पूजा नहीं करते, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन पूरे इंडोनेशिया में मंदिरों की संख्या हजारों में मानी जाती है। वहां अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की संस्कृति तो मिलती है, लेकिन पूजा हिंदू एक ही भगवान की करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर हिंदू देवता गणेश जी की प्रतिमा अंकित है, तो वो गलत है। असल में साल 1998 में इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक ने 20,000 रुपए का एक नोट जारी किया था, जिस पर गणेश जी की प्रतिमा अंकित थी, लेकिन उस समय निर्धारित संख्या में ही ऐसे कुछ नोट छापे गए थे,
और फिर साल 2008 में इन्हें बंद भी कर दिया गया था और ये कहा गया था कि जिन लोगों के पास ऐसे नोट हैं वो साल 2018 तक बैंक में जाकर इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। यानी आज ये नोट इंडोनेशिया में नहीं चलता और क्योंकि इंडोनेशिया में 6 धर्म है इसलिए वहां सभी धर्मों के सम्मान में ऐसा किया जाता है। अब कल प्रधानमंत्री मोदी जावा द्वीप पर स्थित सबसे बड़े हिंदू मंदिर जाएंगे जिसे प्रम्बानन मंदिर कहा जाता है और ये 1000 साल पुराना मंदिर है। देखिए

0: a privilege to have your presence as we commemorate this important occasion.
1: Dhanyawad.
2: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि कूटनीति में सिर्फ मित्रता नहीं होती, इसमें शत्रुता भी होती है। कई बार ये शत्रुता अपनी मर्यादाओं को खोकर एक ऐसे स्तर पर चली जाती है जिसकी दुनिया ने उम्मीद नहीं की होती। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको राष्ट्रपति ट्रंप का ये पोस्ट देखना होगा जिसमें उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ अपना एक AI वीडियो पोस्ट किया और इस पर लिखा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नीडेड। अमेरिकी कानून में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अदालत का वो आदेश होता है जिसके तहत किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूर रहने या संपर्क ना करने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन यहां राष्ट्रपति ट्रंप ये शब्द किसके लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के लिए, एक महिला प्रधानमंत्री के लिए। और उस AI वीडियो पर लिखे जो लिखा है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को करीब से देखते हुए दिखाया गया, अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि इस पोस्ट के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप मजाक उड़ाते हुए ये संकेत दे रहे थे कि मेलोनी उनके पीछे पड़ी हुई हैं, इसलिए उन्हें उनसे बचाने के लिए अदालत का आदेश चाहिए। और सोचिए कितनी हल्की बात है, और ऐसा करके राष्ट्रपति ट्रंप एक देश की महिला प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह हल्कापन भी तब दिखाया है जब इससे पहले उन्होंने G7 समिट में प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात को लेकर यह कहा था कि वो उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहती थी। उन्होंने इटली के एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देते हुए शब्दशः कहा था कि प्रधानमंत्री मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांगी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मेलोनी ने राष्ट्रपति ट्रंप के इन आरोपों को गलत बताया, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप इस स्तर पर आ गए हैं कि वो उनके ऐसे AI वीडियो डालकर ये दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेलोनी उनके पीछे पड़ी हैं। हमें लगता है कि ये भद्दा और शर्मनाक है। देखिए

दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र होने का दावा करने वाला अमेरिका केवल अपनी सेना, अर्थव्यवस्था या तकनीक से नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक आचरण और गरिमा से भी अपनी पहचान बनाता था। आज भी अमेरिका की न जाने कितनी संस्थाएं हैं जो महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनके साथ होने वाले भेदभाव को लेकर अध्ययन करती हैं। लेकिन उसी अमेरिका के राष्ट्रपति जब किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश की महिला प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो यह केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं रह जाता, बल्कि अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति और राष्ट्रपति ट्रंप की मानसिकता पेश करता है। खैर, दुनिया में दादागिरी दिखाते दिखाते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फुटबॉल के मैदान तक भी पहुंच गए, और यह ऐसी खबर है जो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि पहले अमेरिका की टीम के खिलाफ के एक खिलाड़ी ने, अमेरिका की ही टीम के एक खिलाड़ी ने नियमों की धज्जियां उड़ाई, और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ऐसा ही किया। अमेरिकी फुटबॉल टीम के स्टार स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन को बोस्निया के खिलाफ मैच में विरोधी खिलाड़ी का पैर कुचलने के लिए रेफरी ने

खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला पवित्र बर्फ का शिवलिंग, जिन्हें बर्फानी बाबा कहा जाता है, सिर्फ 4 दिनों की यात्रा में कैसे पिघल गया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपने भी शायद सोशल मीडिया पर यहां वहां कुछ तस्वीरें, एक दो लाइन की कुछ खबर देखी होगी, लेकिन आज इसका अर्थ समझना चाहिए। और ऐसे तमाम लोग जो हिंदू धर्म को बचाने की बात करते हैं, जो सनातन के विस्तार की बात करते हैं, जो सनातन को बचाने की बात करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये यात्रा जो है अमरनाथ की, वो कुल 57 दिनों तक चलनी थी, लेकिन 4 दिन बीते और 90% पवित्र गुफा में, अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग 90% से ज्यादा पिघल गया। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे ज्यादा गर्मी, हिमालय क्षेत्र का तापमान बढ़ना, मौसम का पैटर्न, उसमें बदलाव, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। अब ये सारे कारण तो हैं, लेकिन इनसे भी बड़ा एक कारण है प्रकृति की कीमत पर सुविधाओं और विकास का विस्तार होना। विकास और उसका विस्तार जरूरी है, लेकिन क्या प्रकृति की कीमत पर, क्या उसके लिए प्रकृति की आहुति चढ़ाना जरूरी है? आज से 1 दशक पहले तक अमरनाथ यात्रा आसान नहीं होती थी और यात्रा का मार्ग बहुत मुश्किल होता था, लेकिन इसके बाद सुविधाओं के नाम पर अमरनाथ यात्रा के मार्ग में विकास पहुंचने लगा। गुफा तक जाने वाले रास्तों को चौड़ा किया गया, यात्रा के मार्ग में अस्थायी टेंट, दुकानों की संख्या बढ़ी, जो लंगर व्यवस्था चलती थी वो गुफा के नजदीक पहुंच गई, और विकास यही नहीं रुका। हाल ही में अमरनाथ यात्रा के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, इसी के साथ शेषनाग और पंचतरणी के बीच सुरंग बनाने पर चर्चा हो रही है। ये वो विकास है जो अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं तो दिला सकता है, लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि अगर इन सब के कारण अमरनाथ गुफा के आसपास की प्रकृति प्रभावित होती है, इसके कारण गुफा में बनने वाला शिवलिंग ही, पवित्र शिवलिंग ही 4 दिन में पिघल जाता है, तो फिर इसका क्या फायदा? सिर्फ 9 दिन पहले 29 जून को जब अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई थी, तब पवित्र बर्फ से बने शिवलिंग का आकार, जानते हैं, 12 फीट के करीब था। उस वक्त इस प्रथम पूजा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए थे, और 4 दिन बाद 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। जो पहला जत्था 3 जुलाई को अमरनाथ गुफा में पहुंचा, उसका कहना है कि पवित्र शिवलिंग का आकार उसी दिन पिघलकर सिमटने लगा था, लेकिन 6 जुलाई को स्थिति गंभीर हुई, यही शिवलिंग लगभग 90% पिघल गए, 1 फीट से भी कम। और ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ है, साल 2018 में यही पवित्र शिवलिंग यात्रा के सिर्फ 29 दिनों में पिघल गया था, 2020 में कोविड आया तब यह 38 दिनों में पिघल गया, 2022 में 28 दिनों में पिघल गया, 2024 में सिर्फ 1 हफ्ते में पिघल गया, और इस बार भी ऐसा लगता है कि ये पवित्र शिवलिंग कहीं 1 हफ्ते में पूरी तरह से पिघल ना जाए। और इधर अमरनाथ गुफा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या, उनके लिए बढ़ती सुविधाएं, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ कहां ले जा रहा है? अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज से 2 दशक पहले तक ज्यादा से ज्यादा 1 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन पर आते थे, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ने से यात्रा आसान हुई, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। साल 2003 में 1,70,000, साल 2011 और 12 में यही आंकड़ा पहुंच गया 6 लाख से ज्यादा, 6,35,000। फिर साल 2016 में जब आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया, तब श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख से कम हो गई, स्थिति वहां पर ठीक नहीं थी। फिर साल 2022 के बाद से इसमें फिर वृद्धि हुई और पिछले साल 4,10,000 लोगों ने अमरनाथ यात्रा की थी। बड़ी बात यह है कि पहले जब कम श्रद्धालु आते थे तब शिवलिंग जी का आकार 18 से 22 फीट होता था, लेकिन अब यह शिवलिंग अधिकतम 12 फीट का होता है और यह भी समय से पहले पिघल जा रहा है। बड़ा कारण यही है कि लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां अमरनाथ गुफा मौजूद है, वहां तापमान तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, और ऐसा लोगों की भीड़ बढ़ने से भी हो रहा है। आज से 2 दशक पहले तक अमरनाथ यात्रा का रास्ता पूरी तरह प्राकृतिक होता था, वहां मिट्टी और चट्टान के रास्ते होते थे और लोगों के लिए इतनी ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा तक पहुंचना आसान नहीं होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उदाहरण के लिए पंचतरणी से

गुफा तक का रास्ता पत्थरों वाला और ग्लेशियर के पानी के साथ बहने वाला प्राकृतिक रास्ता था, लेकिन अब इसी रास्ते से सोलर स्ट्रीट वाली लाइट्स, विश्राम स्थल, बिजली की लाइनें, जेसीबी जैसी मशीन्स, पहाड़ काटकर रास्ता चौड़ा करने का काम हुआ, जिसके कारण इस जगह की प्रकृति में बदलाव आया। बदलावों का असर यह हुआ कि आसपास के सभी पहाड़ बर्फ से लदे होते थे, वही पहाड़ आज मिट्टी और सूखे नजर आते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस इलाके की प्रकृति जो है वो तेजी से बदल रही है। इंसानों की भीड़ बढ़ रही है, लोग बिना गर्म कपड़ों के भी अमरनाथ गुफा तक पहुंच पा रहे हैं। सोचिए कितना तापमान में बदलाव आया है। 10 साल पहले जब लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते थे तो उन्हें थर्मल कपड़े और तरह तरह के, ये देखिए आजकल टी शर्ट में भी लोग पहुंच रहे हैं। पहले फुल स्लीव जैकेट, भारी जूते, टोपी, दस्ताने, बहुत पूरी तैयारी करनी पड़ती थी। पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता था, लेकिन अब जब इस इलाके में ज्यादा ठंड नहीं बची तो देखिए शर्ट टी शर्ट में भी लोग पहुंच रहे हैं। यही नहीं, जिस महागुणस पर्वत को लेकर यह मान्यता है कि भगवान शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को यही छोड़ा था, वो महागुणस टॉप भी पहले बर्फ के से ढका रहता था, लेकिन अब वहां का औसत तापमान बढ़ गया है। और यह हिमालय क्षेत्र में हो रहा है, जिसके कारण अमरनाथ गुफा के आसपास के 10 ग्लेशियर्स भी पिघलने लगे हैं। सरल भाषा में कहें तो जिस तरह फ्रिज में जमी बर्फ को बाहर रखने पर वो पिघलने लगती है, ठीक उसी तरह से बर्फ के विशाल ग्लेशियर्स ज्यादा गर्मी, ज्यादा तापमान के कारण पिघल रहे हैं। और अभी अमरनाथ में यही हो रहा है, इसीलिए आज हमें ये सोचना होगा कि अगर अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग ही एक हफ्ते में पिघल जाएगा तो भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये शिवलिंग बनेगा ही नहीं। फिर वहां पर कौन जाएगा दर्शन के लिए, और फिर इन सुविधाओं का हम क्या कर लेंगे? देखिए

0: अमरनाथ यात्रा में ये पहली बार नहीं हुआ है जब शिवलिंग अमरनाथ यात्रा के दौरान ही या कुछ ही दिन के दौरान पूरी तरह से अंतर्धामी हो गई है। अब की बार भी जिस अंदाज से तापमान पहाड़ों में और हिमालयी राज्यों में लगातार बढ़ रहा है और बढ़ रहा था, उससे साफ अंदाजा था कि अब की बार भी शिवलिंग कुछ ही दिन की मेहमान है। अब जिस अंदाज से शिवलिंग का आकार पूरी तरह से समाप्त हुआ है अमरनाथ गुफा में, जाहिर है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बात का बड़ा मलाल है कि उन्हें पवित्र गुफा में
1: ग्लोबल वार्मिंग और कुदरत की तबाही सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। आप केरल के वायनाड को देखिए, यह तस्वीर आपको हिला देगी, जहां आज भारी बारिश से भूस्खलन की ऐसी घटनाएं हुई जो चिंता पैदा करती हैं। वीडियो देखिए।

0: the Disaster Management Authority and the District Collector has already issued an order on 20th of this June to remove all this soil from the spot. The preliminary information is that the contractors of the tunnel has not obeyed the order issued by the Honorable District Collector and the Disaster Management Authority.
1: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको उस सवाल के बारे में बताते हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है. सवाल यह है कि क्या 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ था उस पर 113 करोड़ रुपए खर्च होना संभव है. आज ही ये बड़ी खबर आई है कि जब राम मंदिर के मामले में एसआईटी ने ट्रस्ट द्वारा किए गए खर्चों को अपनी जांच के दायरे में अब ले लिया है और ये बहुत बड़ी बात है. क्यों, उसके लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे. हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने केवल मंदिर से जुड़े बड़े कार्यक्रमों पर 124 करोड़ रुपए खर्च किए. इनमें 113 करोड़ रुपए सिर्फ 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर खर्च किए गए जिसकी अब जांच की जा रही है. और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या राम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के एक कार्यक्रम पर 113 करोड़ रुपए खर्च करना संभव है. अगर मंदिर ट्रस्ट की माने तो वो यही कहता है कि इतना खर्च प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई. इनमें सबसे ज्यादा 35 करोड़ 97 लाख रुपए सिर्फ शेड और टेंट सिटी बनाने पर खर्च हुए जहां मेहमानों और साधु संतों के रुकने की व्यवस्था की गई थी. फिर 30 करोड़ 85 लाख रुपए अक्षत पूजन अभियान पर खर्च हुए जिस पर कई लोगों को हैरानी हो रही है. अब यह वही जनसंपर्क अभियान था जिसमें अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण देशभर के लोगों तक पहुंचाने के लिए पूजित अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल बांटे गए थे. और अभी सूत्रों के मुताबिक एसआईटी यही कह रही है कि वो इस खर्च का भी सत्यापन कर रही है, यानी ये देख रही है कि क्या वाकई में इतना पैसा खर्च हुआ या यहां पर भी कोई गड़बड़ी हो सकती है. अक्षत पूजन अभियान के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विज्ञापनों पर 21 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च हुए. और बड़ी बात यह है कि विज्ञापनों पर इतना खर्च तो कई सरकारी विभागों कई सरकारी मंत्रालयों का भी नहीं होता, लेकिन यहां मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि उसने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विज्ञापनों पर लगभग 22 करोड़ रुपए 22 करोड़ खर्च कर दिए. इसके बाद सजावट और लाइटिंग पर 14 करोड़ 62 लाख रुपए, भोजन और लंगर पर 5 करोड़ 11 लाख रुपए, धार्मिक पूजन पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए, भक्ति संगीत यानी राग सेवा पर 93 लाख रुपए, मंदिर में जो साउंड सिस्टम लगाया गया था उस पर 68 लाख रुपए, बिजली और मंडल पूजन पर 43 लाख रुपए और बाकी तैयारियों पर 51 लाख रुपए खर्च हुए. और ऐसा नहीं है कि एसआईटी को शक सिर्फ इन्हीं खर्चों पर है. सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को इस बात पर भी हैरानी है कि महाकुंभ के दौरान राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी उन पर 43 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि 25 नवंबर 2025 को हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम पर 10 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि इस कार्यक्रम में 6000 लोग शामिल थे. खर्चों का यह पूरा विवरण अब संदिग्ध माना जा रहा है और हमारे पास ऐसी खबर है कि अगर एसआईटी को गड़बड़ी मिलती है तो आगे इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. और यहां आपको यह भी सोचना होगा कि जब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव मना, कल्पना नहीं की थी उस दिन किसी ने कि इस कार्यक्रम पर जो पैसा खर्च हो रहा है उस पर भी कभी शक होगा, लेकिन ऐसा है और ये सारे खर्च एसआईटी की जांच के दायरे में आ गए. बात एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से मचे बवाल की करेंगे, क्योंकि बाइक और कार चलाने वालों का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी कम माइलेज दे रही है और उनके इंजन पर असर पड़ रहा है. लेकिन सरकार, कार और बाइक कंपनियां ये कह रही हैं कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों या बाइक्स पर असर नहीं पड़ रहा. अब सवाल यही है कि क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर इतनी गफलत है तो आखिर क्यों है और अलग अलग दावे क्यों किए जा रहे हैं. E20 पेट्रोल को लेकर देश में इतनी बड़ी बहस आखिर क्यों छिड़ी हुई है कि अब हमारे पड़ोसी देश भूटान के एक अखबार ने दावा कर दिया कि उनके देश ने E20 पेट्रोल लेने से मना कर दिया. द भूटानीज की रिपोर्ट में बताया गया कि भूटान ने भारत की तेल कंपनियों से कहा है कि वो उन्हें सामान्य पेट्रोल ही दें, E20 नहीं। भूटानी अखबार के दावे ने इस मामले को इंटरनेशनल बना दिया और इस वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय तुरंत हरकत में आया। एक ट्वीट में मंत्रालय की ओर से भूटानी अखबार के दावे को खारिज किया गया और कहा कि भारतीय कंपनियों की ओर से भूटान को E20 पेट्रोल देने का कोई ऑफर दिया ही नहीं गया है, इसलिए E20 पेट्रोल के प्रस्ताव को खारिज करने का सवाल ही नहीं उठता। पेट्रोलियम मंत्रालय ने फैक्ट चेक बताकर द भूटानीज के इस दावे को खारिज किया, लेकिन इस आर्टिकल को लिखने वाले भूटानी पत्रकार तेंजिंग लेमसान ने भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालय के फैक्ट चेक पर अपनी एक पोस्ट से जवाब दिया। इस पत्रकार ने भूटान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड के लिखित जवाब को ट्वीट किया, जिसे भूटान सरकार ने E20 पेट्रोल लेने से फिलहाल इनकार किया है। पत्रकार के सवाल पर भूटान के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड ने जवाब में दिया कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में हाइड्रोक्सिल समूह होता है जो उसे हाइग्रोस्कोपिक बनाता है, यानी इसका मतलब यह है कि एथेनॉल वाला पेट्रोल नमी को आसानी से खींचता है और ऐसा होने से ईंधन की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसमें बताया गया है कि भूटान की मौजूदा अंडरग्राउंड स्टोरेज पुराने हैं, ऐसे में एथेनॉल वाले पेट्रोल को आयात करने, उसके स्टोरेज और हैंडलिंग के दौरान उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना उनके लिए मुश्किल है। इसी चिंता की वजह से भारतीय तेल कंपनियों को सामान्य पेट्रोल उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय कंपनियों को एथेनॉल वाला पेट्रोल देने से पहले बताना होगा ताकि भूटान सरकार स्टोरेज को अपग्रेड कर सके। अभी 20 पेट्रोल को लेकर भारतीय जनता की अपनी अलग शिकायतें हैं। हालांकि सरकार इसके इस्तेमाल को लेकर सकारात्मक है क्योंकि इससे सरकारी खजाने को फायदा हो रहा है। साल 2014-15 से लेकर मई 2026 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से भारत को 1,90,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का फायदा ही हुआ है। एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से भारत ने 3,10,00,000 टन कच्चे तेल का आयात कम किया है। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि कच्चे तेल का आयात कम हो और कम हो, इसीलिए E20 पेट्रोल को लेकर जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उनको लेकर सरकार बार बार जवाब दे रही है। जैसे लोगों के दो मुख्य दावे हैं। पहला दावा है E20 की वजह से माइलेज 30% तक गिर जाता है। सरकार का कहना है कि माइलेज यानी एक लीटर पेट्रोल पर आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, आपकी ये माइलेज जो है ये आपकी ड्राइविंग, टायर प्रेशर, वाहन की सर्विसिंग और एसी के इस्तेमाल पर निर्भर करता है, ईंधन के प्रकार पर नहीं। लोगों की दूसरी शिकायत क्या है? E20 की वजह से उनकी बाइक हो, कार हो, उनका इंजन डैमेज हो गया है। इस पर सरकार ने कहा है कि E20 की वजह से इंजन फेलियर की बड़े पैमाने पर शिकायतें नहीं आई हैं, बल्कि E20 को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, द ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी 3 बड़ी संस्थाओं ने टेस्ट किया, सही पाया। सरकार का दावा है कि E20 पेट्रोल से गाड़ी को नुकसान नहीं होता, लेकिन ये तर्क लोगों को खटक रहा है। सवाल ये उठे हैं कि जब E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों और बाइक को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो फिर वाहन कंपनियां E20, E30 कंप्लायंट गाड़ियां क्यों लॉन्च कर रही हैं? जाहिर है अगर E20 हर प्रकार की कार और बाइक के लिए सही है तो फिर इनके हिसाब से तो गाड़ियों के इंजन और बाकी पार्ट्स अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
3: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
5: Swing and a foul out of play off to the left.
4: Big 12 Radio.
6: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
4: Talk Sport.
7: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
4: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
8: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली
9: गहरी सफाई
8: हाँ पावर वॉश का कमाल
9: गहरी खुशबू
8: और प्यार भरी भी
9: कैसे
8: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति
10: इसीलिए फेना ही लेना
11: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है कोई विकेटकीपर, कोई फील्डर कोई बॉलर तो कोई बैट्समैन होता है और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम जैसे पीएनबी वन ऐप जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग लोन हो या एफडी सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप
12: पीएनबी वन ऐप बैंकिंग का कैप्टन

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: We are over, Jimmy.
7: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

ना ही बारिश का दौर थम रहा है और ना ही मुंबई के लोगों का संकट कम हो रहा है। 8 दिनों से मुंबई में बारिश जारी है, जिसके चलते बीते दिनों लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ी। पूरा शहर मानो तालाब बन गया, सड़कों पर पानी जमा हो गया, दुकानों में पानी भर गया, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कई जगहों पर तो रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। मुंबई में एंट्री के बाद से मॉनसून ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि दौड़ते भागते शहर की रफ्तार पर विराम लग गया। भले ही अभी मुंबई के लोगों को बारिश की वजह से कुछ राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो ये मुसीबत घटने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जताया है, लिहाजा मुंबई के लोगों का संकट कम होता नहीं दिख रहा है। बीते 7 दिनों से मुंबई से आ रही एक एक तस्वीर आसमानी आफत की गवाही दे रही है। भारी बारिश मुंबई पर कैसी मुसीबत लेकर आई है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। कुछ इलाकों में सड़क का एक हिस्सा धस गया। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई हो या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश की वजह से हाहाकार मचा। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीना दूभर कर दिया। एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर नहीं थम रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। नाला सोपारा के रेलवे ट्रैक से कुछ ऐसी तस्वीरें आई, पूरा ट्रैक डूबा नजर आया। वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा दिखा। यहाँ पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। पालघर का हाल अब भी बेहाल है। एक दिन पहले तक यहाँ घुटनों के ऊपर तक पानी दिख रहा था। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है, ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है। आज तक ब्यूरो।

0: के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सिग्नल की ताकत इतनी है कि 7 समंदर पार का साफ सुनाई देता है, लेकिन बगल में बैठे घर वालों की आवाज नहीं आती।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले मोदी, सच्चे मित्र हैं राष्ट्रपति प्रबोवो, पुलवामा हमले के दौरान भी भारत के साथ था जकार्ता। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्च के बही खाते का हिसाब। सीएम योगी ने वक्फ के लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। साक्ष्य मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। आरोपी प्रमोद नोटियाल को कारण बताओ नोटिस देकर मांगा गया जवाब। बिहार में सजा विधानसभा उपचुनाव का मंच। नितिन नवीन की खाली सीट बांकीपुर से। बीजेपी ने दिया अभिषेक कुमार को टिकट। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर को देंगे टक्कर। और बारिश बाढ़ से महाराष्ट्र समेत कई राज्य हाल। जगह जगह पानी भरा। दिल्ली एनसीआर में बारिश। वायनाड में लैंडस्लाइड से खौफनाक हादसा।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: Acoj, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक कि क्यों हमारे देश में मानसून आते ही भयंकर मुसीबतों की दस्तक देता है, क्यों जिस बारिश का हम इंतजार करते हैं, क्यों वही बारिश हमारी आपकी जिंदगी पर धावा बोलने लगती है, क्यों हमारे देश का सिस्टम मानसून वाली बरसात के आगे ध्वस्त हो जाता है। हमारे देश में, भारत में, मानसून हर वर्ष औसतन 2000 से 3000 लोगों की जान ले लेता है और करोड़ों रुपए की हमारी और हमारे देश की संपत्ति को बर्बाद कर देता है। बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से देश के त्राही त्राही करने लगता है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मानसून हर वर्ष औसतन 2000 से 3000 लोगों की जान ले लेता है और करोड़ों रुपए की हमारी और हमारे देश की संपत्ति को बर्बाद कर देता है। बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से देश के त्राही त्राही करने लगता है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमारे देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का दौर शुरू हुआ तो तबाही ने भी दस्तक दे दी। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली एनसीआर तक भारी बारिश के साथ मानसून का महाप्रहार शुरू हो गया है। देखिए,
1: मानसून का महाप्रहार, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हाहाकार। बारिश मूसलाधार, सिस्टम बंटाधार, जिंदगी पर धार का वार। बारिश ने शहरों की दुर्गति बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भ्रष्टाचारियों को धो डाला। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मुसीबत मूसलाधार। इस साल मानसून देरी से आया, लेकिन आया तो ऐसा आया कि विकास के दावों को धो डाला। शहर शहर बंटाधार हो चुके सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर कर डाला। जी हाँ, जहाँ जहाँ मानसून की बारिश हो रही है, देश पानी में गोते लगा रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या पालघर, सूरत हो या गुरुग्राम, स्मार्ट सिटी भी डूबी, विकास के सारे दावे बारिश ने धो डाले। देश भर के 23 राज्यों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हम बात मुंबई जैसे शहर की करेंगे, जहां बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट है। तो बात महाराष्ट्र के स्मार्ट सिटी पुणे की भी होगी, जहां की जनता बारिश से त्रस्त है और सिस्टम को कोस रही है। बात मुंबई से सटे पालघर जिले की भी करेंगे, जो इस वक्त मानसून की बारिश वाली त्रासदी झेल रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं मानसून का सबसे खौफनाक कहर, जो केरल के वायनाड और जम्मू कश्मीर के डोडा में टूटा है। जी हाँ, केरल के वायनाड में इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई कि मिट्टी के साथ आया पानी भारी भरकम टैंकर तक को बहा ले गया। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से ऐसी तबाही आई कि पूरा इलाका जैसे कब्रिस्तान बन गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे में दफन हो गई। 1:17 के इस वीडियो को देखिए। एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा है, एक टैंकर आपको दिखाई देगा, दो लोग बारिश में छाता लेकर खड़े हैं। पहले टैंकर बैक गियर में आता है, फिर टैंकर वाला आगे बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। अचानक लोग भागने लगते हैं। जी हाँ, भयंकर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होती है। मलबे का कहर ऐसा टूटता है कि भारी भरकम टैंकर को भी धकेलता चला जाता है। कई लोग इस मलबे की चपेट में आ जाते हैं। अब आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं कि कैसे भयंकर लैंडस्लाइड होती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और ये उसके बाग की तस्वीरें हैं। देखिए ये इलाका कैसे बर्बाद हो गया है। लोग फंसे हुए हैं, लापता हैं, पानी का बहाव दिख रहा है, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मॉनसून की इस तबाही में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये हादसा केरल में वायनाड के कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहाँ मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। पिछले साल से वायनाड और मलपुरम जिलों को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन कुदरत की एक ही चोट ने जैसे सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, मलबे में दफन हो गया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में बादल फटने से इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सब कुछ जैसे मलबे में मिल गया। डोडा में रिहायशी इलाके में मलबा आने के बाद घर और दुकान ढह गए। बादल फटने के बाद मलबा रिहायशी इलाकों में आया तो गाड़ियां मलबे में गड़ी हुई नजर आई। मलबे के साथ आए पत्थरों ने इलाके में भयंकर नुकसान किया।
2: बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड ब्रश की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मेरे मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहाँ बाहर आ गए, तो वहाँ से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे। तब तक सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि मानसून की बारिश से इस समय सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। मूसलाधार बारिश ने महाराष्ट्र में तबाही मचा कर रख दी है। लोनावला में 900 मिलीमीटर बारिश के साथ 16 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है, जबकि महाराष्ट्र से 22 जगह पर भूस्खलन की खबर आई है। और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई, पालघर, ठाणे, पुणे, नासिक समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेज सब बंद करने पड़े।
1: महाराष्ट्र में मॉनसून का आफतकाल, मुसीबत विकराल। मुंबई, पुणे, पालघर, नासिक में बारिश ने बरपाया कहर। महाराष्ट्र में मॉनसून ने खोली सिस्टम में भ्रष्टाचार की पोल। जिस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड ने मिसिंग लिंक के निर्माण पर सवाल उठा दिए और महाराष्ट्र सरकार को सुपर स्पीड से काम करवाकर एक्सप्रेसवे खोलना पड़ा, क्योंकि यहाँ सवाल बारिश से हुई लैंडस्लाइड का नहीं था, बल्कि 2 महीने पहले शुरू हुए मिसिंग लिंक और उसके उच्चतम क्वालिटी के काम के दावों का था। 6695 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ और एक ही बारिश में ढह गया। इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो फिर से दौड़ने लगी हैं, लेकिन अब स्मार्ट सिटी पुणे में मानसून से दुर्गति की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्मार्ट सिटी की सोसाइटीज में पानी भरा है, गाड़ियां पानी में गोते लगा रही हैं। लोग पानी में गोते लगाती स्मार्ट सिटी में सिस्टम कैसे ध्वस्त हो चुका है उसको कोस रहे हैं।
3: पानी आया, लाइट गया, पीने का पानी नहीं, कुछ नहीं, गाड़ियां खराब। अभी कल तो, और हम किधर जाएंगे, हमारा घर ही इधर है, गांव हमारा 500 किलोमीटर दूर है।
4: नदी का पानी ऊपर से आता है और वो सीधा वो ड्रेनेज लाइन में जाता है और ये सोसाइटी में आता है। दिस इज फॉल्टी अलाइनमेंट।
5: जितने भी यहाँ के सांसद है वो हर साल आते हैं, बताते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में या धूप में अपन करेंगे, अभी बारिश में नहीं हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सीधा आते हैं तो नेक्स्ट बारिश में। तभी तक ये यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई आके देख के नहीं जाता है।
1: और ये देखिए कैसे पुणे की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये भी एक सोसाइटी है जहां घरों के अंदर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकायदा रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन चला रही हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे पुणे की सोसाइटी का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और इसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। पालघर में मानसून का आफतकार, बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के वसई विरार और नाला सोपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। पालघर जिले में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पालघर में सूर्या नदी उफान पर है और ये देखिए कैसे सड़क और नदी मिल चुके हैं। पालघर में लगातार हो रही बारिश और आपदाओं के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर जिले के प्रमुख बांध लगभग 50% भर चुके हैं। पालघर जिले के दाला सुपारा और वसई विरार जैसे शहरों में मानसून बड़ी आफत बनकर आया है।
6: इस वक्त हम वसई रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे हैं। पालघर जिले के इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतना बड़ा गड्ढा है जो पानी से दिख नहीं रहा है। तो लोगों को केयरफुल रहना होगा, पूरे रास्ते में ट्रैक्स के साथ ही चलेंगे वो, ये सब तमाम चीजों को इनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आप देख लीजिए पूरा रेलवे ट्रैक पर पानी है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को अपने, क्योंकि लोकल ट्रेन नहीं मिल रही, हालांकि देख लीजिए यहाँ एक पंप भी चल रहा है लेकिन आखिर ये पंप पानी फेंकेगा कहाँ, क्योंकि पूरे आसपास वसई इलाके में यहाँ पर नाला सुपारा में पूरा पानी आसपास शहर में भी भरा हुआ है।
1: महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 48 घंटे में करीब 15 इंच यानी 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नासिक में भी आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र के 3.5 शक्ति पीठों में शामिल सप्तशृंगी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद है। बड़ी बात तो यह है कि भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत काफी कमजोर रही थी और जून में बारिश सामान्य से लगभग 40% तक कम दर्ज की गई। हालांकि जुलाई की बारिश ने इस कमी को घटाकर 23% कर दिया है। मानसून की कमी से ये हालात हैं और महाराष्ट्र के सिस्टम में भ्रष्टाचार के छेद की पोल खुल रही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सोचिए अगर और तगड़ी बारिश हुई तो क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
0: आपने मानसून से मची महातबाही हमारे देश में देखी, मानसून की मनमाहनी और उसकी तस्वीरें देखी। आइए अब हम आपको श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की मनमानी दिखाते हैं। ये तीनों यहां पर मौजूद हैं। ट्रस्ट के दाम पर चढ़ावा चोरी के दाग हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी अब भी जवाबदेही से भाग रहे हैं, उल्टा चढ़ावे की चोरी से जुड़े सवालों पर ये तीनों सीना जोरी पर उतारू हैं, मतलब सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। इस बीच एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठे हैं उन सवालों पर चंपत राय का जवाब आया है। चंपत राय ने खुद को तो बेगुनाह बता दिया और खुद को बेगुनाह बताते हुए चंपत राय ने पूरा का पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा के सिर पर फोड़ दिया है। दावा यही है कि जो कुछ भी गड़बड़ी हुई, चढ़ावे की चोरी हुई, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अनिल मिश्रा जिम्मेदार है। ऐसे में ट्रस्ट और उससे जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका अब और भी संदेह के घेरे में है।

0: सवालों के कटघरे में खड़ा है राम मंदिर ट्रस्ट।
1: ट्रस्ट ही जो जिस नियत से बनाया गया है वो नियत ठीक नहीं है, तो वो ट्रस्ट ही भ्रष्ट के कगार पर चला गया है।
0: चंपत राय पर इतने मेहरबान क्यों है ट्रस्टी?
2: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट की बोलती बंद क्यों?
3: बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है?
4: अनिल मिश्रा की आवाज में आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, मैंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है।
0: चढ़ावे की चोरी और ट्रस्ट की सीना जोरी,
5: पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है।
0: जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सीधा सवाल तो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आसपास मौजूद गोविंद गिरी के चेले माइक हटाने लगते हैं। ये सीना जोरी नहीं तो क्या है?
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।
5: महाराज जी आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपत आखिरी सवाल कि क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
6: नहीं सर, प्लीज अभी नहीं।
0: गोविंद गिरी को सवाल चुभ गया क्योंकि उनकी जवाबदेही से जुड़ा था। सोचिए राम धन को चोर दोनों हाथों से लूटते रहे, जिम्मेदार दोनों आंखें बूंदे बैठे रहे। राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई तो भी जिम्मेदारों की हेकड़ी कम नहीं हुई।
5: आखिरी सवाल है महाराज जी,
2: अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। एक प्रश्न पूछिए। ये आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए।
5: आखिरी सवाल ये बता दीजिए, कि क्या चंपत,
2: मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था।
0: कोषाध्यक्ष का सच से सामना हुआ तो बौखला गए, मीडिया को सर्टिफिकेट बांटने लगे ताकि अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके।
7: कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही उनके रहते, क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई?
2: इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं।
7: क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि
2: ये मीडिया में सुनो मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है, उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है, ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं।
0: सवाल कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे गोविंद गिरी की भूमिका पर है, लेकिन गोविंद गिरी खुद वकील हैं, खुद जज हैं और खुद ही अपने पक्ष में फैसला सुना रहे हैं।
5: इस पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है?
6: निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि मैंने डे वन से ही उधर ध्यान दिया नहीं, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना, ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, या हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, ये स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो SOP भी LBI के साथ बना वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, मुझे भी वह इस महीने देखने मिला।
8: गोविंद गिरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, तीन की इनमें से ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, जबकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अपने पद पर बने हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि वो इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे। सवाल यही है कि जब तक गोविंद गिरी अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों के आका को कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि गोविंद गिरी खुद को और चंपत राय को पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं।

0: ये आंख में धूल झोंकना नहीं तो क्या है? राम मंदिर के बड़े बड़े पदाधिकारियों की आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी का अधर्म हुआ। चोरी भी कोई और नहीं बल्कि पदाधिकारियों के करीबी निकले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय को संदेह का लाभ देते हुए समस्त जांच से मुक्त करते हुए राम भक्ति से युक्त बताया। मतलब न अपील न दलील, क्लीन चिट पर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया।
1: इस संपूर्ण कार्य को जिन्होंने पहले दिन से खड़ा किया है और जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
2: तो निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, 79 लाख से ज्यादा कैश पकड़ा गया, आप उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह रहे, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे चोरी हुई?
1: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है। उनके अंतकरण के हेतु में आज भी मेरा निर्दोषत्व ही निश्चित रूप से स्थिर है।
0: चढ़ावा चोरी कांड में कानून के लंबे हाथ असल खिलाड़ियों की गर्दन तक पहुंचेंगे या फिर उनकी पहुंच और रसूख के आगे कानून के लंबे हाथ बंध जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि चढ़ावा चोरी मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका और ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों का रवैया सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि राम मंदिर में हुई चोरी के बावजूद ट्रस्ट सीना जोरी पर उतारू है। ट्रस्ट ने कबूल किया कि चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी हुई, चंपत राय के करीबियों ने चढ़ावे की चोरी की, लेकिन कसूर चंपत राय का नहीं बल्कि करीबियों का है, क्योंकि चंपत राय तो इतने भोले हैं कि खुद विश्वासघात के शिकार बन गए। मतलब चंपत राय पर सवाल मत पूछो, चंपत राय को सांत्वना देने का वक्त है। वहीं SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के हर निर्णय पर सवाल ही सवाल हैं। वक्त है सवालों का जवाब देने का, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम सुनते ही ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारियों की जुबान सिल जाती है। गोपाल राव को भी ट्रस्टी दूध का धुला मानते हैं। चढ़ावे की चोरी पर ट्रस्ट की लीला समझ से परे है।
3: विषय आया माननीय श्री चंपत जी के इस्तीफे की बात, तो जितने हमारे ट्रस्टी थे सब एक स्वर से नहीं नहीं हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ट्रस्टी जो चेन्नई में रहते हैं पारासरन जी, उनने कहा नियम यह है कि स्वीकार आप करें या न करें, ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया तो अपने आप ही स्वीकार हो जाता है।
1: वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब ये हो गई सज्जनता की बात।
0: ट्रस्ट चट्टान की तरह चंपत राय के साथ खड़ा है और चढ़ावा चोरी का ठीकरा चंपत राय के करीबियों पर फोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चढ़ावे की गिनती चढ़ावे की चोरी के दोषी अनिल मिश्रा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता के साथ नहीं किया। अनिल मिश्रा पर राम मंदिर ट्रस्ट की बोलती बंद है।
1: दोषी है कि नहीं ये SIT निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। SIT जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है।
4: जैसे कि अभी अनिल मिश्रा जी का भी एक नाम सामने आता है कि उनको
3: उस विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: SIT रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा पर नामजद FIR दर्ज नहीं करवाई गई। अब SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट मौन है, ठीक वैसे ही जैसे चंपत राय ने चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में जांच पूरी होने तक मौन रहने का दावा किया है। मतलब चंपत राय ने मौन का ऐलान करके बता दिया कि वो अभी सवालों का जवाब नहीं देंगे।
5: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे खामनेई का जनाजा उठा, हॉर्मुज में बम फूटा, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए दस्तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
7: एक्जे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
10: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
11: Now in India.
12: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
13: EU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: अभी तो चार्ज हुआ यार।
7: ओले बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
11: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
10: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
11: अर्ज किया है
10: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
12: वाह वाह।

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
3: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
6: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi.
7: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
8: हमने तब भी सवाल किया था।
9: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
8: हम आज भी सवाल करते हैं।
9: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
8: ऑपरेशन अग्नि,
9: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
8: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
10: In association with
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
13: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
14: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इसमें जो बहुत फेमस सीन है वो जो
15: परमिशन लेनी चाहिए ना,
14: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
16: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
14: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।
17: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

फिर गुजरात में बारिश का कहर। सबसे पहले बात वडोदरा की। यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश से रावपुरा, नागरवाड़ा, मुक्तानंद, पत्थरगेट और मांडवी समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जबकि मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सूरत नवसारी रोड पर भारी जलभराव देखने को मिला। पुराने आजियो के पास पानी से भरे गड्ढे में एक बस फंस गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूरत में एक विशाल पेड़ चलती कार पर गिर गया, जिसमें कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पेड़ हटाया। वापी में भी सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। कई इलाकों में जलभराव के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित रही। दूसरी ओर नवसारी और डांग जिले में बारिश ने अलग तस्वीर पेश की। गांव चारों तरफ पानी से घिर गया, जिससे एक बारात घंटों तक रास्ते में फंसी रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार बारिश के बीच कई जगह झरनों पर भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जल भराव वाले इलाकों और पुराने पेड़ों के आसपास जाने से बचने की अपील की है। फिलहाल गुजरात के कई जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, राहत और बचाव दल तैनात है और लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की जा रही है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
2: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब बात ईरान में उठा खामनेई का जनाजा, तो हॉर्मुज में क्यों फूटा बम? एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। शांति समझौते के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज में कतर के टैंकर को निशाना बनाया। कतर के टैंकर पर मिसाइल से हमला किया गया और यह हमला उस समय हुआ जब ईरान में पूरा ईरान अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम मना रहा था। अब सवाल यही है कि ईरान ने हमला क्यों किया? ईरान के हमले के बाद क्या एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले का आदेश देंगे? और क्या अगले 24 घंटों में एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ना तय है?

0: हॉर्मुज पर फिर ईरान का मिसाइल अटैक। मातम के बीच ईरान ने मचा डाली तबाही। हॉर्मुज में दो जहाजों पर मिसाइल से हमला। क्या अगले 24 घंटे में फिर शुरू होगा युद्ध? क्या ईरान पर फिर हमला करेगा अमेरिका? ईरान का ऐलान, हॉर्मुज पर अब आर पार। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति ने शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत किए थे। माना यही गया कि अब अमेरिका और ईरान के बीच सुलह का रास्ता खुल गया है, लेकिन हॉर्मुज पर हुए नए हमले के बाद शांति समझौते पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने 17 जून को ईरान के साथ शांति समझौते के एमओयू पर साइन किए थे। ट्रंप के दस्तखत के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने भी समझौते पर मुहर लगाई थी। अभी बात आगे बढ़ती, उससे पहले ही समझौते के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज पर एक जहाज को निशाना बनाया। हॉर्मुज में ईरानी हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तो पलटवार करते हुए ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। करीब 48 घंटे के वार पलटवार के बाद दोनों ने एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया, लेकिन खामिनई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम के चलते अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। अब अंतिम संस्कार प्रोग्राम के दौरान एक बार फिर ईरान ने हॉर्मुज में दो जहाजों पर मिसाइल से हमला किया है। कतर ने हॉर्मुज के पास तेल टैंकर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला संभव है, क्योंकि ट्रंप खुल्लम खुल्ला धमकी दे चुके हैं कि हॉर्मुज पर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका बदला लेगा।
1: ईरान ने सीज फायर का सम्मान नहीं किया तो अमेरिका के विमानों ने उनके मिसाइल और ड्रोन स्टोर करने की जगहों और तटीय रडार साइटों पर हमला किया है। मुझे नहीं लगता कि वे सबक सीखेंगे। हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए जब हमें उस काम को सैन्य तरीके से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा होता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
0: वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि हॉर्मुज पर तेल टैंकर पर हुआ हमला उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा है। IRIB में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज में जिस तेल टैंकर पर हमला हुआ उसने अमेरिकी नौसेना की मदद से ओमान के मार्ग से गुजरने की कोशिश की। कई बार ईरानी सेना की तरफ से टैंकर को चेतावनी दी गई, लेकिन चेतावनियों को नजरअंदाज करने की वजह से टैंकर को निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान के नियमों का पालन करना होगा। अगर ईरान के नियमों का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में भी हमले जारी रहेंगे। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हॉर्मुज के पास कतरी टैंकर अल रिकायात को निशाना बनाए जाने को लेकर सीधे ईरान पर हमला बोला है। हॉर्मुज के पास से गुजरते समय कतरी टैंकर अल रिकायात को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय नियमों और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा पर एक अस्वीकार्य हमला है। हम इस हमले और इससे होने वाले किसी भी नुकसान और नतीजों के लिए इसे पूरी तरह से कानूनी रूप से ईरान को जिम्मेदार मानते हैं। अगर हॉर्मुज पर ईरानी हमले की टाइमिंग देखें तो हमले से चंद घंटे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था, या तो हम कोई डील कर लेंगे या फिर पूरी तरह काम खत्म कर देंगे, और काम खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि मैं समझौता करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मैं 9.1 करोड़ लोगों पर असर नहीं डालना चाहता। हम उनके पुलों को एक घंटे के अंदर गिरा सकते हैं, एनर्जी सप्लाई को, और उन्होंने जो भी बड़े सुंदर और आधुनिक प्लांट बनाए हैं सबको तबाह कर सकते हैं। उनके पास बहुत पैसा था, अब उनके पास पैसा नहीं है। हमने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया है, लेकिन हम उनके बिजली और पावर प्लांट को तबाह कर सकते हैं, और वो ये बात जानते हैं। ट्रंप की इसी धमकी के बाद ईरान ने हॉर्मुज में टैंकरों पर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है। ये चेतावनी ट्रंप के उस बयान के बाद दी गई है जिसमें ट्रंप ने ईरान को मिटाने की बात कही है। मैं अमेरिका के उस भ्रमित राष्ट्रपति से कहता हूँ जिसने आज 91 मिलियन ईरानियों को धमकी दी, ईरानी लोगों से सम्मान पूर्वक बात करें वरना हम आपको किसी और भाषा में जवाब देंगे। ट्रंप ने पहले भी ईरान की कई हजार साल पुरानी सभ्यता को धमकी देने के लिए इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। अमेरिका के लिए ऐसी धमकियों का परिणाम हार, हताशा और बातचीत और युद्ध विराम के लिए अनुरोध रहा था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने ऐलान किया है कि अगर ईरान के खिलाफ धमकियां जारी रही तो अमेरिका के साथ अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू नहीं होगी। अराग्ची ने ट्रंप को सीधा संदेश भेज दिया है। तेहरान वाशिंगटन समझौता ज्ञापन का भाग 13 स्पष्ट था, अगर धमकियां जारी रहती हैं तो अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू नहीं होगी। अमेरिका को एमओयू पर किए गए अपने हस्ताक्षर का सम्मान करना चाहिए। लाखों ईरानी पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे और न तो जनता और न ही ईरान के सशस्त्र बल धमकियों से विचलित हुए थे। एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका की कमजोर नस दबा दी है क्योंकि होर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल किसी कीमत में कम नहीं चाहते हैं।
2: And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people Iran if we didn't do that? And we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot four of them. We knocked down three of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. Can't do that stuff, but very soon they will end every foe. We had everybody was winning, and we're going to continue stronger, maybe stronger.
0: ईरान और अमेरिका ने शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत किए हैं, बावजूद इसके दोनों पक्षों में कई राउंड हमले हो चुके हैं। यानी शांति समझौता दोनों मुल्कों के बीच शांति की गारंटी नहीं है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच फिर से युद्ध शुरू हुआ तो इसकी सबसे बड़ी वजह खुद ट्रंप हैं। ट्रंप की धमकियां हैं। दोनों पक्षों ने अंतिम संस्कार खत्म होने तक बातचीत में एक हफ्ते का ब्रेक लेने का फैसला किया है। इस बीच कोई भी पक्ष एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएगा। वो सब नहीं है वन शॉट जो उन सब को खत्म करने के लिए काफी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं क्योंकि तब हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं होगा। ईरानी सेना ने भी ट्रंप की धमकियों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। दावा यही है कि ईरानी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। अगर अमेरिका ने नई हिमाकत की तो विध्वंसक पलटवार होगा। ईरान कूटनीति का सहारा लेगा, लेकिन किसी भी आक्रामकता या अपनी सीमा रेखा के उल्लंघन का निर्णायक जवाब देगा। ईरान के दुश्मनों का मानना था कि अली खामेनेई सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या करने के साथ साथ आवासीय क्षेत्रों पर हमले करने से इस्लामी गणराज्य का पतन हो सकता है। इसका परिणाम इसके विपरीत रहा है जिससे राष्ट्रीय एकता, जन समर्थन और इस्लामी गणराज्य की शक्ति मजबूत हुई है। सवाल यही है कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। जब ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर वार्ता का दौर जारी है तो उस दौरान धमकी का मतलब क्या है? क्या ट्रंप शांति नहीं बल्कि युद्ध चाहते हैं?
2: We've gotten concessions. Now they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material, nuclear dust, I call it. Seems to have taken off, but it's enriched material. We're getting it. We're getting it. I went in for one reason, very strongly, that Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed. 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: भले ही ईरानी सेना को तबाह करने का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि न तो ईरान झुका न ही ईरान रुका। होर्मुज पर नया हमला भी यही बताता है कि ईरान ने अमेरिका के साथ शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत जरूर किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप के आगे हथियार डाल दिए हैं। ऐसे में होर्मुज पर नए हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। अगले कुछ घंटों के अंदर अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकता है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान भी विध्वंसक पलटवार करेगा, मतलब युद्ध का सायरन बजने लगा है। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा अब ईरान के प्रमुख धार्मिक शहर कौम पहुंच चुका है। कौम में खामनेई के जनाजे की नमाज अदा की गई। इस अंतिम यात्रा के दौरान कौम शहर में भारी भीड़ जुटी। लोग अमेरिका और इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 जुलाई से शुरू हुई खामनेई की अंतिम यात्रा का अंतिम पड़ाव ईरान का मशहद होगा और वहां 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस बीच एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने को एक शत्रुतापूर्ण कदम माना जाएगा और जो भी इस यात्रा में शामिल होगा उसके साथ अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे। तो आइए हम आपको दिखाएं अमेरिका की यह धमकी किन किन देशों के लिए है।

0: खामेनेई की अंतिम यात्रा कोम पहुंची, लाखों लोग उमड़े। खामेनेई की अंतिम यात्रा में अमेरिका ने अब धमकी क्यों दी? कोम शहर में खामेनेई की यात्रा में लोगों ने लाल झंडे क्यों दिखाए? आयतुल्ला अली खामेनेई का शव इराक क्यों ले जाया जा रहा है? इराक में ईरान ने भेजी 15 राहत टीमें, कर्बला में पूरी तैयारी। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का जनाजा अब शियाओं के धार्मिक शहर कोम में पहुंचा तो विदाई देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। जनाजे में लाखों लोगों ने लाल कपड़ा चढ़ाया। ये इस्लामिक परंपरा में बदले या खून की मांग का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई से शुरू हुई खामेनेई की अंतिम यात्रा में ईरान के लोग ऐलानिया कह रहे हैं कि वो खामेनेई की मौत का बदला जरूर लेंगे। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हाफी ने कहा कि खामेनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। कोम में खामेनेई के ताबूत पर उनकी काली पगड़ी रखी गई। इस्लामी परंपरा में ऐसी पगड़ी सिर्फ बड़े धार्मिक विद्वान पहनते हैं। ताबूत पर ईरान का राष्ट्रीय झंडा भी ओढ़ाया गया है क्योंकि वो देश के सर्वोच्च नेता थे। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें ईरान के कोम शहर की जमकरान मस्जिद की हैं, जहां तक नजर घुमाइए काली पोशाक में अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए आए लोग ही नजर आएंगे। मस्जिद में पैर रखने की जगह तक नहीं है। लोग आ रहे हैं, अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और बाकी लोगों के लिए अंदर आने का रास्ता बना रहे हैं। कोम की जमकरान मस्जिद में खामेनेई और उनके परिवार के दिवंगत सदस्यों के जनाजे की नमाज अदा की गई। जनाजे की नमाज आयतुल्ला जवादी अमोली ने कराई। इस दौरान मस्जिद परिसर और आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ईरान का कोम शहर शिया मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। खामेनेई ने अपने शुरुआती धार्मिक जीवन में यही इस्लामी शिक्षा हासिल की थी, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा का ये पड़ाव खास माना जा रहा है। वैसे कोम शहर को शिया इस्लाम की वैचारिक राजधानी माना जाता है। यहाँ कई जाने माने धार्मिक शिक्षण संस्थान और बड़े आयतुल्लाहों के केंद्र मौजूद हैं। अली खामेनेई के जनाजे से जुड़ी रस्मों में इस शहर को शामिल करना शिया धार्मिक प्रतिष्ठानों के प्रति सम्मान और एकता का प्रतीक माना जा रहा है। 8 जुलाई को खामेनेई की अंतिम यात्रा इराक के नजफ और कर्बला ले जाई जाएगी। ईरान ने आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए इराक में 15 राहत टीमें भेजी हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक 55% राहत कर्मी पूरी बचाव सामग्री के साथ इराक के नजफ और कर्बला पहुंच चुके हैं। ये टीमें अंतिम संस्कार से जुड़े सभी कार्यक्रम खत्म होने तक वहीं तैनात रहेंगी और जरूरत पड़ने पर लोगों को आपातकालीन और बचाव सेवाएं देंगी। खामेनेई के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों से एक दिन पहले इराक के शहर कर्बला में तैयारियां तेज हो गई हैं। लोग कार्यक्रम से पहले ही बड़ी संख्या में कर्बला पहुंचने लगे हैं। इराक से होते हुए 9 जुलाई को खामेनेई की अंतिम यात्रा उनके पैतृक शहर मशहद पहुंचेगी। यहां इमाम रजा की दरगाह के अंदर खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, कर्बला और समर्रा में। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने जहर देकर उनकी हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ा, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और कर्बला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहां हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज तक लगातार खामेनेई की अंतिम यात्रा की कवरेज कर रहा है ऐसे में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी ने तेहरान के डिप्टी मेयर से खास बातचीत की।
1: The preparations for this number of ceremonies were actually held from several weeks ago, and based on the polls and the surveys and the understanding that we had from the people, we expected a huge number of people to turn out, especially in Tehran. So Tehran has something between 10 to 15 million people as residents. And there were suggestions from the other cities that many millions of people would turn out to Tehran too.
2: दर्शक मैं आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
4: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
7: continue to face political pressure to reach a peace deal,
6: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach.

0: खोदा बैठक वाला पहाड़, निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण एसआईटी रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं। यहाँ सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी 2 लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोलमोल जवाब क्यों दिया? राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए। अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर 1, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर 2, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर 4, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी, तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर 5, जवाब के बजाय चढ़ावा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों?

0: आज तक बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र हैं राष्ट्रपति प्रोवोवो। पुलवामा हमले के दौरान भी भारत के साथ था जकार्ता। कड़ावा चोरी की जांच के बीच प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्चे की बही खाते का हिसाब। सीएम योगी ने वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाए आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। आरोपी प्रमोद नौटियाल को कारण बताओ नोटिस देकर मांगा गया जवाब। बिहार में सजा विधानसभा उपचुनाव का मंच। नितिन नवीन की खाली सीट बांकीपुर से बीजेपी ने दिया अभिषेक कुमार को टिकट। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को देंगे टक्कर। और बारिश बाढ़ से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल। जगह जगह जलजमाव। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश। वायनाड में लैंडस्लाइड के से खौफनाक हादसा।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। साल भर पहले जो सोनम ने किया, सोनम को देख सुनकर फिर जो सिया ने किया, अब सिया के बाद वही काम तेलंगाना की संध्या ने कर दिया। सोनम और सिया ने अपने अपने पति और मंगेतर को पहाड़ से खाई में धक्का देकर मारा था, जबकि संध्या ने अपने पति को घर की छत से ही धक्का दे दिया। हालांकि इससे उसके पति की मौत नहीं हुई। फिर उसने दो और तरीके अपनाए और आखिरकार तीसरी कोशिश में पति को मारने में कामयाब रही। बस इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। अब आप ही बताइए, इन दोनों तस्वीरों का कोई मुकाबला या कोई तुलना है क्या? मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूं। अब फिर से देखिए और बताइए, कहां संध्या के इस मकान की ऊंचाई और कहां सिया की इस पहाड़ी की ऊंचाई? इस मकान की ऊंचाई कितनी होगी? मुश्किल से 15-16 फीट। और सिया वाली इस पहाड़ी की ऊंचाई तो आप सबको पता है, दो हफ्ते से आप सुन ही रहे, करीब 350 से 400 फीट। मतलब दोनों की ऊंचाई का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं। फिर भी संध्या सिया से मुकाबला करना चाहती थी। मुकाबला सिया ने जिस तरह अपने मंगेतर केतन को इस ऊंचाई से धक्का देकर मारा, ठीक वैसे ही अपने पति प्रशांत को इस मकान की छत से धक्का देकर मारने का। सिया ने जो काम 18 जून को किया था, वही काम संध्या 11 दिन बाद 29 जून को कर रही थी। जाहिर है सिया की कहानी तब तक संध्या न जाने कितनी बार मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सुन चुकी होगी। बदकिस्मती से केतन को पहाड़ी की जिस ऊंचाई से धक्का दिया गया था, उसके बाद उसके जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन संध्या ने अपने घर की जिस छत से अपने पति प्रशांत को धक्का दिया, उसके कम ऊंचाई के चलते यहाँ बचने की उम्मीद 50-50 थी। और हुआ भी है, धक्का दिए जाने के बावजूद कम ऊंचाई के चलते प्रशांत घायल तो हुआ पर बच गया। बच इसलिए गया क्योंकि उसे अपनी पत्नी संध्या के हाथों केतन की तरह नहीं मरना था, बल्कि प्रशांत को किसी और तरह से मरना था। और वो आखिर में मर भी गया। मतलब ये क्या हो रहा है? सोनम, मुस्कान, प्रियंका, निकिता को भूल जाइए, क्योंकि इनकी कहानी तो पुरानी हो चुकी है। सिर्फ 18 जून के बाद ही, यानी जिस दिन सिया ने केतन को धक्का दिया था, रवि तीसरा पति है जो अपनी पत्नी के हाथ मारा गया। तीसरा इसलिए क्योंकि ये तीनों खबरों में सुर्खियां बन चुकी है। वरना 18 जून के बाद पिछले 19 दिनों में छोटे बड़े शहरों या कस्बों में क्या पता ऐसी कई वारदात हो चुकी हो। खैर, गिनती छोड़ते हैं और रेवाड़ी की तनु को पीछे छोड़कर फिलहाल पति का कत्ल करने वाली सबसे नई कातिल पत्नी संध्या की कहानी सुनते हैं। ये 35 साल का प्रशांत है और ये संध्या प्रशांत की पत्नी। प्रशांत गल्फ में नौकरी करता है। 27 जून को ही प्रशांत 2 साल बाद तेलंगाना के निजामाबाद में अपने घर पहुंचा था। उधर पिछले 2 सालों से जब प्रशांत विदेश में था, तब इसी बीच संध्या को अपने एक पड़ोसी अनिल से प्यार हो गया। अब जैसे ही प्रशांत घर लौटा, संध्या घबरा गई। उसे लगा कि यहाँ रहने के दौरान प्रशांत को उसके और अनिल के रिश्ते की फनक लग जाएगी, लिहाजा उसने अनिल के साथ मिलकर अपने पति प्रशांत को रास्ते से हटाने की एक बेहद आसान साजिश रची। इस साजिश का ख्याल संध्या और अनिल को सिया की ताजा ताजा कहानी से आया। साजिश कुछ यूं थी कि प्रशांत को खूब शराब पिलाई जाए और फिर नशे की हालत में इसी छत से उसे नीचे धक्का देकर मार दिया जाए। इस साजिश के तहत प्रशांत को मारने के लिए 29 जून की तारीख तय की गई। प्लान के तहत संध्या ने अपने प्रेमी अनिल को पैसे दिए शराब खरीदने के लिए। फिर अनिल और प्रशांत, जो अब तक अनिल और संध्या के रिश्ते से अनजान था, इसी घर की छत पर बैठकर रात को शराब पीते हैं। अनिल ने अपने एक और दोस्त को भी बुला रखा था। दोनों को जब लगा कि प्रशांत अब नशे में है, तब दोनों ने मिलकर प्रशांत को छत से नीचे धक्का देने की कोशिश की। इस दौरान प्रशांत और अनिल और उसके दोस्त के बीच हाथापाई भी हुई। इसी बीच संध्या ऑमलेट लेकर छत पर आ चुकी थी। तब तक प्रशांत को अनिल और उसके दोस्त ने पकड़कर नीचे फेंकने की तैयारी कर रखी थी। ये देखते ही संध्या अपने पति के करीब आती है। प्रशांत को तब अनिल और उसका दोस्त पकड़कर फेंकने के लिए उठा चुका था। उसी वक्त प्रशांत को आखिरी धक्का खुद संध्या देती है। अनिल के जिस दोस्त ने इस क्राइम में मदद की, उसका नाम वेंकट साई है। बाद में वेंकट साई ने खुद ये पूरी कहानी सुनाई।
2: మేము కొట్టుకున్నాం, అలా వైఫ్ ఆమ్లెట్ తీసుకొచ్చిందా, ఆమ్లెట్ తీసుకొచ్చాక తర్వాత ఇక నేను కొద్దిగా ఆయన కొద్దిగా ఫోర్స్ ముందరకు వచ్చేసాం. ఇక నేను లేపిన నాకు ఒకళ్ళు వేస్తాడు, అలా వైఫ్ వేసింది. అలా వైఫ్
3: నువ్వు ఇదంతా ప్రీ ప్లాన్డే కదా, ఆమె ప్లాన్, నన్ను ఏం చేయదు, ఆమె ప్లాన్, ఇదంతా తారీఖు వచ్చింది ఆమెనే. డబ్బులు ఇచ్చింది మీరు ఇద్దరు కలిసి ఒకటేసారి లేపేసి, అంటే ఇట్లా కాలు గుంజగానే పడ్డాడు, కిందికి వెళ్ళి కాలు గుంజేసి
2: ఇక్కడ నుంచి
3: అక్కడ నుంచి ఇటు ఒకటేసారి కాల్ లేపేసి, ఇద్దరు కలిసి కాల్ లేపేసి, ఇద్దరు కలిసి కాల్ లేపేసి.
1: पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी तो शुरू हुई थी। होता यह है कि छत से जमीन तक की ऊंचाई कम होने के चलते प्रशांत घायल तो होता है पर बच जाता है। प्रशांत को जिंदा देख पहले तो संध्या और अनिल घबरा जाते हैं, फिर उसे फौरन पास के सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। अस्पताल में संध्या डॉक्टरों को यही बताती है कि ज्यादा नशे की वजह से वो लड़खड़ा कर छत से नीचे गिर गया। संध्या के बारे में एक बात तो बताना आपको भूल गया, असल में संध्या पेशे से एक नर्स है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करती है। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों से पता चला कि प्रशांत को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई और वो ठीक है। ये पता चलते ही संध्या और अनिल घबरा गए। उन्हें लगा कि उनका प्लान चौपट हो गया। तब उसी वक्त उन्होंने अस्पताल के अंदर ही प्रशांत को मारने का एक दूसरा प्लान बनाया। इस बार संध्या ने अपने नर्स होने का फायदा उठाने का प्लान बनाया। अस्पताल में संध्या ने अपने पति प्रशांत को सबसे पहले इंजेक्शन के जरिए नींद की दवा का ओवरडोज दिया। इसके बाद जब प्रशांत गहरी नींद में चला गया, तब संध्या ने फिर से इंजेक्शन उठाया। इस बार उसने इंजेक्शन में टॉयलेट क्लीनर लिक्विड डालकर वही इंजेक्शन प्रशांत को लगा दिया। इन दो चीजों के चलते 30 जून को ही अस्पताल में प्रशांत की मौत हो गई। शायद संध्या का ये राज कभी खुलता भी नहीं, लेकिन प्रशांत की माँ को कुछ शक हुआ। पहले बेटे का छत से गिरना और फिर बिना गंभीर चोट के यूं मर जाना, लिहाजा 1 जुलाई को प्रशांत की मां पुलिस के पास पहुंचती है और बेटे की रहस्यमय मौत को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा देती है।
4: కొడుకు చచ్చిపోయినట్టు సర్కల్ దవాఖానలో కొన్ని 4 గంటలకు ఫోన్ వచ్చింది. హాస్పిటల్కి వెళ్ళి దుబాయ్కి వెళ్ళి
5: ఎప్పుడు
4: 3 రోజులు
5: అంతే, ఎట్లా చంపి మాకేం తెలియదు. ఏమని చెప్పిల్లమ్మా పోలీసులు మళ్ళా?
4: అయ్యా
5: చెట్టు పెళ్ళాక
1: प्रशांत की मां की शिकायत के बाद निजामाबाद रूरल इंस्पेक्टर ने फौरन मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। उन्होंने संध्या के मोबाइल और अनिल के मोबाइल की भी जांच की।
6: ఈ నెల 1వ తారీఖు అంటే 1/7/2026 తారీఖునాడు మోపాల్ మండలంలోని నాల్కల్ గ్రామం నుంచి ప్రశాంత్ అనే వ్యక్తి డాబాపై నుండి పడి చనిపోయినాడు, కానీ అతని మరణంపై నాకు అనుమానం ఉందని తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మోపాల్ పోలీస్ స్టేషన్లో అనుమానాస్పద మృతి కేసుగా మొదట కేసు నమోదు చేసినాం. తల్లి ఇచ్చిన అనుమానాస్పద ప్రకారము తర్వాత మృతుని భార్య తీసుకొచ్చేసి మేము విచారణ చేయగా తాను ఏ విధంగా నేరం చేసింది అనేది చెప్పిందనమాట. అందులో మృతుడనే ప్రశాంత్ గత 2 సంవత్సరాల నుంచి దుబాయ్ వెళ్ళి అక్కడ పని చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. అతను ఈ మధ్యలోనే మొన్న 29వ తారీఖు నాడు ఇండియాకు తిరిగి ఇంటికి తిరిగి రావడం జరిగింది. అయితే ఇతను దుబాయ్లో ఉన్న సమయంలోనే మృతుని భార్యకు నిజామాబాద్ పట్టణానికి చెందిన ఒక వ్యక్తితో రిలేషన్ ఉందని చెప్పేసి తెలిసింది. అయితే ఈ దుబాయ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత భర్త ఇక్కడనే ఉండిపోతే తన రిలేషన్ భర్తకు తెలిసిపోతుందేమో అని, మళ్ళీ తర్వాత రిలేషన్ కంటిన్యూ అవుతుందో లేదో అనే ఒక దాన్ని పెట్టుకొని ఎలాగైనా భర్తను చంపాలనే ఉద్దేశంతో ఆమెకు ముందే ఒక పథకం వేసుకొని
1: పోలీస్ జాంచ్ మే పతా చలా కి జబ్ ప్రశాంత్ కు అస్పతాల్ లాయా గయా థా తబ్ గిర్నే కి వజహ సే ఉసే మామూలీ చోటే ఆయీ థీ ఉస్మే జాన్ జానే కా ఖతరా నహీ థా లేకిన్ జబ్ పోస్ట్మార్టమ్ రిపోర్ట్ సామ్నే ఆయీ తో కహానీ బదల్ గయీ పోస్ట్మార్టమ్ రిపోర్ట్ కే ముతాబిక్ ప్రశాంత్ కు జహర్ జైసీ కోయి చీజ్ దీ గయీ థీ జాహిర్ హై వో ఇంజెక్షన్ కే జరియే దియా గయా లిక్విడ్ టాయిలెట్ క్లీనర్ హీ థా
6: ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసి చంపుదామని చెప్పేసి నిర్ణయించుకుంది. అందులో భాగంగా భర్త ఇచ్చిన 2 రోజులకు అవకాశం దొరికినప్పుడు దొరకగా మత్తం మద్యం బాగా తాగించి స్లాబై నుంచి తోషేసి చంపుదామనుకుంది. దాంట్లో అదే గ్రామానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి సహాయం తీసుకొని మృతునికి బాగా మద్యం తాగించి అర్ధరాత్రి అంటే సాయంత్రం 8 గంటల సమయంలో మద్యం మత్తులో ఉండగా మృతుని దాబాపై నుంచి కిందికి తోసేసింది. కానీ అతను చనిపోలేదు, చిన్న చిన్న గాయాలతో బయటపడ్డాడు. దాంట్లో మృతుని భార్య మళ్ళీ దానికి ఆలోచన వచ్చిందనమాట ఆమెకు, ఎట్లా మళ్ళా చనిపోలేదు, ఏ విధంగా ఎట్లా చేయాలని చెప్పేసి తెల్లారి ఏ విధంగానన్నా ఈరోజు చంపాలని అనుకొని తెల్లారి మధ్యాహ్నము అంతకుముందే తెచ్చుకున్నటువంటి మత్తు పదార్థాన్ని ఇంజెక్షన్ చేసింది. అంతేకాకుండా ఆ ఇంట్లోనే ఉండే టాయిలెట్ క్లీనర్ను కూడా ఆ క్యాన్ల ద్వారా ఆ మృతునికి ఇంజెక్షన్ చేయగా మృతుడు వాంతులు చేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది. ఇదంతా మృతుని భార్య ఒప్పుకోగా మృతుని భార్యపై తర్వాత నాల్కల్ గ్రామానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి, నిజామాబాద్ పట్టణానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ముగ్గురు పైన కేసు నమోదు చేసిన కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయగా కోర్టు వారికి జైలు శిక్ష విధించింది. ప్రస్తుతం వారు జైల్లో ఉన్నారు.
1: పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ మే ఖులాసా హోతే పోలీస్ నే సంధ్యా ఉస్కే ప్రేమీ అనిల్ ఔర్ ఉస్కే దోస్త్ వెంకట్ కో గిరఫ్తార్ కర్ లియా. గిరఫ్తారీ కే బాద్ తీనో నే అప్నా జుర్మ్ భీ కబూల్ కర్ లియా హై. అబ్ జో శురూ మే ఆప్సే కహా థా నా కి మత్లబ్ యే హో క్యా రహా హై, గలత్ నహీ కహా థా, మత్లబ్ సంధ్యా నే పహలే సియా కి తరహ అప్నే పతి కో ఛత్ సే ధక్కా దియా, వో బచ్ గయా. ఫిర్ ఇంజెక్షన్ సే నీంద్ కి దవా కా ఓవర్ డోస్ దియా, వో దూసరీ బార్ భీ బచ్ గయా. ఫిర్ లిక్విడ్ టాయిలెట్ క్లీనర్ ఇంజెక్షన్ మే డాల్ కర్ ప్రశాంత్ కో లగా దియా. इस बार प्रशांत की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और इस तरह तीसरी बार में ही सही एक और पति अपनी पत्नी के हाथ मारा गया. अब्दुल बशीर, निजामाबाद, आज तक. ये कहानी भी एक कातिल पत्नी की है, बस साजिश जरा अलग. जरा सोचिए, अगर किसी केस में एक साथ परिवार, दोस्त, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि पुलिस भी शामिल हो जाए तो उस केस का हश्र क्या होगा। बेलगावी से ऐसा ही एक केस सामने आया। इसकी साजिश इतनी गहरी थी कि गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़े, दोबारा पोस्टमार्टम कराना पड़ा और तब कहीं जाकर कातिल बीवी का सच सामने आया।
5: कर्नाटक के बेलगावी के इस सुनसान इलाके में इस वक्त पुलिस एक खास मिशन पर है। इस मिशन को पूरा करने के लिए पुलिस के साथ कुदाल और फावड़ा लिए मजदूरों और सफाई कर्मियों की एक पूरी टीम है। टीम में शामिल लोग जंगलों के बीच एक तय जगह पर पहुंचकर रुक जाते हैं। पहले जगह की पहचान की जाती है और फिर शुरू होती है जमीन की खुदाई। असल में ये खुदाई एक ऐसी लाश के लिए है जिसकी मौत करीब 3 महीने पहले हो चुकी है और मौत की वजह हार्ट अटैक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस शख्स की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई हो उस मौत के पीछे कोई साजिश तो हो ही नहीं सकती। तो फिर आखिर पुलिस ऐसे किसी आदमी की लाश को खोदकर बाहर निकालने की कोशिश में क्यों लगी है? आखिर ऐसा करने के पीछे क्या राज है? तो इस सच को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक वीडियो की कुछ लाइनें सुननी चाहिए। ये वीडियो चूंकि कन्नड़ में है तो हम इस आदमी की कही गई बातों को समझने के लिए साथ में इसका हिंदी तर्जुमा भी पेश कर रहे हैं।
7: ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತದೆ. ಅವರು ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿರು ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ತಗನಿ ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳ ಭಾಳ ಆಗ್ಯಾವು, ಇವ್ ಸಂದೀಪ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬಿಡ್ದು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಹುಳುಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಔಷಧ ನಾನು ಕೊಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಮರನೇ ದಿವಸ ಅವ್ನು ಸಾವಾಗೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಮಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾವು ಐತಿ. ಅದನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಶರೀರ ರೀಚೆಕಪ್ ಆಗಬೇಕದ, ಮರು ತಪಾಸಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅನುಮಾನ ಅವರು ಅವಾಗೇನು ಇರು, ಈಗ ನನಗೆ ಅದು ಫುಲ್ ಡೌಟ್ ಬರಾಯ್ತು.
5: ತು ಸುಣಾ ಆಪ್ನೆ ಯೆ ಜಿಸ್ ಸಂದೀಪ್ ನಾಮ್ ಕೆ ಶಖ್ಸ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ, ಪುಲಿಸ್ ಇಸ್ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಉಸೀ ಸಂದೀಪ್ ಕಿ ಲಾಶ್ ಖೋದ್ ಕರ್ ಬಾಹರ್ ನಿಕಾಲ್ನೆ ಮೇ ಜುಟಿ ಹೈ ತಾಕಿ ಉಸೇ ಕಬ್ಜೆ ಮೇ ಲೇಕರ್ ದೋಬಾರಾ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಿಜ್ವಾಯಾ ಜಾ ಸಕೆ. ಸಂದೀಪ್ ಕಿ ಲಾಶ್ ಕಾ ಪಹಲೆ ಹಿ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೈ और उस पोस्टमार्टम में उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा चुकी है। लेकिन इस मौत के 3 महीने बाद अब इस नौजवान के इस सेल्फी वीडियो ने संदीप की मौत की पूरी कहानी पलट दी है। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, पहले इस नौजवान की असलियत आपको बता देते हैं। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि उसी संदीप की पत्नी सुमा का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिस सुमा पर अब वो अपने पति के कत्ल का इल्जाम लगा रहा है। लेकिन मौत की इस पलटी कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले मरने वाले शख्स के बारे में जानने के साथ साथ उसकी मौत के पूरे सीक्वेंस को भी समझना होगा। तो आइए अब आपको ये सच जानने के लिए 3 महीने पीछे लिए चलते हैं। बेलगावी के रहने वाले संदीप मंजरी एक पूर्व सैनिक यानी एक सर्विसमैन थे। 13 मार्च को वो अपने दोपहिया वाहन से एक मेले से घर लौट रहे थे और इसी दौरान एक हादसे का शिकार हो गए। असल में उनकी बाइक सड़क पर ही फिसल गई थी जिसके चलते उन्हें चोटें आई। इसके बाद उन्हें पास के ही एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया और फिर उनकी पत्नी सुमा मंजरगी ने उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करा दिया।
8: So on 13th of March 2026, initially a road accident took place. The person called Sandeep Kalagoda Manjargi, who is native of Godagiri village, and he lives with his wife. He is a ex-army person. He retired from army in the month of December 2023. After retirement, he settled in his native village.
5: मगर संदीप के परिवार को तब गहरा सदमा लगा जब इस रोड एक्सीडेंट के 2 दिन बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक मामूली सी एक्सीडेंट के बाद किसी की हार्ट अटैक से मौत की बात अपने आप में थोड़ी हैरान तो जरूर करती थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर तमाम डॉक्टरों की राय कुछ ऐसी ही थी तो फिर सभी को इस पर यकीन करना पड़ा। लेकिन अभी इस मौत को कुछ ही रोज गुजरे थे कि संदीप की पत्नी सुमा के बॉयफ्रेंड पुंडलिक डोम्बर की ओर से सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो ने पूरी कहानी में ट्विस्ट ला दिया, क्योंकि पुंडलिक संदीप मंजरगी की मौत को कत्ल बता रहा था और उसकी पत्नी सुमा को संदीप का कातिल। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, पुंडलिक डोंबर संदीप और सुमा के बीच कैसे आया। तो जवाब है, पुंडलिक कभी संदीप डोंबर का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था और संदीप के साथ बिजनेस करते करते वो कब संदीप की पत्नी सुमा के करीब आ गया संदीप को इसकी खबर ही नहीं लगी। पुंडलिक की माने तो सुमा ने न सिर्फ उसे भविष्य में भी साथ रहने का झांसा दिया बल्कि अपने साथ साथ खुद उसके बच्चों को भी साथ में रखने की बात कही। इसके बाद वो सुमा को लेकर इमोशनल हो गया था। लेकिन जुर्म की असली कहानी तब शुरू हुई जब पूर्व फौजी संदीप मंजरगी की पत्नी सुमा ने अपने पति को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, संदीप की हत्या से पहले उसके नाम पर सुमा ने करीब 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी करवाया ताकि उसकी मौत के बाद वो 2 करोड़ रुपए उसे आसानी से मिल जाए और वो उन्हीं रुपयों से बाकी की जिंदगी पुंडलिक डोंबर के साथ मजे से गुजार सके। इसके बाद जिन हालात में संदीप की मौत हुई उसके घर वालों को उसकी मौत को लेकर शक होने लगा। इस बीच उन्हें संदीप के 2 करोड़ के इंश्योरेंस की बात भी पता चली और अब तो सुमा के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी पोल खोलने वाला वीडियो भी शेयर कर दिया था। ऐसे में पुलिस ने नए सिरे से इस मामले की जांच शुरू की और जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। संदीप के कत्ल की साजिश में सिर्फ उसकी पत्नी सुमा ही नहीं बल्कि उसका वो बॉयफ्रेंड पुंडलिक डोंबर भी शामिल था जो खुद को बेकसूर और सुमा को कसूरवार बताने पर तुला था। पुलिस की माने तो दोनों ने कत्ल की साजिश तो पहले ही रच ली थी लेकिन उन्हें सही मौका नहीं मिल रहा था। मगर जब 13 मार्च को संदीप का रोड एक्सीडेंट हुआ तो फिर दोनों ने संदीप को मारने की प्लानिंग को अमल में लाने का फैसला कर लिया और उन्हें जहर देकर मारना तय किया। एक्सीडेंट के बाद जब दोनों को इस मौके का फायदा उठाने का आइडिया आया तो उन्होंने सबसे पहले संदीप को सरकारी अस्पताल से एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया, वो भी तब जब उनकी चोटें गंभीर नहीं थी। इसके बावजूद उन्हें एक स्पेशल रूम में रखा गया और उनके कत्ल की पूरी तैयारी कर ली गई। इसके बाद असली साजिश शुरू हुई। उस अस्पताल में राहुल नाम का एक शख्स काम करता था जो पुंडलिक डोंबर का जानने वाला था। उसी ने सुमा और उसके आशिक पुंडलिक को यह आइडिया दिया कि वो संदीप को सीधे नसों में जहर देकर उसकी हत्या कर सकते हैं और इस तरह जान लेने से किसी को इस कत्ल का पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद दोनों ने संदीप के साथ कुछ ऐसा ही किया मगर कत्ल की पहली कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन इसके अगले ही दिन दोनों ने एक और भी भयानक साजिश रची। अगले दिन वो राहुल की मदद से खुद ही सलाइन की बोतल खरीद कर लाए, उसमें जहर मिलाया और जहरीला सलाइन देने से पहले संदीप को 4 नींद की गोलियां खिला दी। संदीप बेहोशी की हालत में था और इसी दौरान उसे वो जहरीला सलाइन चढ़ा दिया गया। इस तरह जहरीला सलाइन चढ़ाए जाने के कुछ ही देर बाद हार्ट अटैक से संदीप की मौत हो गई। इसके बाद जब घर वालों ने अस्पताल के डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का कहना था कि एक्सीडेंट के बाद किसी को हार्ट अटैक आ तो सकता है लेकिन हार्ट अटैक 1 या 2 दिनों के बाद यानी रुक कर आए ये थोड़ा संदिग्ध लगता है। इसके बाद संदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेलगावी के अस्पताल में भिजवाया गया और वहां से किसी जहर का पता लगाने के लिए शव के अंदरूनी अंगों यानी विसरा को जांच के लिए लेबोरेटरी में भिजवा दिया गया। लेकिन यहां से भी जो रिपोर्ट सामने आई उसमें संदीप के शरीर में किसी भी जहर के मिलने की बात नहीं थी। ये मौत शक के घेरे में तो पहले ही दिन से था लेकिन सही मायने में इस केस का सुराग पुलिस को तब मिला जब सुमा के बॉयफ्रेंड रहे पुंडलिक ने सुमा पर कत्ल का इल्जाम लगाते हुए वीडियो जारी कर दिए। पुलिस की माने तो ये इल्जाम शक पैदा करने वाले थे, इसलिए पुलिस ने पहले पुंडलिक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की और फिर सुमा को भी पकड़ा। दोनों ने ही कत्ल में शामिल होने की बात कबूल कर ली। असल में कत्ल के बाद सुमा ने पुंडलिक को जो रकम देने का वादा किया था उसे लेकर उसकी और पुंडलिक के बीच लड़ाई हो गई थी जिसके बाद पुंडलिक ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पूर्व फौजी संदीप की मौत की असली कहानी सामने आ गई।
8: सो इन द मीन टाइम देयर वाज अ व्हाट्सएप स्टेटस बाय द पुंडलिक विट्टल डोंबर। ही सेड दैट आई विल रिवील ऑल द इंफॉर्मेशन द वेग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट समथिंग इज सस्पिशियस अबाउट द मर्डर। सो व्हेन वी चेक्ड देयर वाज अ financial dispute between Suma, that wife of the deceased, and the paramour Pundalik. So there was a previous agreement that you have to give this much amount for this murder. Even though they were in relationship, the financial dispute escalated to the next level and he posted that message. Then we interrogated him. So during the interrogation, it was revealed that these couple were helped by Rahul. He gave the poison. It was injected. So he passed away because of the poison. Then they, FSL was also compromised by using different intermediaries.
5: Sagai Raj, Bengaluru, Aaj Tak.
9: To vaardaat filhaal itna hi, magar desh aur duniya ki baaki khabron ke liye.
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
12: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
12: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.

0: सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र हैं राष्ट्रपति प्रोवोवो। 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर। चढ़ावा चोरी जांच में अब प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्चे के बही खाते का हिसाब किताब। सीएम योगी ने वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाए आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। सीएम धामी के निर्देश पर बनी हाई लेवल कमेटी। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। बीजेपी शासित एक और राज्य में यूसीसी लाने की तैयारियां। राजस्थान सरकार विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लाने पर कर रही है विचार। भारी बारिश से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल। वायनाड में भीषण भूस्खलन, 3 की मौत। दिल्ली एनसीआर में जलभराव के बाद गुरुग्राम के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा बरकरार। 18 साल पहले 70 मिनट में हुए 21 धमाकों में 56 लोगों की जान चली गई थी। हाईकोर्ट का सरकार को 30 मार्च 2027 तक मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश। मुंबई में मानसून के दौरान पेड़ गिरने और खुले मैनहोल की घटनाओं को लेकर बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े सख्त। हादसों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश। महाराष्ट्र में बारिश का कहर। पालघर में 6 दिन में 10 लोगों की मौत हुई। वहीं सिर्फ मुंबई में 12 से ज्यादा लोगों की मौत। प्रशासन अलर्ट में, ऋतु तावड़े ने जानकारी दी। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश। नाला सुपारा में रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी। पैदल यात्रा करते हुए नजर आए यात्री। महाराष्ट्र में हो रही जोरदार बारिश के बीच नासिक में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। जबरदस्त जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। महाराष्ट्र के नासिक में उफनती हुई गोदावरी नदी के किनारे पुलिस तैनात है। नदी में गए युवक को समझा बुझाकर बाहर निकाला गया। मानसून की जबरदस्त बारिश के बाद उफान पर है गुजरात की तापी नदी। उकाई बांध का जलस्तर बढ़ गया है। गुजरात के नवसारी में भी बारिश के बाद जगह जगह भर गया है पानी। जलभराव के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामों में हो रही है परेशानी। सूरत में भी बारिश का कहर। शहर भर में घरों में घुस गया है पानी। सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। फायर विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का पहला गाना रिलीज किया गया। 14 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। ओएमजी 2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म है ओ माय डॉग। टीजर रिलीज हुआ। 31 जुलाई को सिनेमाघरों में आएगी ये फिल्म। रणवीर के मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण के ट्रेलर रिलीज की तारीख सामने आ गई। 18 जुलाई को ट्रेलर लॉन्च की योजना है। दिवाली पर रिलीज किया जाएगा पहला पार्ट। फिल्म मेकर बोनी कपूर की बड़ी बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने रचाई शादी। बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ साथ फेरे लिए। मीरा राजपूत कपूर ने शादी की सालगिरह पर पति शाहिद कपूर के लिए लिखी प्यारी सी विश। मैडम तुसाद म्यूजियम में शाहिद और उनके वैक्स स्टैच्यू के साथ पुरानी तस्वीर को शेयर भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। आज मुंबई में मूसलाधार बारिश तो नहीं हुई, लेकिन पालघर, नासिक, पुणे और कोल्हापुर जैसे जिलों में आसमानी आफत का ऐसा कहर बरपा है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लगातार बारिश से नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। गलियां पूरी तरह से नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लग ऐसा रहा है कि शहरों में समंदर का कब्जा हो गया हो।
2: मूसलाधार मुसीबत के आगे महाराष्ट्र बेबस नजर आ रहा है। मुंबई से सटे पालघर में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया है।

0: या नदी उफान पर आने से हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे हैं।
1: इस वक्त हम मुंबई के पास वसई इलाके में हैं। वसई ये दरअसल पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है और पिछले चार दिनों से लगातार तकरीबन 200 mm से ज्यादा की बरसात हो रही है यहाँ पे। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये है वसई नालासोपारा लिंक रोड। दरअसल यहाँ पर कुछ जो एवरशाइन सिटी और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर की कनेक्टिविटी इसी रोड के जरिए है। और लोग देखिए अपनी गाड़ियां आप और जो लोग हैं खुद भी अपने आप को इसी तरह से। दरअसल ये जो इलाका है ये पूरा सॉल्ट पैन का इलाका है, यहाँ पर नमक बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये खाली मैदान है। और यहाँ पर देखिए इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये जिस पर हम अभी इस वक्त खड़े हैं वो है ईस्ट वेस्ट, जो वसई का जो मेन ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी रोड है वहां पर है। और इस वक्त आप देख लीजिए, आइए लोगों से बात करते हैं, कितने दिनों से पानी भरा हुआ है यहाँ पे?
2: कितने दिन?
3: चार दिन से भरा हुआ है। आने जाने का रास्ता एकदम ब्लॉक है। उधर ग्राउंड फ्लोर पे पूरा बिल्डिंग में पानी लग गया है। और इधर भी जो एवरशाइन वाला रास्ता है उधर भी ग्राउंड फ्लोर में पानी।
1: हर साल की एक कहानी है।
0: 2 से 3 फीट पानी सड़कों पर आया तो गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पानी में गाड़ी बंद ना हो उसके लिए लोग जुगाड़ का सहारा लेते दिखाई दिए।
1: ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके लोग अपने घरों से, क्योंकि जरूरी अगर होता है तो निकलना ही पड़ता है। जैसे एक छात्र सब ये मिल रहे थे, इन्होंने अपनी गाड़ी में देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया हुआ है। देखिए ये गाड़ी में इन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया है। कोई चल रही है आपकी गाड़ी?
4: गाड़ी अभी चालू है। गाड़ी चालू है, पासपोर्ट का आज ही टाइम है, वो भी लास्ट डेट है। हाँ। जाना तो पड़ेगा ही, है ना?
1: ये हर मॉनसून में आप यही लगा लेते हैं?
4: नहीं, इस बार ट्राई करके देख रहे हैं।
2: इस बार जुगाड़ में अपना लगा लिया बस।
1: चल दी आपकी गाड़ी?
2: चल रही है, देखो गाड़ी चालू है। चालू हो गई।
0: वसई नाला सोपारा लिंक रोड पर कमर तक पानी से गुजरने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल पालघर में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। पालघर में लगातार हो रही बारिश और हादसों की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर के ज्यादातर बांध 50% से ज्यादा भर चुके हैं जबकि झांझरौली बांध भी लबालब हो चुका है। पालघर में पिंजाल नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया है।
5: जिन घरों में पानी घुसने की शक्यता है या फिर उनके घर का संपर्क टूट सकता है और उनके घरों में फ्लडिंग हो सकती है बड़े प्रमाण में, उन लोगों को हमने स्थलांतरण करने के लिए उपाय योजना किया है।
0: पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी सैलाब का कब्जा दिख रहा है। देखिए जहां तक नजर जा रही है वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब पालघर के वसई के इस इलाके का हाल देखिए, जहां दोनों ओर मार्केट के सामने सड़कों पर कई फीट पानी भरा है, लेकिन स्थानीय लोग इसी सैलाब से होकर गुजरने को मजबूर दिख रहे हैं। इसीलिए मौसम विभाग ने पालघर में रेड अलर्ट जारी किया है।
6: अगर महाराष्ट्र के हम देखें जहाँ पे मेन एक्टिविटी होने वाली है, तो उसमें मैं कहूँगा कि जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है और साथ में जो नासिक के घाट्स हैं, तो इनमें हम जो है रेड आज भी कंटिन्यू करेंगे। रेड वार्निंग जो है कल से कम हो जाएगी एक्टिविटी, तो वहाँ फिर कल से आप कह सकते हैं कि जो है साथ ही जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है उनमें सब में ऑरेंज रखा है। और इसके साथ साथ जो कोंकण के और भी डिस्ट्रिक्ट करें जिसमें कि रायगढ़ है और इसी तरह आपका थाने हैं और इधर में जो है रत्नागिरी है, तो इनको हमने ऑरेंज में आज रखा है।
0: पुणे का हाल भी जुदा नहीं है। सड़कें दरिया बनी दिख रही हैं और गलियां समंदर, लेकिन बच्चे इस हाल में भी मस्ती करते नजर आए। पानी का प्रकोप देखिए कि आधी से ज्यादा गाड़ियां डूबी हुई हैं।
7: देखिए पिछले कुछ घंटों से पुणे की क्या हालत हुई है ये मेरे पीछे देख सकते हो। हम पुणे के सांगवी इलाके में है और ये जो रास्ता है उसी रास्ते पर एक नदी का स्वरूप आ गया है। यहाँ पर बच्चे जो है खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में लोनावला में 620 mm और PCMC में 268 mm बारिश हो चुकी है, जो बहुत है। और इसी वजह से रास्ते जो है तालाब में बदल गए हैं। और यहाँ पे कुछ नागरिक है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या बताना चाहोगे किस प्रकार से, मतलब बारिश तो हो रही है लेकिन जिस तरह से रास्ते नदी में तब्दील हो रहे हैं, तो क्या प्रशासन से अपील करना चाहोगे आप?
8: एक तो इम्पोर्टेंट बात, बारिश ज़्यादा है ये हम मानते हैं, लेकिन ये जो सांगवी एरिया में इन्होंने फॉल्टी अलाइनमेंट किया है, फॉल्टी अलाइनमेंट करने की वजह से ये पानी ज़्यादा जमा होके सब सोसाइटी के अंदर जा रहा है और सोसाइटी में जाने की वजह से पर्सनल बहुत लोगों के लॉस हो रहे हैं।
0: पिछले 24 घंटे में लोनावला में 620 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी वजह से रास्ते तालाब में तब्दील हो गए हैं। पुणे की बड़ी बड़ी सोसाइटी में घरों के अंदर पानी घुस गया है। अब इस सोसाइटी का हाल देखिए, जहां घरों के अंदर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकायदा रेस्क्यू टीम नाव के जरिए सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, लेकिन ये बच्ची घबराहट की वजह से रोने लगी। इस वीडियो में देखिए कैसे पुणे की इन सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। एक दिन पहले पुणे के पेट इलाके में ये दो मंजिला इमारत देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मूसलाधार बारिश की मार ये इमारत झेल नहीं पाई और भरभराकर जमींदोज हो गई। नासिक में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। गोदावरी समेत कई नदियां उफान पर हैं। एनडीआरएफ के साथ प्रशासन और पुलिस की टीमें लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। लगातार बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ये देखिए, जब नशे में धुत ये शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच चला गया, पहले तो रेस्क्यू टीम ने उसे बहुत धैर्य से किनारे की ओर बुलाया, लेकिन जैसे ही वो पास आया पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भी चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है, खेत खलिहान सब डूब चुके हैं। वहीं कोल्हापुर जिले में भी जोरदार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसी बीच श्री क्षेत्र नरसिंहवाड़ी दत्त मंदिर में दक्षिण द्वार समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। इधर मुंबई में बारिश से थोड़ी राहत मिली तो सैलानी मरीन ड्राइव पर मस्ती करने निकल पड़े, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि अभी भी खतरा टला नहीं है।
1: मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में बताया गया था कि आज ऑरेंज अलर्ट है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। हालांकि बारिश इस वक्त ज्यादा नहीं हो रही है, काले काले बादल जरूर मंडरा रहे हैं, तेज हवाएं समुद्र किनारे खासतौर से चल रही हैं और यही वजह है कि कोस्टल एरिया में आप देख लीजिए, यहाँ पे पुलिस के लोग खड़े हैं और कोशिश इनकी यही है कि ज्यादा लोग समुद्र के किनारे नहीं जाएं। दरअसल हाई टाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3.5 मीटर की हाई टाइड बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ऑन ए प्रिकॉशनरी नोट लोगों को कहा गया था कि जैसे स्कूल्स जो मुंबई में खासतौर से बंद किए गए थे और साथ ही कहा गया था लोगों को वर्क फ्रॉम होम एनकरेज करने के लिए। हालांकि आईएमडी की वार्निंग है और कहा गया है कि तेज बरसात होगी, क्लाउड्स जरूर दिख रहे हैं लेकिन इस वक्त बरसात ज्यादा नहीं हो रही है और यही मुंबई के लोगों के लिए और महाराष्ट्र के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
9: आज मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्री बड़े परेशान रहे क्योंकि पहले बारिश का कहर और उसके बाद फिर लोकल ट्रेन कैंसिल होने से मुसाफिरों को ट्रैक पर पैदल चलकर कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा है। मूसलाधार बारिश के चलते पूरा वसई और विरार जलमग्न हो चुका था। रेलवे ट्रैक डूबने से ट्रेन को टर्मिनेट कर दिया गया था और उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनें मूसलाधार बारिश से बुरी तरह प्रभावित है जिससे लाखों लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से वसई विरार रेल सेवा बाधित रही। देखिए ड्रोन से ली गई तस्वीरों में रेलवे ट्रैक किस कदर पानी में डूबा दिख रहा है। आज तक की टीम ने लोकल में चलने वाले यात्रियों का दर्द साझा करने के लिए खुद ट्रेन में सफर किया।
1: इस वक्त वसई से चर्चगेट की तरफ जो ट्रेन जा रही है उसमें हम है। यहाँ देख लीजिए रेलवे ट्रैक पर काफी सारा पानी है। सबसे बड़ी बात है कि पंप्स भी लगे हैं लेकिन एकदम फ्यूटाइल सा बिजनेस लग रहा है, जहां पर कि पंप ट्रैक से पानी फेंक रहा है तो ये इस इलाके में जो ऑलरेडी पानी से लबालब है और वहीं से सारा पानी दरअसल आ रहा है। ट्रेन काफी लेट भी चल रही है, आइए लोगों से ही बात करते हैं। ट्रेन टाइम पे चल रही है क्या?
10: ट्रेन तो लेट है।
1: कितना लेट है?
10: 20 मिनट के करीब लेट है।
1: लेकिन और पूरा वसई में भी पानी भरा हुआ हमने देखा।
10: वसई के आगे अगर नाला सोपारा विरार में तो ट्रेन बंद हो चुकी है, लोग यहाँ से वापस रिटर्न जा रहे हैं वसई से। और हम अगर काम पे भी जाने के लिए आए थे, मुंबई से आए थे अंधेरी से, तो अभी काम पे जाने के लिए आए लेकिन जो हिसाब से पानी भरा हुआ है तो हिम्मत ही नहीं कर पाए, ना ऑटो मिल रही है ना है। तो हमको रिटर्न जाना पड़ रहा है वहाँ से।
1: स्टेशन तक पहुँचने में भी कुछ समस्या हो रही है?
11: हाँ समस्या है ना, अभी सरकार को इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। हर साल यही हाल है, सरकार के संज्ञान में बात है फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार क्या, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सब अपना अपना जेब भरने के चक्कर में है, जनता की पड़ी नहीं है।
0: मुंबई में हर दिन लाखों लोग लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, कई कारोबारी और नौकरी पेशा लोग भी लोकल में जाम से बचने के लिए सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन बारिश में मुंबई कर परेशान दिख रहे हैं।
1: लोग बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रेनें लेट चल रही हैं, साथ ही ट्रेन स्टेशन तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे लोग जूझ रहे हैं आज। हालांकि सरकार ने कहा था कि लोगों को बाहर नहीं निकलना है, लेकिन कई सारे काम होते हैं ऐसे जो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकते हैं, और यही वजह है कि लोगों को अपने अपने जो जिंदगी में काम करना है उनको उसके लिए निकले और सिर्फ परेशानी उनको झेलने को मिली।
0: रेलवे ट्रैक जलमग्न होने के बाद पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेनें वसई रोड रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट हो गई, जिससे नाला सुपारा और विरार स्टेशन जाने वाले हजारों यात्री फंस गए।
1: इस वक्त हम वसई रोड रेलवे स्टेशन पे हैं। रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर आप देख लीजिए इस तरीके से पानी भरा हुआ है, और ये हाल इससे ज्यादा बदतर इसलिए है क्योंकि ये ट्रेन दरअसल जो जिस ट्रेन में ये अभी लोग महिलाएं और पुरुष जो उतर रहे हैं, ये दरअसल ट्रेन जानी थी विरार, लेकिन अचानक से अनाउंसमेंट हो गया कि यहाँ पर शॉर्ट ट्रेन किया जा रहा है, इसको यहीं रोका जा रहा है।
0: कई लोगों ने इस उम्मीद में मेल एक्सप्रेस ट्रेनें पकड़ी कि उनके स्टेशन पर रुकेंगी, लेकिन बारिश ने सब प्लानिंग पर पानी फेर दिया।
12: मंगलवार को लगातार जो बारिश हो रही है उस बारिश से लोगों के हाल बेहाल है। आज भी कई इलाकों का पानी निकल नहीं चुका है, तो दूसरी ओर मंगलवार को 5 बजे के बाद जो है ट्रेन फिर से एक बार बंद हो चुकी है। ट्रेन जो है वसई तक आ रही है, फिलहाल मैं वसई प्लेटफॉर्म पे हूँ। ये जो एसी लोकल है विरार की, ये वसई तक आई, यहाँ उसको रुकाया गया है। यही ट्रेन जो है आगे यहाँ से चर्चगेट के लिए लगाई गई है। लोगों में काफी गुस्सा है कि लोगों का कहना है कि हमें रेलवे के माध्यम से कुछ बताया नहीं जा रहा है।
0: जब अचानक ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया तो हजारों यात्री पानी में डूबे रेलवे ट्रैक पर पैदल ही अपने अपने सफर पर चलने को मजबूर दिखे। किसी को 5 किलोमीटर ट्रैक पर चलकर घर जाना पड़ा, तो कोई 10 किलोमीटर तक अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ा।
1: इस वक्त हम वसई रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे हैं। पालघर जिले के इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है, और यही वजह है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर पानी होने की वजह से गाड़ियां वसई से आगे विरार तक नहीं जा रही हैं, और लोग ये आप देख लीजिए जहां तक आपकी दूर नजर जाती हो वहां तक लोग ही लोग हैं जो रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं। आइए यहां पर लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं, ये भाई साहब आप लोग कितनी दूर जाएंगे अभी?
13: अभी यहां से विरार जाना है, विरार जाना है। 2 घंटा कम से कम लगेगा पैदल जाने में, 2-2.5 घंटे।
1: 2-2.5 घंटा पैदल चलेंगे आप ही?
14: विरार ही जाना है।
1: आपको कहां जाना है?
14: विरार जाना है।
1: कैसे?
14: पैदल जाएगा, ट्रेन का नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो
15: क्या करूँगा, कोई साधन नहीं है।
1: आपको कहां जाना है?
16: नाला सुपारा जाना है।
1: 5 किलोमीटर तो होगा ये, अभी
16: लमसम इतना है 5 किलोमीटर, जो कि वहां हम लोगों को पैदल जाना है यहां वसई स्टेशन से, और बाकी और लोग जा रहे हैं जो कि उनको विरार जाना है।
1: तो आप यहाँ अब रेलवे ट्रैक के सहारे चलते जाएंगे?
16: रेलवे ट्रैक के साथ ही चलते,
1: लेकिन संभल के देखिएगा यहाँ पे, जैसे ये ऐसे गड्ढे भी हैं यहाँ पर,
16: देखते हुए जाएंगे आराम से। हाँ,
1: कोई हादसा ना हो जाए। तो आइए लोगों से और बात, आपको कहाँ जाना है?
17: नाला सुपारा।
1: चल के जाएंगे?
17: चल के जाना।
1: ख्याल रखिएगा कहीं गिरिएगा नहीं कहीं पर।
18: नाला सुपारा जा रहा हूँ, पैदल चल के चलना पड़ रहा है।
1: क्या लग रहा है आज जिस तरीके से पैदल चलना पड़ रहा है, हर मॉनसून में यही करना पड़ता है?
18: हर साल का ऐसे ही है।
1: देख लीजिए काफी सारे इश्यूज तो हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए इतना बड़ा गड्ढा है जो पानी से दिख नहीं रहा है, तो लोगों को केयरफुल रहना होगा पूरे रास्ते में, ट्रैक्स के साथ ही चलेंगे वो, ये सब तमाम चीजों को इनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आप देख लीजिए पूरा रेलवे ट्रैक पर पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को अपने, क्योंकि लोकल ट्रेन नहीं मिल रही, हालांकि देख लीजिए यहाँ एक पंप भी चल रहा है, लेकिन आखिर ये पंप पानी फेंकेगा कहाँ, क्योंकि पूरे आसपास वसई इलाके में यहाँ पर नाला सुपारा में पूरा पानी आसपास शहर में भी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये पानी कहीं जा नहीं पा रहा है, यहीं फंसा हुआ है, और लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही क्योंकि ट्रेन वहाँ नाला सुपारा तक नहीं जा रही है।
0: इस बीच मूसलाधार बारिश और उससे हो रहे हादसों पर मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में वो परिवार की तरह मुंबई वालों के साथ खड़ी है।
19: काफी प्रतीक्षा के बाद मुंबई में बारिश आई थी, लेकिन इस तरह से मतलब जो चेंबूर की दुर्घटना हो गई, उसके बाद में साकिना का एल वार्ड, और उसके बाद में मानकूर आरे कॉलोनी में भी एक बच्चा बाइक पे जा रहा था, उसके ऊपर भी ब्रांच गिर के वो भी गया। ये बहुत ही दुर्दैवी घटना हुई है, इसके लिए मैं खुद मेयर करके मेरा मन भी उसके लिए बहुत व्यथित है। लेकिन अभी तो फिलहाल जितना भी मैंने इसके बारे में ब्यौरा लिया है, तो आज ऑरेंज अलर्ट है, आज बारिश उतनी है नहीं, चालू है यहाँ तो। फिलहाल जितना भी मैंने इसके बारे में ब्यौरा लिया है तो आज ऑरेंज अलर्ट है, आज बारिश उतनी है नहीं। तो लोगों को मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि अभी ये जो पूरा हमारा कामकाज है एवरीडे का वो चालू है, यहाँ की मुंबई की जब वाहतूक व्यवस्था अच्छे से चालू है उसके साथ में लोकल व्यवस्था भी चालू है।
0: अब तक सिर्फ मुंबई में 12 से ज्यादा लोगों की मौत बारिश और उससे हुए हादसों की वजह से हो चुकी है। वहीं पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। इसे लेकर विपक्ष लगातार बीएमसी पर हमलावर है।
17: जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है, ये स्टार्टिंग से हम वहाँ पे कह रहे हैं। शक्तिपीठ मार्ग 1,40,000 करोड़ का महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।
20: आज आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में जो बरसात हुई है, पूरा का पूरा टारगेट भाजपा ने प्रशासन को किया है। कभी नेहरू को ब्लेम करते हैं, कभी ठाकरे को ब्लेम करते हैं, कभी प्रशासन को ब्लेम करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी स्वीकारते नहीं कभी। जो फेलियर है ये भाजपा का है।
0: हादसों पर बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि पेड़ गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी हवा की स्पीड और कंक्रीट की वजह से हो रही है। मुंबई में साल 2018 में ट्री सर्वे के अनुसार शहर में 29,75,000 पेड़ हैं। इनमें 2,00,000 पेड़ सड़कों पर हैं। चेंबूर हादसे के बाद बीएमसी पेड़ों का सर्वे दोबारा कराने और उनके रखरखाव का दावा कर रही है। वसई से विद्या और प्रवीण नालावड़े के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
9: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है। अटकलें ये हैं कि शरद पवार की एनसीपी शरद पवार नया राजनीतिक रास्ता तलाश रही है। चर्चाएं ये हैं कि कांग्रेस में विलय की संभावना कमजोर पड़ने के बाद पार्टी अब सत्ता पक्ष या एनडीए के साथ जाने के विकल्प पर भी मंथन कर रही है। हालांकि पार्टी इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर रही है।
0: क्या शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने जा रही है? पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में ऐसी अटकलें हैं कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार नया राजनीतिक विकल्प तलाश रही है। चर्चा है कि कांग्रेस में विलय की संभावना कमजोर पड़ने के बाद पार्टी अब सत्ता पक्ष यानी एनडीए के साथ जाने पर भी मंथन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी शरद पवार ने कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव 2 बार दिया था। बताया जाता है कि सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा करने को कहा, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश इकाई से राय लेने की बात कही, जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया। इसके चलते कांग्रेस में विलय की संभावना कमजोर मानी जा रही है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि शरद पवार के 8 में से कुछ सांसद और विधायक सत्ता पक्ष के साथ जाने या बाहर से समर्थन देने के पक्ष में है। यहाँ तक कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले समेत कुछ सांसदों के एनडीए में जाने और केंद्र में अहम जिम्मेदारी मिलने जैसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने ऐसी अटकलों को अफवाह करार दे दिया। एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक जिशान सिद्दीकी ने कहा कि जब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती तब तक इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
21: हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी जो है वो अगर दोनों साथ में भी मिल जाए या दोनों एक अलायंस में भी आ जाए तो सबके लिए अच्छा ही रहेगा, या नहीं भी जो भी है वो जो है वो वरिष्ठ लोग डिसाइड करेंगे, मगर जिसको जो उनकी पार्टी का जो फैसला है वो वही लेंगे, इसमें हमारा कुछ भूमिका नहीं है।
0: दूसरी ओर बीजेपी ने इन अटकलों का स्वागत करने के संकेत दिए हैं।
22: हारी भी मानसिकता विपक्ष में दिखती है, यानी एक ऐसी नाव दिखती है कि जिस नाव में बैठे हुए लोगों को पता है कि ये कभी भी डूबने वाली है, और संसार में एक पाया गया है विधि का विधान है, डूबने वाली नाव में कोई नहीं बैठना चाहता। तो स्वाभाविक रूप से देश को आगे ले जा रहे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उनके साथ आने की तो सभी की इच्छा है।
0: फिलहाल शरद पवार की पार्टी इन सभी चर्चाओं को लगातार खारिज कर रही है और किसी भी तरह के राजनीतिक बदलाव से इनकार कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
9: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे मुंबई मेट्रो में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और बड़ी और अहम खबरें, आप देखते रहिए आज तक।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
24: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
23: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
9: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज के बैन होने के बाद जबरदस्त सियासत गर्म है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि आखिर फिल्म में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसे बैन करना पड़ गया।
3: दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म पर बवाल मचा हुआ है। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Z5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Z5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी, मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये पता नहीं था।
4: आई नो बहुत सारे लोग सोचते थे संडे फैमिली ना देखांगे, मैंने उसे कहा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूंगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं। पर ए पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाई सीडी बना के रख ली मैं था। बात थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ता ही मैं कल इशारा किया था भाई भी ये उड़ सकती है फिल्म।
3: अब फिल्म को लेकर पंजाब में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है।
5: मेरा मानना है कि सतलुज को बनवाने वाले, फिर दिखाने वाले, फिर बैन लगाने वाले वही फोर्सेस हैं।
3: आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि फिल्म को बैन क्यों किया गया।
6: कला दी आजादी हैगी है, लोगों के विचार प्रगट करने की आजादी है, तथ्यों को बयान करने की आजादी हैगी, उसका गला घुटिया सरकार ने।
3: सरकार कह रही है कि यह फैसला सुरक्षा संबंधी चिंताओं और आईटी रूल 2021 के तहत तय दायित्वों का हवाला देते हुए लिया गया। फिल्म मेकर्स ने सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए कट लागू नहीं किए और बाद में फिल्म का नाम बदलकर चुपचाप ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। लेकिन सवाल ये है कि फिल्म में है क्या।
25: आपको बता दें कि जसविंद सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मास क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
3: यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने आरोप लगाए थे कि 84 से 94 के बीच बेगुनाह सिखों का कत्ल हुआ। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
9: इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी है।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
24: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
23: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र राष्ट्रपति प्रोवोवो। 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्चे के बही खाते का हिसाब किताब। सीएम योगी ने वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाया आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। सीएम धामी के निर्देश पर बनी हाई लेवल कमेटी। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। भारी बारिश से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल। वायनाड में भी भीषण भूस्खलन। 4 की मौत। दिल्ली एनसीआर में जलभराव के बाद गुरुग्राम के दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। इजिप्ट को 3-2 से हराया। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में अब सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस सब वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, फीफा वर्ल्ड कप में आज का मैच बहुत जबरदस्त रोमांचक रहा है। अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इजिप्ट को हराया है और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अर्जेंटीना ने इजिप्ट को 3-2 से हराया। लियोनेल मेसी ने शानदार खेल दिखाया, जैसी कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। एक गोल किया और एक गोल करने में मदद की। मेसी ने 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो को गोल करने में असिस्ट किया और उसके बाद मेसी ने 83वें मिनट में गोंजालो मोंटियल के पास पर बेहतरीन गोल भी दागा। एंजो फर्नांडिस ने लोटारो मार्टिनेज के पास एक गोल दागा और अर्जेंटीना को 3-2 की निर्णायक लीड दिला दी। तो फुटबॉल का फीवर हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें नॉनस्टॉप 100 में।

इंडोनेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, बोले इंडोनेशिया से जो प्रेम मिला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम। इस दौरान भारत के पारंपरिक लोक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री ने किया का उनका स्वागत हुआ, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, सच्चे मित्र राष्ट्रपति प्रभुवो, पुलवामा हमले के दौरान भी भारत के साथ था जकार्ता। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला, करीब 20 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर। अमित शाह की मौजूदगी में नर्मदा परियोजना विवाद पर चार राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता, एमपी गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र के बीच सुलझा दशकों पुराना मुद्दा। वाराणसी दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, श्री काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना आशीर्वाद लिया। वाराणसी में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की स्थिति पर हुई समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री योगी ने अध्यक्षता में संपन्न हुई मीटिंग। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच और प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्च के बही खाते का हिसाब किताब, सीएम योगी ने बफ की लूट का भी मुद्दा उठाया। चढ़ावा चोरी को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले गोली चलवाने वाले अयोध्या की चिंता न करें, पहले डर के माहौल में होती थी रामनवमी। राम मंदिर ट्रस्ट से हटाए जाने के बाद चंपत राय का पहला बयान, कहा मेरे ऊपर लगाए गए अनर्गल आरोप, एसआईटी को दिया जवाब। चंपत राय ने बैंक के साथ हुए एमओयू पर गड़बड़ी के आरोप लगाए, बोले उनकी जानकारी के बिना किया गया था एमओयू पर हस्ताक्षर। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब, अनिल मिश्रा पर लगाए गए आरोपों पर बोले हाउसकीपिंग स्टाफ से कराई पैसों की गिनती। चंपत राय के समर्थन में संजय निरूपम का बयान, बोले बिना जांच पूरी हुई दोषी मानना अन्याय है, चढ़ावा चोरी महापाप है, दोषियों को कड़ी सजा मिले। अयोध्या में 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक है, चंपत राय के बाहर होने के बाद स्थायी महासचिव पद के लिए हो सकता है बड़ा फैसला। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड किया गया, आरोपी प्रमोद नौटियाल को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा गया। संभल में निर्माणाधीन पिशाच मोचन तीर्थ का लिंटर गिरा, लगभग 2 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हुआ था हादसा, यो बोले जानकारी नहीं, वीडियो वायरल होने के बाद जागा प्रशासन। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नितिन नवीन की खाली सीट पर बीजेपी ने अभिषेक कुमार को टिकट दिया है, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को टक्कर देंगे। बीजेपी शासित एक और राज्य में यूसीसी लाने की तैयारियां, राजस्थान सरकार अगले विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लाने पर कर रही है विचार। तमिलनाडु में सीएम विजय का बड़ा फैसला, शराब की दुकानों के स्टाफ की सैलरी 25% बढ़ाई। अहमदाबाद में 2018 सिविल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद बरकरार रखी, 18 साल पहले 70 मिनट में हुए 21 धमाकों में 56 की जान चली गई थी। अहमदाबाद ब्लास्ट केस पर डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी बोले हाईकोर्ट का फैसला आतंकवाद के खिलाफ ऐतिहासिक, सरकार आदेशों का पालन करेगी। हाईकोर्ट ने सरकार को 30 मार्च 2027 तक मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। मुंबई में मॉनसून के दौरान पेड़ गिरने और खुले मैनहोल की घटनाओं के बाद बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े सख्त, हादसों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश। महाराष्ट्र में बारिश का कहर, पालघर में 6 दिन में 10 लोगों की जान गई है, वहीं सिर्फ मुंबई में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत, 11 और 12 जुलाई को नागपुर में होगा आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया, इस मौके पर राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और रिज इलाकों को ग्रीन बेल्ट करने की शुरुआत हुई, राष्ट्रपति अंगरक्षक दल परिसर ने पौधारोपण अभियान के तहत 70 लाख पौधे लगाए। रक्षाबंधन पर दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा, दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी में, खाते में हर महीने भेजे जाएंगे 2500 रुपए। गाजियाबाद स्थित एनआईटीआरए नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने स्वदेशी तकनीक से बनाया हाईटेक स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट, विदेशों से आयात होने वाले सूट की तुलना में आधी कीमत पर बनाया गया है। इसरो ने अपने नाम की एक और उपलब्धि, अपने अगले LVM3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का किया है सफल फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया टेस्ट, पहली बार नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल से 22 टन के थ्रस्ट लेवल पर की गई C-20 इंजन की जांच। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी मना रहे हैं अपना 45वां बर्थडे, रांची में धोनी के फैंस ने उनके फार्म हाउस के बाहर केक काटकर मनाया उनका बर्थडे। पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा की जोरदार तैयारियां, पुलिस ने जवानों ने की है मेगा मॉक ड्रिल, 16 जुलाई को शुरू होगी यात्रा।
जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंप्स लगाए। चंद्रकोट में दी जा रही 24 घंटे मुफ्त स्वास्थ्य मदद। केरल के वायनाड में मीनाक्षी ब्रिज के पास टनल प्रोजेक्ट साइट पर बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। टैंकर गाड़ियों को बहा ले गई सुरंग की मिट्टी। 3 की मौत। रेस्क्यू मिशन पर केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन की लगातार नजर। राहत और बचाव कामों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश। पुलिस के साथ दमकल और एमबीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर कर रही हैं काम। कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया, अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया शोक। यूडीएफ कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की मदद की अपील। वायनाड भूस्खलन पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख। हर संभव मदद का भरोसा दिया। केरल में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कोझिकोड वायनाड में रेड और कासरगोड कन्नूर में ऑरेंज अलर्ट जारी। सिक्किम में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 10 बाधित हुआ। सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ने वाली अहम सड़क भी बाधित, रुका ट्रैफिक। विशाखापट्टनम तट के पास फंसे हुए एक मछुआरे के लिए भारतीय नौसेना बनी देवदूत। ईस्टर्न नेवल कमांड के हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। दिल्ली एनसीआर में मानसून की राहत वाली बारिश। कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना। बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है दिल्ली वालों को। तापमान में गिरावट। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश के बाद बदला मौसम। राहत मिली गर्मी से। कई इलाकों में जलभराव से मुश्किलें बढ़ी। गुरुग्राम में भी जोरदार बारिश के बाद बरसात की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए जारी कर दिया रेड अलर्ट। अगले 2 दिनों तक तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही है बारिश। नाला सोपारा में रेलवे ट्रैक में पानी में डूबे यात्री पैदल चलने के लिए मजबूर। महाराष्ट्र के नासिक में उफनती हुई गोदावरी नदी के किनारे पुलिस तैनात कर दी गई है। नदी में गए युवक को समझा बुझाकर बाहर निकाला गया। मानसून की जबरदस्त बारिश के बाद उफान पर गुजरात की तापी नदी उकाई बांध का बढ़ गया जलस्तर। महाराष्ट्र में हो रही जोरदार बारिश के बाद नासिक में भी जनजीवन प्रभावित हुआ। जबरदस्त जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार पर रोक। गुजरात के नवसारी में बारिश के बाद जगह जगह भर गया पानी। जलभराव के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामों में हो रही है परेशानी। सूरत में भी बारिश का कहर जारी है। शहर भर में घरों में घुस गया पानी। सड़कों पर कमर से ऊपर तक भरा पानी। फायर विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हरिद्वार में भी जमकर बरसे हैं बादल। भारी बारिश के साथ सड़कों पर भर गया पानी। ट्रैफिक और जनजीवन अस्त व्यस्त। जयपुर ग्रामीण के मालेश्वर झरने में बड़ा हादसा। तेज बहाव में गिरे 3 युवक, एक की मौत हुई, 2 को बचाया गया। गाजियाबाद में 3 मंजिला जूता शोरूम में भीषण आग लगी थी। 11 दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। गुजरात के राजकोट हाईवे पर ट्रैक्टर से भरे हुए ट्रक में भयंकर आग लगी। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। झारखंड के जमशेदपुर में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद आग लगी। हादसे में 2 चालक जिंदा जले। आग की चपेट में 4 वाहन आए। दिल्ली के प्रीत विहार में रोडरेज विवाद में हिंसक झड़प। पुलिस ने सामने युवक पर डंडों से हमला किया गया। मेरठ में चलती हुई कार में अचानक से टायर फटने के बाद पलट गई थी कार। 3 की मौत हुई, 1 घायल। अलवर में पैसे के लेनदेन के विवाद में मारपीट। कारपेंटर और साथियों ने मकान मालिक के बेटे दादा पर लाठी और डंडों से हमला बोला। टिहरी गढ़वाल में स्थित कैंथोली गांव में क्रिश्चियन सत्संग की आड़ में गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों का कथित धर्मांतरण हो रहा है। ग्रामीणों ने विरोध करके सभा को रुकवा दिया, जमकर हंगामा किया। पानीपत लव जिहाद केस में सीसीटीवी और सबूत लेकर न्याय के लिए भटक रहे परिजन। पिता बोले यूपी में होता तो अब तक एनकाउंटर हो जाता। पानीपत लव जिहाद मामले में नहर में मिला था नाबालिग लड़की का शव। लड़की को नहर में धक्का मारते आरोपी अल्ताफ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। मुजफ्फरनगर में दहेज में बुलेट की मांग और शराबी दूल्हे के हंगामे से टूटी शादी। बिना दुल्हन लौटी बारात। हरदोई में महिला लेखपाल ने एसडीएम पर अश्लील बातें करने और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए। बाद में वकील पिता ने चैंबर में हंगामा किया। अलवर में पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। पटना में अपराधियों ने दिनदहाड़े फल व्यवसायी को गोली मारी। पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। मिर्जापुर में तालाब से मिले थे 31 पासपोर्ट। 2 एजेंट गिरफ्तार, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी। संगरूर में नई की दुकान पर 2 युवकों को तारा गया मौत के घाट। आपसी रंजिश के चलते हत्या की गई। फरीदाबाद सिविल अस्पताल में 2 पक्षों में शव लेने को लेकर हंगामा। मायके ससुराल पक्ष के बीच मारपीट, संदिग्ध मौत की जांच जारी। नवी मुंबई में हिट एंड रन का मामला सामने आया। बेकाबू कार ने वाहनों को टक्कर मारी, 2 की मौत हुई, 8 घायल। पुणे मुंबई हाईवे पर पर्यटकों का अपहरण कर 5 लाख फिरौती की मांगने के मामले में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सों से कथित मारपीट का विरोध। नर्सों ने अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद की ओपीडी सेवा। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का पहला गाना रिलीज किया गया। 14 अगस्त को दुनिया भर में फिल्म रिलीज होगी। ओ माई गॉड 2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म है ओ माई डॉग। टीजर रिलीज हुआ, 31 को फिल्म रिलीज होगी।
रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण के ट्रेलर रिलीज की तारीख आ गई है सामने। 18 जुलाई को ट्रेलर लॉन्च की योजना, दिवाली पर रिलीज की जाएगा पहला पार्ट। फिल्म मेकर बोनी कपूर की बड़ी बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने शादी रचाई, बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ सात फेरे लिए। मीरा राजपूत कपूर ने शादी की सालगिरह पर पति शाहिद कपूर के लिए लिखा प्यारा सा विश। मैडम तुसाद म्यूजियम में शाहिद और उनके वैक्स स्टैच्यू के साथ पुरानी तस्वीर को शेयर किया। 5G नेटवर्क पर किए गए भारी खर्च की भरपाई के लिए टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज प्लान्स को 12 से 15% तक महंगा कर देंगे। आने वाले कुछ दिनों में दो बार में महंगा होगा फोन रिचार्ज। एक्सबॉक्स और कमर्शियल सेल्स डिवीजन के 4,800 कर्मचारियों को निकालेगी माइक्रोसॉफ्ट। AI की रफ्तार बढ़ने से 2024 की पहली छमाही में करीब 119,000 टेक कर्मचारियों की हो चुकी है छुट्टी। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और गुजरात अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में शामिल हुए। वर्ल्ड बैंक के प्रति व्यक्ति आय के मानकों के मुताबिक भारत अभी भी लोअर मिडिल इनकम वाला देश है। सरकार ने E25 पेट्रोल को 2029 तक अलग अलग फेज में लागू करने की योजना बनाई। इससे ऑटो इंडस्ट्री को इंजन तैयार करने में समय मिलेगा और कच्चे तेल का आयात घटेगा। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी यूरोपीय मानवाधिकार अदालत में अपना आखिरी केस भी हारा। 7 साल से लंदन की जेल में बंद नीरव के प्रत्यर्पण के मामले में बची आखिरी कानूनी बाधा भी खत्म। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के सीरिया दौरे के बीच बम धमाकों से हड़कंप मचा। राजधानी दमिश्क में उस होटल के बाहर हुआ था धमाका जहां ठहरे हुए हैं राष्ट्रपति मैक्रों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर कही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात, कहा ग्रीनलैंड पर डेनमार्क नहीं अमेरिका का होना चाहिए नियंत्रण। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होने की बात कही, बोले राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की में हुई यह बात, मुझे उम्मीद है जल्द ही निकल आएगा समाधान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोप को बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए रक्षा प्रणाली बनाने की जरूरत बताई है। यूक्रेन को बताया है नेटो का बड़ा साझेदार। तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो के विरोध में बड़ा प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बीच झड़प की खबर, 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। जर्मनी की इसराइल को 2-2 यरूशलम में। जर्मन विदेश मंत्री ने इजरायली विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान कहा फिलिस्तीन शासन को कमजोर करना इसराइल की सुरक्षा के हित में नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में लगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने के नारे, बड़ी संख्या में लोग ईरानी झंडे और किल ट्रंप लिखे हुए बैनर्स को लहराते नजर आए। फ्रांस के मुख्य विपक्षी नेता मरीन लापेन ने यूरोपीय यूनियन के फंड के दुरुपयोग के मामले में सुनाई गई उन्हें सख्त सजा, 1,00,000 यूरो समेत 3 साल की दी गई है सजा। 45 महीनों तक नहीं संभाल सकती कोई भी सार्वजनिक पद। चीन में बाढ़ और बारिश ने मचाई है भारी तबाही। मध्य और दक्षिणी हिस्से में खराब मौसम से 10 लोगों की मौत, उत्तर पश्चिम में भूस्खलन के बाद 15 लोग लापता।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना ने सालों तक साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखाई, भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने चाइना के ही दबदबे वाले इलाके में एक अभेद ब्रह्मोस बेल्ट तैयार कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान जिसे एक बात पर सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे। एक तरफ दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल को लेकर ऐतिहासिक रक्षा समझौते हुए, वहीं रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण सबांग पोर्ट को मिलकर विकसित करने पर मुहर लगी है। इसका अर्थ हम आपको समझाएंगे, यानी चाइना के सबसे बड़े समुद्री व्यापारिक रास्ते स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर अब भारत की सीधी मौजूदगी होगी। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस ईवीएम पर भारत के तमाम राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं, आज उसी ईवीएम और चुनाव प्रबंधन का लोहा मानकर इंडोनेशिया ने इसे अपने देश में लागू करने के लिए भारत के साथ हाथ मिलाया है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया गया विकास का रास्ता बाबा बर्फानी के अस्तित्व पर भारी पड़ गया है। जिस अमरनाथ यात्रा को 57 दिनों तक चलना था, वहां पवित्र शिवलिंग सिर्फ 4 दिनों में 90% से ज्यादा पिघल गया। 29 जून को जो शिवलिंग 12 फीट का था वो 6 जुलाई आते आते 1 फीट से भी कम रह गया। आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है या फिर पहाड़ों पर इंसानी दखल है, लाखों लोगों की भीड़ है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार मर्यादा क्यों लांघ रहे हैं। इस बार उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बेहद ही हल्कापन दिखाया है, बल्कि एक एआई वीडियो भी उसमें जोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाड़ी का रेड कार्ड वापस करवाने के लिए फीफा प्रेसिडेंट को 3 बार फोन लगाया। मतलब हर जगह दखल अंदाजी फीफा वर्ल्ड कप के मैदान में भी ट्रंप की दखल अंदाजी। और आखिर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल में ऑल इज वेल या इंजन के साथ खेल। लेकिन आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत चाणक्य की उस नीति से करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी के कई देशों पर धौंस जमाने की खूब कोशिश की, एक ऐसी रणनीति पर काम किया जिससे वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों पर सीधा दबाव बढ़ा। और तो और, चाइना ने साउथ चाइना सी के साथ भारत की घेराबंदी के लिए हमारे पड़ोसी देशों को साधने की खूब कोशिश की। खुद एक शार्क की तरह इन देशों को छोटी मछली समझकर लोन दिया, पहले पैसे दिए लोन के तौर पर और बाद में अपने आधुनिक हथियारों की भी इन देशों को सप्लाई शुरू कर दी। यानी पैसा भी चाइना का, हथियार भी चाइना का, और ये सब कुछ हुआ। और हमारे देश में आज तक चाइना की इस रणनीति पर चर्चा होती है और ये दिखाया जाता है कि चाइना बहुत आगे की सोचता है। सही बात यह है कि चाइना बहुत आगे की सोच कर चलता है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि भारत ने इसी चाइना को कैसे अपनी ब्रह्मोस बेल्ट में फंसा लिया है, भारत कितनी आगे की सोच रहा है। हम जानते हैं कि हमारे देश में कुछ लोगों को बात बात पर चाइना की तारीफ करने की आदत सी हो गई है और उन्हें हमारा ये विश्लेषण परेशान करेगा। पहले थोड़ी ये तस्वीरें देख लीजिए।

0: 8 सालों के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के द्विपक्षीय दौरे पर पहुंचे तो उनका राजधानी जकार्ता में शानदार स्वागत हुआ। ये इसलिए भी खास था क्योंकि इस बार भारत और इंडोनेशिया अपने कूटनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने वाले थे और दोनों देशों के बीच पहली बार ऐसे समझौतों पर सहमति बनने वाली थी जिन पर अब तक सिर्फ चर्चा ही हो पाती थी। दोनों देशों के बीच कुल 20 बड़े समझौते हुए जिनमें सबसे बड़ा समझौता ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हुआ। समझौते में लिखा है कोऑपरेशन ऑन ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हासिल करेगा और दोनों देश रक्षा क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाएंगे। अब यहां तक तो यह खबर विशुद्ध रूप से एक रक्षा समझौते की लगती है, लेकिन हकीकत में बात सिर्फ इतनी नहीं है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है, यानी इंडोनेशिया में 17,000 से ज्यादा द्वीप हैं और उनके आसपास कई महत्वपूर्ण ट्रेड रूट हैं, यानी व्यापार के रास्ते। जैसे इनके पास मलाका स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट है और लोम्बोक स्ट्रेट है। इनमें मलाका स्ट्रेट अहम है जहां से चाइना अपना 60% समुद्री व्यापार करता है और इसी वजह से वो इस क्षेत्र में अपनी दादागिरी दिखाता है। मलाका स्ट्रेट जहां से चाइना का 60% व्यापार होता है। अब इंडोनेशिया ने तय किया कि वो अपनी सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा मजबूत करेगा और इसीलिए उसने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला लिया है। इससे अब इंडोनेशिया की समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ेगी, तटीय रक्षा यानी समुद्री सीमा की रक्षा मजबूत होगी और किसी भी संभावित हमले के खिलाफ उसकी जवाबी क्षमता बढ़ जाएगी। यानी अगर आप देखें तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी है वो इंडोनेशिया पर चाइना के दबाव को कम करेगी और ना सिर्फ कम करेगी बल्कि भारत साउथ चाइना सी में एक ब्रह्मोस बेल्ट बनाएगा जिससे चाइना को चिंता जरूर होगी। कैसे, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा समझाती हूं। तो देखिए, हम जिस ब्रह्मोस बेल्ट की बात कर रहे हैं, यह ब्रह्मोस बेल्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे चाइना का जो दबाव रहा है अभी तक, अगर आप देखिए तो हम सबसे पहले तो आपको दक्षिण चीन महासागर जो है वो दिखा रहे हैं। इसी के साथ ये तमाम देश जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, जिनमें हम वियतनाम दिखा रहे हैं आपको, फिलीपींस दिखा रहे हैं, अगर आप देखें तो ये चाइना और ये तमाम देश अलग अलग जगहों पर किस तरह से उनका वर्चस्व है ये आपको दिखता है। तो ऐसे में जो चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि वो इन तमाम देशों पर न सिर्फ बड़े बड़े लोन लेकर देकर किसी तरीके से उनको पैसे देकर लोन देकर कम उस पर उनका उन पर वर्चस्व करे, अपने हथियार भी उनको बेचता है। तो ऐसे में इस जरिए से भी वो उन पर किसी ना किसी तरीके से वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये किस तरह से 1100 किलोमीटर का जो ये रेडियस है, ये इन देशों से आप देखिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन ये लो, ये देखिए, ये 1100 किलोमीटर की दूरी चाइना से हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे ही आप यहां पर देखिए तो ये भी 1100 किलोमीटर की दूरी और ये जो पूरा एक ट्रायंगल बनता हुआ यहां पर दिख रहा है, ये अपने आप में बताता है कि भारत किस रणनीति पर आगे चल रहा है। तो भारत ये सोच कर चल रहा है कि एक पूरा ब्रह्मोस बेल्ट वो बनाएगा जिसके जरिए चाइना जो इस पूरे इलाके में अपना वर्चस्व रखने की कोशिश कर रहा है उसे वो तोड़ेगा। अब ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए खास है क्योंकि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से दुश्मन के जहाजों, समुद्री ठिकानों और जमीन पर मौजूद सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। अगर ये देश चाइना के दबाव के बीच भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीद रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि इससे चाइना क्यों परेशान होगा। ऐसा भी नहीं है कि इंडोनेशिया भारत से सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, दोनों देशों के बीच अस्त्र मिसाइल के लिए भी समझौता हुआ है जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब इंडोनेशिया हमसे इन अस्त्र मिसाइलों को भी खरीद रहा है और ये कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ साल पहले तक दुनिया में भारत की छवि एक ऐसे देश की थी जो दुनिया में अलग अलग देशों के पास जाकर उनसे क्या करता था, हथियार खरीदता था, लेकिन आज हम दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहे हैं और हमारा रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए हो गया है जो साल 2013-14 से 5,500% ज्यादा है। अब ये हमारे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत सारे लोग इस बढ़ते जो रक्षा निर्यात है उसकी बात नहीं करना चाहते, और यही है हमारे देश की कटुता भरी राजनीति। खैर, यहां बात सिर्फ मिसाइल्स और हथियारों की नहीं है, हथियार तो बाकी देश भी इन देशों को देते हैं। भारत ने इससे आगे जाकर कुछ ऐतिहासिक किया है। भारत और इंडोनेशिया ने यह तय किया है कि दोनों देश आपसी सहयोग से सबांग पोर्ट को विकसित करेंगे। ये इंडोनेशिया का सबसे अहम बंदरगाह है जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर मौजूद है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे, ये देखिए, तो इसमें आपको सबांग पोर्ट को स्ट्रेट ऑफ मलक्का का एंट्री पॉइंट भी कहते हैं, और इसीलिए ये सबांग पोर्ट इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। चाइना के लिए इसे मलक्का डिलेमा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो समझिए। चाइना क्या करता है, वो लगभग अपना 80% जो तेल है ना, 80% तेल, कच्चा तेल, 60% से ज्यादा व्यापार, पूरा जो उसका ट्रेड है वो इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से करता है। आसान भाषा में कहें तो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक समुद्री रास्ता है, ठीक उसी तरह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी एक अहम समुद्री रास्ता है, और इसी समुद्री रास्ते पर चाइना काफी हद तक निर्भर करता है। 80% कच्चा तेल, 60% व्यापार यहीं से गुजरता है, और इंडोनेशिया उसके ठीक नीचे। अब चाइना अपनी जरूरत का कच्चा तेल भी यहां से मंगाता है और अपना निर्यात भी इसी रास्ते से करता है। कल को अगर ये रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बंद हो गया तो चाइना अपना माल दुनिया को भेज ही नहीं पाएगा, और यही कारण है कि अब जब भारत इस समुद्री रास्ते के एंट्री पॉइंट के करीब पहुंच गया है, एंट्री पॉइंट कहे जाने वाले सबांग पोर्ट को इंडोनेशिया के साथ मिलकर विकसित करने वाला है, तो इसे बहुत अहम माना जा रहा है। और इसके पीछे एक कारण यह भी है कि सबांग पोर्ट से भारत के निकोबार प्रोजेक्ट की दूरी सिर्फ 160 किलोमीटर है। यानी सबांग पोर्ट में भारत की मौजूदगी का मतलब है हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसका दबदबा बढ़ना, पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में और मलक्का स्ट्रेट में अपनी पहुंच को आसान और प्रभावी बनाना। यह इतना बड़ा है और इतना महत्वपूर्ण समझौता है कि आज हमारे देश में यह सबसे बड़ी हेडलाइन होनी चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में इस डील की जगह ईवीएम की चर्चा हो रही है। इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि इंडोनेशिया ने भारत की ईवीएम को अपने देश में लाने का फैसला किया है। इसके तहत भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया के चुनाव आयोग के बीच समझौता हुआ है। जिस ईवीएम से आप अपनी सरकार चुनते हैं, जिस ईवीएम पर आपने देश के अंदर इतना बवाल देखा है, वो इंडोनेशिया लेना चाहता है, और उसका उद्देश्य है कि इंडोनेशिया में भारत के सहयोग से भारत जैसी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना। सोचिए हमारे देश में ईवीएम पर कितने सवाल उठते हैं, लेकिन इंडोनेशिया कह रहा है कि वो भारत की ईवीएम और भारत के चुनाव प्रबंधन का कायल है, और हमसे सीख कर वो अपने देश के चुनावों की व्यवस्था सुधारना चाहता है, और भारत के अनुभव और तकनीकी सहयोग से इंडोनेशिया की अपनी ईवीएम बनाना चाहता है। और बात यहां पर सिर्फ इंडोनेशिया की नहीं है, दुनिया में 28 देश ऐसे हैं, 28, जिन्होंने भारत के चुनावी प्रबंधन और सहयोग के लिए समझौते किए हैं, जबकि कुछ देशों में भारत की ईवीएम भी इस्तेमाल हुई है। लेकिन सोचिए हमारे देश में विवाद होता है, आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी इन मशीनों में गड़बड़ी साबित कर पाई है क्या, आप भी जानते हैं। ईवीएम को छोड़िए और आप इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का यह बयान सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कई योजनाएं लागू की है जिन्हें उनकी सरकार ने भी कॉपी करने की कोशिश की। वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के करियर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, सुनिए।
1: I don't want to be involved in domestic Indian politics. I'm a friend of all Indians. But I want to admit one thing.

0: I'm admirer, and when I, even before I became president, I studied the policies of your prime minister. And because there are no copyright, you know, I copied many of his policies. But Prime Minister Modi graciously allowed me to copy his policies, so I cannot be sued in any court.
1: तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कॉपीराइट नहीं है तो मैं फॉलो करता हूं, कॉपी करता हूं, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे ऐसा करने भी दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि उनकी किसी योजना पर कोई कॉपीराइट नहीं है और वो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं।
2: तो हमारा नाता भी इतना मजबूत है और राष्ट्रपति जी मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई है, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है।
1: अब सोचिए कि अगर इंडोनेशिया भारत के अच्छे कामों की सराहना कर सकता है तो फिर इस पर चर्चा देश के अंदर भी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मानते हैं कि ये विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको राजनीति से ऊपर रखना ही अच्छा रहता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बीजेपी के नेता नहीं है, वही कह रहे हैं जो उन्होंने भारत के फैसलों से महसूस किया, लेकिन हमारे देश में आपको राजनीति में इतना खुलापन कभी नजर नहीं आएगा। खैर, इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राज्य सम्मान से भी नवाजा, जिसे बिंटांग अदिपूर्णा कहते हैं। बिंटांग का अर्थ है सितारा यानी स्टार, और अदिपूर्णा का अर्थ है सर्वोच्च, पूर्ण या उच्चतम। इसीलिए बिंटांग अदिपूर्णा का अर्थ मोटे तौर पर सर्वोच्च सम्मान का सितारा या सर्वोच्च श्रेणी का सम्मान होता है। हमारे देश में कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि यह पुरस्कार पहली बार बनाया गया है और पहली बार ही भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया, जबकि यह दावा गलत है, पूरी तरह गलत। इस पुरस्कार की स्थापना साल 1959 में हुई। नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इंडोनेशिया की तरफ से। उनसे पहले यह सम्मान भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को साल 1995 में उनके मरणोपरांत मिला था, जब इंडोनेशिया अपनी आजादी के 50 साल मना रहा था। इसके अलावा यह पुरस्कार कई दूसरे वैश्विक नेताओं को भी मिल चुका है, जिसमें क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो, पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, ब्रिटेन की पूर्व महारानी क्वीन एलिजाबेथ को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और अब यही पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। देखिए

खैर, अब तक हमने आपको इंडोनेशिया के बारे में कूटनीतिक और राजनीतिक बातें बताई, लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया के हिंदुओं ने अपनी पहचान को आज तक कैसे संरक्षित रखा। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। 28 करोड़ 80 लाख लोगों की आबादी में 87% लोग मुसलमान हैं, 87%, जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश है, जहां 145 करोड़ की आबादी में लगभग 80% हिंदू है। यानी भारत दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश है और इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, और आबादी की ऐसी संरचना के बाद भी भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे के सबसे मजबूत सहयोगी हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल होते हुए भी भगवान श्री राम का स्मरण करता है। इंडोनेशिया में रामायण का मुख्य और सबसे प्रसिद्ध संस्करण काकावीन रामायण है। ये 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच मध्य जावा के

टांग साम्राज्य में प्राचीन जावानी भाषा में लिखा गया था और ये जावानी संस्कृति का अभिन्न अंग है और वहां के लोक नाटकों में प्रमुखता से इसका खूब मंचन भी किया जाता है। इंडोनेशिया में भी हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी बाली में रहती है और ये वही बाली है जहां भारत के लोग आजकल सबसे ज्यादा छुट्टियां मना रहे हैं। बाली की कुल आबादी 43 लाख है, जिनमें सबसे ज्यादा लगभग 84% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 13.5% मुसलमान और 2.5% ईसाई धर्म के लोग इस द्वीप पर रहते हैं। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, तब उससे पहले इंडोनेशिया में दो ही धर्मों का प्रभाव था, एक था हिंदू धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। लेकिन बाद में जैसे जैसे यहां इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ, हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता चला गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब बाली में भी हिंदू धर्म के लोगों के सामने धर्म परिवर्तन कराने का संकट था। असल में साल 1945 में जब इंडोनेशिया को डेनमार्क से आजादी मिली, तो वहां इस धार्मिक विविधता को लेकर एक अजीब सी बेचैनी थी और ये कहा जाता था कि हिंदू धर्म में एक से ज्यादा भगवान है, इसलिए अपने अपने भगवान को लेकर अलग अलग मान्यताएं इंडोनेशिया को एक समाज के तौर पर विकसित नहीं होने देंगी। इसलिए तब वहां की सरकार ही पांच सिद्धांत लेकर आई थी। पांच सिद्धांत क्या थे और ये पांच सिद्धांतों को आप एक तरह से इंडोनेशिया का संविधान भी कह सकते हैं, जिसे वहां पंचशील कहते हैं। इनमें पहला सिद्धांत है, उसे मोनोथीस्ट कहा जाता है। मोनोथीस्ट का मतलब उन लोगों से है जो एक भगवान को मानते हैं। इंडोनेशिया की सरकार ने जब इस शर्त को वहां लागू किया, तो वहां रहने वाले हिंदू आबादी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। उस समय उनके सामने दो विकल्प थे, या तो हिंदू धर्म छोड़ दें, इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लें, क्योंकि इन दोनों ही धर्मों में ईश्वर को मानने का, एक ही ईश्वर को मानने का सिद्धांत है, और दूसरा विकल्प था वो हिंदू धर्म के किसी एक भगवान को ही माने और उनकी पूजा करें। तब बाली के लाखों हिंदुओं ने उस समय यह तय किया कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि वो हिंदू धर्म में ही रहकर एक ईश्वर को मानने का सिद्धांत अपनाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल था। काफी चर्चा हुई और काफी बहस के बाद साल 1964 में इंडोनेशिया की सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत यह कहा गया कि हिंदू धर्म के लोग एक ही भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हैं, और तब उन्हें एक विशेष नाम दिया गया। यह नाम था संघयंग विधि या अंचित्य। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब तब बाली और दूसरे प्रांत के हिंदुओं ने भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति के रूप में एक ही भगवान मानकर उनकी पूजा शुरू कर दी, और इस तरह वहां हिंदू समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ा। आज बाली में 650 से ज्यादा गांव में हिंदू आबादी रहती है, वहां 20,000 से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन भारत के हिंदुओं की तरह बाली के हिंदू बहुत सारे भगवानों की पूजा नहीं करते, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन पूरे इंडोनेशिया में मंदिरों की संख्या हजारों में मानी जाती है, वहां अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की संस्कृति तो मिलती है, लेकिन पूजा हिंदू एक ही भगवान की करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर हिंदू देवता गणेश जी की प्रतिमा अंकित है, तो वो गलत है। असल में साल 1998 में इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक ने 20,000 रुपए का एक नोट जारी किया था, जिस पर गणेश जी की प्रतिमा अंकित थी, लेकिन उस समय निर्धारित संख्या में ही ऐसे कुछ नोट छापे गए थे, और फिर साल 2008 में इन्हें बंद भी कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि जिन लोगों के पास ऐसे नोट हैं, वो साल 2018 तक बैंक में जाकर इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। यानी आज ये नोट इंडोनेशिया में नहीं चलता, और क्योंकि इंडोनेशिया में 6 धर्म हैं, इसलिए वहां सभी धर्मों के सम्मान में ऐसा किया जाता है। अब कल प्रधानमंत्री मोदी जावा द्वीप पर स्थित सबसे बड़े हिंदू मंदिर जाएंगे, जिसे प्रम्बानन मंदिर कहा जाता है, और ये 1,000 साल पुराना मंदिर है। देखिए,

0: is a privilege to have your presence as we commemorate this important occasion.
1: Danuan.
2: खैर आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि कूटनीति में सिर्फ मित्रता नहीं होती, इसमें शत्रुता भी होती है। कई बार ये शत्रुता अपनी मर्यादाओं को खोकर एक ऐसे स्तर पर चली जाती है जिसकी दुनिया ने उम्मीद नहीं की होती। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको राष्ट्रपति ट्रंप का ये पोस्ट देखना होगा जिसमें उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ अपना एक AI वीडियो पोस्ट किया और इस पर लिखा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नीडेड। अमेरिकी कानून में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अदालत का वो आदेश होता है जिसके तहत किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूर रहने या संपर्क ना करने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन यहां राष्ट्रपति ट्रंप ये शब्द किसके लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के लिए, एक महिला प्रधानमंत्री के लिए। और उस AI वीडियो पर लिखे जो लिखा है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को करीब से देखते हुए दिखाया गया, अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि इस पोस्ट के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप मजाक उड़ाते हुए ये संकेत दे रहे थे कि मेलोनी उनके पीछे पड़ी हुई हैं, इसलिए उन्हें उनसे बचाने के लिए अदालत का आदेश चाहिए। और सोचिए कि कितनी हल्की बात है, और ऐसा करके राष्ट्रपति ट्रंप एक देश की महिला प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह हल्कापन भी तब दिखाया है जब इससे पहले उन्होंने G7 समिट में प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात को लेकर यह कहा था कि वो उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहती थी। उन्होंने इटली के एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देते हुए शब्दशः कहा था कि प्रधानमंत्री मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांगी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मेलोनी ने राष्ट्रपति ट्रंप के इन आरोपों को गलत बताया, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप इस स्तर पर आ गए हैं कि वो उनके ऐसे AI वीडियो डालकर ये दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेलोनी उनके पीछे पड़ी हैं। हमें लगता है कि ये भद्दा और शर्मनाक है। देखिए

दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र होने का दावा करने वाला अमेरिका केवल अपनी सेना, अर्थव्यवस्था या तकनीक से नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक आचरण और गरिमा से भी अपनी पहचान बनाता था। आज भी अमेरिका की न जाने कितनी संस्थाएं हैं जो महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनके साथ होने वाले भेदभाव को लेकर अध्ययन करती हैं। लेकिन उसी अमेरिका के राष्ट्रपति जब किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश की महिला प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो यह केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं रह जाता, बल्कि अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति और राष्ट्रपति ट्रंप की मानसिकता पेश करता है। खैर, दुनिया में दादागिरी दिखाते दिखाते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फुटबॉल के मैदान तक भी पहुंच गए, और यह ऐसी खबर है जो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि पहले अमेरिका की टीम के खिलाफ के एक खिलाड़ी ने, अमेरिका की ही टीम के एक खिलाड़ी ने नियमों की धज्जियां उड़ाई, और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ऐसा ही किया। अमेरिकी फुटबॉल टीम के स्टार स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन को बोस्निया के खिलाफ मैच में विरोधी खिलाड़ी का पैर कुचलने के लिए रेफरी ने स्ट्रेट रेड कार्ड दिखाया, और नियमों के मुताबिक बालोगुन बेल्जियम के खिलाफ होने वाले नॉकआउट मैच से बाहर थे। लेकिन फिर एंट्री होती है किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को एक के बाद एक 3 फोन किए ताकि अमेरिका का जो खिलाड़ी है उसका रेड कार्ड वापस लिया जाए, और ट्रंप ने इस बात को सीना तानकर स्वीकार भी किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सिर्फ फैसला रिव्यू करने के लिए कहा, कोई दबाव नहीं बनाया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो फाउल था। सोचिए, ट्रंप ने खुद को खेल का बड़ा एक्सपर्ट समझ लिया। नतीजा, फीफा की अनुशासन समिति ने तुरंत घुटने टेक दिए। रेड कार्ड पूरी तरह माफ तो नहीं हुआ, लेकिन उस पर 1 साल का प्रोबेशन लगा दिया गया, यानी उनका बैन टल गया, उन्हें बेल्जियम के खिलाफ खेलने की इजाजत मिल गई। अब इस पर अगर आप देखिए तो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। जब नियमों को बचाने वाले ही बिक जाएं तो खेल की साख खत्म हो जाती है। पूर्व फीफा अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने तंज कसा कि रेड कार्ड राजनीतिक फोन कॉल से नहीं बल्कि नियमों से हटते हैं। हालांकि ये सिफारिशी खेल काम नहीं आया। ट्रंप ने बालोगुन को मैदान पर उतरवा तो दिया, लेकिन बेल्जियम की टीम इस पावर पॉलिटिक्स से इतनी भड़क चुकी थी कि उन्होंने गुस्से का जवाब गोल दाग कर दिया। नॉकआउट मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से रौंद डाला, वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। जिस बालोगुन को ट्रंप ने फोन करके खिलाया था वो पूरे मैच में 1 गोल तक नहीं कर पाए। मैच जीतने के बाद बेल्जियम फुटबॉल टीम ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी टीम की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, इस रिजल्ट को पलट कर दिखाओ। बेल्जियम के कोच ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि फीफा के दफ्तरों में 5 जुलाई को ही अप्रैल फूल मना लिया जाता है। फीफा के लिए यह बहुत शर्मनाक है कि जब इस वर्ल्ड कप में 11 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिला लेकिन नियम सिर्फ अमेरिकी खिलाड़ी के लिए बदले गए। खेल की गरिमा को तार तार करने की कोशिश को बेल्जियम ने 4 गोल दाग कर जो करारा जवाब दिया, उसके बाद शायद ट्रंप इस तरह की सिफारिश से पहले कई बार सोचेंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला पवित्र बर्फ का शिवलिंग, जिन्हें बर्फानी बाबा कहा जाता है, सिर्फ 4 दिनों की यात्रा में कैसे पिघल गया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपने भी शायद सोशल मीडिया पर यहां वहां कुछ तस्वीरें, 1-2 लाइन की कुछ खबर देखी होगी, लेकिन आज इसका अर्थ समझना चाहिए। और ऐसे तमाम लोग जो हिंदू धर्म को बचाने की बात करते हैं, जो सनातन के विस्तार की बात करते हैं, जो सनातन को बचाने की बात करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये यात्रा जो है अमरनाथ की, वो कुल 57 दिनों तक चलनी थी, लेकिन 4 दिन बीते और 90% पवित्र गुफा में, अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग 90% से ज्यादा पिघल गया। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे ज्यादा गर्मी, हिमालय क्षेत्र का तापमान बढ़ना, मौसम का पैटर्न, उसमें बदलाव, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। अब ये सारे कारण तो हैं, लेकिन इनसे भी बड़ा एक कारण है प्रकृति की कीमत पर सुविधाओं
और विकास का विस्तार होना। विकास और उसका विस्तार जरूरी है, लेकिन क्या प्रकृति की कीमत पर? क्या उसके लिए प्रकृति की आहुति चढ़ाना जरूरी है? आज से एक दशक पहले तक अमरनाथ यात्रा आसान नहीं होती थी और यात्रा का मार्ग बहुत मुश्किल होता था, लेकिन इसके बाद सुविधाओं के नाम पर अमरनाथ यात्रा के मार्ग में विकास पहुंचने लगा। गुफा तक जाने वाले रास्तों को चौड़ा किया गया, यात्रा के मार्ग में अस्थायी टेंट, दुकानों की संख्या बढ़ी, जो लंगर व्यवस्था चलती थी वो गुफा के नजदीक पहुंच गई। और विकास यही नहीं रुका, हाल ही में अमरनाथ यात्रा के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसी के साथ शेषनाग और पंचतरणी के बीच सुरंग बनाने पर चर्चा हो रही है। ये वो विकास है जो अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं तो दिला सकता है, लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि अगर इन सब के कारण अमरनाथ गुफा के आसपास की प्रकृति प्रभावित होती है, इसके कारण गुफा में बनने वाला शिवलिंग ही, पवित्र शिवलिंग ही 4 दिन में पिघल जाता है, तो फिर इसका क्या फायदा? सिर्फ 9 दिन पहले 29 जून को जब अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई थी, तब पवित्र बर्फ से बने शिवलिंग का आकार, जानते हैं, 12 फीट के करीब था। उस वक्त इस प्रथम पूजा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए थे और 4 दिन बाद 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। जो पहला जत्था 3 जुलाई को अमरनाथ गुफा में पहुंचा, उसका कहना है कि पवित्र शिवलिंग का आकार उसी दिन पिघलकर सिमटने लगा था, लेकिन 6 जुलाई को स्थिति गंभीर हुई। यही शिवलिंग लगभग 90% पिघल गए, 1 फीट से भी कम। और ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ है, साल 2018 में यही पवित्र शिवलिंग यात्रा के सिर्फ 29 दिनों में पिघल गया था, 2020 में कोविड आया तब यह 38 दिनों में पिघल गया, 2022 में 28 दिनों में पिघल गया, 2024 में सिर्फ 1 हफ्ते में पिघल गया, और इस बार भी ऐसा लगता है कि ये पवित्र शिवलिंग कहीं 1 हफ्ते में पूरी तरह से पिघल ना जाए। और इधर अमरनाथ गुफा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या, उनके लिए बढ़ती सुविधाएं, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ कहां ले जा रहा है? अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज से 2 दशक पहले तक ज्यादा से ज्यादा 1 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन पर आते थे, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ने से यात्रा आसान हुई, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। साल 2003 में 1,70,000, साल 2011 और 12 में यही आंकड़ा पहुंच गया 6 लाख से ज्यादा, 6,35,000। फिर साल 2016 में जब आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया, तब श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख से कम हो गई, स्थिति वहां पर ठीक नहीं थी। फिर साल 2022 के बाद से इसमें फिर वृद्धि हुई और पिछले साल 4,10,000 लोगों ने अमरनाथ यात्रा की थी। बड़ी बात यह है कि पहले जब कम श्रद्धालु आते थे तब शिवलिंग जी का आकार 18 से 22 फीट होता था, लेकिन अब यह शिवलिंग अधिकतम 12 फीट का होता है और यह भी समय से पहले पिघल जा रहा है। बड़ा कारण यही है कि लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां अमरनाथ गुफा मौजूद है, वहां तापमान तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है और ऐसा लोगों की भीड़ बढ़ने से भी हो रहा है। आज से 2 दशक पहले तक अमरनाथ यात्रा का रास्ता पूरी तरह प्राकृतिक होता था, वहां मिट्टी और चट्टान के रास्ते होते थे और लोगों के लिए इतनी ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा तक पहुंचना आसान नहीं होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उदाहरण के लिए पंचतरणी से गुफा तक का रास्ता पत्थरों वाला और ग्लेशियर के पानी के साथ बहने वाला प्राकृतिक रास्ता था, लेकिन अब इसी रास्ते से सोलर स्ट्रीट वाली लाइट्स, विश्राम स्थल, बिजली की लाइनें, जेसीबी जैसी मशीन्स, पहाड़ काटकर रास्ता चौड़ा करने का काम हुआ, जिसके कारण इस जगह की प्रकृति में बदलाव आया। बदलावों का असर यह हुआ कि आसपास के सभी पहाड़ बर्फ से लदे होते थे, वही पहाड़ आज मिट्टी और सूखे नजर आते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस इलाके की प्रकृति जो है वो तेजी से बदल रही है, इंसानों की भीड़ बढ़ रही है, लोग बिना गर्म कपड़ों के भी अमरनाथ गुफा तक पहुंच पा रहे हैं। सोचिए कितना तापमान में बदलाव आया है। 10 साल पहले जब लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते थे तो उन्हें थर्मल कपड़े और तरह तरह के, ये देखिए आजकल टी शर्ट में भी लोग पहुंच रहे हैं, पहले फुल स्लीव जैकेट, भारी जूते, टोपी, दस्ताने, बहुत पूरी तैयारी करनी पड़ती थी, पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता था। लेकिन अब जब इस इलाके में ज्यादा ठंड नहीं बची तो देखिए शर्ट टी शर्ट में भी लोग पहुंच रहे हैं। यही नहीं, जिस
महागुणस पर्वत को लेकर यह मान्यता है कि भगवान शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को यहीं छोड़ा था। वो महागुणस टॉप भी पहले बर्फ के से ढका रहता था, लेकिन अब वहां का औसत तापमान बढ़ गया है और यह हिमालय क्षेत्र में हो रहा है, जिसके कारण अमरनाथ गुफा के आसपास के 10 ग्लेशियर्स भी पिघलने लगे हैं। सरल भाषा में कहें तो जिस तरह फ्रिज में जमी बर्फ को बाहर रखने पर वो पिघलने लगती है, ठीक उसी तरह से बर्फ के विशाल ग्लेशियर्स ज्यादा गर्मी ज्यादा तापमान के कारण पिघल रहे हैं। और अभी अमरनाथ में यही हो रहा है, इसीलिए आज हमें ये सोचना होगा कि अगर अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग ही एक हफ्ते में पिघल जाएगा तो भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये शिवलिंग बनेगा ही नहीं, फिर वहां पर कौन जाएगा दर्शन के लिए और फिर इन सुविधाओं का हम क्या कर लेंगे। देखिए

0: अमरनाथ यात्रा में ये पहली बार नहीं हुआ है जब शिवलिंग अमरनाथ यात्रा के दौरान ही या कुछ ही दिन के दौरान पूरी तरह से अंतर्धामी हो गई है। अब की बार भी जिस अंदाज से तापमान पहाड़ों में और हिमालयी राज्यों में लगातार बढ़ रहा है और बढ़ रहा था, उससे साफ अंदाजा था कि अब की बार भी शिवलिंग कुछ ही दिन की मेहमान है। अब जिस अंदाज से शिवलिंग का आकार पूरी तरह से समाप्त हुआ है अमरनाथ गुफा में, जाहिर है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बात का बड़ा मलाल है कि उन्हें पवित्र गुफा में
1: ग्लोबल वार्मिंग और कुदरत की तबाही सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। आप केरल के वायनाड को देखिए, यह तस्वीर आपको हिला देगी, जहां आज भारी बारिश से भूस्खलन की ऐसी घटनाएं हुई जो चिंता पैदा करती हैं। वीडियो देखिए।

0: the Disaster Management Authority and the District Collector has already issued an order on 20th of this June to remove all this soil from the spot. The preliminary information is that the contractors of the tunnel has not obeyed the order issued by the Honorable District Collector and the Disaster Management Authority.
1: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको उस सवाल के बारे में बताते हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। सवाल यह है कि क्या 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ था उस पर 113 करोड़ रुपए खर्च होना संभव है। आज ही ये बड़ी खबर आई है कि जब राम मंदिर के मामले में SIT ने ट्रस्ट द्वारा किए गए खर्चों को अपनी जांच के दायरे में अब ले लिया है और ये बहुत बड़ी बात है। क्यों, उसके लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने केवल मंदिर से जुड़े बड़े कार्यक्रमों पर 124 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें 113 करोड़ रुपए सिर्फ 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर खर्च किए गए जिसकी अब जांच की जा रही है। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या राम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के एक कार्यक्रम पर 113 करोड़ रुपए खर्च करना संभव है। अगर मंदिर ट्रस्ट की माने तो वो यही कहता है कि इतना खर्च प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इनमें सबसे ज्यादा 35 करोड़ 97 लाख रुपए सिर्फ शेड और टेंट सिटी बनाने पर खर्च हुए, जहां मेहमानों और साधु संतों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। फिर 30 करोड़ 85 लाख रुपए अक्षत पूजन अभियान पर खर्च हुए जिस पर कई लोगों को हैरानी हो रही है। अब यह वही जनसंपर्क अभियान था जिसमें अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण देशभर के लोगों तक पहुंचाने के लिए पूजित अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल बांटे गए थे। और अभी सूत्रों के मुताबिक SIT यही कह रही है कि वो इस खर्च का भी सत्यापन कर रही है, यानी ये देख रही है कि क्या वाकई में इतना पैसा खर्च हुआ या यहां पर भी कोई गड़बड़ी हो सकती है। अक्षत पूजन अभियान के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विज्ञापनों पर 21 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च हुए। और बड़ी बात यह है कि विज्ञापनों पर इतना खर्च तो कई सरकारी विभागों, कई सरकारी मंत्रालयों का भी नहीं होता, लेकिन यहां मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि उसने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विज्ञापनों पर लगभग 22 करोड़ रुपए 22 करोड़ खर्च कर दिए। इसके बाद सजावट और लाइटिंग पर 14 करोड़ 62 लाख रुपए, भोजन और लंगर पर 5 करोड़ 11 लाख रुपए, धार्मिक पूजन पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए, भक्ति संगीत यानी राग सेवा पर 93 लाख रुपए, मंदिर में जो साउंड सिस्टम लगाया गया था उस पर 68 लाख रुपए, बिजली और मंडल पूजन पर 43 लाख रुपए और बाकी तैयारियों पर 51 लाख रुपए खर्च हुए। और ऐसा नहीं है कि SIT को शक सिर्फ इन्हीं खर्चों पर है। सूत्रों के मुताबिक SIT को इस बात पर भी हैरानी है कि महाकुंभ के दौरान राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी उन पर 43 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि 25 नवंबर 2025 को हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम पर 10 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि इस कार्यक्रम में 6000 लोग शामिल थे। खर्चों का यह पूरा विवरण अब संदिग्ध माना जा रहा है और हमारे पास ऐसी खबर है कि अगर SIT को गड़बड़ी मिलती है तो आगे इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और यहां आपको यह भी सोचना होगा कि जब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव मना, कल्पना नहीं की थी उस दिन किसी ने कि इस कार्यक्रम पर जो पैसा खर्च हो रहा है उस पर भी कभी शक होगा, लेकिन ऐसा है और ये सारे खर्च SIT की जांच के दायरे में आ गए। बात इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से मचे बवाल की करेंगे, क्योंकि बाइक और कार चलाने वालों का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी कम माइलेज दे रही है और उनके इंजन पर असर पड़ रहा है। लेकिन सरकार, कार और बाइक कंपनियां ये कह रही हैं कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों या बाइक्स पर असर नहीं पड़ रहा। अब सवाल यही है कि क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर इतनी गफलत है तो आखिर क्यों है और अलग अलग दावे क्यों किए जा रहे हैं? E20 पेट्रोल को लेकर देश में इतनी बड़ी बहस आखिर क्यों छिड़ी हुई है कि अब हमारे पड़ोसी देश भूटान के एक अखबार ने दावा कर दिया कि उनके देश ने E20 पेट्रोल लेने से मना कर दिया। द भूटानीज की रिपोर्ट में बताया गया कि भूटान ने भारत की तेल कंपनियों से कहा है कि वो उन्हें सामान्य पेट्रोल ही दें, E20 नहीं। भूटानी अखबार के दावे ने इस मामले को इंटरनेशनल बना दिया और इस वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय तुरंत हरकत में आया। एक ट्वीट में मंत्रालय की ओर से भूटानी अखबार के दावे को खारिज किया गया और कहा कि भारतीय कंपनियों की ओर से भूटान को E20 पेट्रोल देने का कोई ऑफर दिया ही नहीं गया है, इसलिए E20 पेट्रोल के प्रस्ताव को खारिज करने का सवाल ही नहीं उठता। पेट्रोलियम मंत्रालय ने फैक्ट चेक बताकर द भूटानीज के इस दावे को खारिज किया, लेकिन इस आर्टिकल को लिखने वाले भूटानी पत्रकार तेंजिंग लेमसान ने भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालय के फैक्ट चेक पर अपनी एक पोस्ट से जवाब दिया। इस पत्रकार ने भूटान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड के लिखित जवाब को ट्वीट किया, जिसे भूटान सरकार ने E20 पेट्रोल लेने से फिलहाल इनकार किया है। पत्रकार के सवाल पर भूटान के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड ने जवाब में दिया कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में हाइड्रोक्सिल समूह होता है जो उसे हाइग्रोस्कोपिक बनाता है, यानी इसका मतलब यह है कि एथेनॉल वाला पेट्रोल नमी को आसानी से खींचता है और ऐसा होने से ईंधन की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसमें बताया गया है कि भूटान की मौजूदा अंडरग्राउंड स्टोरेज पुराने हैं, ऐसे में एथेनॉल वाले पेट्रोल को आयात करने, उसके स्टोरेज और हैंडलिंग के दौरान उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना उनके लिए मुश्किल है। इसी चिंता की वजह से भारतीय तेल कंपनियों को सामान्य पेट्रोल उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय कंपनियों को एथेनॉल वाला पेट्रोल देने से पहले बताना होगा ताकि भूटान सरकार स्टोरेज को अपग्रेड कर सके। अभी E20 पेट्रोल को लेकर भारतीय जनता की अपनी अलग शिकायतें हैं। हालांकि सरकार इसके इस्तेमाल को लेकर सकारात्मक है क्योंकि इससे सरकारी खजाने को फायदा हो रहा है। साल 2014-15 से लेकर मई 2026 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से भारत को 1,90,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का फायदा ही हुआ है। एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से भारत ने 3,10,00,000 टन कच्चे तेल का आयात कम किया है। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि कच्चे तेल का आयात कम हो और कम हो, इसीलिए E20 पेट्रोल को लेकर जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उनको लेकर सरकार बार बार जवाब दे रही है। जैसे लोगों के दो मुख्य दावे हैं। पहला दावा है E20 की वजह से माइलेज 30% तक गिर जाता है। सरकार का कहना है कि माइलेज यानी एक लीटर पेट्रोल पर आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, आपकी ये माइलेज जो है ये आपकी ड्राइविंग, टायर प्रेशर, वाहन की सर्विसिंग और एसी के इस्तेमाल पर निर्भर करता है, ईंधन के प्रकार पर नहीं। लोगों की दूसरी शिकायत क्या है? E20 की वजह से उनकी बाइक हो, कार हो, उनका इंजन डैमेज हो गया है। इस पर सरकार ने कहा है कि E20 की वजह से इंजन फेलियर की बड़े पैमाने पर शिकायतें नहीं आई हैं, बल्कि E20 को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, द ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी 3 बड़ी संस्थाओं ने टेस्ट किया, सही पाया। सरकार का दावा है कि E20 पेट्रोल से गाड़ी को नुकसान नहीं होता, लेकिन यह तर्क लोगों को खटक रहा है। सवाल ये उठे हैं कि जब E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों और बाइक को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो फिर वाहन कंपनियां E20, E30 कंप्लायंट गाड़ियां क्यों लॉन्च कर रही हैं? जाहिर है अगर E20 हर प्रकार की कार और बाइक के लिए सही है तो फिर इनके हिसाब से तो गाड़ियों के इंजन और बाकी पार्ट्स अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सिग्नल की ताकत इतनी है कि 7 समंदर पार का साफ सुनाई देता है, लेकिन बगल में बैठे घर वालों की आवाज नहीं आती। नमस्कार।

राम मंदिर ट्रस्ट के दामन पर चढ़ावा चोरी के दाग हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी अब जवाबदेही से भाग रहे हैं, उल्टा चढ़ावे की चोरी से जुड़े सवालों पर सीनाजोरी पर उतारू हैं, मतलब सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। इसी बीच एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों पर चंपत राय का जवाब आया है। चंपत राय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा के सिर पर फोड़ दिया है।

0: सवालों के कटघरे में खड़ा है राम मंदिर ट्रस्ट।
1: ट्रस्ट ही जो जिस नियत से बनाया गया है वो नियत ठीक नहीं है, तो वो ट्रस्ट ही भ्रष्ट के कगार पर चला गया है।
0: चंपत राय पर इतने मेहरबान क्यों है ट्रस्टी?
2: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट की बोलती बंद क्यों?
3: बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है?
4: अनिल मिश्रा की आवाज पे हैं, आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, मैंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है।
0: चढ़ावे की चोरी और ट्रस्ट की सीना जोरी,
5: पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है।
0: जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सीधा सवाल तो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आसपास मौजूद गोविंद गिरी के चेले माइक हटाने लगते हैं। ये सीना जोरी नहीं तो क्या है?
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
5: महाराज जी आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपत, आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, आप इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
6: नहीं सर, प्लीज अभी नहीं।
0: गोविंद गिरी को सवाल चुभ गया क्योंकि उनकी जवाबदेही से जुड़ा था। सोचिए, राम धन को चोर दोनों हाथों से लूटते रहे, जिम्मेदार दोनों आंखें मूंदे बैठे रहे। राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई तो भी जिम्मेदारों की हेकड़ी कम नहीं हुई।
5: आखिरी सवाल है महाराज जी,
2: अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। एक प्रश्न पूछिए। ये आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए।
5: आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि क्या चंपत,
2: मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था।
0: कोषाध्यक्ष का सच से सामना हुआ तो बौखला गए, मीडिया को सर्टिफिकेट बांटने लगे ताकि अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके।
7: कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही, उसके रहते क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई?
2: इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं।
7: क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि
2: ये मीडिया में सुनो, मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है, उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है। ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं।
0: सवाल कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे गोविंद गिरी की भूमिका पर है, लेकिन गोविंद गिरी खुद वकील हैं, खुद जज हैं और खुद ही अपने पक्ष में फैसला सुना रहे हैं।
5: इस पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है?
6: निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि मैंने डे वन से ही उधर ध्यान दिया नहीं, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना, ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, या हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, ये स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो SOP भी LBI के साथ बना वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, मुझे भी वह इस महीने देखने मिला।
8: गोविंद गिरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, तीन की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, जबकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अपने पद पर बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस्तीफा नहीं वो देंगे। सवाल यही है कि जब तक गोविंद गिरी अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों के आका कैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि गोविंद गिरी खुद को और चंपत राय को किंचित दे चुके हैं।
0: ये आंख में धूल झोंकना नहीं तो क्या है? राम मंदिर के बड़े बड़े पदाधिकारियों की आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी का अधर्म हुआ। चोरी भी कोई और नहीं बल्कि पदाधिकारियों के करीबी निकले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय को संदेह का लाभ देते हुए समस्त जांच से मुक्त करते हुए राम भक्ति से युक्त बताया। मतलब न अपील न दलील, क्लीन चिट पर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया।
6: इस संपूर्ण कार्य को जिन्होंने पहले दिन से खड़ा किया है और जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
5: तो निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, 79 लाख से ज्यादा कैश पकड़ा गया, आप उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह है, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई?
6: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है। उनके अंतकरण के हेतु में आज भी मेरा निर्दोषत्व ही निश्चित रूप से स्थिर है।
0: चढ़ावा चोरी कांड में कानून के लंबे हाथ असल खिलाड़ियों की गर्दन तक पहुंचेंगे या फिर उनकी पहुंच और रसूख के आगे कानून के लंबे हाथ बंध जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि चढ़ावा चोरी मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका और ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों का रवैया सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि राम मंदिर में हुई चोरी के बावजूद ट्रस्ट सीना जोरी पर उतारू है। ट्रस्ट ने कबूल किया कि चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी हुई। चंपत राय के करीबियों ने चढ़ावे की चोरी की, लेकिन कसूर चंपत राय का नहीं बल्कि करीबियों का है, क्योंकि चंपत राय तो इतने भोले हैं कि खुद विश्वासघात के शिकार बन गए। मतलब चंपत राय पर सवाल मत पूछो, चंपत राय को सांत्वना देने का वक्त है। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के हर निर्णय पर सवाल ही सवाल हैं। वक्त है सवालों का जवाब देने का, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम सुनते ही ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारियों की जुबान सिल जाती है। गोपाल राव को भी ट्रस्टी दूध का धुला मानते हैं। चढ़ावे की चोरी पर ट्रस्ट की लीला समझ से परे है।
3: विषय आया माननीय श्री चंपत जी के इस्तीफे की बात, तो जितने हमारे ट्रस्टी थे सब एक स्वर से नहीं नहीं हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ट्रस्टी जो चेन्नई में रहते हैं पारसरन जी, उनने कहा नियम यह है कि स्वीकार आप करें या न करें, ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया तो अपने आप ही स्वीकार हो जाता है।
6: वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब ये हो गई सज्जनता की बात।
0: ट्रस्ट चट्टान की तरह चंपत राय के साथ खड़ा है और चढ़ावा चोरी का ठीकरा चंपत राय के करीबियों पर फोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चढ़ावे की गिनती चढ़ावे की चोरी के दोषी अनिल मिश्रा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता के साथ नहीं किया। अनिल मिश्रा पर राम मंदिर ट्रस्ट की बोलती बंद है।
6: दोषी है कि नहीं ये एसआईटी निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। एसआईटी जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है।
4: जैसे कि अभी अनिल मिश्रा जी का भी एक नाम सामने आता है कि उनको
3: विषय हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट मौन है, ठीक वैसे ही जैसे चंपत राय ने चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में जांच पूरी होने तक मौन रहने का दावा किया है। मतलब चंपत राय ने मौन का ऐलान करके बता दिया कि वो अभी सवालों का जवाब नहीं देंगे। वहीं अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, कहां हैं किसी को नहीं पता। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जब अनिल मिश्रा की आलिशान कोठी पर पहुंचे तो देखिए क्या हुआ।
4: फैमिली से हैं?
9: नहीं, हम उनके बेटे नहीं हैं।
4: फैमिली से हैं पर?
9: नहीं, हम
4: फैमिली से हैं। तो हम इस वक्त अनिल मिश्रा के आवास पे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, उन्होंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है। ये गाड़ी निकल रही है यहाँ से, दिल्ली की गाड़ी हालांकि, और ये घर अनिल मिश्रा का है और इन्हीं के घर से गाड़ी निकल रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई से बात हो सकती है 2 मिनट? तो ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी से निकल रहे हैं। बॉस 2 मिनट बात हो, तो यहाँ पर बात नहीं की है।
0: अनिल मिश्रा सामने नहीं आते, उनके घर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। मतलब यही है कि चढ़ावा चोरी की जांच की आंच से असल जिम्मेदारों को बचाने का खेल खेला जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 8 आरोपियों के सिर पर चोरी का ठीकरा फोड़कर उनके आकाओं को बचाने की कवायद चल रही है। आज तक ब्यूरो।
8: सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को लेकर भी उठाया जा रहा है, जो एक तरफ तो क्लीन चिट चंपत राय को देते हैं, दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही पर पल्ला झाड़ लेते हैं।
10: ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर पूछिए तो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं जी वो तो एकदम निर्दोष। ट्रस्ट के ताकतवर सदस्य अनिल मिश्रा को लेकर पूछिए तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं उनका फैसला एसआईटी करेगी। और खुद की जवाबदेही पर जब सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से होता है तो जवाब आता है हम तो पुणे से सब कुछ देखते थे।
11: बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे?
12: मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष है उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे, उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था।
10: अपनी कोषाध्यक्ष वाली जिम्मेदारी तो गोविंद देवगिरी पुणे से बैठकर हवा में निभाते रहे और अब कहते हैं चढ़ावा चोरी की बात सुनकर इनको दुख, वेदना, शर्म, लज्जा सब होने लगी।
12: ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया, ये हमारे लिए दुख की, वेदना की और शर्म की बात है।
10: इतना कुछ होने लगा है तो क्यों नहीं खुद गोविंद देवगिरी ट्रस्ट से अपनी जवाबदेही को लेकर इस्तीफा देते हैं।
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
10: तो फिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने की आवश्यकता क्यों? क्यों नहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा पर FIR कराते? क्यों चंपत राय के माफी मांगने से जुड़े सवाल पर ये बचने लगते?
5: आखिरी सवाल ये बता दी, कि क्या चंपत आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है, महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
10: ये तो हालत मानो जल्दबाजी है कि बस SIT की जांच में जो 8 लोग का नाम सामने आया उनको ही सजा दिलाकर बाकी चेहरे बचा लिए जाएं, जिसमें गोविंद देवगिरी को लेकर भी सवाल आता है। गोविंद देव गिरी जो पुणे से ऑडिट करने वालों को भेजकर अपने कोषाध्यक्ष वाले कर्तव्य की तीसरी करते रहे, जिनको इतना भी नहीं पता चला कि जिस ट्रस्ट के ये कोषाध्यक्ष हैं उसके कोष से चढ़ावा चोरी होता जा रहा है, लेकिन इनको वो जरूर पता चल गया जो SIT को भी पता नहीं चल पाया।
9: अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबी आ रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा, इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है। उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा यह सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो, यह करवाया गया ऐसा भी मुझे अनेक बार लगता है।
10: मतलब अपनी जिम्मेदारी वाली दृष्टि नहीं, लेकिन इनके पास सियासी दिव्य दृष्टि है, जिनको अब ये लगने लगा कि CEO की नियुक्ति हो जाएगी तो फिर कभी चढ़ावा चोरी नहीं होगी।
9: एक CEO के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ।
10: तो ये बात ट्रस्ट बनते ही क्यों नहीं कह दी, क्यों इतने लंबे वक्त तक वो पदभार उठाते रहे जिसके लिए खुद को ही योग्य नहीं मानते, और नहीं मानते तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते।
8: और इस पूरे विवाद में योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो जांच, दूसरी तरफ सियासी आंच, दोनों ही को लेकर बड़े आक्रामक हैं। विपक्ष जब सवाल कर रहा है तो मुख्यमंत्री योगी ने जवाब में पूछा है कि बफ के घोटाले पर विपक्ष का मुंह क्यों बंद रहता है।
13: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वफ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई, एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी, ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था।
14: इन लोगों की एक कुटिल चाल है, और इस कुटिल चाल में मैं इसीलिए कहता हूं, इस कुटिल चाल को देख करके अब गिरगिट भी शर्माने लग गया होगा कि चलो मुझसे भी तेज रंग बदलने वाली कोई एक नई प्रजाति आ गई है, वो समाजवादी पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में, जो कितनी तेजी के साथ रंग बदलती। कल तक एक बाबरी ढांचे के लिए आंसू बहा रहे थे, आज राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए किस प्रकार के वक्तव्य देकर के अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं।
8: देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का दौर शुरू हुआ तो तबाही भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, यूपी से लेकर दिल्ली NCR तक भारी बारिश के साथ मानसून का महाप्रहार शुरू हो गया है।
0: मानसून का महाप्रहार, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हाहाकार, बारिश मूसलाधार, सिस्टम बंटाधार, जिंदगी पर धार का वार। बारिश ने शहरों की दुर्गति बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी, बारिश ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भ्रष्टाचारियों को धो डाला, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मुसीबत मूसलाधार। इस साल मानसून देरी से आया, लेकिन आया तो ऐसा आया कि विकास के दावों को धो डाला। शहर शहर बंटाधार हो चुके सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर कर डाला। जी हाँ, जहाँ जहाँ मानसून की बारिश हो रही है देश पानी में गोते लगा रहा है, दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या पालघर, सूरत हो या गुरुग्राम, स्मार्ट सिटी भी डूबी, विकास के सारे दावे बारिश ने धो डाले। देश भर के 23 राज्यों में मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हम बात मुंबई जैसे शहर की करेंगे जहां बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट है। तो बात महाराष्ट्र के स्मार्ट सिटी पुणे की भी होगी जहां की जनता बारिश से त्रस्त है और सिस्टम को कोस रही है। बात मुंबई से सटे पालघर जिले की भी करेंगे जो इस वक्त मानसून की बारिश वाली त्रासदी झेल रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं मानसून का सबसे खौफनाक कहर जो केरल के वायनाड और जम्मू कश्मीर के डोडा में टूटा है। जी हाँ, केरल के वायनाड में इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई कि मिट्टी के साथ आया पानी भारी भरकम टैंकर तक को बहा ले गया। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से ऐसी तबाही आई कि पूरा इलाका जैसे कब्रिस्तान बन गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे में दफन हो गईं। 1:17 के इस वीडियो को देखिए। एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा है, एक टैंकर आपको दिखाई देगा, दो लोग बारिश में छाता लेकर खड़े हैं। पहले टैंकर बैक गियर में आता है, फिर टैंकर वाला आगे बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। अचानक लोग भागने लगते हैं। जी हाँ, भयंकर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होती है। मलबे का कहर ऐसा टूटता है कि भारी भरकम टैंकर को भी धकेलता चला जाता है। कई लोग इस मलबे की चपेट में आ जाते हैं। अब आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं कि कैसे भयंकर लैंडस्लाइड होती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। देखिए ये इलाका कैसे बर्बाद हो गया है। लोग फंसे हुए हैं, लापता हैं, पानी का बहाव दिख रहा है, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मॉनसून की इस तबाही में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। ये हादसा केरल में वायनाड के कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहाँ मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। पिछले साल से वायनाड और मलपुरम जिलों को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन कुदरत की एक ही चोट ने जैसे सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, मलबे में दफन हो गया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में बादल फटने से इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सब कुछ जैसे मलबे में मिल गया। डोडा में रिहायशी इलाके में मलबा आने के बाद घर और दुकान ढह गए। बादल फटने के बाद मलबा रिहायशी इलाकों में आया तो गाड़ियां मलबे में गड़ी हुई नजर आई। मलबे के साथ आए पत्थरों ने इलाके में भयंकर नुकसान किया।
15: बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड ब्रश की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मेरे मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहां बाहर आ गए तो वहां से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे, तब तक सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया।
8: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।

सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र राष्ट्रपति प्रोवोवो। 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्चे के बही खाते का हिसाब किताब। सीएम योगी ने वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाया आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। सीएम धामी के निर्देश पर बनी हाई लेवल कमेटी। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। भारी बारिश से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल। वायनाड में भी भीषण भूस्खलन। 4 की मौत। दिल्ली एनसीआर में जलभराव के बाद गुरुग्राम के दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। इजिप्ट को 3-2 से हराया। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में अब सबसे आगे। राम मंदिर ट्रस्ट के दामन पर चढ़ावा चोरी के दाग हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी अब जवाबदेही से भाग रहे हैं। उल्टा चढ़ावे की चोरी से जुड़े सवालों पर सीनाजोरी पर उतारू हैं। मतलब सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। इसी बीच एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों पर चंपत राय का जवाब आया है। चंपत राय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा के सिर पर फोड़ दिया है।

0: सवालों के कटघरे में खड़ा है राम मंदिर ट्रस्ट।
1: ट्रस्ट ही जो जिस नियत से बनाया गया है वो नियत ठीक नहीं है, जो वो ट्रस्ट ही भ्रष्ट के कगार पर चला गया है।
0: चंपत राय पर इतने मेहरबान क्यों है ट्रस्टी?
2: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट की बोलती बंद क्यों?
3: बहुत जल्दी सबका सब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है?
4: अनिल मिश्रा के आवास पे हैं, आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, उन्होंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है।
0: चढ़ावे की चोरी और ट्रस्ट की सीनाजोरी,
5: पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है।
0: जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सीधा सवाल तो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आसपास मौजूद गोविंद गिरी के चेले माइक हटाने लगते हैं। ये सीनाजोरी नहीं तो क्या है?
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
5: महाराज जी आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपत, आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक से आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
7: नहीं सर, प्लीज अभी नहीं।
0: गोविंद गिरी को सवाल चुभ गया क्योंकि उनकी जवाबदेही से जुड़ा था। सोचिए, राम धन को चोर दोनों हाथों से लूटते रहे, जिम्मेदार दोनों आंखें बूंदे बैठे रहे। राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई तो भी जिम्मेदारों की हेकड़ी कम नहीं हुई।
5: आखिरी सवाल है महाराज जी,
2: अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। एक प्रश्न पूछिए।

0: ये प्रश्न आपको, ये आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए।
1: ये बता दीजिए कि क्या चंपत,
0: मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था। एक प्रश्न
2: कोषाध्यक्ष का सच से सामना हुआ तो बौखला गए, मीडिया को सर्टिफिकेट बांटने लगे ताकि अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके।
3: कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही, उसके रहते क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई?
0: इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं।
3: क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि
0: ये मीडिया में सुनो, मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है, उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है। ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं।
2: सवाल कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे गोविंद गिरी की भूमिका पर है, लेकिन गोविंद गिरी खुद वकील हैं, खुद जज हैं और खुद ही अपने पक्ष में फैसला सुना रहे हैं।
1: इस पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है?
0: निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि मैंने डे वन से ही उधर ध्यान दिया नहीं, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में, उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना, ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, यहाँ हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, ये स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो SOP भी LBI के साथ बना, वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, मुझे भी वह इस महीने देखने मिला।
4: गोविंद गिरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, तीन की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, जबकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अपने पद पर बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस्तीफा नहीं वो देंगे। सवाल यही है कि जब तक गोविंद गिरी अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों के आका कैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि गोविंद गिरी खुद को और चंपत राय को किंचित दे चुके हैं।
2: ये आंख में धूल झोंकना नहीं तो क्या है? राम मंदिर के बड़े बड़े पदाधिकारियों की आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी का अधर्म हुआ। चोरी भी कोई और नहीं बल्कि पदाधिकारियों के करीबी निकले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय को संदेह का लाभ देते हुए समस्त जांच से मुक्त करते हुए राम भक्ति से युक्त बताया। मतलब न अपील न दलील, क्लीन चिट पर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया।
0: इस संपूर्ण कार्य को जिन्होंने पहले दिन से खड़ा किया है और जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
1: तो निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, 79 लाख से ज्यादा कैश पकड़ा गया, आप उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह है, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे चोरी हुई?
0: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष, उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है। उनके अंतकरण के हेतु में आज भी मेरा निर्दोषत्व ही निश्चित रूप से स्थिर है।
2: चढ़ावा चोरी कांड में कानून के लंबे हाथ असल खिलाड़ियों की गर्दन तक पहुंचेंगे, या फिर उनकी पहुंच और रसूख के आगे कानून के लंबे हाथ बंध जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि चढ़ावा चोरी मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका और ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों का रवैया सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि राम मंदिर में हुई चोरी के बावजूद ट्रस्ट सीना जोरी पर उतारू है। ट्रस्ट ने कबूल किया कि चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी हुई। चंपत राय के करीबियों ने चढ़ावे की चोरी की, लेकिन कसूर चंपत राय का नहीं बल्कि करीबियों का है। क्योंकि चंपत राय तो इतने भोले हैं कि खुद विश्वासघात के शिकार बन गए। मतलब चंपत राय पर सवाल मत पूछो, चंपत राय को सांत्वना देने का वक्त है। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के हर निर्णय पर सवाल ही सवाल हैं। वक्त है सवालों का जवाब देने का, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम सुनते ही ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारियों की जुबान सिल जाती है। गोपाल राव को भी ट्रस्टी दूध का धुला मानते हैं। चढ़ावे की चोरी पर ट्रस्ट की लीला समझ से परे है।
5: विषय आया माननीय श्री चंपत जी के इस्तीफे की बात, तो जितने हमारे ट्रस्टी थे सब एक स्वर से नहीं नहीं हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ट्रस्टी जो चेन्नई में रहते हैं पारासरन जी, उनने कहा नियम यह है कि स्वीकार आप करें या न करें, ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया तो अपने आप ही स्वीकार हो जाता है।
6: वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब ये हो गई सज्जनता की बात।
2: ट्रस्ट चट्टान की तरह चंपत राय के साथ खड़ा है और चढ़ावा चोरी का ठीकरा चंपत राय के करीबियों पर फोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चढ़ावे की गिनती चढ़ावे की चोरी के दोषी अनिल मिश्रा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता के साथ नहीं किया। अनिल मिश्रा पर राम मंदिर ट्रस्ट की बोलती बंद है।
0: दोषी है कि नहीं ये एसआईटी निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। एसआईटी जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है।
7: जैसे कि अभी अनिल मिश्रा जी का भी एक नाम सामने आता है कि उनको
5: विषय हम कुछ नहीं कहेंगे। बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
2: एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट मौन है, ठीक वैसे ही जैसे चंपत राय ने चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में जांच पूरी होने तक मौन रहने का दावा किया है। मतलब चंपत राय ने मौन का ऐलान करके बता दिया कि वो अभी सवालों का जवाब नहीं देंगे। वहीं अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, कहां हैं किसी को नहीं पता। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जब अनिल मिश्रा की आलिशान कोठी पर पहुंचे तो देखिए क्या हुआ।
8: फैमिली से हैं?
9: नहीं, हम उनके बेटे नहीं
8: हैं। फैमिली से हैं पर?
9: नहीं नहीं।
8: हम फैमिली से हैं? तो हम इस वक्त अनिल मिश्रा के आवास पे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, उन्होंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है। ये गाड़ी निकल रही है यहाँ से, दिल्ली की गाड़ी हालांकि, और ये घर अनिल मिश्रा का है और इन्हीं के घर से गाड़ी निकल रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई से बात हो सकती है 2 मिनट? तो ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी से निकल रहे हैं। बॉस 2 मिनट बात हो, तो यहाँ पर बात नहीं की है।
2: अनिल मिश्रा सामने नहीं आते, उनके घर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। मतलब यही है कि चढ़ावा चोरी की जांच की आंच से असल जिम्मेदारों को बचाने का खेल खेला जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 8 आरोपियों के सिर पर चोरी का ठीकरा फोड़कर उनके आकाओं को बचाने की कवायद चल रही है। आज तक ब्यूरो।
4: सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को लेकर भी उठाया जा रहा है, जो एक तरफ तो क्लीन चिट चंपत राय को देते हैं, दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही पर पल्ला झाड़ लेते हैं।
10: ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर पूछिए तो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं जी वो तो एकदम निर्दोष। ट्रस्ट के ताकतवर सदस्य अनिल मिश्रा को लेकर पूछिए तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं उनका फैसला एसआईटी करेगी। और खुद की जवाबदेही पर जब सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से होता है तो जवाब आता है हम तो पुणे से सब कुछ देखते थे।
3: बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे?
11: मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष है उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे, उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था।
10: अपनी कोषाध्यक्ष वाली जिम्मेदारी तो गोविंद देवगिरी पुणे से बैठकर हवा में निभाते रहे और अब कहते हैं चढ़ावा चोरी की बात सुनकर इनको दुख, वेदना, शर्म, लज्जा सब होने लगी।
6: ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया, ये हमारे लिए दुख की, वेदना की और शर्म की बात है।
10: इतना कुछ होने लगा है तो क्यों नहीं खुद गोविंद देवगिरी ट्रस्ट से अपनी जवाबदेही को लेकर इस्तीफा देते हैं।
1: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
0: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
10: तो फिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने की आवश्यकता क्यों? क्यों नहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा पर FIR कराते? क्यों चंपत राय के माफी मांगने से जुड़े सवाल पर ये बचने लगते?
1: आखिरी सवाल ये बता दी, कि क्या चंपा आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक से आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
0: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
1: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को भाई? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है, महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
10: ये तो हालत है, मानो जल्दबाजी है कि बस SIT की जांच में जो 8 लोग का नाम सामने आया उनको ही सजा दिलाकर बाकी चेहरे बचा लिए जाएं, जिसमें गोविंद देवगिरी को लेकर भी सवाल आता है। गोविंद देवगिरी जो पुणे से ऑडिट करने वालों को भेजकर अपने कोषाध्यक्ष वाले कर्तव्य की तिश्री करते रहे, जिनको इतना भी नहीं पता चला कि जिस ट्रस्ट के ये कोषाध्यक्ष हैं उसके कोष से चढ़ावा चोरी होता जा रहा है, लेकिन इनको वो जरूर पता चल गया जो SIT को भी पता नहीं चल पाया।
6: अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबी आ रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा, इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है। उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा यह सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो, ये करवाया गया, ऐसा भी मुझे एक बार लगता है।
10: मतलब अपनी जिम्मेदारी वाली दृष्टि नहीं, लेकिन इनके पास सियासी दिव्य दृष्टि है, जिनको अब ये लगने लगा कि CEO की नियुक्ति हो जाएगी तो फिर कभी चढ़ावा चोरी नहीं होगी।
6: एक CEO के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग है उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ।
10: तो ये बात ट्रस्ट बनते ही क्यों नहीं कह दी? क्यों इतने लंबे वक्त तक वो पदभार उठाते रहे जिसके लिए खुद को ही योग्य नहीं मानते, और नहीं मानते तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते?
4: और इस पूरे विवाद में योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो जांच, दूसरी तरफ सियासी आंच, दोनों ही को लेकर बड़े आक्रामक हैं। विपक्ष जब सवाल कर रहा है तो मुख्यमंत्री योगी ने जवाब में पूछा है कि बफ के घोटाले पर विपक्ष का मुंह क्यों बंद रहता है।
12: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वफ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई, एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी, ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था।
13: इन लोगों की एक कुटिल चाल है, और इस कुटिल चाल में मैं इसीलिए कहता हूं, इस कुटिल चाल को देख करके अब गिरगिट भी शर्माने लग गया होगा कि चलो मुझसे भी तेज रंग बदलने वाली कोई एक नई प्रजाति आ गई है, वो समाजवादी पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में, जो कितनी तेजी के साथ रंग बदलती। कल तक एक बाबरी ढांचे के लिए आंसू बहा रहे थे, आज राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए किस प्रकार के वक्तव्य देकर के अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं।
4: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा अब ईरान के प्रमुख धार्मिक शहर कुम पहुंच चुका है और कुम में खामनेई के जनाजे को नमाज भी अदा की गई। 4 जुलाई से शुरू हुई खामनेई की अंतिम यात्रा का आखिरी पड़ाव ईरान का महशद होगा और वहां 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसी बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चेतावनी दी है कि खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने को एक शत्रुतापूर्ण कदम माना जाए।
2: खामनेई की अंतिम यात्रा कोम पहुंची, लाखों लोग उमड़े। खामनेई की अंतिम यात्रा में अमेरिका ने अब धमकी क्यों दी? कोम शहर में खामनेई की यात्रा में लोगों ने लाल झंडे क्यों दिखाए? आयतुल्लाह अली खामनेई का शव इराक क्यों ले जाया जा रहा है? इराक में ईरान ने भेजी 15 राहत टीमें, कर्बला में पूरी तैयारी। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा अब शियाओं के धार्मिक शहर कोम में पहुंचा तो विदाई देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। जनाजे में लाखों लोगों ने लाल कपड़ा चढ़ाया। ये इस्लामिक परंपरा में बदले या खून की मांग का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई से शुरू हुई खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरान के लोग ऐलानिया कह रहे हैं कि वो खामनेई की मौत का बदला जरूर लेंगे। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हाफी ने कहा कि खामनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। कोम में खामनेई के ताबूत पर उनकी काली पगड़ी रखी गई। इस्लामी परंपरा में ऐसी पगड़ी सिर्फ बड़े धार्मिक विद्वान पहनते हैं। ताबूत पर ईरान का राष्ट्रीय झंडा भी ओढ़ाया गया है क्योंकि वो देश के सर्वोच्च नेता थे। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें ईरान के कोम शहर की जमकरान मस्जिद की हैं, जहां तक नजर घुमाइए काली पोशाक में अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए आए लोग ही नजर आएंगे। मस्जिद में पैर रखने की जगह तक नहीं है। लोग आ रहे हैं, अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और बाकी लोगों के लिए अंदर आने का रास्ता बना रहे हैं। कोम की जमकरान मस्जिद में खामनेई और उनके परिवार के दिवंगत सदस्यों के जनाजे की नमाज अदा की गई। जनाजे की नमाज आयतुल्लाह जवादी अमोली ने कराई। इस दौरान मस्जिद परिसर और आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ईरान का कोम शहर शिया मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। खामनेई ने अपने शुरुआती धार्मिक जीवन में यही इस्लामी शिक्षा हासिल की थी, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा का ये पड़ाव खास माना जा रहा है। वैसे कोम शहर को शिया इस्लाम की वैचारिक राजधानी माना जाता है। यहाँ कई जाने माने धार्मिक शिक्षण संस्थान और बड़े आयतुल्लाहों के केंद्र मौजूद हैं। अली खामनेई के जनाजे से जुड़ी रस्मों में इस शहर को शामिल करना शिया धार्मिक प्रतिष्ठानों के प्रति सम्मान और एकता का प्रतीक माना जा रहा है। 8 जुलाई को खामनेई की अंतिम यात्रा इराक के नजफ और कर्बला ले जाई जाएगी। ईरान ने आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए इराक में 15 राहत टीमें भेजी हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक 55% राहत कर्मी पूरी बचाव सामग्री के साथ इराक के नजफ और कर्बला पहुंच चुके हैं। ये टीमें अंतिम संस्कार से जुड़े सभी कार्यक्रम खत्म होने तक वहीं तैनात रहेंगी और जरूरत पड़ने पर लोगों को आपातकालीन और बचाव सेवाएं देंगी। खामनेई के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों से एक दिन पहले इराक के शहर कर्बला में तैयारियां तेज हो गई हैं। लोग कार्यक्रम से पहले ही बड़ी संख्या में कर्बला पहुंचने लगे हैं। इराक से होते हुए 9 जुलाई को खमेनेई की अंतिम यात्रा उनके पैतृक शहर मशहद पहुंचेगी। यहां इमाम रजा की दरगाह के अंदर खमेनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, कर्बला और समर्रा में। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने जहर देकर उनकी हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ा, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और कर्बला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहां हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज तक लगातार खमेनेई की अंतिम यात्रा की कवरेज कर रहा है। ऐसे में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी ने तेहरान के डिप्टी मेयर से खास बातचीत की।
14: The preparations for this number of ceremonies were actually held from several weeks ago, and based on the polls and the surveys and the understanding that we had from the people, we expected a huge number of people to turn out, especially in Tehran. So Tehran has something between 10 to 15 million people as residents. And there were suggestions from the other cities that many millions of people would turn out to Tehran to participate in the funeral ceremony. I mean, that was the reason why they divided into smaller sections by moving it to Qom, Iraq, and Mashhad. On Wednesday, we'd go to Iraq for the cities of Karbala and Najaf. And on Thursday, it is supposed to go to Mashhad for the burial and the final ceremony of the event, inshallah.
2: लेकिन खमेनेई की अंतिम यात्रा के बीच दावा है कि अमेरिका ने कई देशों को यहां तक चेतावनी दे दी थी कि खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने को एक शत्रुतापूर्ण कदम माना जाएगा। इससे अमेरिका के साथ उनके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। कुछ अफ्रीकी देशों को तो ये भी धमकी दी गई थी कि अगर वो ईरान गए तो अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद रोक दी जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि कम से कम 13 देशों ने या तो अपना दौरा रद्द कर दिया या फिर बड़े नेताओं की जगह छोटे अधिकारियों को भेजने का फैसला किया। इन देशों में पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, खाड़ी और पूर्वी एशिया के बड़े देश शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि आयतुल्लाह अली खमेनेई की अंतिम विदाई में उनके बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनेई शामिल नहीं हो रहे हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार इसराइल की तरफ से मिल रही लगातार हत्या की धमकियों और सुरक्षा कारणों की वजह से वो इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। तेहरान से सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र राष्ट्रपति प्रोवोवो। 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्चे के बही खाते का हिसाब किताब। सीएम योगी ने वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाया आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। सीएम धामी के निर्देश पर बनी हाई लेवल कमेटी। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। भारी बारिश से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल। वायनाड में भी भीषण भूस्खलन। 4 की मौत। दिल्ली एनसीआर में जलभराव के बाद गुरुग्राम के दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। इजिप्ट को 3-2 से हराया। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में अब सबसे आगे। राम मंदिर ट्रस्ट के दामन पर चढ़ावा चोरी के दाग हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी अब जवाबदेही से भाग रहे हैं। उल्टा चढ़ावे की चोरी से जुड़े सवालों पर सीनाजोरी पर उतारू हैं। मतलब सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। इसी बीच एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों पर चंपत राय का जवाब आया है। चंपत राय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा के सिर पर फोड़ दिया है।

0: सवालों के कटघरे में खड़ा है राम मंदिर ट्रस्ट।
1: ट्रस्ट ही जो जिस नियत से बनाया गया है वो नियत ठीक नहीं है, तो वो ट्रस्ट ही भ्रष्ट के कगार पर चला गया है।
0: चंपत राय पर इतने मेहरबान क्यों है ट्रस्टी?
2: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट की बोलती बंद क्यों?
3: बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है?
4: अनिल मिश्रा के आवास पे हैं, आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, उन्होंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है।
0: चढ़ावे की चोरी और ट्रस्ट की सीनाजोरी,
5: पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है।
0: जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सीधा सवाल तो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आसपास मौजूद गोविंद गिरी के चेले माइक हटाने लगते हैं। ये सीनाजोरी नहीं तो क्या है?
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी, जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
5: महाराज जी आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपत, आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को? भाई सर, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
7: नहीं सर, प्लीज अभी नहीं।
0: गोविंद गिरी को सवाल चुभ गया क्योंकि उनकी जवाबदेही से जुड़ा था। सोचिए, राम धन को चोर दोनों हाथों से लूटते रहे, जिम्मेदार दोनों आंखें बूंदे बैठे रहे। राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई तो भी जिम्मेदारों की हेकड़ी कम नहीं हुई।
5: आखिरी सवाल है महाराज जी,
2: अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। एक प्रश्न पूछिए। ये आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए।
5: बाकी सवाल ये बता दीजिए, कि क्या चंपत,
2: मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था।
0: कोषाध्यक्ष का सच से सामना हुआ तो बौखला गए, मीडिया को सर्टिफिकेट बांटने लगे ताकि अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके।
8: कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही उसके रहते, क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई?
2: इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं।
8: क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि
2: ये मीडिया में सुनो, मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है, उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है। ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं।
0: सवाल कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे गोविंद गिरी की भूमिका पर है, लेकिन गोविंद गिरी खुद वकील हैं, खुद जज हैं और खुद ही अपने पक्ष में फैसला सुना रहे हैं।
5: इस पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है?
2: निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि मैंने डे वन से ही उधर ध्यान दिया नहीं, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना, ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, या हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, ये स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो SOP भी LBI के साथ बना वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, मुझे भी वह इस महीने देखने मिला।
9: गोविंद गिरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव,
7: तीन की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, जबकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अपने पद पर बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस्तीफा नहीं वो देंगे। सवाल यही है कि जब तक गोविंद गिरी अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों के आका कैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि गोविंद गिरी खुद को और चंपत राय को क्लीन चिट दे चुके हैं।
0: ये आंख में धूल झोंकना नहीं तो क्या है? राम मंदिर के बड़े बड़े पदाधिकारियों की आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी का अधर्म हुआ। चोरी भी कोई और नहीं बल्कि पदाधिकारियों के करीबी निकले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय को संदेह का लाभ देते हुए समस्त जांच से मुक्त करते हुए राम भक्ति से युक्त बताया। मतलब न अपील न दलील, क्लीन चिट पर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया।
2: इस संपूर्ण कार्य को जिन्होंने पहले दिन से खड़ा किया है और जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
5: तो निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, 79 लाख से ज्यादा कैश पकड़ा गया, आप उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह है, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई?
2: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष, उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है। उनके अंतकरण के हेतु में आज भी मेरा निर्दोषत्व ही निश्चित रूप से स्थिर है।
0: चढ़ावा चोरी कांड में कानून के लंबे हाथ असल खिलाड़ियों की गर्दन तक पहुंचेंगे या फिर उनकी पहुंच और रसूख के आगे कानून के लंबे हाथ बंध जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि चढ़ावा चोरी मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका और ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों का रवैया सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि राम मंदिर में हुई चोरी के बावजूद ट्रस्ट सीना जोरी पर उतारू है। ट्रस्ट ने कबूल किया कि चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी हुई। चंपत राय के करीबियों ने चढ़ावे की चोरी की, लेकिन कसूर चंपत राय का नहीं बल्कि करीबियों का है, क्योंकि चंपत राय तो इतने भोले हैं कि खुद विश्वासघात के शिकार बन गए। मतलब चंपत राय पर सवाल मत पूछो, चंपत राय को सांत्वना देने का वक्त है। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के हर निर्णय पर सवाल ही सवाल हैं। वक्त है सवालों का जवाब देने का, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम सुनते ही ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारियों की जुबान सिल जाती है। गोपाल राव को भी ट्रस्टी दूध का धुला मानते हैं। चढ़ावे की चोरी पर ट्रस्ट की लीला समझ से परे है।
3: विषय आया माननीय श्री चंपत जी के इस्तीफे की बात, तो जितने हमारे ट्रस्टी थे सब एक स्वर से नहीं नहीं हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ट्रस्टी जो चेन्नई में रहते हैं पारासरन जी, उनने कहा नियम यह है कि स्वीकार आप करें या न करें, ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया तो अपने आप ही स्वीकार हो जाता है।
2: वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब ये हो गई सज्जनता की बात।
0: ट्रस्ट चट्टान की तरह चंपत राय के साथ खड़ा है और चढ़ावा चोरी का ठीकरा चंपत राय के करीबियों पर फोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चढ़ावे की गिनती चढ़ावे की चोरी के दोषी अनिल मिश्रा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता के साथ नहीं किया। अनिल मिश्रा पर राम मंदिर ट्रस्ट की बोलती बंद है।
2: दोषी है कि नहीं ये एसआईटी निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। एसआईटी जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है।
4: जैसे कि अभी अनिल मिश्रा जी का भी एक नाम सामने आता है कि उनको
3: हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: SIT रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा पर नामजद FIR दर्ज नहीं करवाई गई। अब SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट मौन है, ठीक वैसे ही जैसे चंपत राय ने चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में जांच पूरी होने तक मौन रहने का दावा किया है। मतलब चंपत राय ने मौन का ऐलान करके बता दिया कि वो अभी सवालों का जवाब नहीं देंगे। वहीं अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, कहां हैं किसी को नहीं पता। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जब अनिल मिश्रा की आलिशान कोठी पर पहुंचे तो देखिए क्या हुआ।
4: फैमिली से हैं?
9: नहीं, हम उनके बेटे नहीं
4: हैं। फैमिली से हैं पर?
9: नहीं नहीं।
4: हाँ, फैमिली से हैं? तो हम इस वक्त अनिल मिश्रा के आवास पे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, उन्होंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है। ये गाड़ी निकल रही है यहाँ से, दिल्ली की गाड़ी हालांकि, और ये घर अनिल मिश्रा का है और इन्हीं के घर से गाड़ी निकल रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई से बात हो सकती है 2 मिनट? तो ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी से निकल रहे हैं। बॉस 2 मिनट बात हो, तो यहाँ पर बात नहीं की है।
0: अनिल मिश्रा सामने नहीं आते, उनके घर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। मतलब यही है कि चाहवा चोरी की जांच की आंच से असल जिम्मेदारों को बचाने का खेल खेला जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 8 आरोपियों के सिर पर चोरी का ठीकरा फोड़कर उनके आकाओं को बचाने की कवायद चल रही है। आज तक ब्यूरो।
7: सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को लेकर भी उठाया जा रहा है, जो एक तरफ तो क्लीन चिट चंपत राय को देते हैं, दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही पर पल्ला झाड़ लेते हैं।
10: ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर पूछिए तो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं जी वो तो एकदम निर्दोष। ट्रस्ट के ताकतवर सदस्य अनिल मिश्रा को लेकर पूछिए तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं उनका फैसला SIT करेगी। और खुद की जवाबदेही पर जब सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से होता है तो जवाब आता है हम तो पुणे से सब कुछ देखते थे।
11: बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे?
12: मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष है उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे, उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था।
10: अपनी कोषाध्यक्ष वाली जिम्मेदारी तो गोविंद देवगिरी पुणे से बैठकर हवा में निभाते रहे और अब कहते हैं चढ़ावा चोरी की बात सुनकर इनको दुख, वेदना, शर्म, लज्जा सब होने लगी।
12: ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया, ये हमारे लिए दुख की, वेदना की और शर्म की बात है।
10: इतना कुछ होने लगा है तो क्यों नहीं खुद गोविंद देवगिरी ट्रस्ट से अपनी जवाबदेही को लेकर इस्तीफा देते हैं।
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
10: तो फिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने की आवश्यकता क्यों? क्यों नहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा पर FIR कराते? क्यों चंपत राय के माफी मांगने से जुड़े सवाल पर ये बचने लगते?
5: आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपत आखिर सवाल कि क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
10: ये तो हालत है, मानो जल्दबाजी है कि बस SIT की जांच में जो 8 लोग का नाम सामने आया उनको ही सजा दिलाकर बाकी चेहरे बचा लिए जाएं, जिसमें गोविंद देवगिरी को लेकर भी सवाल आता है। गोविंद देवगिरी जो पुणे से ऑडिट करने वालों को भेजकर अपने कोषाध्यक्ष वाले कर्तव्य की तीसरी करते रहे, जिनको इतना भी नहीं पता चला कि जिस ट्रस्ट के ये कोषाध्यक्ष हैं उसके कोष से चढ़ावा चोरी होता जा रहा है। लेकिन इनको वो जरूर पता चल गया जो SIT को भी पता नहीं चल पाया।
13: अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबी आ रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा। इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है। उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा यह सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो, यह करवाया गया, ऐसा भी मुझे एक बार लगता है।
10: मतलब अपनी जिम्मेदारी वाली दृष्टि नहीं, लेकिन इनके पास सियासी दिव्य दृष्टि है, जिनको अब ये लगने लगा कि CEO की नियुक्ति हो जाएगी तो फिर कभी चढ़ावा चोरी नहीं होगी।
13: एक CEO के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ।
10: तो ये बात ट्रस्ट बनते ही क्यों नहीं कह दी? क्यों इतने लंबे वक्त तक वो पदभार उठाते रहे जिसके लिए खुद को ही योग्य नहीं मानते? और नहीं मानते तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते?
7: देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का दौर शुरू हुआ तो तबाही भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, यूपी से लेकर दिल्ली NCR तक भारी बारिश के साथ मानसून का महाप्रहार शुरू हो गया है।
14: मानसून का महाप्रहार, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हाहाकार। बारिश मूसलाधार, सिस्टम बंटाधार, जिंदगी पर धार का वार। बारिश ने शहरों की दुर्गति बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भ्रष्टाचारियों को धो डाला। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मुसीबत मूसलाधार। इस साल मानसून देरी से आया, लेकिन आया तो ऐसा आया कि विकास के दावों को धो डाला। शहर शहर बंटाधार हो चुके सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर कर डाला। जी हाँ, जहाँ जहाँ मानसून की बारिश हो रही है देश पानी में गोते लगा रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या पालघर, सूरत हो या गुरुग्राम, स्मार्ट सिटी भी डूबी, विकास के सारे दावे बारिश ने धो डाले। देश भर के 23 राज्यों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हम बात मुंबई जैसे शहर की करेंगे जहां बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट है, तो बात महाराष्ट्र के स्मार्ट सिटी पुणे की भी होगी जहां की जनता बारिश से त्रस्त है और सिस्टम को कोस रही है। बात मुंबई से सटे पालघर जिले की भी करेंगे जो इस वक्त मानसून की बारिश वाली त्रासदी झेल रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं मानसून का सबसे खौफनाक कहर जो केरल के वायनाड और जम्मू कश्मीर के डोडा में टूटा है। जी हाँ, केरल के वायनाड में इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई कि मिट्टी के साथ आया पानी भारी भरकम टैंकर तक को बहा ले गया, तो जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से ऐसी तबाही आई कि पूरा इलाका जैसे कब्रिस्तान बन गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे में दफन हो गई। 1:17 के इस वीडियो को देखिए, एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा है, एक टैंकर आपको दिखाई देगा, दो लोग बारिश में छाता लेकर खड़े हैं। पहले टैंकर बैक गियर में आता है, फिर टैंकर वाला आगे बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। अचानक लोग भागने लगते हैं। जी हाँ, भयंकर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होती है। मलबे का कहर ऐसा टूटता है कि भारी भरकम टैंकर को भी धकेलता चला जाता है। कई लोग इस मलबे की चपेट में आ जाते हैं। अब आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं कि कैसे भयंकर लैंडस्लाइड होती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। देखिए ये इलाका कैसे बर्बाद हो गया है। लोग फंसे हुए हैं, लापता हैं, पानी का बहाव दिख रहा है, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मॉनसून की इस तबाही में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये हादसा केरल में वायनाड के कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहाँ मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। पिछले साल से वायनाड और मलपुरम जिलों को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन कुदरत की एक ही चोट ने जैसे सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, मलबे में दफन हो गया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में बादल फटने से इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सब कुछ जैसे मलबे में मिल गया। डोडा में रिहायशी इलाके में मलबा आने के बाद घर और दुकान ढह गए। बादल फटने के बाद मलबा रिहायशी इलाकों में आया तो गाड़ियां मलबे में गड़ी हुई नजर आईं। मलबे के साथ आए पत्थरों ने इलाके में भयंकर नुकसान किया।
15: बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड बर्स्ट की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मेरे मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहाँ बाहर आ गए, तो वहाँ से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे। तब तक शुद्ध सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया।
7: लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लोनावला में 900 mm बारिश के साथ ही 16 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है, जबकि 22 जगहों पर भूस्खलन की खबर है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई, पालघर, ठाणे, पुणे, नासिक समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं।
14: महाराष्ट्र में मॉनसून का आफतकाल, मुसीबत विकराल। मुंबई, पुणे, पालघर, नासिक में बारिश ने बरपाया कहर। महाराष्ट्र में मॉनसून ने खोली सिस्टम में भ्रष्टाचार की पोल। जिस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड ने मिसिंग लिंक के निर्माण पर सवाल उठा दिए और महाराष्ट्र सरकार को सुपर स्पीड से काम करवाकर एक्सप्रेसवे खोलना पड़ा, क्योंकि यहां सवाल बारिश से हुई लैंडस्लाइड का नहीं था, बल्कि 2 महीने पहले शुरू हुए मिसिंग लिंक और उसके उच्चतम क्वालिटी के काम के दावों का था। 6695 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ और एक ही बारिश में ढह गया। इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो फिर से दौड़ने लगी हैं, लेकिन अब स्मार्ट सिटी पुणे में मॉनसून से दुर्गति की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्मार्ट सिटी की सोसाइटीज में पानी भरा है, गाड़ियां पानी में गोते लगा रही हैं। लोग पानी में गोते लगाती स्मार्ट सिटी में सिस्टम कैसे ध्वस्त हो चुका है उसको कोस रहे हैं।
16: पानी आया, लाइट गया, पीने का पानी नहीं, कुछ नहीं, गाड़ियां खराब। अभी कल तो, और हम किधर जाएंगे, हमारा घर ही इधर है, गांव हमारा 500 किलोमीटर दूर है।
17: नदी का पानी ऊपर से आता है और वो सीधा वो ड्रेनेज लाइन में जाता है और ये सोसाइटी में आता है। दिस इज फॉल्टी अलाइनमेंट।
18: जितने भी यहाँ के सांसद है वो हर साल आते हैं, बताते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में या धूप में अपन करेंगे, अभी बारिश में नहीं हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सीधा आते हैं तो नेक्स्ट बारिश में। तभी तक ये यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई आके देख के नहीं जाता है।
14: और ये देखिए कैसे पुणे की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये भी एक सोसाइटी है जहां घरों के अंदर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकायदा रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन चला रही हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे पुणे की सोसाइटी का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और इसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। पालघर में मानसून का आफतकाल। बारिश ने सबसे बड़ा आफत काल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के वसई विरार और दाला सोपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। पालघर जिले में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पालघर में सूर्या नदी उफान पर है और ये देखिए कैसे सड़क और नदी मिल चुके हैं। पालघर में लगातार हो रही बारिश और आपदाओं के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर जिले के प्रमुख बांध लगभग 50% भर चुके हैं। पालघर जिले के दाला सुपारा और वसई विरार जैसे शहरों में मॉनसून बड़ी आफत बनकर आया है।
19: इस वक्त हम वसई रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे हैं। पालघर जिले के इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतना बड़ा गड्ढा है जो पानी से दिख नहीं रहा है, तो लोगों को केयरफुल रहना होगा। पूरे रास्ते में ट्रैक्स के साथ ही चलेंगे वो, ये सब तमाम चीजों को इनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आप देख लीजिए पूरा रेलवे ट्रैक पर पानी है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को अपने, क्योंकि लोकल ट्रेन नहीं मिल रही, हालांकि देख लीजिए यहाँ एक पंप भी चल रहा है लेकिन आखिर ये पंप पानी फेंकेगा कहाँ, क्योंकि पूरे आसपास वसई इलाके में यहाँ पर नाला सोपारा में पूरा पानी आसपास शहर में भी भरा हुआ है।
14: महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 48 घंटे में करीब 15 इंच यानी 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नासिक में भी आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र के 3.5 शक्ति पीठों में शामिल सप्तशृंगी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद है। बड़ी बात तो यह है कि भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून की शुरुआत काफी कमजोर रही थी और जून में बारिश सामान्य से लगभग 40% तक कम दर्ज की गई। हालांकि जुलाई की बारिश ने इस कमी को घटाकर 23% कर दिया है। मॉनसून की कमी से ये हालात हैं और महाराष्ट्र के सिस्टम में भ्रष्टाचार के छेद की पोल खुल रही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सोचिए अगर और तगड़ी बारिश हुई तो क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
7: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र राष्ट्रपति प्रोवोवो। 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्चे के बही खाते का हिसाब किताब। सीएम योगी ने वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाया आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। सीएम धामी के निर्देश पर बनी हाई लेवल कमेटी। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। भारी बारिश से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल। वायनाड में भी भीषण भूस्खलन। 4 की मौत। दिल्ली एनसीआर में जलभराव के बाद गुरुग्राम के दफ्तरों को

दाग हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी अब जवाबदेही से भाग रहे हैं, उल्टा चढ़ावे की चोरी से जुड़े सवालों पर सीनाजोरी पर उतारू हैं, मतलब सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। इसी बीच एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों पर चंपत राय का जवाब आया है। चंपत राय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा के सिर पर फोड़ दिया है।

0: सवालों के कटघरे में खड़ा है राम मंदिर ट्रस्ट।
1: ट्रस्ट ही जो जिस नियत से बनाया गया है वो नियत ठीक नहीं है, तो वो ट्रस्ट ही भ्रष्ट के कगार पर चला गया है।
0: चंपत राय पर इतने मेहरबान क्यों है ट्रस्टी?
2: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट की बोलती बंद क्यों?
3: बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है?
4: अनिल मिश्रा की आवाज पे हैं, आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, उन्होंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है।
0: चढ़ावे की चोरी और ट्रस्ट की सीना जोरी,
5: पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है।
0: जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सीधा सवाल तो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आसपास मौजूद गोविंद गिरी के चेले माइक हटाने लगते हैं। ये सीना जोरी नहीं तो क्या है?
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
5: महाराज जी आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपत आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
7: नहीं सर, प्लीज अभी नहीं।
0: गोविंद गिरी को सवाल चुभ गया क्योंकि उनकी जवाबदेही से जुड़ा था। सोचिए राम धन को चोर दोनों हाथों से लूटते रहे, जिम्मेदार दोनों आंखें बूंदे बैठे रहे। राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई तो भी जिम्मेदारों की हेकड़ी कम नहीं हुई।
5: आखिरी सवाल है महाराज जी,
2: अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। एक प्रश्न पूछिए। ये प्रश्न आपको, ये आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए।
5: बाकी सवाल ये बता दीजिए, कि क्या चंपत,
2: मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था। एक प्रश्न पूछा।
0: कोषाध्यक्ष का सच से सामना हुआ तो बौखला गए, मीडिया को सर्टिफिकेट बांटने लगे ताकि अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके।
8: कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही है उसके रहते, क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई?
2: इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं।
8: क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि
2: ये मीडिया में सुनो, मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है, ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं।
0: सवाल कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे गोविंद गिरी की भूमिका पर है, लेकिन गोविंद गिरी खुद वकील हैं, खुद जज हैं और खुद ही अपने पक्ष में फैसला सुना रहे हैं।
5: इस पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है?
6: निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही।

0: क्योंकि मैंने डे वन से ही उधर ध्यान दिया नहीं, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, यहाँ हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, ये स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो एसओपी भी एलबीआई के साथ बना वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, मुझे भी वह इस महीने देखने मिला।
1: गोविंद गिरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, तीन की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, जबकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अपने पद पर बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस्तीफा नहीं वो देंगे। सवाल यही है कि जब तक गोविंद गिरी अपने पद पर बने रहेंगे तब तक चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों के आका कैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि गोविंद गिरी खुद को और चंपत राय को क्लीन चिट दे चुके हैं।
2: आंख में धूल झोंकना नहीं तो क्या है? राम मंदिर के बड़े बड़े पदाधिकारियों की आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी का अधर्म हुआ। चोरी भी कोई और नहीं बल्कि पदाधिकारियों के करीबी निकले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय को संदेह का लाभ देते हुए समस्त जांच से मुक्त करते हुए राम भक्ति से युक्त बताया। मतलब न अपील न दलील, क्लीन चिट पर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया।
0: इस संपूर्ण कार्य को जिन्होंने पहले दिन से खड़ा किया है और जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
3: तो निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, 79 लाख से ज्यादा कैश पकड़ा गया, आप उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह है, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई?
0: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष, उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है। उनके अंतकरण के हेतु में आज भी मेरा निर्दोषत्व तो ही निश्चित रूप से स्थिर है।
2: चढ़ावा चोरी कांड में कानून के लंबे हाथ असल खिलाड़ियों की गर्दन तक पहुंचेंगे या फिर उनकी पहुंच और रसूख के आगे कानून के लंबे हाथ बंध जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि चढ़ावा चोरी मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका और ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों का रवैया सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि राम मंदिर में हुई चोरी के बावजूद ट्रस्ट सीना जोरी पर उतारू है। ट्रस्ट ने कबूल किया कि चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी हुई, चंपत राय के करीबियों ने चढ़ावे की चोरी की, लेकिन कसूर चंपत राय का नहीं बल्कि करीबियों का है, क्योंकि चंपत राय तो इतने भोले हैं कि खुद विश्वासघात के शिकार बन गए। मतलब चंपत राय पर सवाल मत पूछो, चंपत राय को सांत्वना देने का वक्त है। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के हर निर्णय पर सवाल ही सवाल हैं। वक्त है सवालों का जवाब देने का, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम सुनते ही ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारियों की जुबान सिल जाती है। गोपाल राव को भी ट्रस्टी दूध का धुला मानते हैं। चढ़ावे की चोरी पर ट्रस्ट की लीला समझ से परे है।
4: विषय आया माननीय श्री चंपत जी के इस्तीफे की बात, तो जितने हमारे ट्रस्टी थे सब एक स्वर से नहीं नहीं हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ट्रस्टी जो चेन्नई में रहते हैं पारासरन जी, उनने कहा नियम यह है कि स्वीकार आप करें या न करें, ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया तो अपने आप ही स्वीकार हो जाता है।
0: वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब ये हो गई सज्जनता की बात।
2: ट्रस्ट चट्टान की तरह चंपत राय के साथ खड़ा है और चढ़ावा चोरी का ठीकरा चंपत राय के करीबियों पर फोड़ दिया, बड़ी बात यह है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चढ़ावे की गिनती चढ़ावे की चोरी के दोषी अनिल मिश्रा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता के साथ नहीं किया। अनिल मिश्रा पर राम मंदिर ट्रस्ट की बोलती बंद है।
0: दोषी है कि नहीं ये एसआईटी निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। एसआईटी जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है।
5: जैसे कि अभी अनिल मिश्रा जी का भी एक नाम सामने आता है कि उनको
4: विषय हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
2: एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट मौन है, ठीक वैसे ही जैसे चंपत राय ने चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में जांच पूरी होने तक मौन रहने का दावा किया है। मतलब चंपत राय ने मौन का ऐलान करके बता दिया कि वो अभी सवालों का जवाब नहीं देंगे। वहीं अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, कहां हैं किसी को नहीं पता। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जब अनिल मिश्रा की आलिशान कोठी पर पहुंचे तो देखिए क्या हुआ।
6: फैमिली से हैं?
7: नहीं, हम उनके बेटे नहीं हैं।
6: फैमिली से हैं पर?
7: नहीं, हम
6: फैमिली से हैं। तो हम इस वक्त अनिल मिश्रा के आवास पे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, मैंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है। ये गाड़ी निकल रही है यहाँ से, दिल्ली की गाड़ी हालांकि, और ये घर अनिल मिश्रा का है और इन्हीं के घर से गाड़ी निकल रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई से बात हो सकती है 2 मिनट? तो ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी से निकल रहे हैं। बॉस 2 मिनट बात हो, तो यहाँ पर बात नहीं की है।
2: अनिल मिश्रा सामने नहीं आते, उनके घर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। मतलब यही है कि चढ़ावा चोरी की जांच की आंच से असल जिम्मेदारों को बचाने का खेल खेला जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 8 आरोपियों के सिर पर चोरी का ठीकरा फोड़कर उनके आकाओं को बचाने की कवायद चल रही है। आज तक ब्यूरो।
1: सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को लेकर भी उठाया जा रहा है, जो एक तरफ तो क्लीन चिट चंपत राय को देते हैं, दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही पर पल्ला झाड़ लेते हैं।
8: ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर पूछिए तो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं जी वो तो एकदम निर्दोष। ट्रस्ट के ताकतवर सदस्य अनिल मिश्रा को लेकर पूछिए तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं उनका फैसला एसआईटी करेगी। और खुद की जवाबदेही पर जब सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से होता है तो जवाब आता है हम तो पुणे से सब कुछ देखते थे।
9: बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे?
10: मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष है उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे, उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था।
8: अपनी कोषाध्यक्ष वाली जिम्मेदारी तो गोविंद देवगिरी पुणे से बैठकर हवा में निभाते रहे और अब कहते हैं चढ़ावा चोरी की बात सुनकर इनको दुख वेदना शर्म लज्जा सब होने लगी।
10: ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया, ये हमारे लिए दुख की वेदना की और शर्म की बात है।
8: इतना कुछ होने लगा है तो क्यों नहीं खुद गोविंद देवगिरी ट्रस्ट से अपनी जवाबदेही को लेकर इस्तीफा देते हैं।
3: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
0: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।
8: तो फिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने की आवश्यकता क्यों? क्यों नहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एफआईआर कराते? क्यों चंपत राय के माफी मांगने से जुड़े सवाल पर ये बचने लगते?
3: आखिरी सवाल ये बता दीजिए, कि क्या चंपा आखिर में आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
0: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
3: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
8: ये तो हालत है, मानो जल्दबाजी है कि बस SIT की जांच में जो 8 लोग का नाम सामने आया उनको ही सजा दिलाकर बाकी चेहरे बचा लिए जाएं, जिसमें गोविंद देव गिरी को लेकर भी सवाल आता है। गोविंद देव गिरी जो पुणे से ऑडिट करने वालों को भेजकर अपने कोषाध्यक्ष वाले कर्तव्य की इतिश्री करते रहे, जिनको इतना भी नहीं पता चला कि जिस ट्रस्ट के ये कोषाध्यक्ष हैं उसके कोष से चढ़ावा चोरी होता जा रहा है, लेकिन इनको वो जरूर पता चल गया जो SIT को भी पता नहीं चल पाया।
7: अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबी आ रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा, इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है। उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा यह सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो, ये करवाया गया ऐसा भी मुझे एक बार लगता है।
8: मतलब अपनी जिम्मेदारी वाली दृष्टि नहीं, लेकिन इनके पास सियासी दिव्य दृष्टि है, जिनको अब ये लगने लगा कि CEO की नियुक्ति हो जाएगी तो फिर कभी चढ़ावा चोरी नहीं होगी।
7: एक CEO के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग है उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ।
8: तो ये बात ट्रस्ट बनते ही क्यों नहीं कह दी? क्यों इतने लंबे वक्त तक वो पदभार उठाते रहे जिसके लिए खुद को ही योग्य नहीं मानते, और नहीं मानते तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते?
1: देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का दौर शुरू हुआ तो तबाही भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, यूपी से लेकर दिल्ली NCR तक भारी बारिश के साथ मानसून का महाप्रहार शुरू हो गया है।
11: मानसून का महाप्रहार, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हाहाकार। बारिश मूसलाधार, सिस्टम बंटाधार, जिंदगी पर धार का वार। बारिश ने शहरों की दुर्गति बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भ्रष्टाचारियों को धो डाला। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मुसीबत मूसलाधार। इस साल मानसून देरी से आया, लेकिन आया तो ऐसा आया कि विकास के दावों को धो डाला। शहर शहर बंटाधार हो चुके सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर कर डाला। जी हाँ, जहाँ जहाँ मानसून की बारिश हो रही है देश पानी में गोते लगा रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या पालघर, सूरत हो या गुरुग्राम, स्मार्ट सिटी भी डूबी, विकास के सारे दावे बारिश ने धो डाले। देश भर के 23 राज्यों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हम बात मुंबई जैसे शहर की करेंगे जहां बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट है, तो बात महाराष्ट्र के स्मार्ट सिटी पुणे की भी होगी, जहां की जनता बारिश से त्रस्त है और सिस्टम को कोस रही है। बात मुंबई से सटे पालघर जिले की भी करेंगे, जो इस वक्त मानसून की बारिश वाली त्रासदी झेल रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं मानसून का सबसे खौफनाक कहर, जो केरल के वायनाड और जम्मू कश्मीर के डोडा में टूटा है। जी हाँ, केरल के वायनाड में इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई कि मिट्टी के साथ आया पानी भारी भरकम टैंकर तक को बहा ले गया। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से ऐसी तबाही आई
2: कि पूरा इलाका जैसे कब्रिस्तान बन गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे में दफन हो गईं। 1:17 के इस वीडियो को देखिए। एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा है, एक टैंकर आपको दिखाई देगा, दो लोग बारिश में छाता लेकर खड़े हैं। पहले टैंकर बैक गियर में आता है, फिर टैंकर वाला आगे बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। अचानक लोग भागने लगते हैं। जी हाँ, भयंकर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होती है। मलबे का कहर ऐसा टूटता है कि भारी भरकम टैंकर को भी धकेलता चला जाता है। कई लोग इस मलबे की चपेट में आ जाते हैं। अब आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं कि कैसे भयंकर लैंडस्लाइड होती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। देखिए ये इलाका कैसे बर्बाद हो गया है। लोग फंसे हुए हैं, लापता हैं, पानी का बहाव दिख रहा है, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मॉनसून की इस तबाही में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये हादसा केरल में वायनाड के कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहाँ मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। पिछले साल से वायनाड और मलपुरम जिलों को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन कुदरत की एक ही चोट ने जैसे सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, मलबे में दफन हो गया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में बादल फटने से इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सब कुछ जैसे मलबे में मिल गया। डोडा में रिहायशी इलाके में मलबा आने के बाद घर और दुकान ढह गए। बादल फटने के बाद मलबा रिहायशी इलाकों में आया तो गाड़ियां मलबे में गड़ी हुई नजर आईं। मलबे के साथ आए पत्थरों ने इलाके में भयंकर नुकसान किया।
12: बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड ब्रश की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मेरे मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहाँ बाहर आ गए, तो वहाँ से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भाग गए। तब तक शुद्ध सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया।
1: लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लोनावला में 900 mm बारिश के साथ ही 16 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है, जबकि 22 जगहों पर भूस्खलन की खबर है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई, पालघर, ठाणे, पुणे, नासिक समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं।
2: महाराष्ट्र में मॉनसून का आफतकाल, मुसीबत विकराल। मुंबई, पुणे, पालघर, नासिक में बारिश ने बरपाया कहर। महाराष्ट्र में मॉनसून ने खोली सिस्टम में भ्रष्टाचार की पोल। जिस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड ने मिसिंग लिंक के निर्माण पर सवाल उठा दिए और महाराष्ट्र सरकार को सुपर स्पीड से काम करवाकर एक्सप्रेसवे खोलना पड़ा, क्योंकि यहां सवाल बारिश से हुई लैंडस्लाइड का नहीं था, बल्कि 2 महीने पहले शुरू हुए मिसिंग लिंक और उसके उच्चतम क्वालिटी के काम के दावों का था। 6695 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ और एक ही बारिश में ढह गया। इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो फिर से दौड़ने लगी हैं, लेकिन अब स्मार्ट सिटी पुणे में मॉनसून से दुर्गति की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्मार्ट सिटी की सोसाइटीज में पानी भरा है, गाड़ियां पानी में गोते लगा रही हैं। लोग पानी में गोते लगाती स्मार्ट सिटी में सिस्टम कैसे ध्वस्त हो चुका है उसको कोस रहे हैं।
13: पानी आया, लाइट गया, पीने का पानी नहीं, कुछ नहीं, गाड़ियां खराब। अभी कल तो, और हम किधर जाएंगे, हमारा घर ही इधर है, गांव हमारा 500 किलोमीटर दूर है।
14: नदी का पानी ऊपर से आता है और वो सीधा वो ड्रेनेज लाइन में जाता है और ये सोसाइटी में आता है, दिस इज फॉल्टी अलाइनमेंट।
15: जितने भी यहाँ के सांसद है वो हर साल आते हैं, बताते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में या धूप में अपन करेंगे, अभी बारिश में नहीं हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सीधा आते हैं तो नेक्स्ट बारिश में, तभी तक ये यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई आके देख के नहीं जाता है।
11: और ये देखिए कैसे पुणे की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये भी एक सोसाइटी है जहां घरों के अंदर से रेस्क्यू किया जा रहा है, बाकायदा रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन चला रही हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे पुणे की इस सोसाइटी का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और इसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। पालघर में मानसून का आफत कार, बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हां, पालघर के वसई विरार और दाला सोपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। पालघर जिले में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पालघर में सूर्या नदी उफान पर है और ये देखिए कैसे सड़क और नदी मिल चुके हैं। पालघर में लगातार हो रही बारिश और आपदाओं के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर जिले के प्रमुख बांध लगभग 50% भर चुके हैं। पालघर जिले के नाला सुपारा और वसई विरार जैसे शहरों में मानसून बड़ी आफत बनकर आया है।
16: इस वक्त हम वसई रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे हैं। पालघर जिले के इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतना बड़ा गड्ढा है जो पानी से दिख नहीं रहा है, तो लोगों को केयरफुल रहना होगा, पूरे रास्ते में ट्रैक्स के साथ ही चलेंगे वो, ये सब तमाम चीजों को इनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आप देख लीजिए पूरा रेलवे ट्रैक पर पानी है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को अपने, क्योंकि लोकल ट्रेन नहीं मिल रही, हालांकि देख लीजिए यहाँ एक पंप भी चल रहा है लेकिन आखिर ये पंप पानी फेंकेगा कहाँ, क्योंकि पूरे आसपास वसई इलाके में यहाँ पर नाला सोपारा में पूरा पानी आसपास शहर में भी भरा हुआ है।
11: महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 48 घंटे में करीब 15 इंच यानी 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नासिक में भी आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र के 3.5 शक्ति पीठों में शामिल सप्तशृंगी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद है। बड़ी बात तो ये है कि भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत काफी कमजोर रही थी और जून में बारिश सामान्य से लगभग 40% तक कम दर्ज की गई। हालांकि जुलाई की बारिश ने इस कमी को घटाकर 23% कर दिया है। मानसून की कमी से ये हालात हैं और महाराष्ट्र के सिस्टम में भ्रष्टाचार के छेद की पोल खुल रही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सोचिए अगर और तगड़ी बारिश हुई तो क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।

सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र राष्ट्रपति प्रोवोवो। 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्चे के बही खाते का हिसाब किताब। सीएम योगी ने वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाया आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। सीएम धामी के निर्देश पर बनी हाई लेवल कमेटी। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। भारी बारिश से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल। वायनाड में भी भीषण भूस्खलन। 4 की मौत। दिल्ली एनसीआर में जलभराव के बाद गुरुग्राम के दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। इजिप्ट को 3-2 से हराया। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में अब सबसे आगे। राम मंदिर ट्रस्ट के दामन पर चढ़ावा चोरी के दाग हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी अब जवाबदेही से भाग रहे हैं। उल्टा चढ़ावे की चोरी से जुड़े सवालों पर सीनाजोरी पर उतारू हैं। मतलब सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। इसी बीच एसआईटी के अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों पर चंपत राय का जवाब आया है। चंपत राय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा के सिर पर फोड़ दिया है।

0: सवालों के कटघरे में खड़ा है राम मंदिर ट्रस्ट।
1: ट्रस्ट ही जो जिस नियत से बनाया गया है वो नियत ठीक नहीं है, तो वो ट्रस्ट ही भ्रष्ट के कगार पर चला गया है।
0: चंपत राय पर इतने मेहरबान क्यों है ट्रस्टी?
2: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट की बोलती बंद क्यों?
3: बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है?
4: अनिल मिश्रा की आवाज में आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, मैंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है।
0: चढ़ावे की चोरी और ट्रस्ट की सीना जोरी,
5: पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है।
0: जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सीधा सवाल तो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आसपास मौजूद गोविंद गिरी के चेले माइक हटाने लगते हैं। ये सीना जोरी नहीं तो क्या है?
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
5: महाराज जी आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपत, आखिरी सवाल कि क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, आप इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
6: नहीं सर, प्लीज अभी नहीं।
0: गोविंद गिरी को सवाल चुभ गया क्योंकि उनकी जवाबदेही से जुड़ा था। सोचिए, राम धन को चोर दोनों हाथों से लूटते रहे, जिम्मेदार दोनों आंखें मूंदे बैठे रहे। राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई तो भी जिम्मेदारों की हेकड़ी कम नहीं हुई।
5: आखिरी सवाल है महाराज जी,
7: अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। एक प्रश्न पूछिए। ये आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए।
5: आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि क्या चंपत,
7: मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था।
0: कोषाध्यक्ष का सच से सामना हुआ तो बौखला गए, मीडिया को सर्टिफिकेट बांटने लगे ताकि अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके।
8: कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही, उसके रहते क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई?
7: इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं।
8: क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि
7: ये मीडिया में सुनो, मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है, ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं।
0: सवाल कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे गोविंद गिरी की भूमिका पर है, लेकिन गोविंद गिरी खुद वकील हैं, खुद जज हैं और खुद ही अपने पक्ष में फैसला सुना रहे हैं।
5: इस पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है?
6: निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि मैंने डे वन से ही उधर ध्यान दिया नहीं, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना, ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, यहाँ हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, ये स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो SOP भी LBI के साथ बना वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, मुझे भी वह इस महीने देखने मिला।
9: गोविंद गिरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, तीन की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, जबकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अपने पद पर बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस्तीफा नहीं वो देंगे। सवाल यही है कि जब तक गोविंद गिरी अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों के आका कैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि गोविंद गिरी खुद को और चंपत राय को क्लीन चिट दे चुके हैं।
0: ये आंख में धूल झोंकना नहीं तो क्या है? राम मंदिर के बड़े बड़े पदाधिकारियों की आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी का अधर्म हुआ। चोरी भी कोई और नहीं बल्कि पदाधिकारियों के करीबी निकले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय को संदेह का लाभ देते हुए समस्त जांच से मुक्त करते हुए राम भक्ति से युक्त बताया। मतलब न अपील न दलील, क्लीन चिट पर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया।
6: इस संपूर्ण कार्य को जिन्होंने पहले दिन से खड़ा किया है और जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
5: तो निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, 79 लाख से ज्यादा कैश पकड़ा गया, आप उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह है, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई?
6: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष, उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है। उनके अंतकरण के हेतु में आज भी मेरा निर्दोषत्व ही निश्चित रूप से स्थिर है।
0: चढ़ावा चोरी कांड में कानून के लंबे हाथ असल खिलाड़ियों की गर्दन तक पहुंचेंगे या फिर उनकी पहुंच और रसूख के आगे कानून के लंबे हाथ बंद जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि चढ़ावा चोरी मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका और ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों का रवैया सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि राम मंदिर में हुई चोरी के बावजूद ट्रस्ट सीना जोरी पर उतारू है। ट्रस्ट ने कबूल किया कि चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी हुई। चंपत राय के करीबियों ने चढ़ावे की चोरी की, लेकिन कसूर चंपत राय का नहीं बल्कि करीबियों का है, क्योंकि चंपत राय तो इतने भोले हैं कि खुद विश्वासघात के शिकार बन गए। मतलब चंपत राय पर सवाल मत पूछो, चंपत राय को सांत्वना देने का वक्त है। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के हर निर्णय पर सवाल ही सवाल हैं। वक्त है सवालों का जवाब देने का, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम सुनते ही ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारियों की जुबान सिल जाती है। गोपाल राव को भी ट्रस्टी दूध का धुला मानते हैं। चढ़ावे की चोरी पर ट्रस्ट की लीला समझ से परे है।
3: विषय आया माननीय श्री चंपत जी के इस्तीफे की बात, तो जितने हमारे ट्रस्टी थे सब एक स्वर से नहीं नहीं हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ट्रस्टी जो चेन्नई में रहते हैं पारासरन जी, उनने कहा नियम यह है कि स्वीकार आप करें या न करें, ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया तो अपने आप ही स्वीकार हो जाता है।
2: वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब ये हो गई सज्जनता की बात।
0: ट्रस्ट चट्टान की तरह चंपत राय के साथ खड़ा है और चढ़ावा चोरी का ठीकरा चंपत राय के करीबियों पर फोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चढ़ावे की गिनती चढ़ावे की चोरी के दोषी अनिल मिश्रा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता के साथ नहीं किया। अनिल मिश्रा पर राम मंदिर ट्रस्ट की बोलती बंद है।
6: दोषी है कि नहीं ये एसआईटी निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। एसआईटी जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है।
4: जैसे कि अभी अनिल मिश्रा जी का भी एक नाम सामने आता है कि उनको
3: हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट मौन है, ठीक वैसे ही जैसे चंपत राय ने चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में जांच पूरी होने तक मौन रहने का दावा किया है। मतलब चंपत राय ने मौन का ऐलान करके बता दिया कि वो अभी सवालों का जवाब नहीं देंगे। वहीं अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, कहां हैं किसी को नहीं पता। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जब अनिल मिश्रा की आलिशान कोठी पर पहुंचे तो देखिए क्या हुआ।
4: फैमिली से हैं?
10: नहीं, हम उनके बेटे नहीं।
4: फैमिली से हैं पर?
10: नहीं।
4: फैमिली से हैं? तो हम इस वक्त अनिल मिश्रा के आवास पे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, मैंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है। ये गाड़ी निकल रही है यहाँ से, दिल्ली की गाड़ी हालांकि, और ये घर अनिल मिश्रा का है और इन्हीं के घर से गाड़ी निकल रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई से बात हो सकती है 2 मिनट? तो ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी से निकल रहे हैं। बॉस 2 मिनट बात हो, तो यहाँ पर बात नहीं की है।
0: अनिल मिश्रा सामने नहीं आते, उनके घर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। मतलब यही है कि चढ़ावा चोरी की जांच की आंच से असल जिम्मेदारों को बचाने का खेल खेला जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 8 आरोपियों के सिर पर चोरी का ठीकरा फोड़कर उनके आकाओं को बचाने की कवायद चल रही है। आज तक ब्यूरो।
9: सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को लेकर भी उठाया जा रहा है, जो एक तरफ तो क्लीन चिट चंपत राय को देते हैं, दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही पर पल्ला झाड़ लेते हैं।
11: ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर पूछिए तो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं जी वो तो एकदम निर्दोष। ट्रस्ट के ताकतवर सदस्य अनिल मिश्रा को लेकर पूछिए तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं उनका फैसला एसआईटी करेगी। और खुद की जवाबदेही पर जब सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से होता है तो जवाब आता है हम तो पुणे से सब कुछ देखते थे।
12: बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे?
13: मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष है उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे, उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था।
11: अपनी कोषाध्यक्ष वाली जिम्मेदारी तो गोविंद देवगिरी पुणे से बैठकर हवा में निभाते रहे और अब कहते हैं चढ़ावा चोरी की बात सुनकर इनको दुख, वेदना, शर्म, लज्जा सब होने लगी।
13: ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया, ये हमारे लिए दुख की, वेदना की और शर्म की बात है।
11: इतना कुछ होने लगा है तो क्यों नहीं खुद गोविंद देवगिरी ट्रस्ट से अपनी जवाबदेही को लेकर इस्तीफा देते हैं।
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे।
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
11: तो फिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने की आवश्यकता क्यों? क्यों नहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा पर ये FIR कराते? क्यों चंपत राय के माफी मांगने से जुड़े सवाल पर ये बचने लगते?
5: आखिरी सवाल ये बता दी, कि क्या चंपत आखिर में आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज जी।
11: ये तो हालत मानो जल्दबाजी है कि बस SIT की जांच में जो 8 लोग का नाम सामने आया उनको ही सजा दिलाकर बाकी चेहरे बचा लिए जाएं, जिसमें गोविंद देवगिरी को लेकर भी सवाल आता है। गोविंद देवगिरी जो पुणे से ऑडिट करने वालों को भेजकर अपने कोषाध्यक्ष वाले कर्तव्य की तीसरी करते रहे, जिनको इतना भी नहीं पता चला कि जिस ट्रस्ट के ये कोषाध्यक्ष हैं उसके कोष से चढ़ावा चोरी होता जा रहा है। लेकिन इनको वो जरूर पता चल गया जो एसआईटी को भी पता नहीं चल पाया।
10: अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबियां रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा, इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है। उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा ये सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो, यह करवाया गया, ऐसा भी मुझे एक बार लगता है।
11: मतलब अपनी जिम्मेदारी वाली दृष्टि नहीं, लेकिन इनके पास सियासी दिव्य दृष्टि है, जिनको अब ये लगने लगा कि सीईओ की नियुक्ति हो जाएगी तो फिर कभी चढ़ावा चोरी नहीं होगी।
10: एक सीईओ के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ।
11: तो ये बात ट्रस्ट बनते ही क्यों नहीं कह दी? क्यों इतने लंबे वक्त तक वो पदभार उठाते रहे जिसके लिए खुद को ही योग्य नहीं मानते? और नहीं मानते तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते?
9: देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का दौर शुरू हुआ तो तबाही भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, यूपी से लेकर दिल्ली एनसीआर तक भारी बारिश के साथ मानसून का महाप्रहार शुरू हो गया है।
14: मानसून का महाप्रहार, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हाहाकार। बारिश मूसलाधार, सिस्टम बंटाधार, जिंदगी पर धार का वार। बारिश ने शहरों की दुर्गति बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भ्रष्टाचारियों को धो डाला। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मुसीबत मूसलाधार। इस साल मानसून देरी से आया, लेकिन आया तो ऐसा आया कि विकास के दावों को धो डाला। शहर शहर बंटाधार हो चुके सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर कर डाला। जी हाँ, जहाँ जहाँ मानसून की बारिश हो रही है देश पानी में गोते लगा रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या पालघर, सूरत हो या गुरुग्राम, स्मार्ट सिटी भी डूबी, विकास के सारे दावे बारिश ने धो डाले। देश भर के 23 राज्यों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हम बात मुंबई जैसे शहर की करेंगे जहां बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट है, तो बात महाराष्ट्र के स्मार्ट सिटी पुणे की भी होगी जहां की जनता बारिश से त्रस्त है और सिस्टम को कोस रही है। बात मुंबई से सटे पालघर जिले की भी करेंगे जो इस वक्त मानसून की बारिश वाली त्रासदी झेल रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं मानसून का सबसे खौफनाक कहर जो केरल के वायनाड और जम्मू कश्मीर के डोडा में टूटा है। जी हाँ, केरल के वायनाड में इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई कि मिट्टी के साथ आया पानी भारी भरकम टैंकर तक को बहा ले गया। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से ऐसी तबाही आई कि पूरा इलाका जैसे कब्रिस्तान बन गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे में दफन हो गईं। 1:17 के इस वीडियो को देखिए। एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा है, एक टैंकर आपको दिखाई देगा, दो लोग बारिश में छाता लेकर खड़े हैं। पहले टैंकर बैक गियर में आता है, फिर टैंकर वाला आगे बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। अचानक लोग भागने लगते हैं। जी हाँ, भयंकर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होती है। मलबे का कहर ऐसा टूटता है कि भारी भरकम टैंकर को भी धकेलता चला जाता है। कई लोग इस मलबे की चपेट में आ जाते हैं। अब आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं कि कैसे भयंकर लैंडस्लाइड होती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। देखिए ये इलाका कैसे बर्बाद हो गया है। लोग फंसे हुए हैं, लापता हैं, पानी का बहाव दिख रहा है, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मॉनसून की इस तबाही में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये हादसा केरल में वायनाड के कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहाँ मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। पिछले साल से वायनाड और मलपुरम जिलों को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन कुदरत की एक ही चोट ने जैसे सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, मलबे में दफन हो गया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में बादल फटने से इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सब कुछ जैसे मलबे में मिल गया। डोडा में रिहायशी इलाके में मलबा आने के बाद घर और दुकान ढह गए। बादल फटने के बाद मलबा रिहायशी इलाकों में आया तो गाड़ियां मलबे में गड़ी हुई नजर आई। मलबे के साथ आए पत्थरों ने इलाके में भयंकर नुकसान किया।
15: बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड ब्रश की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मेरे मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहाँ बाहर आ गए, तो वहाँ से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे। तब तक सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया।
9: लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लोनावला में 900 mm बारिश के साथ ही 16 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है, जबकि 22 जगहों पर भूस्खलन की खबर है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई, पालघर, ठाणे, पुणे, नासिक समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं।
14: महाराष्ट्र में मॉनसून का आफतकाल, मुसीबत विकराल। मुंबई, पुणे, पालघर, नासिक में बारिश ने बरपाया कहर। महाराष्ट्र में मॉनसून ने खोली सिस्टम में भ्रष्टाचार की पोल। जिस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड ने मिसिंग लिंक के निर्माण पर सवाल उठा दिए और महाराष्ट्र सरकार को सुपर स्पीड से काम करवाकर एक्सप्रेसवे खोलना पड़ा, क्योंकि यहां सवाल बारिश से हुई लैंडस्लाइड का नहीं था, बल्कि 2 महीने पहले शुरू हुए मिसिंग लिंक और उसके उच्चतम क्वालिटी के काम के दावों का था। 6695 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ और एक ही बारिश में ढह गया। इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो फिर से दौड़ने लगी हैं, लेकिन अब स्मार्ट सिटी पुणे में मॉनसून से दुर्गति की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्मार्ट सिटी की सोसाइटीज में पानी भरा है, गाड़ियां पानी में गोते लगा रही हैं। लोग पानी में गोते लगाती स्मार्ट सिटी में सिस्टम कैसे ध्वस्त हो चुका है उसको कोस रहे हैं।
16: पानी आया, लाइट गया, पीने का पानी नहीं, कुछ नहीं, गाड़ियां खराब। अभी कल तो, और हम किधर जाएंगे, हमारा घर ही इधर है, गांव हमारा 500 किलोमीटर दूर है।
17: नदी का पानी ऊपर से आता है और वो सीधा वो ड्रेनेज लाइन में जाता है और ये सोसाइटी में आता है। दिस इज फॉल्टी अलाइनमेंट।
18: जितने भी यहाँ के सांसद है वो हर साल आते हैं, बताते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में या धूप में अपन करेंगे, अभी बारिश में नहीं हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सीधा आते हैं तो नेक्स्ट बारिश में। तभी तक ये यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई आके देख के नहीं जाता है।
14: और ये देखिए कैसे पुणे की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये भी एक सोसाइटी है जहां घरों के अंदर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकायदा रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन चला रही हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे पुणे की इस सोसाइटी का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और इसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। पालघर में मॉनसून का आफतकाल, बारिश ने सबसे बड़ा आपातकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के वसई विरार और दालासोपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। पालघर जिले में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पालघर में सूर्या नदी उफान पर है और ये देखिए कैसे सड़क और नदी मिल चुके हैं। पालघर में लगातार हो रही बारिश और आपदाओं के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर जिले के प्रमुख बांध लगभग 50% भर चुके हैं। पालघर जिले के दालासोपारा और वसई विरार जैसे शहरों में मॉनसून बड़ी आफत बनकर आया है।
19: इस वक्त हम वसई रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे हैं। पालघर जिले के इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सब तमाम चीजों को इनको ध्यान में रखना होगा, लेकिन आप देख लीजिए पूरा रेलवे ट्रैक पर पानी है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को अपने क्योंकि लोकल ट्रेन नहीं मिल रही है। हालांकि देख लीजिए यहाँ एक पंप भी चल रहा है लेकिन आखिर ये पंप पानी फेंकेगा कहाँ, क्योंकि पूरे आसपास वसई इलाके में यहाँ पर नालासोपारा में पूरा पानी आसपास शहर में भी भरा हुआ है।
14: महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 48 घंटे में करीब 15 इंच यानी 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नासिक में भी आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र के 3.5 शक्ति पीठों में शामिल सप्तशृंगी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद है। बड़ी बात तो यह है कि भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत काफी कमजोर रही थी और जून में बारिश सामान्य से लगभग 40% तक कम दर्ज की गई। हालांकि जुलाई की बारिश ने इस कमी को घटाकर 23% कर दिया है। मानसून की कमी से ये हालात हैं और महाराष्ट्र के सिस्टम में भ्रष्टाचार के छेद की पोल खुल रही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सोचिए अगर और तगड़ी बारिश हुई तो क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
9: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।

मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र राष्ट्रपति प्रोवोवो। 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्चे के बही खाते का हिसाब किताब। सीएम योगी ने वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाया आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। सीएम धामी के निर्देश पर बनी हाई लेवल कमेटी। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। भारी बारिश से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल। वायनाड में भी भीषण भूस्खलन। 4 की मौत। दिल्ली एनसीआर में जलभराव के बाद गुरुग्राम के दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह।

इजिप्ट को 3-2 से हराया। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में अब सबसे आगे। राम मंदिर ट्रस्ट के दामन पर चढ़ावा चोरी के दाग हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी अब जवाबदेही से भाग रहे हैं, उल्टा चढ़ावे की चोरी से जुड़े सवालों पर सीनाजोरी पर उतारू हैं, मतलब सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। इसी बीच एसआईटी के अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों पर चंपत राय का जवाब आया है। चंपत राय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा के सिर पर फोड़ दिया है।

0: सवालों के कटघरे में खड़ा है राम मंदिर ट्रस्ट।
1: ट्रस्ट ही जो जिस नियत से बनाया गया है वो नियत ठीक नहीं है, तो वो ट्रस्ट ही भ्रष्ट के कगार पर चला गया है।
0: चंपत राय पर इतने मेहरबान क्यों है ट्रस्टी?
2: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट की बोलती बंद क्यों?
3: बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है?
4: अनिल मिश्रा की आवाज में आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, मैंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है।
0: चढ़ावे की चोरी और ट्रस्ट की सीना जोरी,
5: पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है।
0: जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सीधा सवाल तो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आसपास मौजूद गोविंद गिरी के चेले माइक हटाने लगते हैं। ये सीना जोरी नहीं तो क्या है?
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
5: महाराज जी आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपत आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
6: नहीं सर, प्लीज अभी नहीं।
0: गोविंद गिरी को सवाल चुभ गया क्योंकि उनकी जवाबदेही से जुड़ा था। सोचिए राम धन को चोर दोनों हाथों से लूटते रहे, जिम्मेदार दोनों आंखें बूंदे बैठे रहे। राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई तो भी जिम्मेदारों की हेकड़ी कम नहीं हुई।
5: आखिरी सवाल है महाराज जी,
2: अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। एक प्रश्न पूछिए। ये आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए।
5: बाकी सवाल ये बता दीजिए, कि क्या चंपत,
2: मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था।
0: कोषाध्यक्ष का सच से सामना हुआ तो बौखला गए, मीडिया को सर्टिफिकेट बांटने लगे ताकि अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके।
7: कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही उनके रहते, क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई?
2: इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं।
7: क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि
2: ये मीडिया में सुनो, मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है, ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं।
0: सवाल कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे गोविंद गिरी की भूमिका पर है, लेकिन गोविंद गिरी खुद वकील हैं, खुद जज हैं और खुद ही अपने पक्ष में फैसला सुना रहे हैं।
5: इस पूरे मामले में

0: आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है?
1: निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि मैंने डे वन से ही उधर ध्यान दिया नहीं, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में, उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना, ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ। यहाँ हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, यह स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो एसओपी भी एलबीआई के साथ बना, वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। मुझे भी वह इस महीने देखने मिला।
2: गोविंद गिरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, तीन की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, जबकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अपने पद पर बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस्तीफा नहीं वो देंगे। सवाल यही है कि जब तक गोविंद गिरी अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों के आका कैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि गोविंद गिरी खुद को और चंपत राय को किंचित दे चुके हैं।
3: ये आंख में धूल झोंकना नहीं तो क्या है? राम मंदिर के बड़े बड़े पदाधिकारियों की आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी का अधर्म हुआ। चोरी भी कोई और नहीं बल्कि पदाधिकारियों के करीबी निकले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय को संदेह का लाभ देते हुए समस्त जांच से मुक्त करते हुए राम भक्ति से युक्त बताया। मतलब न अपील न दलील, क्लीन चिट पर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया।
1: इस संपूर्ण कार्य को जिन्होंने पहले दिन से खड़ा किया है और जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
0: तो निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, 79 लाख से ज्यादा कैश पकड़ा गया, आप उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह है, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई?
1: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष, उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है। उनके अंतकरण के हेतु में आज भी मेरा निर्दोषत्व तो ही निश्चित रूप से स्थिर है।
3: चढ़ावा चोरी कांड में कानून के लंबे हाथ असल खिलाड़ियों की गर्दन तक पहुंचेंगे, या फिर उनकी पहुंच और रसूख के आगे कानून के लंबे हाथ बंध जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि चढ़ावा चोरी मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका और ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों का रवैया सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि राम मंदिर में हुई चोरी के बावजूद ट्रस्ट सीना जोरी पर उतारू है। ट्रस्ट ने कबूल किया कि चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी हुई। चंपत राय के करीबियों ने चढ़ावे की चोरी की, लेकिन कसूर चंपत राय का नहीं बल्कि करीबियों का है, क्योंकि चंपत राय तो इतने भोले हैं कि खुद विश्वासघात के शिकार बन गए। मतलब चंपत राय पर सवाल मत पूछो, चंपत राय को सांत्वना देने का वक्त है। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के हर निर्णय पर सवाल ही सवाल हैं। वक्त है सवालों का जवाब देने का, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम सुनते ही ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारियों की जुबान सिल जाती है। गोपाल राव को भी ट्रस्टी दूध का धुला मानते हैं। चढ़ावे की चोरी पर ट्रस्ट की लीला समझ से परे है।
4: विषय आया माननीय श्री चंपत जी के इस्तीफे की बात, तो जितने हमारे ट्रस्टी थे सब एक स्वर से नहीं, हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ट्रस्टी जो चेन्नई में रहते हैं पारासरन जी, उनने कहा नियम यह है कि स्वीकार आप करें या न करें, ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया तो अपने आप ही स्वीकार हो जाता है।
1: वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं, और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं।
5: अब ये हो गई सज्जनता की बात।
3: ट्रस्ट चट्टान की तरह चंपत राय के साथ खड़ा है और चाहवा चोरी का ठीकरा चंपत राय के करीबियों पर फोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चढ़ावे की गिनती चढ़ावे की चोरी के दोषी अनिल मिश्रा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता के साथ नहीं किया। अनिल मिश्रा पर राम मंदिर ट्रस्ट की बोलती बंद है।
1: दोषी है कि नहीं ये एसआईटी निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। एसआईटी जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है।
6: जैसे कि अभी अनिल मिश्रा जी का भी एक नाम सामने आता है कि उनको
4: विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
3: एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट मौन है, ठीक वैसे ही जैसे चंपत राय ने चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में जांच पूरी होने तक मौन रहने का दावा किया है। मतलब चंपत राय ने मौन का ऐलान करके बता दिया कि वो अभी सवालों का जवाब नहीं देंगे। वहीं अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, कहां हैं किसी को नहीं पता। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जब अनिल मिश्रा की आलिशान कोठी पर पहुंचे तो देखिए क्या हुआ।
7: फैमिली से हैं?
8: नहीं, हम उनके बेटे नहीं हैं।
7: फैमिली से हैं पर?
8: नहीं नहीं।
7: फैमिली से हैं? तो हम इस वक्त अनिल मिश्रा के आवास पे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, हमने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है। ये गाड़ी निकल रही है यहाँ से, दिल्ली की गाड़ी हालांकि, और ये घर अनिल मिश्रा का है और इन्हीं के घर से गाड़ी निकल रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई से बात हो सकती है 2 मिनट? तो ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी से निकल रहे हैं। बॉस 2 मिनट बात हो, तो यहाँ पर बात नहीं की है।
3: अनिल मिश्रा सामने नहीं आते, उनके घर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। मतलब यही है कि चाहवा चोरी की जांच की आंच से असल जिम्मेदारों को बचाने का खेल खेला जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 8 आरोपियों के सिर पर चोरी का ठीकरा फोड़कर उनके आकाओं को बचाने की कवायद चल रही है। आज तक ब्यूरो।
2: सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को लेकर भी उठाया जा रहा है, जो एक तरफ तो क्लीन चिट चंपत राय को देते हैं, दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही पर पल्ला झाड़ लेते हैं।
9: ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर पूछिए तो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं जी वो तो एकदम निर्दोष। ट्रस्ट के ताकतवर सदस्य अनिल मिश्रा को लेकर पूछिए तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं उनका फैसला एसआईटी करेगी। और खुद की जवाबदेही पर जब सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से होता है तो जवाब आता है हम तो पुणे से सब कुछ देखते थे।
1: बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे?
10: मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष है उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे, उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था।
9: अपनी कोषाध्यक्ष वाली जिम्मेदारी तो गोविंद देवगिरी पुणे से बैठकर हवा में निभाते रहे और अब कहते हैं चढ़ावा चोरी की बात सुनकर इनको दुख वेदना शर्म लज्जा सब होने लगी।
10: ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया, ये हमारे लिए दुख की वेदना की और शर्म की बात है।
9: इतना कुछ होने लगा है तो क्यों नहीं खुद गोविंद देवगिरी ट्रस्ट से अपनी जवाबदेही को लेकर इस्तीफा देते हैं।
0: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
1: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।
9: तो फिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने की आवश्यकता क्यों? क्यों नहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा पर FIR कराते? क्यों चंपत राय के माफी मांगने से जुड़े सवाल पर ये बचने लगते हैं?
0: आखिरी सवाल ये बता दीजिए, कि क्या चंपा आखिर में आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
10: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
0: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज जी?
9: ये तो हालत है, मानो जल्दबाजी है कि बस SIT की जांच में जो 8 लोग का नाम सामने आया उनको ही सजा दिलाकर बाकी चेहरे बचा लिए जाएं, जिसमें गोविंद देव गिरी को लेकर भी सवाल आता है। गोविंद देव गिरी जो पुणे से ऑडिट करने वालों को भेजकर अपने कोषाध्यक्ष वाले कर्तव्य की इतिश्री करते रहे, जिनको इतना भी नहीं पता चला कि जिस ट्रस्ट के ये कोषाध्यक्ष हैं उसके कोष से चढ़ावा चोरी होता जा रहा है, लेकिन इनको वो जरूर पता चल गया जो SIT को भी पता नहीं चल पाया।
11: अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबियां रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा, इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है। उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा यह सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो, ये करवाया गया ऐसा भी मुझे एक बार लगता है।
9: मतलब अपनी जिम्मेदारी वाली दृष्टि नहीं, लेकिन इनके पास सियासी दिव्य दृष्टि है, जिनको अब ये लगने लगा कि CEO की नियुक्ति हो जाएगी तो फिर कभी चढ़ावा चोरी नहीं होगी।
11: एक CEO के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ।
9: तो ये बात ट्रस्ट बनते ही क्यों नहीं कह दी? क्यों इतने लंबे वक्त तक वो पदभार उठाते रहे जिसके लिए खुद को ही योग्य नहीं मानते, और नहीं मानते तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते?
2: देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का दौर शुरू हुआ तो तबाही भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, यूपी से लेकर दिल्ली NCR तक भारी बारिश के साथ मानसून का महाप्रहार शुरू हो गया है।
12: मानसून का महाप्रहार, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हाहाकार। बारिश मूसलाधार, सिस्टम बंटाधार, जिंदगी पर धार का वार। बारिश ने शहरों की दुर्गति बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भ्रष्टाचारियों को धो डाला। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, मुसीबत मूसलाधार। इस साल मानसून देरी से आया, लेकिन आया तो ऐसा आया कि विकास के दावों को धो डाला। शहर शहर बंटाधार हो चुके सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर कर डाला। जी हाँ, जहाँ जहाँ मानसून की बारिश हो रही है देश पानी में गोते लगा रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या पालघर, सूरत हो या गुरुग्राम, स्मार्ट सिटी भी डूबी, विकास के सारे दावे बारिश ने धो डाले। देश भर के 23 राज्यों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हम बात मुंबई जैसे शहर की करेंगे, जहां बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट है। तो बात महाराष्ट्र के स्मार्ट सिटी पुणे की भी होगी, जहां की जनता बारिश से त्रस्त है और सिस्टम को कोस रही है। बात मुंबई से सटे पालघर जिले की भी करेंगे, जो इस वक्त मानसून की बारिश वाली त्रासदी झेल रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं मानसून का सबसे खौफनाक कहर, जो केरल के वायनाड और जम्मू कश्मीर के डोडा में टूटा है। जी हाँ, केरल के वायनाड में इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई
3: कि मिट्टी के साथ आया पानी भारी भरकम टैंकर तक को बहा ले गया, तो जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से ऐसी तबाही आई कि पूरा इलाका जैसे कब्रिस्तान बन गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे में दफन हो गईं। 1 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो को देखिए, एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा है, एक टैंकर आपको दिखाई देगा, दो लोग बारिश में छाता लेकर खड़े हैं। पहले टैंकर बैक गियर में आता है, फिर टैंकर वाला आगे बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। अचानक लोग भागने लगते हैं। जी हां, भयंकर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होती है। मलबे का कहर ऐसा टूटता है कि भारी भरकम टैंकर को भी धकेलता चला जाता है। कई लोग इस मलबे की चपेट में आ जाते हैं। अब आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं कि कैसे भयंकर लैंडस्लाइड होती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। देखिए ये इलाका कैसे बर्बाद हो गया है। लोग फंसे हुए हैं, लापता हैं, पानी का बहाव दिख रहा है, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मॉनसून की इस तबाही में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये हादसा केरल में वायनाड के कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहाँ मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। पिछले साल से वायनाड और मलपुरम जिलों को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन कुदरत की एक ही चोट ने जैसे सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, मलबे में दफन हो गया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में बादल फटने से इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सब कुछ जैसे मलबे में मिल गया। डोडा में रिहायशी इलाके में मलबा आने के बाद घर और दुकान ढह गए। बादल फटने के बाद मलबा रिहायशी इलाकों में आया तो गाड़ियां मलबे में गड़ी हुई नजर आई। मलबे के साथ आए पत्थरों ने इलाके में भयंकर नुकसान किया।
13: बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड ब्रश की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मेरे मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहां बाहर आ गए, तो वहां से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे। तब तक शुद्ध सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया।
2: लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लोनावला में 900 mm बारिश के साथ ही 16 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है, जबकि 22 जगहों पर भूस्खलन की खबर है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई, पालघर, ठाणे, पुणे, नासिक समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं।
3: महाराष्ट्र में मॉनसून का आफतकाल, मुसीबत विकराल। मुंबई, पुणे, पालघर, नासिक में बारिश ने बरपाया कहर। महाराष्ट्र में मॉनसून ने खोली सिस्टम में भ्रष्टाचार की पोल। जिस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड ने मिसिंग लिंक के निर्माण पर सवाल उठा दिए और महाराष्ट्र सरकार को सुपर स्पीड से काम करवाकर एक्सप्रेसवे खोलना पड़ा, क्योंकि यहां सवाल बारिश से हुई लैंडस्लाइड का नहीं था, बल्कि 2 महीने पहले शुरू हुए मिसिंग लिंक और उसके उच्चतम क्वालिटी के काम के दावों का था। 6695 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ और एक ही बारिश में ढह गया। इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो फिर से दौड़ने लगी हैं, लेकिन अब स्मार्ट सिटी पुणे में मॉनसून से दुर्गति की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्मार्ट सिटी की सोसाइटीज में पानी भरा है, गाड़ियां पानी में गोते लगा रही हैं। लोग पानी में गोते लगाती स्मार्ट सिटी में सिस्टम कैसे ध्वस्त हो चुका है उसको कोस रहे हैं।
14: पानी आया, लाइट गया, पीने का पानी नहीं, कुछ नहीं, गाड़ियां खराब। अभी कल तो, और हम किधर जाएंगे, हमारा घर ही इधर है, गांव हमारा 500 किलोमीटर दूर है।
15: नदी का पानी ऊपर से आता है और वो सीधा वो ड्रेनेज लाइन में जाता है और ये सोसाइटी में आता है, दिस इज फॉल्टी अलाइनमेंट।
16: जितने भी यहाँ के सांसद है वो हर साल आते हैं, बताते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में या धूप में अपन करेंगे, अभी बारिश में नहीं हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सीधा आते हैं तो नेक्स्ट बारिश में, तभी तक ये यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई आके देख के नहीं जाता है।
12: और ये देखिए कैसे पुणे की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये भी एक सोसाइटी है जहां घरों के अंदर से रेस्क्यू किया जा रहा है, बाकायदा रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन चला रही हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे पुणे की इस सोसाइटी का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और इसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। पालघर में मानसून का आफत कार, बारिश ने सबसे बड़ा आपातकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के वसई विरार और दाला सोपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। पालघर जिले में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पालघर में सूर्या नदी उफान पर है और ये देखिए कैसे सड़क और नदी मिल चुके हैं। पालघर में लगातार हो रही बारिश और आपदाओं के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर जिले के प्रमुख बांध लगभग 50% भर चुके हैं। पालघर जिले के दाला सुपारा और वसई विरार जैसे शहरों में मानसून बड़ी आफत बनकर आया है।
17: इस वक्त हम वसई रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे हैं। पालघर जिले के इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतना बड़ा गड्ढा है जो पानी से दिख नहीं रहा है, तो लोगों को केयरफुल रहना होगा, पूरे रास्ते में ट्रैक्स के साथ ही चलेंगे वो, ये सब तमाम चीजों को इनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आप देख लीजिए पूरा रेलवे ट्रैक पर पानी है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को अपने, क्योंकि लोकल ट्रेन नहीं मिल रही, हालांकि देख लीजिए यहाँ एक पंप भी चल रहा है लेकिन आखिर ये पंप पानी फेंकेगा कहाँ, क्योंकि पूरे आसपास वसई इलाके में यहाँ पर नाला सोपारा में पूरा पानी आसपास शहर में भी भरा हुआ है।
12: महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 48 घंटे में करीब 15 इंच यानी 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नासिक में भी आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र के 3.5 शक्ति पीठों में शामिल सप्तशृंगी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद है। बड़ी बात तो यह है कि भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत काफी कमजोर रही थी और जून में बारिश सामान्य से लगभग 40% तक कम दर्ज की गई। हालांकि जुलाई की बारिश ने इस कमी को घटाकर 23% कर दिया है। मानसून की कमी से ये हालात हैं और महाराष्ट्र के सिस्टम में भ्रष्टाचार के छेद की पोल खुल रही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सोचिए अगर और तगड़ी बारिश हुई तो क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र राष्ट्रपति प्रोवोवो। 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्चे के बही खाते का हिसाब किताब। सीएम योगी ने वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाया आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। सीएम धामी के निर्देश पर बनी हाई लेवल कमेटी। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। भारी बारिश से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल। वायनाड में भी भीषण भूस्खलन। 4 की मौत। दिल्ली एनसीआर में जलभराव के बाद गुरुग्राम के दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। इजिप्ट को 3-2 से हराया। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में अब सबसे आगे। राम मंदिर ट्रस्ट के दामन पर चढ़ावा चोरी के दाग हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी अब जवाबदेही से भाग रहे हैं। उल्टा चढ़ावे की चोरी से जुड़े सवालों पर सीनाजोरी पर उतारू हैं। मतलब सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। इसी बीच एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों पर चंपत राय का जवाब आया है। चंपत राय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा के सिर पर फोड़ दिया है।

0: सवालों के कटघरे में खड़ा है राम मंदिर ट्रस्ट।
1: ट्रस्ट ही जो जिस नियत से बनाया गया है वो नियत ठीक नहीं है, तो वो ट्रस्ट ही भ्रष्ट के कगार पर चला गया है।
0: चंपत राय पर इतने मेहरबान क्यों है ट्रस्टी?
2: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट की बोलती बंद क्यों?
3: बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है?
4: अनिल मिश्रा की आवाज में आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, उन्होंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है।
0: चढ़ावे की चोरी और ट्रस्ट की सीना जोरी,
5: पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है।
0: जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सीधा सवाल तो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आसपास मौजूद गोविंद गिरी के चेले माइक हटाने लगते हैं। ये सीना जोरी नहीं तो क्या है?
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे।
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।
5: महाराज जी आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपत आखिरी सवाल कि क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, आप इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
6: नहीं सर, प्लीज अभी नहीं।
0: गोविंद गिरी को सवाल चुभ गया क्योंकि उनकी जवाबदेही से जुड़ा था। सोचिए, राम धन को चोर दोनों हाथों से लूटते रहे, जिम्मेदार दोनों आंखें मूंदे बैठे रहे। राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई तो भी जिम्मेदारों की हेकड़ी कम नहीं हुई।
5: आखिरी सवाल है महाराज जी,
7: अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। एक प्रश्न पूछिए। ये आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए।
5: ये बता दीजिए कि क्या चंपत,
7: मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था। एक प्रश्न पूछा।
0: कोषाध्यक्ष का सच से सामना हुआ तो बौखला गए, मीडिया को सर्टिफिकेट बांटने लगे ताकि अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके।
8: कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही, उसके रहते क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई?
7: इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं।
8: क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि
7: ये मीडिया में सुनो, मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है, ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं।
0: सवाल कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे गोविंद गिरी की भूमिका पर है, लेकिन गोविंद गिरी खुद वकील हैं, खुद जज हैं और खुद ही अपने पक्ष में फैसला सुना रहे हैं।
5: इस पूरे
6: हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही क्योंकि मैंने डे वन से ही उधर ध्यान दिया नहीं, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना, ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, या हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, ये स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो SOP भी LBI के साथ बना वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, मुझे भी वह इस महीने देखने मिला।
9: गोविंद गिरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, तीन की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, जबकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अपने पद पर बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस्तीफा नहीं वो देंगे। सवाल यही है कि जब तक गोविंद गिरी अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों के आका कैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि गोविंद गिरी खुद को और चंपत राय को क्लीन चिट दे चुके हैं।
0: ये आंख में धूल झोंकना नहीं तो क्या है? राम मंदिर के बड़े बड़े पदाधिकारियों की आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी का अधर्म हुआ। चोरी भी कोई और नहीं बल्कि पदाधिकारियों के करीबी निकले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय को संदेह का लाभ देते हुए समस्त जांच से मुक्त करते हुए राम भक्ति से युक्त बताया। मतलब न अपील न दलील, क्लीन चिट पर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया।
6: इस संपूर्ण कार्य को जिन्होंने पहले दिन से खड़ा किया है और जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
5: तो निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, 79 लाख से ज्यादा कैश पकड़ा गया, आप उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह है, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई?
6: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है। उनके अंतकरण के हेतु में आज भी मेरा निर्दोषत्व ही निश्चित रूप से स्थिर है।
0: चढ़ावा चोरी कांड में कानून के लंबे हाथ असल खिलाड़ियों की गर्दन तक पहुंचेंगे या फिर उनकी पहुंच और रसूख के आगे कानून के लंबे हाथ बंद जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि चढ़ावा चोरी मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका और ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों का रवैया सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि राम मंदिर में हुई चोरी के बावजूद ट्रस्ट सीना जोरी पर उतारू है। ट्रस्ट ने कबूल किया कि चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी हुई। चंपत राय के करीबियों ने चढ़ावे की चोरी की, लेकिन कसूर चंपत राय का नहीं बल्कि करीबियों का है, क्योंकि चंपत राय तो इतने भोले हैं कि खुद विश्वासघात के शिकार बन गए। मतलब चंपत राय पर सवाल मत पूछो, चंपत राय को सांत्वना देने का वक्त है। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के हर निर्णय पर सवाल ही सवाल हैं। वक्त है सवालों का जवाब देने का, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम सुनते ही ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारियों की जुबान सिल जाती है। गोपाल राव को भी ट्रस्टी दूध का धुला मानते हैं। चढ़ावे की चोरी पर ट्रस्ट की लीला समझ से परे है।
3: विषय आया माननीय श्री चंपत जी के इस्तीफे की बात, तो जितने हमारे ट्रस्टी थे सब एक स्वर से नहीं नहीं हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ट्रस्टी जो चेन्नई में रहते हैं पारासरन जी, उनने कहा नियम यह है कि स्वीकार आप करें या न करें, ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया तो अपने आप ही स्वीकार हो जाता है।
6: वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब यह हो गई सज्जनता की बात।
0: ट्रस्ट चट्टान की तरह चंपत राय के साथ खड़ा है और चढ़ावा चोरी का ठीकरा चंपत राय के करीबियों पर फोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चढ़ावे की गिनती चढ़ावे की चोरी के दोषी अनिल मिश्रा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता के साथ नहीं किया। अनिल मिश्रा पर राम मंदिर ट्रस्ट की बोलती बंद है।
6: दोषी है कि नहीं ये एसआईटी निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। एसआईटी जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है।
4: जैसे कि अभी अनिल मिश्रा जी का भी एक नाम सामने आता है कि उनको
3: हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट मौन है, ठीक वैसे ही जैसे चंपत राय ने चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में जांच पूरी होने तक मौन रहने का दावा किया है। मतलब चंपत राय ने मौन का ऐलान करके बता दिया कि वो अभी सवालों का जवाब नहीं देंगे। वहीं अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, कहां हैं किसी को नहीं पता। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जब अनिल मिश्रा की आलिशान कोठी पर पहुंचे तो देखिए क्या हुआ।
10: फैमिली से हैं?
11: नहीं, हम उनके बेटे नहीं
10: हैं। फैमिली से हैं पर?
11: नहीं, हम
10: फैमिली से हैं। तो हम इस वक्त अनिल मिश्रा के आवास पे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, मैंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है। ये गाड़ी निकल रही है यहाँ से, दिल्ली की गाड़ी हालांकि, और ये घर अनिल मिश्रा का है और इन्हीं के घर से गाड़ी निकल रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई से बात हो सकती है 2 मिनट? तो ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी से निकल रहे हैं। बॉस 2 मिनट बात हो, तो यहाँ पर बात नहीं की है।
0: अनिल मिश्रा सामने नहीं आते, उनके घर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। मतलब यही है कि चढ़ावा चोरी की जांच की आंच से असल जिम्मेदारों को बचाने का खेल खेला जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 8 आरोपियों के सिर पर चोरी का ठीकरा फोड़कर उनके आकाओं को बचाने की कवायद चल रही है। आज तक ब्यूरो।
9: सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को लेकर भी उठाया जा रहा है, जो एक तरफ तो क्लीन चिट चंपत राय को देते हैं, दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही पर पल्ला झाड़ लेते हैं।
12: ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर पूछिए तो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं जी वो तो एकदम निर्दोष। ट्रस्ट के ताकतवर सदस्य अनिल मिश्रा को लेकर पूछिए तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं उनका फैसला एसआईटी करेगी। और खुद की जवाबदेही पर जब सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से होता है तो जवाब आता है हम तो पुणे से सब कुछ देखते थे।
13: बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे?
14: मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष है उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे, उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था।
12: अपनी कोषाध्यक्ष वाली जिम्मेदारी तो गोविंद देवगिरी पुणे से बैठकर हवा में निभाते रहे और अब कहते हैं चढ़ावा चोरी की बात सुनकर इनको दुख, वेदना, शर्म, लज्जा सब होने लगी।
14: ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया, ये हमारे लिए दुख की, वेदना की और शर्म की बात है।
12: इतना कुछ होने लगा है तो क्यों नहीं खुद गोविंद देवगिरी ट्रस्ट से अपनी जवाबदेही को लेकर इस्तीफा देते हैं।
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
12: तो फिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने की आवश्यकता क्यों? क्यों नहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा पर FIR कराते? क्यों चंपत राय के माफी मांगने से जुड़े सवाल पर ये बचने लगते?
5: आखिरी सवाल ये बता दी, कि क्या चंपत आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
12: ये तो हालत मानो जल्दबाजी है कि बस SIT की जांच में जो 8 लोग का नाम सामने आया उनको ही सजा दिलाकर बाकी चेहरे बचा लिए जाएं, जिसमें गोविंद देवगिरी को लेकर भी सवाल आता है। गोविंद देवगिरी जो पुणे से ऑडिट करने वालों को भेजकर अपने कोषाध्यक्ष वाले कर्तव्य की तिश्री करते रहे, जिनको इतना भी नहीं पता चला कि जिस ट्रस्ट के ये कोषाध्यक्ष हैं उसके कोष से चढ़ावा चोरी होता जा रहा है, लेकिन इनको वो जरूर पता चल गया जो SIT को भी पता नहीं चल पाया।
11: अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबी आ रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा, इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है। उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा यह सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो, यह करवाया गया ऐसा भी मुझे अनेक बार लगता है।
12: मतलब अपनी जिम्मेदारी वाली दृष्टि नहीं, लेकिन इनके पास सियासी दिव्य दृष्टि है, जिनको अब ये लगने लगा कि CEO की नियुक्ति हो जाएगी तो फिर कभी चढ़ावा चोरी नहीं होगी।
11: एक CEO के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ।
12: तो ये बात ट्रस्ट बनते ही क्यों नहीं कह दी? क्यों इतने लंबे वक्त तक वो पदभार उठाते रहे जिसके लिए खुद को ही योग्य नहीं मानते, और नहीं मानते तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते?
9: देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का दौर शुरू हुआ तो तबाही भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, यूपी से लेकर दिल्ली NCR तक भारी बारिश के साथ मानसून का महाप्रहार शुरू हो गया है।
15: मानसून का महाप्रहार, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हाहाकार। बारिश मूसलाधार, सिस्टम बंटाधार, जिंदगी पर धार का वार। बारिश ने शहरों की दुर्गति बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भ्रष्टाचारियों को धो डाला। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मुसीबत मूसलाधार। इस साल मानसून देरी से आया, लेकिन आया तो ऐसा आया कि विकास के दावों को धो डाला। शहर शहर बंटाधार हो चुके सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर कर डाला। जी हाँ, जहाँ जहाँ मानसून की बारिश हो रही है देश पानी में गोते लगा रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या पालघर, सूरत हो या गुरुग्राम, स्मार्ट सिटी भी डूबी, विकास के सारे दावे बारिश ने धो डाले। देश भर के 23 राज्यों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हम बात मुंबई जैसे शहर की करेंगे जहां बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट है, तो बात महाराष्ट्र के स्मार्ट सिटी पुणे की भी होगी, जहां की जनता बारिश से त्रस्त है और सिस्टम को कोस रही है। बात मुंबई से सटे पालघर जिले की भी करेंगे, जो इस वक्त मानसून की बारिश वाली त्रासदी झेल रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं मानसून का सबसे खौफनाक कहर, जो केरल के वायनाड और जम्मू कश्मीर के डोडा में टूटा है। जी हाँ, केरल के वायनाड में इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई कि मिट्टी के साथ आया पानी भारी भरकम टैंकर तक को बहा ले गया। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से ऐसी तबाही आई कि पूरा इलाका जैसे कब्रिस्तान बन गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे में दफन हो गई। 1:17 के इस वीडियो को देखिए, एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा है, एक टैंकर आपको दिखाई देगा, दो लोग बारिश में छाता लेकर खड़े हैं। पहले टैंकर बैक गियर में आता है, फिर टैंकर वाला आगे बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। अचानक लोग भागने लगते हैं। जी हाँ, भयंकर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होती है। मलबे का कहर ऐसा टूटता है कि भारी भरकम टैंकर को भी धकेलता चला जाता है। कई लोग इस मलबे की चपेट में आ जाते हैं। अब आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं कि कैसे भयंकर लैंडस्लाइड होती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। देखिए ये इलाका कैसे बर्बाद हो गया है। लोग फंसे हुए हैं, लापता हैं, पानी का बहाव दिख रहा है, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मानसून की इस तबाही में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये हादसा केरल में वायनाड के कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहाँ मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। पिछले साल से वायनाड और मलपुरम जिलों को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन कुदरत की एक ही चोट ने जैसे सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, मलबे में दफन हो गया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में बादल फटने से इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सब कुछ जैसे मलबे में मिल गया। डोडा में रिहायशी इलाके में मलबा आने के बाद घर और दुकान ढह गए। बादल फटने के बाद मलबा रिहायशी इलाकों में आया तो गाड़ियां मलबे में गड़ी हुई नजर आईं। मलबे के साथ आए पत्थरों ने इलाके में भयंकर नुकसान किया।
16: बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड बर्स्ट की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मेरे मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहाँ बाहर आ गए, तो वहाँ से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भाग गए। तब तक सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया।
9: लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लोनावला में 900 mm बारिश के साथ ही 16 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है, जबकि 22 जगहों पर भूस्खलन की खबर है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई, पालघर, ठाणे, पुणे, नासिक समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं।
15: महाराष्ट्र में मानसून का आफतकाल, मुसीबत विकराल। मुंबई, पुणे, पालघर, नासिक में बारिश ने बरपाया कहर। महाराष्ट्र में मानसून ने खोली सिस्टम में भ्रष्टाचार की पोल। जिस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड ने मिसिंग लिंक के निर्माण पर सवाल उठा दिए और महाराष्ट्र सरकार को सुपर स्पीड से काम करवाकर एक्सप्रेसवे खोलना पड़ा, क्योंकि यहां सवाल बारिश से हुई लैंडस्लाइड का नहीं था, बल्कि 2 महीने पहले शुरू हुए मिसिंग लिंक और उसके उच्चतम क्वालिटी के काम के दावों का था। 6695 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ और एक ही बारिश में ढह गया। इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो फिर से दौड़ने लगी हैं, लेकिन अब स्मार्ट सिटी पुणे में मानसून से दुर्गति की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्मार्ट सिटी की सोसाइटीज में पानी भरा है, गाड़ियां पानी में गोते लगा रही हैं। लोग पानी में गोते लगाती स्मार्ट सिटी में सिस्टम कैसे ध्वस्त हो चुका है उसको कोस रहे हैं।
17: पानी आया, लाइट गया, पीने का पानी नहीं, कुछ नहीं, गाड़ियां खराब। अभी कल तो, और हम किधर जाएंगे, हमारा घर ही इधर है, गांव हमारा 500 किलोमीटर दूर है।
18: नदी का पानी ऊपर से आता है और वो सीधा वो ड्रेनेज लाइन में जाता है और ये सोसाइटी में आता है। दिस इज फॉल्टी अलाइनमेंट।
19: जितने भी यहाँ के सांसद है वो हर साल आते हैं, बताते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में या धूप में अपन करेंगे, अभी बारिश में नहीं हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सीधा आते हैं तो नेक्स्ट बारिश में। तभी तक ये यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई आके देख के नहीं जाता है।
15: और ये देखिए कैसे पुणे की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये भी एक सोसाइटी है जहां घरों के अंदर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकायदा रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन चला रही हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे पुणे की इस सोसाइटी का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और इसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। पालघर में मानसून का आफतकार। बारिश ने सबसे बड़ा आपातकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के वसई विरार और दालासोपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। पालघर जिले में पिछले छह दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पालघर में सूर्या नदी उफान पर है और ये देखिए कैसे सड़क और नदी मिल चुके हैं। पालघर में लगातार हो रही बारिश और आपदाओं के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर जिले के प्रमुख बांध लगभग 50% भर चुके हैं। पालघर जिले के दालासोपारा और वसई विरार जैसे शहरों में मॉनसून बड़ी आफत बनकर आया है।
20: इस वक्त हम वसई रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे हैं। पालघर जिले के इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतना बड़ा गड्ढा है जो पानी से दिख नहीं रहा है, तो लोगों को केयरफुल रहना होगा। पूरे रास्ते में ट्रैक्स के साथ ही चलेंगे वो, ये सब तमाम चीजों को इनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आप देख लीजिए पूरा रेलवे ट्रैक पर पानी है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को अपने, क्योंकि लोकल ट्रेन नहीं मिल रही, हालांकि देख लीजिए यहाँ एक पंप भी चल रहा है लेकिन आखिर ये पंप पानी फेंकेगा कहाँ, क्योंकि पूरे आसपास वसई इलाके में यहाँ पर नालासोपारा में पूरा पानी आसपास शहर में भी भरा हुआ है।
15: महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 48 घंटे में करीब 15 इंच यानी 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नासिक में भी आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र के 3.5 शक्ति पीठों में शामिल सप्तशृंगी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद है। बड़ी बात तो ये है कि भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत काफी कमजोर रही थी और जून में बारिश सामान्य से लगभग 40% तक कम दर्ज की गई। हालांकि जुलाई की बारिश ने इस कमी को घटाकर 23% कर दिया है। मानसून की कमी से ये हालात हैं और महाराष्ट्र के सिस्टम में भ्रष्टाचार के छेद की पोल खुल रही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सोचिए अगर और तगड़ी बारिश हुई तो क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
9: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र राष्ट्रपति प्रोवोवो। 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्चे के बही खाते का हिसाब किताब। सीएम योगी ने वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाया आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। सीएम धामी के निर्देश पर बनी हाई लेवल कमेटी। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। भारी बारिश से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल। वायनाड में भी भीषण भूस्खलन। 4 की मौत। दिल्ली एनसीआर में जलभराव के बाद गुरुग्राम के दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। इजिप्ट को 3-2 से हराया। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में अब सबसे आगे।

राम मंदिर ट्रस्ट के दामन पर चढ़ावा चोरी के दाग हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी अब जवाबदेही से भाग रहे हैं, उल्टा चढ़ावे की चोरी से जुड़े सवालों पर सीनाजोरी पर उतारू हैं, मतलब सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। इसी बीच एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों पर चंपत राय का जवाब आया है। चंपत राय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा के सिर पर फोड़ दिया है।

0: सवालों के कटघरे में खड़ा है राम मंदिर ट्रस्ट।
1: ट्रस्ट ही जो जिस नियत से बनाया गया है वो नियत ठीक नहीं है, तो वो ट्रस्ट ही भ्रष्ट के कगार पर चला गया है।
0: चंपत राय पर इतने मेहरबान क्यों है ट्रस्टी?
2: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट की बोलती बंद क्यों?
3: बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है?
4: अनिल मिश्रा की आवाज में आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, उन्होंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है।
0: चढ़ावे की चोरी और ट्रस्ट की सीना जोरी,
5: पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है।
0: जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सीधा सवाल तो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आसपास मौजूद गोविंद गिरी के चेले माइक हटाने लगते हैं। ये सीना जोरी नहीं तो क्या है?
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे।
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
5: महाराज जी आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपत, आखिरी सवाल कि क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, आप इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
6: नहीं सर, प्लीज अभी नहीं।
0: गोविंद गिरी को सवाल चुभ गया क्योंकि उनकी जवाबदेही से जुड़ा था। सोचिए, राम धन को चोर दोनों हाथों से लूटते रहे, जिम्मेदार दोनों आंखें मूंदे बैठे रहे। राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई तो भी जिम्मेदारों की हेकड़ी कम नहीं हुई।
5: आखिरी सवाल है महाराज जी,
7: अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। एक प्रश्न पूछिए। ये आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए।
5: ये बता दीजिए कि क्या चंपत,
7: मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था। एक प्रश्न पूछा।
0: कोषाध्यक्ष का सच से सामना हुआ तो बौखला गए, मीडिया को सर्टिफिकेट बांटने लगे ताकि अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके।
8: कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही, उनके रहते क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई?
7: इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं।
8: क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि
7: ये मीडिया में सुनो, मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है, उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है। ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं।
0: सवाल कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे

0: गिरी की भूमिका पर है, लेकिन गोविंद गिरी खुद वकील हैं, खुद जज हैं और खुद ही अपने पक्ष में फैसला सुना रहे हैं।
1: इस पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है?
2: निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि मैंने डे वन से ही उधर ध्यान दिया नहीं, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में, उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना, ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, या हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, ये स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो एसओपी भी एलबीआई के साथ बना, वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, मुझे भी वह इस महीने देखने मिला।
3: गोविंद गिरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, तीन की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, जबकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अपने पद पर बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस्तीफा नहीं वो देंगे। सवाल यही है कि जब तक गोविंद गिरी अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों के आका कैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि गोविंद गिरी खुद को और चंपत राय को क्लीन चिट दे चुके हैं।
0: ये आंख में धूल झोंकना नहीं तो क्या है? राम मंदिर के बड़े बड़े पदाधिकारियों की आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी का अधर्म हुआ। चोरी भी कोई और नहीं बल्कि पदाधिकारियों के करीबी निकले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय को संदेह का लाभ देते हुए समस्त जांच से मुक्त करते हुए राम भक्ति से युक्त बताया। मतलब न अपील न दलील, क्लीन चिट पर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया।
2: इस संपूर्ण कार्य को जिन्होंने पहले दिन से खड़ा किया है और जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
1: तो निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, 79 लाख से ज्यादा कैश पकड़ा गया, आप उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह है, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई?
2: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष, उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है। उनके अंतकरण के हेतु में आज भी मेरा निर्दोषत्व ही निश्चित रूप से स्थिर है।
0: चढ़ावा चोरी कांड में कानून के लंबे हाथ असल खिलाड़ियों की गर्दन तक पहुंचेंगे, या फिर उनकी पहुंच और रसूख के आगे कानून के लंबे हाथ बंद जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि चढ़ावा चोरी मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका और ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों का रवैया सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि राम मंदिर में हुई चोरी के बावजूद ट्रस्ट सीना जोरी पर उतारू है। ट्रस्ट ने कबूल किया कि चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी हुई, चंपत राय के करीबियों ने चढ़ावे की चोरी की, लेकिन कसूर चंपत राय का नहीं बल्कि करीबियों का है, क्योंकि चंपत राय तो इतने भोले हैं कि खुद विश्वासघात के शिकार बन गए। मतलब चंपत राय पर सवाल मत पूछो, चंपत राय को सांत्वना देने का वक्त है। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के हर निर्णय पर सवाल ही सवाल हैं। वक्त है सवालों का जवाब देने का, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम सुनते ही ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारियों की जुबान सिल जाती है। गोपाल राव को भी ट्रस्टी दूध का धुला मानते हैं। चढ़ावे की चोरी पर ट्रस्ट की लीला समझ से परे है।
4: विषय आया माननीय श्री चंपत जी के इस्तीफे की बात, तो जितने हमारे ट्रस्टी थे सब एक स्वर से नहीं नहीं हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ट्रस्टी जो चेन्नई में रहते हैं पारासरन जी, उनने कहा नियम यह है कि स्वीकार आप करें या न करें, ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया तो अपने आप ही स्वीकार हो जाता है।
2: वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको
5: 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब ये हो गई सज्जनता की बात।
0: ट्रस्ट चट्टान की तरह चंपत राय के साथ खड़ा है और चाहवा चोरी का ठीकरा चंपत राय के करीबियों पर फोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चढ़ावे की गिनती चढ़ावे की चोरी के दोषी अनिल मिश्रा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता के साथ नहीं किया। अनिल मिश्रा पर राम मंदिर ट्रस्ट की बोलती बंद है।
2: दोषी है कि नहीं ये एसआईटी निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। एसआईटी जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है।
6: जैसे कि अभी अनिल मिश्रा जी का भी एक नाम सामने आता है कि उनको
4: उस विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट मौन है, ठीक वैसे ही जैसे चंपत राय ने चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में जांच पूरी होने तक मौन रहने का दावा किया है। मतलब चंपत राय ने मौन का ऐलान करके बता दिया कि वो अभी सवालों का जवाब नहीं देंगे। वहीं अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, कहां हैं किसी को नहीं पता। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जब अनिल मिश्रा की आलिशान कोठी पर पहुंचे तो देखिए क्या हुआ।
7: फैमिली से हैं?
8: नहीं, हम उनके बेटे नहीं हैं।
7: फैमिली से हैं पर?
8: नहीं।
7: फैमिली से हैं? तो हम इस वक्त अनिल मिश्रा के आवास पे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, मैंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है। ये गाड़ी निकल रही है यहाँ से, दिल्ली की गाड़ी हालांकि, और ये घर अनिल मिश्रा का है और इन्हीं के घर से गाड़ी निकल रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई से बात हो सकती है 2 मिनट? तो ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी से निकल रहे हैं। बॉस 2 मिनट बात हो, तो यहाँ पर बात नहीं की है।
0: अनिल मिश्रा सामने नहीं आते, उनके घर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। मतलब यही है कि चाहवा चोरी की जांच की आंच से असल जिम्मेदारों को बचाने का खेल खेला जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 8 आरोपियों के सिर पर चोरी का ठीकरा फोड़कर उनके आकाओं को बचाने की कवायद चल रही है। आज तक ब्यूरो।
3: सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को लेकर भी उठाया जा रहा है, जो एक तरफ तो क्लीन चिट चंपत राय को देते हैं, दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही पर पल्ला झाड़ लेते हैं।
9: ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर पूछिए तो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं जी वो तो एकदम निर्दोष। ट्रस्ट के ताकतवर सदस्य अनिल मिश्रा को लेकर पूछिए तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं उनका फैसला एसआईटी करेगी। और खुद की जवाबदेही पर जब सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से होता है तो जवाब आता है हम तो पुणे से सब कुछ देखते थे।
10: बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे?
11: मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष है उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे, उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था।
9: अपनी कोषाध्यक्ष वाली जिम्मेदारी तो गोविंद देवगिरी पुणे से बैठकर हवा में निभाते रहे और अब कहते हैं चढ़ावा चोरी की बात सुनकर इनको दुख वेदना शर्म लज्जा सब होने लगी।
11: ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया, ये हमारे लिए दुख की वेदना की और शर्म की बात है।
9: इतना कुछ होने लगा है तो क्यों नहीं खुद गोविंद देवगिरी ट्रस्ट से अपनी जवाबदेही को लेकर इस्तीफा देते हैं।
1: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे।
2: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।
9: तो फिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने की आवश्यकता क्यों? क्यों नहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा पर FIR कराते? क्यों चंपत राय के माफी मांगने से जुड़े सवाल पर ये बचने लगते?
1: आखिरी सवाल ये बता दीजिए, कि क्या चंपत आखिरी सवाल क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
2: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
1: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज जी?
9: ये तो हालत है, मानो जल्दबाजी है कि बस SIT की जांच में जो 8 लोग का नाम सामने आया उनको ही सजा दिलाकर बाकी चेहरे बचा लिए जाएं, जिसमें गोविंद देव गिरी को लेकर भी सवाल आता है। गोविंद देव गिरी जो पुणे से ऑडिट करने वालों को भेजकर अपने कोषाध्यक्ष वाले कर्तव्य की तिश्री करते रहे, जिनको इतना भी नहीं पता चला कि जिस ट्रस्ट के ये कोषाध्यक्ष हैं उसके कोष से चढ़ावा चोरी होता जा रहा है, लेकिन इनको वो जरूर पता चल गया जो SIT को भी पता नहीं चल पाया।
5: अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबी आ रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा, इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है। उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा यह सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो, ये करवाया गया, ऐसा भी मुझे एक बार लगता है।
9: मतलब अपनी जिम्मेदारी वाली दृष्टि नहीं, लेकिन इनके पास सियासी दिव्य दृष्टि है, जिनको अब ये लगने लगा कि CEO की नियुक्ति हो जाएगी तो फिर कभी चढ़ावा चोरी नहीं होगी।
5: एक CEO के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग है उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ।
9: तो ये बात ट्रस्ट बनते ही क्यों नहीं कह दी? क्यों इतने लंबे वक्त तक वो पदभार उठाते रहे जिसके लिए खुद को ही योग्य नहीं मानते, और नहीं मानते तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते?
3: देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का दौर शुरू हुआ तो तबाही भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, यूपी से लेकर दिल्ली NCR तक भारी बारिश के साथ मानसून का महाप्रहार शुरू हो गया है।
0: मानसून का महाप्रहार, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हाहाकार। बारिश मूसलाधार, सिस्टम बंटाधार, जिंदगी पर धार का वार। बारिश ने शहरों की दुर्गति बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भ्रष्टाचारियों को धो डाला। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मुसीबत मूसलाधार। इस साल मानसून देरी से आया, लेकिन आया तो ऐसा आया कि विकास के दावों को धो डाला। शहर शहर बंटाधार हो चुके सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर कर डाला। जी हाँ, जहाँ जहाँ मानसून की बारिश हो रही है देश पानी में गोते लगा रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या पालघर, सूरत हो या गुरुग्राम, स्मार्ट सिटी भी डूबी, विकास के सारे दावे बारिश ने धो डाले। देश भर के 23 राज्यों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हम बात मुंबई जैसे शहर की करेंगे, जहां बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट है। तो बात महाराष्ट्र के स्मार्ट सिटी पुणे की भी होगी, जहां की जनता बारिश से त्रस्त है और सिस्टम को कोस रही है। बात मुंबई से सटे पालघर जिले की भी करेंगे, जो इस वक्त मानसून की बारिश वाली त्रासदी झेल रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं मॉनसून का सबसे खौफनाक कहर, जो केरल के वायनाड और जम्मू कश्मीर के डोडा में टूटा है। जी हाँ, केरल के वायनाड में इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई कि मिट्टी के साथ आया पानी भारी भरकम टैंकर तक को बहा ले गया। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से ऐसी तबाही आई कि पूरा इलाका जैसे कब्रिस्तान बन गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे में दफन हो गई। 1:17 के इस वीडियो को देखिए। एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा है, एक टैंकर आपको दिखाई देगा, दो लोग बारिश में छाता लेकर खड़े हैं। पहले टैंकर बैक गियर में आता है, फिर टैंकर वाला आगे बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। अचानक लोग भागने लगते हैं। जी हाँ, भयंकर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होती है। मलबे का कहर ऐसा टूटता है कि भारी भरकम टैंकर को भी धकेलता चला जाता है। कई लोग इस मलबे की चपेट में आ जाते हैं। अब आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं कि कैसे भयंकर लैंडस्लाइड होती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। देखिए ये इलाका कैसे बर्बाद हो गया है। लोग फंसे हुए हैं, लापता हैं, पानी का बहाव दिख रहा है, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मॉनसून की इस तबाही में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये हादसा केरल में वायनाड के कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहाँ मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। पिछले साल से वायनाड और मलपुरम जिलों को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन कुदरत की एक ही चोट ने जैसे सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, मलबे में दफन हो गया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में बादल फटने से इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सब कुछ जैसे मलबे में मिल गया। डोडा में रिहायशी इलाके में मलबा आने के बाद घर और दुकान ढह गए। बादल फटने के बाद मलबा रिहायशी इलाकों में आया तो गाड़ियां मलबे में गड़ी हुई नजर आईं। मलबे के साथ आए पत्थरों ने इलाके में भयंकर नुकसान किया।
8: बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड ब्रस्ट की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मेरे मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहां बाहर आ गए, तो वहां से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे। तब तक शुद्ध सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।

मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र राष्ट्रपति प्रोवोवो। 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्चे के बही खाते का हिसाब किताब। सीएम योगी ने वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाया आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। सीएम धामी के निर्देश पर बनी हाई लेवल कमेटी। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। भारी बारिश से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल। वायनाड में भी भीषण भूस्खलन। 4 की मौत। दिल्ली एनसीआर में जलभराव के बाद गुरुग्राम के दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। इजिप्ट को 3-2 से हराया। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में अब सबसे आगे। राम मंदिर ट्रस्ट के दामन पर चढ़ावा चोरी के दाग हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी अब जवाबदेही से भाग रहे हैं। उल्टा चढ़ावे की चोरी से जुड़े सवालों पर सीनाजोरी पर उतारू हैं। मतलब सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। इसी बीच एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों पर चंपत राय का जवाब आया है। चंपत राय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा के सिर पर फोड़ दिया है।

0: सवालों के कटघरे में खड़ा है राम मंदिर ट्रस्ट।
1: ट्रस्ट ही जो जिस नियत से बनाया गया है वो नियत ठीक नहीं है, जो वो ट्रस्ट ही भ्रष्ट के कगार पर चला गया है।
0: चंपत राय पर इतने मेहरबान क्यों है ट्रस्टी?
2: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट की बोलती बंद क्यों?
3: बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है?
4: अनिल मिश्रा के आवास पे हैं, आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, उन्होंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है।
0: चढ़ावे की चोरी और ट्रस्ट की सीना जोरी,
5: पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है।
0: जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सीधा सवाल तो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आसपास मौजूद गोविंद गिरी के चेले माइक हटाने लगते हैं। ये सीना जोरी नहीं तो क्या है?
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
5: महाराज जी आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपत आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
6: नहीं सर, प्लीज अभी नहीं।
0: गोविंद गिरी को सवाल चुभ गया क्योंकि उनकी जवाबदेही से जुड़ा था। सोचिए राम धन को चोर दोनों हाथों से लूटते रहे, जिम्मेदार दोनों आंखें बूंदे बैठे रहे। राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई तो भी जिम्मेदारों की हेकड़ी कम नहीं हुई।
5: आखिरी सवाल है महाराज,
2: अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। एक प्रश्न पूछिए। ये आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए।
5: बाकी सवाल ये बता दीजिए कि क्या चंपत,
2: मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था।
0: कोषाध्यक्ष का सच से सामना हुआ तो बौखला गए, मीडिया को सर्टिफिकेट बांटने लगे ताकि अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके।
7: कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही है उसके रिलेटेड, क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई?
2: इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं।
7: क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि
2: ये मीडिया में सुनो मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है, ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं।
0: सवाल कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे गोविंद गिरी की भूमिका पर है, लेकिन गोविंद गिरी खुद वकील हैं, खुद जज हैं और खुद ही अपने पक्ष में फैसला सुना रहे हैं।
5: इस पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है?
2: निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि मैंने डे वन से ही उधर ध्यान दिया नहीं, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना, ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, या हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, ये स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो SOP भी LBI के साथ बना वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, मुझे भी वह इस महीने देखने मिला।
8: गोविंद गिरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, तीन की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, जबकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अपने पद पर बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस्तीफा नहीं वो देंगे। सवाल यही है कि जब तक गोविंद गिरी अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों के आका कैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि गोविंद गिरी खुद को और चंपत राय को क्लीन चिट दे चुके हैं।
0: ये आंख में धूल झोंकना नहीं तो क्या है? राम मंदिर के बड़े बड़े पदाधिकारियों की आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी का अधर्म हुआ। चोरी भी कोई और नहीं बल्कि पदाधिकारियों के करीबी निकले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय को संदेह का लाभ देते हुए समस्त जांच से मुक्त करते हुए राम भक्ति से युक्त बताया। मतलब न अपील न दलील, क्लीन चिट पर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया।
2: इस संपूर्ण कार्य को जिन्होंने पहले दिन से खड़ा किया है और जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
5: तो निर्दोष आप कैसे मानते हैं जब उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, 79 लाख से ज्यादा कैश पकड़ा गया, आप उनके क्या उनको आप मानते हैं कि लापरवाह है, क्या मानते हैं कि उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई?
2: ऐसा है, मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष, उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। दोष ऐसा है उनकी असावधानी, अनेक लोगों का उनका विश्वास, बहुत सारे काम अपने ऊपर झेल लेना, और इसके कारण ये स्वभाव के दोष है, ये कार्य पद्धति के दोष है। उनके अंतकरण के हेतु में आज भी मेरा निर्दोषत्व ही निश्चित रूप से स्थिर है।
0: चढ़ावा चोरी कांड में कानून के लंबे हाथ असल खिलाड़ियों की गर्दन तक पहुंचेंगे, या फिर उनकी पहुंच और रसूख के आगे कानून के लंबे हाथ बंध जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि चढ़ावा चोरी मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका और ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों का रवैया सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि राम मंदिर में हुई चोरी के बावजूद ट्रस्ट सीना जोरी पर उतारू है। ट्रस्ट ने कबूल किया कि चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी हुई। चंपत राय के करीबियों ने चढ़ावे की चोरी की, लेकिन कसूर चंपत राय का नहीं बल्कि करीबियों का है, क्योंकि चंपत राय तो इतने भोले हैं कि खुद विश्वासघात के शिकार बन गए। मतलब चंपत राय पर सवाल मत पूछो, चंपत राय को सांत्वना देने का वक्त है। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के हर निर्णय पर सवाल ही सवाल हैं। वक्त है सवालों का जवाब देने का, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम सुनते ही ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारियों की जुबान सिल जाती है। गोपाल राव को भी ट्रस्टी दूध का धुला मानते हैं। चढ़ावे की चोरी पर ट्रस्ट की लीला समझ से परे है।
3: विषय आया माननीय श्री चंपत जी के इस्तीफे की बात, तो जितने हमारे ट्रस्टी थे सब एक स्वर से नहीं नहीं हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ट्रस्टी जो चेन्नई में रहते हैं पारासरन जी, उनने कहा नियम यह है कि स्वीकार आप करें या न करें, ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया तो अपने आप ही स्वीकार हो जाता है।
2: वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब ये हो गई सज्जनता की बात।
0: ट्रस्ट चट्टान की तरह चंपत राय के साथ खड़ा है और चढ़ावा चोरी का ठीकरा चंपत राय के करीबियों पर फोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चढ़ावे की गिनती चढ़ावे की चोरी के दोषी अनिल मिश्रा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता के साथ नहीं किया। अनिल मिश्रा पर राम मंदिर ट्रस्ट की बोलती बंद है।
2: दोषी है कि नहीं ये एसआईटी निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। एसआईटी जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है, मैं क्यों बताऊं कि वो दोषी है अथवा नहीं है।
4: जैसे कि अभी अनिल मिश्रा जी का भी एक नाम सामने आता है कि उनको
3: हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट मौन है, ठीक वैसे ही जैसे चंपत राय ने चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में जांच पूरी होने तक मौन रहने का दावा किया है। मतलब चंपत राय ने मौन का ऐलान करके बता दिया कि वो अभी सवालों का जवाब नहीं देंगे। वहीं अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, कहां हैं किसी को नहीं पता। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जब अनिल मिश्रा की आलिशान कोठी पर पहुंचे तो देखिए क्या हुआ।
4: फैमिली से हैं?
9: नहीं, हम उनके बेटे नहीं
4: हैं। फैमिली से हैं पर?
9: नहीं नहीं।
4: हाँ, हम फैमिली से हैं। तो हम इस वक्त अनिल मिश्रा के आवास पे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, मैंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है। ये गाड़ी निकल रही है यहाँ से, दिल्ली की गाड़ी हालांकि, और ये घर अनिल मिश्रा का है और इन्हीं के घर से गाड़ी निकल रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई से बात हो सकती है 2 मिनट? तो ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी से निकल रहे हैं। बॉस 2 मिनट बात हो, तो यहाँ पर बात नहीं की है।
0: अनिल मिश्रा सामने नहीं आते, उनके घर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। मतलब यही है कि चढ़ावा चोरी की जांच की आंच से असल जिम्मेदारों को बचाने का खेल खेला जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 8 आरोपियों के सिर पर चोरी का ठीकरा फोड़कर उनके आकाओं को बचाने की कवायद चल रही है। आज तक ब्यूरो।
8: सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को लेकर भी उठाया जा रहा है, जो एक तरफ तो क्लीन चिट चंपत राय को देते हैं, दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही पर पल्ला झाड़ लेते हैं।
10: ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर पूछिए तो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं जी वो तो एकदम निर्दोष। ट्रस्ट के ताकतवर सदस्य अनिल मिश्रा को लेकर पूछिए तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं उनका फैसला एसआईटी करेगी। और खुद की जवाबदेही पर जब सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से होता है तो जवाब आता है हम तो पुणे से सब कुछ देखते थे।
11: बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे?
12: मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष है उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे, उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था।
10: अपनी कोषाध्यक्ष वाली जिम्मेदारी तो गोविंद देवगिरी पुणे से बैठकर हवा में निभाते रहे और अब कहते हैं चढ़ावा चोरी की बात सुनकर इनको दुख, वेदना, शर्म, लज्जा सब होने लगी।
12: ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया, ये हमारे लिए दुख की, वेदना की और शर्म की बात है।
10: इतना कुछ होने लगा है तो क्यों नहीं खुद गोविंद देवगिरी ट्रस्ट से अपनी जवाबदेही को लेकर इस्तीफा देते हैं।
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
6: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इस पे मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
10: तो फिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने की आवश्यकता क्यों? क्यों नहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एफआईआर कराते? क्यों चंपत राय के माफी मांगने से जुड़े सवाल पर ये बचने लगते?
5: आखिरी सवाल ये बता दी, कि क्या चंपत आखिरी सवाल की क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक से आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
6: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को? भाई सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज।
10: ये तो हालत मानो जल्दबाजी है कि बस एसआईटी की जांच में जो 8 लोग का नाम सामने आया उनको ही सजा दिलाकर बाकी चेहरे बचा लिए जाएं, जिसमें गोविंद देवगिरी को लेकर भी सवाल आता है। गोविंद देवगिरी जो पुणे से ऑडिट करने वालों को भेजकर अपने कोषाध्यक्ष वाले कर्तव्य की तीसरी करते रहे, जिनको इतना भी नहीं पता चला कि जिस ट्रस्ट के ये कोषाध्यक्ष हैं उसके कोष से चढ़ावा चोरी होता जा रहा है। लेकिन इनको वो जरूर पता चल गया जो SIT को भी पता नहीं चल पाया।
12: अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबी आ रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा, इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है। उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा यह सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो, यह करवाया गया, ऐसा भी मुझे एक बार लगता है।
10: मतलब अपनी जिम्मेदारी वाली दृष्टि नहीं, लेकिन इनके पास सियासी दिव्य दृष्टि है, जिनको अब ये लगने लगा कि CEO की नियुक्ति हो जाएगी तो फिर कभी चढ़ावा चोरी नहीं होगी।
12: एक CEO के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ।
10: तो ये बात ट्रस्ट बनते ही क्यों नहीं कह दी? क्यों इतने लंबे वक्त तक वो पदभार उठाते रहे जिसके लिए खुद को ही योग्य नहीं मानते? और नहीं मानते तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते?
8: देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का दौर शुरू हुआ तो तबाही भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, यूपी से लेकर दिल्ली NCR तक भारी बारिश के साथ मानसून का महाप्रहार शुरू हो गया है।
13: मानसून का महाप्रहार, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हाहाकार। बारिश मूसलाधार, सिस्टम बंटाधार, जिंदगी पर थार का वार। बारिश ने शहरों की दुर्गति बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भ्रष्टाचारियों को धो डाला। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मुसीबत मूसलाधार। इस साल मानसून देरी से आया, लेकिन आया तो ऐसा आया कि विकास के दावों को धो डाला। शहर शहर बंटाधार हो चुके सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर कर डाला। जी हाँ, जहाँ जहाँ मानसून की बारिश हो रही है देश पानी में गोते लगा रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या पालघर, सूरत हो या गुरुग्राम, स्मार्ट सिटी भी डूबी, विकास के सारे दावे बारिश ने धो डाले। देश भर के 23 राज्यों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हम बात मुंबई जैसे शहर की करेंगे जहां बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट है, तो बात महाराष्ट्र के स्मार्ट सिटी पुणे की भी होगी जहां की जनता बारिश से त्रस्त है और सिस्टम को कोस रही है। बात मुंबई से सटे पालघर जिले की भी करेंगे जो इस वक्त मानसून की बारिश वाली त्रासदी झेल रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं मानसून का सबसे खौफनाक कहर जो केरल के वायनाड और जम्मू कश्मीर के डोडा में टूटा है। जी हाँ, केरल के वायनाड में इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई कि मिट्टी के साथ आया पानी भारी भरकम टैंकर तक को बहा ले गया। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से ऐसी तबाही आई कि पूरा इलाका जैसे कब्रिस्तान बन गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे में दफन हो गई। 1:17 के इस वीडियो को देखिए। एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा है, एक टैंकर आपको दिखाई देगा, दो लोग बारिश में छाता लेकर खड़े हैं। पहले टैंकर बैक वीडियो को देखिए। एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा है, एक टैंकर आपको दिखाई देगा, दो लोग बारिश में छाता लेकर खड़े हैं। पहले टैंकर बैक गियर में आता है, फिर टैंकर वाला आगे बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। अचानक लोग भागने लगते हैं। जी हाँ, भयंकर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होती है। मलबे का कहर ऐसा टूटता है कि भारी भरकम टैंकर को भी धकेलता चला जाता है। कई लोग इस मलबे की चपेट में आ जाते हैं। अब आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं कि कैसे भयंकर लैंडस्लाइड होती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। देखिए ये इलाका कैसे बर्बाद हो गया है। लोग फंसे हुए हैं, लापता हैं, पानी का बहाव दिख रहा है, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मॉनसून की इस तबाही में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये हादसा केरल में वायनाड के कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहाँ मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। पिछले साल से वायनाड और मलपुरम जिलों को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन कुदरत की एक ही चोट ने जैसे सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, मलबे में दफन हो गया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में बादल फटने से इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सब कुछ जैसे मलबे में मिल गया। डोडा में रिहायशी इलाके में मलबा आने के बाद घर और दुकान ढह गए। बादल फटने के बाद मलबा रिहायशी इलाकों में आया तो गाड़ियां मलबे में गड़ी हुई नजर आई। मलबे के साथ आए पत्थरों ने इलाके में भयंकर नुकसान किया।
14: बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड ब्रश की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मेरे मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहाँ बाहर आ गए, तो वहाँ से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे। तब तक सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया।
8: लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लोनावला में 900 mm बारिश के साथ ही 16 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है, जबकि 22 जगहों पर भूस्खलन की खबर है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई, पालघर, ठाणे, पुणे, नासिक समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं।
13: महाराष्ट्र में मॉनसून का आफतकाल, मुसीबत विकराल। मुंबई, पुणे, पालघर, नासिक में बारिश ने बरपाया कहर। महाराष्ट्र में मॉनसून ने खोली सिस्टम में भ्रष्टाचार की पोल। जिस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड ने मिसिंग लिंक के निर्माण पर सवाल उठा दिए और महाराष्ट्र सरकार को सुपर स्पीड से काम करवाकर एक्सप्रेसवे खोलना पड़ा, क्योंकि यहां सवाल बारिश से हुई लैंडस्लाइड का नहीं था, बल्कि 2 महीने पहले शुरू हुए मिसिंग लिंक और उसके उच्चतम क्वालिटी के काम के दावों का था। 6695 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ और एक ही बारिश में ढह गया। इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो फिर से दौड़ने लगी हैं, लेकिन अब स्मार्ट सिटी पुणे में मॉनसून से दुर्गति की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्मार्ट सिटी की सोसाइटीज में पानी भरा है, गाड़ियां पानी में गोते लगा रही हैं। लोग पानी में गोते लगाती स्मार्ट सिटी में सिस्टम कैसे ध्वस्त हो चुका है उसको कोस रहे हैं।
15: पानी आया, लाइट गया, पीने का पानी नहीं, कुछ नहीं, गाड़ियां खराब। अभी कल तो, और हम किधर जाएंगे, हमारा घर ही इधर है, गांव हमारा 500 किलोमीटर दूर है।
16: नदी का पानी ऊपर से आता है और वो सीधा वो ड्रेनेज लाइन में जाता है और ये सोसाइटी में आता है। दिस इज फॉल्टी अलाइनमेंट।
17: जितने भी यहाँ के सांसद है वो हर साल आते हैं, बताते कि हम नेक्स्ट ईयर में या धूप में अपन करेंगे, अभी बारिश में नहीं हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सीधा आते हैं तो नेक्स्ट बारिश में। तभी तक ये यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई आके देख के नहीं जाता है।
13: और ये देखिए कैसे पुणे की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये भी एक सोसाइटी है जहां घरों के अंदर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकायदा रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन चला रही हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे पुणे की सोसाइटी का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और इसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। पालघर में मानसून का आफतकार, बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हां, पालघर के वसई विरार और नाला सोपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। पालघर जिले में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पालघर में सूर्या नदी उफान पर है और ये देखिए कैसे सड़क और नदी मिल चुके हैं। पालघर में लगातार हो रही बारिश और आपदाओं के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर जिले के प्रमुख बांध लगभग 50% भर चुके हैं। पालघर जिले के नाला सोपारा और वसई विरार जैसे शहरों में मानसून बड़ी आफत बनकर आया है।
18: इस वक्त हम वसई रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे हैं। पालघर जिले के इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतना बड़ा गड्ढा है जो पानी से दिख नहीं रहा है, तो लोगों को केयरफुल रहना होगा। पूरे रास्ते में ट्रैक्स के साथ ही चलेंगे वो, ये सब तमाम चीजों को इनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आप देख लीजिए पूरा रेलवे ट्रैक पर पानी है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को अपने, क्योंकि लोकल ट्रेन नहीं मिल रही, हालांकि देख लीजिए यहाँ एक पंप भी चल रहा है लेकिन आखिर ये पंप पानी फेंकेगा कहाँ, क्योंकि पूरे आसपास वसई इलाके में यहाँ पर नाला सोपारा में पूरा पानी आसपास शहर में भी भरा हुआ है।
13: महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 48 घंटे में करीब 15 इंच यानी 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नासिक में भी आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र के 3.5 शक्ति पीठों में शामिल सप्तशृंगी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद है। बड़ी बात तो यह है कि भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत काफी कमजोर रही थी और जून में बारिश सामान्य से लगभग 40% तक कम दर्ज की गई। हालांकि जुलाई की बारिश ने इस कमी को घटाकर 23% कर दिया है। मानसून की कमी से ये हालात हैं और महाराष्ट्र के सिस्टम में भ्रष्टाचार के छेद की पोल खुल रही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सोचिए अगर और तगड़ी बारिश हुई तो क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
8: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।

की कौन सी राशि कम्युनिकेशन से संबंध रखती है? बुध की किस राशि के लोग धनवान होते हैं? कौन सी है बुध की राशियां? क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारतीय समुदाय के बीच बोले सच्चे मित्र राष्ट्रपति प्रोवोवो। 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब प्राण प्रतिष्ठा समेत पूरे खर्चे के बही खाते का हिसाब किताब। सीएम योगी ने वक्फ की लूट का उठाया मुद्दा। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाया आरोप। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। सीएम धामी के निर्देश पर बनी हाई लेवल कमेटी। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। भारी बारिश से महाराष्ट्र समेत कई राज्य बेहाल। वायनाड में भी भीषण भूस्खलन। 4 की मौत। दिल्ली एनसीआर में जलभराव के बाद गुरुग्राम के दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। इजिप्ट को 3-2 से हराया। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में अब सबसे आगे। राम मंदिर ट्रस्ट के दामन पर चढ़ावा चोरी के दाग हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी अब जवाबदेही से भाग रहे हैं। उल्टा चढ़ावे की चोरी से जुड़े सवालों पर सीनाजोरी पर उतारू हैं। मतलब सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। इसी बीच एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों पर चंपत राय का जवाब आया है। चंपत राय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा के सिर पर फोड़ दिया है।

0: सवालों के कटघरे में खड़ा है राम मंदिर ट्रस्ट।
1: ट्रस्ट ही जो जिस नियत से बनाया गया है वो नियत ठीक नहीं है, तो वो ट्रस्ट ही भ्रष्ट के कगार पर चला गया है।
0: चंपत राय पर इतने मेहरबान क्यों है ट्रस्टी?
2: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट की बोलती बंद क्यों?
3: बहुत जल्दी सबका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चित बात है।
0: दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है?
4: अनिल मिश्रा के आवास पे हैं, आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अब कौन है नहीं मालूम है, उन्होंने पूछा कि बेटे हैं, नहीं बता रहे हैं कौन है।
0: चढ़ावे की चोरी और ट्रस्ट की सीना जोरी,
5: पूरे मामले में आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है।
0: जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सीधा सवाल तो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आसपास मौजूद गोविंद गिरी के चेले माइक हटाने लगते हैं। ये सीना जोरी नहीं तो क्या है?
5: कोषाध्यक्ष के नाते आपसे ये चूक हो गई कि आपने इनके कामों पर अपनी नजर नहीं रखी जो लोग कोष देख रहे थे। यहाँ
2: अपने साथी जब काम कर रहे हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी।
5: महाराज जी आखिरी सवाल ये बता दी कि क्या चंपत, आखिरी सवाल कि क्या लगता है कि माफी मांग ले, एक सेकंड, आपको लगता है कि चंपत राय को या दूसरे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के
2: बाहर 25-30 लोग खड़े हैं?
5: एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट के, ट्रस्ट को बाहर? सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज?
2: नहीं सर, प्लीज अभी नहीं।
0: गोविंद गिरी को सवाल चुभ गया क्योंकि उनकी जवाबदेही से जुड़ा था। सोचिए राम धन को चोर दोनों हाथों से लूटते रहे, जिम्मेदार दोनों आंखें बूंदे बैठे रहे। राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई तो भी जिम्मेदारों की हेकड़ी कम नहीं हुई।
5: आखिरी सवाल है महाराज जी,
2: अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकार